0: जल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें।
1: प्रधानमंत्री अगर दो गाड़ी से अब केवल चलने लगे तो गृहमंत्री ने 50% गाड़ी काफिले में घटाई। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जो जेड प्लस सुरक्षा में चलते हैं, जिनके साथ पहले 11 गाड़ियों का काफिला चलता रहा, अब वो केवल 4 गाड़ी लेकर चलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 11 गाड़ियों का काफिला छोड़कर 4 गाड़ियां लेकर कैबिनेट की बैठक में पहुंचे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र के तमाम मंत्रियों की तरफ से क्या ये सारी कवायद इसलिए ताकि जनता तक संदेश भी पहुंचे और वो भी कम गाड़ी से चलकर तेल बचाएं, साथ ही उस सियासत को जवाब मिले जो अब तक सरकार की कोशिश पर सवाल उठाती रही।
2: कुछ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम मेट्रो से जाएंगे, तो अगर एक दिन की ड्रामेबाजी है सिर्फ रील बनाने के लिए तो भी बहुत बढ़िया, चला लो। मगर अगर वाकई में आप मेट्रो से जाया करोगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करोगे तो हर मंत्री ने, किसी ने 5 गाड़ी ले रखी है सरकार से, किसी ने 8 ले रखी है, किसी ने 15 ले रखी है।
1: सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों तक नरेंद्र मोदी की खींची लकीर पर अब सब चलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का निर्देश है, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, अफसर सब 50% गाड़ियां अपनी फ्लीट में कम करेंगे। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने बैठक करके दे दिया है, उस पर अमल करना शुरू हो चुका है। अपने काफिले से लेकर मंत्रिमंडल के काफिले तक को हाफ कर दिया है। जैसे ये देखिए, योगी सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल नई दिल्ली से मेरठ तक की यात्रा अपने काफिले के साथ नहीं करते हैं, मेट्रो ट्रेन और नमो भारत ट्रेन से करते देखते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने काफिला कम कर दिया, 13 की बजाय 8 गाड़ी लेकर अब मोहन यादव निकले हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपना काफिला छोटा कर लिया है। 13 की जगह अब महज 8 गाड़ियां इस काफिले में होगी और आप देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां हैं जो जाती हुई आपको दिख रही हैं।
1: दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा मेट्रो ट्रेन से चलने लगे।
4: आज सुबह आपने देखा होगा, मैंने भी मेट्रो से सफर किया है, आशीष सूद जी भी मेट्रो से सफर कर रहे हैं और बहुत आवश्यकता पड़ी तो केवल एक गाड़ी का इस्तेमाल करें, ऐसा निर्णय हमने किया है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान का अक्षरशः पालन करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं।
1: दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह DTC बस से विकासपुरी से दिल्ली सचिवालय 40 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचे।
5: 80% खासकर मुझे ऑफिस आने के लिए, जाने के लिए मैं DTC की बस की पे ही जाऊंगा, ट्रांसपोर्ट पे जाऊंगा और जब तक हम अगला निर्देश भी दे रहे हैं कि अब जो गाड़ियां खरीदी जाएगी EV खरीदी जाएंगी।
1: गुजरात के राज्यपाल ने कह दिया वो हवाई यात्रा नहीं करेंगे, हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे, ट्रेन बस से यात्रा करेंगे। सवाल है कि ये सादगी का संदेश, बचत की लकीर, जागरूकता की कहानी कितने दिन तक चलेगी? केवल वीडियो बनेगा या फिर जब तक देश आर्थिक चुनौती से बच नहीं जाता, देश के सभी नेता एक मिसाल पेश करते रहेंगे।
6: नीट पेपर लीक सिंडिकेट पर CBI का शिकंजा कसने लगा है। सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है, लेकिन नीट परीक्षा के उस काले सच से पर्दा उठाती आज तक संवाददाता शरद कुमार की इस रिपोर्ट को दिखाते हैं आपको। 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द हो चुका है, NTA ने पेपर लीक की जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन बीते साल हुई नीट की परीक्षा भी सवालों के घेरे में है।
7: नीट पेपर लीक पर सबसे विस्फोटक खुलासा,
8: आपके परिवार के पिछले साल भी नीट पास हुए हैं?
9: हाँ हुए ना।
8: कितने लोग?
9: 4 लोग।
7: 2025 में भी नीट का पेपर लीक होने का शक। पेपर लीक कांड पर होश उड़ाने वाली गवाही,
8: आपके परिवार के पिछले साल भी नीट पास हुए हैं?
9: हाँ हुए ना।
8: कितने लोग?
9: 4 लोग।
7: कैमरे पर आरोपी की बीवी का कबूलनामा, परिवार के चार बच्चे 2025 में भी हुए थे सिलेक्ट। आज तक की पड़ताल, नीट परीक्षा में घोटाला। नीट का पेपर इस साल लीक हुआ और लीक होने के बाद नीट की परीक्षा अब दोबारा होगी, लेकिन क्या 2025 में भी नीट का प्रश्न पत्र लीक हुआ था? क्या बीते साल पेपर लीक का मामला जांच एजेंसियों ने दबा दिया? इस सवाल की वजह है राजस्थान का बिवाल परिवार। 2025 में परिवार के चार बच्चे नीट में सिलेक्ट हुए और इस साल एक और बच्चे ने नीट का पेपर दिया, लेकिन परिवार के दो सदस्य पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि नीट का पेपर देने वाला बच्चा ऋषि अंडरग्राउंड है। जांच एजेंसियों को ऋषि की सरगर्मी से तलाश है। सवाल यही है कि बीते साल परिवार के चार बच्चों का नीट में पास होना महज इत्तेफाक है या फिर चारों का सिलेक्शन पेपर लीक की वजह से हुआ था? आज तक संवाददाता शरद कुमार जब जम्वा रामगढ़ में पेपर लीक कांड में गिरफ्तार बिवाल परिवार के घर पहुंचे, तो हमारी मुलाकात आरोपी दिनेश की पत्नी रजनी और उनके केयर टेकर से हुई। पत्नी रजनी ने आज तक के कैमरे पर कबूल किया कि चार बच्चों ने पिछले साल नीट की परीक्षा पास की थी। बहुत गौर से रजनी की एक एक बात सुनिए।
8: पिछले साल भी नीट में पास हुए हैं?
9: हाँ हुए ना।
8: कितने लोग?
9: चार लोग।
8: चार लोग, तीन लड़कियां और एक लड़का।
9: हाँ।
8: वो किसके थे?
9: ये मेरे बहन के और मेरे जेठ के।
8: मांगीलाल जी के?
9: हाँ।
8: उनको भी साथ में ले गए हैं दिनेश के?
9: कहाँ?
8: यशो जी,
9: मुझे पता नहीं है मैडम।
8: वो भी, वो उनसे कब मिली थी आप?
9: मुझे पता ही नहीं है कब मिली थी मैं तो।
7: दिनेश बिवाल और उसका बड़ा भाई मांगीलाल नीट पेपर लीक कांड से जुड़े अहम किरदार हैं। आरोपी दिनेश की पत्नी रजनी ने आज तक के कैमरे पर कबूल किया कि बीते साल हुई नीट की परीक्षा में परिवार के चार बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जबकि इस साल सीकर में नीट की तैयारी कर रहे बेटे ऋषि ने परीक्षा दी है, जो पेपर लीक के खुलासे के बाद से फरार है। पेपर लीक के खेल से बिवाल परिवार का कनेक्शन क्या है, समझने से पहले आज तक की जांच में सामने आया खुलासा देखिए। बिवाल परिवार में तीन सगे भाई हैं, मांगीलाल, घनश्याम और दिनेश। मांगीलाल बीते साल हुए नीट परीक्षा और इस साल हुई नीट परीक्षा का आरोपी है। बीते साल मांगीलाल की बेटी प्रगति और बेटे विकास ने नीट की परीक्षा पास की, तो वहीं घनश्याम की दो बेटियों यानी पलक और सानिया ने भी नीट का एग्जाम क्लियर किया। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। इस साल दिनेश के बेटे ऋषि ने नीट की परीक्षा दी थी। घनश्याम की मौत हो चुकी है, जबकि मांगीलाल और दिनेश की नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तारी हो चुकी है।
10: नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान का मुख्य आरोपी दिनेश बिलाव और मांगीलाल बिलाव का घर है ये जम्वा रामगढ़ में, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ी के नीचे है और ये फार्म हाउस टाइप का बना रखा है। दिनेश एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था और इसका बेटा ऋषि इस बार सीकर में परीक्षा की तैयारी कर रहा था नीट का। ये यश से गुड़गांव से 30 लाख में पेपर खरीद कर लाया था और अपने बेटे को भेजा था सीकर, देकर आया था ऋषि को और ऋषि ने आगे फैलाया सीकर में। मगर सबसे बड़ी बात है कि जो मांगीलाल अरेस्ट हुआ है, बड़ा भाई दिनेश का, वो पिछली बार पेपर ले आया था और मांगीलाल के बेटे और घर के और तीन लड़कियां उसके बहनों के, यानी चार बच्चे नीट 2025 में भी पास हुए हैं। इसीलिए ये पूरा जो खुलासा हो रहा है नेटवर्क का, ये बड़ा नेटवर्क है और पिछले साल भी जा रहा है। इसी के जरिए पूरे देश में यहाँ पर सीकर से ये पेपर फैला है और आखिर में ये स्थिति हो गई थी कि पैसे कमाने के लालच में ये पीडीएफ को डाउनलोड करके और प्रिंट आउट कराकर 5,000 से 10,000 में भी बेचने लगे थे।
7: ये कोठी पेपर लीक कांड में गिरफ्तार मांगीलाल और दिनेश की है। दोनों भाइयों पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। मांगीलाल और दिनेश से पूछताछ में पेपर लीक सिंडिकेट के एक एक राज उगलवाने में जांच एजेंसी जुटी है। जांच एजेंसियां दिनेश के जरिए पेपर लीक के काले खेल से जुड़े बड़े बड़े चेहरों को बेनकाब करना चाहती हैं, क्योंकि दिनेश को नीट के एग्जाम से पहले ही पेपर मिल गया था, जिसे उसने अपने बेटे ऋषि के लिए खरीदा था। मतलब आरोपी दिनेश को नीट पेपर लीक के काले खेल की पूरी जानकारी थी। वहीं आरोपी दिनेश की पत्नी के मुताबिक उन्हें न तो पेपर लीक से जुड़ी कोई जानकारी है और न ही पेपर लीक के आरोप में हुई गिरफ्तारी के बारे में।
8: रजनी जी, आपके बच्चे इस बार नीट दे रहे थे?
9: हाँ, ऋषि दिया था।
8: तो आपको पता था कि आपके पति गैस पेपर लेकर आए हैं?
9: नहीं नहीं नहीं पता मुझे।
11: सीकर गए थे देने?
9: नहीं नहीं, सीकर नहीं गए थे, पढ़ा के लाए थे उधर से बच्चों को।
11: पढ़ा के लाए थे?
9: हाँ।
11: तो कब आपको पता चला कि एसओजी ले गई उनको?
9: मुझे तो पता ही नहीं चला, पता ही नहीं मुझे तो, लेके गए।
11: कहाँ है वो दिनेश जी?
9: पता ही नहीं है मुझे तो।
11: बता तो रहे हैं आपके सामने कि चार दिन पहले ले गए।
9: मुझे तो पता नहीं है, उनको पता होगा, मुझे पता नहीं है।
11: बच्ची कहाँ है आपकी?
9: मेरी बच्ची तो वहाँ है बनारस में।
11: अभी कौन दे रहा था एग्जाम?
9: अभी तो ऋषि दे रहा था।
11: बेटा कहाँ है?
9: अभी बेटा पता नहीं है मेरे को।
7: पत्नी ने पेपर लीक और गिरफ्तारी से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बिवाल परिवार की कोठी के केयर टेकर ने गिरफ्तारी की बात कबूल कर ली।
11: एसओजी कब ले गई दोनों भाइयों को?
12: 3-4 दिन हुए।
11: बेटे को भी ले गई?
12: बेटे का पता नहीं।
11: ये क्या करते हैं दोनों भाई?
12: प्रॉपर्टी।
11: पिछली बार भी इनके घर से नीट में सिलेक्शन हुआ था।
12: 5-4 का वो तो बता रहे थे ब्रज जी।
6: बिलाल परिवार के चार बच्चे इस वक्त मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नीट में बीते साल हुआ था। आरोपी मांगीलाल के बेटे विकास और बेटी प्रगति को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। विकास सवाईमाधोपुर मेडिकल कॉलेज में है तो प्रगति दौसा के सरकारी मेडिकल कॉलेज की छात्रा है। वहीं मांगीराम के भाई घनश्याम की बेटी सानिया जयपुर के सरकारी सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। दूसरी बेटी पलक मुंबई के सरकारी मेडिकल कॉलेज की छात्रा है।
7: बिवाल परिवार का दावा यही है कि बीते साल नीट में सिलेक्ट हुए चारों बच्चों ने खूब मेहनत की थी, बाकायदा सीएलसी कोचिंग में नीट परीक्षा की तैयारी की थी। घर वालों के दावों की हकीकत जानने के लिए आज तक संवाददाता शरद कुमार सीएलसी कोचिंग पहुंचे। सीएलसी कोचिंग में शरद कुमार की मुलाकात कोचिंग के डायरेक्टर श्रवण चौधरी से हुई। श्रवण चौधरी ने आज तक से बातचीत में चौंकाने वाला खुलासा किया, जो बिवाल परिवार की दलीलों को सवालों के घेरे में खड़ा करने को काफी है।
10: नीट पेपर लीक के सीकर तार ने देश भर में हंगामा मचा रखा है। बताया गया कि जम्मू रामगढ़ से जो चार बच्चे पिछली बार सेलेक्ट हुए हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए, वो सीएलसी में पढ़े थे। और ये भी बताया गया कि इस बार जो दिनेश गिरफ्तार हुआ है, उसका बेटा भी यहां पर ऋषि पढ़ता था। सच्चाई क्या है, जानने के लिए हम सीएलसी के डायरेक्टर श्रवण चौधरी के पास पहुंचे हैं। श्रवण जी, ये जो बच्चे हैं जो आपके रिकॉर्ड में दिखाई दे रहे हैं, पिछली बार चार बच्चे हैं मांगीलाल और घनश्याम के, चारों अलग अलग सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो यहां से उनका दावा है पढ़ने का?
13: सर, ये आपको रिकॉर्ड दिखाता हूं मैं, ये बिल्कुल सानिया बिवाल 25 में हमारे पास थी, विकास 25 में हमारे पास, प्रगति बिवाल, और ये सारे बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज में हैं, हमारे क्लासरूम में नहीं है। दूसरी बात ये कि हमारे सिलेक्शन के रिजल्ट की जो बुकलेट है, इसमें कहीं इनका नाम नहीं है, रिजल्ट नहीं बताया इन्होंने। अभी आपको हमने दिखाया कि ये इनको जो कॉल किए तो ये कहीं ना, और ये एक लड़का जो बता रहे ऋषि बिवाल, ये हमारे 11th क्लास में एडमिशन हुआ और ये सर प्रमाण रहा, इसका रिफंड हो चुका हमारे यहाँ, इसका एडमिशन हुआ 17,000 ऑनलाइन रिफंड हमने कर दिया इसको 28 मई 2024 को।
7: श्रवण चौधरी ने कोचिंग में पढ़ने वाले सभी छात्रों का पूरा रिकॉर्ड हमें दिखाया। इस रिकॉर्ड में बिवाल परिवार के चारों बच्चों के नाम दर्ज हैं, लेकिन सभी बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के टेस्ट सीरीज में एडमिशन लिया था, यानी चारों बच्चे पढ़ते कहीं और थे, बस टेस्ट देने कोचिंग आते थे। श्रवण चौधरी के मुताबिक नीट की परीक्षा पास करने के बाद बिवाल परिवार ने कोचिंग की तरफ से किए गए कॉल का जवाब नहीं दिया। यही वजह है कि कोचिंग की तरफ से छपने वाली बच्चों की लिस्ट में उनका नाम मौजूद नहीं है।
13: विकास स्टार्ट यहाँ से होता है, ये विकास लादूराम है, ये विकास गजानंद है, विकास जांगीर, वंदना, ये इससे ही विकास है।
11: ये विकास जो आपको बताया नहीं रिजल्ट आने पर?
13: नहीं, रिजल्ट हमने कॉल कर रखा है, वो आप उसमें कंप्यूटर लिखा हुआ एनआर का मतलब है हमने कॉल किया, कॉल अटेंड नहीं किया। इनका हमारे यहाँ कोई रिजल्ट नहीं है, बच्चे टेस्ट जिससे 11th का जो कोर्ट कर रहे हैं ये 24 में, वो तो उसके बाद रिफंड हो गया, रिफंड का प्रमाण हम आपको दे।
11: बाकी जो टेस्ट सीरीज बच्चे पढ़ते हैं उन सबका रिकॉर्ड है, इनका नहीं है?
13: हाँ, मतलब रिजल्ट में नहीं है, मतलब इनका रिजल्ट, हाँ, जो बच्चा सिलेक्ट होता है तो सिलेक्ट बच्चे हम उसकी बाकायदे मैगजीन छापते हैं, उसमें कहीं नहीं है ये।
11: तो इन्होंने आपको बताया नहीं?
13: रिजल्ट ने बताया।
7: बड़ी बात यह है कि इस साल नीट की परीक्षा देने वाले ऋषि ने 2024 में सीएलसी कोचिंग में दाखिला लिया था, लेकिन बाद में कोचिंग छोड़ दी। यानी सीएलसी कोचिंग का दावा यही है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल काली हो सकती है।
10: एमबीबीएस में सेलेक्ट होने के बाद इनको कोई जानकारी नहीं दी है और अभी इनको ये जानकारी नहीं थी कि ये जो मांगीलाल और घनश्याम के बच्चे चारों पिछली बार सेलेक्ट हुए हैं वो यहीं के पढ़े हुए थे, इनके इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन्होंने रिकॉर्ड में देखा तो ये पता चला है। और जो ऋषि कहा जा रहा है लड़का कि जो इस बार नीट में परीक्षा दिया है वो यहाँ एडमिशन लिया था पिछले साल, लेकिन यहाँ से 24 में, लेकिन यहाँ से वो जा चुका है, इसलिए इनके पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा इनका कहना है। बाकी जो पूछताछ में उन्होंने यही बताया था कि सीएलसी में उन्होंने पढ़ाई की है।

0: आज तक।
1: मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया। महज 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव की मौत की खबर आई तो हर कोई हैरान रह गया। जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में प्रतीक यादव की मौत हुई है, ऐसे में सबको लगा कि क्या मौत के पीछे कोई गहरा राज है। आपको बता दें कि प्रतीक यादव अपर्णा यादव के पति हैं और जब उनकी मौत हुई अपर्णा यादव घर पर यानी कि लखनऊ में नहीं थी, वो बाद में असम से लखनऊ पहुंची।

0: कैसे हुई अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मौत? घर में प्रतीक यादव को क्या हुआ? अस्पताल ने क्या कहा? क्यों प्रतीक यादव की अचानक से मौत पर सस्पेंस गहरा गया? प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला? क्या प्रतीक की मौत गंभीर बीमारी से हुई या वजह कुछ और है? मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की मौत की खबर जैसे ही आती है हर कोई हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि प्रतीक की उम्र महज 38 साल थी। और सबसे बड़ी बात, प्रतीक यादव को फिटनेस फ्रीक माना जाता था। फिर सवाल उठता है कि आखिर प्रतीक यादव को ऐसा क्या हुआ कि अस्पताल ले जाते ही उनको मृत घोषित कर दिया जाता है?
1: 5:55 पे उनको परिवार के द्वारा ले आया गया, तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कराया गया। तब तो उनकी डेथ हो चुकी थी, उनको डेड डिक्लेयर किया गया और बॉडी को पुलिस को इन्फॉर्म करके उनको सौंप दिया गया। पुलिस को, पुलिस ने पंचनामा किया और उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू मार्चरी भिजवा दी गई है।
2: मतलब आपका कहने का है कि जो 5:55 पर प्रतीक की
1: वो मृत अवस्था में थे।
0: प्रतीक यादव के करीबी जो बताते हैं वो बेहद ही गौर करने वाली बात है। बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव देर रात बेडरूम में गए थे, जहां उनके सिर पर चोट भी लगने का दावा किया गया, क्योंकि उस वक्त प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव भी घर पर नहीं थी। ऐसे में ये रहस्य और गहराने लगा है। शुरुआती प्रक्रिया में घर के जिस कमरे में प्रतीक यादव थे उसको बंद करके रखा गया है। प्रतीक के मोबाइल फोन और लैपटॉप को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब सवाल ये है कि क्या प्रतीक की चोट को मौत के पीछे शक का आधार माना जाए? लेकिन जब प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें प्रतीक यादव की मौत पर कई अहम बातें सामने आई हैं, सूत्रों के मुताबिक उनका शरीर नीला पड़ चुका था और हार्ट और विसरा सुरक्षित रखे गए हैं। मौत की वजह पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बताई गई है, जिसके चलते कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स हुआ, यानी फेफड़ों की नस में खून का थक्का जमने से दिल और सांसें रुक गईं।
3: अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जिस तरीके से जो मौत हुई है वो कार्डियक अरेस्ट से हुई है। हालांकि लेकिन सबसे बड़ा खुलासा इस बात का हुआ है कि इस पूरी रिपोर्ट में तकरीबन 6 चोटें दिखाई गई हैं। ये 6 चोटें जो बाएं चेस्ट पर, उसके अलावा कोहनी में और कलाई में और इसके अलावा पैर में पाई गई हैं। ये चोटें 7 दिन पुरानी हैं कुछ चोटें, और कुछ चोटें 1 दिन पुरानी हैं। सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये 7 दिन पुरानी चोटें कैसे शरीर पर पहुंची और वो 1 या 2 दिन पुरानी चोटें कैसे आई हैं। हालांकि विस्तार रिपोर्ट रखी गई है, लेकिन ये जरूर एक सवाल खड़ा करता है कि इन चोटों से प्रतीक यादव की मौत का क्या संबंध है। इसका खुलासा होना अभी बाकी है।
0: वैसे प्रतीक की डॉक्टर रुचिता शर्मा की माने तो वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बीमारी के मरीज थे, जिसे बेहद खतरनाक माना जाता है। इसमें खून का थक्का फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं में फंस जाता है, इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है।
4: वो हमारे पुराने पेशेंट थे, मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट

0: पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ।
1: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
2: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
3: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
4: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
2: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
5: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
3: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
2: जहां खबर वहां खबरदार।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: Hot mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: आप इमोशनली भावनात्मक रूप से परेशान हो जाते हैं क्या? भावनाओं के चक्कर में आप गलत निर्णय ले लेते हैं क्या? पूजा करते समय आपके मन में अशुद्ध भावनाएं आती हैं क्या? है भावनाओं का रहस्य और क्या है भावनाओं को नियंत्रित करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्कर।
10: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search sailing. Tell your device to play sailing on TuneIn.
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
8: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brashiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
12: call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop Check fan on this station. Out. Ready to find your flow?
13: It's your boy,
12: Just
13: Jay-Z.
12: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

ऊर्जा संकट के बीच कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी का सख्त संदेश, कम से कम गाड़ियों के इस्तेमाल की सलाह, वाहन खरीद को लेकर दिशा निर्देश जारी, दो गाड़ियों में सिमटा पीएम का काफिला।

आरबीआई ने दिए महंगाई बम फटने से संकेत। संजय मल्होत्रा ने कहा मिडिल ईस्ट संकट लंबा चला तो बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। हॉर्मुज बंद होने से चरमराई सप्लाई चेन। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर से महाराष्ट्र तक जुड़े तार। शहर शहर प्रदर्शन। एनटीए भंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका।

दिल्ली में आज से शुरू होगा दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन। मिडिल ईस्ट तनाव में सबसे बड़ा मुद्दा, यूएई पर भड़के अराक्षी, बैठक में ऊर्जा संकट सबसे बड़ा मुद्दा होगा। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक अंधड़ का कहर, धूल भरी आंधी, बारिश, आकाशीय बिजली से भारी तबाही। यूपी में करीब 40 लोगों की मौत, झारखंड राजस्थान में भी बिगड़े हालात।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। सुबह के 6 बज चुके हैं, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बीती रात उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक मौसम ने भारी तबाही मचाई है। धूल भरी आंधी, आकाशीय बिजली, तूफानी बारिश और इन सब की वजह से कई शहरों में दर्दनाक मौत की तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड में भी अचानक मौसम बदल गया। देखते ही देखते हर तरफ तबाही की तस्वीरें नजर आने लगी। भारी भरकम पेड़ उखड़ गए, कई जगह दीवारें धराशायी हो गई। हवा सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा थी। इस तूफानी तबाही के साथ ही आसमान से गिरी बिजली ने भी जमकर कहर ढाया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, कहीं पेड़ गिरे, कहीं दरख्त गिरे, कहीं गाड़ियां चपेट में आई, तो कई जगहों पर मवेशियों की भी मौत हुई। एक घंटे तबाही वाली बारिश महाराष्ट्र ने देखी तो झारखंड में जानवरों की मौत हुई। 40 लोगों की मौत अकेले उत्तर प्रदेश में हुई है। जानलेवा मौसम का सबसे ज्यादा कहर यूपी में देखने को मिला है। तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। खासकर पश्चिमी हिस्सों पर बने चक्रवाती परिसंचरण और दक्षिणी राजस्थान से आ रही पूर्वा हवा के चलते कई जिलों में 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से आंधी चली। सिर्फ 6 शहरों में करीब 40 लोगों की मौत की खबर है। भदोही, कानपुर, हरदोई, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी में तूफानी मौसम ने भारी तबाही मचाई थी। बीती रात को ही लगभग मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था। भदोही में तेज आंधी, तूफान और भारी बारिश ने अचानक कहर बरपाया, जिससे कई जगह पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे टूट गए, टीन शेड उड़कर दूर जा गिरे और इस प्राकृतिक आपदा में 11 लोगों की मौत हो गई। आपदा में कई लोग घायल हुए, जिसके चलते पूरे जिले में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कानपुर देहात में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। लगभग 35 बकरियां भी इसकी चपेट में आकर मारी गईं। इस घटना से गांव में अफरा तफरी मची, भारी नुकसान का माहौल बन गया। हरदोई में तो आधी तूफान के दौरान 2 अलग अलग हादसों में 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। एक जगह शौचालय की दीवार गिरी और दूसरी जगह बिजली गिरने से, जिससे पूरे इलाके में शोक और मातम का माहौल था। प्रयागराज में धूल भरी आंधी ने व्यापक तबाही मचाई। अलग अलग इलाकों में पेड़, दीवारें, ढांचे गिरने से कुल लगभग 16 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। तो फतेहपुर में आंधी तूफान के चलते 9 लोगों की मौत हुई, 17 लोग घायल हुए, कई मवेशियों की भी मौत हुई। तो कौशाम्बी में तेज आंधी के दौरान पेड़ की भारी डाली गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार में शोक की लहर और स्थानीय प्रशासन ने अब जांच के भी आदेश दिए। 6 शहरों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कहीं पर दीवार गिर गई, पेड़ ढह गए, आकाशीय बिजली गिरी, तो कानपुर में एक की मौत हुई, हरदोई में 2 लोग मारे गए जो आंधी तूफान कुदरत के कहर का शिकार हो गए, धूल भरी आंधी चली, बिजली गिरी, तो प्रयागराज में अकेले 16 लोगों की मौत हुई है। प्रयागराज में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मौसम जानलेवा हुआ तो फतेहपुर में 9 लोगों की मौत हुई और कौशाम्बी में भी कहर बरपा तो पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई। रुकते हैं अगली खबर का। मिडल ईस्ट तनाव के बीच ऊर्जा संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार मिशन मोड में है। पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाकर 2 कर दी है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के सख्त निर्देश दिए। काफिले में वाहनों की संख्या कम करना भी उसमें शामिल है। पीएम मोदी ने मंत्रियों को अनावश्यक रूप से नए वाहन खरीदने से भी बचने की सलाह दी है और बैठक में प्रधानमंत्री ने उच्च पदों पर बैठे लोगों को की सादगी के उदाहरण दिए। जन प्रतिनिधियों से राष्ट्र समाज के प्रति अतिरिक्त जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की अपील की है। तो इन तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे कि कैसे केंद्र सरकार खुद पहल कर रही है कि ईंधन की बचत की जाए। इस ऊर्जा संकट में एक उदाहरण पेश करने की कोशिश की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह का काफिला छोटा होगा, जिसमें 4 गाड़ियां हैं। राजनाथ सिंह ने भी 4 गाड़ियों के साथ सफर किया। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला, जिसमें कई गाड़ियां होती थी, अब उसमें सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन अब सिर्फ 2 गाड़ियां दिखाई दी हैं, जो तस्वीरें कल सामने आई हैं। वाहनों में कटौती की गई है। तो अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी अपने काफिले में सिर्फ 1 गाड़ी रखी है। और अलग अलग राज्यों के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का काफिला देखें, उन्होंने 50% कटौती अपने काफिले पर की है। तो उसी के साथ कई सारे राज्यों के जो मंत्री हैं, गणेश जोशी उत्तराखंड के, वो स्कूटर पर नजर आए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में नजर आए। तो दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा मेट्रो की सवारी करते नजर आए। और इसी के साथ से आचार्य देवव्रत जो राज्यपाल हैं, वो ट्रेन की सवारी करते नजर आए। तो औरंगाबाद में जो जज हैं, वो साइकिल पर नजर आए। और इस ऊर्जा संकट के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बात के संकेत दिए हैं कि महंगाई बम कभी भी फूट सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर मिडिल ईस्ट संकट लंबा खींचता है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। संजय मल्होत्रा का कहना है कि दुनिया की कुल जरूरत के करीब 20% तेल की आवाजाही के लिए जिम्मेदार हॉर्मुज़स्ट्रेट बंद होने से अब सप्लाई चेन चरमराई है, जिसके चलते कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, महंगाई, ईंधन आयात पर निर्भरता अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रही है। इस बयान से एक चीज तो साफ है कि सरकारी तेल कंपनियों पर कच्चे तेल की बढ़ती लागत से दबाव बढ़ रहा है, जिसका असर जल्द ही बाजार पर नजर आएगा। तो क्या देश पर बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है? क्योंकि बैंकर उदय कोटक ने मंगलवार को चेतावनी दी है, बड़ा झटका आने ही वाला है, मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। इसे दो दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था, एक साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल कम खर्च करें। कल रात ही केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर जो ड्यूटी लगती है उसे 6 से बढ़ाकर 15% कर दिया। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे की आशंका बनी हुई है।
1: गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 2, केवल 2 कार का काफिला लेकर प्रधानमंत्री को क्यों निकलना पड़ा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार अपील करने के बाद अब देश को खुद अलर्ट करने के लिए अपना काफिला 90% तक घटा दिया है? आखिर क्या होने वाला है जिसके लिए सिर्फ 2 कार में निकलकर प्रधानमंत्री सबको सावधान सतर्क कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा में कमी करके देश को सजग कर रहे हैं कि बचत करिए तभी आर्थिक संकट से लड़ पाएंगे?
2: मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
1: पहले 10 मई को हैदराबाद, फिर 11 मई को वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों से तेल की बचत करने और सोना एक साल नहीं खरीदने की अपील कर चुके हैं। इसके 3 दिन के भीतर जब कैबिनेट की मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी निकलते हैं, देश से केवल तेल बचाने की अपील नहीं बल्कि उस डगर पर खुद चलकर दिखाते हैं जहां पर नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ न तो उनकी पायलट कार दिखी, न तो एम्बुलेंस दिखी, न जैमर कार दिखी, न पहले जैसी वो सुरक्षा कारें जो किसी खतरे के वक्त प्रधानमंत्री के सुरक्षा काफिले में रहकर हर चुनौती से रक्षा करती आई हैं। केवल 2 गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग में निकलते हैं, लेकिन क्यों?
2: इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें, जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चले।
1: असल में प्रधानमंत्री उस डगर पर खुद चलकर देशवासियों को दिखा रहे हैं जिस पर चलने की अपील उन्होंने देश के नागरिकों से की है, जहां राजनीति नहीं बल्कि सबके मिलकर तेल बचाने वाली जुगत लगाने की जरूरत है।
0: प्रधानमंत्री ने डगर दिखाई है क्योंकि पीएम की नसीहत के बाद जब तमाम राज्य के मंत्री, उनके समर्थक और कुछ आयोग के प्रमुख सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर चलते दिखे तो सवाल उठा कि क्या नसीहत केवल जनता के लिए है। लेकिन अब प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, जिनकी सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल होता है, वो खुद ये बीड़ा उठा रहे हैं कि काफिले में कटौती करके वो भी नजीर पेश करेंगे ताकि संदेश सब तक बचत का पहुंचे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई डगर पर अब गृह मंत्री तुरंत निकल पड़े हैं, जिन्होंने अपना काफिला 10 से 11 गाड़ी से घटाकर 5 गाड़ियों में बदल दिया। ये बुधवार को अमित शाह के काफिले का वीडियो है, जिन्होंने अब अपने काफिले में 50% गाड़ियां कम कर दी ताकि सुरक्षा के साथ देशवासियों के बीच बचत वाला संदेश ऊपर से नीचे तक पहुँचे। अपने काफिले को आधा करके अमित शाह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आर्थिक संकट के समय केवल जनता ही नहीं बल्कि सरकार भी जिम्मेदारी निभा रही है।
2: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें।
1: प्रधानमंत्री अगर 2 गाड़ी से अब केवल चलने लगे तो गृह मंत्री ने 50% गाड़ी काफिले में घटाई अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जो जेड प्लस सुरक्षा में चलते हैं, जिनके साथ पहले 11 गाड़ियों का काफिला चलता रहा, अब वो केवल 4 गाड़ी लेकर चलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 11 गाड़ियों का काफिला छोड़कर 4 गाड़ियां लेकर कैबिनेट की बैठक में पहुंचे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र के तमाम मंत्रियों की तरफ से क्या ये सारी कवायद इसलिए ताकि जनता तक संदेश भी पहुंचे और वो भी कम गाड़ी से चलकर तेल बचाएं, साथ ही उस सियासत को जवाब मिले जो अब तक सरकार की कोशिश पर सवाल उठाती रही।
3: कुछ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम मेट्रो से जाएंगे, तो अगर एक दिन की ड्रामेबाजी है सिर्फ रील बनाने के लिए तो भी बहुत बढ़िया, चला लो। मगर अगर वाकई में आप मेट्रो से जाया करोगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करोगे, तो हर मंत्री ने, किसी ने 5 गाड़ी ले रखी है सरकार से, किसी ने 8 ले रखी है, किसी ने 15 ले रखी है।
1: सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों तक नरेंद्र मोदी की खींची लकीर पर अब सब चलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का निर्देश है, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, अफसर सब 50% गाड़ियां अपनी फ्लीट में कम करेंगे। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने बैठक करके दे दिया है, उस पर अमल करना शुरू हो चुका है। अपने काफिले से लेकर मंत्रिमंडल के काफिले तक को हाफ कर दिया है। जैसे ये देखिए, योगी सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल नई दिल्ली से मेरठ तक की यात्रा अपने काफिले के साथ नहीं करते हैं, मेट्रो ट्रेन और नमो भारत ट्रेन से करते देखते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने काफिला कम कर दिया, 13 की बजाय 8 गाड़ी लेकर अब मोहन यादव निकले हैं।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपना काफिला छोटा कर लिया है। 13 की जगह अब महज 8 गाड़ियां इस काफिले में होगी। और आप देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां हैं जो जाती हुई आपको दिख रही है।
1: दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा मेट्रो ट्रेन से चलने लगे।
5: आज सुबह आपने देखा होगा, मैंने भी मेट्रो से सफर किया है, आशीष सूद जी भी मेट्रो से सफर कर रहे हैं, और बहुत आवश्यकता पड़ी तो केवल एक गाड़ी का इस्तेमाल करें, ऐसा निर्णय हमने किया है। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान का अक्षरशः पालन करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं।
1: दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह DTC बस से विकासपुरी से दिल्ली सचिवालय 40 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचे।
6: 80% खासकर मुझे ऑफिस आने के लिए, जाने के लिए मैं DTC की बस की पे ही जाऊंगा, ट्रांसपोर्ट पे जाऊंगा। और जब तक हम अगला निर्देश भी दे रहे हैं कि अब जो गाड़ियां खरीदी जाएगी EV खरीदी जाएंगी।
1: गुजरात के राज्यपाल ने कह दिया वो हवाई यात्रा नहीं करेंगे, हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे, ट्रेन बस से यात्रा करेंगे। सवाल है कि ये सादगी का संदेश, बचत की लकीर, जागरूकता की कहानी कितने दिन तक चलेगी? केवल वीडियो बनेगा या फिर जब तक देश आर्थिक चुनौती से बच नहीं जाता, देश के सभी नेता एक मिसाल पेश करते रहेंगे।
7: देश में बचत को लेकर हो रही पहल की वजह से तेल आयात का बढ़ता बिल है, इससे जुड़ी चिंता का असर रेटिंग एजेंसियों के अनुमान में भी झलकना शुरू हो गया है। मूडीज ने इस साल सिर्फ 6% विकास दर की उम्मीद जताई है, मतलब ग्रोथ अनुमान घटाया जा रहा है, जिसका सीधा असर हम सब की जेब पर होगा।
8: वी हैव नॉट सीन द इम्पैक्ट इन द लास्ट 2 months ऑफ द मिडल ईस्ट वॉर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी प्राइस ट्रांसमिशन। इट्स कमिंग And it's coming big. The shock is coming.
1: देश के बड़े बैंकर और कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक के मुंह से ये चेतावनी सुनकर हर कोई पूछ रहा है कि मिडिल क्लास को लगने वाला वो बड़ा झटका क्या है? क्या इसका संबंध तेल के दाम में इजाफा है जिसने तेल कंपनियों को लहूलुहान कर दिया?
9: My oil companies are losing 1,000 crores a day. They are under recoveries at in the tune of nearly 1,98,000. So we will have to start worrying about these things.
1: तो पेट्रोलियम मंत्री भी कह रहे हैं कि चिंता करना तो बनता है, लेकिन चिंता की बात कितनी बड़ी है और उसका असर कितना बड़ा होने वाला है, इस पर एक खामोशी है। लेकिन ये तय है कि समस्या का केंद्र अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध ही है, जिसकी आग ने तेल के दाम में उबाल मार रखा है। युद्ध की वजह से तेल के दाम में इजाफा भारत जैसे देश को किस हद तक प्रभावित कर सकता है, उसे समझने के लिए आपको 1990 में लड़े गए हर युद्ध और उसके भारत पर असर को समझना होगा। 1990-91 में पेट्रोलियम आयात बिल 2 अरब डॉलर से बढ़कर सीधा 5.7 अरब डॉलर हो गया। ऐसा तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से हुआ था, जिसने भारत को तब दिवालिया होने की कगार तक धकेल दिया था। 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लग रहा था कि भारत विदेशी कर्ज तय तारीख पर नहीं चुका पाएगा और दिवालिया घोषित हो जाएगा। लेकिन नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधार करके हालात संभाल लिए। 35 साल बाद खाड़ी में चल रही जंग की वजह से तेल के दाम उबाल मार रहे हैं। भारत का आयात बिल तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। 1990 के मुकाबले भारत आर्थिक तौर पर कई गुना ज्यादा मजबूत है। $700 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है। फिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचत की अपील बार बार करनी पड़ रही है? क्या पीएम को कुछ और खतरा भी दिख रहा है?
2: देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
1: जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काफिला छोटा करके बचत की मिसाल पेश की, उससे आगे क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये सवाल गहराता जा रहा है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध नए सिरे से शुरू होकर और घातक होने जा रहा है, जिस असर को लेकर सरकार ने खुद ही बचत करनी शुरू कर दी? क्योंकि युद्ध शुरू होने के समय डॉलर के मुकाबले रुपया 91 के आसपास था, जो अब गिरकर अपने ऐतिहासिक स्तर 95.74 रुपए तक पहुंच गया। फरवरी में तेल की कीमत $78 प्रति बैरल थी। ईरान पर हमले के बाद $126 प्रति बैरल पहुंच गई, अभी करीब $105 और $110 प्रति बैरल के करीब है। इसकी वजह से भारत का आयात बिल काफी बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का तेल आयात बिल $176 अरब हो गया, जो और बढ़ने की आशंका है। इसीलिए उदय कोटक की तरफ से चेतावनी दी गई है।
8: इट इज अबाउट प्रिपरेशन, बी रेडी फॉर टफ टाइम्स रादर देन waiting for the shock to hit us. We have not seen the impact in the last 2 months of the Middle East war in terms of energy price transmission. It's coming. And it's coming big. It's the shock is coming.
1: पिछले वित्त वर्ष में आयात बिल $775 बिलियन का था, जिसमें सबसे ज्यादा $175 बिलियन का बिल कच्चे तेल का है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का $116 अरब का है। तीसरे नंबर पर $74 बिलियन का बिल गोल्ड का था। इन तीनों का विदेशी मुद्रा भंडार पर सबसे ज्यादा दबाव होता है। ये ना बढ़े इसीलिए सरकार की तरफ से सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई। इसीलिए सरकार की तरफ से चुनौती को लेकर खबरदार किया जा रहा।
9: The Honorable Prime Minister's statement is very visionary. It looks to the future that if this were to continue, we also have to look at what we can do in terms of lifestyle changes.
1: तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम को लेकर अफरा तफरी मचाना बेकार है। पीएम की बातों को ध्यान से सुने और उसका मनगढ़ंत मतलब ना निकाले, क्योंकि हालात सिर्फ युद्ध खत्म होने से ही सुधरेंगे, जिसकी उम्मीद पिछले काफी दिनों से ही की जा रही है।
7: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
11: क्या आप इमोशनली भावनात्मक रूप से परेशान हो जाते हैं? क्या भावनाओं के चक्कर में आप गलत निर्णय ले लेते हैं? क्या पूजा करते समय आपके मन में अशुद्ध भावनाएं आती हैं? क्या है भावनाओं का रहस्य और क्या है भावनाओं को नियंत्रित करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
12: Teaching and learning is evolving. A master's degree in education technology and instructional design at WGU puts you at the forefront of that change. Learn more at wgu.edu.
13: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
14: Jack, you're killing me.
13: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
15: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
16: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
2: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
3: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
1: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
4: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
2: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
1: जहां खबर वहां खबरदार।
5: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on Tune In.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।
1: बदलाव की बयार बहने लगी है, पीएम की अपील का असर दिखने लगा है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद अपने मंत्रालय जाने के लिए कल मेट्रो और ई रिक्शा का उपयोग करते नजर आए। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल हैं। मंत्री जी दिल्ली से मेरठ जाने के लिए नमो रैपिड रेल पर सवार हैं। अग्रवाल गोरखपुर से दिल्ली पहुंचे तो सराय काले खां तक पहुंचने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल किया। लखनऊ की मेयर सुषमा खैरवाल भी शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने सरकार से मिली एक कार लौटाने का ऐलान किया है। अब कुछ और तस्वीरें देखिए, तस्वीर भोपाल की है। ई स्कूटी पर सवार होकर एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्रालय रवाना हो रहे हैं। भोपाल में ही लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण पदभार ग्रहण कर ई रिक्शा से बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हुए। संदेश साफ है कि पीएम की अपील पर बीजेपी ने अपने स्तर पर अमल शुरू कर दिया है। तीन तस्वीरें बता रही हैं कि पीएम की अपील का असर दिखने लगा है, लेकिन क्या यही असल तस्वीर है? अब भोपाल की सड़कों पर कल सुबह की तस्वीरें देखिए। बीजेपी नेता राकेश सिंह जादौन खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने भोपाल पहुंचे तो उनके काफिले में एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां नजर आईं। सड़क पर खड़ी इन गाड़ियों से ट्रैफिक पर तो असर पड़ा ही, कीमती तेल की बर्बादी अलग से हुई। आज तक ने जब गाड़ियों के इस भौंडे प्रदर्शन पर सवाल उठाया तो राकेश सिंह जादौन महंगी गाड़ी से उतरकर ई रिक्शा में सवार हो गए। कुछ ऐसा ही हाल एमपी पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह का नजर आया। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचे, जिससे सवाल उठा कि क्या सारी हिदायतें सिर्फ जनता के लिए हैं, जबकि नेताओं का काफिला कल्चर इसी तरह चलता रहेगा। आज तक ने सवाल किया तो सौभाग्य सिंह की सफाई सुनिए। कहते हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। पश्चिम एशिया में जंग से पैदा हुआ ये संकट बड़ा है, इसलिए जरूरी है कि पेट्रोल और डीजल की एक एक बूंद का सोच समझ कर इस्तेमाल किया जाए। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

ऊर्जा संकट के बीच कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी का सख्त संदेश, कम से कम गाड़ियों के इस्तेमाल की सलाह, वाहन खरीद को लेकर दिशा निर्देश जारी, दो गाड़ियों में सिमटा पीएम का काफिला।

आरबीआई ने दिए महंगाई बम फटने से संकेत। संजय मल्होत्रा ने कहा मिडिल ईस्ट संकट लंबा चला तो बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। हॉर्मुज बंद होने से चरमराई सप्लाई चेन। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर से महाराष्ट्र तक जुड़े तार। शहर शहर प्रदर्शन। एनटीए भंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका।

0: दिल्ली में आज से शुरू होगा दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन। मिडिल ईस्ट तनाव में सबसे बड़ा मुद्दा, यूएई पर भड़के अराक्षी, बैठक में ऊर्जा संकट सबसे बड़ा मुद्दा होगा। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक अंधड़ का कहर, धूल भरी आंधी, बारिश, आकाशीय बिजली से भारी तबाही। यूपी में करीब 40 लोगों की मौत, झारखंड राजस्थान में भी बिगड़े हालात। बस स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। नीट पेपर लीक की जांच अपने हाथ में लेने के कुछ ही घंटों में सीबीआई ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। यह मामला शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें साजिश, धोखाधड़ी और अन्य धाराएं शामिल हैं। इनमें नासिक के शुभम खैरनार, जयपुर के मंगेलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और गुरुग्राम से यश यादव का नाम शामिल है। सीबीआई के मुताबिक जयपुर से गिरफ्तार दिनेश बिवाल बीजेपी से जुड़ा हुआ है और उसने अपने बेटे विकास बिवाल के लिए लगभग 30 लाख रुपए में प्रश्न पत्र खरीदा था, जो नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बाद में दिनेश बिवाल ने अपने भाई मांगीलाल बिवाल के साथ कथित तौर पर वही प्रश्न पत्र सीकर के अन्य छात्रों को बेच दिया। इस बीच आरोपी शुभम से प्रश्न पत्र हासिल करने वाले गुरुग्राम स्थित काउंसलर यश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच सीबीआई ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में धनंजय लोखंडे नामक एक संदिग्ध पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसने कथित तौर पर कुरियर के माध्यम से शुभम खैरनार को पेपर की कॉपी भेजी थी। तो अब तक कुल गिरफ्तारियां नासिक से शुभम खैरनार, जयपुर से मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और इसी के साथ दिनेश बिवाल और गुरुग्राम से यश यादव अहम गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। जयपुर नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक ने यह भी आरोप लगाया है कि इस मामले में शामिल बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई एक्शन में है तो छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एनएसयूआई, एबीवीपी सहित तमाम छात्र संगठन सड़कों पर हैं। एनडीए के भंग करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग हो रही है। 6 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं देश के अलग अलग शहरों की, जहां पर कहीं राजनीतिक दलों का यूथ विंग सड़कों पर है तो कहीं छात्र सड़कों पर हैं। और वही पुरानी मांग कि ये एनटीए जैसी संस्था को भंग कर दिया जाए जो एक परीक्षा ठीक से नहीं करवा सकती।
1: नीट का जो मामला है वो बहुत गंभीर मामला रहा है और जो पकड़ा गया है बीजेपी का जो नेता है कहते हैं उनके परिवार के 5 लोगों के नौकरी पहले लग चुकी है, तो ये जाल का विषय है। ये बिना मतलब का कांग्रेस सरकार को बदनाम करते हैं, ये खुद एक्सपोज हो गए हैं। 2024 में, 25 में, 26 में 3 बार ये नीट के पेपर आउट हो रहे हैं, क्या कारण बताइए। इसलिए बहुत गंभीर विषय है, लाखों बच्चे जो 22 लाख बच्चे हैं उनके ऊपर क्या गुजरती होगी अपन कल्पना कर सकते हैं। ये बहुत ही सीरियस मामला है। एसओजी वाले कितनी सफाई दे बुलाई, पर एसओजी ने एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं करी इसका जवाब दे। वो बहानाबाजी करना अलग बात है, अधिकारियों को भेज देते हैं आप वीसी करके आओ, पीसी करके आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आओ, क्या मतलब हुआ। ये बहुत गंभीर मामला है, अब इनकी पोल खुल जाएगी सबकी।
0: नीट परीक्षा रद्द होने से परेशान छात्र अब एक बार फिर हॉस्टलों की ओर लौट रहे हैं। कहना है कि परीक्षा की तैयारी दोबारा करने के साथ अब उन्हें हॉस्टल का खर्च भी उठाना पड़ेगा।
2: अब जब पता चला कि ये तो पेपर लीक हो गया था,
3: सर बहुत बुरा लगा सर, बहुत फील हुआ, ऐसे समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा क्या होगा। फिर कोचिंग वगैरह वालों ने मतलब थोड़ा साथ दिया कि आप आओ डीटीएस वगैरह दो, तो उसके लिए सर आना पड़ा डीटीएस वगैरह के लिए। सर परेशानी तो होती है इतना।
2: छुट होने के बाद चली गई?
3: यस।
2: तो पता चला जब ये नीट कैंसिल हो गया
3: तो बहुत ही ऐसे लगा था कि वापस जाना पड़ेगा, आए हैं इतनी दूर से, खर्चा भी लगता है, ऐसे नहीं कि ऐसे आते जाते रहते हैं, 9-10 हज़ार का गाड़ी लेके आए हैं घर से, सुबह 4 बजे बैठे थे अभी 4 बजे पहुंचे हैं। दुख तो होता ही है कि वापस किसी ने लीक कर लिया, मेहनत करते हैं 2-3 साल से और ऐसे ही लीक करके कोई ले लेता तो हमारी तो सीट जाती है।
0: बेवाल परिवार के चार बच्चे इस वक्त मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नीट में बीते साल हुआ था। आरोपी मांगीलाल के बेटे विकास और बेटी प्रगति को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी मिला। विकास सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में है तो प्रगति दौसा के सरकारी मेडिकल कॉलेज की छात्रा है। मांगीराम के भाई घनश्याम की बेटी स्थानीय जयपुर के सरकारी सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। दूसरी बेटी पलक मुंबई के सरकारी मेडिकल कॉलेज की छात्रा है।
4: बिवाल परिवार का दावा यही है कि बीते साल नीट में सिलेक्ट हुए चारों बच्चों ने खूब मेहनत की थी, बाकायदा सीएलसी कोचिंग में नीट परीक्षा की तैयारी की थी। घर वालों के दावों की हकीकत जानने के लिए आज तक संवाददाता शरद कुमार सीएलसी कोचिंग पहुंचे। सीएलसी कोचिंग में शरद कुमार की मुलाकात कोचिंग के डायरेक्टर श्रवण चौधरी से हुई। श्रवण चौधरी ने आज तक से बातचीत में चौंकाने वाला खुलासा किया, जो बिवाल परिवार की दलीलों को सवालों के घेरे में खड़ा करने को काफी है।
2: नीट पेपर लीक के सीकरदार ने देश भर में हंगामा मचा रखा है। बताया गया कि जमुआ रामगढ़ से जो चार बच्चे पिछली बार सेलेक्ट हुए हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए, वो सीएलसी में पढ़े थे। और ये भी बताया गया कि इस बार जो दिनेश गिरफ्तार हुआ है उसका बेटा भी पढ़ता था। सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए हम सीएलसी के डायरेक्टर श्रवण चौधरी के पास पहुंचे हैं। श्रवण जी, ये जो बच्चे हैं जो आपके रिकॉर्ड में दिखाई दे रहे हैं, पिछली बार चार बच्चे हैं मांगीलाल और घनश्याम के, चारों अलग अलग सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो यहां से उनका दावा है पढ़ने का।
5: सर, ये आपको रिकॉर्ड दिखाता हूं मैं, ये बिल्कुल सानिया बिवाल 25 में हमारे पास थी, विकास 25 में हमारे पास, प्रगति बिवाल, और ये सारे बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज में है, हमारे क्लासरूम में नहीं है। दूसरी बात ये कि हमारे सिलेक्शन के रिजल्ट की जो बुकलेट है इसमें कहीं इनका नाम नहीं है, रिजल्ट नहीं बताया इन्होंने।
4: श्रवण चौधरी ने कोचिंग में पढ़ने वाले सभी छात्रों का पूरा रिकॉर्ड हमें दिखाया। इस रिकॉर्ड में बिवाल परिवार के चारों बच्चों के नाम दर्ज हैं, लेकिन सभी बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के टेस्ट सीरीज में एडमिशन लिया था, यानी चारों बच्चे पढ़ते कहीं और थे, बस टेस्ट देने कोचिंग आते थे। श्रवण चौधरी के मुताबिक नीट की परीक्षा पास करने के बाद बिवाल परिवार ने कोचिंग की तरफ से किए गए कॉल का जवाब नहीं दिया। यही वजह है कि कोचिंग की तरफ से छपने वाली बच्चों की लिस्ट में उनका नाम मौजूद नहीं है।
5: विकास स्टार्ट यहाँ से होता है, ये विकास लादूराम है, ये विकास गजानंद है, विकास जांगीर, वंदना, ये इससे ही विकास है।
2: ये विकास जो आपको बताया नहीं रिजल्ट आने पर,
5: नहीं रिजल्ट हमने कॉल कर रखा है, वो आप उसमें कंप्यूटर लिखा हुआ एनआर का मतलब है हमने कॉल किया, कॉल अटेंड नहीं किया। इनका हमारे यहाँ कोई रिजल्ट नहीं है। बच्चे टेस्ट जिससे 11 का जो कोर्ट कर रहे हैं ये 24 में, वो तो उसके बाद रिफंड हो गया, रिफंड का प्रमाण हम आपको दे रहे हैं।
2: बाकी जो टेस्ट सीरीज में बच्चे पढ़ते हैं उन सबका रिकॉर्ड है, इनका नहीं है।
5: हाँ, मतलब रिजल्ट में नहीं है, मतलब इनका रिजल्ट। हाँ, जो बच्चा सिलेक्ट होता है तो सिलेक्ट बच्चे हम उसके बाकायदे मैगजीन छापते हैं, उसमें कहीं नहीं है ये,
2: तो इन्होंने आपको बताया
4: रिजल्ट ने। यानी सीएलसी कोचिंग का दावा यही है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली हो सकती है।
2: एमबीबीएस में सेलेक्ट होने के बाद इनको कोई जानकारी नहीं दी है, और अभी इनको ये जानकारी नहीं थी कि ये जो मांगीलाल और घनश्याम के बच्चे चारों पिछली बार सेलेक्ट हुए हैं वो यहीं के पढ़े हुए थे, इनके इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन्होंने रिकॉर्ड में देखा तो ये पता चला है। बाकी जो पूछताछ में उन्होंने यही बताया था कि सीएलसी में उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन इनका कहना है कि टेस्ट सीरीज में पढ़ाई की है, क्लासरूम में वो नहीं आए थे।
4: मतलब इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीते साल भी पेपर लीक हुआ हो, जिसका फायदा बिवाल परिवार के चार बच्चों को हुआ। सच्चाई तभी सामने आएगी जब इस मामले की भी तह तक जांच की जाए। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार आज सुबह 11:30 बजे भैंसाकुंड शमशान घाट पर किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत हृदय गति रुकने के कारण हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये स्थिति मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म यानी फेफड़ों की नस में बड़े पैमाने पर खून का थक्का जमने के कारण बनती है। 38 साल के प्रतीक यादव की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें बुधवार तड़के लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रतीक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान दिखे हैं, जो कि पुरानी चोट बताई जा रही है। बीमारी की वजह से उनके बाएं पैर के अंगूठे का नाखून भी नीला पड़ चुका था। शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन हृदय गति रुकने की वजह से उनकी मौत हो गई।

0: कैसे हुई अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मौत? घर में प्रतीक यादव को क्या हुआ? अस्पताल ने क्या कहा? क्यों प्रतीक यादव की अचानक से मौत पर सस्पेंस गहरा गया? प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला? क्या प्रतीक की मौत गंभीर बीमारी से हुई या वजह कुछ और है? मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की मौत की खबर जैसे ही आती है हर कोई हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि प्रतीक की उम्र महज 38 साल थी। और सबसे बड़ी बात, प्रतीक यादव को फिटनेस फ्रीक माना जाता था। फिर सवाल उठता है कि आखिर प्रतीक यादव को ऐसा क्या हुआ कि अस्पताल ले जाते ही उनको मृत घोषित कर दिया जाता है?
1: 5:55 पे उनको परिवार के द्वारा ले आया गया, तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कराया गया। तब तो उनकी डेथ हो चुकी थी, उनको डेड डिक्लेयर किया गया और बॉडी को पुलिस को इन्फॉर्म करके उनको सौंप दिया गया। पुलिस को, पुलिस ने पंचनामा किया और उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू मार्चरी भिजवा दी गई है।
2: मतलब आपका कहने का है कि जो 5:55 पर प्रतीक की
1: वो मृत अवस्था में थे।
0: प्रतीक यादव के करीबी जो बताते हैं वो बेहद ही गौर करने वाली बात है। बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव देर रात बेडरूम में गए थे, जहां उनके सिर पर चोट भी लगने का दावा किया गया, क्योंकि उस वक्त प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव भी घर पर नहीं थी। ऐसे में ये रहस्य और गहराने लगा है। शुरुआती प्रक्रिया में घर के जिस कमरे में प्रतीक यादव थे उसको बंद करके रखा गया है। प्रतीक के मोबाइल फोन और लैपटॉप को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब सवाल ये है कि क्या प्रतीक की चोट को मौत के पीछे शक का आधार माना जाए? लेकिन जब प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें प्रतीक यादव की मौत पर कई अहम बातें सामने आई हैं, सूत्रों के मुताबिक उनका शरीर नीला पड़ चुका था और हार्ट और विसरा सुरक्षित रखे गए हैं। मौत की वजह पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बताई गई है, जिसके चलते कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स हुआ, यानी फेफड़ों की नस में खून का थक्का जमने से दिल और सांसें रुक गईं।
3: अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जिस तरीके से जो मौत हुई है वो कार्डियक अरेस्ट से हुई है। हालांकि लेकिन सबसे बड़ा खुलासा इस बात का हुआ है कि इस पूरी रिपोर्ट में तकरीबन 6 चोटें दिखाई गई हैं। ये 6 चोटें जो बाएं चेस्ट पर, उसके अलावा कोहनी में और कलाई में और इसके अलावा पैर में पाई गई हैं। ये चोटे 7 दिन पुरानी है, कुछ चोटे, और कुछ चोटे 1 दिन पुरानी है। सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये 7 दिन पुरानी चोटे कैसे शरीर पर पहुंची और वो 1 या 2 दिन पुरानी चोटे कैसे आई हैं। हालांकि विस्तार रिपोर्ट रखी गई है, लेकिन ये जरूर एक सवाल खड़ा करता है कि इन चोटों से प्रतीक यादव की मौत का क्या संबंध है। इसका खुलासा होना अभी बाकी है।
0: वैसे प्रतीक के डॉक्टर रुचिता शर्मा की माने तो वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बीमारी के मरीज थे, जिसे बेहद खतरनाक माना जाता है। इसमें खून का थक्का फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं में फंस जाता है, इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है।
4: वो हमारे पुराने पेशेंट थे, मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ था।
5: वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: क्या आप इमोशनली भावनात्मक रूप से परेशान हो जाते हैं? क्या भावनाओं के चक्कर में आप गलत निर्णय ले लेते हैं? क्या पूजा करते समय आपके मन में अशुद्ध भावनाएं आती हैं? क्या है भावनाओं का रहस्य और क्या है भावनाओं को नियंत्रित करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
10: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.

0: बकैतों में श्रेष्ठतम, असफल डकैतों के सरताज, मास्टरों के मास्टर, यक्ष युधिष्ठिर, पक्षीराज गरुड़ और काग भुशुंडी के कॉम्बो, बतरस के तीरंदाज अवधुजा सर के साथ।
1: भैया हम झूठ सुनी थे, हमारे दहिया जर जाती। नहीं कहते लोग।
0: जीवरा संताप लग जाते हैं। सर आप कुछ लाइसेंसी रखे हैं कुछ?
2: नहीं, नहीं है, पहले से पड़ा है।
1: जो आदमी बैठ के बना लेता है उसको लाइसेंस लेने की क्या जरूरत है।

0: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
1: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
2: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
0: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
3: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
1: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए।

0: सोने की चमक भारतीयों के लिए हमेशा से भरोसे का प्रतीक रही है, लेकिन ये चमक देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सेहत बिगाड़ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है, जिससे बाजार में खलबली मच गई है।
1: मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
0: भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेशों से डॉलर देकर खरीदता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार है, जिसने बीते साल 72 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट किया। देश के कुल 775 अरब डॉलर के इंपोर्ट बिल में सोने का हिस्सा करीब 10% रहा। ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक साल भर में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का सोना आयात किया जा रहा है। ऐसे में अगर शादियों के लिए भी साल भर सोना ना खरीदा जाए तो 20 से 36 अरब डॉलर तक की बचत मुमकिन है। सोने की खरीदारी में आई जरा सी कमी डॉलर के आउटफ्लो को रोककर रुपए को मजबूती दे सकती है। हालांकि कारीगरों समेत पूरे ज्वेलरी सेक्टर के लिए ये मुश्किल वक्त हो सकता है। आर्थिक मोर्चे पर इस घेराबंदी का असर केवल सोने तक सीमित नहीं है, टूरिज्म सेक्टर पर भी नुकसान की आशंका गहरा गई है। पीएम ने भारतीयों से विदेशी छुट्टियां और विदेशों से डेस्टिनेशन वेडिंग्स टालने की गुजारिश की है।
1: क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां बनाए, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाए, हम अपने स्थानों पर गर्व करें? और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाए।
0: ये अपील ट्रेवल एजेंट्स और एयरलाइंस की जेब पर असर डालेगी, क्योंकि भारतीय सैलानी हर साल विदेशी दौरों पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। वैसे सरकार का मकसद इस भारी भरकम खर्च को डोमेस्टिक टूरिज्म के भीतर मोड़ने का है। पीएम की इस मुहिम का सीधा असर आम आदमी की लाइफस्टाइल पर भी पड़ने वाला है। ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम को दोबारा शुरू करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है, यानी इस वक्त फिजूल खर्ची पर लगाम लगाना ही सबसे बड़ी देशभक्ति बताई जा रही है। आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ऊर्जा संकट के बीच कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी का सख्त संदेश, कम से कम गाड़ियों के इस्तेमाल की सलाह, वाहन खरीद को लेकर दिशा निर्देश जारी, दो गाड़ियों में सिमटा प्रधानमंत्री का काफिला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिए महंगाई बम फटने के संकेत, संजय मल्होत्रा ने कहा मिडिल ईस्ट संकट लंबा चला तो बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, हॉर्मुज बंद होने से सप्लाई चेन चरमराई। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार, जयपुर से महाराष्ट्र तक जुड़े तार, शहर शहर प्रदर्शन, एनटीए भंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। दिल्ली में आज से शुरू होगा 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन, मिडिल ईस्ट तनाव सबसे बड़ा मुद्दा, यूएई पर भड़के अराची, बैठक में ऊर्जा संकट सबसे बड़ा मुद्दा। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक अंधड़ का कहर, धूल भरी आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली से भारी तबाही, यूपी में करीब 50 लोगों की मौत, झारखंड राजस्थान में भी बिगड़े हालात।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति का जीवन सबसे ज्यादा चलता है उसके मन से, उसकी भावनाओं से। बहुत भावुक होना बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज्यादा भावुक होंगे, तो जीवन के निर्णयों पर, जीवन की सफलता पर इसका असर पड़ेगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन से लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, और अगर भावनाओं की वजह से आपको परेशानी है तो इसको बेहतर करने के लिए क्या उपाय किए जाएं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। आज हम बात कर रहे हैं आपकी भावनाओं के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में। आपके अंदर जो भावनाएं हैं उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, पहले ये जानते हैं। देखिए, भावना जो है वो मन का अधिकार क्षेत्र है, इसीलिए आपके इमोशंस के लिए, आपकी भावना के लिए मुख्य रूप से एक ही ग्रह जिम्मेदार होता है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा का अलग अलग ग्रहों के साथ जब संबंध बनता है तो भावनाओं का अलग अलग रूप हो जाता है। सूर्य से संबंध बनेगा तो इमोशंस अलग होंगे, राहु के साथ संबंध बनेगा तो इमोशंस अलग होंगे। पाप ग्रहों के साथ जब चंद्रमा का संबंध बनता है तो पाप ग्रह भावनाओं को दूषित कर देते हैं, और शुभ ग्रहों से जब चंद्रमा का संबंध बनता है तो भावनाएं पवित्र हो जाती हैं, इमोशन शुद्ध हो जाते हैं। व्यक्ति की जो भावनाएं हैं वो सबसे ज्यादा दूषित होती हैं, सबसे ज्यादा खराब होती हैं राहु की वजह से। और राहु का जब आपके मन और भावनाओं पर असर पड़ता है तो भावनाओं का जो रूप है, भावनाओं का जो स्वरूप है, वो विकृत हो जाता है। भावनाएं खराब हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं। कुंडली का जो जल तत्व है, लग्न, द्वादश और द्वितीय भाव, और जो जल तत्व की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन, ये व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। और 12 राशियों में सबसे ज्यादा जो भावनात्मक राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि को सबसे ज्यादा भावुक और भावनात्मक माना जाता है। कर्क राशि में चंद्रमा बैठा हो और उसके ऊपर पाप प्रभाव ना हो तो व्यक्ति इमोशंस में, भावनाओं में अपना भयंकर नुकसान करता है। लेकिन अगर कर्क में चंद्रमा तो है लेकिन उसके ऊपर पाप प्रभाव है, तब व्यक्ति की भावनाएं ज्यादा तो होती हैं लेकिन भावनाएं गड़बड़ होती हैं, भावनाएं दूषित होती हैं। भावनाओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है
तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।

दौड़ भाग रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा मरून। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, नए पद की प्राप्ति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। देखिए, भावनाओं में भी समस्या पैदा होती है और भावनाओं से भी समस्या पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? अगर कुंडली में जल तत्व बिगड़ा हुआ हो, ज्यादातर ग्रह ऊपर के इलाकों में बैठे हुए हों, तो व्यक्ति इतना ज्यादा इमोशनल होता है कि भावनाओं के चक्कर में उसको डिप्रेशन हो जाता है, उसको अवसाद हो जाता है। अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, ज्यादातर ग्रह नवम, दशम और एकादश में हो, तो व्यक्ति हिंसक हो जाता है, व्यक्ति की भावनाएं क्रूर हो जाती हैं, तुरंत क्रोध में आना, तुरंत चीखना चिल्लाना, मारपीट करना ऐसा होने लगता है। अगर किसी की राशि कर्क है तो स्वाभाविक है कि चंद्रमा कर्क में बैठा होगा और चंद्रमा कर्क में बैठा है, साथ में कमजोर है, पक्ष बल नहीं है उसके पास, तो भावनाएं कदम कदम पर परेशान करेंगी,

दुखी होगा, उदास रहेगा। अगर चंद्रमा कुंडली में खराब है, कमजोर नहीं खराब है, शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, तो भावनाएं दूषित हो जाती हैं। आदमी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की या दूसरों को कष्ट मिले ये भावना रखता है। चंद्रमा भी खराब हो, कुंडली में बुध भी खराब हो, तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से गलत कदम उठा लेता है। जो लोग भावनाओं में बहकर घर छोड़ देते हैं या भावनाओं में बहकर सुसाइड कर लेते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनका चंद्रमा और बुध आम तौर पर दोनों निगेटिव होता है। भावनाओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, चोट चपेट से बचाव करें, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न आशु ने हमें लिखा है और आशु हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। 7 मार्च 1994 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 6:22। जन्म स्थान है लखनऊ। आशु लिख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे करियर में दिक्कतें बहुत आ रही हैं। मैं नौकरी बदलने की कोशिश भी कर रहा हूं लेकिन मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है, तो आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा? आशु, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपकी नौकरी बदलेगी, स्थान भी परिवर्तित होगा। अक्टूबर 2026 से मई 2027 के बीच में आप नौकरी और स्थान दोनों बदल सकते हैं, और अगर आप नौकरी बदलते हैं, चेंज ऑफ प्लेस करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लखनऊ से दूर जाना पड़ सकता है जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक मोती बनवा के पहने, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। रोज सुबह हनुमान जी के मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम, सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। रोज सुबह हनुमान जी के मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम नमो भगवते राम दूताय, ओम नमो भगवते राम दूताय। इस मंत्र का रोज सुबह जप करें, आपका स्थान परिवर्तन, करियर में बदलाव अच्छा होगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि मन में बुरे विचार आते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के विचार आते हैं, अश्लील भावनाएं आती हैं, पूजा करते समय मन में गलत विचार पैदा हो जाते हैं। अगर भावनाएं दूषित हैं तो क्या उपाय करें भावनाओं को शुद्ध करने के लिए? महीने में 2 एकादशी आती है, नियमित रूप से जल और फल ग्रहण करके एकादशी का उपवास रखिएगा। भोजन को सात्विक बनाइए, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। सुबह के समय पूजा जरूर करें स्नान करके, और गायत्री मंत्र का कम से कम 27 बार या 108 बार जप करें। मन को शुद्ध करने के लिए, मन की दूषित भावनाओं को हटाने के लिए सलाह लेकर एक ओपल या एक पीला पुखराज धारण करें। भगवान के जिस स्वरूप के प्रति आपको श्रद्धा है, भगवान के उस नाम का प्रयोग करें। मन में दूषित विचार आए, मन में अशुद्ध विचार आए तो उनसे लड़िए नहीं, उनको आने दीजिए। मन में जब दूषित या अशुभ विचार आते हैं उसी समय भगवान के नाम का जप शुरू कर दीजिए। जैसे आप राम राम जपते हैं, मन में कोई दूषित या बुरे विचार आए तुरंत राम राम राम राम, कृष्ण कृष्ण राधा राधा,
ये जपना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक समय ऐसा होगा कि मन में बुरे विचार आने बंद हो जाएंगे और विचार आने के पहले आपके मन में भगवान का नाम जप शुरू हो जाएगा। भावना पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के

राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन की हानि हो सकती है, ऑफिस में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी भावनाएं बड़ी कोमल होती हैं, छोटी सी बात पे दुखी हो जाते हैं, किसी इमोशनल चीज को देखते हैं आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। भावनाएं बड़ी कमजोर हैं, बड़ी कोमल हैं, और इन कोमल भावनाओं की वजह से स्वभाव भी कोमल है। हर बात पर परेशान होना, दुखी होना इनका स्वभाव है। क्या करना चाहिए? तीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, ऑफिस की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ के योग हैं, समय का सही प्रयोग करिए ताकि लाभ हो।

किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास। व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर किसी को क्रोध आता हो तो उसको हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर किसी को क्रोध आता हो तो उसको मोती पहना देनी चाहिए। क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, मोती चंद्रमा का रत्न है और आपके क्रोध से चंद्रमा के अलावा मंगल बुध का संबंध भी हो सकता है। चंद्रमा अगर खराब हो तो क्रोध की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में अगर आप हर क्रोधी व्यक्ति को मोती पहनाएंगे तो मोती पहनने से और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। हर क्रोधी व्यक्ति को मोती नहीं पहना सकते। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो और लाभ देने की स्थिति में हो उनके क्रोध की स्थिति में मोती पहना सकते हैं, लेकिन जिनका चंद्रमा नकारात्मक हो या जिनका चंद्रमा खराब हो उनको मोती पहनाने से क्रोध की स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो ये कहना सही नहीं है कि हर क्रोधी आदमी को मोती पहना देनी चाहिए। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, करियर में लापरवाही ना करें। नंबर 3, रुके हुए काम। नंबर 3, धन के नुकसान से बचाव करें। नंबर 4, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, रिश्तों और परिवार की समस्या दूर होगी। नंबर 7, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। नंबर 8, धन लाभ के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, चोट चपेट से सावधान रहें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6:07:30 तक। इस समय में भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा

करने से शिक्षा और करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो क्या करके घर से जाएं कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, जरा सी चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक सफेद फूल रख के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

का वृश्चिक राशि के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंता और तनाव दूर होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए, स्वास्थ्य अच्छा होगा, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि के लोगों को, सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो कुडोस।
3: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
3: जहां खबर वहां खबरदार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो कुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
7: देश के कई राज्यों में मौसम के बिगड़े मिजाज ने बरपाया कहर। आंधी तूफान में अकेले यूपी में करीब 54 लोगों की मौत। राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड में भी तबाही। प्रयागराज में तेज आंधी के बीच सड़क पर गिरा नीम का विशाल पेड़, यातायात पूरी तरह बाधित। घंटों तक सड़क पर फंसे रहे वाहन, प्रशासन ने मशक्कत के बाद रास्ता साफ कराया। उन्नाव में आंधी के बीच कार पर गिरा विशाल नीम का पेड़, बड़ा हादसा टला। चालक ने समय रहते कार से कूदकर जान बचाई, वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। जामनगर में तेज आंधी से कॉम्प्लेक्स की छत उखड़कर हवा में लटकी, इलाके में दहशत। हादसे के बाद आसपास का इलाका खाली कराया गया, बड़ा हादसा टल गया। सातारा में आकाशीय बिजली गिरने से 22 भेड़ों की मौत हुई, तूफान से हड़कंप मचा। तेज बारिश के बीच अस्पताल परिसर में पेड़ गिरने से अफरा तफरी मच गई। प्रयागराज में तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई, अलग अलग हादसों में 16 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। तेज हवाओं और बारिश से कई इलाकों में पेड़ और दीवारें गिरी। भदोही में तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, हादसे में 11 लोगों की मौत, कई कच्चे मकान ढह गए, बिजली व्यवस्था ठप हुई। फतेहपुर में आंधी तूफान का कहर देखने को मिला, अलग अलग घटनाओं में 5 महिलाओं समेत 9 लोगों की जान गई। तेज हवाओं से पेड़ और दीवारें गिरने के कारण कई लोग घायल हुए। कौशाम्बी में आंधी के दौरान पेड़ की भारी डाल टूटकर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। कानपुर देहात में आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के चलते भारी तबाही, जिसके चलते एक युवती और 35 बकरियों की मौत हुई, जबकि दीवार गिरने से एक बच्ची की जान चली गई। राजस्थान के अलवर में आंधी तूफान का कहर देखने को मिला, पेड़ पोल गिरने से शहर भर में बिजली गुल, बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में अफरा तफरी। पश्चिमी दिल्ली में अचानक मौसम का मिजाज बदला, उत्तम नगर समेत कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई। बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। हरदोई में आंधी तूफान और बारिश के बीच बड़ा हादसा हुआ, दीवार गिरने से 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत। तेज हवाओं और बारिश से इलाके में अफरा तफरी। फरीदाबाद में झगड़े के बीच बचाव करने पहुंचे युवक पर जानलेवा हमला हुआ, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। लखनऊ में बेकाबू डंपर ने कई वाहनों को रौंदा, युवक का पैर कटा, दर्दनाक हादसे में कई लोग घायल हुए, मौके पर चीख पुकार मच गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नीट पेपर लीक मामले में देशभर में छापेमारी की, 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने दावा किया कि मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग की है। विपक्ष ने पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर कड़ी कार्रवाई करने का दबाव बनाया। अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं ने परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई। केजरीवाल ने कहा कि जेंजी जवाबदेही तय करने के लिए बड़ा दबाव बना सकती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो को नासिक से गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार की 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। जांच एजेंसी अब नेटवर्क और पेपर लीक के पूरे रैकेट की पड़ताल कर रही है। फाइमा ने नीट पेपर लीक मामले में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केरल के एमबीबीएस छात्र पर भी गेस्ट पेपर भेजने के आरोप सामने आए हैं, जांच जारी है। कांग्रेस आज केरल में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है, सीएलपी बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। दीपा दास मुंशी आज की बैठक में केरल के नए मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा कर सकती है। असम कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया कि आदिवासी समुदाय यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगे। बिल 26 मई को असम विधानसभा में पेश होगा। प्रवीण सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर पद पर 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 17 से घटाकर 2 की है। सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नीतीश कुमार समेत बिहार सरकार के मंत्रियों ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करने का फैसला किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा ने काफिले में भी कटौती की पहल की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने काफिले का आकार 50% घटाने का निर्णय लिया है। भूपेंद्र पटेल और राज्य सरकार के मंत्रियों ने भी काफिले में वाहन की संख्या कम करने का फैसला किया है। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी कीमतों में बढ़ोतरी कर उपभोक्ताओं पर असर डाला है। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। नई बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो रही हैं। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद सोना 8,550 रुपए, चांदी 20,500 रुपए महंगी हो चली है। बाजार में तेजी देखने को मिली। सोने की कीमत 1,65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच चुकी है, जिससे निवेशकों में अब हलचल बढ़ने लगी है। वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 95.80 के स्तर तक गिर चुका है। करेंसी बाजार में अब दबाव बना हुआ है। माइनस तापमान और हिमस्खलन के बीच बीआरओ का प्रोजेक्ट हिमांग सफल रहा। लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे से बर्फ हटाई गई। पर्यटन व्यापार का फिर से रास्ता खुल चुका है। उड़ीसा के कई इलाकों में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में दबाव बनने से बारिश होगी। कर्नाटक के हुबली में मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली। वहीं गोरखपुर में धूल भरी आंधी के बीच अचानक मौसम बदल चुका है। तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी से भी लोगों को राहत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 5 देशों की विदेश यात्रा पर जाएंगे। कई अहम बैठकों का कार्यक्रम तय है। पहला पड़ाव संयुक्त अरब अमीरात में ऊर्जा और व्यापार सहयोग पर उच्च स्तरीय चर्चा होगी। इसके बाद पीएम इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन की यात्रा पर जाएंगे, वहां कार्यक्रम में शामिल होंगे। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने चेताया कि पश्चिम एशिया संकट लंबा खींचने पर ईंधन महंगा हो सकता है। स्विट्जरलैंड कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सरकार राजकोषीय मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टरों के अनुसार कार्डियक अरेस्ट के कारण खून का थक्का जमना उनकी मौत की प्राथमिक वजह है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक आज दिल्ली में शुरू हुई, जिसमें कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में ऊर्जा संकट पर चर्चा की जाएगी। ईरान ने ब्रिक्स देशों से अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई की निंदा करने का आग्रह किया है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ बैठक में मतभेद सामने आने की भी खबर है। भारत ने ब्रिक्स बैठक में संयुक्त बयान जारी करने की पहल की है। बावजूद इसके सदस्य देशों में मतभेद बने हुए हैं, युद्ध के चलते ऊर्जा कीमतों में उछाल से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दबाव होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे, शी जिनपिंग से वहां अहम बैठक हुई। इस मुलाकात में ईरान युद्ध, व्यापार और ताइवान को लेकर अमेरिकी नीतियों पर चर्चा संभव है। 8 साल बाद चीन की यात्रा पर पहुंचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप का जोरदार स्वागत हुआ। ट्रंप के साथ कारोबारी दल के सदस्यों में एलन मस्क और जेनसन हुआंग भी चीन पहुंचे हैं। साइप्रस में यूरोपीय संघ के ऊर्जा मंत्रियों की एक बेहद अहम बैठक हुई है। ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी नाकेबंदी की वजह से बढ़ती ईंधन की कीमतों पर मंत्रियों ने आपस में चर्चा की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के बीच ब्रिटिश रॉयल नेवी का विध्वंसक युद्धपोत मध्यपुर की ओर रवाना हो चुका है। नेटो के पूरी मोर्चे के नेताओं ने बुकारेस्ट में मुलाकात की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी बुकारेस्ट 9 शिखर सम्मेलन में शिरकत की है। अमेरिका के साथ रूस के संबंधों पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और रूस के रिश्तों में अब संभावनाओं की बात केवल दिखावा है। ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री वेस ट्रीटिंग ने पीएम के सामर से मुलाकात की। टेन डाउनिंग स्ट्रीट में करीब दोनों के बीच 20 मिनट तक बातचीत चली। सीजफायर के बावजूद दक्षिण लेबनान के सेडोन में इसराइल का एक बड़ा हमला हुआ। एक शख्स की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने लेबनन में स्वास्थ्य सेवाओं पर हो रहे हमले रोकने की अपील की है। लेबनन की सुरक्षा और मानवीय हालात पर यूएन ने गंभीर चिंता जताई है। अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने करीब $35 अरब के टैरिफ रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए टैरिफ के खिलाफ रिफंड मांगने वाले आयातकों को अब रकम लौटाई जा रही है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचे वियतनाम के विदेश मंत्री ले हुई टूंग। पिछले कुछ सालों में सीमित संपर्क के बाद दोनों देश राजनीतिक रिश्ते फिर से मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। पटना में दिन दहाड़े सीएमएस कैशवैन से 27 लाख की हथियारबंद लूट हुई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बदमाशों ने की तलाश में पुलिस जुटी है। अलीगढ़ पुलिस ने नकली नोटों के बड़े अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ कर 4 आरोपियों को दबोचा है। छापेमारी में लाखों रुपए की फर्जी करेंसी बरामद की गई है। कई राज्यों तक नेटवर्क की जांच अब तेज हो की गई है। पुणे के अस्पताल परिसर में संदिग्ध बम मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा। सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध सामग्री को सुरक्षित कर निष्क्रिय किया। इलाके को खाली कराया गया। हनुमानगढ़ में भीषण आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए। 2 महिलाएं और 4 मवेशी झुलस गए। दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोटा में सीएमएचओ कार्यालय के पीछे खड़ी कबाड़ एम्बुलेंस में आग लग गई। भीषण आग के चलते अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सुरक्षित कर निष्क्रिय किया, इलाके को खाली कराया गया। हनुमानगढ़ में भीषण आग लगने से दो घर जलकर राख हो गए। दो महिलाएं और चार मवेशी झुलस गए। दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोटा में सीएमएचओ कार्यालय के पीछे खड़ी कबाड़ एम्बुलेंस में आग लग गई। भीषण आग के चलते अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन में हैं। थोड़ी देर बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होने वाली है। दोनों नेताओं की यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब दुनिया की नजर अमेरिका चीन रिश्तों, व्यापार और तकनीक को लेकर चल रही तनातनी पर टिकी हुई है। इस दौरे की सबसे बड़ी चर्चा बोइंग विमान डील को लेकर के। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अमेरिकी कंपनी बोइंग से करीब 9 लाख करोड़ रुपए के विमानों की खरीद का बड़ा समझौता कर सकता है और अगर ये डील होती है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील्स में शामिल हो जाएगी। बैठक में व्यापार, टैरिफ, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ताइवान के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव रहा है, इसलिए मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाइना पहुंच चुके हैं। ट्रंप के साथ कई बड़े अमेरिकी कारोबारी भी चीन पहुंचे हैं। इनमें टेक और फाइनेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों के अधिकारी भी हैं। शी जिनपिंग इन उद्योगपतियों के साथ अलग से भी बैठक करेंगे। इस दौरान निवेश, बाजार पहुंच, टेक्नोलॉजी सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। तो बीजिंग में राष्ट्रपति ट्रंप का जोरदार स्वागत हुआ है। दोनों के बीच बातचीत होगी, चर्चा होगी। इस चर्चा में हॉर्मुज के संकट के साथ साथ मध्य एशिया की जो स्थिति है वो भी महत्वपूर्ण होगी। गीता मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गीता, कहां तो रिश्तों में इतनी ज्यादा खटास थी कि चीन ईरान के साथ खड़ा, अमेरिका बार बार चीन

0: को चेतावनी देता रहा और ये भी एक बार को संशय थी कि वो तो पहुंचेंगे भी नहीं, मुलाकात होगी भी नहीं। आज मुलाकात हुई है, जोरदार स्वागत हुआ है। सबसे बड़ी नजर किस बात पर होगी?
1: देखिए, सबसे बड़ी नजर तो अगर चीन और अमेरिका के बायलैटरल टाइज की बात करें तो उनके अपने ट्रेड और टैरिफ की वजह से जो मार्केट्स में गिरावट आया है उस पर जरूर फोकस होगा। लेकिन जिस तरीके से इस युद्ध की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी प्राइसेस बहुत ही बड़ा धक्का खा रहे हैं उस पर भी बातचीत होने वाली है। तो ये पहला ऐसा मुलाकात है इस युद्ध के शुरू होने के बाद, ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके शुरू होने के बाद ये पहली बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मुलाकात है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप चीन के लिए निकल रहे थे आशुतोष, तब उनसे पूछा गया था कि क्या चीन से आप मदद मांगेंगे इस क्राइसिस को खत्म करने की के लिए, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि उन्हें चीन की जरूरत नहीं है ईरान से डील करने के लिए, वो ईरान के साथ वैसे ही डील कर सकते हैं, चाहे वो युद्ध के मैदान में हो चाहे वो डिप्लोमेटिक टेबल पे हो।
0: नहीं, लेकिन गीता, क्या चीन ये कोशिश कर सकता है कि अभी सबसे बड़ी जो संकट है वो हॉर्मुज को लेकर के है, मिडिल ईस्ट को लेकर के, ईरान को लेकर के है, कि सबसे पहले पूरी दुनिया को मुश्किल से बचाएं, क्योंकि असर तो चीन और अमेरिका पर भी हो रहा है इसका? क्या कहीं ऐसे आसार लग रहे हैं कि चीन ये कोशिश जरूर करेगा?
1: बिल्कुल, और ट्रंप भी चाहेंगे कि इस पर बातचीत हो, क्योंकि शी जिनपिंग जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने पर सबसे ज्यादा असर अगर किसी देश पर पड़ा है या हुआ है वो चीन है। उनका जितना 90% ऑफ द ऑयल जो ईरान बेचता है वो चीन को बेचता था, तो चीन पर वैसे ही बहुत ज्यादा असर पड़ चुका है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने पर। अब दोनों साइड ये चाहेंगे कि जब बातचीत हो तो ट्रंप शायद ये कहे शी जिनपिंग को कि आप ईरान से बात करिए, कि वो इतने हार्ड पोजीशन ना ले, और शी जिनपिंग शायद ट्रंप को कहेंगे कि आप नेवल ब्लॉकेड आपको हटाना जरूरी है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुल जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंडीशन है ईरान का कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल चुका था, नेवल ब्लॉकेड खुला नहीं, तो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद कर दिया। तो अब यूएस नेवल ब्लॉकेड पर मुद्दा आके खड़ा है कि क्या अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाएगा या नहीं, तो इस मुद्दे पर बातचीत जरूर होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का दुनिया पर तो पड़ा ही है, चीन पर भी पड़ा है, और अगर चीन पर कुछ पड़ता है असर तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ता है आशुतोष। तो इसलिए इस पर बातचीत जरूर होगी, लेकिन इनके अपने ट्रेड और टैरिफ जो है उस पर भी बात होगी, क्योंकि अगर आप देखें अमेरिकन टैरिफ की वजह से ही पूरी दुनिया आज शी जिनपिंग की तरफ देख रही है, यूरोपियन लीडर शी जिनपिंग को मिलने गए थे, कुछ 2-3 बार जा चुके हैं, और युद्ध के शुरू होने के बाद ये पहली मुलाकात है ट्रंप और शी जिनपिंग की।
0: और बिल्कुल बीजिंग से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत हुआ है, और हमारी सहयोगी गीता मोहन बता रहे हैं कि आखिर ये मुलाकात के मायने क्या है। इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी लगातार। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबर जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
3: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: विक्रम, एक हिंट तो देते।
3: बड़े आराम से।
4: बहुत टायर्ड हो गई।
5: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
6: लायन डेट नट बाइट्स।
7: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
8: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
7: आप कैसे कर लेते हो?
8: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
9: नहीं
8: और म्यूचुअल फंड्स है
9: सही।
10: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
14: और भाई, कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन, पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
16: जेके वॉल मैक्स
15: बेस्ट पेंट।
16: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
17: Like I said before, we better own the sins.
18: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते,
19: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से।
20: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ

0: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
1: After multiple assassination attempts, they can't even get...
2: They're reliable.
3: Always when I need them.
0: To live sports action.
4: One hand jam by LeBron on the break.
5: That's another three, Steph Curry.
0: And your favorite music.
6: Well, the dawn begins to crack.
0: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
8: It's your boy,
7: just
8: Jay-Z.
7: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
9: से फोकस हटाने का
10: नहीं
9: और म्यूचुअल फंड है
10: सही।
11: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
12: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
15: और वही कहाँ गए थे घूमने?
16: जीके मैक्स।
17: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
16: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
18: जेके वॉल मैक्स
16: बेस्ट पेंट,
18: जेके मैक्स।
16: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
19: Like I said before, we better own the sins.
20: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते।
21: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
22: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
23: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
24: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
25: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
26: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाली।
27: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
28: In association with
29: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
28: Hint, bade aaram se.
29: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
30: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
29: Summer Cool Cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Summer Cool Cooler, life banaye wonderful.
28: Vimal, bolo zubaan kesri.
31: 23 और 29 अप्रैल वोटिंग।
32: 90% क्रॉस कर गई बंगाल की वोटिंग।
33: ये बढ़ा हुआ मतदान आखिर किस तरफ जाएगा?
31: 4 मई काउंटिंग।
32: भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं।
34: रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए।
31: 8 मई सीएम का ऐलान।
33: शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे।
31: 9 मई शपथ।
35: शुभेंदु अधिकारी, ईश्वरेर नामे शपथ करते छिजे।
31: यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट, सर्च में नंबर 1, गूगल ट्रेंड्स में नंबर 1, लाइव स्ट्रीम में सबसे आगे। टीवी हो, डिजिटल हो, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर आज तक रहा चुनाव में सबसे आगे। चुनाव मतलब सिर्फ आज तक।

मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है, जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में, एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए, एक सर्टिफिकेट किसी को। मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूं उसको क्योंकि मेरे नेता ने कहा, लेकिन साथ में उन्होंने इस चुनाव में एक और शब्द जोड़ के गए, सबका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं हिसाब करूंगा, लेकिन हिसाब 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने जैसा किया था वैसा नहीं करूंगा। मैं लोकतांत्रिक तरीके से करूंगा, बिना किसी को एक थप्पड़ मारे करूंगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
5: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही है.

0: पेपर लीक मामले की तफ्तीश राजस्थान से महाराष्ट्र तक चल रही है। उधर विद्यार्थी संगठन आग बबूला है। कांग्रेस के एनएसयूआई तो छोड़िए, बीजेपी की एबीवीपी भी सड़कों पर है, मगर आंदोलन में फर्क है। एनएसयूआई बीजेपी पर सवाल उठा रही है, एबीवीपी एनडीए पर नाराज है। राजस्थान से शुरू हुई जांच घूमकर राजस्थान ही पहुंच रही है। पहले चरण में पेपर नासिक के हाई सिक्योरिटी प्रेस से हार्ड कॉपी की शक्ल में लीक कराया गया। दूसरे चरण में सॉफ्ट और डिजिटल कॉपी की शक्ल में हाथों हाथ बेचा और बांटा गया। इस मामले का फंडाफोड़ करने वाली राजस्थान पुलिस की एसओजी के मुताबिक इनमें अब तक के बड़े चेहरों में नासिक का शुभम खैरनार है, पुणे का धनंजय है, जयपुर का मनीष यादव है, सीकर का राकेश मंडावरिया है, गुरुग्राम का यश यादव है। सबकी धरपकड़ हो चुकी है। अभी ये नहीं पता चल पाया है कि नासिक हाई सिक्योरिटी प्रेस से पेपर की हार्ड कॉपी सबसे पहले किसने लीक की थी, लेकिन ये पता चल चुका है कि महाराष्ट्र से ये पेपर जयपुर में मनीष यादव के पास पहुंचा था। राजस्थान एसओजी और सीबीआई की जांच के अनुसार इस पूरे इंटर स्टेट रैकेट का मास्टरमाइंड मनीष यादव और राकेश मंडावरिया है। इसमें मनीष यादव के ऊपर नासिक से लीक हुए पेपर के सवालों को गेस पेपर के नाम से जयपुर में छपवाने का आरोप है, तो राकेश मंडावरिया उस गेस पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा था। राकेश मंडावरिया राजस्थान के कोचिंग हब सीकर के पिपराली रोड में आरके कंसल्टेंसी नाम से कंसल्टेंसी सर्विस चलाता है। जांच एजेंसियों को शक है कि इसका मुख्य काम पेपर को कोचिंग स्टूडेंट्स के बीच बांटना था। जांच में सामने आया कि उसके पास ये लीक पेपर अप्रैल महीने में ही आ चुका था। जांच में मिले प्राइवेट माफिया नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में पता चला है कि इसमें 400 से ज्यादा लोग जुड़े थे और इसी ग्रुप में लीक पेपर बांटे जा रहे थे। जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब पुणे से डेंटिस्ट की पत्नी मनीषा वाघमारे नाम की महिला भी हिरासत में ली गई है, जो पेपर लीक गैंग के संपर्क में थी। नीट पेपर लीक भंडाफोड़ के बाद से ही कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर निशाने साध रही है। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 में नीट पेपर लीक के दौरान एनटीए के डीजी रहे अधिकारी को छत्तीसगढ़ के सीएम का प्रमुख सचिव बनाकर इनाम दिया गया है। अब कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है कि एसओजी ने जिस मांगीलाल और दिनेश यादव नाम के आरोपी को पकड़ा है, वो राजस्थान के मंत्री के करीबी हैं। कभी वो राजस्थान के शिक्षा मंत्री के बाएं दाएं दिखते हैं, तो कभी सड़कों पर होर्डिंग लगाकर शुभकामनाएं लगाते दिखते हैं। उसी आरोपी मांगीलाल के घर हमारे संवाददाता पहुंचे। मांगीलाल के घर वाले बताते हैं कि आरोपी दिनेश बीजेपी का कार्यकर्ता है। आरोपी दिनेश की पत्नी ने भी माना है कि अनपढ़ हैं। इनके पति दिनेश प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं और इनके घर से 3 बच्चे पिछली बार भी नीट पास कर चुके हैं। ऐसे में एनटीए से लेकर राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर तक इस मामले पर जैसी सफाई दे रहे हैं, उससे विपक्षियों को सियासी सवाल उठाने का मौका भी मिल रहा है। अब विपक्षी दल इस पूरे पेपर लीक कांड को सीधे बीजेपी की कारस्तानी बताने की कोशिश कर रहे हैं और केजरीवाल तो नेपाल बांग्लादेश जैसा अराजक आंदोलन करने का आह्वान जेनजी से कर रहे हैं। केजरीवाल का आरोप है कि 2014 के बाद से देश में 93 पेपर लीक हुए हैं और किसी एक मामले में भी सजा नहीं हुई है। 2024 के नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच भी की, गिरफ्तारी भी की, लेकिन चार्जशीट नहीं की और आरोपी जमानत पर घूम रहे हैं। केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात में हुए हैं और ये बीजेपी शासित प्रदेश है। इस बीच पेपर लीक की जिम्मेदारी एनटीए पर डालते हुए उसे भंग करने या नीट की परीक्षा उसके दायरे से बाहर करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मामला अदालत में भी पहुंचा है। अब देखना होगा कि सीबीआई इस मामले में सिंडिकेट के सबसे ऊपर के चेहरे तक पहुंच पाती है या नहीं। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
1: जब इसकी पुष्टि हुई तो हमने ये समझा कि अगर इस तरह का एक भी वायलेशन होता है तो वह हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ है और जो तमाम 22,69,000 बच्चे परीक्षा की अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य को इम्पैक्ट करेगा। अगर कोई इस तरह से चोरी करके परीक्षा देगा तो वह उनके लिए फेयर नहीं है जो अपने मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके हित में ध्यान रखते हुए हमने यह एक कड़ा निर्णय लिया कि हम यह संदेश दे सकें हर उस क्रिमिनल को, हर उस स्कैमस्टर्स को, हर उस फ्रॉडिये को कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो उसको एनटीए सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे।
2: जांच एजेंसियों ने पाया होगा इसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय ले लिया कि रद्द कर दिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहां भी गड़बड़ दिखाई देगा या उस सबको ठीक करने के लिए काम करेगी सरकार।
3: पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बस को भी जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले ये वारदात हुई है। महिला शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं। मेडिकल करवाया गया उस महिला का, उसके बाद FIR दर्ज की गई है। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस बस में ये घटना हुई है उसको भी जब्त कर लिया गया। हमारे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, पूरी जानकारी दीजिए इस घटना से जुड़ी हुई।
4: देखिए, 30 साल की महिला है जो मंगोलपुरी में फैक्ट्री में काम करती है और इसका

0: आरोप है कि जब ये सोमवार को अपने घर लौट रही थी तभी सरस्वती विहार बस स्टैंड है वहां पर एक स्लीपर बस रुकी और जैसे ही पीड़िता ने दरवाजे पर खड़ी थी उसी दौरान दो आरोपियों ने उसे खींच लिया और उसके बाद फिर चलती बस में उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस का कहना है कि जैसे ही महिला ने शिकायत दी उसके बाद FIR दर्ज की गई और उसके बाद जो बस का ड्राइवर है और कंडक्टर है उसको अरेस्ट कर लिया गया, जो बस है उसको सीज्ड कर दी गई है और उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। जी
1: ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दो दिन महिला के साथ दो दिन पहले ये घटना हुई थी जिसके बाद शिकायत मिली, पुलिस ने महिला का मेडिकल कराया है और उसके बाद FIR दर्ज करके आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। रुख करते हैं अगली खबर का। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच इस वक्त की दो ऐसी बड़ी खबरें। दिल्ली में ब्रिक्स के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच चले लंबे युद्ध और जारी तनाव के बीच ये पहला मौका है जब कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन के दौरे पर हैं और थोड़ी ही देर बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया की नजर अमेरिका चीन रिश्तों, व्यापार, तकनीक को लेकर चल रही तनातनी पर टिकी हुई है। तो एक तरफ दिल्ली में ब्रिक्स देशों के समिट है जहां भारत की नजर होगी इस बात पर कि कैसे पश्चिम एशिया का तनाव खत्म किया जाए। ईरान और UAE के साथ बातचीत होगी, बातचीत इस बात पर भी होगी कि क्या मौजूदा परिस्थितियों को लेकर के कोई साझा बयान आता है। तो दूसरी तरफ जिनपिंग के साथ मुलाकात में अमेरिका और चीन के रिश्तों में आई कड़वाहट को खत्म करने की कोशिश होगी और उसी के साथ इस बात पर भी नजर होगी कि क्या चीन कोई पह हो रही है जब दुनिया की नजर अमेरिका चीन रिश्तों, व्यापार, तकनीक को लेकर चल रही तनातनी पर टिकी हुई है। तो एक तरफ दिल्ली में ब्रिक्स देशों के समिट है जहां भारत की नजर होगी इस बात पर कि कैसे पश्चिम एशिया का तनाव खत्म किया जाए। ईरान और UAE के साथ बातचीत होगी, बातचीत इस बात पर भी होगी कि क्या मौजूदा परिस्थितियों को लेकर के कोई साझा बयान आता है। तो दूसरी तरफ जिनपिंग के साथ मुलाकात में अमेरिका और चीन के रिश्तों में आई कड़वाहट को खत्म करने की कोशिश होगी और उसी के साथ इस बात पर भी नजर होगी कि क्या चीन कोई पहल करता है कि पश्चिम एशिया के हालात बेहतर हों, क्योंकि सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पर सप्लाई चेन डिसरप्ट से नुकसान चीन को उठाना पड़ा है। अब बात करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चीन दौरे की। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ट्रंप ने मुलाकात की है। इसके बाद ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हो रही है और यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया की नजर अमेरिका चीन के रिश्तों पर, व्यापार, तकनीक को लेकर चल रही है। इन दोनों के बीच लंबी तनातनी कैसे खत्म होगी इस पर भी पूरी दुनिया की नजर होगी और जाहिर है दो महाशक्तियों के बीच हो रही इस मुलाकात का जो भी आउटकम होगा उसका असर वैश्विक बाजार पर होगा। हालांकि इस दौरे की सबसे बड़ी चर्चा बोइंग विमान डील को लेकर के है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अमेरिकी कंपनी बोइंग से करीब 9 लाख करोड़ रुपए के विमानों की खरीद का बड़ा समझौता कर सकता है और अगर ये डील हो जाती है तो ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी एविएशन डील्स में शामिल हो सकती है। इस बैठक में व्यापार, टैरिफ, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ताइवान जैसे मुद्दों पर भी बातचीत होगी। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के रिश्तों में काफी तल्खी रही है, तनाव रहा है, बयानों में तल्खियां देखने को मिली हैं और इसीलिए इस मुलाकात को इस लहजे से भी, इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है कि न सिर्फ वो तल्खियां खत्म होंगी बल्कि अमेरिका के टैरिफ वॉर से चीन पर पड़े असर से चीन उबरने की कोशिश करेगा तो रिश्तों में भी मिठास घुलेगी।

0: मुलाकात के मायनों में आखिर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी? क्या अमेरिका चीन के रिश्ते बेहतर हों, या फिर चीन की ये कोशिश हो कि पश्चिम एशिया का संकट खत्म करने में उसकी मध्यस्थता हो? सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, दो ही बातें इस समय सबसे ज्यादा शायद महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया की नजर होगी कि क्या अमेरिका चीन अपने मतभेद खत्म करेंगे, या चीन ये कोशिश करे कि पश्चिम एशिया संकट खत्म हो जाए जिससे उसका भी संकट खत्म हो और पूरी दुनिया इस मुश्किल से निकले।
1: देखिए बिल्कुल आशुतोष, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 में जब साउथ कोरिया में मुलाकात हुई थी तब भी ये कहा गया था कि क्या ये जो मुलाकात है ये क्या दोनों के रिश्तों में एक नया आयाम लेकर आएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई चीजों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा ये बात कह चुके हैं कि ईरान के मामले के अंदर वो किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस चीन का नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप भी डिस्कस कर रहे थे कि ना सिर्फ ट्रेड को लेकर, ट्रेड टैरिफ को लेकर, लगातार विमान को लेकर, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके एआई टूल्स की सेफ्टी को लेकर, या कई महत्वपूर्ण चीजों को लेकर दोनों के बीच में बातचीत बन सकती है। और ये बातचीत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तरीके का जो पावर सेंटर या जो सुप्रीम, आप कह सकते हैं सुपर पावर वाला जो कॉन्सेप्ट हम जिसकी बात करते हैं दुनिया भर में, वो शिफ्ट हो रहा है एशिया में। और ये बात सही है कि चीन का उसमें दखल या चीन की उसमें आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अभी अमेरिका ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है। आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप नहीं, जब कोविड के समय आपको याद होगा कि उस समय कई चीनी प्रोडक्ट्स को यूरोप में या फिर अमेरिका में बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी बैन करने, उनको कम करने के बावजूद भी उनका जो पेनिट्रेशन था वो बहुत ज्यादा था उन सभी मार्केट में। वो मजबूरी आप कह सकते हैं कि अमेरिका की भी है, यूरोप की भी है। ऐसे दौर के अंदर अमेरिका या दूसरा कह सकते हैं यूरोप के कई देश उनके एक्सेप्टेंस या फिर चीनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की एक्सेप्टेंस को समझते हैं, और शायद इसी वजह से दोनों की जरूरत के हिसाब से आप इस डील को देख सकते हैं, फिर इस मुलाकात को आप देख सकते हैं जिसमें दोनों तरफ से अपने अपने ट्रेड डेफिसिट्स और ट्रेड को लेकर बातचीत की जा सकती है। एनर्जी एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि एक बड़ा आस्पेक्ट है, चीन का वो आस्पेक्ट मिसिंग है और शायद उसी के लिए दोनों तरफ से बातचीत हो सकती है।
0: और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये जिक्र कर रहे थे कि उनकी चीन का ये जो दौरा होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा, एक तरफ ट्रेड और दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स, और जियोपॉलिटिक्स में खासकर पश्चिम एशिया का तनाव जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा चीन को भी उठाना पड़ा है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था और एक सुपर पावर। लेकिन इस नुकसान के चलते चीन की जो मुश्किलें हुई हैं और खासकर अमेरिका का टैरिफ वॉर जिसका असर भी चीन पर पड़ा है, तो एक तरफ कोशिशें टैरिफ वॉर से बाहर निकलने की, रिश्तों में मिठास लाने की, और उसी के साथ पश्चिम एशिया संकट को खत्म करने की।

तो चीन में कुछ इस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत हुआ, उनका अभिवादन हुआ। इसके पक्षे पहले दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो, डोनाल्ड ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिनपिंग के साथ वो दिखाई दे रहे हैं वहां पर, ऐसे उनका स्वागत हुआ है। और इस

0: बीजिंग के बाद अब बात दिल्ली की। दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जहां विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख इस बैठक में भाग लेंगे। नरेंद्र मोदी भी इस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। इस बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स में लचीलापन, नवाचार यानी इनोवेशन, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र भी आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। यानी सीधे सीधे समझें तो इन देशों के बीच आपसी सामंजस्य को बनाए रखना, एक दूसरे की जरूरतों को समझना ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था और उसी के साथ साथ कूटनीतिक रिश्तों को बेहतर करने की एक कोशिश होगी, सामंजस्य को और मजबूत करने की कोशिश होगी। विदेश में ईरान के विदेश मंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीती रात वो भी पहुंचेंगे। और इन ब्रिक्स देशों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो दोपहर को 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेगा। इन तीन तस्वीरों के लिए अगर आप ये समझें कि कैसे पूरी दुनिया की नजर उस लैंडस्केप पर है जहां दो महत्वपूर्ण मुलाकात चल रही है, एक तरफ बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात हो रही है, तो दिल्ली में ब्रिक्स देशों का प्रतिनिधिमंडल मौजूद है। अब दोनों की कोशिश इस बात की है कि पश्चिम एशिया का संकट खत्म हो, और अगर एशिया पश्चिम एशिया के संकट को खत्म करने में कामयाब होता है तो पूरी दुनिया पर जो मुश्किल भरे हालात हैं उसे कम करने में मदद मिलेगी। मिडल ईस्ट तनाव के बीच ऊर्जा संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार मिशन मोड में है। पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाकर 2 कर दी है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें काफिले में वाहनों की संख्या कम करना भी शामिल है। पीएम मोदी ने मंत्रियों को अनावश्यक रूप से नए वाहन खरीदने से बचने की भी सलाह दी है। बैठक में पीएम ने उच्च पदों पर बैठे लोगों की सादगी के उदाहरण दिए, जनप्रतिनिधियों से राष्ट्र समाज के प्रति अतिरिक्त जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की भी अपील की है। तो गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपना जो काफिला है उसमें कटौती की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काफिले में कटौती की, और खुद प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें आई हैं काफिले की कि अब 12 जो गाड़ियां हैं वो अब 2 हो गई हैं सिमटकर। जेपी नड्डा जो है उनके काफिले में कटौती हुई है। वहीं पर अश्विनी वैष्णव, उनके काफिले में अब सिर्फ अपनी सिर्फ एक गाड़ी से जा रहे हैं राव, और इसका असर जो है राज्यों में भी देखने को मिला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपने काफिले की गाड़ियां 50% कम दी हैं। राज्य के जो मंत्री गणेश जोशी स्कूटर पर नजर आ रहे हैं, कहीं औरंगाबाद में जो जज हैं वो साइकिल पर नजर आए, तो दिल्ली के मंत्री मेट्रो की सवारी करते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में 2 गाड़ियां नजर आईं तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या देश पर बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है, क्योंकि बैंकर उदय कोटक ने मंगलवार को ये चेतावनी दी है बड़ा झटका आने ही वाला है, मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। इसे 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल का खर्च कम कर दें। कल रात ही केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। पेट्रोल डीजल के दाम में अब इजाफे की आशंका बनी हुई है।
1: गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 2, केवल 2 कार का काफिला लेकर प्रधानमंत्री को क्यों निकलना पड़ा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार अपील करने के बाद अब देश को खुद अलर्ट करने के लिए अपना काफिला 90% तक घटा दिया है? आखिर क्या होने वाला है जिसके लिए सिर्फ 2 कार में निकलकर प्रधानमंत्री सबको सावधान सतर्क कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा में कमी करके देश को सजग कर रहे हैं कि बचत करिए तभी आर्थिक संकट से लड़ पाएंगे?
2: मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
1: पहले 10 मई को हैदराबाद, फिर 11 मई को वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों से तेल की बचत करने और सोना 1 साल नहीं खरीदने की अपील कर चुके हैं। इसके 3 दिन के भीतर जब कैबिनेट की मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी निकलते हैं, देश से केवल तेल बचाने की अपील नहीं बल्कि उस डगर पर खुद चलकर दिखाते हैं जहां पर नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ ना तो उनकी पायलट कार दिखी, ना तो एम्बुलेंस दिखी, ना जैमर कार दिखी, ना पहले जैसी वो सुरक्षा कारें जो किसी खतरे के वक्त प्रधानमंत्री के सुरक्षा काफिले में रहकर हर चुनौती से रक्षा करती आई हैं। केवल दो गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग में निकलते हैं, लेकिन क्यों?
2: इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें, जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चले।
1: असल में प्रधानमंत्री उस डगर पर खुद चलकर देशवासियों को दिखा रहे हैं जिस पर चलने की अपील उन्होंने देश के नागरिकों से की है, जहां राजनीति नहीं बल्कि सबके मिलकर तेल बचाने वाली जुगत लगाने की जरूरत है।
0: आरबीआई ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि महंगाई बम कभी भी फट सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर मिडिल ईस्ट संकट लंबा खिंचता है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। संजय मल्होत्रा का कहना है कि दुनिया की कुल जरूरत का करीब 20% तेल की आवाजाही के लिए जिम्मेदार हॉर्मुज़स्ट्रेट बंद होने से सप्लाई चेन चरमरा गई है, जिसके चलते कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, महंगाई, ईंधन आयात पर निर्भरता अर्थव्यवस्था पर अब दबाव डाल रही है। बयान से साफ पता चलता है कि सरकारी तेल कंपनियों पर कच्चे तेल की बढ़ती लागत से दबाव बढ़ रहा है, जिसका असर जल्द ही बाजार पर नजर आएगा। उधर आयात शुल्क में बढ़ोतरी के बाद सोने और चांदी के दाम तो बढ़ गए हैं, लेकिन दूध के दाम में भी इजाफा हुआ है। मदर डेयरी ने जो है दाम बढ़ा दिए हैं, अमूल ने दाम बढ़ाए हैं। 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है जो कि आज से लागू हो जाएगा। अब सोने की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है, 8,550 रुपए। उधर नीट पेपर लीक की जांच अपने हाथ में लेने के कुछ ही घंटों में सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तार किया है लोगों को। 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। मामला शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें साजिश, धोखाधड़ी, अन्य धाराएं शामिल हैं। नासिक के शुभम खैरनार, जयपुर के मंगीलाल बिवाल, विकास बवाल, दिनेश बिवाल और गुरुग्राम से यश यादव का नाम शामिल है। ये वो 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। सीबीआई के मुताबिक जयपुर से गिरफ्तार दिनेश बिवाल बीजेपी से जुड़ा हुआ है और उसने अपने बेटे विकास बिवाल के लिए लगभग 30 लाख रुपए में प्रश्न पत्र खरीदा था, जो नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बाद में दिनेश बिवाल ने अपने भाई मांगीलाल बिवाल के साथ कथित तौर पर वही प्रश्न पत्र सीकर के अन्य छात्रों को बेच दिया। इस बीच आरोपी शुभम से प्रश्न पत्र हासिल करने वाले गुरुग्राम स्थित काउंसलर यश यादव को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बीच सीबीआई ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में धनंजय लोखंडे नामक एक संदिग्ध पर ध्यान केंद्रित किया है। इसने कथित तौर पर कुरियर के माध्यम से शुभम खैरनार को पेपर की कॉपी भेजी थी। हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, एक आरोपी ये कह रहा है बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, अब वो बयान और ऊपर से इसमें एक का जो ताल्लुक है वो बीजेपी के साथ, और बिवाल परिवार तो ऐसा लग रहा है कि उसके घर में सारे के सारे नीट क्वालिफाई करके सरकारी अस्पतालों में, क्या सीबीआई की जांच इस तरफ भी देख रही है?
3: देखिए, आज तो सीबीआई की जांच फिलहाल केंद्रित है कि ये पेपर कहां से ओरिजिनेट हुआ। ये बात सही है कि बिवाल परिवार से 3 लोगों का अरेस्ट किया गया है। जो बेटा है दिनेश का, थोड़ा सुधारना चाहूंगा मैं, वो नाबालिग ऋषि, वो भागा हुआ है जिसके लिए पेपर खरीदे थे। ये विकास है, बड़े भाई मांगीलाल का बेटा जिसको अरेस्ट किया गया था। ये सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस के प्रथम वर्ष का छात्र था, पिछले साल ये नीट निकाला था। तो ये बिवाल परिवार ने पिछले 6 नवंबर 2025 को कहा था कि हम एक परिवार से 5 लोग एमबीबीएस के सरकारी कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं। तो इन पर तो नजर है, लेकिन सीबीआई फिलहाल 5ों को दिल्ली लेकर गई है और जो बच्चे यहां पर हिरासत में थे, परिजन थे, उन्हें छोड़ दिया गया है। सीबीआई का ऐसा मानना है कि हर बार जांच में हम लोग बच्चों और परिजन में फंस जाते हैं और पेपर ट्रेल नहीं पकड़ा जाता है। सीबीआई के सूत्रों के माने तो पुणे से ये हार्ड पेपर ओरिजिनेट हुआ है और इसीलिए इनका पूरा फोकस है सीबीआई का कि इस बार जो ये कड़ियां हैं जहां से ये पूरे देश में सप्लाई हो रहा है उसे तोड़ा जाए। तो ये खुलासा तो इसलिए हो गया कि जो दिनेश का बेटा था और दिनेश दोनों लालच में 30 लाख खरीद कर लाए थे, दोनों कमाना शुरू कर दिया। मगर सीबीआई का पूरा फोकस है कि ये ओरिजिनेट कहां से हुआ है। ओरिजिनेशन के बारे में पता चल रहा है कि पुणे के आसपास कहीं से ये हार्ड कॉपी निकला है और काफी दिन पहले निकला है। तो सीबीआई का पूरा फोकस वही है। पटना से जो अरेस्ट हुए हैं,
0: ठीक है शरद, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। नीट पेपर लीक कांड में जो जांच हो रही है उसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक
7: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश
8: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं
9: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था एनटीए को पता नहीं
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर
10: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ
8: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ एनटीए जागी पेपर रद्द हुआ हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है खबरदार किया है हर दल की सरकार को जगाया है बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा
7: जहां खबर वहां खबरदार
11: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स
12: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: As a truck driver, I've learned how important road safety is. I know that large trucks need more time and room to stop. That's why I always hang back and follow other vehicles at a safe distance. Everyone can help keep our roads safe. Next time you're driving, try to remember to always give trucks extra space when you merge in front of them. Let's all plan to share the road safely. Learn how at www.sharetheroadsafely.gov.
15: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
16: somebody save me,
15: to timeless favorites. And new discoveries.
16: So much more than a history. Wake up.
15: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
16: So much more than a history.
17: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
18: So they were disallowed from speaking their language.
17: In-depth conversations with A-list celebrities.
19: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
17: True crime podcasts you just can't stop listening to.
20: Others escape justice to live and die in infamy. These
17: plus the news and sports content you crave in podcast form.
21: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
17: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
22: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा
23: ए प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट
24: विक्रम एक हिंट तो देते
23: विक्रम
24: हिंट
23: बड़े आराम से

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints, खुशियों के रंग।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, भाई साहब सब पचा दे।
13: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा।
14: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
1: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहाँ स्वाद वहाँ JK।
15: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
16: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
17: लायन डेट नट बाइट्स।
18: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
19: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
20: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
21: पर मार्केट की समझना, बाउंसर जा रही है।
20: आप कैसे कर लेते हो?
21: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
20: नहीं
21: और म्यूचुअल फंड्स है
20: सही।
22: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
23: Director, the taste of success.
24: Like I said before, we better hold the sins.
25: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
26: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: In association with
2: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Hint, bade aaram se.
2: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
3: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
4: Summer Cool Cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Summer Cool Cooler, life banaye wonderful.
1: Vimal, bolo zubaan kesri.
5: 23 और 29 अप्रैल वोटिंग
6: 90% क्रॉस कर गई बंगाल की वोटिंग.
7: ये बढ़ा हुआ मतदान आखिर किस तरफ जाएगा.
5: 4 मई काउंटिंग.
6: भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं.
8: रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए
5: 8 मई सीएम का ऐलान.
9: शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे.
5: 9 मई शपथ.
10: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थी जे.
5: यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स. सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट. सर्च में नंबर 1. गूगल ट्रेंड्स में नंबर 1. लाइव स्ट्रीम में सबसे आगे. टीवी हो, डिजिटल हो, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर आज तक रहा चुनाव में सबसे आगे. चुनाव मतलब सिर्फ आज तक.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

दिल्ली में आज से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। मिडिल ईस्ट तनाव और ऊर्जा संकट पर हो सकती है बात। पीएम मोदी भी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। ऊर्जा संकट के बीच कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी का सख्त संदेश। कम से कम गाड़ियों के इस्तेमाल की नसीहत। वाहन खरीद पर गाइडलाइन जारी। दो गाड़ियों तक सिमटा प्रधानमंत्री का काफिला। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए की संदिग्ध भूमिका पर देश भर में हल्ला बोल। सुप्रीम कोर्ट में याचिका। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर से महाराष्ट्र तक जुड़े तार। आंधी बारिश और बिजली गिरने से कई राज्यों में भारी तबाही। यूपी में करीब 54 लोगों की मौत। झारखंड राजस्थान में भी बिगड़े हालात।

प्रदेश में आंधी तूफान ने मचाई भारी तबाही। आंधी पानी की चपेट में आने से अलग अलग जिलों में अब तक 54 लोगों के मरने की खबर, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। आंधी तूफान के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान और टीन शेड उड़ गए, फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरे, जिससे कई जगह बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। जिलाधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही में बुधवार को आए भीषण आंधी तूफान के कारण 15 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोग घायल हो गए हैं। तबाही में 16 मवेशियों की भी जान गई है। उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ प्रयागराज में बुधवार शाम आई धूल भरी आंधी ने सबसे भीषण तबाही मचाई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हुई है। मिर्जापुर में भी तेज आंधी बारिश ने खूब कहर मचाया, अलग अलग हादसों में 10 लोगों की मौत हुई है, वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। फतेहपुर में तेज आंधी तूफान का कहर, अलग अलग थाना क्षेत्र में 9 की मौत, कई लोग गंभीर घायल हुए। हरदोई में बुधवार को आई आंधी तूफान में 2 परिवारों की छीनी खुशियां, अलग अलग हादसे में 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। कौशाम्बी में तेज आंधी के बाद घरों में भीषण आग लग गई, 12 परिवारों की गृहस्थी जलकर खाक हुई। हादसे में एक भैंस की जलकर मौत, जबकि लाखों रुपए का नुकसान। कानपुर देहात में आकाशीय बिजली और तेज हवाओं ने भारी तबाही मचाई, एक युवती और 35 बकरियों की मौत हुई, जबकि दीवार गिरने से एक बच्ची की जान चली गई। गुजरात के जामनगर में तेज आंधी से कॉम्प्लेक्स की छत उखड़कर हवा में लटकी, इलाके में दहशत। हादसे के पास आसपास का इलाका खाली करना पड़ा। महाराष्ट्र के सतारा में आकाशीय बिजली गिरने से 22 भेड़ों की मौत हुई, तूफान से हड़कंप मचा। तेज बारिश के बीच अस्पताल परिसर में पेड़ गिरने से अफरा तफरी मच गई। राजस्थान के अलवर में आंधी तूफान का कहर, पेड़ पोल गिरने से शहर भर में बिजली गुल हो गई। बारिश और तेज हवाओं के चलते जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में अफरा तफरी। सोनभद्र में बुधवार शाम आई धूल भरी तेज आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिला पंचायत का भारी भरकम बोर्ड गिरने से स्टेट हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। माइनस तापमान और हिमस्खलन के बीच बीआरओ का प्रोजेक्ट हिमांग सफल। लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे से बर्फ हटाई गई, पर्यटन व्यापार का रास्ता फिर से खुला। उड़ीसा के कई इलाकों में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में दबाव बनने से बारिश हुई। कर्नाटक के हुबली में मौसम का विजाज बदल गया, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। गोरखपुर में धूल भरी आंधी के बीच मौसम अचानक बदल गया, तेज हवाओं के साथ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में देशभर में छापेमारी की है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने दावा किया कि मामले में बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। उधर कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और मामले की जांच के लिए जेपीएससी गठित करने की मांग करते हुए विपक्ष ने पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर कड़ी कार्रवाई का दबाव बनाया है। अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं ने परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई। केजरीवाल ने कहा कि जेन जी जवाबदेही तय करने के लिए बड़ा दबाव बना सकती है। सीबीआई को नासिक से गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार के 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। जांच एजेंसी आप नेटवर्क और पेपर लीक के पूरे रैकेट की पड़ताल कर रही है। फाइमा ने नीट पेपर लीक मामले में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केरल के एक एमबीबीएस छात्र पर भी गेस्ट पेपर भेजने के आरोप सामने आए हैं, मामले में जांच जारी है। कांग्रेस आज केरल के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है, सीएलपी बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है। दीपा दासमुंशी आज होने वाली सीएलपी की बैठक में केरल के मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा कर सकती है। असम कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया कि आदिवासी समुदाय यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगे और इससे जुड़ा हुआ बिल 26 मई को असम विधानसभा में लाया जाएगा। प्रवीण सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर पद पर 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या 17 से घटाकर 2 कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार समेत बिहार सरकार के मंत्रियों ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करने का फैसला किया है। गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा ने भी काफिले में कटौती की पहल की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपने काफिले का आकार 50% तक घटाने का निर्णय लिया है। भूपेंद्र पटेल और गुजरात के तमाम मंत्रियों ने भी काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का फैसला लिया है। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है, उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए हैं, ये बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो जाएंगी। उधर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद सोना 8,550 रुपए और चांदी 20,500 रुपए महंगी हो गई है। बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सोने की कीमतें अब 1,65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच चुकी हैं, जिससे निवेशकों में हलचल बढ़ी है। तो रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 95.80 के स्तर तक गिर चुका है, करेंसी बाजार में जिसका दबाव बना हुआ है। नरेंद्र मोदी 15 मई से 5 देशों की विदेश यात्रा पर जाएंगे, कई अहम बैठकों में कार्यक्रम तय होंगे।
पहला पड़ाव संयुक्त अरब अमीरात होगा, जहां ऊर्जा और व्यापार सहयोग पर उच्च स्तरीय चर्चा होगी। इसके बाद पीएम इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन की यात्रा पर जाएंगे, कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया संकट अगर लंबा खिंचा तो ईंधन काफी महंगा हो सकता है। स्विट्जरलैंड कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि सरकार राजकोषीय मजबूती की दिशा में फिलहाल आगे बढ़ रही है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन हो चुका है, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टरों के अनुसार कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मौत हुई है। उधर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक आज दिल्ली में शुरू होने वाली है, कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। ईरान ने ब्रिक्स देशों में से अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई की निंदा करने का आग्रह किया है। भारत ने ब्रिक्स बैठक में संयुक्त बयान जारी करने की पहल की है, बावजूद इसके सदस्य देशों में मतभेद बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच चुके हैं, शी जिनपिंग के साथ आज उनकी अहम मुलाकात होने वाली है। 8 साल बाद चीन की यात्रा पर पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका जोरदार स्वागत हुआ। साइप्रस में यूरोपीय संघ के ऊर्जा मंत्रियों की बेहद अहम बैठक हुई है, ईरान युद्ध और सेट ऑफ फॉर्मेट में नाकेबंदी की वजह से बढ़ती ईंधन कीमतों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री वेस्ट सिंह ने पीएम के सामर से मुलाकात की है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच मुलाकात चली। सीजफायर के बावजूद दक्षिण लेबनन के सेडोन में इसराइल का बड़ा हमला हुआ, एक शख्स की मौत हुई है। यूनाइटेड नेशंस ने लेबनन में स्वास्थ्य सेवाओं पर हो रहे हमले रोकने की अपील की। अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने करीब $35 अरब के टैरिफ रिफंड की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचे हैं वियतनाम के विदेश मंत्री, पिछले कुछ सालों में सीमित संपर्क के बाद यह पहला मौका है। पटना में दिन दहाड़े सीमेंस कैश वैन से 27 लाख की हथियारबंद लूट की गई, वारदात के बाद इलाके में सनसनी। अलीगढ़ पुलिस ने नकली नोटों के बड़े अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे के अस्पताल परिसर में संदिग्ध बम मिलने से हड़कंप मच गया, मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा। हनुमानगढ़ में भीषण आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए, 2 महिलाएं 4 मवेशी झुलस कर। कोटा में सीएमएचओ कार्यालय के पीछे खड़ी कबाड़ एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई, अफरा तफरी मच गई। दिल्ली में एक स्लीपर बस में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है, बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंझावला इलाके की एक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के भिवाड़ी की फाइबर फैक्ट्री में आग लगी, दूर तक लपटे देखने को मिली, सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। गुजरात के पाटन में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी, गैस वेल्डिंग की चिंगारी से हादसे की आशंका है। खेड़ा के सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स में वड़ा पाव की दुकान में भीषण आग लगी, घरेलू सिलेंडर से बड़ी आग की लपटें। गुजरात हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त कार्यवाहक न्यायाधीश जस्टिस बीरन अनिरुद्ध वैष्णव गुजरात के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, 72 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। करनाल में सिंगर दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पर फायरिंग हुई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली। दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर के बाहर फायरिंग को लेकर सियासी घमासान भी मचा है। हापुड़ में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है, तालाब की भूमि पर बने समाजवादी पार्टी के विधायक के मकान पर बुलडोजर चले। खबरें आईपीएल से, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बुधवार खेले गए आईपीएल मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 192 रन बनाए, जवाब में बेंगलुरु ने 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। किंग कोहली ने 9वां आईपीएल शतक लगाया, 60 गेंदों में 105 रनों की धुआंधार नाबाद पारी खेली। देवदत्त पडिक्कल ने 39 रन बनाए, जबकि जैकब बेथिल ने 15 रन का योगदान दिया। कोलकाता की ओर से कार्तिक त्यागी ने 3 विकेट लिए, जबकि सुनील नरेन को 1 विकेट की सफलता मिली। केकेआर की ओर से रिंकू सिंह ने तेज बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों में नाबाद 49 रन बनाए।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं।

करें, करियर में विवादों से बचाव करें, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा मरून। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, नए पद की प्राप्ति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, चोट चपेट से बचाव करें, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को

किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स
1: लायन डेट नट बाइट्स।
2: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिए।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे।
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
3: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं।

0: देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है।
1: प्रधानमंत्री मोदी देश से सोना बचाने की अपील क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के क्या मायने हैं? क्या देश की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा खतरा है? दो दिन में मोदी ने दो बार देश से ऐसी अपील की है, शेयर मार्केट से लेकर सर्राफा मार्केट तक हड़कंप मच गया। हिंदुस्तानियों का सोने से प्रेम कुछ ज्यादा ही है। शादियों का सीजन भी चल रहा है, लोग बुरे वक्त के लिए भी सोना खरीद कर रखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोने की खरीद कम कर दो। मोदी कह रहे हैं कि एक साल तक सोना न खरीदें तो लोग चिंता में तो आ ही जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपील के पीछे एक बड़ा कारण है, डॉलर बचाना। क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 90% सोना आयात करता है। सालाना 700 से 800 टन की खपत है, जिसमें घरेलू उत्पादन सिर्फ 1 से 2 टन का होता है। 2024-25 में भारत ने 58 अरब डॉलर का सोना आयात किया था, लेकिन उसके अगले ही साल यानी कि 2025-26 में भारत ने 72 अरब डॉलर का सोना आयात किया। आयात बिल में गोल्ड का हिस्सा 9% का है। इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो या सोने की खरीद को टाल दो। प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश भर के सर्राफा कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। पटना में प्रधानमंत्री की अपील के बाद सर्राफा बाजार ठप पड़ा है। कारोबारी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद उनकी माली हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पहले ही ज्यादा डॉलर खर्च कर रहा है, और ऊपर से सोना खरीदने से हमारा इम्पोर्ट बिल और बढ़ रहा है। अब सरकार चाहती है कि लोग सोना न खरीदें, ताकि उसे सोने को दूसरे देशों से आयात न करना पड़े और वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचा पाए। ये अपील इसलिए भी करनी पड़ रही है क्योंकि सोने को लेकर भारत के लोगों की दीवानगी बहुत ज्यादा है। दुनिया के जो 10 देश सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं, उनमें चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। 2025 में चीन ने 591 टन सोना खरीदा था और भारत ने 462 टन, जबकि अमेरिका तीसरे नंबर पर था जिसने 109 टन सोना खरीदा था। हालात सामान्य थे तो भारत सोने का इंपोर्ट बिल सह पा रहा था, लेकिन अब कच्चे तेल की खरीद से दबाव बढ़ रहा है तो मोदी को कहना पड़ रहा है कि एक साल तक लोग सोना न खरीदें। देश के तमाम बड़े शहरों में प्रधानमंत्री मोदी का अपील का असर दिख रहा है। नागपुर में प्रधानमंत्री की अपील के बाद सर्राफा व्यापार पर बड़ा संकट दिखना शुरू हो गया है। यहाँ लाखों लोगों के रोजगार पर सवाल खड़ा हो सकता है। यही हाल देहरादून में भी है। आम लोग तो प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी कारोबारी चिंता में आ गए हैं। सोना कारोबारियों का कहना है कि दाम बढ़े होने की वजह से पहले ही ग्राहक कम थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री की अपील के बाद मांग और ज्यादा घट सकती है। जयपुर के सर्राफा कारोबारी प्रधानमंत्री मोदी की अपील के साथ खड़े हैं। वो इसे अलग तरीके से देख रहे हैं। जयपुर के कारोबारियों का मानना है कि प्रधानमंत्री की अपील गोल्ड का इंपोर्ट कम करने को लेकर है, बाकी रोजाना के गहनों की खरीद पर इसका असर कम पड़ेगा। दिल्ली के कारोबारियों का भी मानना है कि मोदी की अपील से उनके कारोबार पर असर तो पड़ेगा, बड़ा सवाल यह है कि अगर लोगों ने इस अपील के बाद सोना खरीदना कम कर दिया तो इससे जुड़े कारीगरों और बाकी कर्मचारियों पर रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। आज तक ब्यूरो।
2: प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, उस आह्वान का पालन करते हुए ईंधन बचाना, ऊर्जा का संरक्षण करना, राष्ट्रीय जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना, उसका आज मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है और सभी मंत्रियों को, अधिकारी गणों को निर्देश भी दिया है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल करेंगे और बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे और सरकारी गाड़ी का भी न्यूनतम इस्तेमाल किया जाए, ऐसा दिल्ली सरकार का निर्णय है।
3: बकैतों में श्रेष्ठतम, असफल डकैतों के सरताज, मास्टरों के मास्टर यक्ष युधिष्ठिर पक्षीराज गरुड़ और काग भुशुंडी के कॉम्बो बतरस के तीरंदाज अवध होजा सर के साथ।
4: भैया हम झूठ सुनी थे, हमारे दहिया जर जाती। नहीं कहते लोग
3: जीवरा संताप लग जाते हैं। सर आप कुछ लाइसेंस ही रखे हैं कुछ?
5: नहीं है, पहले से पड़ा है।
4: जो आदमी बैठ के बना लेता है उसको लाइसेंस लेने की क्या जरूरत है।

बताया महान नेता, बोले हम मिलकर दुनिया में बदलाव करेंगे। दिल्ली में आज से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। मिडल ईस्ट तनाव और ऊर्जा संकट पर हो सकती है बात। पीएम मोदी 20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। ऊर्जा संकट के बीच कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी का सख्त संदेश। कम से कम गाड़ियों के इस्तेमाल की नसीहत। वाहन खरीद पर गाइडलाइन जारी। दो गाड़ियों तक सिमटा प्रधानमंत्री का काफिला। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए की संदिग्ध भूमिका पर देश भर में हल्ला बोल। सुप्रीम कोर्ट में याचिका। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर से महाराष्ट्र तक जुड़े तार। आंधी बारिश और बिजली गिरने से कई राज्यों में भारी तबाही। यूपी में करीब 54 लोगों की मौत। झारखंड राजस्थान में बिगड़े हालात।

घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर। नीट पेपर लीक के खुलासे में आज हम बताएंगे जयपुर के बिवाल परिवार की चौंकाने वाली कहानी। परिवार के 5 लोग नीट में सिलेक्ट, छठे की तैयारी, सनसनीखेज खुलासा अब से कुछ ही देर बाद। प्रतीक यादव के जिस्म पर चोट के 6 निशान कैसे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का रहस्य गहराया, इस खबर पर भी होगी विस्तार से बात। फिर शर्मसार हुई दिल्ली, स्लीपर बस में गैंगरेप, पूरी खबर अब से कुछ ही देर बाद। ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की सनसनीखेज खबर के साथ, जहां पर चलती बस में गैंग रेप का मामला सामने आया है। वारदात पश्चिमी दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके की है, 12 मई यानी 2 दिन पहले की बताई जा रही है। मंगोलपुरी की फैक्ट्री में काम करने वाली पीड़िता के मुताबिक सरस्वती विहार बस स्टॉप से उसे आरोपियों ने जबरन बस में खींचा और चलती बस में गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बस को भी जब्त किया है। महिला शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं उसके, और उसके साथ 12 मई को इस वारदात को अंजाम दिया गया।

0: स्लीपर बस में महिला के साथ गैंग रेप, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बेहद सनसनीखेज ये मामला, जबरन इस महिला को बस के भीतर खींचा गया और उसके बाद उसके साथ तरिंदगी की गई। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? महिला की मेडिकल जांच हो चुकी है और पूछताछ में आरोपियों ने क्या बताया?
1: देखिए, जो ये दो आरोपी हैं, बस का ड्राइवर है, कंडक्टर है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ जो प्राइवेट बस है उसे भी रानीबाग पुलिस स्टेशन ने सीज कर दिया है। जो महिला ने बयान दिया उसके मुताबिक ये जो पूरी वारदात है ये सोमवार की है, जब वो देर रात फैक्ट्री से वापस लौट रही थी, तभी सरस्ती विहार बस स्टैंड के पास ये बस आती है और महिला जो कंडक्टर है उससे पूछताछ करती है। उसके बाद आरोप है कि उसे बस में खींच लिया जाता है और उसके बाद चलती बस में उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। उसके बाद महिला को ये उतार कर आरोपी फरार हो जाते हैं। उसके बाद महिला शिकायत दर्ज कराती है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, उसके बाद शिकायत पर FIR दर्ज करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इसमें और भी कई एंगल हैं जिस पर जांच पड़ताल की जा रही है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात नीट पेपर लीक मामले की।
2: बड़े लोगों को तो बचाया जा रहा है,
3: उनको बचाया जा रहा है।

0: तो नीट पेपर लीक मामले में क्या किसी बड़े आदमी को बचाया जा रहा है? क्या जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो बस इस केस के छोटे मोटे किरदार हैं, या फिर ये नीट पेपर लीक के बड़े नेटवर्क के सिर्फ छोटे चेहरे और मोहरे भर हैं? खबर को आगे बढ़ाने से पहले एक आरोपी की बात आपको सुनाएंगे, जिसके सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। और इस बीच नीट पेपर लीक मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नासिक से शुभम खैरनार, जयपुर से मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और गुरुराम से यश यादव। जानकारी के मुताबिक शुभम खैरनार को पुणे में किसी से पेपर मिला, उसने गुरुग्राम के यश यादव को पेपर पास किया। यश ने जयपुर के बिवाल भाइयों को पेपर दिया। बिवाल परिवार का एक सदस्य सीकर में नीट की परीक्षा दे रहा था, उसे पेपर दिया गया, यहां से ही आगे सर्कुलेट हुआ। तो किस तरीके से नेटवर्क काम कर रहा था ये आप देखिए। एक ही परिवार के 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूरा का पूरा परिवार इसमें शामिल था। शुभम खेरा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसने यश यादव को पेपर दिया, उसके बाद यश यादव ने मांगीलाल और दिनेश बिवाल को पेपर दिया और ये आगे बेटे को देने के अलावा सीकर में कई लोगों को बेचा गया। शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, क्या नई डिटेल्स, क्या नए खुलासे हो रहे हैं इस लीक मामले में?
1: देखिए, नए खुलासे में यह है कि सीबीआई का ऐसा मानना है कि जो पेपर निकला है हार्ड कॉपी, वो पुणे के आसपास से निकला है और इस बार फोकस जो करना है कि नेटवर्क तलाशना है, ना कि किन किन लोगों ने पेपर खरीदा। तो जिन जिन उन्होंने पेपर लिया था वो करीब 45 लोग हिरासत में थे, उन सबको सीबीआई ने छोड़कर केवल 5 लोगों को लेकर गए हैं दिल्ली। और इनका ऐसा मानना है कि हो सकता है कि एनटीए कोई ना कोई लूप होल रहा हो, जिसके लिए वो एनटीए के दफ्तर भी कल पहुंचे थे। ये पुराना नेटवर्क है। देखिए, कहा जा रहा है कि दिनेश हुए या मांगीलाल हुआ या उसका बेटा विकास हुआ, ये कोई इस साल नहीं किए हैं। ये मानना है कि एक पुराना नेटवर्क है जो पिछली बार जांच के दौरान नहीं पकड़ में आया था, उसे इस बार खंगाला जा रहा है। और ऐसा मानना है सीबीआई कि इस बार ये नेटवर्क टूट जाएगा। इसके बिहारी जो बिहार के जो गैंग जा पिछली बार था वो उन्होंने बताया था कहां से पेपर लीक किया, उस शायद सही नहीं बताया होगा। तो उस गैंग को भी एक्टिव जो रखे हुए थे बिहार वाले, उसको भी तलाश किया जा रहा है। इन कुल मिलाकर माना जा रहा है कि इस बार जिस तेजी से जांच बढ़ रही है, जल्दी ही नतीजों पर पहुंचा जाएगा और इस नेटवर्क का खुलासा हो जाएगा। जो राजस्थान से पकड़े गए हैं, ऐसा मानना है कि ये एक नेटवर्क का छोटा सा हिस्सा है जो आपको सुनाई भी देगा जब वो कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं। तो उनमें से जो दिनेश है वो चिल्ला रहा है कि हम तो छोटे हैं, बड़े लोगों तो पहुंचो। बड़े लोग कौन है? उन बड़े लोगों तक क्या सीबीआई पहुंच पाएगी? वो बड़े लोग कौन बैठे हैं, ये बड़ा सवाल हो। वो जाते जाते जब वो पेश किया जा रहा था जज साहब के यहाँ, तो बोलकर गया है,
0: ठीक है।
1: तो वो बड़े लोग कौन है उसकी तलाश जारी है कि पेपर असली में निकला कहां से।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच महाराष्ट्र और जयपुर से इसके तार जुड़ रहे हैं। जयपुर का पूरा बिवाल परिवार इस वक्त चर्चा में है, इनके 4 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए किस तरीके से पूरे गैंग और नेटवर्क से जुड़ा हुआ था।
2: मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, जयपुर के जम्बारागढ़ के इन दो भाइयों का नाम आज देश भर के लोगों की जुबान पर है। वजह, नीट पेपर लीक कांड। नीट पेपर लीक की जांच में अब तक जो खुलासा सामने आया है, उसने जम्बारामगढ़ का बिवाल परिवार चर्चा में आ गया है। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि 2025 में परिवार के 4 बच्चे नीट में सेलेक्ट हुए और इस साल एक और बच्चे ने नीट का पेपर दिया और उसी के लिए मांगीलाल और दिनेश बिवाल ने गुरुग्राम के यश यादव से 30 लाख रुपए में लीक पर्चा खरीदा था। मांगीलाल और दिनेश गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि नीट की पेपर देने वाला परिवार का बच्चा अंडरग्राउंड है। इस खुलासे के बाद सवाल उठ रहा है कि बीते साल परिवार के 4 बच्चों का नीट में पास होना महज इत्तफाक है या फिर चारों का सिलेक्शन पेपर लीक की वजह से हुआ था। आज तक संवाददाता शरद कुमार जब जम्वारामगढ़ में पेपर लीक कांड में गिरफ्तार बिवाल परिवार के घर पहुंचे, तो मुलाकात आरोपी दिनेश की पत्नी रजनी और उनके केयरटेकर से हुई। रजनी ने आज तक के कैमरे पर कबूल किया कि 4 बच्चों ने पिछले साल नीट की परीक्षा पास की थी।
3: पिछले साल भी नीट में पास हुए हैं?
4: हाँ हुए ना।
3: कितने लोग?
4: चार लोग।
3: चार लोग?
4: हाँ।
3: तीन लड़कियां और एक लड़का?
4: हाँ।
3: वो किसके थे?
4: ये मेरी बहन के और मेरे जेठ के।
3: मंगीलाल जी के?
4: हाँ।
3: उनको भी साथ में ले गए हैं दिनेश के?
4: कहाँ?
3: यशो जी?
4: मुझे पता नहीं है मैडम।
3: वो भी, वो उनसे कब मिली थी आप?
4: मुझे पता ही नहीं है कब मिली थी मैं तो।
2: दिनेश बिवाल और उसका बड़ा भाई मांगीलाल नीट पेपर लीक कांड से जुड़े अहम किरदार हैं। आरोपी दिनेश की पत्नी रजनी ने आज तक के कैमरे पर कबूल किया कि बीते साल हुई नीट की परीक्षा में परिवार के चार बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जबकि इस साल सीकर में नीट की तैयारी कर रहे परिवार के एक अन्य सदस्य ने परीक्षा दी थी। हम उसका नाम और पहचान नहीं बता रहे क्योंकि वो नाबालिग है। पेपर लीक के खेल से बिवाल परिवार का कनेक्शन क्या है, समझने से पहले बिवाल परिवार की ये कुंडली देखिए। बिवाल परिवार में तीन सगे भाई हैं, मांगीलाल, घनश्याम और दिनेश। मांगीलाल बीते साल हुई नीट परीक्षा और इस साल हुई नीट परीक्षा का आरोपी है। बीते साल मांगीलाल की बेटी प्रगति और बेटे विकास ने नीट की परीक्षा पास की, तो वहीं घनश्याम की दो बेटियों यानी पलक और सानिया ने भी नीट का एग्जाम क्लियर किया। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। इस साल भी बिवाल परिवार के एक बेटे ने नीट की परीक्षा दी थी। घनश्याम की मौत हो चुकी है, जबकि मांगीलाल, दिनेश और विकास नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार हो चुके हैं।
5: नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान का मुख्य आरोपी दिनेश बिलाव और मांगीलाल बिलाव का घर है ये जमुआ रामगढ़ में, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ी के नीचे है और ये फार्म हाउस टाइप का बना रखा है। दिनेश एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था, ये यश से गुड़गांव से 30 लाख में पेपर खरीद कर लाया था। मगर सबसे बड़ी बात है कि जो मांगीलाल अरेस्ट हुआ है, बड़ा भाई दिनेश का, वो पिछली बार पेपर ले आया था और मांगीलाल के बेटे और घर के और तीन लड़कियां उसके बहनों के यानी चार बच्चे नीट 2025 में भी पास हुए हैं। इसीलिए ये पूरा जो खुलासा हो रहा है नेटवर्क का, ये बड़ा नेटवर्क है और पिछले साल भी जा रहा है। इसी के जरिए पूरे देश में यहाँ पर सीकर से ये पेपर फैला है और आखिर में ये स्थिति हो गई थी कि पैसे कमाने के लालच में ये पीडीएफ को डाउनलोड करके और प्रिंट आउट कराकर 5,000 से 10,000 में भी बेचने लगे थे।
2: ये कोठी पेपर लीक कांड में गिरफ्तार मांगीलाल और दिनेश की है। दोनों भाइयों पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। मांगीलाल और दिनेश से पूछताछ में पेपर लीक सिंडिकेट के एक एक राज उगलवाने में जांच एजेंसियां जुटी हैं। जांच एजेंसियां दिनेश के जरिए पेपर लीक के काले खेल से जुड़े बड़े बड़े चेहरों को बेनकाब करना चाहती हैं। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, एक ही परिवार के चार बच्चों का पिछले साल सिलेक्शन होना अपने आप में दर्शाता है कितने लंबे वक्त से पूरा परिवार ये धांधली कर रहा था, पूरे नेटवर्क में शामिल था, कितना आसान था उनके लिए पेपर लाना, उसका जुगाड़ करना।
1: नेहा, कहानी थोड़ी और आगे बढ़ गई। आज पता चला है कि चार नहीं पांच है, क्योंकि एक पोस्ट मिला है उसका जो 6 नवंबर 2025 का किया था। उसने कहा था कि मेरे परिवार के पांच बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन चूंकि वो पांचवा रिश्तेदार था इसलिए जमुआ रामगढ़ में किसी को पता नहीं था। तो निश्चित रूप से ये तो अब सीबीआई और एसओजी ने एक तरह से एस्टेब्लिश कर लिया है कि ये नेटवर्क के हिस्सा थे और पहले से इस नेटवर्क में काम कर रहे थे। इसको दिल्ली लेकर गए हैं कि बाकी दूसरे जगहों से जो लोगों को पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है, उन सबको आमने सामने बैठाकर उस कड़ी तक पहुंचा जाएगा जहां से ये हार्ड पेपर निकला है। अभी 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था जिन्होंने ये पेपर लिए थे या पेपर से पढ़ा था, तो परीक्षा खत्म हो गई है। अब ज्यादा अपना ध्यान वहां पर लगाकर खराब नहीं करना चाहती है वक्त सीबीआई, इसलिए सिर्फ पांच लोगों को लेकर गई है दिल्ली। दिल्ली में आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और बाकी जो देश भर में गिरफ्तारियां होगी उस सबको दिल्ली में ही लाकर इस बार जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार सीबीआई बहुत जल्दी इस नेटवर्क का खुलासा कर देगी, जितनी तेजी से ये जांच को लिया गया है और जितनी तेजी से ये जांच हुई है। अब वो उसमें क्या निकलता है, कल एनटीए से भी उन्होंने बहुत सारे हार्ड डिस्क वगैरह लेकर आए हैं जिसकी जांच चल रही है, क्या एनटीए से भी कोई अंदर से व्यक्ति है जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को पास कर रहा था। तो अब ये पूरा फोकस जो है दिल्ली में सीबीआई की एक्सपर्ट टीम जांच करेगी। और जी
0: ठीक है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। नीट पेपर लीक कांड में महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। अहिल्या नगर के धनंजय लोखंडे नामक शख्स जांच के दायरे में अब आ चुका है। साने क्राइम ब्रांच ने धनंजय लोखंडे को पूछताछ के लिए पकड़ा है। उसके कॉल डिटेल्स भी अब खंगाले जा रहे हैं, किस तरीके से उस नेटवर्क पे इन्वॉल्व था। धनंजय से अब पूछताछ की जाएगी कि उसका क्या रोल था इस पूरे नीट पेपर लीक मामले में।

0: और अब बात दिल्ली की, जहां पर ब्रिक्स के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चले लंबे युद्ध और वहां जारी तनाव के बीच ये पहला मौका है जब कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन के दौरे पर है। तकरीबन एक घंटे बाद दिल्ली में ब्रिक्स का यह सम्मेलन शुरू हो जाएगा। सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। भारत मंडपम में इसका आयोजन हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के तनाव के बीच पहली बार ऐसा कोई सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। और इस आयोजन में शामिल होने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची और अन्य देश के विदेश मंत्री भी शिरकत करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव भी एक दिन पहले यहां पहुंचे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी नई दिल्ली सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 3 दिवसीय राष्ट्रीय यात्रा पर बीजिंग में है। तो वांग यी वहीं रहेंगे। चीन की ओर से भारत में वहां के राजदूत शी फेई होंग बैठक में भाग लेंगे। सुबह करीबन 10 बजे सभी विदेश मंत्री भारत मंडपम पहुंचेंगे। उसके बाद 10:30 बजे से पहले सत्र की शुरुआत हो जाएगी। सभी विदेश मंत्री दोपहर 1 बजे सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव बैठक का मुख्य चर्चा का विषय रहने वाला है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ये सम्मेलन काफी अहम है क्योंकि इसमें ईरान, सऊदी अरब और यूएई भी शामिल हो रहे हैं। ईरान चाहता है कि भारत ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल को रोकने के लिए अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाए। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, ईरान अमेरिका युद्ध के तनाव के बीच ऐसा सम्मेलन होना जाहिर तौर पर चर्चा का प्रमुख विषय, ईंधन, उसकी आपूर्ति, कैसे उसके बढ़ते दाम पूरे विश्व को प्रभावित करें, यही रहने वाला है।
1: निश्चित रूप से नेहा, ये एक ऐसे समय पर सम्मेलन हो रहा है ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का जिस समय दुनिया भर के अंदर एक आर्थिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बीते करीब 75 दिनों से के ज्यादा वक्त से बंद इस समय है। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति जो है वो प्रभावित हो रही है और इसीलिए भारत जो कि इस समय अध्यक्षता कर रहा है ब्रिक्स की, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे और इसका जो विषय रखा गया है वो बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी रखा गया है। ब्रिक्स को भारत ने इस तरीके से डिफाइन किया है जहां पर किस तरीके से रेजिलिएंट तरीके से ब्रिक्स के जो साझेदार देश हैं, 10 देश हैं, वो सहयोग कर सकते हैं और आर्थिक साझेदारी के अंदर किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, कैसे सहयोग को बढ़ाया जा सकता है और जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची भी पहुंच चुके हैं और यूएई के, क्योंकि सबसे ज्यादा माना जा रहा था कि इसी चीज को लेकर तनाव बना हुआ है, शाहीन खलीफा अल मरार जो है यूएई के विदेश राज्य मंत्री हैं वो भी इस के अंदर शिरकत करने के लिए आए हैं और माना जा रहा है कि एक जॉइंट स्टेटमेंट को लेकर कवायद चल रही है कि एक जॉइंट स्टेटमेंट लेके आया जा सके जिसके अंदर राजनीतिक जो विवाद हैं, राजनीतिक जो मतभेद हैं उनको दरकिनार करते हुए सभी देश जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं वो आए। और आप देखिए कि ये एक ऐसा रोचक समय है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि ब्रिक्स को जो है काफी भला बुरा कह चुके हैं, उसकी काफी आलोचना कर चुके हैं, वो इस समय ब्रिक्स के ही सदस्य देश चीन के में मौजूद हैं। चीन के विदेश मंत्री भले ही ना आ पाए हों लेकिन चीन के राजदूत चीन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस ब्रिक्स की बैठक के अंदर और ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण ग्रुपिंग है जो कि दुनिया की 55% आबादी और दुनिया की करीब 41% जो अर्थव्यवस्था है उसका प्रतिनिधित्व करती है और इस लिहाज से भारत की अध्यक्षता में हो रही ब्रिक्स की ये बैठक महत्वपूर्ण है। अगले 2 दिनों तक ये बैठक चलनी है, आज कई सत्र होंगे और साथ ही ब्रिक्स के विदेश मंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एक कॉल ऑन मीटिंग करेंगे इस यात्रा के दौरान, इस प्रवास के दौरान।
0: बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे की। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जिनपिंग ने ट्रंप का स्वागत किया। इस दौरान ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। बैठक की शुरुआत में जिनपिंग ने कहा कि पूरी दुनिया इस बैठक पर नजर लगाए हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और अमेरिका चीन के रिश्ते वैश्विक स्थिरता के लिए बेहद अहम है। जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार बनना चाहिए। वहीं ट्रंप ने जिनपिंग की तारीफ करते हुए कहा, आपका दोस्त होना सम्मान की बात है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन के रिश्ते पहले से बेहतर होने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी नेताओं को अपने साथ लेकर चीन आए हैं। ट्रंप के प्रतिनिधिमंडल में एलन मस्क, एप्पल के सीईओ टिम कुक और बोइंग सीईओ समेत कई बड़े अमेरिकी कारोबारी शामिल हैं। बैठक में व्यापार, टैरिफ, सेमीकंडक्टर, एआई, रेयर अर्थ मिनरल्स और ताइवान जैसे मुद्दों पर चर्चा की संभावना है।
2: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
0: और अब बात प्रतीक यादव की मौत को लेकर उठ रहे सवालों की करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शरीर में खून का थक्का बनने के बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ है जिससे उनकी मौत हुई, लेकिन शरीर पर मिले चोट के छह निशान से रहस्य गहरा गया है। रिपोर्ट में क्या लिखा है, आइए विस्तार से समझते हैं। प्रतीक यादव के शरीर में चोट के छह निशान है, छह जगह चोट लगी और सभी चोट मौत से पहले लगी है। अब इंजरी हुई है, उस वक्त प्रतीक यादव जिंदा थे, मौत के बाद कोई इंजरी नहीं हुई है। जहां जहां इंजरी हुई है वो बता देते हैं आपको। दूसरी चोट दाहिने बांह के पीछे, कई दिन पुरानी चोट का आकार लगभग 19 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर और ये 5 से 7 दिन पुरानी चोट बताई जा रही है, यानी कि एक हफ्ते पुरानी चोट है। चोट नंबर 3 दाहिने फोरआर्म के नीचे कोहनी से कलाई तक का आकार है और इसका आकार लगभग 24 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर है और ये चोट भी 5 से 7 दिन पुरानी बताई जा रही है। चोट नंबर 4 दाहिना फोरआर्म कोहनी से 15 सेंटीमीटर नीचे का आकार, 6 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर इसका आकार है और ये नई चोट मालूम पड़ती है, यानी कि ये ताजा चोट है। वहीं आगे तमाम जो चोटें हैं उस पर अब शोध किया जा रहा है। चोट नंबर 5 दाहिनी कोहनी के पीछे एल्बो जॉइंट का हिस्सा है, यहां पर इसका ये आकार है 12 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर और ये एक दिन पुरानी चोट बताई जा रही है। तो छठी चोट जो है वो बाएं कलाई के ऊपर है, बाएं हाथ पर छोटी चोट का आकार ये 3 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का है और ये एक दिन पुरानी चोट बताई जा रही है। तो हमारे पास पूरी रिपोर्ट भी है, ये भी बताते हैं कि कहां कहां चोट के निशान मिले हैं, ये हमने आपको दिखा दिया है। और अब बात करते हैं कि सभी मौत से पहले की चोट है, लगभग 5 से 7 दिन पुरानी और इसी को लेकर अब सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार ये चोट लगी कैसे है। चोट के वक्त व्यक्ति जीवित था, यानी कि प्रतीक यादव उस वक्त जीवित थे। मृत्यु के बाद कोई चोट नहीं लगी है और मृत्यु से चंद घंटे पहले भी कोई चोट नहीं है। कुछ चोटें 7 दिन पुरानी बताई जा रही हैं, डॉक्टर्स ने उनको देखा है, परखा है, उसके बाद ये कहा है कि 7 दिन पुरानी ये चोट है। अब प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स को मौत की वजह बताया जा रहा है, यानी कि शरीर में खून का थक्का जमना। ऐसे में फेफड़ों में खून के थक्के फंस गए थे, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ है। फेफड़े में खून का प्रवाह फंस गया था और यही वजह बनी, हृदय और फेफड़े ठप पड़ गए जिसके बाद कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो गया। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, एक बात जो सबसे ज्यादा संशय पैदा करती है कि शरीर पर अलग अलग जगहों पर 6 चोट के निशान हैं, सबकी जो समय सीमा है वो लगभग 5 से 7 दिन बताई जा रही है और कुछ चोट के निशान काफी बड़े हैं, ये मारपिटाई से हुए हैं या फिर वो कहीं गिर गए थे, क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं, क्योंकि कुछ चोटों को देख के पता लगाया जा सकता है कि वो कैसे पड़ी है।
3: बिल्कुल नेहा, देखिए जिस तरीके से ये पूरा चोटों के निशान आए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, वो जरूर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आखिर उन आखिरी 7 दिनों में क्या हुआ था प्रतीक यादव के साथ। और जो चोटें 7 दिन पुरानी है वो उनके अगर चेस्ट है, कोहनी है, एल्बो है और इसके अलावा जो अन्य पैर की जगह पर वहां पर चोटें आई हैं, तो इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं वो या तो ये चोटें किसी वजह से आई हैं जिसको लेकर अब डॉक्टर भी आगे बता पाने में अभी थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन ये तो साफ है कि वो चोटें लगी और 7 दिन पुरानी है, यानी कि 7 दिन पुरानी कोई ऐसी घटना उनके साथ हुई है जिसकी वजह से वो चोटें आई हैं। अब गिरने के जो घाव होते हैं वो काफी कम होते हैं, लेकिन जो चोटों के निशान है वो काफी गहरे हैं। तो इस बारे में भी कहीं ना कहीं घर के लोग और वो तफ्तीश अभी चल रही है एक तरीके से, लेकिन ये तो साफ है कि एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि आखिर वो 3 चोटें जो फ्रेश हैं, जो तकरीबन 1 दिन पुरानी हैं, जो एल्बो और बाएं चेस्ट पर हैं, वो तो चलो माना जा सकता है कि वो गिरने से आ सकती हैं, लेकिन जो 7 दिन पुरानी चोटें हैं वो किस वजह से आई हैं और वो भी गहरी हैं। तो इस बारे में भी अब चूंकि अभी घर के लोग क्रिमिनेशन में बिजी हैं, अभी सारी चीजें पुलिस उस तरीके से तफ्तीश नहीं कर पा रही है। इस बारे में डॉक्टर्स भी जो रिपोर्ट्स आई है उन्होंने केवल रिपोर्ट सबमिट की है, तो ये जरूर बात सामने आनी है कि उन 7 दिनों में प्रतीक के साथ क्या हुआ, चूंकि ज्यादातर वो समय घर पर रह रहे थे, उनका ऑपरेशन हुआ था उसके बाद घर पे थे और इससे पहले वो किसी से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था, और घटना के दिन भी अपर्णा यादव जो कि बाहर थी और वो लौटती हैं 2 बजे, तो उन दिनों में उनके दोस्त उनके साथ में थे, उनके अपने थे और वो ही मिलते थे जिनको वो जानते थे। तो उन पलों में चूंकि इससे पहले जो हमने वीडियोज देखे कुछ फैमिली इश्यूज के वो भी सामने आए थे, तो ऐसे कई चीजें हैं, तो अभी कुछ एकदम से कह पाना कि वो चोटें कैसे आई हैं थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये तो जरूर है कि ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है उन सभी के लिए जिनके पास ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, और जो भी घर के लोग परिवार के लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि ये चोटें।
0: बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से महाराष्ट्र तक मौसम की है। धूल भरी आंधी और आकाशीय बिजली और तूफानी बारिश की वजह से कई शहरों देखते ही देखते हर तरफ तबाह। यूपी से महाराष्ट्र तक मौसम की है। धूल भरी आंधी और आकाशीय बिजली और तूफानी बारिश की वजह से कई शहरों में दर्दनाक मौत हुई है। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड के में अचानक मौसम बदला और देखते ही देखते हर तरफ तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी। अलग अलग शहरों से करीब 54 लोगों के मारे जाने की खबर है। पश्चिमी हिस्सों पर बने चक्रवाती परिसंचरण और दक्षिणी राजस्थान से आ रही पूर्वा हवा से कई जिलों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से आंधी चली। भदोही में 11 की जान चली गई, कानपुर में 1, हरदोई में 2, प्रयागराज में 16, फतेहपुर में 9, कौशाम्बी में 1 और मिर्जापुर में 10 लोगों की जान गई है। 6 तस्वीरें आपके सामने। आकाशीय बिजली गिरने से, कहीं पर दीवार गिरने से, पेड़ गिरने से, ये तमाम मौतें हुई हैं। और अगली खबर का सरोकार आपकी जेब से है, क्योंकि आज से अमूल दूध के दाम में 2 रुपए का इजाफा हो गया है। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम में 2-2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। पंजाब के वेरका में भी इसी तर्ज पर दूध की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। कितना महंगा दूध हुआ है ये आपको दिखा देते हैं। वेरका, मदर डेयरी और अमूल तीनों कंपनियों ने 2-2 रुपए की बढ़ोतरी की है।
4: दूध के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। देश की बड़ी डेयरीज ने एक बार फिर से दूध के दाम जो है 2 रुपए प्रति लीटर के करीब बढ़ा दिए हैं। वहीं भैंस का जो दूध है बफेलो मिल्क, वो करीब 4 रुपए लीटर बढ़ गया है। क्या असर हुआ है, किस तरीके से ग्राउंड पर इफेक्ट पड़ा है, इससे बात करने के लिए कुछ लोग हैं। सर, दूध के दाम 2 रुपए लीटर बढ़ा दिए गए हैं, कैसे देख रहे हैं, कितना असर पड़ेगा घर के बजट पर इससे?
5: सर, घर के बजट में तो हर चीज में दाम बढ़ते जा रहे हैं, दूध नहीं बढ़ा है। एक नॉर्मल आदमी जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है और दिन पर दिन आप इनकम तो वही लिमिट है, मगर एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा हम मिडिल क्लास लोगों को।
6: हमारे सेहत पे तो बहुत ही असर पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे को दूध तो चाहिए ही चाहिए। घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो दूध तो चाहिए चाहिए, चाय के लिए, पानी के लिए। जो आदमी 200 रुपया कमा रहा है, अभी 300 रुपया खर्च है इंसान का, और ऊपर से और जैसे 2 रुपए और बढ़ गए तो बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे।
4: जैसा कि आपने सुना, कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं जिस तरीके से दूध की दरों में बढ़ोतरी की गई है। कहीं ना कहीं ये एक सिग्नल भी है कि आगे आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ भी सकती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आह्वान भी किया है कि थोड़ा पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, थोड़ा सोना खरीदना कम करें, फॉरेन टूर्स कम करें, तो कहीं ना कहीं जनता में भी एक पैनिक की सिचुएशन जो है आप देख सकते हैं, एक घबराहट की सिचुएशन है जो देख सकते हैं। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से ये पूरी मध्य पूर्व की जंग चल रही है, क्या ये अंत हो पाती है, और कहीं ना कहीं भारत की जनता जो है जो अब महंगाई की तरफ बढ़ रही है, क्या किस तरीके से इस पे कंट्रोल आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट इमानुएल के साथ अंशुल सिंह, आज तक।
0: तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

को बताया, महानेता बोले हम मिलकर दुनिया बदलेंगे। दिल्ली में आज से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, मिडिल ईस्ट तनाव और ऊर्जा संकट पर हो सकती है बात, पीएम मोदी भी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। ऊर्जा संकट के बीच कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी का सख्त संदेश, कम से कम गाड़ियों के इस्तेमाल की नसीहत, वाहन खरीद पर गाइडलाइन जारी, दो गाड़ियों तक सिमटा प्रधानमंत्री का काफिला। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए की संदिग्ध भूमिका पर देश भर में हल्ला बोल, सुप्रीम कोर्ट में याचिका, अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार, जयपुर से महाराष्ट्र तक जुड़े तार। आंधी और बारिश और बिजली गिरने से कई राज्यों में भारी तबाही, यूपी में करीब 54 की मौत, झारखंड राजस्थान में भी बिगड़े हालात।

सीबीआई में नीट पेपर लीक मामले में देश भर में छापेमारी की, 5 को किया गिरफ्तार। आरोपी ने दावा किया कि मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग की। विपक्ष ने पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर कड़ी कार्रवाई का दबाव बनाया। अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं ने परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई। केजरीवाल ने कहा कि जेनजी जवाबदेही तय करने के लिए बड़ा दबाव बना सकती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो को नासिक से गिरफ्तार आरोपी शुभम खेरनार की 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली। जांच एजेंसियां अब नेटवर्क और पेपर लीक के पूरे रैकेट की पड़ताल कर रही हैं। फाइमा ने नीट पेपर लीक मामले में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केरल के एक एमबीबीएस छात्र पर भी गेस्ट पेपर भेजने के आरोप सामने आए। जांच जारी। कांग्रेस आज केरला में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। सीएलपी बैठक में फैसला संभव। दीपा दास मुंशी आज की बैठक में केरल के नए मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा कर सकती हैं। असम कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को मंजूरी दे दी है। हिम्मत शर्मा ने बताया कि आदिवासी समुदाय यूसी के दायरे से बाहर रहेंगे। 26 मई को पेश होगा बिल। प्रवीण सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर पद पर 1 साल के लिए सेवा विस्तार दे दिया गया है। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक का आज अंतिम संस्कार, कल लखनऊ में हुआ था निधन। केजीएमयू में प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम 4 डॉक्टर्स के विशेष पैनल ने किया। दौरान फोरेंसिक टीम और एक एसडीएम स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ों की नसों में खून का थक्का जमने की वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिससे मौत हुई। प्रतीक यादव के लखनऊ से आवास के बाहर लोगों का जमावड़ा शुरू। कन्नौज दावा समेत कई जगहों से समर्थक जुटे। शुभचिंतक अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शोक संवेदना व्यक्त करने आवास पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या 17 से घटाकर 2 कर दी। सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव। नीतीश कुमार समेत बिहार सरकार के मंत्रियों ने अपने काफिले की संख्या कम करने का फैसला किया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने भी काफिले में कटौती की पहल की है। नितिन गडकरी ने अपने काफिले का आकार 50% तक घटाने का निर्णय लिया है। भूपेन्द्र पटेल और राज्य सरकार के मंत्रियों ने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का फैसला किया है। अमूल के बाद मदर डेयरी ने कीमतों में बढ़ोतरी कर उपभोक्ताओं पर असर डाला है। मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए। नई दरें आज से हुई लागू। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद सोना 8,550 रुपए और चांदी 20,500 रुपए महंगी हो गई है। बाजार में तेजी देखी गई। सोने की कीमत 1,65,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंची। निवेशकों में हलचल बढ़ गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 95.8 के स्तर तक गिरा। करेंसी बाजार के दबाव बना रहा। नरेंद्र मोदी 15 मई से 5 दिवसीय 5 देशों की विदेश यात्रा पर जाएंगे। कई अहम बैठकों का कार्यक्रम तय। पहला पड़ाव संयुक्त अरब अमीरात में ऊर्जा और व्यापार सहयोग पर होगी उच्च स्तरीय चर्चा। इटली, नेदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन की यात्रा भी पीएम के कार्यक्रम में शामिल है। संजय बल्होत्रा ने चेताया पश्चिम एशिया संकट लंबा खींचने पर ईंधन महंगा हो सकता है। स्विट्जरलैंड कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने कहा सरकार राजकोषीय मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रही है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक आज दिल्ली में शुरू हुई, जिसमें कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। बैठक में ऊर्जा संकट पर चर्चा की जा रही है। ईरान ने ब्रिक्स देशों से अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई की निंदा करने का आग्रह किया। संयुक्त अरब अमीरात के साथ बैठक में मतभेद सामने आने की खबर। भारत ने ब्रिक्स बैठकों में संयुक्त बयान जारी करने की पहल की, इसके बावजूद सदस्य देशों में मतभेद बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे, शी जिनपिंग से की मुलाकात। इस मुलाकात में ईरान युद्ध, व्यापार और ताइवान को लेकर अमेरिकी नीतियों पर चर्चा संभव। छतरपुर के आदिवासी किसानों ने पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव करते भगाया तोड़ी गाड़ियां। नागपुर के झिल्पी तालाब में डूबने से 2 युवकों की गई जान। ललितपुर में नशे में धुत स्कॉर्पियो कार ने बाइक और राहगीरों को कुचला, 2 की मौत, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। चोटिला राजकोट हाईवे पर डंपर के साथ बस की टक्कर में 4 की मौत, 10 घायल। खगड़िया में पिता की मौत से आहत बेटे ने किया मां पर हमला, आरोपी गिरफ्तार। पटना में दिन दहाड़े सीएमएस कैश वैन से 27 लाख की लूट। वारदात के बाद इलाके में सनसनी, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। अलीगढ़ पुलिस ने नकली नोट के बड़े अंतर्राज्य गैंग का भंडाफोड़ कर 4 आरोपियों को दबोचा। छापेमारी में लाखों रुपए की फर्जी करेंसी बरामद। पुणे के अस्पताल परिसर में संदिग्ध बम मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध सामग्री को सुरक्षित निष्क्रिय कर इलाके को कराया खाली। हनुमानगढ़ में भीषण आग लगने से 2 घर जलकर खाक, 2 महिलाएं, 4 मवेशी झुलसे। दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नुकसान का आकलन जारी। कोटा में सीएमएचओ कार्यालय के पीछे खड़ी कबाड़ एम्बुलेंस में लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। दिल्ली में स्लीपर बस में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात। बस के ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार, बस भी जब्त।
दिल्ली के कंझावला इलाके में सिर्फ फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी, मौके पर दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान की भिवाड़ी में फाइबर फैक्ट्री में आग, दूर तक दिखी लपटें और धुआं, सभी कर्मचारी सुरक्षित। गुजरात के पाटन में कबाड़ गोदाम में आग, गैस वेल्डिंग की चिंगारी से हादसे की आशंका। खेड़ा के सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स में वड़ा पाव की दुकान में आग, घरेलू सिलेंडर से बड़ी आग की लपटें। गुजरात हाईकोर्ट में सेवानिवृत्त और कार्यवाहक न्यायाधीश जस्टिस वीरेन अनिरुद्ध वैष्णव गुजरात के नए लोकायुक्त नियुक्त, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 72 IAS अधिकारियों का तबादला। अहमदाबाद सूरत समेत 17 जिलों के कलेक्टर बदले गए। करनाल में सिंगर दलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। दलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर बाहर हुई फायरिंग को लेकर सियासी घमासान, आपका बीजेपी पर बड़ा हमला, का राजनीति में आने के लिए बनाया जा रहा है दबाव। हापुड़ में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, तालाब की भूमि पर बने समाजवादी विधायक के मकान पर चला बुलडोजर। यूपी में आंधी तूफान ने मचाई भारी तबाही, आंधी पानी की चपेट में आने से अलग अलग जिलों में अब तक 54 लोगों के मारे जाने की खबर। आंधी तूफान के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान और टिन शेड उड़ गए, फसलों को भारी नुकसान। तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे कई जगह बिजली की आपूर्ति बाधित। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव काम शुरू किया, जिलाधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश। यूपी के भदोही में बुधवार को आए भीषण आंधी तूफान के कारण 15 की मौत, 8 लोग घायल, 6 मवेशियों की जान गई। उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ प्रयागराज में बुधवार शाम आई धूल भरी आंधी तबाही से ताजा आंकड़ों के मुताबिक 16 लोगों की मौत। मिर्जापुर में तेज आंधी बारिश ने खूब मचाया कहर, अलग अलग हादसों में 10 की गई जान, 30 से ज्यादा लोग घायल। फतेहपुर में तेज आंधी तूफान का कहर, अलग अलग थाना क्षेत्र में 9 की मौत, कई घायल, पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा SDM ने दिया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बुधवार को आई आंधी तूफान ने दो परिवारों की छीनी खुशियां, अलग अलग हादसों में 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत। कौशाम्बी में तेज आंधी के बाद घरों में लगी भीषण आग, 12 परिवारों की गृहस्थी जलकर राख, एक भैंस की जलकर मौत, लाखों रुपए का नुकसान। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जलंधर BSF कैंप ब्लास्ट को लेकर यह खबर आ रही है, ID ब्लास्ट करने वाला आरोपी पकड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी पंजाब का रहने वाला है। ID ब्लास्ट करने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो हैरानी भरा है। आरोपी ने ID में अपना सिम कार्ड लगाया हुआ था, आरोपी ने उसी नंबर पर कॉल किया जिससे ID ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी है। सूत्रों के मुताबिक ID में इस्तेमाल विस्फोटक आरोपी ने बॉर्डर एरिया से मौजूद किसी शख्स से लिया। विस्फोटक देने वाले आरोपी की तलाश अब जारी है।

0: पंजाब का रहने वाला है, ब्लास्ट का आरोपी जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया वो बेहद हैरानी भरा है। आपको याद होगा आपसे कुछ दिन पहले जलंधर बीएसएफ कैंप पर ये ब्लास्ट हुआ था। अरविंद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरविंद, आरोपी से जुड़ी क्या जानकारी मिल रही है?
1: देखिए, ये जलंधर ब्लास्ट हुआ था बीएसएफ कैंप के बाहर, जिसको सुलझा लिया गया है। और जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि जो मेन आरोपी था जिसने आईडी ब्लास्ट किया था उसको पंजाब पुलिस ने पकड़ लिया है। अब वो आरोपी जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता है, गैंगस्टर आतंकी शहजाद भट्टी, उससे जुड़ा हुआ था और उसी के इशारे पर इस आईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से इस आईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, जब आरोपी ने इसका खुलासा किया उसके बाद एजेंसी भी हैरान रह गई। दरअसल ये जो आरोपी है इसने आईईडी में एक सिम लगाया हुआ था और उसमें जब उसने कॉल किया उसके बाद आईडी ट्रिगर्ड किया और उसके बाद ये बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसका सीसीटीवी सामने आया था, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ब्लास्ट हुआ था। तो एक आरोपी पकड़ लिया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि जो बॉर्डर एरिया है पंजाब पाकिस्तान का, वहां से इसे विस्फोटक मिला था जिससे इसने आईईडी बनाया था। अब जिन लोगों ने यह विस्फोटक दिया है उसको तलाश कर रही है एजेंसीज, लेकिन ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। जिस तरह से बीएसएफ कैंप के बाहर 5 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी और आईडी धमाका हुआ था, उसमें जो मेन आरोपी है उसको पुलिस ने पकड़ा है। नेहा,
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना, फिर से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। टिकते रहिए आज तक।
2: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
3: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
4: Ba-da-ba-ba-ba.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
7: So they were disallowed from speaking their language.
6: In-depth conversations with A-list celebrities.
8: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
6: True crime podcasts you just can't stop listening to.
9: Others escape justice to live and die in infamy. These
6: plus the news and sports content you crave in podcast form.
10: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
6: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
5: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
11: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
5: to live sports action.
12: To the near side corner, to wrap around, he scores!
5: And your favorite music.
13: You and I start guessing.
5: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits.
15: Maybe I tried to
6: But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Character, the taste of success.
15: Like I said before, we better own the sins.
16: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK.
17: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
18: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
19: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.
20: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है.
21: Take a date, not bites.
22: No added sugar, preservative के बिना. Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया. Lion Dates Nut Bites.
21: Lion Date Nut Bites.
23: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिए.
24: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही.
25: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए.
26: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
2: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
3: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
2: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
2: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे।
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
7: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
8: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
7: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
9: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
6: जहाँ खबर वहाँ खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
10: इन एसोसिएशन विद
11: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
12: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

पेपर लीक मामले की तफ्तीश राजस्थान से महाराष्ट्र तक चल रही है। उधर विद्यार्थी संगठन आग बबूला है। कांग्रेस के एनएसयूआई तो छोड़िए, बीजेपी की एबीवीपी भी सड़कों पर है, मगर आंदोलन में फर्क है। एनएसयूआई बीजेपी पर सवाल उठा रही है, एबीवीपी एनडीए पर नाराज है। राजस्थान से शुरू हुई जांच घूमकर राजस्थान ही पहुंच रही है। पहले चरण में पेपर नासिक के हाई सिक्योरिटी प्रेस से हार्ड कॉपी की शक्ल में लीक कराया गया। दूसरे चरण में सॉफ्ट और डिजिटल कॉपी की शक्ल में हाथों हाथ बेचा और बांटा गया। इस मामले का फंडाफोड़ करने वाली राजस्थान पुलिस की एसओजी के मुताबिक इनमें अब तक के बड़े चेहरों में नासिक का शुभम खैरनार है, पुणे का धनंजय है, जयपुर का मनीष यादव है, सीकर का राकेश मंडावरिया है, गुरुग्राम का यश यादव है। सबकी धरपकड़ हो चुकी है। अभी ये नहीं पता चल पाया है कि नासिक हाई सिक्योरिटी प्रेस से पेपर की हार्ड कॉपी सबसे पहले किसने लीक की थी, लेकिन ये पता चल चुका है कि महाराष्ट्र से ये पेपर जयपुर में मनीष यादव के पास पहुंचा था। राजस्थान एसओजी और सीबीआई की जांच के अनुसार इस पूरे इंटर स्टेट रैकेट का मास्टरमाइंड मनीष यादव और राकेश मंडावरिया है। इसमें मनीष यादव के ऊपर नासिक से लीक हुए पेपर के सवालों को गेस्ट पेपर के नाम से जयपुर में छपवाने का आरोप है, तो राकेश मंडावरिया उस गेस्ट पेपर के

0: डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा था। राकेश मंडावरिया राजस्थान के कोचिंग हब सीकर के पिपराली रोड में आरके कंसल्टेंसी नाम से कंसल्टेंसी सर्विस चलाता है। जांच एजेंसियों को शक है कि इसका मुख्य काम पेपर को कोचिंग स्टूडेंट्स के बीच बांटना था। जांच में सामने आया कि उसके पास ये लीक पेपर अप्रैल महीने में ही आ चुका था। जांच में मिले प्राइवेट माफिया नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में पता चला है कि इसमें 400 से ज्यादा लोग जुड़े थे और इसी ग्रुप में लीक पेपर बांटे जा रहे थे। जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब पुणे से डेंटिस्ट की पत्नी मनीषा वाघमारी नाम की महिला भी हिरासत में ली गई है, जो पेपर लीक गैंग के संपर्क में थी। नीट पेपर लीक भंडाफोड़ के बाद से ही कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर निशाने साध रही है। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 में नीट पेपर लीक के दौरान एनटीए के डीजी रहे अधिकारी को छत्तीसगढ़ के सीएम का प्रमुख सचिव बनाकर इनाम दिया गया है। अब कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है कि एसओजी ने जिस मांगीलाल और दिनेश यादव नाम के आरोपी को पकड़ा है, वो राजस्थान के मंत्री के करीबी है। कभी वो राजस्थान के शिक्षा मंत्री के बाएं दाएं दिखते हैं, तो कभी सड़कों पर होर्डिंग लगाकर शुभकामनाएं लगाते दिखते हैं। उसी आरोपी मांगीलाल के घर हमारे संवाददाता पहुंचे। मांगीलाल के घर वाले बताते हैं कि आरोपी दिनेश बीजेपी का कार्यकर्ता है। आरोपी दिनेश की पत्नी ने भी माना है कि अनपढ़ है। इनके पति दिनेश प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं और इनके घर से 3 बच्चे पिछली बार भी नीट पास कर चुके हैं। ऐसे में एनटीए से लेकर राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर तक इस मामले पर जैसी सफाई दे रहे हैं, उससे विपक्षियों को सियासी सवाल उठाने का मौका भी मिल रहा है। अब विपक्षी दल इस पूरे पेपर लीक कांड को सीधे बीजेपी की कारस्तानी बताने की कोशिश कर रहे हैं और केजरीवाल तो नेपाल बांग्लादेश जैसा अराजक आंदोलन करने का आह्वान जेन ज़ी से कर रहे हैं। केजरीवाल का आरोप है कि 2014 के बाद से देश में 93 पेपर लीक हुए हैं और किसी एक मामले में भी सजा नहीं हुई है। 2024 के नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच भी की, गिरफ्तारी भी की, लेकिन चार्जशीट नहीं की और आरोपी जमानत पर घूम रहे हैं। केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात में हुए हैं और ये बीजेपी शासित प्रदेश है। इस बीच पेपर लीक की जिम्मेदारी एनटीए पर डालते हुए उसे भंग करने या नीट की परीक्षा उसके दायरे से बाहर करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मामला अदालत में भी पहुंचा है। अब देखना होगा कि सीबीआई इस मामले में सिंडिकेट के सबसे ऊपर के चेहरे तक पहुंच पाती है या नहीं। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
1: जब इसकी पुष्टि हुई तो हमने ये समझा कि अगर इस तरह का एक भी वायलेशन होता है तो वह हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ है और जो तमाम 22,69,000 बच्चे परीक्षा की अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य को इम्पैक्ट करेगा। अगर कोई इस तरह से चोरी करके परीक्षा देगा तो वह उनके लिए फेयर नहीं है जो अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके हित में ध्यान रखते हुए हमने यह एक कड़ा निर्णय लिया कि हम यह संदेश दे सकें हर उस क्रिमिनल को, हर उस स्कैमस्टर्स को, हर उस फ्रॉडिये को कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो उसको एनटीए सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे।
2: जांच एजेंसियों ने पाया होगा इसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय ले लिया कि रद्द कर दिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहां भी गड़बड़ दिखाई देगा या उस सबको ठीक करने के लिए काम करेगी सरकार।
3: सर,
2: सीकर से कनेक्शन हो या पश्चिम बंगाल से हो या कश्मीर से हो, जहां जहां भी दोषी होंगे वो कहीं छोड़े नहीं जाएंगे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: खाड़ी में तनातनी के बीच चीन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता। ट्रंप ने शी को बताया महान नेता, बोले हम मिलकर दुनिया बदलेंगे। दिल्ली में आज से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। मिडल ईस्ट तनाव और ऊर्जा संकट पर हो सकती है बात। पीएम मोदी भी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। जलंधर बीएसएफ कैंप के बाहर धमाका करने वाला गिरफ्त में। सिम कार्ड लगाकर किया था फोन से आईईडी ब्लास्ट। मास्टरमाइंड है पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी। देश भर में चल रहा है टेरर नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन। ऊर्जा संकट के बीच कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी का सख्त संदेश। कम से कम गाड़ियों के इस्तेमाल की नसीहत। वाहन खरीद पर गाइडलाइन जारी। दो गाड़ियों तक सिमटा प्रधानमंत्री का काफिला। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए की संदिग्ध भूमिका पर देश भर में हल्ला बोल। सुप्रीम कोर्ट में याचिका। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर से महाराष्ट्र तक जुड़े तार।
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर है। आगे बढ़ने से पहले बता दें, इस खास पेशकश में क्या क्या स्पेशल है, कहां क्या हलचल है। आगे बात होगी ब्रिक्स विदेश मंत्री समिट की, जो थोड़ी देर में दिल्ली में शुरू हो रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच होने वाली इस पहली बैठक में हमारी पूरी नजर रहेगी। हम सीधे आने अपने संवाददाताओं का रुख भी करेंगे, साथ ही बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के दौरे पर क्या कुछ कहा है, तमाम धाकड़ सीईओ को लेकर ट्रंप क्या डील करने वाले हैं। साथ ही बात होगी उस नीट कांड की, जिसका खुलासा सबसे पहले आज तक नहीं किया, अब आज तक की खबर का असर दिख रहा है। अब तक 5 गिरफ्तार हैं, बाकी नटवर लालों की तलाश है। सवाल है कि क्या जांच की आंच एनटीए तक पहुंचेगी या नहीं। पहले बात करते हैं 2 ग्लोबल खबरों की। अमेरिका ईरान जंग के बीच दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री जुटे हैं, बहुपक्षीय वर्ल्ड ऑर्डर पर मंथन कर रहे हैं, जहां सबकी आवाज सुनी जाए, सभी को तवज्जो मिले। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे पड़ोसी देश चीन में हैं। जाहिर बात है कि जंग की भी बात हो रही है और कारोबारी डील की भी। ट्रंप मस्क समेत 17 ग्लोबल सीईओ के साथ बीजिंग आए हैं। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन शुरू ही होने वाला है। दिल्ली के भारत मंडपम में सारे मेहमान पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो खबर आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे की वजह से चीन के विदेश मंत्री यहां पर नहीं आए हैं। चीनी राजदूत चीन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आधे घंटे बाद 10:30 बजे से पहले सत्र की शुरुआत होगी और दोपहर 1 बजे विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी करेंगे। उधर ईरान अमेरिका जंग के बीच होने वाले इस पहले ग्लोबल मीट को काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में युद्ध से आ रही दिक्कतों को दूर करने की कोशिशों पर बात होगी। ईरान चाहता है कि अमेरिकी इजरायली हमले की निंदा हो, यूएई इससे सहमत नहीं है। भारत चाहता है कि एक साझा बयान जारी हो और सारे देश उस पर सहमति जताए। और इस वक्त ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सुमित चौधरी। सुमित, सबसे बड़ा एजेंडा, सबसे बड़ा मुद्दा इस मीटिंग का क्या रहेगा?
1: देखिए, बिल्कुल, जब आप ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तब ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण और सबसे खास बात की अंजलि इस बात को लेकर भी है कि कैसे साझा रूप से ये तमाम देश, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत इंक्लूडेड है, रशिया इंक्लूडेड है, आप कह सकते हैं चीन की तरफ से प्रतिनिधि एम्बेसडर कर रहे हैं, ईरान इंक्लूडेड, ऐसे वक्त के अंदर जब लगातार अपने अपने अपने अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से पूरी दुनिया जूझ रही है, ऐसे में मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि कैसे लगातार ये देश मिलकर ग्लोबल साउथ की बात कर सकते हैं, साउथ को लेकर भारतीय उसमें मध्यस्थता कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन के दौरे की बात की, एक तरफ चीन लगातार एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स को काउंटर करने के लिए वो अपनी नजदीकियां चीन से बढ़ाए जाए। तो ऐसे में ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस या ब्रिक्स को लेकर लगातार बड़ी बैठकें हो सकती है, बड़े फैसले किए जा सकते हैं। लेकिन ईरान का फोकस शुरू से इस ब्रिक्स मीटिंग को लेकर यही रहा है कि वो किसी भी तरीके से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट या फिर एक तरीके से कंडेमनेशन आए तमाम विदेश मंत्रियों की तरफ से इसराइल को लेकर, अमेरिका को लेकर। हालांकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला, इसको लेकर स्पष्ट कर दिया गया है। इस तरफ की जो इकोनॉमिक एजेंडाज हैं, क्लाइमेट्स को लेकर है, इकोनॉमिक एजेंडा है, कॉपरेशन को लेकर, इन तमाम चीजों के ऊपर ही ये सारी की सारी मीटिंग आप कह सकते हैं निर्भर रहेगी।
0: लेकिन अगर बात करें ब्रिक्स की, तो सबसे अहम मुद्दा इस वक्त यही रहेगा कि जो ग्लोबल स्थिति है, मध्य एशिया में जो तनाव जारी है, उस पर सभी देशों की कोई ना कोई सहमति बने, भारत की यही इच्छा है। और दूसरी बड़ी बात, अभी रशिया जो कि मध्यस्थता करता रहता है इन मुद्दों में, वो भी भारत में मौजूद है, ईरान के मंत्री भी भारत में मौजूद है, तो ये अहम हो जाता है।
1: देखिए, बिल्कुल, अगर आप बात करें, क्योंकि 4 पिलर जिनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस आप कह सकते हैं कि रिलायंस, इनोवेशन, कॉपरेशन और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, 4 बड़े फोकस हैं इस मीटिंग के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कॉपरेट, आपने क्योंकि आर्थिक संकट की बात की, आपने हर देश आज के समय में खासतौर पर 75 दिन से जब से ईरान और अमेरिका का
0: युद्ध रोकेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, नेशनल स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा कर रहे हैं, सीधा वहीं रुक करते हैं।
2: उनके उत्तर मांगे जाएंगे, मैं बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुख्य नेता एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं, 22 वर्षों से। 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए, तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं, इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। तो आज इन सब विषयों पे विस्तार से चर्चा होगी और हम यहां बहुत बड़े खुलासे करेंगे। इनमें से अधिकांश जो ट्रिप है, मैंने आपको कहा 54 ट्रिप है, 54 ट्रिप्स है, इनमें अधिकांश ट्रिप्स के ऑन रिकॉर्ड कॉलम फिल है, मतलब वो ऑन रिकॉर्ड गए हैं। जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है वो भी बताऊंगा, ऑन रिकॉर्ड गए हैं। उसमें पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है, अर्थात होस्ट कब बुला रही है, डेट कब है, इसका पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है। प्रेस आइटिनरी, अर्थात प्रेस के जो कब स्टेटमेंट जारी होंगे, प्रेस को कब संबोधित करेंगे, यह प्रेस आइटिनरी भी है। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड, छुट्टी रही उनकी पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में नहीं आए, कमिटी की मीटिंग में नहीं आए और उसका कारण विदेश यात्रा रही, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है। और फोटो ट्रेल है, मैं मीडिया के पूरी उन सूचियों को भी सामने रखूंगा कि कौन कौन से अखबार में फोटो भी छपे हैं, फोटो ट्रेल है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो विदेश यात्रा रही, द ट्रिप्स आर पब्लिक, ये पब्लिक ट्रिप्स है, बट फंडिंग ट्रायल इज नॉट पब्लिक। सबसे बड़ी बात है कि ट्रिप्स पब्लिक है, फंडिंग पब्लिक नहीं है। अब हम एक एक करके कहां कितनी फंडिंग हुई है, किसने फंडिंग किया है और वो खुलासा क्यों नहीं हुआ है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। इस पे एक लेजर बनाया गया है, जिस लेजर को मैं आपके सामने रखूंगा इन 54 ट्रिप्स का। इस लेजर में एक एक ट्रिप को लेकर हिसाब लगाया गया है कि आखिर राहुल गांधी के हर ट्रिप में अमूमन राहुल जी ने या उनकी टीम ने या कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर तो नहीं किया है, मगर खर्चा कितना हुआ होगा। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा, अंदाजे से तो नहीं हो सकता है। तो इसका मॉडल होता है, उस मॉडल को कहते हैं बॉटम अप मॉडल एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट। नीचे से ऊपर तक एक बॉटम अप मॉडल के माध्यम से ये खर्चा लगाया गया। जैसे कि राहुल जी जाते हैं विदेश में, तो अगर एक लॉन्ग हॉल जर्नी है, बड़ी जर्नी है यहां से न्यूयॉर्क तक, तो कैसे जाएंगे राहुल जी, फर्स्ट क्लास में जाएंगे। तो फर्स्ट क्लास के पैसे को इंक्लूड किया गया, वो इकोनॉमी में नहीं जाएंगे, वो फर्स्ट क्लास में जाएंगे, तो फर्स्ट क्लास का पैसा का खर्चा इंक्लूड किया गया। कितने लोग जाते हैं, तो जितने डिक्लेयर्ड हैं, जितनी बार डिक्लेयर किया है और सीसीटीवी फुटेज कैमरा सिक्योरिटी को देखा गया है, उसमें लोगों की संख्या कैलकुलेट होती है कि इतने लोग उनके साथ गए हैं। ऑन एन एवरेज हर उनके विदेश यात्रा में 3 से 4 लोग उनके साथ ट्रेवल किए हैं, और अगर चकमा देकर एसपीजी को या सीआरपीएफ को गए हैं, बिना सिक्योरिटी के गए हैं, वो भी मैं बताने वाला हूं कितनी बार चकमा दिया है, येलो बुक को काउंटर करके गए हैं, वो भी बताएंगे, तो उसमें सिक्योरिटी वाले भी ऐड होते हैं, वरना 3 से 4 लोग अमूमन उनके साथ गए हैं और वो बिजनेस क्लास में गए हैं। तो बिजनेस क्लास का खर्चा कितना होता है, जिस शहर में उतरते हैं तो स्वाभाविक है वहां पर कोई टैक्सी लेके नहीं जाते हैं, वहां पर एक शॉफर ड्रिवन कार में ही राहुल गांधी चलते हैं, तो उसका खर्चा कितना होता है। होटल में रुकते हैं तो किसी सड़क के किनारे मोटेल में तो नहीं रुकते हैं, 5-स्टार सिटी रेट के अनुसार, कि वहां 7-स्टार नहीं, चलिए 5-स्टार में तो कम से कम रुकेंगे ही, 5-स्टार सिटी रेट के अनुसार यह सिटी ग्रेड रेट लगाए गए हैं। उसके साथ साथ फूड एंड बिवरेजेस 5-स्टार के लगाए गए हैं, इवेंट सपोर्ट प्लेसेस, इन सबको मिला करके एक क्यूमुलेटिव प्राइसिंग की गई है। मैं डिटेल में तो आऊंगा, मगर जो बड़ी संख्या है, जो कुल संख्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो कैलकुलेशन हुआ तो तीन ग्रेड में कैलकुलेशन किया गया, सबसे सस्ते टिकट, बीच वाले महंगे टिकट और सबसे महंगे टिकट, सबसे सस्ती गाड़ी, सबसे सस्ते होटल, बीच वाले और सबसे महंगे, इन तीन ग्रेड में कैलकुलेशन किया गया और मिड ग्रेड सेक्शन को लिया गया है कि चलिए वो बीचों बीच के होटल में रुके हैं, वो बहुत बड़ी लिमोजिन में नहीं चले हैं, छोटी सी गाड़ी में चले हैं, मगर शॉफर ड्रिवन है। इस प्रकार के कैलकुलेशन को लेने के बाद 2004 से 2026 तक राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़, 60 करोड़ रुपए का खर्चा राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा में रहा है। अब हम इस पे दो विषय को कंपैरिजन में रखेंगे। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे, नंबर एक। इसमें हमने कोई कमिटी वाली कि भारत की सरकार ने उन्हें कहीं भेजा है या पार्लियामेंट की किसी कमिटी में चले गए हैं, उन यात्राओं को इंक्लूड नहीं किया है। ये 54 यात्रा वो है जो उनके व्यक्तिगत है, उसमें 60 करोड़ खर्च हुए हैं। अब उसमें हमारे पास यहां पर फॉर्म 26, जब कोई एमपी चुनाव लड़ता है या एमएलए चुनाव लड़ता है तो वह एफिडेविट सबमिट करता है, नॉमिनेशन के समय एफिडेविट में फॉर्म 26 भी सबमिट होता है, और जब फॉर्म 26 सबमिट होता है तो आप अपनी आमदनी भी डिक्लेयर करते हैं। पहले जो एफिडेविट होता था 2013-14 के चुनाव से पहले, उस समय वो कॉलम आपकी आमदनी की नहीं होती थी। 2013-14 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं और जो फॉर्म आया है उसमें आप वार्षिक रूप से आपकी आमदनी कितनी होती है, यह स्पष्ट रूप से आप एफिडेविट में लिख के देते हैं कि मेरा इस वर्ष की आमदनी इतनी है, इस वर्ष की आमदनी इतनी है। तो यह आमदनी आप लिख के देते हैं तो हमारे पास राहुल गांधी जी के बैक टू बैक 2013-14 से 2022-23 तक असेसमेंट ईयर 2013-14 से असेसमेंट ईयर 2022-23 तक का, जब जब वो चुनाव लड़े, क्योंकि लास्ट चुनाव 24 का था और 24 के चुनाव के लिए 22-23 का उन्होंने अपना इनकम दिखाया है, तो कंटिन्यूअस 10 वर्ष के उनका आमदनी, प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों तक वो कितना अर्न करते रहे, वो हमारे पास डिटेल है क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी निकाल सकते हैं। तो कितना उन्होंने अर्न किया कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में, 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। एक उदाहरण देता हूं, एक वर्ष का उदाहरण दूंगा कि उस वर्ष में डिक्लेयर्ड इनकम कितना था उस वर्ष का, और उस वर्ष में उन्होंने एक फॉरेन ट्रिप में कितना खर्चा किया, जिसको कहते हैं गैप बिटवीन द डिक्लेयर्ड इनकम एंड मॉडल ट्रेवल स्पेंड। एक सिंगल ट्रिप है 2015 का, 2015 में साउथ ईस्ट एशिया गए और साउथ ईस्ट एशिया में 4.5 करोड़ रुपया, 4.5 करोड़ रुपीस वॉज स्पेंड बाय राहुल गांधी, और 2014-15 की जो उनकी आमदनी है, मतलब जो वार्षिक आमदनी थी, वो आमदनी थी 86.55 लाख। 86.55 लाख का आमदनी और एक ही यात्रा में खर्चा 4.5 करोड़ का, दैट मींस 5.2 गुना अधिक खर्चा किया यात्रा में जितना कमाया। 5.2 टाइम्स मोर वॉज स्पेंड ऑन हिज फॉरेन ट्रिप दैट ईयर than what he earned that year, the single year in 2015. इसमें दो प्रश्न उठते हैं जो लीगल है, अब मैं लीगैलिटी पे आता हूं। पहला प्रश्न उठता है फॉरेन सोर्सेस, ये जो पूरे फॉरेन में गए हैं, विदेश यात्रा किसी की भी होती है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, जब ये फॉरेन,
0: तो इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, सीधा लिए चलते हैं आपको ब्रिक्स समिट में, जहां पे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास सराकची को आप देख सकते हैं। वो इस वक्त भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात करके बस आगे ही बढ़े हैं। आज विदेश मंत्रियों की बैठक है जिसके लिए वो पहुंचे हैं शिरकत करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़ गए। प्रणय, भारत मंडपम से ये सीधी तस्वीरें हम तक आने लगी हैं जिसमें अलग अलग विदेश मंत्रियों का आना शुरू हो गया है। बताइए कौन कौन वहां पहुंच रहे हैं, किस देश की क्या अहमियत है और क्या है एजेंडा?
3: देखिए, ब्रिक्स एक बड़ी महत्वपूर्ण
0: तस्वीरें हम तक आने लगी हैं जिसमें अलग अलग विदेश मंत्रियों का आना शुरू हो गया है। बताइए कौन कौन वहां पहुंच रहे हैं, किस देश की क्या अहमियत है और क्या है एजेंडा?
3: देखिए, ब्रिक्स एक बड़ी महत्वपूर्ण ग्रुपिंग है और दुनिया की करीब 55% आबादी, दुनिया की करीब 41% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व ये ब्रिक्स का समूह करता है। और इसकी बैठक ऐसे समय में हो रही है अंजलि, जब पूरी दुनिया जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स की उथल पुथल में उलझी हुई है। ईरान और यूएई दोनों, जो कि पिछले पश्चिम एशिया के संघर्ष के दौरान आमने सामने रहे पिछले कुछ दिनों के दौरान, उन दोनों के ही विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि यानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ईरान के, वो आपने उनको देखा तस्वीरों के अंदर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात के बाद वो आगे बढ़ते हुए यहां नजर आए थे। इसके अलावा खलीफा शेख जो अल मरार हैं, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं यूएई के, वो यहां पर मौजूद हैं, वो भी यहां पर इस बैठक में शिरकत करने के लिए आए हैं। 10 देश इसके सदस्य देश हैं ब्रिक्स के, और साथ ही जो अन्य देश हैं, जो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, उसमें सऊदी अरब भी शामिल है, उसके अंदर वियतनाम भी शामिल है, उसमें उज्बेकिस्तान भी शामिल है, कजाकिस्तान शामिल है, ये तमाम देश जो हैं वो भी ब्रिक्स के जो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं उसमें शामिल हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण जो समय है वो इस बैठक के लिहाज से है, क्योंकि ऊर्जा का संकट चल रहा है। इनमें से कई ऊर्जा के बड़े निर्यातक देश हैं, चाहे कजाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे ईरान हो, ये सारे देश ऊर्जा संसाधनों से संपन्न हैं। और साथ ही इसके अंदर चीन भी है, इसमें भारत भी है, इसमें इंडोनेशिया भी है, वो देश जो कि ऊर्जा के बड़े आयातक देश हैं। इसीलिए भारत ने इस बार की जो विषय रखा है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रही हैं ब्रिक्स की जो मीटिंग है उसमें नीचे जो लिखा हुआ है, यानी बिल्डिंग रेजिलियंस इनोवेशन कनेक्टिविटी कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये विषय ब्रिक्स का, ये जो एक्सपेंशन है भारत ने एक थीम के तौर पर रखा है। ब्रिक्स अपने 20 साल पूरे करने जा रहा है, उस विषय के ऊपर भी एक स्पेशल सेशन रखा गया है जो कि कल होगा। और साथ ही ये ब्रिक्स के जो विदेश मंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी एक कॉल ऑन मीटिंग करेंगे इस बैठक की शुरुआत में। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर करेंगे। भारत का पक्ष क्या है, भारत ब्रिक्स में से क्या अपेक्षा कर रहा है, और किस तरीके से ब्रिक्स मिलकर जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात दुनिया कर रही है, यानी बहुध्रुवी व्यवस्था जिसकी वकालत भारत भी लंबे समय से करता आया है, उसका नया आकार ब्रिक्स के सहारे कैसे गढ़ा जा सकता है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री को आप देख सकती हैं स्क्रीन के ऊपर, वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम विदेश मंत्रियों का स्वागत भारत कर रहा है। सितंबर के अंदर ब्रिक्स का की समिट, ब्रिक्स की जो शिखर बैठक है उसका आयोजन होना है, और उसके लिहाज से अंजलि ये जो विदेश मंत्रियों की बैठक है इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही कोशिश चल रही है कि एक जो संयुक्त वक्तव्य है यानी ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है उसे तैयार किया जा सके। जो राजनीतिक मतभेद हैं, चाहे यूएई और ईरान के बीच में चल रहे तनाव के मतभेद हों या अन्य देशों के बीच में जो द्विपक्षीय मामले हैं उनको थोड़ा दरकिनार किया जा सके, सहयोग और सहमति के बिंदु तलाशे जा सके, किस तरीके से इसके अंदर कनेक्टिविटी कोऑपरेशन रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी एनर्जी सप्लाई ये सारी जो चीजें हैं उन पर कैसे सहमति बनाई जा सकती है, ये प्रमुख मुद्दे होंगे जिनके ऊपर भारत की कोशिश होगी कि सहमति तलाशी जा सके। कल रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात हुई थी, उसमें भी अगर आपने सुना हो तो डॉक्टर जयशंकर की तरफ से साफ कहा गया कि एक ऐसे समय में ये मुलाकात हो रही है जिस समय में दुनिया में काफी उथल पुथल है और उसके बीच में और भारत और रूस की जो दोस्ती है उसके बीच में जो हाई लेवल पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट है, जो राजनीतिक संवाद है, वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। और इस समय दुनिया को स्थिरता की तलाश है, तो ऐसे में जबकि पूरी दुनिया के अंदर एक व्यापक अस्थिरता देखने को मिल रही है, ब्रिक्स वो समूह, अंजलि आप बड़ा रोचक समय है, मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि ब्रिक्स को लेकर काफी भला बुरा कहते रहे, बहुत ताने उलाहने और तंज कसते रहे, वो इस समय ब्रिक्स के ही सदस्य देश चीन के अंदर मौजूद हैं। और यही वजह है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस बैठक में तो नहीं है, लेकिन चीन का प्रतिनिधित्व तो उनके राजदूत जो है शू फाइहोंग वो कर रहे हैं यहां पर। और कई लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन सबकी नजरें लगी होंगी कि क्या यूएई और ईरान दोनों के साथ, क्योंकि ये एक पहली बैठक है जिसमें इस पूरे पश्चिम एशिया के 70-75 दिनों के तनाव के बीच में ये दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि किसी किसी एक मंच पर किसी एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक के अंदर साथ आ रहे हैं, तो क्या इन दोनों की मौजूदगी के बीच में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकलता है, क्या एक संयुक्त बयान के जरिए ब्रिक्स को आगे बढ़ाने के एक नए ढांचे, एक नए आकार का एक नए रोड मैप को लेकर चर्चा हो पाएगी?
0: जी जी प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौट कर आएंगे, लेकिन एक बार फिर से रुक करते हैं बीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उसका।
2: ट्रिप पे नहीं जा सकते हैं, आपके घर के लोग, आपके मित्र, आपकी संस्था ये भी जानती है कि आप कहां जा रहे हैं। हम लोग साधारण लोग हैं, हम भी सीक्रेट ट्रिप पे नहीं जा सकते हैं। घर के लोग छोड़ेंगे नहीं, कहां गया था तू, चार दिन से कहां है। मैं एकदम आम आदमी की भाषा बोल रहा हूं, आप बताइए, कोई नहीं छोड़ने वाला है, बच्चे नहीं छोड़ेंगे, मैडम नहीं छोड़ेगी घर पे, कहां पांच दिन से गायब थे तुम, कौन से ट्रिप पे गए हो। और यहां साहब को देखिए, अनडिक्लेयर्ड सीक्रेट ट्रिप। उसके बाद लंदन यूके, इसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ प्राइवेट चीजें भी हैं। जून जुलाई 2025 लंदन गए यूके में, सीआरपीएफ ने चिट्ठी लिखा है, उसमें लिखा है कि मिराया वाड्रा उनका ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन है इसलिए वो गए हैं, 95 लाख रुपीज खर्चा हुआ है ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन के लिए गए, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। अब आते हैं अप्रैल 2025 को 1.2 करोड़ बोस्टन गए थे, वहां पर क्या भाषण दिया था आपको पता है। अब दुबई यूएई गए हैं ये अप्रैल 2025 में, अनडिक्लेयर्ड, डिक्लेयर नहीं किया, चुपके से गायब हो गए, चले गए। मैं ये सारे अनडिक्लेयर्ड वाले भी आपको बताते जाऊंगा। सीआरपीएफ लेटर 17 to 23 अप्रैल, नो प्रोग्राम होस्ट और पर्पस डिस्क्लोज्ड, सीआरपीएफ को डॉज करके कुछ भी नहीं बता करके ये रातों रात गायब हो गए और अप्रैल 17 से अप्रैल 23 तक यूएई में रहे। 70 लाख खर्च हुआ, खर्च वाला विषय अलग है, एक करोड़ों में नहीं है, लाखों में है, मगर डॉज, अनडिक्लेयर्ड। उसके बाद आपका वियतनाम विजिट्स आता है, ये मार्च 2025 में है, मल्टीपल साइकिल्स इंडिकेटेड बाय पब्लिक डोमेन फुटेज, हैनोई जनवरी 2026 ब्लॉगर एनकाउंटर ऑन सोशल मीडिया, 2.8 करोड़ खर्चा, पब्लिक विजुअल्स, कोई डिक्लेरेशन नहीं, पब्लिक विजुअल के आधार पर यह किया गया है, 2.8 करोड़ खर्चा हुआ है। दिसंबर 24-25, दिसंबर वो जो रात होती है 24 जा रहा है 25 आ रहा है, 31 दिसंबर, इटली न्यू ईयर, सीआरपीएफ लेटर, सीआरपीएफ ने कड़ा लेटर लिखा है कि 30 दिसंबर to 9 जनवरी ये नहीं थे, और सीआरपीएफ ने यह भी लिखा है कि वो पीरियड वह था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का मॉर्निंग पीरियड, उनकी शोक का पीरियड था, उस शोक के पीरियड के समय आपको याद होगा आप लोगों ने भी प्रश्न पूछा था कि आखिरकार राहुल गांधी क्यों नहीं आए हैं शोक सभा में, वो क्यों नहीं उपस्थित है। तो सीआरपीएफ की लेटर है कि 30 दिसंबर से 9 जनवरी तक जब मनमोहन जी की मॉर्निंग थी उस समय वो अनडिक्लेयर्ड बिना सीआरपीएफ को बताए 95 लाख रुपीस का खर्चा हुआ, न्यू ईयर के समय वो इटली में थे। उसके बाद थोड़ा सा मुझे एक विषय हास्यास्पद लगा तो मैंने भी सोचा आपको थोड़ा गंभीर विषय है तो थोड़ा हंसाऊं भी। मार्च 2018 में जो रिपोर्ट किया गया कि सरप्राइज होली विजिट टू पाउला माइनो, अपनी नानी जी के घर, नानी जी अब नहीं है संसार में, उनकी आत्मा को शांति दे, जो नहीं होते हैं उनके लिए कभी खराब नहीं बोलना चाहिए, मगर उनको एक होली सरप्राइज, मतलब होली मतलब ये गुलाल रंग वाला होली, वो होली का सरप्राइज, पावला जी होली खेलती थी नहीं खेलती थी मुझे नहीं पता, मगर होली की सरप्राइज देने के लिए वो गए थे, होली सरप्राइज देने, ऑन रिकॉर्ड कि होली सरप्राइज देने जा रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड वो होली खेलने गए थे इटली। यहां तो कभी होली, पता नहीं संजय जी, यहां तो कभी होली नहीं खेलते हुए मैं देखा है, मगर इटली में जाके पावला जी के साथ इन्होंने होली खेला, पावला जी को शांति मिले, उनके लिए हमारा मन में आदर है। और फिर उसके बाद आप देखिए 3.2 करोड़ खर्चा हुआ किसमें, वो बर्कली वाला जो उनका सेप्टेम्बर 2017 में जहां जाके भारत के लिए क्या क्या बोल के आए थे आपको पता है, उसी प्रकार इटली 19 दिन के लिए गए थे, 1.5 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। और मैडम सोनिया गांधी जी के साथ मेडिकल के लिए गए, इसमें एक बड़ा विषय लिखा हुआ है, मैडम सोनिया गांधी अभी भी मैं देख रहा था मेडिसिटी में एडमिट थी, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, वो दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे हमेशा, ये हम सबकी कामना है। और ट्रीटमेंट के लिए हम प्रश्न नहीं करते हैं, हम ऐसे निकृष्ट राजनीतिक काम नहीं करते हैं, अच्छे ही रहे वो, मगर इसमें सिटी का नाम विथहेल्ड किया गया, मतलब बताया नहीं गया कि कौन से सिटी में तक गए हैं, वो मार्च 2017 का है, ये ऑन रिकॉर्ड है, 75 लाख रुपए खर्च हुए, मगर सिटी का नाम विथहेल्ड किया गया। मैंने इसलिए बताया क्योंकि सिटी का नाम बताते हैं, सिटी का नाम भी विथहेल्ड किया गया है। ठीक उसी प्रकार 1.8 करोड़ रुपए अगस्त 2018 में खर्च हुए, 1 करोड़ रुपए फिर से मेडिकल चेकअप का है, मैं उस पर मेडिकल चेकअप पे मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा। और अब हम आगे आते हैं, नवंबर 2019 इसका जो रिकॉर्ड पे है, मतलब जो हमको हमें मीडिया से मालूम पड़ा, अनडिक्लेयर्ड है, 35 लाख रुपए खर्चा हुआ, मेडिटेशनल ट्रिप, मेडिटेशन करने गए थे अक्टूबर नवंबर 2019 अब्रॉड। अब कहां मेडिटेशन कर रहे थे वो डेस्टिनेशन डिस्क्लोज्ड है, मेडिटेशन को शायद डिस्क्लोज ही मतलब डेस्टिनेशन नहीं बोला जाता है, शांति से कहीं मेडिटेशन कर रहे थे, फॉरेन में कर रहे थे, भारत में नहीं, मेडिटेशन उनका मन नहीं लगा तो बाहर मेडिटेशन करने गए और वो जगह नहीं बताया कहां मेडिटेशन कर रहे थे, आप बताइए। वैसे तपस्या की डेफिनेशन भी उन्होंने बताई थी पार्लियामेंट में, तो ये अनडिक्लेयर्ड है। और उसके बाद अक्टूबर 2019 बैंकॉक मेडिटेशन करने गए, ये भी अनडिक्लेयर्ड है, बैंकॉक मेडिटेशन रिट्रीट, बैंकॉक गए हैं मेडिटेशन करने के लिए, डिपार्टेड ऑन 5 अक्टूबर ऑन विस्तारा, ईव ऑफ हरियाणा एंड महाराष्ट्र पोल, एकदम मतलब हरियाणा और महाराष्ट्र में पोल चल रहा था, मतलब मुझे लगता है बहुत स्ट्रेस हो गया होगा, तो तुरंत बैंकॉक में जाके किस प्रकार से मेडिटेशन किया जाए तपस्या, तो उसके लिए तुरंत वो गए 40 लाख रुपीज खर्च करके, अनडिक्लेयर्ड तुरंत कि अभी मेडिटेशन करना है तो चले गए। चलिए फिर लेक्चर टूर ऑन इंडियन डेमोक्रेसी अक्रॉस टू कैलिफोर्निया कैंपसेस, बर्कली, स्टैनफोर्ड, और वहां जाके कितना महान महान भाषण दिया, 70 लाख खर्च करके, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मई 2022 में काठमांडू में एक शादी हुई थी, उसमें नाइट क्लब का वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा एक नाइट क्लब का वीडियो वायरल हुआ था, वो ऑन रिकॉर्ड है, वो वीडियो भी ऑन रिकॉर्ड है, ट्रिब्यून ने फोटो भी छापा था, 45 लाख रुपए उसमें खर्च हुआ है। ये मैं आपको हाइलाइटर्स दे रहा हूं क्योंकि नाइट क्लब वाला वीडियो चर्चा का विषय रहा था, ट्रिब्यून ने फोटो भी छापा था, ये विषय पब्लिक डोमेन में है, 45 लाख रुपए खर्चा हुआ है। दिसंबर 2021 टू जनवरी 2022 अब्रॉड डेस्टिनेशन विथहेल्ड कर दिया, पर्सनल विजिट एज द असेंबली इलेक्शन साइकिल ओपन, उसमें असेंबली इलेक्शन था, ये पर्सनल विजिट करके गए, अनडिक्लेयर्ड, चोरी चोरी चुपके चुपके 40 लाख खर्चा हुआ, डिक्लेयर नहीं किया। मैं बहुत बड़े बड़े खुलासा और करने वाला हूं, अभी सब येलो पेज भी खोलूंगा। लंदन गए 24 रात नवंबर 2021 में, 24 नाइट्स के लंदन गए, 2.2 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, इसमें वीआईपी लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी लेकर गए थे, ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, मगर किसने खर्चा किया इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, गए सिक्योरिटी भी गई और 24 रात लंदन में रहे, मगर किसने खर्चा किया रिकॉर्ड नहीं है। वो फार्मर प्रोटेस्ट के समय दिसंबर 2020 और जनवरी 21 के बीच मिलान और इटली गए, अनडिक्लेयर्ड, मैं अनडिक्लेयर्ड वाला बोल रहा हूं, अनडिक्लेयर्ड, ये डिपार्टेड 27 दिसंबर 2020 में, 90 लाख खर्चा हुआ। आप देखिए इस प्रकार से एक और अनडिक्लेयर्ड है, अब्रॉड डेस्टिनेशन विथहेल्ड, जुलाई 2022, शॉर्ट ट्रिप बिफोर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड मॉनसून सेशन, 40 लाख खर्चा, अनडिक्लेयर्ड, छुप के गए। उज्बेकिस्तान समरखंड मिस्ट्री ट्रिप, उनके साथ अमिताभ दुबे प्लस अमूल्य गोपाल कृष्णन, ये गए थे, 85 लाख रुपए खर्चा हुआ, अनडिक्लेयर्ड, ये भी डिक्लेयर नहीं किया गया। और बाकी करोड़ में बहुत कुछ है, मैं इतना आप मुझे पता है कि समय सीमा होती है इसलिए मैं जल्दी जल्दी समाप्त करूंगा। फरवरी अप्रैल 2015 में थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, ये 60 डे साउथ ईस्ट एशिया विंडो रहा और इसमें 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुए, ये उनके उस वर्ष के 2014-15 का जो इनकम था उसका 5.2 टाइम्स अधिक था और ये ऑन रिकॉर्ड है, 4.5 लाख खर्चा। 2014 और 16 के बीच में 3 शॉर्ट फॉरेन ब्रेक्स, 15 मई 2014 जब मनमोहन सिंह जी का फेयरवेल था एज प्राइम मिनिस्टर, जब फेयरवेल हुआ 15 मई 2014 को, वो नहीं थे आपको याद होगा, फॉरेन में थे, 19 जून 2014 एंड 28 जून 2016, 90 लाख खर्चा हुआ, अनडिक्लेयर्ड, बिना बोल के चले गए। ये लेजर इस प्रकार से 14 रात के लिए बाहर गए थे, न्यूयॉर्क अगस्त 2011 अगस्त सितंबर 1.5 करोड़, ये लेजर इस प्रकार से बनाया गया है। अब इसमें आपको हम बता दें, मैंने कहा था 54 ट्रिप्स है, 20 ट्रिप ऐसे हैं जो मोस्ट एक्सपेंसिव है, मतलब करोड़ों में जा रहे हैं। 20 ट्रिप का क्यूमुलेटिव खर्चा है 39.6 करोड़, और जो 34 बाकी बचे ट्रिप है उनका खर्चा है 19.85 करोड़, लगभग 20 करोड़। इसके बाद हम आते हैं कोरोबोरेशन, कितना कमाया कितना खर्च किया। मैं आपको एफिडेविट दिखाऊंगा, फॉर्म 26 एफिडेविट जो उन्होंने लोकसभा कॉन्टेस्ट करते समय ईयर बाय ईयर इनकम टैक्स रिटर्न शो किया है। मैंने आपको बताया था 2013-14 से पहले ये जो फॉर्म होता था उसमें इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी आय नहीं दिखाई जाती थी एफिडेविट में, मगर अब 13-14 के बाद वो पब्लिक रिकॉर्ड है। ये टेबल है, हम 10 वर्षों के टोटल असेसमेंट ईयर 10 ईयर्स, मैं फटाफट पढ़ता हूं, 2013-14 का 1,30,00,000 से अधिक है, वायनाड से लड़े थे, 14-15 का 95,00,000 से अधिक है, 2015-16 असेसमेंट ईयर का 86,55,660 है, ये लोएस्ट है उनके अभी तक का, 10 वर्षों का सबसे लोएस्ट है 86,55,000।
0: तो राहुल की विदेश यात्राओं पर हमले के बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरों की। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक का आज अंतिम संस्कार, कल लखनऊ में हुआ था निधन। पार्थिव शरीर ले जाने वाले वाहन को फूलों से सजाया गया, घर के अंदर बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं अंतिम दर्शन। प्रतीक यादव की मौत का मामला एनएचआरसी पहुंचा, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली एनजीओ ने की शिकायत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ों की नसों में खून का थक्का जमने से हार्ट अटैक आया जिससे मौत हुई। प्रतीक यादव के लखनऊ आवास पर लोगों की भीड़ उमड़ी, कन्नौज इटावा समेत कई जिलों से अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं समर्थक। यूपी में आंधी तूफान ने मचाई भारी तबाही, अलग अलग जिलों में अब तक 54 लोगों के मरने की खबर जबकि कई लोग घायल। मुख्यमंत्री योगी ने बारिश और बिजली गिरने से हुई मौत पर लिया संज्ञान और 24 घंटे में मुआवजा देने का आदेश भी दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम और अधिकारियों को मौके पर जाने के लिए कहा और पीड़ितों को हर संभव मदद देने के दिए निर्देश। तूफान से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी, जिला अधिकारियों को नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट भेजने के दिए गए निर्देश। भदोही में भीषण आंधी तूफान से 15 लोगों की मौत, 8 लोग घायल, तबाही में 16 मवेशियों की भी मौत। प्रयागराज में बुधवार शाम आई धूल भरी आंधी ने मचाई सबसे भीषण तबाही, अब तक 16 लोगों की मौत। मिर्जापुर में तेज आंधी से कई इलाकों में अब तक करीब 10 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। फतेहपुर में तेज आंधी तूफान से अलग अलग जगह 9 लोगों की मौत, पीड़ित परिवार को एसडीएम ने दिया भरोसा का मदद। हरदोई में आई आंधी तूफान ने 2 परिवारों की छीनी खुशियां, अलग अलग हादसे में 2 मासूम बच्चियों की मौत। कौशाम्बी में तूफान के बाद कई घरों में लगी आग, 12 परिवारों की गृहस्थी जलकर हुई राख, लाखों रुपयों का हुआ है नुकसान। कानपुर देहात में बिजली गिरने से एक लड़की की मौत, जबकि दीवार गिरने से एक बच्ची की भी चली गई है जान। सोनभद्र में धूल भरी आंधी से जिला पंचायत का भारी भरकम बोर्ड गिरा, स्टेट हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी लाइन। गोरखपुर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। उन्नाव में आंधी में कार पर गिरा नीम का पेड़, ड्राइवर ने समय रहते कार से कूदकर बचाई अपनी जान। अलवर में तूफान में टीन शेड गिरने से युवती की मौत, जिले भर में बिजली गुल।

और इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिवंगत छोटे भाई प्रतीक यादव का आज अंतिम संस्कार किया जाना है। लखनऊ स्थित उनके आवास से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होनी है और भैंसाकुंड में अंतिम संस्कार होगा। प्रतीक यादव की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है और इस वक्त उनके घर पर लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है।

0: और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव का। समर्थ, प्रतीक यादव को आखिरी विदाई देने के लिए वहां कई लोग जुट रहे हैं, थोड़ा जानकारी दीजिए कहां कहां से लोग आ रहे हैं, लेकिन अब भी उनकी मौत को लेकर, हालांकि ये साफ हो गया था कि कार्डियक अरेस्ट से हुई है, फिर भी कुछ कुछ शंकाएं लोग जता रहे हैं।
1: बिल्कुल, शंकाएं लगातार लोग जता रहे हैं। हम इस वक्त प्रतीक यादव के आवास पर हैं। कल अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की परिवार से और आज पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन आपको हम तस्वीरों में अगर यहां दिखाएं तो आप हमारे साथ चलें, आपको हम दिखाते हैं जो शव वाहन है वो फिलहाल यहां पर तैयार हो गया है। यहां देखिए तस्वीर लगा दी गई है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि स्वर्गीय प्रतीक यादव, 13 मई 2026 की वो तारीख। और यहाँ पर आप देखेंगी तो यहाँ पर आपको प्रतीक यादव नजर आएंगे, क्योंकि प्रतीक यादव पशु प्रेमी रहे हैं, इस वजह से उनकी तस्वीर जो है वो पशुओं के साथ लगाई गई है। जितने भी लोग थे प्रतीक यादव से इंटरेक्शन किया, हमारी भी कई दफा बात हुई, तो हमेशा उन्होंने जिक्र किया पशुओं का और एक मुहिम चलाई, एक एनजीओ चलाया पशुओं की सुरक्षा के लिए। तो ये देख सकती हैं आप किस तरीके से प्रतीक यादव को यहाँ पर पिक्चर में लगाया गया है, और नीचे जो है कुछ जो पेट डॉग्स होते हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो वहीं जो ये शव वाहन उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इसी जगह पर जो प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा, उसको लेकर भी यहाँ पर देखिए लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो चल रही हैं। फूल मालाओं से इसको पूरी तरीके से जो है सजाया गया है, और इसी जगह पर जहां पर ये सफेद रंग की चादर है यहीं पर प्रतीक यादव का जो पार्थिव शरीर है वो कुल मिलाकर रखा जाएगा। आपको हम आवास की भी तस्वीरें दिखाते रहेंगे, क्योंकि अभी अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं जो अपर्णा है उनसे मिलने के लिए, और लगातार नेताओं का आना जाना आप देखें तो चाहे समाजवादी पार्टी कैडर से हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, हर कोई इस दुख की घड़ी में प्रतीक यादव यानी कि अपर्णा यादव के परिवार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। राजनीति सियासत अपनी जगह है, लेकिन जब भी यूपी की सियासत में इस तरह का घटनाक्रम हुआ है राजनेताओं ने अपनी पार्टी या पार्टी लाइन नहीं देखी है, वो इस तरह की घटनाओं में संवेदना के तहत पहुंचते नजर आए। आप देखिए तो यहां पर आपको जो नेता नगरी है पूरे लंबे छोर पर, ये सामने जो आवास है यहाँ पर नेताओं का जो आवागमन है वो पूर्ण रूप से लगा हुआ है, फिर वो चाहे उनकी पार्टी समाजवादी हो, चाहे उनकी पार्टी बीजेपी हो, और फिर चाहे उनकी पार्टी कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक सोच हो, लेकिन यहाँ इस छोर यानी कि बैरिकेड के इस छोर पर आकर शायद आज के दिन कम से कम वो राजनीतिक सोच वहीं पूर्ण विराम ले रही है, क्योंकि बात यहाँ दुख की है, उस घड़ी की है। तो यहाँ देखें तो समाजवादी पार्टी के अन्य नेता भी लगातार पहुंच रहे हैं एक के बाद एक। शिवपाल सिंह यादव पहुंच रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव जो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि शिवपाल यादव यहाँ पहुंचे हैं चाचा, अगर रिश्ते की बात की जाए तो शिवपाल यादव जो है प्रतीक यादव के चाचा लगते हैं, और कल भी शिवपाल यादव पहुंचे थे। और अभी अभी आप ये धर्मेंद्र यादव को हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में। धर्मेंद्र जी, मैं आज तक से हूँ, दुख की घड़ी है, क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर आप?
2: धर्मेंद्र जी क्या कह सकते हैं, सिर्फ इस बात के कि सभी लोग शोकाकुल हैं, ये ऐसी घटना है जिसको किसी ने कल्पना नहीं की।
1: आपका आखिरी दफा कब बात हुई थी प्रतीक से? धर्मेंद्र जी आप बहुत कनेक्टेड थे उन लोगों से।
2: नहीं, मिलते रहते थे समय समय पर।
1: कैसा नेचर था, पशु प्रेमी थे?
2: बाद में बात करेंगे।
1: तो आप सुन रहे हैं दुख की घड़ी है। धर्मेंद्र यादव जो है सपा सांसद, उनसे हमने खास बातचीत की, अभी अभी वो भी पहुंचे हुए हैं। सामने की तरफ भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सामने की तरफ दिखाइए, वो गेट है, यहीं से कल एक एम्बुलेंस जाती है जिसमें प्रतीक, अगर घटनाक्रम को मैं समझाऊं तो ये जो आवास आप इस वक्त देख रहे हैं, इस आवास पर आज कई सारे कैमरे आपको दिखाई पड़ेंगे, इस गेट के भीतर कई सारे कैमरे दिखाई पड़ेंगे। कल 5:55 का वो समय था जब एक गाड़ी यहां से निकली, शायद एक रात पहले जब प्रतीक यादव इस घर में पहुंचे होंगे, जिस भी जगह से पहुंचे होंगे उनको अंदाजा नहीं होगा कि वो दोबारा इस घर से निकल पाएंगे जीवित अवस्था में, क्योंकि उसके बाद उनका शव या यूं कहें पार्थिव शरीर यहां से निकलता है कल अस्पताल के लिए, और आज निकलेगा क्रिमेशन यानी कि अंतिम संस्कार के लिए। 11:30 से 12 के बीच जो अंतिम संस्कार है उसके लिए यहाँ परिवार के साथ निकलेंगे। और गहमा गहमी आप अगर देखें तो लगातार सपा के जो नेता हैं उनका आना शुरू हो चुका है, शिवपाल सिंह यादव पहुंच चुके हैं, धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे हैं। तो कल मिलाकर चाचाओं के प्रिय कहे जाते थे प्रतीक, पशु प्रेमी तो थे ही लेकिन पारिवारिक तौर पर क्योंकि वो राजनीति से अलग रहे, उन्होंने कभी राजनीति में आने की भी नहीं सोची, लेकिन उनके संबंध जो थे वो बहुत, जी जैसा कि धर्मेंद्र यादव
0: जी समर्थ
1: इमोशनल
0: समर्थ आप हमारे साथ बने रहिए और हम लगातार आपके पास लौटते रहेंगे। लेकिन अब आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक प्रतीक यादव को डीवीटी की बीमारी थी, ये खबर आ रही है, ये बड़ी खबर हमारे पास है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें नसों में अचानक खून जमने लगता है, इसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। खास तौर पर इसमें पैर प्रभावित होता है। खून जमने से नसों में ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल बंद होने लग जाता है। कई बार ऐसे हालात भी बन जाते हैं कि खून का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट टूटकर फेफड़ों तक पहुंच जाता है और वो पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। ये गंभीर और जानलेवा स्थिति होती है। इस दौरान पीड़ितों को कड़ी मेडिकल निगरानी में रखा जाता है। प्रतीक यादव का भी करीब 5 साल से इसका इलाज चल रहा था। 29 अप्रैल को वो अस्पताल में एडमिट भी हुए थे और वजह यही बताई जा रही है। उनकी हालत को देखते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था, लेकिन 1 मई को प्रतीक यादव ने अस्पताल के डॉक्टरों से कहा था कि वो अब घर जाना चाहते हैं और कागजी प्रक्रिया पूरी कर वो घर चले भी गए थे। हालांकि घर पर वो मेडिकल निगरानी जारी थी, लेकिन 12 और 13 मई की जो रात थी उसमें स्थिति बिगड़ी और वो बचाए नहीं जा सके। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि डीवीटी होता क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसके लक्षण क्या है। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि मुख्य रूप से इसमें आपके पैरों में खून जमना शुरू हो जाता है, मांसपेशियों में जिसे कहते हैं दर्द और ऐठन, जिसे हम क्रैम्प्स के नाम से भी जानते हैं, वो पैदा होती है। त्वचा पर नीले निशान आने लग जाते हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आने लग गई है, सीधा उसी का रुख करते हैं। प्रतीक से ही जुड़ी ये खबर है। समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने प्रतीक की मौत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने डॉक्टरों के हवाला देते हुए कहा है कि प्रतीक को जहर दिया गया, शरीर पर नीले नीले धब्बे पड़े हुए थे, ये कहना है रविदास मेहरोत्रा का। वो ये दावा कर रहे हैं कि प्रतीक की मौत संदिग्ध है और इसकी जांच की जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता हैं रविदास मेहरोत्रा और अब वो ये सवाल उठा रहे हैं कि उनके शरीर पर नीले धब्बे थे।
3: जब अस्पताल पहुंचे वो तो उससे पहले ही उनकी मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा अस्पताल पहुंचते ही कि इनकी मौत हो चुकी है। मैंने पूछा उनसे कि अगर मौत हो गई है तो इनका पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये सामान्य मौत नहीं है, ये संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। तो उनको पॉइजन दिया गया, उनके शरीर में नीले नीले धब्बे पड़े हुए थे। किसी सामान्य व्यक्ति मौत पर पोस्टमार्टम नहीं होता है, संदिग्ध परिस्थितियों में होने के कारण उनकी मौत का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद 5 घंटे तक उनके शव को मॉर्चरी में रखा गया और हम लोगों ने ये मांग करी है कि उनकी मौत के कारणों की जांच कराई जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा कि इनके शरीर पर चोटें हैं और उनका शरीर नीला पड़ा हुआ है, लगता है कि उनको जहर दिया गया है। अभी भी उनका शव घर में रखा है, जिसको देख करके आप जान सकते हैं कि उनकी मौत सामान्य नहीं है। हम लोगों ने मांग करी है कि हाई कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश से इनकी प्रतीक यादव की मौत की जांच कराई जाए।
0: और रुक करते हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव का, जो इस वक्त वहीं मौजूद है जहां से अंतिम यात्रा शुरू होगी। लेकिन समर्थ, जिस तरह के सवाल अब उठ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता खुद ये सवाल उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि कुछ न कुछ संदिग्ध है, क्यों?
1: देखिए, अगर मेडिकल भाषा में समझा जाए तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर, क्योंकि विसरा प्रिजर्व हुआ है, हार्ट के सैंपल्स प्रिजर्व हुए हैं, रसायन या जहर जैसी कोई बात है क्या, इसका इसके बाद खुलासा होगा। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य हैं। केशव जी, दुख की घड़ी है, आप आज तक पर लाइव हैं इस वक्त, क्या कहेंगे?
4: देखिए, दुख की घड़ी में हम लोगों की संवेदनाएं हैं, भगवान से ही प्रार्थना है कि इस परिवार को जो बेसमय ऐसा महासंकट आया है उसको सहने की शक्ति दें और प्रतीक यादव जी को अपने भगवान श्री चरणों में स्थान दें। और यह दुखद घटना, चूंकि इतनी कम आयु में किसी को चले जाना, मतलब बहुत पीड़ादायक होता है, और 38 वर्ष की आयु कोई ऐसी आयु नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत इस प्रतीक यादव जी के निधन से दुखी हैं और पूरे परिवार के साथ खड़े
1: हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, उन्होंने आज तक से बातचीत की है और अभी निकल रहे थे क्योंकि मिलने आए थे। और अब राजेश्वर सिंह जो भाजपा के एमएलए, जैसा मैंने कहा भाजपा सपा पार्टियों का इस वक्त नहीं दिया गया है। आप दरवाजे की तरफ देखें, गेट की तरफ देखें तो एक के बाद एक नेताओं का जो आना जाना लगा है और शायद ये बहुत रेयर पिक्चर है सियासत में जहां पर आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ता एक ही स्थान पर एक साथ इकट्ठे नजर आएंगे। एक बार वाइब फ्रेम दिखा दें अगर जल्दी से तो आपको दिखा भी सकते हैं हम यहां पर, क्योंकि जब भाजपा के नेता मंत्री पहुंचते हैं तो उनके साथ उनके कार्यकर्ता, जब समाजवादी पार्टी के नेता मंत्री पहुंचते हैं तो उनके साथ उनके नेता कार्यकर्ता हैं। घड़ी दुख की है लेकिन किसी न किसी बहाने आज सियासत एक जगह आकर खड़ी हुई नजर आ रही है।
0: जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए समर्थ। और इस वक्त हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know, and new favorites waiting to be discovered. Just search music, or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट?
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
6: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
7: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
8: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
9: नहीं,
8: और म्यूचुअल फंड से
9: सही।
10: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
11: Like I said before, we better hold the sins.
12: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
13: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
14: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
15: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
16: लायन डेट नट बाइट्स।
17: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
18: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
19: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
18: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
20: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
17: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
21: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
22: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
6: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
7: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
6: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
8: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
5: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर। इन एसोसिएशन विद
9: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
10: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
12: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
13: प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, उस आह्वान का पालन करते हुए ईंधन बचाना, ऊर्जा का संरक्षण करना, राष्ट्रीय जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना, उसका आज मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है और सभी मंत्रियों को, अधिकारी गणों को निर्देश भी दिया है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल करेंगे और बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे और सरकारी गाड़ी का भी न्यूनतम इस्तेमाल किया जाए, ऐसा दिल्ली सरकार का निर्णय है।

नौकरी की सुरक्षा और करियर के सुनहरे सपने दिखाने वाला आईटी सेक्टर इन दिनों खौफ के साए में। कल तक जो कंपनियां टैलेंट की तलाश में रहती थी, वही आज अपने दफ्तरों के दरवाजे बंद कर रही हैं। ये संकट किसी एक कंपनी का नहीं है, ये दिक्कत पूरी टेक इंडस्ट्री में है, जो बदलाव के ऐसे दौर से गुजर रही है जहां इंसान से ज्यादा एआई की अहमियत बढ़ गई है। इस साल की शुरुआत ही ग्लोबल टेक मार्केट के लिए किसी बुरे सपने की तरह हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2026 के शुरुआती 5 महीनों में ही टेक सेक्टर के 92,000 से ज्यादा नौकरियां खत्म हो गई हैं। अकेले अप्रैल में 45,000 कर्मचारियों की छटनी हुई है, जो पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा है। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियां लगातार अपने स्टाफ में कटौती कर रही है। कंपनियां इस छटनी की वजह कोरोना के समय हुई ज्यादा भर्ती और एआई से बढ़ती एफिशिएंसी को बता रही है, लेकिन हकीकत यह है कि मशीनी दिमाग अब तेजी से वर्कफोर्स की जगह ले रहा है। यही वजह है कि ब्लॉक इंक, अमेजॉन, मेटा, स्नैप, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई बड़ी कंपनियां कर्मचारियों की छुट्टी कर रही हैं। इसकी वजह है कोडिंग में कर्मचारियों की जगह एआई लेता जा रहा है। एक तरफ टेक कंपनियां मिडिल क्लास कर्मचारियों को पिंक स्लिप थमा रही हैं, तो दूसरी तरफ एआई पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। डेटा के मुताबिक गूगल, मेटा, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट इस साल एआई पर $674 अरब खर्च करने वाले हैं। ये खर्च 2 साल पहले के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। एआई पर बढ़ता निवेश और कर्मचारियों की घटती संख्या सब बताती है कि कंपनियां वर्कफोर्स का ढांचा बदल रही हैं। इस पूरी उथल पुथल का असर कर्मचारियों के कॉन्फिडेंस पर भी पड़ा है। ग्लासडोर की रिपोर्ट के मुताबिक टेक सेक्टर में काम करने वाले लोगों का भरोसा गिरकर 47% पर आ गया है। एट्रिशन रेट कम होने की वजह से कंपनियां परफॉर्मेंस के नाम पर लोगों को बाहर निकाल रही हैं। ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसे एआई टूल्स पूरे वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर रहे हैं। कंपनियां फायदे में होने के बावजूद छोटे और फोकस्ड एआई आधारित टीम के साथ काम करना चाहती हैं। आईटी सेक्टर में आया ये बदलाव इशारा करता है कि आने वाले वक्त में डिग्री नहीं, एआई के साथ तालमेल बिठाने की कला ही करियर बचा पाएगी। आदित्य किराणा, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: राहुल गांधी के देश दौरे पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा 22 साल में 54 निजी यात्रा पर खर्च किए 7 करोड़ रुपए, 10 साल में आमदनी हुई सिर्फ 11 करोड़, कांग्रेस से पूछा किसने की फंडिंग।
2: ऊर्जा संकट के बीच कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का सख्त संदेश, कम से कम गाड़ियों के इस्तेमाल की नसीहत, वाहन खरीद पर गाइडलाइन जारी, 2 गाड़ियों तक सिमटा प्रधानमंत्री का काफिला।
1: खाड़ी में तनातनी के बीच चीन में बैठे राष्ट्रपति ट्रंप, बीजिंग में शी जिनपिंग के साथ विपक्षी वार्ता, ट्रंप ने शी को बताया महान नेता, बोले हम मिलकर दुनिया बदलेंगे।
2: दिल्ली में आज से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, मिडिल ईस्ट तनाव और ऊर्जा संकट पर हो सकती है बात, प्रधानमंत्री मोदी भी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे।
1: में एनडीए की संदिग्ध भूमिका पर देश भर में हल्ला बोल, सुप्रीम कोर्ट में याचिका, अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार, जयपुर से महाराष्ट्र तक जुड़े तार।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक मौसम ने भारी तबाही मचाई है। यूपी में आंधी तूफान से अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है।
0: अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है, देखते देखते हर तरफ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और भारी भरकम पेड़ उखड़ गए हैं। कई जगह दीवारें धराशायी हो गई हैं। हवा ने सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा कर दिया माहौल को, और इस तूफानी तबाही के साथ ही आसमान से गिरी बिजली ने भी जमकर कहर बरपाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मारे गए लोगों के परिवार के प्रति शोक व्यक्त किया है। सीएम ने सभी जिलों के डीएम को फील्ड पर उतर कर प्रभावित परिवार से संवाद स्थापित कर सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
1: और आइए शुरुआत करते हैं शतक आज तक की।

0: अमेरिका ईरान युद्ध के बीच दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। भारत मंडपम में जुटे सारे मेहमान, ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची भी मौजूद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे के कारण चीन के विदेश मंत्री नहीं आए, उनकी जगह चीनी राजदूत चीन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एमी के अनुसार चर्चाओं को मुख्य केंद्र, प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम, सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कई नई दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी करेंगे मुलाकात। इस बार ब्रिक्स समिट की थीम भारत की मानवता सबसे पहले और जन केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित। पीएम मोदी ने 2025 में दिया था जोर। ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जिनपिंग ने ट्रंप का किया स्वागत। मुलाकात के दौरान ट्रंप को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जिनपिंग ने कहा, अमेरिकी और चीन के रिश्ता वैश्विक स्थिरता के लिए बेहद अहम। जिनपिंग बोले, दोनों देशों को प्रतिद्वंदी नहीं साझेदार बनना चाहिए। तो ट्रंप ने भी जिनपिंग को अपना दोस्त होना सम्मान की बात कही। ट्रंप प्रतिनिधिमंडल में एलन मस्क, एप्पल सीईओ टिम कुक और बोइंग सीईओ समेत कई बड़े अमेरिकी कारोबारी शामिल। बैठक में व्यापार, टैरिफ, सेमीकंडक्टर, एआई, रेयर अर्थ मिनरल्स और ताइवान जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना।
1: बीएसएफ कैंप के बाहर आईईडी ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा। सिम कार्ड से धमाका करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जलंधर आईईडी ब्लास्ट केस में पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भाटी का कनेक्शन सामने आया। आरोपी ने सिम कार्ड लगाकर कॉल से किया धमाका। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर एरिया से मिला था आरोपी को विस्फोटक। पुलिस विस्फोटक देने वाले आरोपी की भी कर रही है तलाश। सूत्रों के मुताबिक पंजाब का रहने वाला है यह आरोपी। पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर पैन इंडिया ऑपरेशन। केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर 24 घंटे से कार्रवाई जारी। आतंकी नेटवर्क के खिलाफ पैन इंडिया ऑपरेशन तेज। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी और हरियाणा समेत कई राज्यों में पुलिस की छापेमारी जारी। सूत्रों के मुताबिक शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया से सैकड़ों युवाओं का नेटवर्क बनाया, ब्रेन वॉश कर आतंकी घटनाओं को दिला रहा था अंजाम। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के गुर्गे आबिद जट और अजमल गुजर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को करते थे रिक्रूट। युवाओं को पैसों का लालच देकर भट्टी देता कई टास्क, फिर वो देते थे वारदात को अंजाम।
0: अखिलेश यादव के भाई प्रतीक का आज अंतिम संस्कार। कल लखनऊ में हुआ था निधन। पार्थिव शरीर ले जाने वाले वाहन को फूलों से सजाया गया। घर के अंदर बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं अंतिम दर्शन। प्रतीक यादव की मौत का मामला एनएचआरसी पहुंचा। ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली एनजीओ ने की शिकायत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ों की नसों में खून का थक्का जमने से हार्ट अटैक आया, जिससे मौत हुई। प्रतीक यादव के लखनऊ आवास पर लोगों की भीड़ उमड़ी। कन्नौज, इटावा समेत कई जिलों से अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे समर्थक। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में देश भर में छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने दावा किया कि मामले में बड़े लोगों का नाम बचाया जा रहा है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग की। अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं ने परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई। केजरीवाल ने कहा कि जेन जी जवाबदेही तय करने के लिए बड़ा दबाव बना सकती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो को नासिक से गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार की 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली। जांच एजेंसियां नेटवर्क और पेपर लीक के पूरे रैकेट की पड़ताल कर रही हैं। फाइमा ने नीट पेपर लीक मामले में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केरल के एक एमबीबीएस छात्र पर भी गेस्ट पेपर भेजने के आरोप सामने आए।
1: कांग्रेस आज केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। सीएलपी बैठक में फैसला संभव। प्रतिपदास मुंशी आज की बैठक में केरल के नए मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा कर सकती हैं। असम कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने को मंजूरी दे दी है। हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि आदिवासी समुदाय यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगे और बिल 26 मई को पेश होगा। प्रवीण सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर पद पर 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या 17 से घटाकर 2 कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव। नीतीश कुमार समेत बिहार सरकार के मंत्रियों ने भी अपने काफिलों में गाड़ियों की संख्या कम करने का फैसला किया। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने काफिले में कटौती की पहल की। नितिन गडकरी ने अपने काफिले का आकार 50% तक घटाने का निर्णय ले लिया है। भूपेंद्र पटेल और राज्य सरकार के मंत्रियों ने भी काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का फैसला किया।
0: अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दामों में बढ़ोतरी कर उपभोक्ताओं पर असर डाला है। मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपए बढ़ाए, नई दरें आज से लागू हुई। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद सोना 8,550 रुपए और चांदी 20,500 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। बाजार में तेजी देखी गई। सोने की कीमत 1,65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंची। निवेशकों में हलचल तेज। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 95.8 के स्तर पर गिरा। करेंसी बाजार में दबाव बना रहा। नरेंद्र मोदी 15 मई से 5 देशों की विदेश यात्रा पर जाएंगे। कई अहम बैठकों का कार्यक्रम तय। पहला पड़ाव संयुक्त अरब अमीरात में ऊर्जा और व्यापार सहयोग पर होगी उच्च स्तरीय चर्चा। इटली, नेदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन की यात्रा पर पीएम के कार्यक्रम में शामिल। संजय मल्होत्रा ने चेताया, पश्चिम एशिया संकट लंबा खींचने पर ईंधन महंगा हो सकता है। स्विट्जरलैंड कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने कहा, सरकार राजकोषीय मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रही है।
1: छतरपुर के आदिवासी किसानों ने पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव करते हुए उन्हें भगाया और तोड़ी गाड़ियां। नागपुर के झिल्पी तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत। ललितपुर में नशे में धुत स्कॉर्पियो कार ने कई बाइक और राहगीरों को कुचला, 2 की मौत, आधा दर्जन से भी अधिक लोग घायल। चोटिला राजकोट हाईवे पर डंपर के साथ बस की टक्कर से 4 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। खगड़िया में पिता की मौत से आहत बेटे ने किया मां पर हमला, आरोपी गिरफ्तार। पटना में दिन दहाड़े सीएमएस कैश वैन से 27 लाख की हथियारबंद लूट। वारदात के बाद इलाके में सनसनी, बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। अलीगढ़ पुलिस ने नकली नोटों के बड़े अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ कर 4 आरोपियों को दबोचा। छापेमारी में लाखों रुपए की फर्जी करेंसी बरामद। कई राज्यों तक फैले नेटवर्क की जांच तेज। पुणे के अस्पताल परिसर में संदिग्ध बम मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध सामग्री को सुरक्षित निष्क्रिय कर इलाके को कराया खाली। हनुमानगढ़ में भीषण आग लगने से 2 घर जलकर राख, 2 महिलाएं और 4 मवेशी झुलसे। दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नुकसान का आकलन जारी। कोटा में सीएमएचओ कार्यालय के पीछे खड़ी कबाड़ एम्बुलेंसों में लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बड़ा हादसा टला।
0: दिल्ली में स्लीपर बस में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात। बस के ड्राइवर और संचालक को किया गया गिरफ्तार, बस भी जब्त। दिल्ली के कंझावला इलाके में स्थित फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी। मौके पर दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के भिवाड़ी में फाइबर फैक्ट्री में आग, दूर तक दिखी लपटें और धुआं। गुजरात के पाटन में कबाड़ गोदाम में भीषण आग। गैस वेल्डिंग की चिंगारी से हादसे की आशंका। खेड़ा के सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स में वड़ा पाव की दुकान में आग। घरेलू सिलेंडर से बढ़ी आग की लपटें। यूपी में आंधी तूफान ने मचाई भारी तबाही। अलग अलग जिलों में अब तक 89 लोगों के मरने की खबर, कई लोग घायल। सीएम योगी ने बारिश और बिजली गिरने से हुई मौत पर लिया संज्ञान। 24 घंटे में मुआवजा देने का ऐलान। सीएम योगी ने डीएम और अधिकारियों को मौके पर जाने और पीड़ितों को हर संभव मदद देने के दिए निर्देश। तूफान से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी। जिला अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश। भदोही में भीषण आंधी तूफान से 15 की मौत, 8 लोग घायल, 16 मवेशियों की मौत।
1: प्रयागराज में बुधवार शाम आई धूल भरी आंधी ने मचाई सबसे भीषण तबाही। अब तक 17 लोगों की मौत। मिर्जापुर में तेज आंधी से कई इलाकों में अब तक करीब 10 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। फतेहपुर में तेज आंधी तूफान से अलग अलग जगह 9 लोगों की मौत। पीड़ित परिवार को एसडीएम ने दिया मदद का भरोसा। हरदोई में आई आंधी तूफान ने 2 परिवारों की छीनी खुशियां। अलग अलग हादसे में 2 मासूम बच्चियों की मौत। कौशाम्बी में तूफान के बाद कई घरों में लगी आग। 12 परिवारों की गृहस्थी जलकर हुई राख, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। कानपुर देहात में बिजली गिरने से 1 लड़की की मौत, जबकि दीवार गिरने से 1 बच्ची की भी चली गई जान। सोनभद्र में धूल भरी आंधी से जिला पंचायत का भारी भरकम बोर्ड गिरा। स्टेट हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी लाइन। गोरखपुर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। उन्नाव में आंधी में कार पर गिरा नीम का पेड़, ड्राइवर ने समय रहते कार से कूदकर बचाई अपनी जान। अलवर में तूफान में टीन शेड गिरने से युवती की मौत, जिले भर में बिजली गुल।
0: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु ने बुधवार को खेले गए आईपीएल मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। जीत के साथ बैंगलुरु पॉइंट टेबल में टॉप पर। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने वाली कोलकाता ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 192 रन बनाए। जवाब में बैंगलुरु ने 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल किया। किंग कोहली ने लगाया नौवां आईपीएल शतक, 60 गेंदों में खेली 105 रन की धुआंधार नाबाद पारी, 11 चौके और 3 छक्के शामिल। देवदत्त पड्डीकल ने 39 रन बनाए जबकि जेकब बेथल ने 15 रन का योगदान दिया। आखिर में जितेश शर्मा 8 रन बनाकर नाबाद लौटे। कोलकाता की ओर से कार्तिक त्यागी ने 3 विकेट लिए जबकि सुनील नरेन को एक सफलता मिली। केकेआर की ओर से रिंकू सिंह ने तेज बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंद में नाबाद 49 रन बनाए। आज खेला जाएगा आईपीएल का 98वां मैच, पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच होगा कड़ा मुकाबला। मुंबई इंडियंस बिना दबाव खेलेगी ये मैच, पहले नॉकआउट की दौड़ से बाहर हो गई ये टीम। लगातार 4 मैचेस हार चुकी है पंजाब, अब प्लेऑफ की रेस में लगातार बढ़ रहा है दबाव। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वापसी की उम्मीद लेकर उतरेगी पंजाब की टीम। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस भी सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। मौसम बिगाड़ सकता है खेल का मजा, धर्मशाला में हो रही है झमाझम बारिश, मैच से पहले भी बूंदाबांदी की आशंका।
1: वेलकम टू द जंगल से अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक आउट। अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की तस्वीर। रिलीज से पहले दृश्यम 3 ने एडवांस बुकिंग से की करोड़ों की कमाई, 21 मई को होगी रिलीज। दशहरा पर तहलका मचाएंगे इमरान हाशमी, गन मास्टर G9 होगी रिलीज। जिनेलिया देशमुख और अपार शक्ति खुराना भी आएंगे नजर। लगभग 14 साल बाद शेखर टुनाइट नाम के एक टॉक शो से शेखर सुमन कर रहे हैं वापसी, सामने आए ट्रेलर। धुरंधर फेम राकेश बेदी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म है जवानी तो इश्क होना है के स्टेप्स। फिल्म के गाने वाओ पर बना है ये वीडियो और ये हुआ वायरल।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
0: और अब बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे की। टीम जिनपिंग के साथ डेलीगेशन लेवल वार्ता हो रही है और मुद्दा ईरान जंग को रोकने का है। तो ताइवान में जंग की नौबत ना आए इस पर भी बात करने का है। अमेरिकी मीडिया ने ताइवान को तूल दिया है।
1: ट्रंप के दौरे के बीच लिखा है कि अगर अमेरिका ताइवान मसले का हल नहीं निकाला तो जंग का एक और मोर्चा खुल जाएगा। इससे पहले ट्रंप का बीजिंग में जबरदस्त स्वागत भी किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो ट्रंप ने शी जिनपिंग को महानेता बताकर बातचीत से पहले डिप्लोमेटिक दांव भी चल दिया है। और ट्रंप बड़े कारोबारियों के साथ चीन आए हैं। ट्रंप के प्रतिनिधिमंडल में एलन मस्क, एप्पल सीईओ टिम कुक और बोइंग सीईओ समेत कई बड़े अमेरिकी अधिकारी शामिल हैं। जाहिर है ट्रंप जियोपॉलिटिक्स के साथ कारोबारी डील पर भी ध्यान देंगे। व्यापार, टैरिफ, सेमीकंडक्टर, एआई, रेयर अर्थ मिनरल्स और ताइवान जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
3: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
0: वहीं चीन अमेरिकी वार्ता को लेकर चीनी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। चीनी सरकारी मीडिया शिनहुआ के मुताबिक बैठक में शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान का मुद्दा अमेरिका चीन रिश्तों में सबसे अहम है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसे सही तरीके से नहीं संभाला गया तो दोनों देशों के रिश्ते बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच सकते हैं।
1: आपको बता दें कि ताइवान लंबे समय से अमेरिका और चीन के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है जबकि अमेरिका ताइवान को सैन्य और राजनीतिक समर्थन देता रहा है। हाल के वर्षों में अमेरिका ने ताइवान को अरबों डॉलर के हथियार पैकेज की मंजूरी भी दी है जिसका चीन लगातार विरोध करता रहा है।
0: वहीं बंगाल के स्कूलों को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला आया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा है कि सोमवार से सभी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन होना चाहिए। राष्ट्रीय गान के साथ साथ इस राष्ट्रीय गीत को भी गाया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि मैं सचिवालय पहुंचकर आदेश जारी कर दूंगा इस बारे में कि वंदे मातरम को सभी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया जाए। तो इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो बंगाल से है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि अब वंदे मातरम को भी स्कूलों में अनिवार्य किया जाए। इसी के साथ यहां रुकना होगा से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
7: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
6: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: सो कुडो

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीकी मैक्स।
1: सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीकी मैक्स।
4: वैसे रोहन, पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
9: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU,
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: Director, the taste of success.
12: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
13: पर मार्केट की समझ ना, बाउंसर जा रही है।
12: आप कैसे कर लेते हो?
14: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
13: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते हो धीरज को अपने साथ रखो,
14: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
12: नहीं,
13: और म्यूचुअल फंड्स है
12: सही।
15: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
16: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
17: Like I said before, we better hold this in.

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you? Hint: bade aaram se. Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank. Bharose ka prateek. समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल. विमल, बोलो जुबा केसरी.
1: 23 और 29 अप्रैल वोटिंग.
2: 90% क्रॉस कर गई बंगाल की वोटिंग.
3: ये बढ़ा हुआ मतदान आखिर किस तरफ जाएगा?
1: 4 मई काउंटिंग.
2: भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई है
4: रुझानों में, बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए.
1: 8 मई सीएम का ऐलान.
5: शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे.
1: 9 मई शपथ.
6: शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते छी जे.
1: यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट, सर्च में नंबर 1, गूगल ट्रेंड्स में नंबर 1, लाइव स्ट्रीम में सबसे आगे. टीवी हो, डिजिटल हो, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर आज तक रहा चुनाव में सबसे आगे. चुनाव मतलब सिर्फ आज तक.

0: करोड़ कांग्रेस से पूछा किसने की फंडिंग। बीजिंग में ट्रंप के सामने चीन आक्रामक, कहा अमेरिका ने उठाया ताइवान का मुद्दा तो हो सकता है टकराव। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा हमारे हित सबसे ऊपर, जिनपिंग को बताया महान नेता।
1: दिल्ली में आज से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, मिडिल ईस्ट तनाव और ऊर्जा संकट पर हो सकती है बात, पीएम मोदी भी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे।
0: नीट पेपर लीक मामले में एनटीए की संदिग्ध भूमिका पर देश भर में हल्ला बोल, सुप्रीम कोर्ट में याचिका, अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार, जयपुर से महाराष्ट्र तक जुड़े तार।
1: आंधी बारिश और बिजली गिरने से कई राज्यों में जानलेवा तबाही, यूपी में अब तक 89 की मौत, सीएम योगी का निर्देश, मौके पर जाएं डीएम, मिलेगा मुआवजा।

0: नीट पेपर लीक मामले की करेंगे इसकी जांच की कमान अब सीबीआई के सुपुर्द है। सीबीआई को अब देश के शिक्षा व्यवस्था पर कलंक बनकर चिपक चुके इस केस की तह तक जाना है, लेकिन सीबीआई के लिए ये जांच आसान नहीं होने वाली है।
1: अब तक की जांच में ये साफ लगता है कि इस बार भी पेपर लीक करने में पुराने गैंग का हाथ हो सकता है। जिस गिरोह की को पिछली बार कार्रवाई कर खत्म कर देने का दावा किया गया था, उस पर शक की सुई एक बार फिर से जा रही है और शक के दायरे में एनटीए के वो भेदिये भी हो सकते हैं जिन्होंने गोपनीय जानकारी लीक की और पेपर लीक हुआ।
0: तो जयपुर से तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये तीनों एक ही परिवार के हैं और ये कहा जा रहा है कि पिछले साल इनके परिवार के 5 लोगों ने नीट की परीक्षा पास की थी। अब एक्शन में सीबीआई है। आरोपी का एक बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि बड़े अधिकारियों के नाम बचाए जा रहे हैं और उनको इस पूरे मामले में निशाना बनाया जा रहा है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। छात्र दरअसल ये कह रहे हैं कि हमारा समय नष्ट किया गया है और ऐसे में दोबारा परीक्षा उनके लिए काफी बड़ी जिम्मेदारी।
1: और इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद कुमार। शरद, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी जांच है वो अब सीबीआई के हाथ में है, लेकिन जो दावा एक आरोपी की तरफ से किया गया है कि बड़े बड़े नाम बड़े बड़े लोग दायरे के बाहर हैं, तो क्या पता चल रहा है इस पूरे मामले में?
2: देखिए, ये पुराना गैंग है और ये गैंग काफी दिनों से काम कर रहा है, ऐसा सीबीआई पता कर चुकी है। और अभी जब मैं यहाँ जमवारामगढ़ में खड़ा हूँ, ये मांगीलाल और दिनेश का घर है, तो इनके घर की औरतें भी कह रही हैं ये तो कई सालों से काम हो रहा था। ये लोग एक कुरियर की तरह काम कर रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि इसी बीच अपने ये पांचों बच्चों को MBBS भी करा लिया और छठे को भी इस बार करा रहे थे। मगर ये जो सीबीआई को अब तक जांच में पता चल पाया है कि पैन इंडिया एक गिरोह है जो पूरे इसमें काम कर रहा है, नीट के पेपर आउट में पुराना गिरोह है। कोई न कोई जो एनटीए के अंदर भी शामिल हुआ हो सकता है, जो सीक्रेट जानकारियां अब तक दे रहा था। और जिस तरह से मनी का ट्रेल रहा है, उस मनी ट्रेल को ये पीछा करते करते पहुंचे हैं। विकास, जैसा कि सवाई माधोपुर में MBBS का स्टूडेंट था, इस मांगीलाल का बेटा, ये दोनों, ये पहले मांगीलाल इसमें ग्रुप में जुड़ा था, बेटा भी जुड़ गया था, और यश यादव जुड़ा हुआ था, वहां से नासिक जुड़ा हुआ था, नासिक से पुणे जुड़ा हुआ था। वो आखिरी में ये जो हार्ड कॉपी निकला है, प्रिंटिंग प्रेस से निकला है, वो कहां से निकला है, किस तरह से निकला है, सीबीआई का ऐसा मानना है कि इसका एपिसेंटर जो है वो महाराष्ट्र है और पुणे और नासिक के बीच में है, जहां से वो जानने की कोशिश कर रही है। अब सभी लोगों को लेकर गया है, ले जाया गया है दिल्ली, और एनटीए में भी छापेमारी हुई है जहां से कुछ हार्ड डिस्क वगैरह जब्त हुए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि बिहार का जो पुराना गैंग था वो भी इसमें शामिल हो सकता है। पिछली बार 2024-25 में ये गैंग पूरी तरह से निस्तानाबूद नहीं हो पाया था, उजागर नहीं हो पाया था, और उसी गैंग का ये काम हो सकता है। ये कोई नया गैंग नहीं है, पुराना गैंग है, प्रशिक्षित गैंग है। इस बार इस गैंग में मांगीलाल का भाई जो है दिनेश, जिसे बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, ये पहली बार जुड़ा था और ये लालच के चक्कर में अपने बेटे के साथ मिलकर बेचने लगा, जिसकी वजह से ये खुलासा हो गया। वरना ये गैंग फुल प्रूफ काम कर रहा था और किसी को पता नहीं चल पाया था कि ये इस तरह से ये पेपर लीक कर चुके हैं।
0: लौटेंगे आपके पास। तो जिस मनीष बागमारे को पुलिस ने हिरासत में लिया, उसके 21 बैंक खातों में लाखों रुपए जमा होने का खुलासा हुआ है। ये सारी रकम नीट परीक्षा के दौरान जमा की गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से अलग अलग राज्यों से अब इस पेपर लीक का नेटवर्क और इसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं।
3: नीट पेपर लीक का दायरा सिर्फ उतना बड़ा ही नहीं है जितना अभी दिख रहा है। अभी तक के खुलासे में 4 लोकेशन पेपर लीक के ऑप्शंस में सामने आए हैं। पहला पुणे, जहां से क्वेश्चन पेपर की हार्ड कॉपी निकली। दूसरा नासिक, जहां से पेपर महाराष्ट्र से बाहर निकला। तीसरा गुड़गांव, जहां पहली बार पेपर की खरीद बिक्री हुई। चौथा सीकर, जहां से नीट पेपर का बंदरपाट हुआ, पूरे देश में बटा। अब इस केस की जांच का जिम्मा सीबीआई के कंधों पर है, जिसे ये पता करना है कि इस पूरी साजिश की जड़ें कहां तक फैली हो सकती हैं। सीबीआई को कुछ बड़े और ज्यादा गंभीर सवालों के जवाब तलाशने हैं। मसलन, क्या नीट पेपर में बिहार गैंग का हाथ है? क्या नीट पेपर लीक में पुराना गैंग एक्टिव रहा? क्या एनटीए में भेदिया है जिसका लीक में हाथ है? क्या एनटीए से बेहद सीक्रेट जानकारी लीक हुई?
2: ये पुराना नेटवर्क है। देखिए, कहा जा रहा है कि दिनेश हुए या मांगीलाल हुआ या उसका बेटा विकास हुआ, ये कोई इस साल नहीं किए हैं। ये मानना है कि पुराना नेटवर्क है जो पिछली बार जांच के दौरान नहीं पकड़ में आया था, उसे इस बार खंगाला जा रहा है। और ऐसा मानना है सीबीआई कि इस बार ये नेटवर्क टूट जाएगा। इसके बिहारी जो बिहार के जो गैंग जांच पिछली बार था वो उन्होंने बताया था कहां से पेपर लीक किया, उस शायद सही नहीं बताया होगा। तो उस गैंग को भी एक्टिव जो रखे हुए थे बिहार वाले, उसको भी तलाश किया जा रहा है। इन कुल मिलाकर माना जा रहा है कि इस बार जिस तेजी से जांच बढ़ रही है, जल्दी ही नतीजों पर पहुंचा जाएगा और इस नेटवर्क का खुलासा हो जाएगा। जो राजस्थान से पकड़े गए हैं, ऐसा मानना है कि ये एक नेटवर्क का छोटा सा हिस्सा है।
3: आखिर हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, ये हम आज तक संवाददाता शरद कुमार से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त सीबीआई की गिरफ्त में पेपर लीक के वो 5 किरदार हैं जिनका रोल साफ साफ दिख रहा है और जिन्हें जांच एजेंसी बाकायदा गिरफ्तार कर चुकी है। नासिक से शुभम खैरनार, जयपुर से मांगीलाल बिवाल, जयपुर से विकास बिवाल, जयपुर से ही दिनेश बिवाल, गुरुग्राम से यश यादव। लेकिन इस केस में 2 किरदार और हैं जिनसे पूछताछ हो रही है, जिसके बाद इस केस में कई बड़े राज खुल सकते हैं। पहला धनंजय लोखंडे और दूसरा मनीषा बाघमारे। मनीषा बाघमारे को पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया है। मनीषा के पति डेंटिस्ट हैं और खुद मनीषा ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। जांच एजेंसी को मनीषा के केस के दूसरे आरोपियों के संपर्क में होने का पता चला है। मनीषा और लोखंडे के बीच कुछ व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं जो केस की पड़ताल में अहम सबूत हो सकते हैं।
4: नीट पेपर लीक केस मामले में आपको बता दें कि शुभम खैरनार के अरेस्ट होने के बाद कड़ियां आगे जुड़ते जा रही हैं। शुभम खैरनार के बाद धनंजय लोखंडे, जो कि अहिल्या नगर का रहने वाला है, पुणे से ऑपरेट करता था, उसे डिटेन किया गया। धनंजय लोखंडे के फोन की जांच करने के बाद ये पता चला कि वो मनीषा वाघमारे नाम की एक महिला के संपर्क में था, कंटिन्यूअस टच में था। परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद भी बहुत सारे कॉल धनंजय लोखंडे और मनीषा वाघमारे के बीच एक्सचेंज हुए। मनीषा वाघमारे को डिटेन किया गया, मनीषा वाघमारे के अकाउंट्स की जांच की गई तो ये पता चला कि 21 से 30 लोगों ने 10 लाख की राशि अलग अलग अकाउंट से मनीषा वाघमारे के अकाउंट में जमा करवाई है। ये पैसा, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये संदिग्ध हैं और इसकी जांच अब सीबीआई की टीम कर रही है। मनीषा वाघमारे को भी डिटेन कर लिया गया है।
3: पुणे से ओंकार वाबले, नासिक से दिव्येश सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
1: तो जैसे रिपोर्ट में दिखाया, कई राज्यों में हुई दबिश और जांच, लेकिन जांच का केंद्र बिंदु महाराष्ट्र तक भी पहुंच गया है। जिस मनीषा वाघमारे को हिरासत में लिया गया है, उसके 21 बैंक खातों में लाखों रुपए जमा होने का खुलासा भी हुआ है और ये सारी रकम नीट परीक्षा के दौरान ही जमा की गई है। मनीषा और धनंजय लोखंडे के बीच कई संदेहास्पद व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट भी मिले हैं, जिनकी अभी फिलहाल जांच की जा रही है।
5: आरोपी धनंजय लोखंडे के संपर्क में लगातार मनीषा थी, जिस दौरान नीट परीक्षा चल रही थी उस दौरान भी ये संपर्क में थी। इसके अकाउंट में कई ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो इसी पेपर लीक मामले से जुड़े हुए हैं, जो संदिग्ध बताए जा रहे हैं और सीबीआई का अब लगातार एक्शन जारी है, जिसमें मनीषा भी अब जांच के घेरे में है।
1: तो वही नीट परीक्षा में किस तरह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, इसका एक बड़ा सबूत जयपुर का बिवाल परिवार है, जहां से एक ही साल 5 बच्चों ने नीट की परीक्षा में कामयाबी हासिल कर ली और छठे के लिए भी पेपर लीक करने की तैयारी चल रही थी।

0: ये जमवर रामगढ़ के दो भाई हैं, मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल, जिन्हें आप नीट के नटवरलाल भी कह सकते हैं। बिवाल परिवार की इतनी हैसियत थी, सिस्टम पर इतनी पकड़ थी, ये जब चाहे जिसे चाहे डॉक्टर बनवा सकता था। सबूत ये शख्स खुद दे रहा है। सोशल मीडिया पर इसने पिछले साल पोस्ट कर जो जानकारी दी थी, उस पर गौर कीजिए।
1: मेरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे 5 बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चयन हुआ है। सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: अब जरा जमवारागढ़ के इस परिवार की पूरी फैमिली ट्री समझ लीजिए, जिसकी हर शाख पर एक भविष्य का डॉक्टर है। मांगीलाल का बेटा विकास सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज का छात्र है। मांगीलाल की बेटी प्रगति दौसा मेडिकल कॉलेज की छात्रा है। दूसरे भाई घनश्याम बिवाल की बेटी पलक SMS मेडिकल कॉलेज में है। घनश्याम की बेटी सानिया मुंबई मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। तीसरे भाई दिनेश बिवाल की एक बेटी BHU में स्टूडेंट है। दिनेश का बेटा भी इस बार नीट की परीक्षा दे रहा था, इस वक्त फरार है। जरा सोचिए, ये परिवार कितना मेधावी है, इनके बच्चों में योग्यता कितनी कूट कूट कर भरी है। एक साथ 5-5 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हो जाता है। खैर, इनकी मेधा का राज अब खुला है। जब बिवाल परिवार पर 30 लाख में इस साल पेपर खरीदने का आरोप लगा, आज तक संवाददाता शरद कुमार जब जमवारागढ़ में पेपर लीक कांड में गिरफ्तार बिवाल परिवार के घर पहुंचे, तो मुलाकात आरोपी दिनेश की पत्नी रजनी और उनके केयर टेकर से हुई। रजनी ने आज तक के कैमरे पर कबूल किया कि 4 बच्चों ने पिछले साल नीट की परीक्षा पास की थी।
2: पिछले साल भी नीट में पास हुए हैं?
3: हाँ, हुए ना।
2: कितने लोग?
3: 4 लोग।
2: 4 लोग, 3 लड़कियां और 1 लड़का।
3: हाँ।
2: वो किसके थे?
3: ये मेरे बहन के और मेरे जेठ के।
2: मांगीलाल जी के?
3: हाँ।
2: उनको भी साथ में ले गए हैं दिनेश के?
3: कहाँ?
2: SO जी,
3: मुझे पता नहीं है मैडम।
2: वो भी वो उनसे कब मिली थी आप?
3: मुझे पता ही नहीं है कब मिली थी मैं तो।
0: ये कोठी पेपर लीक कांड में गिरफ्तार मांगीलाल और दिनेश की है। दोनों भाइयों पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। मांगीलाल और दिनेश से पूछताछ में पेपर लीक सिंडिकेट के एक एक राज उगलवाने में जांच एजेंसी जुटी है। जांच एजेंसियां दिनेश के जरिए पेपर लीक के काले खेल से जुड़े बड़े बड़े चेहरों को बेनकाब करना चाहती है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
4: तो दिवेश सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त नासिक से तमाम जानकारी के साथ। दिवेश, नासिक से भी इस पेपर लीक के तार जुड़े हैं, अब नए क्या खुलासे हो रहे हैं वहां पर?
5: जी, आपको बता दें, नासिक से जो शुभम खैरनार था उसे अरेस्ट किया गया था। उसी ने जो गुरुग्राम में जो पेपर लीक हुआ, गुरुग्राम में उसने ही पेपर पहुंचाया था। उसके बाद वो पेपर राजस्थान पहुंचा है। शुभम खैरनार के तार धनंजय लोखंडे से जुड़े हैं। धनंजय लोखंडे अहिल्यानगर जिले का रहने वाला है, पूना से ऑपरेट करता था। उसके तार जोड़ते हुए CBI की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम मनीषा वाघमारे तक पहुंची। मनीषा वाघमारे के अकाउंट में आप देखें तो करीब 10 लाख रुपए 20 से 30 अकाउंट से आए हैं। ये संदिग्ध ट्रांजेक्शन है, इसीलिए मनीषा वाघमारे से भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा एक और आयुर्वेदिक डॉक्टर है, डॉक्टर ओमकार सिंगोटे, जिसे जुन्नर से डिटेन किया गया है, उसका भी रोल सामने आ रहा है। मनीषा वाघमारे का आपको बताएं तो वो एडमिशन कंसल्टेंसी चलाती है, उसके पति खुद एक डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, और वो कंसल्टेंसी के जरिए लोगों की मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी करवाती है। ये संपर्क में थी धनंजय लोखंडे के परीक्षा के वक्त, परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद कंटिन्यूस बहुत सारे कॉल्स रहे हैं, बहुत सारे CDR में ये डिटेल्स मिले हैं। इसीलिए मनीषा वाघमारे की भी जांच हो रही है, धनंजय लोखंडे की जांच हो रही है, और अब आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉक्टर ओमकार सिंगोटे, जो कि धनंजय लोखंडे का दोस्त है, उसकी भी जांच हो रही है, उसे भी डिटेन कर पूछताछ की जा रही है।
6: तो एक बात बताइए कि क्या ऐसा लग रहा है कि ये जांच का केंद्र बिंदु अब महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हो रहा है और स्रोत कहीं ना कहीं लीक का उसी राज्य से निकले?
5: जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अंदेशा देता है कि जो सोर्स है या जो पेपर, जो गेस्ट पेपर जिसे हम कह रहे थे कि जो गेस्ट पेपर लीक हुआ है, उसके तार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि शुभम खैरनार ही वो सोर्स है जिसने उस पेपर को गुरुग्राम तक पहुंचाया। गुरुग्राम से वो पेपर राजस्थान गया और राजस्थान से फिर अन्य कोचिंग क्लासेस में घूमा और फिर अन्य प्रांतों में अन्य स्टूडेंट्स के पास पहुंचा है। तो सोर्स तो महाराष्ट्र में है, ये तो साफ साबित हो रहा है, ये तो साफ अंदेशा दिखाई दे रहा है। पर शुभम खैरनार को देने वाला धनंजय लोखंडे, इसके पास पेपर कहां से आया, मनीषा वाघमारे का क्या रोल है, ओमकार शिंगोटे का क्या रोल है, ये तीनों ही महाराष्ट्र के हैं, तीनों पुणे अहिल्यानगर और छत्रपति संभाजीनगर जिले के हैं, पर तीनों पुणे के आसपास ही ऑपरेट करते थे। तो पुणे से अब ये लिंक जुड़ते जा रही है, नासिक से शुभम खैरनार और पुणे से ये तीन लोग।
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समाप्त जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए।
7: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach in association with
8: Bharat ki apni electric Savari.
9: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
10: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
11: How they looked after game one.
12: I mean, they were frustrated.
10: The Daily.
13: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
10: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
15: Socudo.

टेस्ट पेपर लीक मामले की तफ्तीश राजस्थान से महाराष्ट्र तक चल रही है। उधर विद्यार्थी संगठन आग बबूला है। कांग्रेस के एनएसयूआई तो छोड़िए, बीजेपी की एबीवीपी भी सड़कों पर है, मगर आंदोलन में फर्क है। एनएसयूआई बीजेपी पर सवाल उठा रही है, एबीवीपी एनडीए पर नाराज है। राजस्थान से शुरू हुई जांच घूमकर राजस्थान ही पहुंच रही है। पहले चरण में पेपर नासिक के हाई सिक्योरिटी प्रेस से हार्ड कॉपी की शक्ल में लीक कराया गया। दूसरे चरण में सॉफ्ट और डिजिटल कॉपी की शक्ल में हाथों हाथ बेचा और बांटा गया। इस मामले का फंडाफोड़ करने वाली राजस्थान पुलिस की एसओजी के मुताबिक इनमें अब तक के बड़े चेहरों में नासिक का शुभम खैरनार है, पुणे का धनंजय है, जयपुर का मनीष यादव है, सीकर का राकेश मंडावरिया है, गुरुग्राम का यश यादव है। सबकी धरपकड़ हो चुकी है। अभी ये नहीं पता चल पाया है कि नासिक हाई सिक्योरिटी प्रेस से पेपर की हार्ड कॉपी सबसे पहले किसने लीक की थी, लेकिन ये पता चल चुका है कि महाराष्ट्र से ये पेपर जयपुर में मनीष यादव के पास पहुंचा था। राजस्थान एसओजी और सीबीआई की जांच के अनुसार इस पूरे इंटर स्टेट रैकेट का मास्टरमाइंड मनीष यादव और राकेश मंडावरिया है। इसमें मनीष यादव के ऊपर नासिक से लीक हुए पेपर के सवालों को गेस पेपर के नाम से जयपुर में छपवाने का आरोप है, तो राकेश मंडावरिया उस गेस पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा था। राकेश मंडावरिया राजस्थान के कोचिंग हब सीकर के पिपराली रोड में आरके कंसल्टेंसी नाम से कंसल्टेंसी सर्विस चलाता है। जांच एजेंसियों को शक है कि इसका मुख्य काम पेपर को कोचिंग स्टूडेंट्स के बीच बांटना था। जांच में सामने आया कि उसके पास ये लीक पेपर अप्रैल महीने में ही आ चुका था। जांच में मिले प्राइवेट माफिया नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में पता चला है कि इसमें 400 से ज्यादा लोग जुड़े थे और इसी ग्रुप में लीक पेपर बांटे जा रहे थे। जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब पुणे से डेंटिस्ट की पत्नी मनीषा वाघमारी नाम की महिला भी हिरासत में ली गई है, जो पेपर लीक गैंग के संपर्क में थी। नीट पेपर लीक भंडाफोड़ के बाद से ही कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर निशाने साध रही है। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 में नीट पेपर लीक के दौरान एनटीए के डीजी रहे अधिकारी को छत्तीसगढ़ के सीएम का प्रमुख सचिव बनाकर इनाम दिया गया है। अब कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है कि एसओजी ने जिस मांगीलाल और दिनेश यादव नाम के आरोपी को पकड़ा है, वो राजस्थान के मंत्री के करीबी है। कभी वो राजस्थान के शिक्षा मंत्री के बाएं दाएं दिखते हैं, तो कभी सड़कों पर होर्डिंग लगाकर शुभकामनाएं लगाते दिखते हैं। उसी आरोपी मांगीलाल के घर हमारे संवाददाता

0: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
1: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
0: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
3: In association with
4: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
5: Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
6: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
8: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
10: जब इसकी पुष्टि हुई तो हमने ये समझा कि अगर इस तरह का एक भी वायलेशन होता है तो वह हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ है और जो तमाम 22,69,000 बच्चे परीक्षा की अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य को इम्पैक्ट करेगा। अगर कोई इस तरह से चोरी करके परीक्षा देगा तो वह उनके लिए फेयर नहीं है जो अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके हित में ध्यान रखते हुए हमने यह एक कड़ा निर्णय लिया कि हम यह संदेश दे सकें हर उस क्रिमिनल को, हर उस स्कैमस्टर्स को, हर उस फ्रॉडिये को कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो उसको एनटीए सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे।
11: जांच एजेंसियों ने पाया होगा इसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय ले लिया कि रद्द कर दिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहां भी गड़बड़ दिखाई देगा जहां उस सबको ठीक करने के लिए काम करेगी सरकार। सीकर से कनेक्शन हो या पश्चिम बंगाल से हो या कश्मीर से हो, जहां जहां भी दोषी होंगे उसके छोड़े नहीं आएंगे।
12: सोने की चमक भारतीयों के लिए हमेशा से भरोसे का प्रतीक रही है, लेकिन ये चमक देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सेहत बिगाड़ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है, जिससे बाजार में खलबली मच गई है।
13: मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
12: भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेशों से डॉलर देकर खरीदता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार है, जिसने बीते साल 72 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट किया। देश के कुल 775 अरब डॉलर के इंपोर्ट बिल में सोने का हिस्सा करीब

0: 10% रहा। ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक साल भर में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का सोना आयात किया जा रहा है। ऐसे में अगर शादियों के लिए भी साल भर सोना ना खरीदा जाए तो 20 से 36 अरब डॉलर तक की बचत मुमकिन है। सोने की खरीदारी में आई जरा सी कमी डॉलर के आउटफ्लो को रोककर रुपए को मजबूती दे सकती है। हालांकि कारीगरों समेत पूरे ज्वेलरी सेक्टर के लिए ये मुश्किल वक्त हो सकता है। आर्थिक मोर्चे पर इस घेराबंदी का असर केवल सोने तक सीमित नहीं है, टूरिज्म सेक्टर पर भी नुकसान की आशंका गहरा गई है। पीएम ने भारतीयों से विदेशी छुट्टियां और विदेशों से डेस्टिनेशन वेडिंग्स टालने की गुजारिश की है।
1: क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां मनाएं, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाएं, हम अपने स्थानों पर गर्व करें? और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं।
0: यह अपील ट्रेवल एजेंट्स और एयरलाइंस की जेब पर असर डालेगी, क्योंकि भारतीय सैलानी हर साल विदेशी दौरों पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। वैसे सरकार का मकसद इस भारी भरकम खर्च को डोमेस्टिक टूरिज्म के भीतर मोड़ने का है। पीएम की इस मुहिम का सीधा असर आम आदमी की लाइफस्टाइल पर भी पड़ने वाला है। ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम को दोबारा शुरू करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है, यानी इस वक्त फिजूल खर्ची पर लगाम लगाना ही सबसे बड़ी देशभक्ति बताई जा रही है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

राहुल गांधी के विदेश दौरे पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा 22 साल में 54 निजी यात्राओं पर खर्च किए 60 करोड़ रुपए, 10 साल में आमदनी हुई सिर्फ 11 करोड़ रुपए। कांग्रेस से पूछा किसने की फंडिंग।

आक्रामक रवैया, कहा कि अमेरिका ने उठाया ताइवान का मुद्दा तो हो सकता है टकराव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे सबसे ऊपर शी जिनपिंग को बताया महान नेता। दिल्ली में आज से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। मिडिल ईस्ट तनाव और ऊर्जा संकट पर हो सकती है बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी की सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से भी होगी मुलाकात।

का दाखिल, अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार, जयपुर से महाराष्ट्र तक जुड़े हैं तार। आंधी और बारिश और बिजली गिरने से कई राज्यों में जानलेवा तबाही, यूपी में अब तक 89 लोगों की मौत, सीएम योगी का निर्देश, मौके पर जाए डीएम, मिलेगा मुआवजा।

0: बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। सबसे पहले बात करते हैं केरल के सीएम के नाम को लेकर। बहुत देर कर दी आधे आते, ये आपने बात सुनी होगी, लेकिन केरल में ये बात बिल्कुल सटीक तौर पर लागू होती है। केरल में कांग्रेस को अपना नया मुख्यमंत्री चुनने में इतने पसीने छूट गए हैं जितने चुनाव लड़ने में भी नहीं छूटे होंगे। केरलम विधानसभा में चुनावों के नतीजे आए 10 दिन हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल असम में बीजेपी ने अपने सरकार गठन के साथ शपथ ग्रहण भी कर ली है। तमिलनाडु में भी विजय सरकार की ताजपोशी हो चुकी है, लेकिन 10 दिन में कांग्रेस में तू नहीं मैं का खेल चलता आ रहा है, यानी आखिरकार सीएम कौन बनेगा। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली तक दावेदारी में एड़ी चोटी का जोर, लगातार उम्मीदवार लगा रहे हैं। 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की बमुश्किल केरल में ही वापसी हो पाई है, लेकिन एक अदद मुख्यमंत्री तय करने में कांग्रेस को ना को चने चबाने पड़ रहे हैं। आखिर में हुआ भी वही जो होना था, राहुल गांधी की मर्जी चली। लिफाफे में राहुल गांधी की पसंद का नाम भेजा गया है, लेकिन इतना फैसला करने में भी कांग्रेस ने 10 कीमती दिन गवा दिए। अब खबर यह आ रही है कि सतीश केरलम को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और आपको सबसे पहले इस खबर के साथ सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस मुख्यालय, जहां पर अब से थोड़ी देर में कांग्रेस की तरफ से हो सकता है कि नए सीएम के नाम का ऐलान किया जा सके। वीडी सतीश हो सकते हैं केरलम के नए सीएम, ये लगातार खबरें मिल रही हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारी सहयोगी मौसमी सिंह भी जुड़ गए। मौसमी, केसी वेणुगोपाल का भी नाम था, लेकिन अब उनके दूसरे के नाम के ऊपर कहा जा रहा है कि ऐलान हो सकता है, क्या कुछ अपडेट है?
1: देखिए, पीछे प्रेस वार्ता शुरू हो रही है, बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल का नाम चार्टर फ्लाइट पर नहीं है और वीवी सतीशन का नाम ऐलान हो सकता है, लेकिन क्या ऐलान होगा ये आप देख रहे हैं। पीछे तमाम ऑब्जर्वर्स आ गए, मुकुल वासनिक से लेके केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक से लेके अजय माकन, दीपा दास मुंशी जो केरला के इंचार्ज है, और ये वो वक्त है जब 10-11 दिन का सस्पेंस खत्म होने वाला। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं जयराम।
2: श्री अजय माकन जी, एआईसीसी महासचिव श्री मुकुल वासनिक जी,
3: अजय माकन जी, एआईसीसी महासचिव श्री मुकुल वासनिक जी और एआईसीसी महासचिव जो केरलम की जिम्मेदारी है, दीपा दास मुंशी जी हैं। अभी श्रीमती दीपा दास मुंशी जी एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगी। दीपा जी, ये सिर्फ घोषणा करेंगे, उसके बाद सवाल जवाब नहीं होगा, इनफॉर्मली हम बातचीत करेंगे, पर अभी घोषणा करने दीजिए क्योंकि इसका आपका इंतजार भी है।
4: नमस्कार। द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी हैड मेड इन तिरुवनंतपुरम ऑन May 7th, 2026 एंड हैड unanimously resolved to authorize the Congress president to appoint the new leader of the CLP in the state of Kerala. Accordingly, the Congress president has held extensive discussions with the chairperson of the Congress parliamentary party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026 and many other leaders from the state including MPs, former PCC presidents have all also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. Thank you so much.
0: अब देखिए, आपको बता दें एक बड़ी खबर कांग्रेस की तरफ से, वीडी सतीशन का नाम केरलम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उसका ऐलान कर दिया गया है। वीडी सतीशन 61 साल के हैं और बताया जाता है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की पहली पसंद थी। वीडी सतीशन के नाम को लेकर कांग्रेस पार्टी में उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कहा गया कि वीडी सतीशन ही अगले मुख्यमंत्री होंगे केरलम के। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने वीडी सतीशन के नाम का ऐलान किया। इससे पहले जो आप कह सकते हैं दो नाम थे जिसपे सबसे ज्यादा चर्चाएं थी वो थे केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन, और इससे बाद ही अब उनको नए सीएम के तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि वीडी सतीशन जो है वो कांग्रेस में उनको सर्वसम्मति से उनके नाम का ऐलान कर दिया। हमारे साथ हमारी सहयोगी मौसमी सिंह सीधे कांग्रेस मुख्यालय से जुड़ गए हैं। मौसमी, आप जिस तरीके से बता रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी कि देखिए उनके नाम को लेकर सहमति बन गई, औपचारिकता हो गई, अब उनके नाम का ऐलान भी कर दिया गया, इनके थोड़े से बैकग्राउंड बताइए, क्योंकि कहा जाता है पेशे से वकील रहे हैं लंबे समय से, 2001 से ही लगातार विधानसभा के अंदर इनकी अच्छी पैठ रही है, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की भी पसंद रही है, और क्या इनके बारे में जानकारी है कैडर को लेकर, इनके कामकाज को लेकर?
1: देखिए कुल मिला के वीडी सतीशन जो चॉइस है इस पर तमाम क्राइटेरियाज हैं जिस पे वीडी सतीशन खरे उतरते हैं। जिस तरीके से एक जेन जी को लेके राहुल गांधी लगातार जोर देते हैं, वीडी सतीशन बताया जाता है कि केरला में जो यूथ है उनमें बहुत पॉपुलर माने जाते हैं, एक पीपल्स मैन माने जाते हैं, जहां जहां वो जाते हैं खासतौर से महिलाओं में और युवाओं में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। लगातार जो है राज्य की पॉलिटिक्स में वो बहुत सक्रिय रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलते हुए वीडी सतीशन नजर आया, और संगठन के आदमी है, संगठन में बहुत मजबूत माने जाते हैं। जहां तक पूरी भारत जोड़ो यात्रा में जो ऑर्गेनाइजेशन था और जिस तरीके से पूरी यात्रा निकाली गई 22 दिन तक, तो वीडी सतीशन की एक अहम भूमिका वहां पे भी रही। उसके अलावा जो एलडीएफ सरकार है उसकी जिस तरीके से कहा जाता है कि कांग्रेस ने एक पूरा पोल खोल अभियान चलाया था पिनारी विजयन के खिलाफ, तो एक पॉपुलर सेंटिमेंट खड़ा करने में वीडी सतीशन की अहम भूमिका रही। खुद ही एक वो वकील रहे हैं, वकालत उन्होंने की है, अच्छे क्वालिफाइड।
5: Any update on further, sir?
6: I'll have press conference later. Okay.
0: एक बार फिर से रुक करते हैं मौसमी का। मौसमी देखिए, आप जिस तरीके से बता रही थी कि उनको संगठन के अंदर काम करने का बहुत अनुभव है, खासतौर पर एक वकील भी रहे हैं, ट्रेड वर्कर यूनियन के साथ भी जुड़े हैं, कई महत्वपूर्ण उसकी अध्यक्षता या फिर आप कह सकते हैं उनको लीड भी कर चुके हैं अभी, क्योंकि जब आप बात करते हैं केरलम की, वहां के संगठन की केसी वेणुगोपाल के नाम को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चाएं थी, कहा जा रहा था कि देखिए उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में उन्हीं के नाम को चयन क्यों किया गया? आखिरकार उनकी आप बता रहे हैं कि उनकी उनकी जो आप कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है या फिर आप उनका जो उनके काम करने का तरीका है वो शायद सबसे बड़ी वजह रही उनके नाम के चयन को लेकर।
1: बिल्कुल, देखिए सबसे कम उम्र के वो इन तीनों कंटेंडर्स में सबसे कम उम्र के हैं। वीडी सतीशन 61 साल के हैं, केसी वेणुगोपाल 63 साल के हैं और चिन्नैथला 69 इयर्स के हैं, तो सबसे कम उम्र के हैं। और जिस इलाके से वो एमएलए हैं वहाँ पे भी उनकी रिपोर्ट कार्ड, परावूर से वो एमएलए हैं वहाँ भी उनकी रिपोर्ट कार्ड काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यही नहीं, पूरे राज्य में अगर पॉपुलैरिटी को भापे तो जनता के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। जनता के इश्यूज से वो उन्होंने अपने आप को जोड़ा, और एक तरीके से राहुल गांधी से भी उनका तालमेल बहुत बेहतर है। वीडी सतीशन को जब बुलाया गया था अभी दिल्ली, रमेश चिन्नैथला और केसी वेणुगोपाल के साथ, तो ये कहा गया कि वीडी सतीशन ने बोला राहुल गांधी से, क्योंकि लगातार केसी फ्रंट रनर थे, कि मैं समझता था आप मेरे दोस्त हैं, और वो राहुल गांधी ने कहा था कि मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं किसी का दोस्त नहीं हूं, मुझे देखना है कि पार्टी और जनता के हित में क्या फैसला होता है। तो इस तरह की मतलब कि एक तरीके से राहुल गांधी से भी उनकी बातचीत और काफी अच्छी है और सीधे वो राहुल गांधी से संपर्क रखते हैं। तो और केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है कि बीडी सतीशन का चुना जाने से बड़ी खबर यह है कि केसी वेणुगोपाल को नहीं चुना जाना, इसका मतलब यह है कि जो एमएलए का सपोर्ट था वो केसी वेणुगोपाल के साथ था। पार्टी में ये एक परंपरा रही है कि एमएलए का सपोर्ट जिस नेता के साथ होता है, सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच में अशोक गहलोत के पास ज्यादा सपोर्ट था, अशोक गहलोत ने चुनाव में ज्यादा यहाँ दिल्ली रहे थे, वो संगठन में थे, लेकिन क्योंकि एमएलए का सपोर्ट के बल पे अशोक गहलोत को भेजा गया और सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया गया। लेकिन ये एक परंपरा भी आप कह लीजिए कांग्रेस पार्टी अपनी तोड़ते हुए नजर आ रही है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है हाल ही के समय में कि जब एमएलए का सपोर्ट किसी नेता के साथ है उसके विपरीत जो है बीडी सतीशन को चुना गया, यानी कि जनता का सपोर्ट, और इसमें एलाइज की बहुत भूमिका रही है। बताया जा रहा है कि IUML जो कि ना सिर्फ केरल में बल्कि तमिलनाडु में भी एक अहम भूमिका में है कांग्रेस के साथ गठबंधन में, उन्होंने बीडी सतीशन पे अपना भरोसा जताया और शायद राहुल गांधी ने उनसे बात की अभी हाल ही में भी, तब भी उन्होंने कहा कि हमारा सपोर्ट बीडी सतीशन को है। तो एक तरीके से सबको साथ लेने की जुगत में राहुल गांधी ने ये फैसला लिया है और सोनिया गांधी से भी उन्होंने देर रात कल बात की और इस पूरे मसले पर चर्चा की थी।
0: बिल्कुल, आप मौसमी हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं केरलम से जहां पर उनके समर्थकों में उत्साह है। देखिए वीडी सतीशम के नाम के ऐलान के बाद से ही लगातार उनके जो समर्थक है वो जश्न मना रहे हैं। 6 बार से आपको बताया विधायक है, एक बार भी नहीं आ रहे, 2001 से लगातार कई हर बार जीतते आए हैं। और जिस तरीके से मौसमी सिंह भी बता रही थी कि उनको एक तरीके का उनका जो नाम था उसको लेकर सहमति ना सिर्फ राहुल गांधी में, खासतौर पर सोनिया गांधी से मुलाकात की, उनको माना जाता है हालांकि 61 साल के हैं लेकिन जेंजी और सोशल मूवमेंट के अंदर उनका बहुत ज्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा है और एक लंबे समय से संगठन कांग्रेस पार्टी के लिए वो काम करते आए हैं। इसी वजह से केसी वेणुगोपाल की जगह वीडी सतीशम को चुना गया। हमारे साथ मौसमी सिंह भी जुड़े हैं। मौसमी, लगातार आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि देखिए वीडी सतीशम के नाम को लेकर ऐलान हुआ है, लेकिन अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक भी कीजिएगा, कहा जा रहा था केसी वेणुगोपाल को 60 से ज्यादा एमएलओ का समर्थन हासिल था, लगातार उनको एक बड़ी चॉइस के तौर पर माना जा रहा था और थोड़ी देर पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऐलान से पहले भी आकलन किया जा रहा था कि देखिए केसी वेणुगोपाल का आना लगभग तय है क्योंकि जो समर्थन है एमएलए का वो बहुत बड़ा है। और एक प्रथा जो आप भी बता रही थी कि देखिए चलती आई है कांग्रेस पार्टी में कि जिसको विधायकों का सबसे ज्यादा सपोर्ट रहता है वही मुख्यमंत्री का चेहरा बनता है, तो आखिरकार वीडी सतीशम के नाम के ऐलान को लेकर इतना बड़ा चेंज क्यों?
1: देखिए ये अगर आप देखें वीडी सतीशन का जो कार्यकाल रहा है, वीडी सतीशन एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं, एनएसयूआई से उठ के वो यहाँ तक पहुंचे हैं, 2001 से वो कभी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी परावूर से चुनाव नहीं हारे हैं। जब वो 2021 में वो नेता विपक्ष बने तो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसा होता नहीं है केरल में कि सत्ता वापसी हो, लेकिन एलडीएफ की सत्ता वापसी हुई थी, यूडीएफ बिल्कुल डाउन था और 2021 में उन्होंने नेता विपक्ष की भूमिका केरल असेंबली में संभाली और एक तरीके से पूरी टाइड को बदला। एक ज्योतिष भी रहे हैं, पॉलिटिकल आप एस्ट्रोलॉजर कह लीजिए, उन्होंने कहा था पहले ही कि 2026 की असेंबली चुनाव में कांग्रेस जो है वो सरकार बनाएगी। बायपोल्स में भी उनके प्रिडिक्शन बहुत सटीक रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा बैकग्राउंड वर्क जमीनी काम किया और लगातार जिस तरीके से वकालत वकील है केरल हाई कोर्ट में वकालत की, तो उनका जो पूरा प्रोफाइल है वो बतौर केरल सीएम कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक और माना जा रहा है और एक फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजन है। जहां पे बीजेपी एक प्रथा चल पड़ी है कि यंग फायरब्रांड नेताओं को एवरेज एज काफी कम हो चुकी है नेताओं के अपॉइंटमेंट्स की, तो उसी की तर्ज पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजन करते हुए यहाँ पे पे राहुल गांधी ने ये फैसला लिया है। मैं बार बार ये इसलिए कह रही हूँ कि खड़गे साहब ने मुझे बताया गया था, ये फैसला राहुल गांधी पे छोड़ दिया था कि आप तय कीजिए कि इन तीनों में से कौन होना चाहिए, क्योंकि मामला जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का था। अभी आप देखिए तो ये जो ऑब्जर्वर्स है वो यहाँ पे अंदर है, और हमें संकेत तब मिले जब हमने देखा कि जो चार्टर्ड फ्लाइट जानी है उसमें केसी वेणुगोपाल का नाम नहीं था, उसमें नाम था अजय माकन का, उसमें मुकुल वासनिक का नाम था और उसमें दीपा दास मुंशी का नाम है। अभी केरल जाना है तो उनको उनका नाम उसमें नहीं था, और केसी वेणुगोपाल लगातार राहुल गांधी से सुबह से मिल रहे हैं। सुनहरी बाग जो उनका एड्रेस है राहुल गांधी का, वहां पे केसी वेणुगोपाल के साथ वन ऑन वन मीटिंग राहुल गांधी की चल रही है। क्या इस सैक्रिफाइस के लिए केसी वेणुगोपाल को आगे और बड़ा बड़ी पोस्ट मिलेगी, ये यक्ष प्रश्न है, क्योंकि मामला ये भी चल पड़ा है कि 2027 में अध्यक्ष का कार्यकाल, कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल ओवर हो रहा है, तो केसी के सपोर्टर्स ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुर्बानी दी है उसके लिए आगे उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। इस तरह की भी बातचीत अब चल पड़ी है।
0: बिल्कुल, आप मौसमी लगातार आप क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कवर करते आई, आप कह रहे हैं कि एक बड़ा चेंज था खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजीज में सीएम के नाम को ऐलान को लेकर, लेकिन क्या ये डिसीजन बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल का संगठन में भी अच्छा रुतबा रहा है। आपने कहा कि 2027 में हो सकता है कि उनको ये ऑप्शन भी दिया गया कि आप पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन क्या इस फैसले को लेकर उनकी नाराजगी पहले भी देखी गई थी? उन्होंने पहले भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि उन्होंने पहले भी जोर दिया था कि वो केरल के एक फेस हैं, लगातार एमएलए का सपोर्ट उनको हासिल है, तो उन्हीं को सीएम बनाया जाए।
1: देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, जो समझना चाहे केरल की पॉलिटिक्स की, केसी वेणुगोपाल का पूरे अपनी एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगाया है इस पद के लिए। वो बहुत इंटरेस्टेड थे केरल के सीएम बनने को लेकर, लगातार वो पिछले 5-6 महीने में केरल में ही जुटे रहे, तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने लड़वाया, कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में उनका जो है से था। अब ये पावर टैक्टिक्स आप कह लीजिए, लेकिन ये भी है कि कांग्रेस में हाल ही में ये चल पड़ा है कि अगर आप कैंडिडेट का नाम दे रहे हैं और वो कैंडिडेट हारता है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी, तो वो कैंडिडेट्स जीते तो उसकी जिम्मेदारी केसी वेणुगोपाल की है। ये समझते हुए केसी के सपोर्टर्स को लगा कि उनकी चांस बहुत अच्छी है, और कल तक केसी वेणुगोपाल फ्रंट रनर लगातार बने हुए थे पूरे बातचीत में। राहुल गांधी इस बात को लेकर नाराज थे कि पोस्टर्स और बैनर्स लग रहे हैं, केरल में विरोध हो रहा है। सतीशन से पूछा गया कि वो इस तरह की चीजें ना करें, सतीशन ने कहा मैं नहीं कर रहा, ये ऑर्गेनिक है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मैं इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करता। तो ये आपस में मनमुटाव भी हुआ, काफी पावर टसल हमने देखी, और ये यूजुअल नहीं है। एक तरफ केरल के सीएलपी लीडर है और दूसरी तरफ इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करता, तो ये आपस में मनमुटाव भी हुआ, काफी पावर टसल हमने देखी और ये यूजुअल नहीं है। एक तरफ केरल के सीएलपी लीडर है और दूसरी तरफ जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक बात जरूर पार्टी आलाकमान ने देखी होगी कि सतीशन ने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा। हाँ, वो लगातार अड़े रहे और अपने केस को पुट फॉरवर्ड करते रहे पार्टी हाईकमान में कि मुझे क्यों बनाया जाए। और यहाँ पे रमेश चिन्नीथला इंटरेस्टिंग है, जो तीसरा कंटेंडर था, वो इन दोनों के गुरु माने जाते हैं, वीडी सतीशन और जी बिल्कुल, ये हो रहा था कि दोनों की आपस की लड़ाई में कहीं रमेश चिन्नीथला ट्रॉफी लेके ना चले जाए, और दोनों रमेश चिन्नीथला के नाम पर हामी भर सकते हैं। बहरहाल देखिए, यहाँ पे ऑब्जर्वर्स बाहर आए हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनसे बात करने की कोशिश करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जरा आगे जाएंगे,
6: पीछे पीछे पीछे,
1: अच्छा हो सकता है, देखिए ये केरल में,
7: एंड आई एम गोइंग टू केरलम and with me Mukulji and Ajay ji both are coming, so we have called all the MLAs in the evening and we will do, there are a lot of formalities we have to do that, so let me go there and if there is anything we will answer from Kerala only.
1: Ma'am, Shapath Grahan kab hoga ya?
7: That is not yet been finalized. That is what I am saying, that there are a lot of formalities. We have to decide many things. Let us reach there and meet the MLAs and we will obviously formulate.
1: Ma'am, criteria kya raha selection ka 10-11 din se? Kya criteria raha ki VD Satishan?
7: We have authorized CP and Rahul ji. Whatever decision they have given, we have just only, I have said that.
8: राज्यपाल से मिला
1: पर एमएलएस का सपोर्ट बताया जा रहा था कि केसी वेणुगोपाल के पास सबसे ज्यादा एमएलएस का सपोर्ट था 45 एमएलए केसी वेणुगोपाल के साथ थे फिर
7: डिसीजन हैज बीन मेड
1: जी जी
7: व्हाट एवर डिसीजन हाई कमांड हैज टेकन वी ऑल स्टैंड विद दैट
1: देखिए यहाँ पे दीपा दास मुंशी बहुत सीनियर कांग्रेस की नेता है और
9: मुख्यमंत्री गवर्नमेंट മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയായി പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡ് നിയമിച്ച ശ്രീ വി ഡി സതീശനെ അങ്ങേയറ്റം ഹൃദയം തുറന്ന് അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം
8: ചെയ്യും കെ സി വേണുഗോപാൽ കെ സി വേണുഗോപാൽ ലഗാത്താർ സി എം കേസ് മേലെ നാം ജഗ വി ഡി സതീശം നാം കാലാൻ സഹയോഗി രാഹുൽ ഗൗതം ജുടെ രാഹുൽ ഗൗതം ये बात जिस तरीके से मौसमी भी बता रही थी कि देखिए बहुत बड़ा टसल था केसी वेणुगोपाल और वी डी सतीशम के नाम को लेकर लेकिन पार्टी ने वी डी सतीशम के नाम को चुना तो अभी क्या उनका रुख है क्योंकि हम उनको देख रहे थे बातचीत कर रहे थे मीडिया से खासतौर पर क्या अभी उनका रुख बताया जा रहा है
10: देखिए सतीशन तो जाहिर है सातवें आसमान पर हैं काफी खुश हैं क्योंकि वो अब अगले मुख्यमंत्री बनेंगे केरला के उनको अपॉइंट कर दिया गया है विधायक दल का नेता और केसी वेणुगोपाल जाहिर है उतना ज़्यादा खुश नहीं होंगे उनकी तरफ से भी या कम से कम उनका जो कैंप था वो लगातार ये दावा कर रहा था कि वो कोशिश कर रहे थे कि वो भी मुख्यमंत्री बने आज सुबह तकरीबन 2.5 घंटे उनकी मुलाकात हुई राहुल गांधी से और इतनी लंबी चर्चा का मतलब ही ये था कि राहुल गांधी उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं बल्कि किसी और व्यक्ति को ये सर्वोच्च पद दिया जाएगा राज्य का आप ये भी मान के चलिए कि अब से थोड़ी देर के अंदर जो दीपा दास मुंशी हैं जो कि इंचार्ज हैं केरला कांग्रेस की वो अब यहाँ से ट्रिवेंड्रम जाएंगी विधायक दल की बैठक के अंदर विधायकों को इन्फॉर्म करेंगी और उसके बाद सरकार बनाने के लिए गवर्नर हाउस से टाइम मांगा जाएगा सरकार का दावा पेश किया जाएगा और अगली सरकार का गठन होगा लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आलाकमान ने तरजीह किस बात को दी तरजीह दी विधायक जो थे वो ज्यादातर पक्ष में थे कि केसी वेणुगोपाल अगले मुख्यमंत्री बने लेकिन ग्राउंड पे एक सेंटीमेंट था सतीशन के लिए जिन्होंने लगातार 5 साल काम किया वहां पे वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे सदन के अंदर सदन के बाहर वो सरकार को घेरते थे ऐसे में उनके पक्ष में एक माहौल था जिसको पार्टी ने नजरअंदाज नहीं किया
8: राहुल
10: अंत में आप ये कह सकते हैं उन्होंने वी डी सतीशन को चुना कि अब जी
8: बिल्कुल राहुल कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान से सबक लेकर पार्टी ने केरलम का डिसीजन लिया हो क्योंकि राजस्थान में भी हमने एक टसल देखा था लंबे समय तक चला और पार्टी को लगा कि राजस्थान हार में सबसे बड़ी वजह वही थी कि यहां पे अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट रहा और शायद उसी की सबक लेते हुए पार्टी ने उस चेहरे को चुना जो लोकप्रिय ज्यादा है लंबे समय से काम करता है
10: बिल्कुल सुमित देखिए कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि इस बार एक टिकाऊ सीएम दिया जाए जो पूरे 5 साल तक चले बिना किसी खटपट खटपट के आपने उदाहरण दिया राजस्थान का इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर भी यही स्थिति बनी ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से बाहर निकल गए तो कर्नाटक के अंदर आप जानते ही हैं वहां पर भी डी के शिवकुमार और सिद्धरमैया का एक टसल चलता रहता है तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि ऐसा एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर बिठाया जाए जिससे 5 साल स्मूथली जो कार्यकाल है वो चले गुटबाजी ना हो किसी प्रकार की जो आप कह सकते हैं सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव सेंटिमेंट ना हो कांग्रेस के पक्ष में सेंटिमेंट रहे और ये पॉसिबिलिटी हो कि सरकार दोबारा रिपीट करेगी 5 साल के बाद में तो इसी वजह से आप कह सकते हैं मोटा मोटा जो अंक गणित था वो वी डी सतीशन के फेवर में झुका हुआ था तराजू उनके पक्ष में झुका हुआ था और ऐसे में उन्हीं को ये चुना गया है कि वो अब अगले मुख्यमंत्री बनेंगे एक बात जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है कि अमूमन तौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर ये कहा जाता है कि जो विधायक दल
8: बिल्कुल बिल्कुल राहुल यही बात तो लगातार मौसमी भी जिक्र कर रही है हमारे साथ मौसमी जुड़ी हुई है
1: और अजय माकन जो है यहाँ पे वहाँ पे जाके क्या
11: हो सकता है
12: बस बस बस बस
1: अरे सर हम क्या भैया
12: अच्छा आइए
1: सर क्या प्रक्रिया होगी वास्तव साहब वहाँ पे
12: अभी
13: सर सर क्या समय मांगा क्या है गवर्नर से मिलने के लिए वहाँ
1: कब तक हम देख रहे हैं सर
14: लोगों से बातचीत करी गई
11: सब फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट्स को दिल्ली में बुला करके बात करी गई, सब एमपी से बात करी गई, सब लोगों से बात करने के बाद में ये तय हुआ और एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ। धन्यवाद।
12: लोगों का पसंद था पार्टी ने वही तय किया,
8: और अजय माकन को आप सुन रहे थे। इससे पहले मुकुल वासनिक से भी मौसमी सिंह ने बात की और पार्टी ने उस चेहरे को चुना जो लोकप्रिय था, जिसको लेकर सेंटीमेंट था। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी भी जुड़े रहेंगे। देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
16: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
17: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
18: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
19: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।

0: अपना मुख्यमंत्री वीडी सतीशन होंगे अगले सीएम। केसी वेणुगोपाल रेस से पिछड़े, राहुल गांधी ने सतीशन के नाम पर लगाई अंतिम मोहर। राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा 22 साल में 54 निजी यात्राओं पर खर्च किए 60 करोड़ रुपए, 10 साल में आमदनी हुई सिर्फ 11 करोड़ रुपए। कांग्रेस से पूछा किसने की फंडिंग। बीजिंग में ट्रंप के सामने चीन का आक्रामक रवैया, कहा अमेरिका ने उठाया ताइवान का मुद्दा तो हो सकता है टकराव। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमारे हित सबसे ऊपर, शी जिनपिंग को बताया महान नेता। दिल्ली में आज से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, मिडिल ईस्ट तनाव और ऊर्जा संकट पर हो सकती है बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी भी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए की संदिग्ध भूमिका पर भी देश भर में हल्ला बोल, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार, जयपुर से महाराष्ट्र तक जुड़े हैं तार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर।
2: एक तरफ सुलगती जमीन, दूसरी तरफ उबलता समंदर, तीसरी तरफ तेल का हाहाकार, चौथी तरफ सुलह का इंतजार। ऐसे में चीन की चौखट पर जब पहुंचे ट्रंप, दिल्ली के दरबार में ब्रिक्स का मंथन, क्या जिनपिंग के जाल में फंसेगा अमेरिका? क्या ब्रिक्स के मंच पर कुछ बनेगी बात? जंग में उलझे ट्रंप की क्या सुनेगा चीन? बंधक होर्मुज का संकट खत्म करा पाएंगे ट्रंप? दो मुल्क दर्जन मुलाकात, तेल गैस पर क्या बनेगी बात?
0: ब्रेकिंग न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ ईरान संकट से पूरी दुनिया करा रही है, वहीं दूसरी ओर इस संकट के प्रकोप या इसके जनक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर है। कहने को तो ट्रंप चीन के साथ आपसी करार करने गए हैं, लेकिन अमेरिका और बाकी दुनिया की नजर इस पर भी टिकी है कि ट्रंप को चीन की चौखट से ईरान संकट निपटाने का मंत्र मिलेगा या फिर नहीं। चीन के दौरे पर क्या लेकर लौटेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये भी बड़ा सवाल है। और देखिए आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप आज जब पहुंचे तो उन्होंने पहुंचते ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बहुत बड़ी तारीफें भी की। और मिडिल ईस्ट के हालात तो सुधारने पर चर्चा हो सकती है, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच खाड़ी हालातों पर भी चर्चा होगी, ईरान को समझाने को लेकर या फिर ईरान के बढ़ते खतरे को लेकर भी शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं, इसके लिए बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेड टेक्नोलॉजी पर भी बड़ी बातें की जा सकती है। इसके अलावा रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी दोनों के बीच में कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा नजर होगी मिडिल ईस्ट के हालातों को सुधारने पर चीन के दखल पर।

0: एक तरफ ईरान पर हमला करके ट्रंप ने अमेरिका का एक पांव हॉर्मुज में फंसा रखा है, दूसरी ओर जंगी दलदल में फंसे मुल्क का बोझ लेकर ट्रंप उस चीन के दरवाजे पर पहुंचे हैं जहां उन्हें ट्रेड एंड टैरिफ की डील करनी है। बीजिंग में ट्रंप के स्वागत और ट्रंप के हावभाव से तो उम्मीद यही लगती है कि अमेरिका और चीन के बीच इस बार बात नए दौर में पहुंच जाएगी, क्योंकि बीजिंग पहुंचते ही ट्रंप का जोरदार स्वागत हुआ है। चीन के स्टेट काउंसलर से स्वागत कराने की परंपरा तोड़कर चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग उन्हें लेने एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही ट्रंप को ब्रास बैंड की धुनों के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 300 चीनी युवाओं ने शानदार स्वागत किया। नीली और सफेद वर्दी पहने नौजवान चीनी और अमेरिकी झंडे लहराते हुए हार्दिक स्वागत वाले नारे लगा रहे थे। इन्हें सुनने के लिए ट्रंप के कदम ठिठके फिर द बिग बीस्ट की ओर बढ़े। रास्ते में पूरा हाईवे चीनी अमेरिकी झंडों से सजाया गया था। स्काई स्क्रैपर्स पर वेलकम मैसेज थे। अमेरिका और चीन के बीच दोस्ती शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए ये तस्वीरें काफी अहम मानी जा रही हैं, जिसमें जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप ने तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए।
1: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
0: जिनपिंग ने भी इस तारीफ से खुशी जताते हुए कहा कि इस दोस्ती को नई ऊंचाई देनी है।
2: हमें एक दूसरे की मदद करके सफल समृद्ध होना चाहिए और दुनिया को भी नए दौर में ले जाना चाहिए।
1: Whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together.
3: हमारे स्थिर रिश्ते दुनिया के लिए भी ठीक हैं। हम दोनों की कामयाबी में दोनों मुल्कों के मौके हैं। हम दोनों को सहयोग से फायदा, टकराव से नुकसान है, इसलिए हमें साझेदार बनना चाहिए, दुश्मन नहीं। आइए 2026 में पुराने दौर को पीछे छोड़ नया दौर शुरू करें।
0: लेकिन सवाल है कि ये नया दौर शुरू कैसे होने वाला है। चीन रवाना होने से पहले ट्रंप कह चुके हैं कि उनकी ये यात्रा ट्रेड एंड टैरिफ को लेकर है। ट्रंप बीजिंग पहुंचे तो उनके साथ बेटे एरिक, बहू लारा के अलावा टेस्ला चीफ एलन मस्क, एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टीम कुक और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक भी आए। दौरा शुरू होने से पहले ही ट्रंप ने पोस्ट किया था कि इन प्रभावशाली कारोबारियों के लिए दरवाजे खोलें ताकि वो अपना जादू दिखा सकें। उधर चीन अपनी एआई तकनीक के विकास के लिए सेमीकंडक्टर चिप चाहता है, तो अमेरिका को वो रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए जिनका इस्तेमाल मोबाइल फोन और हवाई जहाज बनाने में होता है। इस लिहाज से यूं तो ट्रंप की चीन यात्रा में समझौते के बड़े बिंदु ये तय किए गए हैं कि ट्रेड टैरिफ पर बात होगी, एआई तकनीक को लेकर बात होगी, सेमीकंडक्टर चिप्स पर चर्चा होगी, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर डील होगी। ताइवान तैपे में अमेरिकी हथियार बिक्री बड़ा मुद्दा है, तो खाड़ी में चीनी हथियार की बिक्री भी चिंता का कारण है। बातचीत के टेबल पर किन मुद्दों पर डील हो पाती है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन इससे पहले पूरी दुनिया और खुद अमेरिका के अंदर ईरान संकट को लेकर चर्चा तेज है। प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और आपको बताया कि ट्रंप मस्क समेत 17 ग्लोबल सीईओज को लेकर बीजिंग पहुंचे हैं। ट्रंप चाहे तो डील करके चीन गए हो, लेकिन पूरी दुनिया की टकटकी, पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या ईरान संकट को लेकर ही कोई हल निकल पाएगा या नहीं, क्योंकि फिलहाल सबसे बड़ी फिक्र, सबसे बड़ी चिंता दुनिया भर में तेल और गैस को लेकर है। वैसे पिछले साल अक्टूबर में बुसान में जब ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने मिले थे, तब से लेकर अब तक उनके रिश्ते सामान्य ही रहे हैं और सुधार हुआ है। दूसरी बार ट्रंप के सत्ता में आने के बाद दोनों देश, दोनों नेता एक बार फिर आमने सामने मिल रहे हैं और इसके अलावा 6 बार भी फोन पर बातचीत भी कर चुके हैं। तो क्या ये रिश्ते ईरान संकट में ट्रंप के काम आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखना होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने डील के साथ साथ ईरान संकट से भी बाहर निकल पाएंगे। और
0: ट्रंप चाहे जिस हौसले और रुख के साथ जिनपिंग से डील करने बीजिंग पहुंचे हों, लेकिन ईरान की जंग के बाद अमेरिका की हैसियत और हौसला दोनों पर असर पड़ा है, और इसकी मिसाल अमेरिका के अंदर भी दिख रही है, क्योंकि अमेरिकी जनरल डेन कैन के लिए तैयार अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट कहती है कि ईरान की जंग के बाद चीन सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक तीनों ही क्षेत्रों में अमेरिका का फायदा उठा रहा है। अमेरिका की फजीहत देख ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे मुल्क परेशान है। ताइवान के लिए अमेरिका ने जो गोला बारूद रखे थे वो तेजी से कम हुए हैं। ऊपर से चीन ईरान जंग के बाद असुरक्षा के हालात में तेजी से खाड़ी के देशों को हथियार बेच रहा है। चीन दुनिया के सामने ये पेश कर रहा है कि अमेरिका हमलावर है और एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। ऐसी सूरत में क्या ट्रंप चीन से अमेरिका के फायदे वाली डील कर भी पाएंगे या नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब ट्रंप और जिनपिंग एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रहे थे और इस दोस्ती को दुनिया की भलाई के लिए भला बता रहे थे, तब अमेरिकी सीनेटर और ट्रंप के बड़े प्रशंसक लिंडसे ग्राहम ने चीन को धमकी दी है कि ईरान संकट में फंसे अमेरिका की मदद करो वरना टैरिफ लगा देंगे। ये पूरी दुनिया को पता है कि हॉर्मुज में हाथ जलाने के बाद अमेरिका किसी तरह इस संकट से मुक्ति चाहता है और ट्रंप भी यही उम्मीद करते होंगे कि अव्वल तो चीन हॉर्मुज खुलवाने में मदद करे, ईरान को मदद करना बंद करे, ईरान से तेल खरीदना बंद करे या तो ईरान पर सुलह का दबाव बढ़ाए। लेकिन ट्रंप की हसरतों को मानना चीन के लिए कोई जरूरी नहीं, क्योंकि अमेरिका के पास फिलहाल सैंक्शंस वाला हथियार ही बचा है जो मामला बिगाड़ देगा, क्योंकि टैरिफ बढ़ाकर ट्रंप देख चुके हैं कि चीन भी जैसे को तैसा करता है। ऊपर से इकलौते रेयर अर्थ मिनरल सप्लायर चीन ने टैरिफ वॉर के बाद अमेरिका की सप्लाई रोकने की धमकी दी थी। हालांकि ट्रंप की बीजिंग यात्रा से ठीक पहले अमेरिका ने ईरान पर लगे प्रतिबंध तोड़कर उसकी मदद करने वाली चीनी कंपनियों पर जुर्माने की धमकी दी है। विदेश मंत्री स्कॉट बेसेंट ने पिछले महीने ही दो अज्ञात चीनी बैंकों को चेतावनी भरे पत्र भेजकर जुर्माने की धमकी दी थी। इसके बाद अमेरिका ने चीन की तीन कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा दिया जिन्होंने ईरान की मदद की है। लेकिन अमेरिका अगर चीनी बैंकों पर कार्रवाई करता है तो चीन भी ऐसा करेगा तो फिर नया बखेड़ा बढ़ जाएगा। ऐसे में ईरान के नाम पर चीन पर ज्यादा दबाव काम का नहीं दिखता। लेकिन चीन अगर हॉर्मुज नहीं खुलवाता है तो ट्रंप ये कह सकते हैं कि अब अमेरिका भी पैसे लेगा, ये चीन को बिल्कुल कबूल नहीं होगा। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स कह चुकी हैं कि ईरान जानता है कि उनकी मौजूदा स्थिति ज्यादा समय तक चल नहीं सकती और जब बातचीत करने वाले किसी समझौते पर काम कर रहे हैं तो सारे पत्ते राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ में हैं। अब देखना होगा कि उनमें से कितने पत्ते ट्रंप जिनपिंग के सामने रख पाते हैं और चीन से क्या लेकर लौटते हैं। प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
4: डोनाल्ड ट्रंप क्या लेकर आएंगे या क्या बातचीत होगी, लेकिन उससे ज्यादा पूरी दुनिया की निगाहें इसी बात पर होगी क्या ईरान और अमेरिका में शांति वापस स्थापित हो पाएगी, सबसे बड़ा सवाल। और इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी इस समय भारत में चल रही है, खासतौर पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की एक बैठक लगातार भारत में भी चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आपको बताएं कि प्रणय उपाध्याय भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि आज पहला और आपको बताएं कि इन दो दिनों में एक साथ दो बड़े मंच सजे हुए हैं। एक तरफ बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। और दिलचस्प बात यह है कि इस मंच पर वो दोनों मुल्क भी मौजूद हैं जो खाड़ी में एक दूसरे पर धुआंधार हमले कर रहे हैं। ऐसे में ब्रिक्स के मंच से क्या कुछ संदेश मिल पाता है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि दिल्ली में दो दिन के लिए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसमें ब्रिक्स के बुनियादी सदस्यों के अलावा विस्तृत सदस्य यानी जो एक्सटेंडेड मेंबर्स हैं या मेहमान हैं जो उनको भी शामिल किया गया। रूस की ओर से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप के दौरे के कारण चीन के विदेश मंत्री की जगह भारत में मौजूद विदेश के चीन के अम्बेसडर यहां पर मौजूद हैं। चीन का प्रतिनिधित्व भारत के राजदूत कर रहे हैं शु फाइंग होम की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा क्यूबा, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ईरान और यूएई, मालदीव, इथोपिया जैसे देशों के विदेश मंत्री भी आज भारत में मौजूद हैं। इस बैठक का एक मूल है बिल्डिंग ऑफ रिलायंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास यानी स्टेबल विकास की बात कही जा रही है। यानी चार बड़े पिलर जिसके ऊपर लगातार ब्रिक्स का ये सम्मेलन या फिर आप कह सकते हैं बड़ी बैठक हो रही है। लेकिन इन सभी लक्ष्यों की राह में तेल और गैस की किल्लत एक बड़ा प्रभाव डाल रही है। जाहिर तौर पर इस बैठक में उन मुद्दों पर भी सबसे अव्वल चर्चा की संभावनाएं जताई जा रही है, जहां पर ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की तरफ से इन पॉसिबिलिटीज या फिर इन चैलेंजेस पर भी, इन चुनौतियों पर भी बातचीत की जाएगी। इस मंच में से एक साझा बयान भी जारी होने वाला है और ये भारत के लिए बड़ी परीक्षा की घड़ी होगी, जहां ईरान और यूएई एक दूसरे पर बारूदी गोले बरसा रहे हैं, वहां दोनों मुल्कों को एक मंच पर लाकर आखिर किस तरीके से साझा बयान जारी कराया जा सकता है, एक बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ईरान ने भारत में आग्रह किया है कि वो ब्रिक्स के मंच से अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई की निंदा करने के लिए एक अहम सहमति बनाई जा सके। और देखिए इस बड़ी बैठक पर दुनिया भर की नजरें और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रिक्स बैठक के वेन्यू से सीधे जुड़े हैं प्रणय उपाध्याय, उनका रुख कर लेते हैं। पढ़े ईरान और यूई खाड़ी में एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं, यहां एक मंच पर एक दूसरे के मुद्दे वैसे ही हैं, तो वो कैसे एक राय कायम कर सकते हैं? भारत अध्यक्ष की भूमिका में है तो ये कितनी बड़ी चुनौती है भारत के लिए भी?
5: देखिए निश्चित रूप से चुनौती तो है इस पूरे मामले के अंदर कि भारत किस तरीके से सहमति बनाता है, लेकिन अगर आपने कल देखा हो कजीम जो गरीब आबादी हैं ईरान के विदेश राज्य मंत्री, उनका एक तरफ से एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं ताकि ब्रिक्स जो है वो मजबूत हो। और निश्चित रूप से यूएई की तरफ से भी जो बयान आए हैं उसके अंदर किसी तरीके से ये संकेत नहीं दिया गया है कि वो ब्रिक्स की बैठक के अंदर कंसेंसस न बन पाए इसके लिए वो जोर देंगे या ज्वाइंट स्टेटमेंट न आ पाए। यहां भारत की कोशिश होगी, आपको याद होगा यही वो भारत मंडपम का वेन्यू है जहां पर 2023 के अंदर G20 की शिखर बैठक हुई थी, उस समय भी यही सवाल था रूस और यूक्रेन को लेकर, और उस समय भी भारत ने जो है वो एक जॉइंट स्टेटमेंट हासिल किया था तमाम सहमति के बिंदु तलाशते हुए। और यहां पर विदेश मंत्रियों की बैठक जो इस समय चल रही है, अब से कुछ ही देर बाद इसके अंदर ब्रेक होने वाला है और ये तमाम जो विदेश मंत्री हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। करीब 1 बजे का वक्त मुकर्रर है सेवा तीर्थ में, जब ये तमाम विदेश मंत्री जिसके अंदर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची भी शामिल हैं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। लेकिन आपने इससे पहले जो रिपोर्ट बताई वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की थी और ये ब्रिक्स की बैठक जो है
4: मेरा तो
5: उनकी इस यात्रा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है सुमित, क्योंकि इस ब्रिक्स की शिखर बैठक को लेकर।
4: जी बिल्कुल, पढ़े मेरा सवाल वही था कि चीन जाहिर तौर पर ट्रंप की विजिट में, उनके विदेश मंत्री वहां बिजी है, लेकिन उस विजिट का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चीन का रुख रहने वाला है, यह भी बहुत दिलचस्प है।
5: देखिए निश्चित रूप से ब्रिक्स के संस्थापक देशों के अंदर शामिल है चीन। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के कारण भारत में न आ पाए हों, उनका प्रतिनिधित्व उनके राजदूत कर रहे हैं शू फेईहोंग, लेकिन चीन भी चाहेगा कि ब्रिक्स मजबूत हो। वो ब्रिक्स जिसको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो काफी भला बुरा कह चुके हैं, काफी तंज कस चुके हैं, और आज ब्रिक्स के ही एक सदस्य देश चीन की धरती पर वो इस समय मौजूद हैं और कोशिश उनकी है 4T के ऊपर कामयाबी हासिल करने की। 4T है ट्रेड, टेक्नोलॉजी, तेहरान के साथ डील और ताइवान का मुद्दा। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें कितने कामयाब हो पाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि इसलिए ये सवाल उलझा हुआ है यहां पर क्योंकि प्रतिस्पर्धा के मुद्दे बरकरार हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डील भले ही लेने गए हों, उनकी इच्छा होगी कि बोइंग ज्यादा एयरक्राफ्ट चीन खरीदे, सोयाबीन ज्यादा चीन खरीदे, एग्रीकल्चर के ऊपर जो पाबंदियां लग रही हैं अमेरिका के उत्पादों पर वो हट जाएं और साथ ही एक ट्रेड डील उन्हें हासिल हो पाए। वहीं चीन की भी कोशिश होगी कि एक थोड़ा सा फंसे हुए, थोड़ा सा कमजोर नजर आते ट्रंप चीन के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं, और ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कोशिश होगी शी जिनपिंग की कि वो एक बड़ी डील और ज्यादा कामयाबी और ज्यादा लीवरेज हासिल कर सके अमेरिकी बाजार में।
4: बिल्कुल, और पढ़े क्योंकि खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की साख को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे, कहा जा रहा था कि देखिए एलन मस्क भी उनके साथ गए हैं, 17 के करीब सीईओ लेकर गए, तो ट्रेड डील से ज्यादा जो प्रेशर अमेरिका पे पड़ रहा है ईरान को लेकर, शायद उसको लेकर भी चाहते हैं कि एक ऐसा मीडिएटर हो जो प्रेशराइज करके ईरान से बातचीत कर सके। एक और इंपॉर्टेंट बात यह, भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर ने ब्रिक्स के साइडलाइन में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात किया, इस मीटिंग को लेकर क्या जानकारी है? तेल एनर्जी सेक्टर को लेकर बातचीत होगी या डिफेंस की कई चीजें हैं जिसको लेकर अभी भी आप कह सकते हैं कि बहुत चीजें जो रुकी हुई थी S-400 के स्क्वाड्रन आने थे उसको लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है?
5: देखिए निश्चित रूप से भारत और रूस के विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात होती रही है, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में भी संवाद रहता रहा है, और मौजूदा स्थिति में जिस समय कि एक राजनीतिक तौर पर जियोपॉलिटिक्स की और जियो इकोनॉमिक्स की उथल पुथल देखने को मिल रही है, अगर आप देखें कि अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कल शाम को जो मुलाकात हुई थी सरगेई लावरोव और विदेश मंत्री डॉ जयशंकर के बीच में, उसमें भारत के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि मौजूदा दौर में जो उथल पुथल का दौर चल रहा है उसमें भारत और रूस के बीच में एक हाई लेवल संवाद, यानी भारत और रूस के बीच का संपर्क संवाद और उनकी दोस्ती एक मिसाल भी है, और साथ ही ये बेहद जरूरी भी है एक स्थिरता हासिल करने के लिए। दोनों ही देश एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के भी पक्षधर रहे हैं और साथ ही इस ब्रिक्स की बैठक के अंदर जो कि यहां पर चल रही है अगले 2 दिनों तक, एक महत्वपूर्ण सेशन का आयोजन कल किया गया है सुमित, जिसमें ब्रिक्स एट 20
4: का
5: उसका शीर्षक दिया गया है। 20 साल होने जा रहे हैं ब्रिक्स को, और इसके साथ साथ जो वैकल्प जो विश्व के अंदर एक बहुध्रुवी व्यवस्था बनाने और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में रिफॉर्म्स।
4: बिल्कुल, आपने कल एक महत्वपूर्ण बैठक, माफ कीजिएगा पढ़े आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पूरी दुनिया की नजरें खासतौर पर ब्रिक A20 की बात हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें इस समय ऑयल गैस के संकट को लेकर ज्यादा बनी हुई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इस बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org.
9: Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
10: Costs shouldn't be a barrier to a teaching career. That's why WGU makes earning a degree in education affordable with flat rate tuition and scholarship opportunities. Make an investment toward making a difference. Learn more at WGU.edu.
11: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it, and eat it for breakfast, wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League, and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
13: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
7: एकजे द नंबर वन कोर

0: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
1: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: तेईस और 29 अप्रैल वोटिंग
6: 90% क्रॉस कर गई बंगाल की वोटिंग।
7: ये बढ़ा हुआ मतदान आखिर किस तरफ जाएगा।
5: 4 मई काउंटिंग
6: भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई है
8: रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए।
5: 8 मई सीएम का ऐलान
9: शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे।
5: 9 मई शपथ
10: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थे।
5: यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट सर्च में नंबर 1 गूगल ट्रेंड्स में नंबर 1 लाइव स्ट्रीम में सबसे आगे टीवी हो डिजिटल हो यूट्यूब हो या सोशल मीडिया हर प्लेटफॉर्म पर आज तक रहा चुनाव में सबसे आगे। चुनाव मतलब सिर्फ आज तक।
11: प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उस आह्वान का पालन करते हुए ईंधन बचाना ऊर्जा का संरक्षण करना राष्ट्रीय जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना उसका आज मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है और सभी मंत्रियों को अधिकारी गणों को निर्देश भी दिया है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल करेंगे और बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे और सरकारी गाड़ी का भी न्यूनतम इस्तेमाल किया जाए ऐसा दिल्ली सरकार का निर्णय है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: कैसे हुई अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मौत? घर में प्रतीक यादव को क्या हुआ? अस्पताल ने क्या कहा? क्यों प्रतीक यादव की अचानक से मौत पर सस्पेंस गहरा गया? प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला? क्या प्रतीक की मौत गंभीर बीमारी से हुई या वजह कुछ और है? मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की मौत की खबर जैसे ही आती है हर कोई हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि प्रतीक की उम्र महज 38 साल थी और सबसे बड़ी बात, प्रतीक यादव को फिटनेस फ्रीक माना जाता था। फिर सवाल उठता है कि आखिर प्रतीक यादव को ऐसा क्या हुआ कि अस्पताल ले जाते ही उनको मृत घोषित कर दिया जाता है?
1: 5:55 पे उनको परिवार के द्वारा ले आया गया, तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कराया गया, तब तो उनकी डेथ हो चुकी थी, उनको डेड डिक्लेयर किया गया और बॉडी को पुलिस को इन्फॉर्म करके उनको सौंप दिया गया पुलिस को। पुलिस ने पंचनामा किया और उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू मार्चरी भिजवा दी गई है।
2: मतलब आपका कहने का है कि जो 5:55 पर प्रतीक की
1: वो उम्रित अवस्था में थे।
0: प्रतीक यादव के करीबी जो बताते हैं वो बेहद ही गौर करने वाली बात है। बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव देर रात बेडरूम में गए थे जहां उनके सिर पर चोट भी लगने का दावा किया गया, क्योंकि उस वक्त प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव भी घर पर नहीं थी। ऐसे में ये रहस्य और गहराने लगा है। शुरुआती प्रक्रिया में घर के जिस कमरे में प्रतीक यादव थे उसको बंद करके रखा गया है। प्रतीक के मोबाइल फोन और लैपटॉप को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब सवाल ये है कि क्या प्रतीक की चोट को मौत के पीछे शक का आधार माना जाए? लेकिन जब प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें प्रतीक यादव की मौत पर कई अहम बातें सामने आई हैं, सूत्रों के मुताबिक उनका शरीर नीला पड़ चुका था और हार्ट और विसरा सुरक्षित रखे गए हैं। मौत की वजह पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बताई गई है, जिसके चलते कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स हुआ, यानी फेफड़ों की नस में खून का थक्का जमने से दिल और सांसें रुक गईं। वैसे प्रतीक के डॉक्टर रुचिता शर्मा की माने तो वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बीमारी के मरीज थे, जिसे बेहद खतरनाक माना जाता है। इसमें खून का थक्का फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं में फंस जाता है, इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है।
3: वो हमारे पुराने पेशेंट थे, मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

केसी वेणुगोपाल रेस में पिछड़े, राहुल गांधी लगाए सतीश के नाम पर अंतिम मोहर। राहुल के विदेश दौरे पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा 22 साल में 54 निजी यात्रा पर खर्च किए 7 करोड़ रुपए, 10 साल में आमदनी हुई सिर्फ 11 करोड़। कांग्रेस से पूछा किसने की फंडिंग। बीजिंग में ट्रंप के सामने चीन आक्रामक, कहा अमेरिका ने उठाया ताइवान का मुद्दा तो हो सकता है टकराव। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा हमारे हित सबसे ऊपर, जिनपिंग को बताया महान नेता। आज से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, मिडिल ईस्ट तनाव और ऊर्जा संकट पर हो सकती है बात। पीएम मोदी भी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सबसे पहले बात करते हैं एमपी के देवास से। बड़ी खबर आ रही है जहां टोंक कला के एक पटाखा फैक्ट्री में आज सुबह धमाका हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में 3 की जान गई है, 1 दर्जन से ज्यादा घायल हुए हैं। ब्लास्ट इतना तेज था कि शवों के टुकड़े 20 से 25 फीट दूर जा गिरे। हादसे में कई लोग बुरी तरह झुलस गए हैं, 3 महिलाएं अब भी लापता हैं। घायलों को जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और राहत टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी। फैक्ट्री में धमाके के बाद अब तक 3 की जान गई। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि हादसा बेहद भीषण बताया जा रहा है। धमाके में 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। लेकिन ये दूर से ली गई तस्वीर में भी देखिए कि कैसे धुएं का गुबार ऊपर आसमान तक उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। झुलसे हुए लोगों की भी तस्वीर आ रही है। दरअसल पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है जहां पर विस्फोटक मौजूद होने की वजह से आग और ज्यादा फैल गई। अफरा तफरी का माहौल जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके बाद वहां पर मदद के लिए लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। 3 की जान गई है, 10 से ज्यादा इस वक्त बुरी तरह से झुलसे हुए।
1: चक्कर वगैरह रोड पे पड़ी है। ये बटाखा कंपनी में आग लगी टोंक कला में।
0: और वक्त हो गया है नॉन स्टॉप 100 का।
2: प्रेजेंट

विशेष अदालत में इलाज के लिए पास हुए धमाके के मामले में 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में 10 आरोपियों को नामजद किया गया है। एनआईए के अनुसार सभी 10 आरोपी संगठन अफसान गजवत उल हिंद से जुड़े हुए हैं, जिसे अलकायदा से प्रेरित संगठन बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपियों ने ऑपरेशन हेवनली हिंद नाम से भारत सरकार को अस्थिर करने और देश में शरिया कानून लागू करने की साजिश रची। दिल्ली लाल किला मामले में अब तक 11 को गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआईए फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना 10 नवंबर 2025 को हुई थी। विस्फोट में 11 लोगों की मौत और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनावी हिंसा के बाद अहम सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अदालत में खुद पेश की दलील। ममता बनर्जी ने तोड़फोड़ और हिंसा का मुद्दा उठाया। कहा, लोगों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पास करे सरकार। चुनावी हिंसा पर सरकार ने रखा पक्ष। का ऐसी घटना को चुनाव के बाद हुई हिंसा से नहीं जोड़ा जा सकता। दक्षिण 24 परगना में पायलान में टीएमसी विधायक दिलीप मंडल के आवास पर पुलिस ने छापेमारी की। विधायक दिलीप मंडल पर विपक्ष को धमकाने का आरोप। कोलकाता पुलिस ने डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास ईडी के सामने पेश हुए। समन भेजने के बावजूद पेशी से लगातार बच रहे थे ममता के खासम खास। वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए मुख्यमंत्री। 10 दिन बाद राहुल गांधी ने लगाई सतीशन के नाम पर फाइनल मोहर। वेणुगोपाल और चेन्नीथला को रेस में पीछे छोड़ा। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। आज दिल्ली दौरे पर सीएम पीएम मोदी और अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी मनीषा भागमारे के 21 बैंक खातों में लाखों रुपए जमा होने का खुलासा। मनीषा और धनंजय लोखंडे के बीच कई संदेहास्पद व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट्स मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, नीट पेपर लीक में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला। सरकार को फर्जी जांच के जरिए प्यादों को गिरफ्तार करवाकर वजीर को बचाने में लगी है। सीबीआई नीट पेपर लीक मामले में देश भर में छापेमारी कर 5 को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने दावा किया कि मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और मामले की जांच की मांग की है। जेपीसी गठित करने की मांग भी की गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो को नासिक से गिरफ्तार आरोपी शुभम खेरनार की 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली। जांच एजेंसी अब नेटवर्क और पेपर लीक के पूरे रैकेट की पड़ताल कर रही है। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच दिल्ली में ब्रिक्स देशों का समिट। विदेशी मंत्रियों का सम्मेलन शुरू। भारत मंडपम में जुटे सारे मेहमान। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची भी मौजूद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे के कारण चीन के विदेश मंत्री नहीं आए। उनकी जगह चीनी राजदूत चीन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एमी के अनुसार चर्चाओं का मुख्य केंद्र प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम है। सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि नई दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी करेंगे मुलाकात। इस बार ब्रिक्स समिट की थीम भारत के मानवता सबसे पहले और जन केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित। पीएम मोदी ने 2025 में दिया था जोर। ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जिनपिंग ने किया ट्रंप का स्वागत। मुलाकात के दौरान ट्रंप को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जिनपिंग ने कहा, अमेरिका चीन रिश्ता वैश्विक स्थिरता के लिए बेहद अहम। जिनपिंग बोले, दोनों देशों के प्रतिद्वंदी नहीं साझेदार बनना चाहिए। जो ट्रंप ने भी जिनपिंग को अपना दोस्त होना सम्मान की बात कहा। ट्रंप के प्रतिनिधिमंडल में एलन मस्क, एप्पल के सीईओ टिम कुक और बोइंग सीईओ समेत कई बड़े कारोबारी शामिल हैं। बैठक में व्यापार, टैरिफ, सेमीकंडक्टर, एआई, रेयर अर्थ मिनरल्स और ताइवान जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बीएसएफ कैंप के बाहर आईडी ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा। सिम कार्ड से धमाका करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जलंधर आईडी ब्लास्ट मामले में पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी का कनेक्शन आया सामने। आरोपी ने सिम कार्ड लगाकर कॉल से किया धमाका। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर एरिया से मिला था आरोपी को विस्फोटक। पुलिस विस्फोटक देने वाले आरोपी की कर रही है तलाश। सूत्रों के मुताबिक पंजाब का रहने वाला है आरोपी। पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क और पैन इंडिया ऑपरेशन केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर 24 घंटे से कार्रवाई जारी। आतंकी नेटवर्क के खिलाफ पैन इंडिया ऑपरेशन। दिल्ली, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों में छापेमारी और दबिश जारी। सूत्र के मुताबिक शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया से सैकड़ों युवाओं का नेटवर्क बनाया, ब्रेन वॉश कर आतंकी घटनाओं को ला रहा है अंजाम। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के गुर्गे आबिद जट और अजमल गुजर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को करते हैं रिक्रूट। युवाओं को पैसे को लालच देकर भट्टी करता है रिक्रूट, फिर वो वारदात को अंजाम देते हैं।
अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का आज होगा अंतिम संस्कार, कल लखनऊ में हुआ था निधन। पार्थिव शरीर ले जाने वाले वाहन को फूलों से सजाया गया, घर के अंदर बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं अंतिम दर्शन। प्रतीक यादव की मौत का मामला एनएचआरसी पहुंचा, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली एनजीओ ने की शिकायत। रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ों की नसों में खून का थक्का जमने से हार्ट अटैक आया, जिससे मौत हुई। प्रतीक यादव के लखनऊ आवास पर लोगों का भारी जमावड़ा, कन्नौज दावा समेत अंतिम संस्कार में दर्शन करने के लिए पहुंचे समर्थक। नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या को 17 से घटाकर 2 कर दिया है, सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव। नीतीश कुमार समेत बिहार सरकार के मंत्रियों ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाने का फैसला किया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा ने काफिले में कटौती की है। नितिन गडकरी ने भी अपने काफिले का आकार 50% तक घटाने का निर्णय लिया है। भूपेन्द्र पटेल और राज्य सरकार के मंत्रियों ने भी काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का फैसला किया है। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी कीमतों में बढ़ोतरी कर उपभोक्ताओं पर असर डाला है। मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए, नई दरें 8 से 10 लाख। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद सोना 8,550 रुपए और चांदी 20,500 रुपए महंगी, बाजार में तेजी। सोने की कीमत 1,65,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंची, निवेशकों में हलचल। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 95.8 के स्तर तक गिरा, करेंसी बाजार में दबाव। छतरपुर के आदिवासी किसानों ने पुलिस प्रशासन टीम पर पथराव करते हुए भगाया तोड़ी गई गाड़ियां। नागपुर के झिल्पी तालाब में डूबने से 2 युवकों की गई जान। ललितपुर में नशे में धुत स्कॉर्पियो कार ने कई बाघ और राहगीरों को रौंदा, 2 की मौत, 8 दर्जन से ज्यादा घायल। चोटला राजकोट हाईवे पर डंपर के साथ बस की टक्कर, 4 की मौत, 10 घायल। खगड़िया में पिता की मौत से आहत बेटे ने किया मां पर हमला, आरोपी गिरफ्तार। पटना में दुनारे सीएमएस कैश वैन से 27 लाख की हथियारबंद लूट, वारदात के बाद इलाके में सनसनी। अलीगढ़ पुलिस ने नकली नोटों के बड़े अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ कर 4 अरबियों के दबोचा, छापेमारी में लाखों रुपए की फर्जी करेंसी बरामद। पुणे के अस्पताल परिसर में संदिग्ध बम मिलने से हड़कंप, मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता, सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध सामग्री को सुरक्षित निष्क्रिय कर इलाके को खाली कराया। हनुमानगढ़ में भीषण आग लगने से 2 घर जलकर खाक, 2 महिलाएं, 4 मवेशी झुलसे, दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, नुकसान का आकलन जारी। कोटा में सीएमएचओ कार्यालय के पीछे खड़ी कबाड़ एम्बुलेंस में लगी आग से मची अफरा तफरी, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में स्लीपर बस में महिला के साथ गैंगरेप की घटना, बस के ड्राइवर कंडक्टर को गिरा गया गिरफ्तार, बस भी की गई जब्त। दिल्ली के कंझावला इलाके में स्थित फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी, मौके पर दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के भिवाड़ी में फाइबर फैक्ट्री में आग, दूर तक दिखी आग की लपटें और धुआं। गुजरात के पाटन में कबाड़ गोदाम में लगी आग, गैस वेल्डिंग की चिंगारी से हादसे की आशंका। खेड़ा के सीट सेंटर कॉम्प्लेक्स में बड़ा बड़ा पाव की दुकान में लगी आग, घरेलू सिलेंडर के फटने से बड़ी आग। यूपी में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, अलग अलग जिलों में 89 लोगों के मरने की खबर, कई लोग घायल। सीएम योगी ने बारिश और बिजली गिरने से मौत पर लिया संज्ञान, 24 घंटे में मुआवजा देने का आदेश दिया। सीएम योगी ने डीएम और अधिकारियों को मौके पर जाने और पीड़ितों को हर संभव देने की कोशिश करने के दिए निर्देश। तूफान से प्रभावित इलाकों में जारी है राहत कार्य, जिला अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश। भदोही में भीषण आंधी तूफान से 15 लोगों की मौत, 8 लोग घायल, 16 मवेशियों की मौत। प्रयागराज में बुधवार शाम आई धूल भरी आंधी ने मचाई सबसे भीषण तबाही, अब तक 17 की गई जान। मिर्जापुर में तेज आंधी से कई इलाकों में 10 की मौत, 30 से ज्यादा घायल। फतेहपुर में तेज आंधी तूफान ने अलग जगहों पर 9 की मौत, पीड़ित परिवार ने एसडीएम ने दिया मदद का भरोसा। हरदोई में आए आंधी तूफान ने 2 परिवारों को छीनी खुशियां, अलग अलग हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौत। कौशाम्बी में तूफान के बाद कई घरों में आग, 12 परिवारों की रहस्य जलकर खाक, लाखों रुपए का नुकसान। कानपुर देहात में बिजली गिरने से 1 लड़की की मौत, जबकि दीवार गिरने से 1 बच्ची की गई जान। सोनभद्र में धूल भरी आंधी से जिला पंचायत का भारी भरकम बोर्ड गिरा, स्टेट हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार। गोरखपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। उन्नाव में आंधी में कार पर गिरा नीम का पेड़, ड्राइवर ने समय रहते कार से कूद कर बचाई जान। अलवर में तूफान से 3 शेड गिरने से युवती की मौत, जिले भर में बिजली गुल। आरसीबी ने बुधवार खेले गए आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया, जीत के साथ बेंगलुरु टॉप टीम। टॉस हार कर बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 192 रन बनाए, जवाब में बेंगलुरु ने 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। किंग कोहली लगाया 9वां आईपीएल शतक, 60 गेंदों में खेली 105 रन की नाबाद पारी।
देवदत्त पेडिकल ने 39 रन बनाए, जेकब मिथल ने 15 रन का योगदान दिया। कोलकाता की ओर से कार्तिक त्यागी ने 3 विकेट लिए, जबकि सुनील नरेन को एक सफलता मिली। केकेआर की ओर से रिंकू सिंह ने तेज बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंद पे 49 रन बनाए। आज खेला जाएगा आईपीएल का 18वां मैच, पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच होगा कड़ा मुकाबला। मुंबई इंडियंस बिना दबाव के खेलेगी ये मैच, पहली नॉकआउट की दौड़ से बाहर हो चुकी है टीम। लगातार 4 मैचेस हार चुकी पंजाब, अब प्लेऑफ की रेस में लगातार बढ़ता जा रहा है उसका दबाव। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वापसी की उम्मीद लेकर उतरेगी पंजाब की टीम। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस सम्मान बचाने के लिए इरादे से मैदान में उतरेगी। मौसम बिगाड़ सकता है खेल का मजा, धर्मशाला में हो रही बारिश, मैच से पहले बूंदाबांदी की आशंका। वेलकम टू द जंगल से अक्षय कुमार का फर्स्ट लुकआउट, अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की तस्वीर। रिलीज से पहले ऋषभ थ्री ने एडवांस बुकिंग में करोड़ों की कमाई की, 21 मई को होगी लॉन्च। दशहरा पर तहलका मचाएंगे इमरान हाशमी, गन मास्टर G9 होगी रिलीज। चिनिलिया देशमुख और अपार शक्ति खुराना दिखाई देंगे। लगभग 14 साल बाद शेखर जुनाइद नाम के एक टॉक शो से शेखर सुमन कर रहे वापसी, सामने आया ट्रेलर। पुरंदर फेम राकेश बेदी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म जवानी तो इश्क होना है के स्टेप्स।

केरल में अब सीएम का सस्पेंस खत्म हो गया है। वीरी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कांग्रेस सदस्य दल की अध्यक्ष लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस पर्यवेक्षकों के साथ गैर विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया है। खड़गे ने इसके लिए राज्य के सांसदों और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से संपर्क किया। केरलम के सीएम की रेस में केसी वेणुगोपाल भी चल रहे थे, लेकिन माना जा रहा है कि IUML के समर्थन की वजह से सतीश की दावेदारी मजबूत हो गई थी और वेणुगोपाल रेस में पिछड़ गए।

0: Accordingly, the Congress president has held extensive discussions with the chairperson of the Congress Parliamentary Party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents, have all also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP.
1: हम लोगों ने अभी पूरा विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कैसे कंसल्टेशन हुआ और कैसे सब लोगों से बातचीत करी गई, सब फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट्स को दिल्ली में बुला करके बात करी गई, सब एमपी से बात करी गई, सब लोगों से बात करने के बाद में ये तय हुआ और एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ।
2: जो लोगों की पसंद है वही डिसाइड हुआ।
3: मिलने का समय कब?
1: लोगों की पसंद 100 से ज्यादा सीट्स यूडीएफ को दी है, ये लोगों की पसंद है।
4: अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे बीजेपी ने कैसे राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने सवाल किया है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा की फंडिंग कौन कर रहा है। बीजेपी के सांसद और मुख्य प्रवक्ता संबित पात्रा ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि राहुल गांधी पिछले 22 साल में 54 बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। बीजेपी ने सवाल किया कि राहुल गांधी की इन यात्राओं की फंडिंग कौन कर रहा है। बीजेपी के मुताबिक ये यात्रा सरकारी खर्चे पर नहीं हुई है। इन यात्राओं पर करीब 60 करोड़ का खर्चा आया, जबकि राहुल गांधी की घोषित संपत्ति करीब 21 करोड़ है। ऐसे में राहुल गांधी के खर्चे कौन उठा रहा है?
5: 2024 में जब आखिरी बार लड़े तो 20.39 करोड़ था, 55 लाख से अभी लगभग 21 करोड़ है। ये कोई बहुत ये अनरिमार्केबल ही है, बहुत बड़े पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट भी है, बहुत कुछ है, ठीक है, बढ़ोतरी हुई है, मगर कहने का तात्पर्य है क्या इसमें वो डिस्क्लोजर है जो 60 करोड़ रुपए 54 ट्रिप में खर्चा हुआ वो इस कि 55 लाख से लेकर जो 21 करोड़ तक का बढ़ावा हुआ है उसमें ये कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है। एसेट लायबिलिटी में ये 60 करोड़ को कहां डाला जाए, ये कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है। आप बताइए, जब उनका पूरा का पूरा ही एसेट और लायबिलिटी 21 करोड़ का है तो हम 60 करोड़ को इसमें कहां डाले, यह प्रश्न उठ रहा है।
4: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने आरोप भी लगाया कि राहुल गांधी 6 बार एसपीजी को चकमा देकर विदेश गए। शिकायत सुरक्षा एजेंसियों ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से की थी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि पता चला है कि 3 मई को राहुल ने ओमान की यात्रा की। ओमान यात्रा पर राहुल गांधी से जवाब देने की मांग की गई।
5: सीआरपीएफ ने ऑफिशियल लेटर में मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है कि यह बहुत ही चिंताजनक विषय है, 6 अनडिक्लेयर्ड फॉरेन ट्रिप है, दिसंबर 24 से सितंबर 25 तक, ईच वॉज टेकन, उनके लेटर से पढ़ रहा हूं, ईच वॉज टेकन विदाउट द येलो बुक एसपीजी प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन दैट द प्रोटोकॉल मैंडेटरीली रिक्वायर्स। आप एसपीजी प्रोटेक्टी है तो येलो पेज प्रोटोकॉल फुलफिल करना, येलो पेज एसपीजी प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन ये फुलफिल करना अनिवार्य है, मगर आपने वो भी नहीं डिक्लेयर किया, वो नोटिफिकेशन भी नहीं किया और आप स्ट्रेट गायब हो गए। क्या ओमान आप मई 3 के आसपास गए थे? डिड द विजिट हैपन? Question number 2, हु होस्टेड द ट्रिप, फॉरिनर और इंडियन, किसने होस्ट किया, भारतीय ने या विदेशी ने? Number 3 question, इफ फॉरिनर होस्टेड, वेयर इज द FCRA Section 6 MHA अप्रूवल लेटर? अगर फॉरेनर ने किया तो अप्रूवल लेटर का एक कॉपी दिखा दीजिए, बस कॉपी दिखा दीजिए, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मायने ही नहीं रहेगा कि हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रश्न पूछे। और उसके बाद चौथा प्रश्न होता है, क्योंकि ये जो प्रश्न मैंने पूछा ये RTI के अंतर्गत आता है, क्या आपने परमिशन लिया MHA से? वेयर इज द बैंक स्टेटमेंट डेबिट द ऑथराइज्ड डीलर फॉरेक्स परचेस वाउचर और the Congress audited line in ECI return to the government sanction file? मतलब अंतिम प्रश्न है कि यदि फॉरेन फंडेड नहीं है और आप खुद गए तो आपका बैंक स्टेटमेंट ऑडिट दिखाइए, या तो आप जो फॉरेक्स वाउचर होता है वो दिखाइए, या तो अगर पार्टी ने भेजा आपको तो पार्टी भी ऑडिट में अपना भेजती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि हमने अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को ओमान भेजा है, उसमें इतना खर्चा हुआ है, इसकी भी ऑडिट हो।
4: तो संबित पात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आरोप असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की दरअसल एक कोशिश है।
3: राहुल गांधी जी पे आरोप लगाया है, इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहेंगे?
6: मतलब यही है कि प्रधानमंत्री की नाकामी से ध्यान हटाना चाहिए। इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है, झटके मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है, और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं, बस इसमें कुछ है ही नहीं। और संबित पात्रा मंत्री बनना चाहते हैं और क्या।
4: वक्त एक ब्रेक का हौसला, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर,
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड।
13: ट्यून इन हाउ टू, अ ब्रीफ लुक एट ऑल द स्पेशल फंक्शंस एंड थिंग्स यू माइट नॉट नो वी हैव।
14: मिस्ड आउट ऑन योर लेटेस्ट पॉडकास्ट एपिसोड्स? डोंट वरी, ट्यून इन हैज गॉट यू कवर्ड। Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
15: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little southern hospitality now.
16: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
17: जे के मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जे के मसाले, जहां स्वाद वहां जे के।
18: Like I said before, we better hold the sin.
19: Character, the taste of success.
9: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
10: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
20: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
10: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
21: अच्छी खबर चली, हमारी अच्छा हुआ सर।
9: जहां खबर
0: वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर। In association with
21: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
22: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
23: 23 और 29 अप्रैल वोटिंग।
24: 90% क्रॉस कर गई बंगाल की वोटिंग।
25: ये बढ़ा हुआ मतदान आखिर किस तरफ जाएगा?
23: 4 मई काउंटिंग।
24: भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं।
26: रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए।
23: 8 मई सीएम का ऐलान।
27: शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे।
23: 9 मई शपथ।
28: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थे।
23: यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट, सर्च में नंबर 1, गूगल ट्रेंड्स में नंबर 1, लाइव स्ट्रीम में सबसे आगे। टीवी हो, डिजिटल हो, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर आज तक रहा चुनाव में सबसे आगे। चुनाव मतलब सिर्फ आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से पर
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: मंत्री सतीशन होंगे अगले सीएम। केसी वेणुगोपाल रेस पिछड़े, राहुल गांधी ने लगाई सतीशन के नाम पर अंतिम मोहर। राहुल के देश दौरे पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा 22 साल में 54 निजी यात्रा पर खर्च किए 60 करोड़ रुपए, 10 साल में आमदनी हुई सिर्फ 11 करोड़। कांग्रेस से पूछा किसने की फंडिंग। बीजिंग में ट्रंप के सामने चीन आक्रामक, कहा अमेरिका ने उठाया ताइवान का मुद्दा तो हो सकता है टकराव। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा हमारे हित सबसे ऊपर, जिनपिंग को बता महान नेता। दिल्ली में आज से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, मिडिल ईस्ट तनाव और ऊर्जा संकट पर हो सकती है बात। प्रधानमंत्री की सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच देश में महंगाई दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, अप्रैल में थोक महंगाई दर पहुंची 8.3% पर, मार्च में 3.88% पर थी दर। रोजाना जरूरत के सामान और गैस बिजली के दाम बढ़े। खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बात करेंगे नीट पेपर लीक मामले की, जिसमें आप सीबीआई का शिकंजा कस रहा है, एक एक करके कड़ियां जुड़ रही हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है पूरा नेटवर्क एक्सपोज हो गया है। राजस्थान से महाराष्ट्र तक नए मॉड्यूल सामने आ रहे हैं, 2024 वाले बिहार मॉड्यूल के भी सक्रिय होने की आशंका। इस बीच वो बड़ा आदमी कौन है जिसने एनटीए में सेंध मारी की, एक एक करके अब कड़ियां जोड़ने की कोशिश में है सीबीआई और इसकी अब पहल शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र से दरअसल ये लीक शुरू हुआ था जो धीरे धीरे करके देश के अन्य राज्यों तक पहुंच गया। बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 5 की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, कई और गिरफ्तारियां इनकी निशानदेही पर संभव है। जयपुर से ही 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो एनटीए पेपर लीक मामले में अब एक ऐसे शख्स की ओर जांच की सुई घूम रही है जिसका अब तक नाम सामने नहीं आया। बस इतना है कि वो कोई शख्स है जो एनटीए की गोपनीयता भंग कर रहा है। शक और भी तब गहरा गया जब सीबीआई हिरासत में एक आरोपी ने कहा कि बड़े आदमी को बचाया जा रहा है। क्या इस बड़े आदमी का कनेक्शन बिहार मॉड्यूल से रहा है?
1: नीट पेपर लीक में ऊपर वाला कौन है? वो भेदिया कौन है जिसने एनटीए में सेंधमारी की? एनटीए की सूचिता और गोपनीयता के नेटवर्क में किसने घुसपैठ की? क्या ये वही है जो 2024 के पेपर लीक कांड में बच गया था? क्या पर्दे के पीछे का सबसे बड़ा डीलर वही है जो बिहार मॉड्यूल की जांच में बच निकला था? 2026 के नीट यूजी पेपर लीक जांच फिर सीबीआई के हवाले है, फिर वही केंद्रीय एजेंसी, फिर वही केस, लेकिन इस बार सेंटर अलग अलग है। पेपर लीक की जांच में अब तक सीबीआई ने जयपुर, नासिक, अहिल्यानगर, गुरुग्राम से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच का दायरा बढ़ रहा है क्योंकि ये नेटवर्क एक दो शहर नहीं कई राज्यों तक फैला है। अब तक इस कांड में जो बड़े किरदार सामने आए हैं उसमें जयपुर का बिवाल परिवार सबसे ऊपर है। जयपुर का मंगी लाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, नासिक का शुभम खैरनार, अहिल्यानगर का डॉक्टर ओमकार सिंगोटे और गुरुग्राम का यश यादव, यही वो 6 लोग हैं जिन्हें सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में रखा है। बाकी 45 संदिग्धों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन वे रेडार पर अभी भी हैं। ये वो 6 किरदार हैं जो पेपर लीक फ्लो चार्ट में एक ही पंक्ति में खड़े दिखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें किसने पेपर दिया? वो कौन शख्स था जिसने पहली बार 30 लाख रुपए में पेपर बेचा? जिस परीक्षा के लिए 22 लाख से अधिक बच्चे दिन रात एक कर देते हैं, उस हाई डिमांड एग्जाम पेपर तक यूं ही कोई नहीं पहुंच सकता। राजस्थान इस ओजी के सूत्र बताते हैं कि पेपर लीक का ये गिरोह पुराना है और इसकी पैठ बहुत तगड़ी है। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि नीट पेपर की हार्ड कॉपी पुणे से लीक हुई, एजेंसियों को शक है कि एनटीए के अंदर भी कुछ गड़बड़ है। और ये सघन जांच की मांग करती है। 2024 के नीट पेपर लीक में भी सीबीआई ने जांच की थी। पटना मॉड्यूल से कई गिरफ्तारियां हुई थी। अब एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि सीबीआई और एसओजी को लगता है कि पटना मॉड्यूल की जांच में जरूर कोई कड़ी छूट गई थी। पेपर लीक गैंग पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अब 2026 के पेपर लीक के बाद एक बार फिर से बिहार मॉड्यूल को खंगालने की तैयारी है। सीबीआई के रेडार पर 2024 पेपर लीक के आरोपी भी हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी कड़ियों को जोड़ रही है और इस बार टारगेट पर बड़ी मछली है जो अंदर बैठकर गोपनीय जानकारियां बाहर लीक कर रहा है। जयपुर से शरद कुमार के साथ दिव्य सिंह, मुंबई आज तक।
0: अब केस सीबीआई के सुपुर्द है, उसे तय करना है कि आगे जांच किस दिशा में जाएगी। लेकिन एक बात जो सूत्र बता रहे हैं कि अंदर का कोई आदमी है जो गिरोह से मिला हुआ है। इस गिरोह में अब तक दो मॉड्यूल सामने आए हैं, जिसमें एक महाराष्ट्र मॉड्यूल है। महाराष्ट्र मॉड्यूल में चार लोग के नाम सामने आए हैं। ये चारों किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं। जिस मनीष बागमारे को हिरासत में लिया गया है, उसका 21 बैंक खातों में लाखों रुपए जमा होने का खुलासा हुआ है।

0: नासिक का शुभम खैरनार, अहिल्या नगर का डॉक्टर ओमकार सिंगोटे, अहिल्या नगर का ही धनंजय लोखंडे, पुणे की मनीषा वादमारे। नीट पेपर लीक का ये महाराष्ट्र मॉड्यूल है। महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच और सीबीआई के रडार पर ये चारों किरदार हैं। ये चारों किसी न किसी लेवल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेपर लीक की चेन में इन चारों की भूमिका संदिग्ध है। नीट पेपर लीक में सीबीआई की टीम एक एक करके कड़ियां जोड़ रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए किरदार जुड़ते जा रहे हैं। मनीषा वादमारे और धनंजय लोखंडे एक दूसरे को जानते हैं। व्हाट्सएप के जरिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मनीषा पुणे में ब्यूटी पार्लर चलाती है, इसका पति डेंटिस्ट है। मनीषा कैरियर काउंसलिंग का भी काम करती है। मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन काउंसलिंग के लिए मनीषा 25,000 रुपए की फीस लेती है।
1: पेपर लीक केस मामले में आपको बता दें कि शुभम खैरनार के अरेस्ट होने के बाद कड़ियां आगे जुड़ते जा रही हैं। शुभम खैरनार के बाद धनंजय लोखंडे, जो कि अहिल्या नगर का रहने वाला है, पुणे से ऑपरेट करता था, उसे डिटेन किया गया। धनंजय लोखंडे के फोन की जांच करने के बाद ये पता चला कि वो मनीषा वाघमारे नाम की एक महिला के संपर्क में था, कंटिन्यूअस टच में था। परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद भी बहुत सारे कॉल धनंजय लोखंडे और मनीषा वाघमारे के बीच एक्सचेंज हुए।
0: मनीषा के अलावा नीट के महाराष्ट्र मॉड्यूल में एक डॉक्टर का भी नाम जुड़ गया है। नाम है डॉक्टर ओमकार सिंगोटे। ये छत्रपति संभाजी नगर का रहने वाला है। ओमकार सिंगोटे और धनंजय लोखंडे एक दूसरे को जानते हैं। दोनों पेपर लीक केस में आरोपी हैं। दोनों को अहिल्या नगर से महाराष्ट्र पुलिस ने उठाया है। महाराष्ट्र मॉड्यूल का चौथा किरदार शुभम खैरनार है। सबसे पहले इसे ही गिरफ्तार करके सीबीआई दिल्ली ले गई थी। शुभम खैरनार बीएएमएस थर्ड ईयर का छात्र है। एमपी के सीहोर से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। उसके पिता भी डॉक्टर हैं। शुभम खैरनार को पुणे से पेपर मिला था। शुभम ने उस पेपर को गुरुग्राम के यश यादव को बेचा था। नीट पेपर लीक में सीबीआई ने महाराष्ट्र मॉड्यूल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस बीच जानकारी ये भी सामने आई है कि मनीषा वाघमारे के खाते में 10,00,000 रुपए आए हैं। 31 अलग अलग खातों से मनीषा के बैंक खातों में ये पैसे भेजे गए हैं। रुपए किसने भेजे, क्यों भेजे, इसकी भी जांच की जा रही है।
1: मनीषा वाघमारे के अकाउंट्स की जांच की गई तो ये पता चला कि 21 से 30 लोगों ने 10 लाख की राशि अलग अलग अकाउंट से मनीषा वाघमारे के अकाउंट में जमा करवाई है। ये पैसा, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये संदिग्ध हैं और इसकी जांच अब सीबीआई की टीम कर रही है। मनीषा वाघमारे को भी डिटेन कर लिया गया है। मनीषा वाघमारे, आपको बता दें,
0: नीट पेपर लीक की जांच का दायरा लगातार फैल रहा है। अभी कई किरदारों तक सीबीआई के हाथ पहुंचना बाकी है। इसमें कई सफेदपोशों की भी गर्दन फंसेगी। जांच दायरा जैसे जैसे बढ़ेगा, कड़ियों से कड़ियां जुड़ती जाएंगी। एजेंसियों का मकसद उस शख्स तक पहुंचना है जिसने पहली बार पेपर लीक किया, जिसने पहली बार 30 लाख रुपए में पेपर बेचा। पुणे से ओमकार बाबरे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
2: और अब आते हैं राजस्थान मॉड्यूल पर। नीट लीक का पूरा बवाल राजस्थान से शुरू हुआ। सीकर, जयपुर, झुंझुनू कई जिलों तक तार जुड़े, लेकिन इसमें बिवाल परिवार का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, ये आरोपी वो हैं जो इस समय सीबीआई की गिरफ्त में है। बिवाल परिवार के 5 बच्चे 2025 में नीट क्रैक कर चुके थे और आज वो देश में अलग अलग सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अब सीबीआई की नजर इन छात्रों पर है कि आखिर एक ही परिवार के 5 बच्चे एक ही साल में कैसे सिलेक्ट हो गए, ये टैलेंट था या कुछ और।
0: पेपर लीक की पहली खबर राजस्थान से आई। यहीं से एसओजी ने पहली बार खुलासा किया कि नीट में गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी नहीं हुई, बहुत बड़ा झोल हुआ है। पेपर लीक हुआ लेकिन नाम दिया गया गेस्ट पेपर। इस गेस्ट पेपर के पीछे जो मॉड्यूल सामने आया है उसे राजस्थान मॉड्यूल कह रहे हैं। इस मॉड्यूल का कर्ता धरता है बिवाल परिवार। ये जम्वा रामगढ़ के दो भाई हैं, मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल, जिन्हें आप नीट के नटवर लाल भी कह सकते हैं। बिवाल परिवार की इतनी हैसियत थी, सिस्टम पर इतनी पकड़ थी कि वे जब चाहे जिसे चाहे डॉक्टर बनवा सकते थे। सबूत ये शख्स खुद दे रहा है। सोशल मीडिया पर इसने पिछले साल पोस्ट कर जो जानकारी दी थी उस पर गौर कीजिए। मेरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे 5 बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चयन हुआ है। सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जरा जम्वा रामगढ़ के इस परिवार की पूरी फैमिली ट्री समझ लीजिए, जिसकी हर शाख पर एक भविष्य का डॉक्टर है। मांगीलाल का बेटा विकास सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज का छात्र है। मांगीलाल की बेटी प्रगति दौसा मेडिकल कॉलेज की छात्र है। दूसरे भाई घनश्याम बिवाल की बेटी पलक SMS मेडिकल कॉलेज में है। घनश्याम की बेटी सानिया मुंबई मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। तीसरे भाई दिनेश बिवाल की एक बेटी गुंजन बनारस मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट है। दिनेश का बेटा भी इस बार नीट की परीक्षा दे रहा था, लेकिन इस वक्त वो फरार है। जरा सोचिए ये परिवार कितना मेधावी है। इनके बच्चों में योग्यता कितनी कूट कूट कर भरी है कि एक साथ पांच पांच बच्चों का नीट में सिलेक्शन हो जाता है। खैर, इनकी मेधा का राज अब खुला है। जब बिवाल परिवार पर 30 लाख में इस साल पेपर खरीदने का आरोप लगा, आज तक संवाददाता शरद कुमार जब जम्वा रामगढ़ में पेपर लीक कांड में गिरफ्तार बिवाल परिवार के घर पहुंचे, तो मुलाकात आरोपी दिनेश की पत्नी रजनी और उनके केयरटेकर से हुई। रजनी ने आज तक के कैमरे पर कबूल किया कि चार बच्चों ने पिछले साल नीट की परीक्षा पास की थी।
3: पिछले साल भी नीट में पास हुए हैं?
4: हाँ हुए ना।
3: कितने लोग?
4: चार लोग।
3: चार लोग?
4: हाँ।
3: तीन लड़कियां और एक लड़का?
4: हाँ।
3: वो किसके थे?
4: ये मेरे बहन के और मेरे जेठ के।
3: मांगीलाल जी के?
4: हाँ।
3: उनको भी साथ में ले गए हैं दिनेश के?
4: कहाँ?
3: यशो जी,
4: मुझे पता नहीं है मैडम।
3: वो भी वो उनसे कब मिली थी आप?
4: मुझे पता ही नहीं है कब मिली थी मैं तो।
0: अब जरा सीकर के इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी देखिए। दावा है कि इसी कोचिंग में बिवाल परिवार के तीनों बच्चों ने नीट की तैयारी की और परीक्षा पास करके सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिला ले लिया। हालांकि अक्टूबर 2025 से सीकर का ये इंस्टीट्यूट बंद है। दिनेश बिवाल ने अक्टूबर में ही सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि उसके घर के बच्चों ने नीट क्रैक कर लिया है। बिवाल परिवार का राजनीतिक रसूख भी तगड़ा है। जम्वा रामगढ़ के BJP विधायक अपने फेसबुक पोस्ट पर दिनेश बिवाल को ऊर्जावान कार्यकर्ता बताते हैं। जो दिनेश बिवाल पेपर लीक में पकड़ा जाता है, वो मकर संक्रांति से लेकर गणतंत्र दिवस तक बधाई देते होर्डिंग लगवाता है, खुद को BJP नेता बताता है। कई BJP नेताओं के साथ उसकी फोटो भी है। ये कोठी पेपर लीक कांड में गिरफ्तार मांगीलाल और दिनेश की है। दोनों भाइयों पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। मांगीलाल और दिनेश से पूछताछ में पेपर लीक सिंडिकेट के एक एक राज उगलवाने में जांच एजेंसियां जुटी हैं। जांच एजेंसियां दिनेश के जरिए पेपर लीक के काले खेल से जुड़े बड़े बड़े चेहरों को
5: तैयारी कर रहा था नीट का। ये यस से गुड़गांव से 30 लाख में पेपर खरीद कर लाया था और अपने बेटे को भेजा था सीकर देकर आया था ऋषि को, और ऋषि ने आगे फैलाया सीकर में। मगर सबसे बड़ी बात है कि जो मांगीलाल अरेस्ट हुआ है बड़ा भाई दिनेश का, वो पिछली बार पेपर ले आया था और मांगीलाल के बेटे और घर के और तीन लड़कियां उसके बहनों के, यानी चार बच्चे नीट 2025 में भी पास हुए हैं। इसीलिए ये पूरा जो खुलासा हो रहा है नेटवर्क का, ये बड़ा नेटवर्क है।
0: क्या पेपर लीक के खेल में बिवाल परिवार पहले भी शामिल रहा है? 2025 में कैसे मांगीलाल परिवार के पांच बच्चों ने नीट क्रैक किया, अब ये भी रडार पर है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
2: इस बीच बड़ी खबर दौसा से, जहां पर राजस्थान मॉड्यूल से जुड़ी खबर यह है कि मुख्य आरोपी मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति बिवाल पढ़ती है यहां दौसा मेडिकल कॉलेज में। पंडित नवल किशोर शर्मा मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा है प्रगति। नीट घटनाक्रम के बाद प्रगति बिवाल कॉलेज में मौजूद नहीं, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि CBI की टीम दौसा के इस मेडिकल कॉलेज जा सकती थी। उसके पहले ही बेटी ने कॉलेज जाना छोड़ दिया है और वो लापता है। शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, इतनी देर तक क्यों ये बात दबी रही कि वहां पर ये पढ़ती है? पूरा जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया इस परिवार का, तो वहां तक तो पहले पहुंचा जा सकता था ना, वेट किया जा रहा था कि वो अब कॉलेज नहीं जाएंगी।
5: देखिए, पूरा मामला जिस तरह से धीरे धीरे खुल रहा है, अब अचानक से किसी को पता चल नहीं पाता है। गिरफ्तार होने के बाद इन्होंने चार का नाम बताया था, दिनेश ने अपनी बेटी का नाम नहीं बताया था। सुबह एक पुराना वायरल इसका पोस्ट निकला, जिसमें पांचवा अपने बता रखा था कि पांच लोग हुए हैं। तब पता चला कि उसकी जो बेटी गुंजन है, वो तो उसका भी सिलेक्शन हुआ था MBBS में, तो आज पता चला पांच, इससे पहले इसने चार बता रखा था। तो ये पूरा का पूरा परिवार ही नटवर लाल है। मैंने जितने सदस्यों से बातचीत की पूरे परिवार की, ये सभी काफी ट्रेंड हैं, और जैसा कि SO जी ने कहा भी कि ये पहली बार ये काम नहीं कर रहे हैं। इनका कोई और दूसरा धंधा नहीं है, ये कोई कोई बिजनेस नहीं करते हैं, इसी काम में लगे हुए थे और इसी काम से जो पैसा आता था उसे इन्वेस्ट करते थे और नेताओं के आसपास रहते थे। अच्छी खासी इनकी दोनों भाइयों की लाइफ थी, एक भाई की मौत हो गई थी, मगर इस मॉड्यूल में ये पुराने नेटवर्क का हिस्सा है, कोई पहली बार ऐसा नहीं आया है। उसकी पत्नी ने कहा कि 21 में भी आउट हुआ था, 24 में भी आउट हुआ था, हमारे बच्चे जब सिलेक्शन हुए हैं तभी क्यों खुलासा हुआ है, ये बड़े लोगों का काम है। तो घर वालों को भी पता है, जो कह रही हैं कि हम तो अनपढ़ हैं, उनको भी पता है कि नीट का पेपर आउट होता रहा है पहले भी। तो इस नेटवर्क को तलाशने में धीरे धीरे समय लग रहा है, क्योंकि चीजें ये इतने ट्रेंड हैं कि एक बार में सब कुछ बता नहीं रहे हैं। 3-4 दिन ऐसा लग गया बताने में, जब राकेश पकड़ा गया, राकेश ने ऋषि का नाम बताया, ऋषि से पता चला कि ये दिनेश का बेटा है, फिर यहाँ पर आए जम्मू और रामगढ़ में, तब ये कहानी पता चली, तब जाके इस मॉड्यूल के बारे में पता चल पाया है। लेकिन ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है जो देश भर में काम कर रहा है, ये इकलौता मामला नहीं है।
2: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, टिकते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
10: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
11: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
12: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
14: सोने की चमक भारतीयों के लिए हमेशा से भरोसे का प्रतीक रही है, लेकिन ये चमक देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सेहत बिगाड़ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है, जिससे बाजार में खलबली मच गई है।
15: मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
14: भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेशों से डॉलर देकर खरीदता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार है, जिसने बीते साल 72 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट किया। देश के कुल 775 अरब डॉलर के इंपोर्ट बिल में सोने का हिस्सा करीब 10% रहा। ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक साल भर में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का सोना आयात किया जा रहा है। ऐसे में अगर शादियों के लिए भी साल भर सोना ना खरीदा जाए तो 20 से 36 अरब डॉलर तक की बचत मुमकिन है। सोने की खरीदारी में आई जरा सी कमी डॉलर के आउटफ्लो को रोककर

0: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
1: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
3: जहां खबर वहां खबरदार।
0: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट right before it ends.
1: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
8: Jack, you're killing me.
7: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
9: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.

तेज रफ्तार से भागती भारतीय इकोनॉमी के सामने अचानक ब्रेक लगने का खतरा मंडरा रहा है। मिडिल ईस्ट में उठती हलचल का असर यहाँ हर घर की जेब तक पहुँचने लगा है। महंगाई की आहट, खर्च पर लगाम और ग्रोथ की चाल, इन सब ने मिलकर दबाव बढ़ा दिया है। इस संकट के बीच ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनियां और रेटिंग एजेंसियां भी भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा रही है। दरअसल कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो रही है। इसके अलावा कमजोर मॉनसून की आशंका से खेती और ग्रामीण इलाकों की डिमांड घटने का डर है और महंगाई की वजह से आम आदमी की जेब खाली हो रही है, जिससे मार्केट में खरीदारी कम हुई है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी वजह केवल तेल की कीमतों का खेल है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इम्पोर्ट करता है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से देश की इम्पोर्ट कॉस्ट में इजाफा होता है, जिससे रुपया कमजोर होता है और कच्चा माल महंगा होने से इंडस्ट्री की लागत बढ़ जाती है। आयातित तेल पर ज्यादा निर्भरता इकोनॉमी को ग्लोबल झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। वहीं रुपए पर दबाव बढ़ने से कारोबार की लागत बढ़ती है। ऐसे में क्लीन एनर्जी और वैकल्पिक फ्यूल की तरह तेजी से बढ़ना जरूरी हो गया है। डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रुपया और बढ़ता व्यापार घाटा एमएसएमई की कमर तोड़ रहा है, खास तौर पर वो फैक्ट्रियां जो ईंधन के लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल करती हैं, उनके लिए काम चलाना घाटे का सौदा बन रहा है। दूसरी चुनौती मॉनसून से जुड़ी हुई है। अगर बारिश उम्मीद से कम रही तो खेती पर असर पड़ेगा, गाँव की कमाई घटेगी और इसका असर शहरों के बाजार तक पहुंचेगा। तीसरी मार महंगाई के जरिए हर घर तक पहुंच रही है, क्योंकि भारत की ग्रोथ में खपत की बड़ी भूमिका है। महंगाई बढ़ने और आमदनी धीमी रहने से लोग खर्च घटाते हैं, जिससे बाजार की डिमांड और बिजनेस एक्टिविटी दोनों ही प्रभावित होते हैं। इन हालात के बीच कुछ राहत की तस्वीर भी सामने आई है। मूडीज रेटिंग से ताजा रिपोर्ट ने भारत की इकोनॉमी को मजबूत बताया है। मूडीज के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क भरोसेमंद और साफ है। वहीं भारत ग्लोबल झटकों को झेलने की बेहतर स्थिति में है और आरबीआई की नीतियों ने

0: महंगाई की उम्मीदों को कंट्रोल में रखा हुआ है। रिपोर्ट में साल 2026 से 2027 में तेज ग्रोथ का भरोसा भी जताया गया है। सरकार ने भी हालात को संभालने के लिए तेल सप्लाई सुरक्षित करने और एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश तेज कर दी है। ग्लोबल उथल पुथल के दौर में भारत के लिए अपने संसाधनों को मजबूत करना ही एकमात्र रास्ता बचा है। विदेशी रेटिंग एजेंसियां भले ही चेतावनी दे रही हैं, लेकिन भारत का मजबूत बैंकिंग सिस्टम और विदेशी मुद्रा भंडार इस लड़ाई में बड़ा हथियार साबित होगा। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

0: दस दिन बाद कांग्रेस ने चुना केरला में अपना मुख्यमंत्री वीडी सतीशन होंगे अगले सीएम। केसी वेणुगोपाल रेस में पिछड़े, राहुल गांधी ने लगाई सतीशन के नाम पर अंतिम मोहर। राहुल के विदेश दौरे पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा 22 साल में 54 निजी यात्रा पर खर्च किए 60 करोड़ रुपए, 10 साल में आमदनी हुई सिर्फ 11 करोड़। कांग्रेस से पूछा किसने की फंडिंग। बीजिंग में ट्रंप के सामने चीन आक्रामक, कहा अमेरिका ने उठाया ताइवान का मुद्दा तो हो सकता है टकराव। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा हमारा हित सबसे ऊपर, जिनपिंग को बताया महान नेता। दिल्ली में आज से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, मिडिल ईस्ट तनाव और ऊर्जा संकट पर हो सकती है बात। सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से पीएम मोदी की भी मुलाकात। और ऊर्जा संकट के बीच देश में महंगाई दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, अप्रैल में थोक महंगाई दर 8.3% पर पहुंची, मार्च में 3.88% पर थी दर। रोजाना जरूरत के सामान और गैस बिजली के दाम बढ़े।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और देश के सबसे बड़े न्यूज रूम में न्यूज रूम लाइव के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। आपको बताया था 2 बजे बड़ी खबरों के साथ न्यूज रूम लाइव में हम हाजिर होंगे, तो आज हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज न्यूज रूम लाइव में हम किन खबरों के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे केरल की, केरल में जहां 10 दिन के बाद फाइनली कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान कर दिया है, वीडी सतीशन नया नाम जिस पर राहुल गांधी की मोहर लग गई है, और यहां पर केसी वेणुगोपाल अब थोड़ा पिछड़ते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो केरलम के सतीशन इस वक्त इन हो गए और वेणुगोपाल इस वक्त आउट हो गए। दूसरी हम बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी कह रही है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, आखिर ये विदेश दौरे जो राहुल गांधी के हो रहे हैं इस पर जो बाल मचा हुआ है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि तीसरी जो बड़ी खबर जिसके बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं वो तीसरी बड़ी खबर होगी देवास की। देवास में पटाखा बम, मौत का धमाका, कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं, पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका होता। और एक बड़ी दिलचस्प खबर, तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो दिखाएंगे हम आपको बरेली से, जहां पर बरेली में तेज आंधी तूफान की वजह से एक शख्स हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया, और पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात रहे, कितने लोगों की जान गई, कितना नुकसान हुआ, ये हम आपको बताने जा रहे हैं अब से कुछ देर बाद। लेकिन सबसे पहले, जैसा हमने आपको बताया कि सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, और बरेली में आपने हमेशा देखा होगा, गाना भी सुना होगा, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, झुमका गिरने की खबर देखी होगी लेकिन आदमी के उड़ने की खबर बरेली में आपने नहीं देखी होगी, और वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब ये एक वीडियो है, अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आंधी तूफान से क्या हालात हुए हैं बरेली में। बरेली में ये शख्स हवा में जो आपको उछलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मत सोचिए कि ये कोई स्टंटमैन है या फिर किसी फिल्म में स्टंट कर रहा है, कोई एक्शन सीक्वेंस यहां पर शूट हो रहा है। दरअसल इतनी तेज आंधी तूफान चला कि बरेली में एक शख्स, जो शादी समारोह था वहां पर टीन शेड लगी हुई थी और टीन शेड को पकड़कर खड़ा था, उसको भरोसा था कि इस टीन शेड में वो अपने आप को इस तेज आंधी में बचा लेगा, लेकिन जब आंधी तेजी के साथ देखी गई तो उसके बाद ये टीन शेड भी उखड़ जाता है और वो शख्स हवा में 50 फीट से ज्यादा लंबी छलांग लगाता है, और इतनी लंबी छलांग लगाने के बाद दूर जाकर खेत में गिर जाता है, और इस वजह से उसको काफी चोट भी लगती है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हाथ पांव में काफी गहरी चोट लगी हुई है, और टीन शेड ये देखिए, ये टीन शेड था लेकिन उसके बावजूद टीन शेड हवा में उछला और टीन शेड के साथ साथ एक शख्स, उसकी क्या हालत हुई ये आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हो। और सिर्फ बरेली की नहीं, हम आपको अब से कुछ देर बाद 2:30 बजे लगभग बताएंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात हैं और क्या हालात यहाँ पर हुए, ये सब जानकारी हम आपको देंगे। तो देखिए, आपने ये वीडियो तो देख ली और ये देख लिया कि यहाँ पर शख्स का क्या हालत हुई है, क्योंकि आंधी तूफान बहुत तेज था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये मौत की आंधी चलती है और ये बताया जा रहा है कि कुल 61 लोगों की मौत होती है, सिर्फ प्रयागराज में ही 17 लोगों की मौत हो जाती है इस आंधी तूफान की वजह से, सिर्फ प्रयागराज में 17 लोगों की मौत होती है। लेकिन ये मामला सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं है, भदोही में आप देखिए 15 लोगों की मौत भदोही में होती है, क्योंकि आंधी तूफान इतनी जोर से आता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा देता है। मिर्जापुर में 10 लोगों की मौत हो जाती है, ये कुल 61 में से बता रहे हैं आपको। फतेहपुर में आप देखिए 9 लोगों की जान चली जाती है आंधी तूफान की वजह से, कहीं कोई पेड़ के नीचे दब जाता है तो कहीं कोई आंधी तूफान की वजह से किसी की जान चली जाती है। प्रतापगढ़ में 4 लोगों की जान चली गई, जो तस्वीरें आपने बरेली से देखी ना, ऐसे ही कुछ प्रतापगढ़ से आई, ऐसे ही कुछ प्रयागराज से आई, हरदोई से भी ऐसी कुछ तस्वीरें आई हैं, 2 लोगों की जान यहां भी चली गई। और क्यों गई है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कल मौत की आंधी देखी गई। कौशाम्बी में भी एक शख्स की जान चली गई, कानपुर में भी एक शख्स की जान चली गई है। ये हालात तो यहां पर हुए हैं। अब ये आपने हालात देख लिए सब जगह के, अब वास्तविकता में कैसी सिचुएशन इस वक्त बनी है। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष, कुल 61 लोगों की मौत हुई है। बरेली से जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली है, और हमने ये भी देखा प्रयागराज में कई लोगों की जान चली गई। ओवरऑल क्या जानकारी है आपके पास, कितना नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश को कल मौत की आंधी से?
2: देखिए, कुल 61 लोगों की तो जान गई, लेकिन 89 लोग कम से कम इसमें पूरे हताहत हुए, जिसमें जान गई, कुछ इंजर्ड हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के 19 जिले ऐसे हैं जहां पर ये सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ, चाहे वो कानपुर देहात हो, चाहे वो बाराबंकी, अंबेडकर नगर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बरेली, करीब ऐसे ज़िले हैं जहां पर ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं आंधी तूफान से। लोग प्रभावित हुए हैं और 61 लोगों की जान चली गई। जो बरेली की हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो बरेली तस्वीर बता रही है कि कैसे तेज आंधी में एक शख्स उड़ जाता है। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, कानपुर, हरदोई, सीतापुर, ये तमाम जिले ऐसे थे, 19 जिले ऐसे थे जहां पर 3 घंटे तक मौत की आंधी आई, हताहत कर देने वाला, जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देने वाली आंधी थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितने भी पीड़ित परिवार हैं, जो मृत हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजा, उनके जो क्षतिपूर्ति हुई है उसके लिए निर्देश दिए हैं।
0: बताया 3 घंटे तक मौत की आंधी आई, और 3 घंटे तक मौत की आंधी ने कितनी तबाही बचाई, पूरी रिपोर्ट हम आपको बताएंगे आपसे कुछ देर बाद दोपहर 2:30 बजे। लेकिन अब आपको मध्य प्रदेश के देवास लिए चलते हैं। एक जगह आंधी आ रही है तो एक जगह धमाका हो रहा है, और कहां धमाका हो रहा है? पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो रहा है, और यहां भी लोगों की जान गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, मध्य प्रदेश के देवास की तस्वीरें हैं। 3 लोगों की मौत हुई, 12 लोग घायल हैं, और बताया जा रहा है कि झुलस गए हैं यहाँ पर, क्योंकि जोरदार धमाका हुआ है। यहाँ पटाखा फैक्ट्री थी और बारूद, फिर जोरदार धमाका। अब यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर लापरवाही बरती गई, लापरवाही बरतने की वजह से ही यहाँ 3 लोगों की जान चली गई और 12 लोग घायल हुए। अब यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर लाइसेंस था कि नहीं था, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर अवैध पटाखा फैक्ट्री लगाई जाती है, जहाँ पर पटाखे बनाए जाते हैं और उनको बेचा भी जाता है अवैध तरीके से, पूरे अवैध तरीके से। तो इस पर अब बातचीत, इस पर अब जांच बैठाई जा रही है कि क्या ये अवैध था या फिर यहाँ पर लापरवाही की गई, लाइसेंस लिया गया था कि नहीं लिया गया था। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रवीश, क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है इस धमाके के बारे में?
3: देखिए, आज तक पे सबसे पहले हम खुलासा कर दें कि ये घनघोर लापरवाही है, क्योंकि ये जो ब्लास्ट आज हुआ है जिसमें 3 लोग मरे हैं, जिस जगह पे ये ब्लास्ट हुआ है आपको बता दें हिमांशु कि इसी जगह पे, इसी टोककला गांव में ठीक आज से 1 साल पहले, यानी मई 2024 में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 3 लोग तब भी मारे गए थे। इसके बावजूद यहाँ पर शायद प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियों में मध्य प्रदेश में ब्लास्ट का लंबा इतिहास रहा है, फिर भले ही वो फरवरी 2024 का मामला हो जब हरदा में सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसमें 13 लोग मारे गए थे, और उसके बाद मुरैना हो या फिर अब ये मामला सामने आया है टोककला का। टोककला में 2 सालों में ये दूसरा बड़ा हादसा है जिसमें कुल मिला के 6 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, और इसके अलावा कई दूसरी जगह है जहां पर ऐसे मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में इस तरीके के जो पटाखा बनाने वाले व्यापारी होते हैं, आपको बताएं कि ये लाइसेंस एक फैक्ट्री का लेते हैं, लेकिन हमेशा आरोप लगते हैं कि एक लाइसेंस की आड़ में ये अवैध रूप से भी अन्य फैक्ट्रियों को संचालित करते रहते हैं। और ये जो फैक्ट्री अभी बनी है, मुश्किल से शुरू हुए अभी 3 से 4 महीने हुए बताया जा रहा है, क्योंकि अभी दिवाली का सीजन जब आएगा तो उससे पहले ये फैक्ट्रियां जो है इनमें पटाखे बनने शुरू होते हैं और जो आसपास के इलाकों में भी सप्लाई होते थे।
0: रवि, लेकिन सुरक्षा बताया, बड़ा खुलासा किया, 2 साल पहले भी हुआ, अब भी हुआ और आगे भी होगा, लेकिन गंभीरता से लापरवाही करने वालों पर शिकंजा कब कसेगा पता नहीं। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। एक नई तस्वीर देखी गई और आज ममता बनर्जी एक अलग किरदार में नजर आई। आज वकील बिल्कुल वेशभूषा में नजर आई और हाईकोर्ट पहुंची, जज के सामने उन्होंने बहस भी की, अपनी बात भी रखी, और उन्होंने कहा कि वो पहली बार एक वकील के तौर पर हाईकोर्ट में पहुंची हैं। ममता बनर्जी चुनाव बाद हिंसा के मामले में ममता बहस के लिए खुद जज के सामने पेश हुई। सुरशन्यो बनर्जी ने एक जनहित याचिका दायर की है और इस पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच के सामने बहस करने के लिए ममता बनर्जी हाईकोर्ट आई और कोर्ट में ममता ने जोरदार दलील भी रखी, लेकिन बाहर आते ही उन्हें नारों का भी सामना करना पड़ा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीर देखिए कि ममता बनर्जी एक बार फिर से बिल्कुल अलग अंदाज में आज दिखाई दी। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल से ये शुभेंदु अधिकारी बन चुके हैं मुख्यमंत्री। अब उन्होंने वहां पर पशु वध कानून को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है और अब शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बन चुके हैं, फैसले लिए जा रहे हैं, तो पशु वध कानून को उन्होंने सख्ती से लागू करने का फैसला ले लिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अब बंगाल में बिना सर्टिफिकेट जानवरों का वध नहीं होगा। जिसके पास सर्टिफिकेट है वो भी खुले में जानवरों का वध नहीं कर पाएगा और सख्ती से इसको लागू करने का आदेश पूरे बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने दे दिया है। और अभी शुरुआत है, अभी तो शुभेंदु अधिकारी के और भी कई ऐसे फैसले देखने को मिलेंगे जिनमें उनका एक्शन साफ दिखाई देगा। दिलीप घोष इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं।
4: पहले से था, अदालत का फैसला था, यहाँ मान्य नहीं होता, सरकार जानबूझकर उसको नहीं मानती थी और लोगों को उकसा दिया जाता था नहीं मानने के लिए, उसी को फिर से हमारी सरकार सामने लाई है। जो पहले से कोर्ट का फैसला है, संवैधानिक व्यवस्था के अंदर जो चीजें उसी को हम लोग लागू किया है, लोगों याद करा दिया कि आप कानून से चलिए और देश में चाहे धर्म हो, जात हो, कुछ भी हो, सबके लिए कानून बराबर है और कानून को सबको मान के चलना चाहिए।
0: यूपी एमपी बंगाल के बाद अब आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आल हेलमेट लगा के बुलेट की सवारी करते हुए विधान भवन पहुंचे, वो तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखाएंगे। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक अपील की गई, उनकी तरफ से खुद इनिशिएटिव लिया गया, तो उसका असर आप सब जगह दिख रहा है। ये देखिए देवेंद्र फडणवीस बुलेट चलाते हुए और बाकायदा आप देखिए कि सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है, हेलमेट पहने हुए हैं, साथ में पीछे उनके साथ में वो भी हेलमेट लगाए हुए हैं और अब एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है और वो संदेश यही है कि प्रधानमंत्री की अपील का असर हो। अब कैबिनेट की बैठक के लिए फडणवीस यहां पर पहुंचे, गाड़ियों का काफिला छोड़ दिया और अब बुलेट की सवारी करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिखाई दिया। अब हो सकता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो शुरुआत की गई है उस शुरुआत के बाद अब आगे भी और भी कई मंत्री कई नेता अब अपने काफिले को छोड़ते हुए साथ ही अब बुलेट पर दिखाई दें और जो भी अब कहा जा रहा है कि काफिला छोड़ा जा रहा है, तो मुख्यमंत्री ने कहा क्या वो भी हम आपको सुनाते हैं।
5: आज बाइक पर प्रवास कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो नीचे तक पहुंचे, इसलिए एक प्रयास के रूप में इसको किया है। वैसे हम लोगों ने हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहां जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, तो बचाने का प्रयास हम करेंगे। इसके चलते अगले 6 माह तक राज्य में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सरकार की ओर से आयोजित नहीं किए जाएंगे। केवल कल सातारा में एक कार्यक्रम हमने आयोजित किया था जो प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम है और 10,000 करोड़ रुपया सीधे हमारे लोगों के खातों में जा रहा है, इसलिए उसको हमने रद्द नहीं किया है। लेकिन कल के बाद बड़े कार्यक्रम भी हम लोग नहीं करते।
6: पीएम मोदी के ईंधन बचत की अपील के बाद हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार कड़े कदम उठाते नजर आ रही है। खुद महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर बाइक से विधान भवन पहुंचे थे और विधान भवन पहुंचने के बाद अभी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उस कैबिनेट की बैठक के लिए भी राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बिना किसी कॉन्वॉय के, बिना किसी सिक्योरिटी, बहुत बड़ी सिक्योरिटी के, वो अब बाइक से सवार होते हुए अपने बैठकों को हाजिरी लगाते दिख रहे। अब विधान भवन से वो मंत्रालय पहुंचे हैं। हमने देखा कल ही महाराष्ट्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें विदेश दौरे को लेकर, बैठकों को लेकर, ऑनलाइन बैठकों को लेकर और साथ ही साथ ईवी गाड़ियों का इस्तेमाल करने को लेकर कई कड़े कदम महाराष्ट्र सरकार ने उठाए हैं, लेकिन कथनी दिखाने के लिए खुद मुख्यमंत्री जब बाइक से सवार होकर अपनी बैठकों के लिए पहुंचते हैं, ये बहुत बड़ा संकेत पूरे मंत्रिमंडल को होता है। इतना ही नहीं बल्कि राज्यों को भी ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि किस तरह से ईंधन बचत के लिए हमें कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाना जरूरी है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ में ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: तो केरलम का सस्पेंस जो पिछले कुछ 10 दिनों से लगभग चला रहा था, फाइनली उसका हो गया है दी एंड और ये तय हो गया है कि वीडी सतीशन अब मुख्यमंत्री होंगे केरलम के। अब देखिए कांग्रेस की तरफ से तो यही जानकारी दी गई है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय सल की अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष, कांग्रेस वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया और खड़गे ने इसके लिए राज्य के सांसदों और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से भी संपर्क किया। केरलम के सीएम की रेस में केसी वेणुगोपाल चल रहे थे लेकिन वो यहां पीछे रह गए। अब यह भी माना जा रहा है कि IUML के समर्थन की वजह से सतीशन की दावेदारी मजबूत हो गई और वेणुगोपाल रेस में पीछे हो गए। वीडी सतीशन, 10 दिन का इंतजार और उसके बाद नाम पर थप्पा लग जाता है, मोहर लग जाती है, ये है वीडी सतीशन। अब हैं कौन ये देख लीजिए, पारा वोट से चुने गए थे विधायक, जनता ने जिताया और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री तक कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया। पारावुर से 6 बार विधायक रहे हैं, यानी 2001 से, जो इनका रिकॉर्ड कहता है वो ये कि 2001 से एक भी चुनाव नहीं हारे हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं और इसीलिए इनका कद अब बहुत आगे बढ़ा। यही एक वजह है कि वीडी सतीशन अब केरल के मुख्यमंत्री भी बने हैं। 2021 में नेता विपक्ष बनाए गए थे, इनका कद धीरे धीरे लगातार बढ़ता गया, जनता का विश्वास बढ़ता गया और जनता का समर्थन इनको मिलता गया। केरलम कांग्रेस के ये उपाध्यक्ष भी रहे हैं और चर्चाएं भी चली थी, राहुल गांधी की तरफ से भी इनके बारे में बात की गई थी। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन 1986 से 1987 के दौरान रहे, पेशे से अधिवक्ता हैं, वकील हैं सतीशन, तो मामलों से जुड़ी, विधि से जुड़े मामलों से जुड़ी जानकारी भी अच्छी रखते हैं। चुनाव से पहले उत्तर से दक्षिण केरल यात्रा, चुनाव से पहले उत्तर से दक्षिण केरल यात्रा भी इन्होंने की थी और एक पूरी यात्रा इनकी ऐसी चली थी। अब यहां अब आप समझिए कि उनके नाम का ऐलान हुआ, 10 दिन तक ये इंतजार किया जा रहा था, हुआ कैसे वो हम आपको बताते हैं।
7: अकॉर्डिंगली द कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज हेल्ड एक्सटेंसिव डिस्कशंस विद द चेयरपर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026 and many other leaders from the state including MPs, former PCC presidents have all also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP.
8: हम लोगों ने अभी पूरा विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कैसे कंसल्टेशन हुआ और कैसे सब लोगों से बातचीत करी गई, सब फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट्स को दिल्ली में बुला करके बात करी गई, सब एमपी से बात करी गई, सब लोगों से बात करने के बाद में यह तय हुआ और एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ।
9: जो लोगों की पसंद है वही डिसाइड हुआ, मिलने का
8: समय कब, लोगों की पसंद 100 से ज्यादा सीट्स यूडीएफ को दी है, ये लोगों की पसंद है।
0: तो वीडी सतीशन फाइनली चुने गए हैं, अब केरलम के मुख्यमंत्री होंगे। राहुल गौतम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े होंगे। राहुल ये बताइए, 10 दिन का वक्त लगा, केसी वेणुगोपाल पीछे रह गए, वीडी सतीशन के नाम पर मोहर लग गई, आखिर क्या जोड़ तोड़ देखकर कांग्रेस की तरफ से वीडी सतीशन के नाम पर मोहर लगी है?
10: देखिए आसान फैसला तो कतई नहीं था, इसीलिए 10 दिनों का समय लगा। केसी वेणुगोपाल के पक्ष में ज्यादातर विधायक थे, इसमें कतई दो राय नहीं है, लेकिन क्योंकि वीडी सतीशन जो है वो काफी पॉपुलर है कार्यकर्ताओं में, मैं जानकारी दे दूं कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे पिछले 5 सालों से केरला असेंबली के अंदर, तो लगातार वो सदन के अंदर और सदन के बाहर मुद्दों को उठा रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, लेफ्ट सरकार को, और ऐसे में वो काफी पॉपुलर थे। जब से नतीजे आए तभी से प्रोटेस्ट चल रहे थे केरला के अंदर, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, यहां तक कि जो कांग्रेस के विधायक है वो किसी कार्यक्रम में जब जाते थे तो उन्हें घेर कर पूछा जाता था कि भाई आप वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं, तो इस कदर आप कह सकते हैं कि उनके पक्ष में माहौल था। इसमें कतई दो राय नहीं है कि IUML जिसकी 22 सीटें आई हैं उसका भी एक दबाव था, वो भी ये चाहते थे कि सतीशन का नाम आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा वायनाड जहां पर जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनकर आती हैं उस जगह पर बड़ा दबदबा है IUML का, वहां पर पोस्टर्स लग गए कि हमको KC वेणुगोपाल नहीं चाहिए और सतीशन चाहिए वरना इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को, यानी उस सीट से जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा आती है वहां पर भी उनके पक्ष में माहौल नहीं बन पा रहा था। तो कुल मिलाकर फिर तमाम चीजों को टेक ऑन किया गया। राहुल गांधी ने आज सुबह KC वेणुगोपाल को बुलाया।
0: राहुल और इस जानकारी के लिए भी, और अब बात करते हैं अगली खबर की। बीजेपी की तरफ से ये सवाल पूछा गया है कि राहुल गांधी जो इतनी विदेश यात्रा कर रहे हैं इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, ये पैसा आ कहां से रहा है, ये राहुल गांधी की यात्राओं को लेकर अब सवाल पूछा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि किसने की है राहुल की यात्रा की फंडिंग। 20 करोड़ आमदनी तो 60 करोड़ आखिर खर्च कैसे हो गए राहुल गांधी ने, जो विदेश यात्रा की है उनके पैसे किसने दिए, क्या राहुल गांधी ने कई जानकारियों को छुपाया है, ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि 22 साल में 54 विदेश यात्राएं राहुल गांधी कर चुके हैं और घोषित संपत्ति 21 करोड़ की और इससे ज्यादा खर्च हुआ है, तो पैसा कहां से आया।
11: मैं बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुख्य नेता LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं, 22 वर्षों से। 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए, तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं, इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही उसमें मस्कट और ओमान भी है।
12: मतलब यही है कि प्रधानमंत्री की नाकामी से ध्यान हटाना चाहिए, इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है, झटके मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है, और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, ये ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं बस, इसमें कुछ है ही नहीं, और संबित पात्रा मंत्री बनना चाहते हैं और क्या।
0: सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर चलता रहेगा, यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक, लेकिन 2:30 बजे आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में आंधी ने कैसे मचाया तांडव।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
16: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
17: we know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
16: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
18: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: GK Max.
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: GK Max. Best पुट्टी?
4: JK Wall Max.
2: Best paint?
5: JK Max.
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Max paints. JK Max. JK Max paints. खुशियों के रंग.
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.
9: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK.
10: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा दे.
11: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते.
12: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ.
13: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था.
14: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था.
15: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते. म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ. म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए. अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
16: नहीं,
15: और म्यूचुअल फंड से
16: सही.
17: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.
18: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस.
19: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you? Hint, bade aaram se. Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
20: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
19: Samakul Cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Samakul Cooler, life banaye wonderful. Vimal, bolo zubaan kesri.
21: हर चेहरा सिर्फ एक नाम नहीं होता, उसके पीछे होती है एक कहानी. कभी सुर्खियों में, कभी सवालों में, हम बताते हैं उस चर्चा का सच. चर्चित चेहरा देखना ना भूलें सोमवार से शुक्रवार शाम ठीक 7 बजे सिर्फ और सिर्फ न्यूज तक पर.
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी. लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा. इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो. Akajay, the number one Korean skincare brand. Now

10 दिन बाद कांग्रेस ने चुना केरला में अपना मुख्यमंत्री वी डी सतीशन होंगे अगले सीएम। केसी वेणुगोपाल रेस में पिछड़े, राहुल गांधी ने लगाई सतीशन के नाम पर अंतिम मुहर। राहुल के विदेश दौरे पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा 22 साल में 54 निजी यात्रा पर खर्च किए 60 करोड़ रुपए, 10 साल में आमदनी हुई सिर्फ 11 करोड़। कांग्रेस से पूछा किसने की फंडिंग। बीजिंग में ट्रंप के सामने चीन आक्रामक, कहा अमेरिका ने उठाया ताइवान का मुद्दा तो हो सकता है टकराव। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा हमारा हित सबसे ऊपर, जिनपिंग को बताया महान नेता। दिल्ली में आज से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, मिडिल ईस्ट तनाव और ऊर्जा संकट पर हो सकती है बात। सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से पीएम मोदी की भी मुलाकात। ऊर्जा संकट के बीच देश में महंगाई दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, अप्रैल में थोक महंगाई दर 8.3% पर पहुंची, मार्च में 3.88% पर थी दर। रोजाना जरूरत के सामान और गैस बिजली के दाम बढ़े।

0: बरेली के बाजार में आपने झुमका गिरने की खबर देखी होगी, लेकिन आपने आदमी को उड़ते हुए देखा है, वो भी बरेली में आंधी तूफान की वजह से। ऐसी खबर आपने देखी है, हम आपको दिखाते हैं। और वो तस्वीर जब आप देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। अब यहां पर आप इस शख्स को देखिए, इस तस्वीर को देखिए, कितने फीट हवा में ये शख्स उछलता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि आप जो टीन शेड देख रहे हैं, ये दरअसल एक शादी समारोह चल रहा था, वहां पर टीन शेड के नीचे इस शख्स ने आंधी तूफान से बचने के लिए उस टीन शेड को पकड़ लिया, लेकिन इसको नहीं पता था कि इतना तेज आंधी तूफान आएगा कि वो टीन शेड में उड़ता हुआ चला जाएगा और उसके बाद 50 फीट से ऊपर तक वो हवा में उछलता है और दूर जाकर खेत में गिर जाता है। काफी चोट लगी है ये बताया जा रहा है और इस वक्त हालत गंभीर है और अस्पताल में इलाज चल रहा है इस शख्स का, जिसके बारे में जानकारी मिल पाई है। और शख्स की पहचान नन्ने मियां के तौर पर हुई है, जो एक टीन शेड के नीचे खड़े थे, बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ये सिर्फ बरेली नहीं, आसपास कुछ ऐसे ही हालात यहां पर बने हुए हैं। अब ये चर्चा का विषय यहां पर बना हुआ है। कुछ लोग शुरुआती तौर पर इसको कह रहे थे कि ये एआई वाला वीडियो है, लेकिन जब इस वीडियो की सत्यता प्रमाणित हुई तो उसके बाद पता चला कि हालात बेहद गंभीर हो गए थे और बरेली में इतनी तेज आंधी तूफान चली कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक शख्स हवा में इतने फीट ऊंचाई पर उछल जाएगा। और देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ बरेली के हालात है, तो ऐसा नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे ही हालात हुए। तूफानी तबाही की बात आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा मौत है, प्रयागराज में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 21 लोगों की मौत सिर्फ प्रयागराज में हुई है। क्यों? आंधी तूफान आ रहा था। मिर्जापुर में 17 लोगों की जान चली गई, 17 लोगों की मौत आंधी तूफान की वजह से। और सिर्फ ये बात प्रयागराज मिर्जापुर तक सीमित नहीं, आप आगे जाएंगे संत रविदास नगर, यहां पर 14 लोगों की जान चली गई। क्यों? क्योंकि आंधी तूफान चल रहा था। फतेहपुर में देखिए 11 लोगों की जान चली गई, और ये राज्य में अलग अलग शहरों में कुछ ऐसे ही हालात हो रहे थे। भदोही में 15 लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा मौत है। बदायूं में 6 लोगों की मौत हो गई है आंधी तूफान की वजह से, कहीं पर पेड़ गिर रहा है। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बरेली की तस्वीर तो आपने देख ली फ्लाइंग मैन की, प्रयागराज आप देखिए, मिर्जापुर जोरदार हवाएं चल रही हैं, फतेहपुर, भदोही, बदायूं, उन्नाव, कौशाम्बी, कहीं पर पेड़ उखड़ गए, कहीं पर गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गए। अब उत्तर प्रदेश में ओवरऑल क्या हालात हैं, कितनी परेशानी लोगों को हुई है, मौत का आंकड़ा कैसे बढ़ गया, सरकार क्या कर रही है, एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं।
1: तूफानी तबाही की यह पहली और सबसे हाहाकारी तस्वीर है। यूपी के अलग अलग हिस्सों में जो तूफान आया, उसकी हैरान करने वाली ये तस्वीर बरेली से आई। हवाओं की रफ्तार कितनी खतरनाक थी, उसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। देखिए कैसे एक शख्स हवा में करीब 50 फीट तक उड़ जाता है। ऐसा लग रहा है मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। बरेली में तूफान आया तो उससे बचने के लिए एक शख्स ने टीन शेड का सहारा लिया, लेकिन तूफान का प्रकोप ऐसा कि ये टीन शेड खुद भी तिनके की तरह उड़ने लगा। जानकारी के मुताबिक ये टीन शेड बारात घर के ऊपर बना था, उसी टीन शेड की आड़ में जान बचा रहा शख्स भी उसके साथ साथ हवा में करीब 50 फीट से ज्यादा ऊपर तक उड़ गया। तूफान की चपेट में आकर हवा में उड़ने वाला शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
2: जी, जानकारी मिली थी कि कल जो है, जब काफी तेज जो है आंधी आई है, उस समय बमियाना गाँव के नन्हे रहने वाले हैं, तो इनके यहाँ भी मतलब एक टीन शेड उड़ा और उसी के साथ मतलब वीडियो हमने देखा कि ये भी उड़ गए उस तेज हवा में और काफी दूर जाकर गिरे, तो इसीलिए जो है ये जानकारी करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं कि इनकी मतलब क्या क्या समस्या है इस समय, और इसमें जो है शासन द्वारा जो निर्धारित सहायता है वो भी हम इनको उपलब्ध कराएंगे।
1: यूपी के उन्नाव में भी खौफनाक मंजर दिखे। वहाँ मौसम की अचानक करवट लेते ही तेज आंधी के चलते सड़क पर खड़ी कार के ऊपर एक विशाल नीम का पेड़ टूट कर गिर पड़ा। इस हादसे में कार के ठीक ऊपर पेड़ गिरा, लेकिन गनीमत कहिए कि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए फौरन कार से भागकर अपनी जान बचा ली। अब पेड़ गिरने का ये लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के भदोही में भी हालात बेहद गंभीर दिखे। वहाँ भीषण आंधी तूफान से अलग अलग घटनाओं में 15 लोगों की जान चली गई, कई लोग जख्मी हो गए, कहीं पर पेड़ पौधे टूट कर बिखर गए। एक ऐसा ही मंजर वहाँ रेलवे स्टेशन पर दिखा, ट्रैक पर भी जमींदोज पेड़ का हिस्सा पड़ा रहा। बुधवार की शाम आए तूफान से भदोही में ये तबाही मची। इससे बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की भी मौत हो गई, कई जगहों पर बिजली के खंभे टूट गए जिससे बिजली सप्लाई ठप हो गई।
3: तेज आंधी तूफान आने की घटना के कारण अलग अलग थाना क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, जिसमें पेड़ गिर जाने के कारण अथवा बिजली का खंभा घरों के ऊपर गिर जाने के कारण अथवा एक मंदिर के ऊपर गिर जाने के कारण कई सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। कुल मिलाकर के अभी तक प्राप्त सूचना के क्रम में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 8 लोग इन घटनाओं में घायल हुए हैं अलग अलग घटनाओं में।
1: भीषण तूफान की चपेट में आकर प्रयागराज में 20 से ज्यादा लोग जान गंवा बैठे। इस गाड़ी की हालत देखिए, जिस वक्त आंधी तबाही मचा रही थी उसी वक्त ये गाड़ी सड़क से गुजर रही थी, तब ये पेड़ जमींदोज हो गया। पेड़ की चपेट में आकर लग्जरी गाड़ी तबाह हो गई।
4: 4:45 के करीब बहुत ज्यादा आंधी आई है और इतना ज्यादा आई है कि काफी नुकसान हुआ। ये देखिए पेड़, और पेड़ के नीचे दबी हुई कार है, किसी बैंक का ही हो किसी का, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए, बहुत तेज।
1: बदायूं में बुधवार को आई तेज आंधी कुछ लोगों पर कहर बनकर टूटी। तूफानी हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ और दीवारें टूटकर गिर पड़ी। अलग अलग घटनाओं में वहां 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए। तूफान के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक बाधित हो गया और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मिर्जापुर में भी आंधी तूफान के कहर से 17 लोगों की जान चली गई। वहां सदर तहसील में 7 लोगों की मौत हुई तो चुनार तहसील में 3 लोग जान गंवा बैठे। शहर में बीच सड़क पर पेड़ धराशायी हो गए, बिजली के पोल टूट कर बिखर गए। पोल की चपेट में वहां एक ऑटो वाला भी आ गया। सुबह 11 बजे तक के आंकड़ों की माने तो यूपी के अलग अलग हिस्सों में करीब 90 लोगों की जान जा चुकी है। इसे लेकर सीएम योगी ने प्रशासन को जान माल के नुकसान का तुरंत आकलन करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के निर्देश दिए। सख्ती बरतते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि पीड़ितों की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरेली से कृष्ण गोपाल राज, भदोही से महेश कुमार जायसवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: वहीं लखनऊ में प्रतीक यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। आज पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ और ये बताया गया कि अपर्णा यादव के पिता और उनके ससुर ने उनका अंतिम संस्कार किया। इस दौरान काफी शोक की लहर भी देखी गई और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ससुर ने यहाँ पर मुखाग्नि दी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। अंतिम यात्रा में भारी भीड़ थी, समाजवादी पार्टी के काफी कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे। हालांकि छह-छोट को लेकर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफी कुछ सामने आया है, अब उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन परिवार के सदस्य आज मौजूद थे, आज जो समाजवादी पार्टी के समर्थक है वो सब मौजूद थे। प्रतीक यादव का आज अंतिम संस्कार किया गया पूरे विधि विधान के साथ। अपर्णा यादव कल ही मुंबई से पहुंची थी महाराष्ट्र से, और कैसे विधि विधान के साथ आज अंतिम संस्कार किया गया, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: अखिलेश यादव के परिवार ने ऐसी अनहोनी सोची भी नहीं होगी। इतना बुरा सपना कभी नहीं देखा होगा कि प्रतीक ऐसे दुनिया को अलविदा कह जाएंगे, सबको रुला जाएंगे। तो बेटियों के पिता उन्हें ऐसे छोड़ जाएंगे, ये किसी को यकीन नहीं हो रहा। बुधवार की सुबह करीब 6 बजे दम तोड़ने वाले प्रतीक का आज लखनऊ में अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये परिवार के लिए बेहद भावुक पल था। प्रतीक यादव की आखिरी विदाई हो चुकी है। अपनी नम आंखों से छोटे भाई को अखिलेश यादव ने विदा किया, तो चाचा शिवपाल भी भावुक मन से उन्हें विदाई देने पहुंचे। मासूम बेटियां भी पिता की चिता को निहारती रहीं। प्रतीक के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने प्रतीक को मुखाग्नि दी। ये बेहद भारी पल था, लेकिन यही सच है। प्रतीक अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो हमेशा हमेशा के लिए अपनों को अलविदा कह गए हैं। लेकिन प्रतीक की मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसकी वजह भी है। दरअसल बुधवार की सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि कर दी। उसके बाद प्रतीक के शव को पोस्टमार्टम के लिए KGMU में डॉक्टर के पैनल के पास भेजा गया। जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में कुछ ऐसे जिक्र थे जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पोस्टमार्टम पर लिखा हुआ है कि प्रतीक के शरीर पर चोट के 6 निशान थे, उसमें से कुछ चोट पुरानी थी तो कुछ चोट 1-2 दिन पुरानी। उन चोटों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर बीमार चल रहे प्रतीक को वो चोट कैसे लगी। सवाल तो समाजवादी पार्टी नेता भी उठा रहे हैं। पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने डॉक्टर का हवाला देते हुए आशंका जताई कि प्रतीक को जहर दिया गया है।
1: जब अस्पताल पहुंचे वो तो उससे पहले ही उनकी मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा अस्पताल पहुंचते ही कि इनकी मौत हो चुकी है। मैंने पूछा उनसे कि अगर मौत हो गई है तो इनका पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये सामान्य मौत नहीं है, ये संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। तो उनको पॉइजन दिया गया, उनके शरीर में नीले नीले धब्बे पड़े हुए थे।
0: ऐसे गंभीर आरोप लगाकर अब रविदास मेहरोत्रा जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी किसी भी आशंका या सवाल पर अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। ये खबर जरूर है कि प्रतीक यादव पिछले करीब 5 सालों से DVT यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस से जूझ रहे थे। इन तमाम सवालों के बीच परिवार प्रतीक के असमय जाने से गमजदा है। उनके लिए दुख का एक एक पल मुश्किल भरा है। कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: और लखनऊ में जब प्रतीक यादव को मुखाग्नि दी जा रही थी तो उस वक्त भारी भीड़ थी। हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव भी वहां पर मौजूद थे, एक रिपोर्ट उनकी दिखाते हैं आपको।
3: स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव पंच तत्वों में विलीन हो गए हैं। उनके ससुर अरविंद सिंह बिष्ट यानी अपर्णा यादव के पिता ने उन्हें मुखाग्नि दी है। हम इस वक्त मौजूद हैं बैकुंठ धाम लखनऊ में और अगली तस्वीरें आपको दिखाएंगे बैकुंठ धाम से, जहां पर प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर पहले लाया गया और अब आप जिस तरह से तस्वीरों में देख रहे हैं कि उनके ससुर अरविंद बिष्ट के द्वारा मुखाग्नि दी गई और अब पंच तत्वों में विलीन होते प्रतीक यादव, समाजवादी पार्टी का कैडर, यादव परिवार के लोग, सैफई से आया परिवार और अन्य जगहों से उमड़े लोग। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब निकल रहे हैं, प्रतीक यादव को मुखाग्नि दी जा चुकी है। तस्वीरों में दिखाएं कैमरामैन संदीप, यादव परिवार एक साथ नजर आता है, जहां पर जो बेटी है प्रतीक की वो अखिलेश यादव से मुखातिब होती है। और अब आपको तस्वीरों में अखिलेश यादव को दिखा रहे हैं जो यहाँ से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको, साफ साफ अखिलेश यादव और उनके बेटे भी निकले। और एक गम का दिन है अखिलेश यादव के लिए भी, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव जी, ठीक है, अखिलेश यादव जी को देखा आपने तस्वीरों में, पूरा परिवार आपको एक साथ यहां पर दिखाई पड़ा और फिलहाल उन्होंने बात करने से तो मना किया है, लेकिन एक बात साफ है कि एक दिन ऐसा है जहां पर पूरा परिवार आज गम में है। शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, कोई हो, यहाँ पर नजर आए हैं और पंचतत्वों में भी लीन प्रतीक यादव और फिलहाल एक दुख की घड़ी यादव परिवार के लिए।
2: और जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि प्रतीक यादव का इलाज लखनऊ मेदांता में चला था और मेदांता में उनकी जो डॉक्टर थी वो रुचिका थी, उनसे बात की आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने। क्या सामने आया जो बहुत से सवाल शंकाएं खड़ी हो रही थी उस पर बातचीत।
4: ये बताइए कि जिस तरीके से प्रतीक यादव का कल देहांत हुआ है, निधन हुआ है, किस बीमारी से वो जूझ रहे थे और कितना ये सीवियर था?
5: काफ़ी सीवियर डिजीज़ था सर को, पल्मोनरी एम्बोलिज्म डिटेक्ट हुआ था अभी लगभग 2-3 हफ्ते पहले, जिसकी वजह से ब्लड थिनर्स थे और ब्लड थिनर्स पे होने के बावजूद उनका दूसरा एडमिशन जो हमारा ये 29 अप्रैल वाला जो हुआ था उसमें उनका हार्ट भी इन्वॉल्व हो चुका था। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है वेसल्स में बेसिकली खून का थक्का जमा होता है वो हार्ट पे इफेक्ट करने लग जाता है अगर वो थक्का ना गले, तो ये काफ़ी सीवियर डिजीज़ थी और सर को इस बारे में पूरी जानकारी भी थी।
4: तो ये जो उनकी मौत हुई है और खास करके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है, तो ये बीमारी जिस वक्त मतलब चूंकि रात में वो गिरे मिले, ये किस तरीके से रिएक्ट करती है ये बीमारी कि अचानक किसी को पता नहीं चलता और देहांत हो जाता?
5: राइट वेंट्रिकुलर इन्वॉल्वमेंट होना मतलब हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होना अपने आप में ही ये संकेत देता है कि ये गंभीर बीमारी का रूप ले चुकी है। सर ब्लड थिनर पे होने के बावजूद भी जो ये अगर बीमारी बढ़ रही होती है तो उनको इस बारे में जानकारी दी गई थी कि उनको थ्रोम्बोलिसिस एक प्रोसीजर होता है उसके जाना चाहिए और एक ब्लड थिनर स्टार्ट भी किया गया था उनका, लेकिन ये मतलब है ही बीमारी खतरनाक और जो अब रिपोर्ट मिली है तो वो अब जैसे मैं उनको इतने टाइम से देख रही हूँ और पहले से देखा है, डायग्नोसिस रीसेंट है, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, तो बिल्कुल मैच तो कर रहा है कि यही कारण था। और ऐसा
2: तो न्यूज रूम लाइव में फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही, लेकिन 3 बजे आप देखिए आज तक पर 100 शहर 100 खबर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: गाड़ी नंबर एक, गाड़ी नंबर दो, केवल दो कार का काफिला लेकर प्रधानमंत्री को क्यों निकलना पड़ा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बार अपील करने के बाद अब देश को खुद अलर्ट करने के लिए अपना काफिला 90% तक घटा दिया है? आखिर क्या होने वाला है जिसके लिए सिर्फ दो कार में निकलकर प्रधानमंत्री सबको सावधान सतर्क कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा में कमी करके देश को सजग कर रहे हैं कि बचत करिए तभी आर्थिक संकट से लड़ पाएंगे?
1: मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
0: पहले 10 मई को हैदराबाद, फिर 11 मई को वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों से तेल की बचत करने और सोना एक साल नहीं खरीदने की अपील कर चुके हैं। इसके 3 दिन के भीतर जब कैबिनेट की मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी निकलते हैं, देश से केवल तेल बचाने की अपील नहीं बल्कि उस डगर पर खुद चलकर दिखाते हैं जहां पर नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ न तो उनकी पायलट कार दिखी, न तो एम्बुलेंस दिखी, न जैमर कार दिखी, न पहले जैसी वो सुरक्षा कारें जो किसी खतरे के वक्त प्रधानमंत्री के सुरक्षा काफिले में रहकर हर चुनौती से रक्षा करती आई हैं। केवल दो गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग में निकलते हैं, लेकिन क्यों?
1: इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें, जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चले।
0: असल में प्रधानमंत्री उस डगर पर खुद चलकर देशवासियों को दिखा रहे हैं जिस पर चलने की अपील उन्होंने देश के नागरिकों से की है, जहां राजनीति नहीं बल्कि सबके मिलकर तेल बचाने वाली जुगत लगाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री

30 साल बाद खाड़ी में चल रही जंग की वजह से तेल के दाम उबाल मार रहे हैं। भारत का आयात बिल तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। 1990 के मुकाबले भारत आर्थिक तौर पर कई गुना ज्यादा मजबूत है। 700 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। फिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचत की अपील बार बार करनी पड़ रही है? क्या पीएम को कुछ और खतरा भी दिख रहा है? जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काफिला छोटा करके बचत की मिसाल पेश की, उससे आगे क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? ये सवाल गहराता जा रहा है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध नए सिरे से शुरू होकर और घातक होने जा रहा है, जिस असर को लेकर सरकार ने खुद ही बचत करनी शुरू कर दी? क्योंकि युद्ध शुरू होने के समय डॉलर के मुकाबले रुपया 91 के आसपास था, जो अब गिरकर अपने ऐतिहासिक स्तर 95.74 रुपए तक पहुंच गया। फरवरी में तेल की कीमत $78 प्रति बैरल थी। ईरान पर हमले के बाद $126 प्रति बैरल पहुंच गई। अभी करीब $105 और $110 प्रति बैरल के करीब है। इसकी वजह से भारत का आयात बिल काफी बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का तेल आयात बिल $176 अरब हो गया, जो और बढ़ने की आशंका है। इसीलिए उदय कोटक की तरफ से चेतावनी दी गई है। पिछले वित्त वर्ष में आयात बिल $775 बिलियन का था, जिसमें सबसे ज्यादा $175 बिलियन का बिल कच्चे तेल का है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का $116 अरब का है। तीसरे नंबर पर $74 बिलियन का बिल गोल्ड का था। इन तीनों का विदेशी मुद्रा भंडार पर सबसे ज्यादा दबाव होता है। ये ना बढ़े, इसीलिए सरकार की तरफ से सोने चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई। इसीलिए सरकार की तरफ से चुनौती को लेकर खबरदार किया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पीएम को लेकर अफरा तफरी मचाना बेकार है। पीएम की बातों को ध्यान से सुने और उसका मनगढ़ंत मतलब ना निकाले, क्योंकि हालात सिर्फ युद्ध खत्म होने से ही सुधरेंगे, जिसकी उम्मीद पिछले काफी दिनों से ही की जा रही है।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

केरल में अपना मुख्यमंत्री वीडी सतीशन होंगे अगले सीएम। केसी वेणुगोपाल रेस से बाहर, राहुल गांधी ने लगाई सतीशन के नाम पर अंतिम मोहर। राहुल गांधी के विदेश दौरों पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा 22 साल में 54 निजी यात्राओं पर खर्च किए 60 करोड़ रुपए, 10 साल में आमदनी हुई सिर्फ 11 करोड़। कांग्रेस से पूछा किसने की फंडिंग। 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का आगाज, तीसरे फेज के लिए चुनाव आयोग ने जारी किया कार्यक्रम। अब तक 13 राज्यों में वोट पूर्ण निरीक्षण का अभियान पूरा। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बड़ी मुलाकात, मिडिल ईस्ट तनाव और ऊर्जा संकट पर हो सकती है बातचीत, सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री मोदी की भी मुलाकात। बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप के सामने चीन का आक्रामक रवैया, कहा अमेरिका ने उठाया ताइवान का मुद्दा तो हो सकता है टकराव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे हित सबसे ऊपर, शी जिनपिंग को बताया महान नेता।

0: एनआईए ने नई दिल्ली की विशेष अदालत में लाल किले के पास हुए धमाके में मामले में 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दिया। चार्जशीट में 10 आरोपियों को नामजद किया गया है। एनआईए के अनुसार सभी 10 आरोपी संगठन अंसार गजवत अल हिंद से जुड़े हुए हैं। इसे अल कायदा से प्रेरित संगठन बताया जाता है। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपियों ने ऑपरेशन हवेली हिंद के नाम से भारत को अस्थिर करने और देश में शरिया कानून लागू करने की साजिश रची थी। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में अब तक करीबन 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एनआईए फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। 10 नवंबर 2025 को हुई थी विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। कोलकाता हाईकोर्ट में चुनाव बाद हिंसा पर अहम सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अदालत में खुद पेश की दलील। ममता बनर्जी ने तोड़फोड़ और हिंसा का मुद्दा उठाया, कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पास करे सरकार। चुनावी हिंसा पर सरकार ने रखा अपना पक्ष, कहा कि ऐसी घटना को चुनाव के बाद हुई हिंसा से जोड़ना सही नहीं है। दक्षिण 24 परगना में पलायन के टीएमसी विधायक दिलीप मंडल के आवास पर पुलिस ने छापेमारी की है। विधायक दिलीप मंडल पर विपक्ष को धमकाने का आरोप है। कोलकाता पुलिस ने डीसीपी सुशांतु सिन्हा बिस्वान से ईडी ने सामने पेश हुए। समन भेजने के बावजूद पेशी से लगातार बचते नजर आ रहे थे। सतीशन होंगे केरलम के नए मुख्यमंत्री। 10 दिन बाद राहुल गांधी ने लगाई सतीशन के नाम पर मोहर। वेणुगोपाल और चेन्नीथल्ला दौर से बाहर हो गए। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया गया। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। आज दिल्ली दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। नीट पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा। आरोपी मनीष बाघमरे के 21 बैंक खातों में लाखों रुपए जमा होने का खुलासा। मनीष और धनंजय लोखंडे के बीच कई संदेहास्पद व्हाट्सएप और टेलीग्राफ चैट भी मिली है जिनकी जांच की जा रही है। कांग्रेस नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। नीट पेपर लीक पे बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, यह भी कहा गया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार फर्जी जांच के जरिए प्यादों को गिरफ्तार करवा रही है। वजीर को बचाने में लगी हुई है सरकार। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में देश भर में छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने दावा किया है कि मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग की है। विपक्ष ने पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को कड़ी कार्रवाई का दबाव बनाया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो को नासिक से गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार और के 2 दिन की ट्रांजिट रिपोर्ट मिली है। जांच एजेंसी अब नेटवर्क और पेपर लीक से जुड़े पूरे रैकेट की पड़ताल कर रही है। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। भारत मंडप में जुटे हैं सारे मेहमान। ईरान के विदेश मंत्री अराग्ची भी मौजूद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के कारण चीन के विदेश मंत्री नहीं आ पाए हैं, जिनकी जगह चीनी राजदूत ने प्रतिनिधित्व किया है। एमए के अनुसार चर्चाओं का मुख्य केंद्र प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम, सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने आए विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और विदेश मंत्री की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी हुई। सभी ने खिंचवाई है ग्रुप फोटो। इस बार ब्रिक्स समिट में थीम भारत में के मानवता सबसे पहले को और जन केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में दिया था इस पर जोर। ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। बीजिंग के गेट हॉल ऑफ द पीपल में शी जिनपिंग से किया ट्रंप का स्वागत। मुलाकात के दौरान ट्रंप को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका चीन रिश्ता वैश्विक स्थिरता के लिए बेहद अहम है। शी जिनपिंग बोले कि दोनों देशों के प्रतिनिधि नहीं साझेदार हैं, बनना इनको चाहिए। तो ट्रंप ने भी शी जिनपिंग को अपना दोस्त होना सम्मान की बात कही। ट्रंप के प्रतिनिधिमंडल में एलॉन मस्क, एप्पल सीईओ टिम कुक और बोइंग सीईओ समेत कई बड़े अमेरिकी कारोबारी शामिल हैं। बैठक में व्यापार, टैरिफ, सेमीकंडक्टर, एआई, रेयर अर्थ मिनरल्स और ताइवान जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। यूएसएफ कैंप के बाहर आईडी से ब्लास्ट के मामले में बड़ा खुलासा। वैसेम कार्ड से धमाका करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। जालंधर आईईडी ब्लास्ट केस में पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी का कनेक्शन भी सामने आया है। आरोपी ने सिम कार्ड लगाकर कॉल से किया था धमाका। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर एरिया से मिला था आरोपी का विस्फोटक। पुलिस विस्फोटक देने वाले आरोपी की भी कर रही है तलाश। सूत्रों के मुताबिक पंजाब का रहने वाला है आरोपी। पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी नेटवर्क पर पैन इंडिया ऑपरेशन है। केंद्रीय एजेंसियों ने केनपुर पर 24 घंटे में कार्रवाई जारी है। आतंकी नेटवर्क के खिलाफ पैन इंडिया ऑपरेशन तेज किए गए। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में पुलिस की छापेमारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक शहबाज भट्टी ने सोशल मीडिया से सैकड़ों युवाओं का नेटवर्क बनाया है। ब्रेन वॉश कर आतंकी घटनाओं को दिया जा रहा अंजाम। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे ISI के गुर्गे आबिद जट और अजमल गुजर जैसे सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को करते हैं रिक्रूट। युवाओं को पैसे का लालच देकर भट्टी देता है कई टास्क, फिर वो देते हैं वारदात को अंजाम। पंचतत्व में विलीन हुए प्रतीक यादव, ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने दी मुखाग्नि। प्रतीक का अंतिम संस्कार लखनऊ के बैकुंठ धाम शमशान घाट में हुआ है। पत्नी अपर्णा यादव, भाभी डिंपल यादव, अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल समेत तमाम परिवार के लोग और नेता वहां मौजूद रहे। अखिलेश यादव लगातार लोगों से मिलते हुए नजर आए। अखिलेश के साथ शिवपाल यादव और बेटे अर्जुन भी मौजूद रहे। प्रतीक यादव की मौत का मामला NHRC पहुंचा है। ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली NGO ने की है शिकायत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ों की नसों में खून के धब्बे जमे हुए मिले हैं। जमने से हार्ट अटैक की आशंका है, जिससे मौत हुई है। नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या 17 से घटाकर 2 कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। नीतीश कुमार समेत बिहार सरकार के मंत्रियों ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करने का फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और JP नड्डा ने काफिले में कटौती की पहल की है। नितिन गडकरी ने भी अपने काफिले में आकार को 50% तक घटाने का निर्णय लिया है। भूपेंद्र बघेल और राज्य सरकार के मंत्रियों ने भी काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का फैसला किया है। प्रयागराज में बुधवार को शाम आई धूल भरी आंधी ने मचाई है सबसे भीषण तबाही। अब तक 17 लोगों की मौत हुई है। मिर्जापुर में तेज आंधी बारिश के कई इलाकों में अब तक करीब 10 लोगों की मौत हो गई है। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फतेहपुर में तेज आंधी तूफान से अलग अलग जगहों पर 9 लोगों की मौत हुई है। पीड़ित परिवार को SDM ने दिया मदद का भरोसा। हरदोई में आए आंधी तूफान से 2 परिवार की छीनी है खुशियां। अलग अलग हादसों में 2 मासूम बच्चियों की मौत हुई है। कौशाम्बी में तूफान के बाद कई घरों में लगी है आग। 12 परिवार की खस्ती जलकर हुई है राख। लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। यूपी में आंधी तूफान ने मचाई है भारी तबाही। अलग अलग जिलों में करीबन 89 लोगों को मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल हैं। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने बारिश और बिजली गिरने से मौत पर किया है संज्ञान। 24 घंटे में मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। CM योगी ने DM और अधिकारियों से मौके पर जाने और पीड़ितों को हर संभव मदद देने के निर्देश भी दिए हैं। तूफान से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी है। जिलाधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए गए। भदोही में भीषण तूफान से 15 लोगों की मौत हुई है। 8 लोग घायल है। तबाही में 16 मवेशियों की भी मौत हुई है। कानपुर देहात में बिजली गिरने से 1 लड़की की मौत हो गई, जबकि दीवार गिरने से 1 बच्चे की भी जान चली गई है। सोनभद्र में धूल भरी आंधी से जिला पंचायत का भारी भरकम बोर्ड नीचे गिर गया। स्टेट हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी लाइन। गोरखपुर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, लोगों को मिली है गर्मी से राहत। उन्नाव में आंधी में कार पर गिरा नीम का पेड़, ड्राइवर के समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई। अलवर में तूफान में टीन शेड गिरने से युवती की मौत हुई है। जिले भर में बिजली के गुल हो गए। मध्य प्रदेश के देवास में कंपनी में भयानक ब्लास्ट हुआ हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है। ब्लास्ट इतना तेज था कि शवों के टुकड़े 20 से 25 फीट दूर तक जा गिरे। हादसे में कई लोगों बुरी तरीके से झुलस भी गए। यूपी के बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेस में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में 1 नाबालिग बच्ची बुरी तरीके से घायल हुई है। झारखंड के गढ़वा में युवक की जमकर पिटाई की गई, प्रेम प्रसंग का मामला है। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र के बीड में आवारा कुत्तों का आतंक है। 4 वर्षीय मासूम पर जानलेवा हमला कर नागरिकों में भारी रोष है। बरेली में बीते बुधवार को आया तूफान का एक खौफनाक वीडियो सामने आया। फिल्मी स्टाइल में टीन शेड के साथ 50 फीट हवा में उछल गया व्यक्ति। गुजरात के मोरनी में एक सेरेमिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। महेश्वर में प्राइवेट इंजीनियरिंग छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात में शामिल उसके क्लासमेट और 3 अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। गुजरात के राजकोट में चोटिल हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है। टैंकर की टक्कर के बाद लगी है आग, 4 लोग जिंदा जल गए, 10 लोग मर झुलसे हैं। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को घर में बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने जमीन विवाद की बात कही है। सूरत में तापी नदी पर बने कॉजवे में नहाना पड़ा भारी, पैर फिसलने से 17 वर्षीय बच्चे की डूबने से हुई मौत, परिवार में मचा है कोहराम। मुजफ्फरनगर में छपार टोल प्लाजा पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मामूली विवाद को लेकर कार सवार मां बेटे और टोल कर्मी के बीच जमकर मारपीट हुई है। राजस्थान के कुतपुतले में शक के कारण पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। पत्नी की हत्या करने वाले खाटू श्याम की दर्शन करने के लिए पहुंचा था पति, पुलिस ने किया गिरफ्तार। तेलंगाना में राजन्ना सिलसिले में बस का इंतजार कर रहे यात्रियों की स्कॉर्पियो ने रौंदा, महिला की मौत हो गई। हादसे में 2 महिला गंभीर रूप से घायल है। बिहार के बेगूसराय में SLC के देने के बदले छात्रों ने 120 रुपए की वसूली करते हेडमास्टर का वीडियो भी वायरल हुआ। जिला पर शिक्षा अधिकारी ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। छतरपुर के आदिवासी किसानों ने पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव करते हुए भगाया है, तोड़ी गाड़ियां भी तोड़ दी है। नागपुर के छिपरी में तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। ललितपुर में नशे में धुत स्कॉर्पियो कार में कई बाइक और राहगीरों को कुचला है, दो की मौत हुई, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल है। चोटीला और राजकोट में हाईवे पर डंपर के साथ बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल है। मौर्या में पिता की मौत से आहत बेटे ने मां पर किया हमला, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 25 दिनों में 12,60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की है चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा में 25वें दिन भी लगा भक्तों का मेला। बुधवार को 80,400 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में 32,400 से अधिक भक्तों ने किया दर्शन। अब तक 5,23,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। सीएम बनने के बाद मां कामाख्या के दरबार पहुंचे हेमंता बिस्वा सरमा, विधि विधान से की पूजा अर्चना, मां का आशीर्वाद भी लिया। मौसम में सुधार के बाद रामलला के दर्शन के लिए सुबह से लगी लंबी कतार, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। आज खेला जाएगा IPL का 58वां मैच, पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच होगा कड़ा मुकाबला। मुंबई इंडियंस बिना दबाव के खेलेगी ये मैच, पहले ही नॉकआउट की दौड़ में बाहर हो चुकी है टीम। लगातार 4 मैच हार चुकी है पंजाब, अब प्लेऑफ की रेस में लगातार बढ़ता जा रहा है उसका दबाव। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वापसी की उम्मीद को लेकर उतरेगी पंजाब की टीम, दूसरी ओर मुंबई इंडियंस की सामने बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। मौसम बिगाड़ सकता है खेल का मजाज, धर्मशाला में हो रही है झमाझम बारिश, मैच से पहले भी बूंदाबांदी की आशंका। वेलकम टू द जंगल में अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक आउट हुआ। अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर तस्वीर साझा की। रिलीज से पहले दृश्यम 3 में एडवांस बुकिंग में करोड़ों की कमाई की है। 21 मई को यह फिल्म रिलीज होगी। दशहरे में तहलका मचाएंगे इमरान हाशमी, गन मास्टर G9 होगी रिलीज, जलीनिया देशमुख और अपरक्षित खुराना भी नजर आएंगे। लगभग 14 साल बाद शिखर टुनाइट के नाम से टॉक शो में शिखर सुमन कर रहे हैं वापसी, सामने आया है ट्रेलर। धुरंधर फेम राकेश बेदी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म है जवानी तो इश्क होना है के स्टेप्स, फिल्म गाने वॉव पर बनाया है वीडियो वायरल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दो ग्लोबल खबरों के बारे में। अमेरिका ईरान जंग के बीच दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री जुट रहे हैं, बहुपक्षीय वर्ल्ड ऑर्डर पर मंथन कर रहे हैं, जहां सबकी आवाज सुनाई जा रही है, सभी को तवज्जो भी मिल रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे पड़ोसी मुल्क चीन में, ताइवान को लेकर ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने हैं। चीन चाहता है कि ताइवान पर अमेरिका चीन का साथ दे, वरना युद्ध का एक और मोर्चा खुल सकता है। आपको ये दोनों ग्लोबल खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ भारत के अंदर यानी नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है, जहां पर तमाम देशों के ब्रिक्स सम्मेलन के देशों के जो विदेश मंत्री है वो जुट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस समय चीन में है, वो शी जिनपिंग यानी चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं और माना जा रहा है कि टेक्नोलॉजी इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। वहीं मिडिल ईस्ट में संकट के बीच दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन चल रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात भी की है। सम्मेलन की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक की शुरुआत के में जयशंकर ने सभी देशों के प्रतिनिधि मंडलों पर उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे समय पर मुलाकात कर रहे हैं जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काफी उथल पुथल मची हुई है। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता आपके सपोर्ट की तारीफ करती है, जिसने हमारे काम की लगातार तरक्की में मदद की है। तस्वीरें देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी लगातार सभी विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल जो पहुंचा है उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद एक ज्वाइंट फोटो ऑप भी किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति, रूस के विदेश मंत्री, यहां तक कि ईरान के विदेश मंत्री सभी आपको नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीनी दौरे को लेकर। टीम शी जिनपिंग के साथ डेलीगेशन लेवल पर वार्ता चल रही है। मुद्दा ईरान जंग रोकने का भी है तो ताइवान में जंग की नौबत ना आए, इस पर भी बातचीत की जा सकती है। अमेरिकी मीडिया ने ताइवान को तूल दिया है। ट्रंप के दौरे के बीच लिखा है कि अगर अमेरिकी ताइवान मसले पर हल नहीं निकला तो जंग का एक और मोर्चा खुल जाएगा। ये हम आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो उनका हॉल ऑफ पीपल में स्वागत किया गया। इसके अलावा वहां पर खुद चीनी राष्ट्रपति वहां मौजूद रहे। वक्त है छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
4: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
6: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away.
7: You're listening to CNBC.
8: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
9: Keep it on smooth jazz.
10: This is Roots Reggae
11: exclusively on TuneIn.
12: This is classic hip hop
13: exclusively on TuneIn.
6: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music and news you love anytime you want.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
16: सोकुडो
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
8: JK Maxx Paints.
7: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, क्योंकि ये भाई साहब सब पचा देते
2: हैं। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा।
3: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
4: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
8: Like I said before, we better hold the sins.

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you? Hint: bade aaram se. Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank. Bharose ka prateek. Samakul Cooler. Hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Samakul Cooler. Life banaye wonderful. Vimal. Bolo zubaan kesri.
1: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर. ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट.
2: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560006546 पर कॉल करें.

दस दिन बाद कांग्रेस ने चुना केरलम में अपना मुख्यमंत्री, वीडी सतीशन होंगे अगले सीएम, राहुल गांधी ने लगाई नाम पर मुहर। राहुल के विदेश दौरे पर बीजेपी का हमला, कहा 22 साल में 54 निजी यात्रा पर 60 करोड़ खर्च, 10 साल में आमदनी सिर्फ 11 करोड़, पूछा किसने की फंडिंग।

0: तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का आगाज। तीसरे फेज के लिए चुनाव आयोग का कार्यक्रम। अब तक 13 राज्यों में वोट पुनरीक्षण का अभियान पूरा। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का बड़ा सम्मेलन। मिडिल ईस्ट तनाव और ऊर्जा संकट पर हो सकती है बात। विदेश प्रतिनिधियों से पीएम मोदी की भी मुलाकात। बीजिंग में ट्रंप के सामने चीन आक्रामक। कहा, अमेरिका ने उठाया ताइवान का मुद्दा तो हो सकता है टकराव। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हमारे हित सबसे ऊपर, जिनपिंग एक महान नेता।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। वक्त है खबरें असरदार का। बात उस खबर की जिसने 22 लाख बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। ये कोई मामूली पेपर लीक नहीं। इस एक घटना ने देश की सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी और उसकी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब केस सीबीआई के हवाले। नीट पेपर लीक में अब सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। एक एक करके कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है पूरा नेटवर्क एक्सपोज हो रहा है। राजस्थान से महाराष्ट्र तक नए नए मॉड्यूल सामने आ रहे हैं। साथ ही 2024 वाले बिहार मॉड्यूल के भी सक्रिय होने की आशंका है। इन सब के बीच वो बड़ा आदमी कौन है? कौन है वो बड़ा आदमी जिसने एनटीए में सेंधमारी कर दी है, ये भी समझेंगे। नीट पेपर लीक में अब एक ऐसे शख्स की ओर जांच की सुई घूम रही है जिसका अब तक नाम सामने नहीं आया है। बस इतना है कि कोई है जो एनटीए की गोपनीयता भंग कर रहा है। शक और भी तब गहरा गया जब सीबीआई हिरासत में एक आरोपी ने कहा कि बड़े आदमी को बचाया जा रहा है। क्या इस बड़े आदमी का कनेक्शन बिहार मॉड्यूल से भी रहा है? इस मॉड्यूल में अब तक 6 गिरफ्तारियां हुई, जयपुर से 3, जिनमें तीनों बिवाल परिवार के हैं। गुरुग्राम से यश यादव, नासिक से डॉक्टर शुभम खैरनार गिरफ्तार हुआ है। ये खुद मेडिकल छात्र हैं और नासिक में मेडिकल एडमिशन काउंसलर भी था। पुणे और अहिल्या नगर से भी 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। इसमें ब्यूटी पार्लर वाली मनीषा वाघमारे भी शामिल हैं। ये वो किरदार हैं जो एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन पर्दे के पीछे का वो बड़ा प्लेयर कौन है? कौन है वो बड़ा आदमी जो 2024 से लेकर अब तक बचा हुआ है?
2: नीट पेपर लीक में ऊपर वाला कौन है? वो भेदिया कौन है जिसने एनटीए में सेंधमारी की? एनटीए की शुचिता और गोपनीयता के नेटवर्क में किसने घुसपैठ की? क्या ये वही है जो 2024 के पेपर लीक कांड में बच गया था? क्या पर्दे के पीछे का सबसे बड़ा डीलर वही है जो बिहार मॉड्यूल की जांच में बच निकला था? 2026 के नीट यूजी पेपर लीक जांच फिर सीबीआई के हवाले है। फिर वही केंद्रीय एजेंसी, फिर वही केस, लेकिन इस बार सेंटर अलग अलग है। पेपर लीक की जांच में अब तक सीबीआई ने जयपुर, नासिक, अहिल्यानगर, गुरुग्राम से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच का दायरा बढ़ रहा है क्योंकि ये नेटवर्क एक दो शहर नहीं, कई राज्यों तक फैला है। अब तक इस कांड में जो बड़े किरदार सामने आए हैं उसमें जयपुर का बिवाल परिवार सबसे ऊपर है। जयपुर का मंगी लाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, नासिक का शुभम खैरनार, अहिल्यानगर का डॉक्टर ओमकार सिंगोटे और गुरुग्राम का यश यादव, यही वो 6 लोग हैं जिन्हें सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में रखा है। बाकी 45 संदिग्धों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन वे रेडार पर अभी भी हैं। ये वो 6 किरदार हैं जो पेपर लीक फ्लो चार्ट में एक ही पंक्ति में खड़े दिखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन्हें किसने पेपर दिया? वो कौन शख्स था जिसने पहली बार 30 लाख रुपए में पेपर बेचा? जिस परीक्षा के लिए 22 लाख से अधिक बच्चे दिन रात एक कर देते हैं, उस हाई डिमांड एग्जाम पेपर तक यूं ही कोई नहीं पहुंच सकता। राजस्थान एसओजी के सूत्र बताते हैं कि पेपर लीक का ये गिरोह पुराना है और इसकी पैठ बहुत तगड़ी है। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि नीट पेपर की हार्ड कॉपी पुणे से लीक हुई। एजेंसियों को शक है कि एनटीए के अंदर भी कुछ गड़बड़ है और ये सघन जांच की मांग करती है। 2024 के नीट पेपर लीक में भी सीबीआई ने जांच की थी। पटना मॉड्यूल से कई गिरफ्तारियां हुई थी। अब एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि सीबीआई और एसओजी को लगता है कि पटना मॉड्यूल की जांच में जरूर कोई कड़ी छूट गई थी। पेपर लीक गैंग पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अब 2026 के पेपर लीक के बाद एक बार फिर से बिहार मॉड्यूल को खंगालने की तैयारी है। सीबीआई के रेडार पर 2024 पेपर लीक के आरोपी भी हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी कड़ियों को जोड़ रही है और इस बार टारगेट पर बड़ी मछली है जो अंदर बैठकर गोपनीय जानकारियां बाहर लीक कर रहा है। जयपुर से शरद कुमार के साथ दिव्य सिंह, मुंबई आज तक।
0: और अब राजस्थान मॉड्यूल की बात करते हैं। नीट लीक का पूरा बवाल राजस्थान से शुरू हुआ। सीकर, जयपुर, झुंझुनू कई जिलों तक तार फैला, लेकिन इनमें बिवाल परिवार का मुख्य आरोप माना जा रहा है। मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, ये आरोपी हैं जो इस समय सीबीआई की गिरफ्त में है। बिवाल परिवार के 5 बच्चे 2025 में नीट क्रैक किए थे और आज वो देश के अलग अलग सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अब सीबीआई की नजर इन छात्रों पर भी है कि आखिर एक ही परिवार के 5 बच्चे एक ही साल में कैसे सिलेक्ट हुए, ये टैलेंट था या फिर कुछ और। हमारे साथ हमारे संवाददाता शरद कुमार इस समय जुड़ रहे हैं। शरद, लगातार जब से ये पूरा मामला सामने आया है उसे ही जड़ों तक जाकर फॉलो किया है, और शरद, एक के बाद एक जिस तरह की चीजें निकली हैं उसमें सबसे शॉकिंग इस परिवार का रोल है, इस परिवार की भूमिका है।
3: बिल्कुल श्वेता, आप सही कह रही हैं। ये जो देश भर में नीट परीक्षा पेपर आउट करने का एक रैकेट था, उस रैकेट का एक कड़ी है मांगीलाल, और मांगीलाल के साथ उसका भाई दिनेश भी जुड़ गया, जो अपने पूरे परिवार को इसने तय कर रखा था कि एमबीबीएस की पढ़ाई करवा देंगे। इसीलिए इस बार जो बच्चा जैसे ही 12th पास किया था इसके लिए पेपर लेकर आया था, एक नाबालिग एकमात्र बच्चा बचा था उसके लिए भी इसने तैयारी कर रखी थी। और ये केवल अपने घर का नहीं है श्वेता, ये बात हमें समझना पड़ेगा, केवल अपने घर के लोगों के एमबीबीएस नहीं बना रहा है, ये इस रैकेट का हिस्सा है जो कैरियर काउंसलर के को ये पेपर पहुंचाने का कुरियर था, और ये पहले भी ये काम करता रहा है। ऐसा एसओजी को शक हुआ है, जो सीबीआई को उन्होंने बताया है। जो यश है यादव, गुरुग्राम वाला, वो एमबीबीएस नहीं कर पाया था तो वो आयुर्वेद में पढ़ाई कर रहा था, और इसके अलावा इसका बेटा विकास जो है, या फिर जो नासिक में है, वो भी आयुर्वेद में पढ़ाई कर रहा है, वो भी एमबीबीएस नहीं कर पा रहा था। तो ये सब काउंसलर के रूप में जुड़े हुए थे, और मांगीलाल कुरियर का काम कर रहा था, जो यहाँ से सीकर के जरिए देश के अन्य भागों में, जम्मू कश्मीर हो गया, केरल हो गया, अब पता चल रहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी गया है, बिहार भी गया है। इसलिए बहुत अहम कड़ी है ये मांगीलाल, और ये कई सालों से इस काम में जुड़ा हुआ था, मगर ये अपने परिवार तक सीमित रखा था, किसी को पता नहीं चलने देता था। इस बार इसके बेटे नाबालिग बेटे ने जिस तरह से वहां पेपर बेचना शुरू किया, और राकेश ने टेलीग्राम में इसको शेयर करना शुरू किया, तो ये लालच में फंस के इसके बेटे ने और राकेश ने ये सरायता फैला दिया तो पता चल गया, वरना ये इतना फूल प्रूफ इनका इंतजाम था कि आप देखिए 15 दिन पहले पेपर निकल गया, वहां से बट भी गया, परीक्षा भी हो गई, और किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। यहां तक कि जो टेलीग्राम ग्रुप थे उसमें अभ्यास कराया जा रहा था इस गेस पेपर का, कि आप अभ्यास कर लो, नीट परीक्षा पास इसी से करना है। और जिस तरह से ये सीकर में बटा बड़े स्तर पर, तो ये बात छुपी हुई नहीं रह गई, और ये बात एसओजी तक पहुंची और इसका खुलासा हो पाया, वरना जो ये नेटवर्क है बहुत सॉलिड नेटवर्क है, और इतना आसान भी नहीं है सीबीआई को पहुंचना। सीबीआई का मानना है कि एनटीए में कोई ना कोई है जो अंदर की खबर बता रहा है,
0: उसी व्यक्ति की खबर लगे तो ये जो साल दर साल इस तरह की चीजें सामने निकल कर आती है वो आना बंद हो। क्यों हम कह रहे हैं कि ये राजस्थान मॉड्यूल बहुत गंभीर है, देखिए इस रिपोर्ट में।

0: पेपर लीक की पहली खबर राजस्थान से आई। यहीं से एसओजी ने पहली बार खुलासा किया कि नीट में गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी नहीं हुई, बहुत बड़ा झोल हुआ है। पेपर लीक हुआ लेकिन नाम दिया गया गेस्ट पेपर। इस गेस्ट पेपर के पीछे जो मॉड्यूल सामने आया है उसे राजस्थान मॉड्यूल कह रहे हैं। इस मॉड्यूल का कर्ता धरता है बिवाल परिवार। ये जम्वा रामगढ़ के दो भाई हैं, मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल, जिन्हें आप नीट के नटवरलाल भी कह सकते हैं। बिवाल परिवार की इतनी हैसियत थी, सिस्टम पर इतनी पकड़ थी कि वे जब चाहे जिसे चाहे डॉक्टर बनवा सकते थे। सबूत ये शख्स खुद दे रहा है। सोशल मीडिया पर इसने पिछले साल पोस्ट कर जो जानकारी दी थी उस पर गौर कीजिए। मेरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे 5 बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चयन हुआ है। सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जरा जम्वा रामगढ़ के इस परिवार की पूरी फैमिली ट्री समझ लीजिए, जिसकी हर शाख पर एक भविष्य का डॉक्टर है। मांगीलाल का बेटा विकास सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज का छात्र है। मांगीलाल की बेटी प्रगति दौसा मेडिकल कॉलेज की छात्र है। दूसरे भाई घनश्याम बिवाल की बेटी पलक SMS मेडिकल कॉलेज में है। घनश्याम की बेटी सानिया मुंबई मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। तीसरे भाई दिनेश बिवाल की एक बेटी गुंजन बनारस मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट है। दिनेश का बेटा भी इस बार नीट की परीक्षा दे रहा था लेकिन इस वक्त वो फरार है। जरा सोचिए ये परिवार कितना मेधावी है। इनके बच्चों में योग्यता कितनी कूट कूट कर भरी है कि एक साथ 5-5 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हो जाता है। खैर, इनकी मेधा का राज अब खुला है। जब बिवाल परिवार पर 30 लाख में इस साल पेपर खरीदने का आरोप लगा, आज तक संवाददाता शरद कुमार जब जम्वा रामगढ़ में पेपर लीक कांड में गिरफ्तार बिवाल परिवार के घर पहुंचे, तो मुलाकात आरोपी दिनेश की पत्नी रजनी और उनके केयरटेकर से हुई। रजनी ने आज तक के कैमरे पर कबूल किया कि 4 बच्चों ने पिछले साल नीट की परीक्षा पास की थी।
1: पिछले साल भी नीट में पास हुए हैं?
2: हाँ हुए ना।
1: कितने लोग?
2: 4 लोग।
1: 4 लोग?
2: हाँ।
1: 3 लड़कियां और 1 लड़का?
2: हाँ।
1: वो किसके थे?
2: ये मेरी बहन के और मेरे जेठ के।
1: मांगीलाल जी के?
2: हाँ।
1: उनको भी साथ में ले गए हैं दिनेश के?
2: कहाँ?
1: एसओ जी?
2: मुझे पता नहीं है मैडम।
1: वो भी वो उनसे कब मिली थी आप?
2: मुझे पता ही नहीं है कब मिली थी मैं तो।
0: अब जरा सीकर के इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी देखिए। दावा है कि इसी कोचिंग में बिवाल परिवार के 3 बच्चों ने नीट की तैयारी की और परीक्षा पास करके सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिला ले लिया। हालांकि अक्टूबर 2025 से सीकर का ये इंस्टीट्यूट बंद है। दिनेश बिवाल ने अक्टूबर में ही सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि उसके घर के बच्चों ने नीट क्रैक कर लिया है। बिवाल परिवार का राजनीतिक रसूख भी तगड़ा है। जम्वा रामगढ़ के BJP विधायक अपने फेसबुक पोस्ट पर दिनेश बिवाल को ऊर्जावान कार्यकर्ता बताते हैं। जो दिनेश बिवाल पेपर लीक में पकड़ा जाता है वो मकर संक्रांति से लेकर गणतंत्र दिवस तक बधाई देते होर्डिंग लगवाता है, खुद को BJP नेता बताता है। कई BJP नेताओं के साथ उसकी फोटो भी है। ये कोठी पेपर लीक कांड में गिरफ्तार मांगीलाल और दिनेश की है। दोनों भाइयों पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। मांगीलाल और दिनेश से पूछताछ में पेपर लीक सिंडिकेट के एक एक राज उगलवाने में जांच एजेंसियां जुटी है। जांच एजेंसियां दिनेश के जरिए पेपर लीक के काले खेल से जुड़े बड़े बड़े चेहरों को बेनकाब करना चाहती है।
3: नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान का मुख्य आरोपी दिनेश बिलाव और मांगीलाल बिलाव का घर है ये जम्वा रामगढ़ में, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ी के नीचे है और ये फार्म हाउस टाइप का बना रखा है। दिनेश एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था और इसका बेटा ऋषि इस बार सीकर में परीक्षा की तैयारी कर रहा था नीट का। ये यस से गुड़गांव से 30 लाख में पेपर खरीद कर लाया था और अपने बेटे को भेजा था सीकर देकर आया था ऋषि को और ऋषि ने आगे फैलाया सीकर में।
0: क्या पेपर लीक के खेल में बिवाल परिवार पहले भी शामिल रहा है? 2025 में कैसे मांगीलाल परिवार के 5 बच्चों ने नीट क्रैक किया, अब ये भी रडार पर है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
4: इस बीच बड़ी खबर दौसा से आ रही है, राजस्थान मॉड्यूल से जुड़ी हुई। मुख्य आरोपी मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति बिवाल पढ़ती है दौसा मेडिकल कॉलेज में। पंडित नवल किशोर शर्मा मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष के साथ छात्रा है प्रगति। नीट घटनाक्रम के बाद प्रगति बिवाल कॉलेज में नहीं है, क्योंकि इस बात के पूरे आसार हैं कि CBI की टीम दौसा के इस मेडिकल कॉलेज जा सकती है और उससे पहले ही उसकी बेटी ने कॉलेज जाना छोड़ दिया है। शरद, जिस तरीके से इन सारे क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी शॉकिंग चीज है कि पूरे के पूरे परिवार के सभी बच्चे अलग अलग जगह पर दाखिला पा चुके हैं, जहां पर पूरे देश में स्ट्रगल करना पड़ता है, इतनी तैयारी करनी पड़ती है। हो सकता है ये संभव भी हो सकता है उनका टैलेंट भी हो, लेकिन जब तक पूछताछ नहीं होगी, जब तक ये सारी चीजें बाहर नहीं आएंगी, जांच नहीं होगी, तब तक हो नहीं सकता, और ऐसे में इनका नदारद हो जाना।
3: बिल्कुल श्वेता, एक तो जो विकास है, जो सवाई माधोपुर में प्रथम साल के एमबीबीएस के छात्र थे, उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उन पर साबित हो गया है कि उस रैकेट के हिस्सा थे, अपने पिता के साथ वो गिरफ्तार हो गए हैं। बाकियों से अभी पूछताछ चल रही है कि कैसे क्या हुआ था, लेकिन देखिए कुल मिलाकर अगर आप देखें उस कोचिंग संस्थान को, तो वहां पर सत्यनारायण चौधरी नाम का व्यक्ति क्लेम किया था कि मैं इस परिवार के बच्चियों को पढ़ाकर एमबीबीएस में एडमिशन कराया हूं। वो सत्यनारायण चौधरी अक्टूबर में उस कोचिंग को छोड़कर चला जाता है, उसकी भी तलाश जारी है, क्या वो भी इनका नेटवर्क का हिस्सा है, क्योंकि वो भी प्रॉपर्टी के काम से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस राजस्थान मॉड्यूल की हम बात कर रहे हैं श्वेता, उसमें देखिए सीकर में केवल ये जो मांगीलाल दिनेश का परिवार है, जयपुर के जमुआ रामगढ़ में रह रहा था, मगर सीकर में एक सोसाइटी में फ्लैट लेकर भी रह रहे थे ये, तो सीकर से इनका रिश्ता था। बच्चियां भले ही चली गई थी, एक बेटे के नाम पर फ्लैट ले रखा था, परिवार वहां आता जाता रहता था, तो सीकर मॉडल के नाम से भी इसको जानते हैं। सीकर में पहले भी इस तरह से जो पेपर आउट होते रहे हैं, वो गैस पेपर के रूप में आउट होते रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार मांगीलाल और दिनेश का दिमाग हो कि इस नेटवर्क को बताया जाए कि गैस पेपर के रूप में अगर हम आउट करते हैं इस पेपर को तो पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए सीबीआई ने जो पहली 5 गिरफ्तारी की है, उसमें से एक ही परिवार के इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। श्वेता,
4: बहुत शुक्रिया। शरद कुमार हमारे संवाददाता इस खबर की पूरी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं और ये जानकारियां आपसे साझा कर रहे थे। खबरें असरदार में आज के लिए इतना ही। आपसे अब मेरी मुलाकात रात 8 बजे खबरदार में होगी, जहां आज आपको हम थोक में आप तक आते महंगाई के संकट काल से खबरदार करेंगे। बताएंगे कि नीट पेपर लीक का वो बड़ा आदमी कौन है जिसकी तलाश अब सीबीआई को है, और दुल्हन पर मिलावट का जानलेवा खतरनाक अत्याचार, जिसे सुनकर आपको आज ये चेक करना पड़ेगा कि आप कौन सी हल्दी खा रहे हैं। तो मिलते हैं रात 8 बजे। आप देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
3: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए, वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
7: जहां खबर वहां खबरदार।
9: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
10: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
12: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
13: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
7: मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
15: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
7: जहां खबर वहां खबरदार।

तूफानी तबाही की ये पहली और सबसे हाहाकारी तस्वीर है। यूपी के अलग अलग हिस्सों में जो तूफान आया उसकी हैरान करने वाली ये तस्वीर बरेली से आई। हवाओं की रफ्तार कितनी खतरनाक थी उसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। देखिए कैसे एक शख्स हवा में करीब 50 फीट तक उड़ जाता है। ऐसा लग रहा है मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। बरेली में तूफान आया तो उससे बचने के लिए एक शख्स ने टीन शेड का सहारा लिया, लेकिन तूफान का प्रकोप ऐसा कि ये टीन शेड खुद भी तिनके की तरह उड़ने लगा। जानकारी के मुताबिक ये टीन शेड बारात घर के ऊपर बना था। उसी टीन शेड की आड़ में जान बचा रहा शख्स भी उसके साथ साथ हवा में करीब 50 फीट से ज्यादा ऊपर तक उड़ गया। तूफान की चपेट में आकर हवा में उड़ने वाला शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यूपी के उन्नाव में भी खौफनाक मंजर दिखे। वहां मौसम की अचानक करवट लेते ही तेज आंधी के चलते सड़क पर खड़ी कार के ऊपर एक विशाल नीम का पेड़ टूट कर गिर पड़ा। इस हादसे में कार के ठीक ऊपर पेड़ गिरा, लेकिन गनीमत कहिए कि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए फौरन कार से भागकर अपनी जान बचा ली। अब पेड़ गिरने का ये लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के भदोही में भी हालात बेहद गंभीर दिखे। वहां भीषण आंधी तूफान से अलग अलग घटनाओं में 15 लोगों की जान चली गई, कई लोग जख्मी हो गए, कहीं पर पेड़ पौधे टूट कर बिखर गए। एक ऐसा ही मंजर वहां रेलवे स्टेशन पर दिखा। ट्रैक पर भी जमींदोज पेड़ का हिस्सा पड़ा रहा। बुधवार की शाम आए तूफान से भदोही में ये तबाही मची। इससे बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की भी मौत हो गई। कई जगहों पर बिजली के खंभे टूट गए जिससे बिजली सप्लाई ठप हो गई। भीषण तूफान की चपेट में आकर प्रयागराज में 20 से ज्यादा लोग जान गंवा बैठे। इस गाड़ी की हालत देखिए। जिस वक्त आंधी तबाही मचा रही थी उसी वक्त ये गाड़ी सड़क से गुजर रही थी, तभी ये पेड़ जमींदोज हो गया। पेड़ की चपेट में आकर लग्जरी गाड़ी तबाह हो गई। बदायूं में बुधवार को आई तेज आंधी कुछ लोगों पर कहर बनकर टूटी। तूफानी हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ और दीवारें टूट कर गिर पड़ी। अलग अलग घटनाओं में वहां 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए। तूफान के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक बाधित हो गया और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मिर्जापुर में भी आंधी तूफान के कहर से 17 लोगों की जान चली गई। वहां सदर तहसील में 7 लोगों की मौत हुई।

शीट पेपर लीक में ऊपर वाला कौन है? वो भेदिया कौन है जिसने एनटीए में सेंधमारी की? एनटीए की शुचिता और गोपनीयता के नेटवर्क में किसने घुसपैठ की? क्या ये वही है जो 2024 के पेपर लीक कांड में बच गया था? क्या पर्दे के पीछे का सबसे बड़ा डीलर वही है जो बिहार मॉड्यूल की जांच में बच निकला था? 2026 के नीट यूजी पेपर लीक जांच फिर सीबीआई के हवाले है, फिर वही केंद्रीय एजेंसी, फिर वही केस, लेकिन इस बार सेंटर अलग अलग है। पेपर लीक की जांच में अब तक सीबीआई ने जयपुर, नासिक, अहिल्यानगर, गुरुग्राम से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच का दायरा बढ़ रहा है क्योंकि ये नेटवर्क एक दो शहर नहीं कई राज्यों तक फैला है। अब तक इस कांड में जो बड़े किरदार सामने आए हैं उसमें जयपुर का बिवाल परिवार सबसे ऊपर है। जयपुर का मंगी लाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, नासिक का शुभम खैरनार, अहिल्यानगर का डॉक्टर ओमकार सिंगोटे और गुरुग्राम का यश यादव, यही वो छह लोग हैं जिन्हें सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में रखा है। बाकी 45 संदिग्धों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन वे रेडार पर अभी भी हैं। ये वो छह किरदार हैं जो पेपर लीक फ्लो चार्ट में एक ही पंक्ति में खड़े दिखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें किसने पेपर दिया? वो कौन शख्स था जिसने पहली बार 30 लाख रुपए में पेपर बेचा? जिस परीक्षा के लिए 22 लाख से अधिक बच्चे दिन रात एक कर देते हैं, उस हाई डिमांड एग्जाम पेपर तक यूं ही कोई नहीं पहुंच सकता। राजस्थान एसओजी के सूत्र बताते हैं कि पेपर लीक का ये गिरोह पुराना है और इसकी पैठ बहुत तगड़ी है। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि नीट पेपर की हार्ड कॉपी पुणे से लीक हुई। एजेंसियों को शक है कि एनटीए के अंदर भी कुछ गड़बड़ है और ये सघन जांच की मांग करती है। 2024 के नीट पेपर लीक में भी सीबीआई ने जांच की थी। पटना मॉड्यूल से कई गिरफ्तारियां हुई थी। अब एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि सीबीआई और एसओजी को लगता है कि पटना मॉड्यूल की जांच में जरूर कोई कड़ी छूट गई थी। पेपर लीक गैंग पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अब 2026 के पेपर लीक के बाद एक बार फिर से बिहार मॉड्यूल को खंगालने की तैयारी है। सीबीआई के रेडार पर 2024 पेपर लीक के आरोपी भी हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी कड़ियों को जोड़ रही है और इस बार टारगेट पर बड़ी मछली है जो अंदर बैठकर गोपनीय जानकारियां बाहर लीक कर रहा है। जयपुर से शरद कुमार के साथ दिव्य सिंह, मुंबई आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

सीएम राहुल गांधी ने लगाई नाम पर मुहर, सोमवार को ले सकते हैं शपथ। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर बीजेपी का हमला, कहा 22 साल में 54 निजी यात्रा पर 60 करोड़ रुपए का खर्च, 10 साल में आमदनी केवल 11 करोड़, पूछा किसने की फंडिंग। कलकत्ता हाईकोर्ट में बतौर वकील ममता बैनर्जी की पेशी पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उठाए सवाल, रजिस्ट्रेशन पर मांगी जानकारी, 2 दिन में बंगाल के बार काउंसिल को देना होगा जवाब। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, मिडल ईस्ट तनाव और ऊर्जा संकट पर हो रही है बात, विदेशी प्रतिनिधियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात।

0: ने उठाया ताइवान का मुद्दा तो हो सकता है टकराव। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा सही रास्ते पर ले जाना होगा अमेरिका और चीन का रिश्ता।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकु।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि, मैं हूं गौरव सावंत। इस समय बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है जहां पर रेखा गुप्ता सरकार ने निर्णय लिया है 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। सरकारी कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन अपने घर से ही कामकाज करेंगे और सरकारी वाहन का कम इस्तेमाल किया जाएगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि खाड़ी के देशों में जो ऊर्जा का संकट वहां की स्थिति से उभर रहा है उससे भारत कैसे आसानी से निपट सकता है या जो कठिन दौर इस समय आया है कैसे उसमें सरकारी वाहन का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। ये भी निर्णय हुआ है कि 1 साल तक दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री विदेश दौरा नहीं करेगा। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल खाड़ी के देशों में अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध है, एक तरफ अमेरिका और ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, संकट लगातार गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से एकजुट होकर स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाने की बात की है। उसी दृष्टि में ये कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज का दिन 2 बड़े मंचों के सजने का दिन है, उम्मीदों का दिन है, आकांक्षाओं को या यूं कहें परिस्थितियों को, जो भी इस समय लोगों के मन में आशंकाएं हैं उन आशंकाओं को दूर करने का भी दिन है।
3: बीजिंग में बड़ी मुलाकात, ट्रंप जिनपिंग की बातों से बनेगी बात, रुकेगा घमासान या बढ़ेगा कोहराम, हॉर्मुज में हाहाकार, थमने का इंतजार। दिल्ली में विदेश नीति पर महामंथन, ब्रिक्स में आया ईरान, भारत में सवाल, मिसाइलों पर अब मुलाकात भारी, बमों के बाद अब शांति की बारी।

0: महामंथन, महामुलाकात, लेकिन क्या शांति का रास्ता निकलेगा? मुद्दे तो कई हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस समय टिकी हैं राजधानी दिल्ली पर भी और चीन की राजधानी बीजिंग पर भी। दोनों ही जगह से सबसे बड़ा प्रश्न कि मध्य पूर्व में बातचीत के जरिए क्या शांति की राह निकल कर आएगी या फिर ये मामला और ज्यादा उलझता जाएगा। देखिए, एक तरफ बीजिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हो रही है, तो दूसरी तरफ भारत की राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। महत्वपूर्ण बात यह कि इस मंच पर, यानी भारत ने जो ब्रिक्स का मंच है, इसमें दो ऐसे मुल्क मौजूद हैं जो खाड़ी में एक दूसरे पर परस्पर प्रतिद्वंदी भी हैं और एक दूसरे पर धुआंधार हमले कर चुके हैं। विदेश मंत्रियों के अगर इस सम्मेलन की बात करें तो इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मेजबानी कर रहे हैं और ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। इनमें ब्रिक्स के जो बुनियादी सदस्य हैं उनके अलावा जो नए सदस्य हैं और विस्तृत सदस्य देश, मेहमान देश, अतिरिक्त देश, उन सबको भी शामिल किया गया है। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो बुनियादी देश है। रूस की ओर से रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव भारत आए हैं, उनसे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अलग से मुलाकात भी हुई। अच्छा, एक तस्वीर तो ये है, दूसरी तस्वीर जो है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति चीन में है तो इसकी वजह से चीन के विदेश मंत्री वांग यी यहां पर खुद नहीं आए हैं। चीन का जो प्रतिनिधि है वो चीन के जो भारत में राजदूत है शू फेहोंग, वो अध्यक्षता वो इसमें भाग ले रहे हैं चीन की तरफ से। उनके अलावा क्यूबा, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ईरान और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची यहां पहुंच चुके हैं। उसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, इथियोपिया, ऐसे देशों, इन सभी देशों के विदेश मंत्री यहां आ चुके हैं इस मंच पर। उम्मीद यह है कि एक साझा रणनीति के तहत एक संभवतः बयान भी जारी होगा कि आगे कैसे बढ़ा जाएगा। भारत के लिए यह एक बड़ी अग्नि परीक्षा, एक तरह से परीक्षा भी है कि ईरान और यूएई दोनों एक दूसरे पर बारूदी गोले भी बरसा रहे हैं और यहां दोनों एक मंच पर भी हैं। एक और बड़ी खबर इस समय, शी जिनपिंग को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दोस्त बताया। दोनों ही देश इस समय यह बात कर रहे हैं कि 100 वर्षों में एक बार जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है, इस समय उस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और ऐसी परिस्थिति में अमेरिका और चीन क्या मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग को अपना मित्र बताया, रिश्तों को सही रास्ते पर ले जाना होगा ये कहा उन्होंने। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि स्टेट बैंक्वेट में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हो रही है उसकी तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा भी रहे हैं। शी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक जो बातचीत अभी तक हुई है वो बेहद सकारात्मक बातचीत रही है। चीन ने भी दो टूक कह दिया कि ताइवान के मुद्दे पर अगर अमेरिका ने मुद्दा उठाया तो फिर तल्खी आ सकती है। किन मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ेगी, प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी हमारे साथ या ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के लिए आए विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है। यह सम्मेलन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल ब्रिक्स देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनके प्रतिनिधि, जैसे ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सरगई लावरोव रशिया के जो विदेश मंत्री है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। अन्य ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री, वो सभी, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, सैयद अब्बास अराकची की, ईरान के विदेश मंत्री हैं ये। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, ब्रिक्स से क्या विदेश मंत्री अलग अलग देशों के एक मंच पर आकर जिस रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, जिस इनोवेशन की बात कर रहे हैं और आगे का रास्ता ऊर्जा के क्षेत्र में, क्या कोई उम्मीद कि यूएई और ईरान दोनों ही इस मंच पर है, तल्खी ज्यादा या बातचीत से समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ने की बात ज्यादा?
1: सबसे पहले बात करते हैं गौरव ईरान की। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची इस समय भारत के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान यूएई का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे तंज करते हुए कहा कि इसराइल के साथ किसी तरीके का समझौता आपके सुरक्षा की गारंटी नहीं हो सकता है। सख्त संदेश देने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई, लेकिन साथ ही ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि डॉक्टर अराकची ने यूएई का नाम केवल इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम ब्रिक्स की भावना का सम्मान करना चाहते हैं, ब्रिक्स की एकता को बरकरार रखना चाहते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि किसी कारण से ब्रिक्स के अंदर जो सहमति बनाने की कोशिश हो रही है वो डीरेल हो जाए। भारत की कोशिश यही है कि राजनीतिक मतभेदों से परे हटते हुए इस समय जो दुनिया की अर्थव्यवस्था की मांग है कि ये ब्रिक्स के सारे देश जो कि दुनिया की 55% आबादी, 41% जो अर्थव्यवस्था है और दुनिया की 31 ट्रिलियन की इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो साथ आए, एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाए। ऊर्जा का ये एक बड़ा महत्वपूर्ण संयोग कहा जा सकता है ब्रिक्स का यह जमावड़ा, क्योंकि इसके अंदर एक तरफ संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त सऊदी अरब, ईरान जैसे ऊर्जा निर्यातक देश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस भी इसमें शामिल है ऊर्जा निर्यातकों में, और दूसरी तरफ भारत, चीन, इंडोनेशिया जैसे ऊर्जा के आयातक देश भी शामिल हैं। तो ब्रिक्स एक मॉडल बन सकता है कि किस तरीके से ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर सहयोग किया जा सकता है, सस्टेनेबिलिटी पर सहयोग किया जा सकता है। इस मुद्दे को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा आज भी हुई और यह सिलसिला कल भी जारी रहना है। प्रधानमंत्री मुझसे मुलाकात का जिक्र आपने किया ही सही, साथ ही जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है, ये सारे वो देश चाहे ब्राजील, रूस, चीन, भारत, साउथ अफ्रीका की आप बात करें या एक्सटेंडेड ब्रिक्स की बात करें, ये सारे वो देश हैं जो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, जो कि वैश्विक व्यवस्था में सुधार की बात करते हैं, जो पश्चिमी नजरिए से चल रही व्यवस्था के विपरीत जाकर व्यवस्था के अंदर उन नए सुधारों की बात करते हैं जो ज्यादा व्यापक हों, ज्यादा सार्वभौमिक हों।
0: बड़ी बात आपने की, लेकिन क्या ब्रिक्स के देश एक मंच पर आकर एक समाधान या एक आगे का रास्ता निकाल पाएंगे? क्योंकि जब भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी तो वो देश जो परस्पर एक मंच पर नहीं भी थे या एक मत भी नहीं थे, भारत उन सबको एक मंच पर लाने में और एक साझा बयान उसमें सफल रहा था। लेकिन इस समय हम रुख करते हैं बीजिंग का, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है। उनके बीच उनके साथ बातचीत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हो रही है, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो रही है। बात यह भी हो रही है कि कई बड़ी डील्स हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिका से 30 सदस्यों का एक बहुत बड़ा सीईओस का ग्रुप वहां पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रतीक्षा इस बात की है कि ईरान में जो युद्ध है या फिर हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या कोई समाधान निकल कर आएगा। ईरान ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि उनकी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, अमेरिका अपनी नाकेबंदी खोल दे। अमेरिका यह चाहता है कि चीन मदद करे नाकेबंदी को खुलवाने में, हालांकि वो कह रहे हैं औपचारिक तौर पर उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या बात निकलेगी, देखिए ये रिपोर्ट।
2: बीजिंग में निकलेगा महायुद्ध का समाधान, महामुलाकात में महाशक्ति हो पाएगी आसान, परमाणु पर अड़ेगा या घुटने टेकेगा ईरान, ईरान अड़ा तो मचने वाला है घमासान। बीजिंग की तस्वीरें सिर्फ दुनिया की दो महाशक्तियों के मिलन की तस्वीर नहीं है, बल्कि एक उम्मीद है महातबाही को टालने, मिडिल ईस्ट में शांति लाने और उस विनाश लीला को खत्म करने की जिसने दुनिया भर में संकट ला खड़ा किया है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ही चीन और अमेरिका के रिश्ते तल्ख होने शुरू हो गए थे, जिसका सीधा असर ट्रंप के चीन दौरे पर दिखने लगा। ये दौरा पहले एक बार टला, दूसरी बार टला और फिर आखिरकार ट्रंप बीजिंग पहुंच गए। ढेरों उम्मीदों के साथ पहुंचे ट्रंप का शानदार स्वागत भी हुआ। पहले बीजिंग एयरपोर्ट पर ट्रंप को ब्रास बैंड की धुनों के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और ट्रंप के हाथ मिलाने और मुस्कुराहट फैलाती इन तस्वीरों ने तारीफों के लिए जैसे एक पुल ही बना दिया।
3: हमें एक दूसरे की मदद करके सफल समृद्ध होना चाहिए और दुनिया को भी नए दौर में ले जाना चाहिए।
4: Whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together.
2: हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप और जिनपिंग सिर्फ और सिर्फ महायुद्ध को खत्म करने के बारे में बात करेंगे। दोनों के अपने ढेरों मुद्दे हैं, टकराव है, उलझने हैं और सुलझाने के लिए वक्त भी कम है। लेकिन फिर भी ईरान युद्ध को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। वजह साफ है, ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले चीन को हॉर्मुज का हाहाकार परेशान कर रहा है, तो ट्रंप करोड़ों डॉलर खर्च करने के बावजूद बीच युद्ध में अटके हुए हैं। कहने के लिए चीन रवाना होने से पहले ट्रंप ने साफ कहा था कि ईरान के मामले में उन्हें चीन की मदद की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उनके विदेश मंत्री अब कह रहे हैं कि चीन में इस मुद्दे को लेकर बात आगे बढ़ेगी।
5: We've made the argument to the Chinese and I hope it's compelling and they'll have a chance to do something about it at the United Nations later this week when there's a resolution just condemning Iran on what they're doing with the straits. Look.
2: एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप की जिनपिंग से मुलाकात, तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति वेंस का यह भरोसा दिलाना कि ईरान के साथ न्यूक्लियर नेगोशिएशन आगे बढ़ी है, ये साबित करता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी भी इस वक्त तेजी से काम कर रही है।
6: On Iran, can you tell us where negotiations stand? The president, before he left for Beijing, called the latest proposal unacceptable. So is the U.S. even talking to the Iranians right now, or where are things at this point?
7: Yeah, so look, obviously these negotiations are very sensitive. I'm not going to tell you everything because we're trying to have a productive conversation. I spent a good amount of time on the phone with both Jared Kushner and Steve Witkoff this morning, a number of our friends in the Arab world this morning. Look, I think that we are making progress. The fundamental question is, do we make enough progress that we satisfy the president's red line? And the red line is very simple. He needs to feel confident that we've put a number of protections in place such that Iran will never have a nuclear weapon.
2: ट्रंप के साथ दुनिया के टेक लीडर्स की एक पूरी फौज भी गई है। तकनीक को सहज और सुरक्षित बनाने का मंथन चल रहा है, लेकिन ये सब तभी कामयाब होगा जब मिसाइलों के मोर्चे पर सहमति बनेगी, वरना तकनीक कब विनाश का हाथ थाम लेती है पता ही नहीं चलता। आज तक ब्यूरो।
0: और बीजिंग से समय बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर एक मत हैं। दोनों ही चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल खोल दिया जाए, जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो ओपन और फ्री रहनी भी चाहिए, और ये चीन के हित में भी है क्योंकि चीन का लगभग 90% तेल यहीं से ईरान से ही आता है और चीन जाता है। 90% जो ईरान का निर्यात है वो चीन के लिए ही होता है, लेकिन इस पर क्या कारगर कदम उठाए जाएंगे चीन की तरफ से, ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि ईरान ये साफ कर चुका है कि ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है। समस्या अगर है तो वो अमेरिका की नाकेबंदी है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर दोनों ही देश खुलकर अपना मत रखना चाहते हैं। तो हम आपको यहां वो 6 बड़े मुद्दे दिखाना चाहते हैं जिस पर अमेरिका और चीन की बातचीत हो रही है, लेकिन सभी पर एकमत नहीं है। ट्रेड और टैरिफ ये एक बड़ा मुद्दा है। चीन हर चीज को ताइवान, जो 5 नंबर का मुद्दा है, उसे जोड़कर देख रहा है। अमेरिका चाहता तो यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या हाई एंड टेक्नोलॉजी हो, उस पर आम सहमति बने। सेमीकंडक्टर और खासतौर पर जब आप रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो उसकी सप्लाई बिल्कुल बेरोक टोक होनी चाहिए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। रेयर अर्थ मिनरल्स की बातचीत, मटेरियल्स की बातचीत, इसको भी अमेरिका उसी दृष्टि से देख रहा है। और यहां पर वो जो ईरान युद्ध या हॉर्मुज की खाड़ी है वो एक मुद्दा बन जाता है कि कई विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अगर चीन की तरफ से रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई में कोई समस्या है तो फिर चीन के ईंधन में भी समस्या हो सकती है। फिर ताइवान का मुद्दा, यह चीन ने साफ कर दिया है कि ताइवान के मुद्दे पर अगर दखल हुई तो फिर मामला अटक जाएगा। अब इस पर देखना यह है कि यह बातचीत आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि ताइवान में अब थोड़ा सा तनाव है। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति का रुख बदल जाएगा, जिस स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी की बात करते हैं। शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी, दुनिया की निगाहें इस बैठक पर, बीजिंग की बैठक पर इसलिए भी है कि हॉर्मुज का रास्ता कोई निकलेगा, क्या वो रास्ता खुलेगा, ईंधन मिलेगा, क्या आप बता सकती हैं कि दुनिया की अगर दृष्टि से देखा जाए तो क्या उम्मीद?
8: देखिए गौरव, जिस एम्बिग्युटी की आप बात कर रहे हैं, पिछले 75 दिनों से ये एम्बिग्युटी या ये संशय बरकरार है। कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब फिलहाल हमें कोई स्ट्राइक्स नहीं दिखाई दे रही हैं, इस वक्त भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बहुत सारे वेसल्स हैं जो निकलने के लिए मुश्किल हो रही है, जिनको, जिन पर हमले हो रहे हैं। और आज जो ये बैठक हो रही है शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक आम सहमति यहां पर, जिसका एक संकेत आया है गौरव, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को फ्री पैसेज के लिए खोला जाना चाहिए, ऐसा दोनों ने सहमति जताई है, क्योंकि दोनों की ही जरूरत है। अगर चीन की बात करें, जैसा आप भी बता रहे थे कि ईरान से उसके इंपोर्ट्स होते हैं, सिर्फ ईरान ही नहीं, तमाम देश ऐसे हैं जो चीन ही नहीं, तमाम देश ऐसे हैं जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के फ्री पैसेज ना होने की वजह से उन पर प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, ताइवान का इशू है जिसको लेकर बहुत ही सफाई से चीन कह चुका है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से सहमत होते हैं इन बातों को लेकर, ये देखना होगा। लेकिन
0: अगर होते हैं या नहीं, या इसमें बस बातचीत होगी, समस्या का समाधान, उसके लिए बातचीत का और दौर चलेगा, इस पर रहेगी नजर। शिवानी फिलहाल धन्यवाद, एक बहुत छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बात ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की, चर्चा की क्या वहां से हॉर्मुज का कोई रास्ता निकल सकता है, ये खबर ब्रेक के बाद, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सुख।
10: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
11: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
12: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
10: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
13: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
11: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
10: जहां खबर वहां खबरदार।
14: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
15: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
17: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
18: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare.
18: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
19: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio.
16: Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes. And dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen. Right.
20: The action never stops, and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first, welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.

0: दुनिया की दो बड़ी ताकत, एक भरता सैन्य दम तो दूसरे में आर्थिक दमखम। बयानों में तीखापन, रिश्तों में तलखी, लेकिन साथ आने की मजबूरी। ट्रंप जिनपिंग कम कर रहे आपस की दूरी। गए वो दिन जब कोई बड़ा देश सालों से किसी दूसरे ताकतवर देश से सीधे मुंह बात न करे। अर्थनीति, सैन्य नीति, कूटनीति और राजनीति जैसे मोर्चे अब हर देश के साथ रिश्तों की मजबूरियों को मजबूर कर रहे हैं। इन्हीं कुछ मजबूरियों के साथ ट्रंप पहुंचे हैं चीन। ट्रंप का ये दूसरा चीन दौरा है।
1: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
0: जानते जिनपिंग भी हैं कि दो बड़ी ताकतों के बीच टकराव का नुकसान दोनों को होता है और इन हालातों का फायदा छोटी ताकतें उठाना शुरू कर देती हैं।
2: हमारे स्थिर रिश्ते दुनिया के लिए भी ठीक हैं। हम दोनों की कामयाबी में दोनों मुल्कों के मौके हैं। हम दोनों को सहयोग से फायदा, टकराव से नुकसान है, इसलिए हमें साझेदार बनना चाहिए, दुश्मन नहीं। आइए 2026 में पुराने दौर को पीछे छोड़ नया दौर शुरू करें।
0: ट्रंप की जिनपिंग से पहले कार्यकाल में मुलाकात 2017 में फ्लोरिडा में हुई। फिर 2017 में ही ट्रंप चीन गए और जिनपिंग की तारीफों के पुल बांधते चले गए, लेकिन जल्द ही रिश्ते तल्ख होने लगे। 2018 से 2020 तक ट्रंप चीन पर ऐसे बढ़ के कि अरबों डॉलर के टैरिफ लगा डाले। चीन भी चुप नहीं रहा और उसने जवाबी टैरिफ लगा दिए। कोविड के दौरान तो रिश्ते बेहद खराब हो गए, जब ट्रंप ने कोरोना वायरस को चीनी बताते हुए ढेरों आरोप लगा दिए। अब दूसरे कार्यकाल में ट्रंप का ये पहला चीनी दौरा है, लेकिन इससे पहले बुसान में मुलाकात के बाद से ट्रेड डील की शुरुआत हो चुकी है। ट्रंप ने चीन पहुंचते ही जिनपिंग की जमकर तारीफ की, क्योंकि वो खुद दोहरे मोर्चे पर घिरे हैं। एक तरफ उन्हें खुद के घर में युद्ध का हिसाब किताब देना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ तेल के खेल में आर्थिक चुनौती लगातार दबाव बढ़ा रही है। जाहिर है दोस्ती और दुश्मनी की बदलती परिभाषाओं के बीच बीजिंग में वो राहत तलाशने ही गए हैं। आज तक यूरोप

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

ले सकते हैं शपथ। कलकत्ता हाईकोर्ट में बतौर वकील ममता बैनर्जी की पेशी पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उठाए सवाल, रजिस्ट्रेशन पर मांगी जानकारी, दो दिन में बंगाल के बार काउंसिल को देना होगा जवाब।

0: बाद विदेशी प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मुलाकात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिसिटी।

आप देख रहे हैं रणभूमि आपके साथ, मैं हूं गौरव सावंत। आज का दिन और अगले 24 घंटे दुनिया भर के मौजूदा हालात में निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि दो बड़े वैश्विक मंचों पर दुनिया भर के बड़े नेता ऐसे मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें जुटे हुए हैं, जिनकी उलझने जो है उससे अर्थनीति, सैन्य नीति, कूटनीति और राजनीति, इन सभी मोर्चों पर इस समय दुनिया की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और असर आप पर, हम पर, आम लोगों पर पड़ रहा है। अब बारी है इन समस्याओं को सुलझाने की और कई ऐसे मुद्दे हैं। पूरी दुनिया की नजरें समय इन्हीं दो मंचों पर टिकी हैं कि क्या इनसे समाधान निकलेगा जो मध्य पूर्व में शांति की राह उसका रास्ता दिखाएगा, या फिर ये जो उलझन है ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात जिस पर सबसे पहले चर्चा करेंगे, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। प्रेस टीवी के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से हॉर्मूज में कोई रुकावट नहीं है, जितने भी जहाज हैं उनके लिए जो समुद्री मार्ग है वो पूरी तरह से खुला है। ईरान का दावा यह है कि अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से इस समय मुश्किलें पैदा हो रही हैं, इसीलिए जो भी जहाज गुजरना चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, खासतौर पर वो जो 33 किलोमीटर चौड़ा सकरा वो इलाका है, वहां पर ईरान की नौसेना के साथ सहयोग करे और ईरान की नौसेना को बताकर वो उस रास्ते से सुरक्षित निकल सकता है। ईरान की नौसेना वो रास्ता सुझा देगी जहां पर बारूदी सुरंगें, समुद्र में बारूदी सुरंगें जो सी माइंस कहलाती हैं वो नहीं है, जो सेफ लेन है, वहां से हर जहाज सुरक्षित निकल सकता है। ऑफकोर्स समस्या ये है कि अमेरिका ने जो नाकेबंदी की है उससे जहाज नहीं निकल पा रहे हैं। वैसे दुनिया में इस समय जो सबकी निगाहें हैं, एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ बीजिंग से बड़ी आशा है। डोनाल्ड ट्रंप का शानदार स्वागत हुआ, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चीन और अमेरिका दोनों के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने दोनों के एक दूसरे के तारीफ के पुल भी बांध दिए, लेकिन इन सब के बीच पिछले 9 साल से जो बातचीत चल रही थी या फिर टकराव हो रहा था उसके भी कई पड़ाव आए, और इन्हीं पड़ावों को क्या ये बैठक क्या उससे रास्ता आगे का निकालती है, या जो समस्याएं हैं, जो अविश्वास है अमेरिका में चीन के प्रति और चीन का अमेरिका के प्रति, और खासतौर पर ताइवान का मुद्दा हो, रेयर अर्थ मिनरल्स का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर क्या वो तनाव की स्थिति अभी भी है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।

0: दुनिया की दो बड़ी ताकत, एक भरता सैन्य दम तो दूसरे में आर्थिक दमखम। बयानों में तीखापन, रिश्तों में तलखी, लेकिन साथ आने की मजबूरी। ट्रंप जिनपिंग कम कर रहे आपस की दूरी। गए वो दिन जब कोई बड़ा देश सालों से किसी दूसरे ताकतवर देश से सीधे मुंह बात न करे। अर्थनीति, सैन्य नीति, कूटनीति और राजनीति जैसे मोर्चे अब हर देश के साथ रिश्तों की मजबूरियों को मजबूर कर रहे हैं। इन्हीं कुछ मजबूरियों के साथ ट्रंप पहुंचे हैं चीन। ट्रंप का ये दूसरा चीन दौरा है।
1: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
0: जानते जिनपिंग भी हैं कि दो बड़ी ताकतों के बीच टकराव का नुकसान दोनों को होता है और इन हालातों का फायदा छोटी ताकतें उठाना शुरू कर देती हैं।
2: हमारे स्थिर रिश्ते दुनिया के लिए भी ठीक हैं। हम दोनों की कामयाबी में दोनों मुल्कों के मौके हैं। हम दोनों को सहयोग से फायदा, टकराव से नुकसान है, इसलिए हमें साझेदार बनना चाहिए, दुश्मन नहीं। आइए 2026 में पुराने दौर को पीछे छोड़ नया दौर शुरू करें।
0: ट्रंप की जिनपिंग से पहले कार्यकाल में मुलाकात 2017 में फ्लोरिडा में हुई। फिर 2017 में ही ट्रंप चीन गए और जिनपिंग की तारीफों के पुल बांधते चले गए, लेकिन जल्द ही रिश्ते तल्ख होने लगे। 2018 से 2020 तक ट्रंप चीन पर ऐसे भड़के कि अरबों डॉलर के टैरिफ लगा डाले। चीन भी चुप नहीं रहा और उसने जवाबी टैरिफ लगा दिए। कोविड के दौरान तो रिश्ते बेहद खराब हो गए, जब ट्रंप ने कोरोना वायरस को चीनी बताते हुए ढेरों आरोप लगा दिए। अब दूसरे कार्यकाल में ट्रंप का ये पहला चीनी दौरा है, लेकिन इससे पहले बुसान में मुलाकात के बाद से ट्रेड डील की शुरुआत हो चुकी है। ट्रंप ने चीन पहुंचते ही जिनपिंग की जमकर तारीफ की, क्योंकि वो खुद दोहरे मोर्चे पर घिरे हैं। एक तरफ उन्हें खुद के घर में युद्ध का हिसाब किताब देना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ तेल के खेल में आर्थिक चुनौती लगातार दबाव बढ़ा रही है। जाहिर है दोस्ती और दुश्मनी की बदलती परिभाषाओं के बीच बीजिंग में वो राहत तलाशने ही गए हैं। आज तक गिरो
3: जो CEOs अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ गए हैं, वो सभी चाहते हैं कि चीन अपना बाजार अमेरिका के लिए खोले। अमेरिका चाहता है कि चीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुद्दे पर अमेरिका के साथ हो, या उसको खुलवाने में, चाहे वो औपचारिक तौर पर ये कहे ना कहे, बट वो चाहते हैं कि उसमें चीन मदद करे। चीन क्या चाहता है? ताइवान के मुद्दे पर कोई हस्तक्षेप ना हो। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, अमेरिका और चीन क्या हॉर्मूज पर और ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, इन मुद्दों पर एकमत हो गए हैं? क्या चीन यह रास्ता खुलवाने में मदद करेगा या तटस्थ रहेगा?
4: देखिए, सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो चीन ने समर्थन किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलने की बात तो खुद ईरान भी कह रहा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा कैसे, किन शर्तों पर खुलेगा, असली पेंच उसके ऊपर फंसा हुआ है। ईरान चाहता है कि उसकी संप्रभुता को स्वीकार किया जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, और इसके लिए न तो अमेरिका तैयार है और न ही खाड़ी के जो अन्य देश हैं वो इस मामले को लेकर तैयार हैं, और इसको लेकर तल्खी बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता दूं कि अब से पहले कुछ देर पहले यह खबर भी आई कि ब्रिक्स की बैठक के अंदर भी ईरान और यूएई के बीच में तनातनी देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर खूब शब्दों के बाण चलाए हैं आज की बैठक के अंदर। लेकिन अगर हम बीजिंग की बात करें तो वहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या ईरान के में जो बंद रास्ता है उसकी चाबी खोलने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग तैयार हो गए हैं, और उसके लिए वो कितना प्रभाव का अपना इस्तेमाल करेंगे, और क्या वाकई में चीन के पास उतना प्रभाव है कि वो ईरान पर दबाव डाल सके और उससे वो सारी चीजें मनवा सके जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, इसको लेकर बहुत सारे संदेह के सवाल हैं। लेकिन निश्चित रूप से आज बयानों के अंदर तो कम से कम राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के पक्षधर हैं, जैसे कि बात भारत भी कहता रहा है, दुनिया के कई देश कहते रहे हैं। लेकिन क्या ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मूज को 27 फरवरी 2026 के स्थिति के अंदर वापस लौटते हुए खोलने के लिए राजी होगा? यह एक अभी बड़ा सवाल बरकरार है, और इसको लेकर जो रास्ता है वो अभी अस्पष्ट है, क्योंकि बीजिंग में हुई बैठक के अंदर अभी भी जो दावत की मेज है वो सजी हुई है, वहां पर बातें बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन जो ठोस फैसले हैं उनको अमल में उतरना अभी बाकी है गौरव। और इसलिए बहुत सारे जो है, इसको कॉशियस ऑप्टिमिज्म आप कह सकते हैं, अभी जो है इस पर देखना होगा कि नतीजे के रूप में क्या सामने आता है और चीन आखिर क्या कोई व्यावहारिक कदम उठाते हुए नजर आता है।
3: क्योंकि बड़ा प्रश्न यह भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति तो एक विजेता के तौर पर चीन जाना चाहते थे कि उन्होंने खाड़ी की जंग जीत ली, लेकिन वो उस विजेता के रूप में नहीं जा पा रहे हैं। मामला बहुत बुरी तरह अटका हुआ है और चीन भी देख रहा है कि अमेरिका पर दबाव कैसे और बढ़ाया जाए। अमेरिका के जितने हथियार यहां खत्म हो जाएंगे तो ताइवान के लिए उतने ही कम हथियार अमेरिका के पास रहेंगे। कहने को तो ईरान में जो घमासान है चीन को उससे नुकसान हो रहा है, लेकिन देखिए नुकसान की अगर बात करें तो चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है वो कुछ और ही कह रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने ऐसी एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि इस युद्ध से चीन कई मोर्चे पर फायदा उठा रहा है। ये जनरल डैन केन की रिपोर्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये रिपोर्ट। क्या कहती है ये रिपोर्ट? ईरान की जंग में चीन वेट एंड वॉच की नीति पर है। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि अमेरिका की एक रणनीति क्या है, दो अमेरिका के पास हथियार उसके कितने हैं जो यहां खप जा रहे हैं। ईरान की जंग में ये जो वेट एंड वॉच नीति है, तीन मोर्चों पर इस समय चीन बहुत चौकस है। एक सैन्य मोर्चे पर, दूसरा आर्थिक मोर्चे पर, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण समय साबित हो सकता है वो है कूटनीतिक मोर्चा। कूटनीतिक मोर्चा इतना महत्वपूर्ण समय क्यों है? क्योंकि इसी मोर्चे पर चीन को पता चल जाएगा कि अमेरिका कितने पानी में है। अमेरिका की मुश्किल बढ़ने से ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश परेशान है। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या अमेरिका के लिए है, क्योंकि ताइवान को लेकर जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी की अमेरिका की नीति है, चीन चाहता है अब उसमें सफाई अमेरिका दे और ये कहे कि वो ताइवान में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ताइवान के लिए जो सुरक्षित गोला बारूद है वो खर्च हो रहा है। जो वहां पर ओकिनावा में अमेरिका की फ्लीट बैठी रहती थी वो अब यहां पर अरब सागर में है। चीन ईरान के युद्ध के बाद से खाड़ी के देशों को हथियार बेच रहा है, तो चीन पैसा बना रहा है, हथियार भी बेच रहा है, वो रणनीति भी देख रहा है। चीन अमेरिका की हमलावर और आक्रामक छवि पेश करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका तो हमला करता है, चीन शांति लाता है, चीन स्थिरता लाता है। इन मुद्दों को चीन आगे बढ़ा रहा है। चीन अमेरिका की हमलावर स्थिति पेश कर रहा है, अपनी शांति की बात कर रहा है। इससे चीन पिछले दो महीनों के युद्ध से कई मोर्चों पर और तीन प्रमुख मोर्चों पर फायदा उठा चुका है। चीन की आर्थिक स्थिति भी मजबूत है, चीन की सामरिक स्थिति भी मजबूत है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ने दो टूक कह दिया है कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका हस्तक्षेप न करे। अब बात ईरान बनाम कुवैत की। आप सोचेंगे ईरान बनाम जो खाड़ी देश हो रहा है उसमें कुवैत की एंट्री कैसे हुई? दरअसल इन दो महीनों में खाड़ी के देश अब खुलकर ईरान के सामने आ रहे हैं। पहले खबर आई थी संयुक्त अरब अमीरात की, फिर खबर आई सऊदी अरब की, और अब कुवैत ने भी एक नया मोर्चा खोल दिया है। कुवैत ने चार ईरानियों को हिरासत में ले लिया है और आरोप लगाया है कि ईरानी सेना उसके इलाकों में घुसने की कोशिश कर रही है, और कुवैत ने ईरान की एक जहाज को डुबा भी दिया है। अब ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने आरोप लगाया है कि कुवैत ने फारस की खाड़ी में ईरान की एक नाव पर गैर कानूनी हमला किया और चार ईरानी नागरिकों को अपने हिरासत में ले लिया। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे और कुछ मिनटों बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कुवैत पर अपने नागरिकों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लेने का गंभीर आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये जो फूट डालने की कोशिश के तहत कुवैत ने फारस की खाड़ी में एक ईरानी नाव पर गैर कानूनी हमला किया और ईरान के चार नागरिकों को हिरासत में लिया, ये अवैध कार्रवाई है, और ये अवैध कार्रवाई उस द्वीप के पास हुई जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए कहा था। उन्होंने इसके आगे लिखा कि हम अपने नागरिकों की तत्काल रिहाई की मांग करते हैं और ये भी बताते हैं कि जवाब देने का अधिकार ईरान को है, लेकिन फिलहाल ईरान उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। बड़ी खबर, पहले खबर यह आई कि सऊदी अरब ने ईरान के एसेट्स पर इराक में हमला किया। फिर खबर यह आई कि संयुक्त अरब अमीरात के कमांडोज ने ईरान में घुसकर ईरान पर वार किया। पलटवार किया और ईरान को बता दिया कि ईरान अगर बमबारी करेगा संयुक्त अरब अमीरात पर तो संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी के देश चुप नहीं बैठेंगे। और अब एक तीसरे देश की खबर भी आ गई है कि कुवैत ने भी पलटवार किया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जिसको लेकर पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या यूएई संयुक्त अरब अमीरात गए थे? उन्होंने ऐसा दावा किया। यूएई दौरे के दावे को लेकर एक बहुत जबरदस्त बवाल मच गया है। इजराइल ने कहा कि उनके प्रधानमंत्री ने मार्च में यूएई का एक गुप्त दौरा किया, सीक्रेट दौरा किया, और वहां पर मोहम्मद बिन जायद अल नायान से यानी वहां के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन यूएई ने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया है, इसका खंडन किया है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने बकायदा एक लिखित बयान में कहा कि ऐसे किसी इजरायली प्रतिनिधिमंडल की यूएई ने मेजबानी नहीं की है, नेतन्याहू के साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने दावा किया, लिखित रूप से दावा किया कि बेंजामिन नेतन्याहू की यूएई की यह यात्रा थी। इससे इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। लेकिन उनके लिखने के चंद मिनटों बाद ही यूएई ने इस खबर को खारिज कर दिया कि 26 मार्च को ऐसी कोई गोपनीय मुलाकात नहीं हुई, नेतन्याहू का कोई खुफिया दौरा नहीं हुआ। और इस बीच एक और बड़ी खबर बेजिंग से आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप इस समय बेजिंग में है। खबर यह आ रही है कि 24 सितंबर को अमेरिका जा सकते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 24 सितंबर को अमेरिका का दौरा। डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग को यूएस आने का न्योता दिया था। आपको मालूम है कि सितंबर के महीने में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की सालाना बैठक होती है और शुरू के दिनों में राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं, तो 24 सितंबर को तारीख अब से सामने आई है कि 24 सितंबर को शी जिनपिंग यूनाइटेड नेशंस जा सकते हैं। तो क्या बातचीत का अगला दौर यहां आगे बढ़ेगा, लेकिन क्या अब शांति के लिए तब तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी या उससे पहले शांति का मार्ग खाड़ी के देशों में निकलकर सामने आएगा? इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल एक ब्रेक। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
8: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
9: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
10: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
8: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
7: जहां खबर वहां खबरदार।
11: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट right before it ends.
12: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.

0: बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी दफ्तरों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा और 50% बैठकें होगी ऑनलाइन। 1 साल तक विदेश नहीं जाएंगे मंत्री और अफसर। दस दिन बाद कांग्रेस ने चुना केरलम में अपना मुख्यमंत्री, बीडी सतीशन होंगे नए सीएम, सोमवार को ले सकते हैं शपथ। नीट मामले में सीबीआई का एक्शन तेज, राजस्थान में आरोपी दिनेश और मांगीलाल के घर दबिश, परिवार से पूछताछ, दिल्ली की अदालत में भी 5 आरोपियों की पेशी। चीन में ट्रंप और जिनपिंग में ईरान युद्ध पर बात, हुरमुज खोलने को लेकर भी दोनों नेता सहमत, अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा हमारी मुलाकात बेहद सकारात्मक। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, मिडिल ईस्ट तनाव और ऊर्जा संकट पर हो सकती है बात, विदेशी दल से पीएम मोदी की भी मुलाकात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल जंग में जलती हिंदुस्तानियों की जेब को लेकर, जिसमें अब आगे बहुत बड़ी मुसीबत आने की आशंका बताई जा रही है और इसके कारण और लक्षण दोनों नजर आने लगे। एक तो ईरान जंग के कारण थोक महंगाई दर में 42 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मार्च के मुकाबले अप्रैल में 2 गुनी से भी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। कच्चे तेल की महंगाई मार्च के 55.5% से बढ़कर 28% को पार कर चुकी है। ऊपर से खुदरा महंगाई भी बढ़ती जा रही है, दूध तेल सब्जी खाने पीने की चीजों से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक महंगाई का चाबुक चल रहा है। लेकिन बात अब सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं है, मुसीबत उससे भी कई बड़ी हो सकती है। ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि आने वाले दिन काफी कठिन हो सकते हैं। पीएम मोदी तो पहले से बार बार अपील कर रहे हैं कि पैसे, डॉलर, ईंधन, बिजली सबकी बचत करें। उनकी अपील पर नेता मंत्री भी अमल करते दिख रहे हैं। काफिले छोटे हो गए हैं, विदेश यात्राएं रद्द कर दी गई है, बड़े राजनीतिक सरकारी कार्यक्रम रद्द किए जा रहे हैं, बैठकें वर्चुअल होने लगी है और अब दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि हफ्ते में 2 दिन सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सरकारी अफसरों को

मिलने वाला फ्यूल कोटा भी 20% कम किया गया। हफ्ते में एक दिन नो कार डे मनाया जाएगा। अगले 6 महीने तक दिल्ली सरकार कोई वाहन नहीं खरीदेगी। सरकारी कॉलोनियों में अफसरों कर्मचारियों के लिए 58 स्पेशल बसें चलेंगी। 50% मीटिंग्स ऑनलाइन की जाएगी। तो ये फैसले बताते हैं कि संकट तो आने वाला है और आने वाले दिनों में यह संकट कितना गहरा हो सकता है इसका अंदेशा एक्सपर्ट्स के बयानों और सरकार के रुख से साफ पता चलता है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि चुनाव के चक्कर में बीजेपी ने किफायती कदम उठाने में देर करने में मुसीबत और बढ़ा दी। थोड़ी देर पहले शरद पवार ने भी यही कहा है कि चुनाव के चक्कर में पीएम ने देर से ऐसे फैसले किए हैं और अब अपील कर रहे हैं कि किस तरीके से आप ईंधन बचत कर सकते हैं। तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि देश के सामने ऐसा कौन सा महासंकट आने वाला है और हमारा देश और हमारी हुकूमत क्या उसके लिए तैयार है। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।

0: इस ट्रंप ने ऐसी आग लगाई है कि ईरान की जंग में हिंदुस्तान की जेब तंग है और जिस तरह देश के प्रधानमंत्री मंत्री नेताओं के पैगाम है आवाम सहमी हुई कि ना जाने आगे कैसा वक्त आने वाला है।
1: इट इज अबाउट प्रेपरेशन, बी रेडी फॉर टफ टाइम्स रादर देन वेटिंग फॉर द शॉक टू हिट अस।
0: ये इशारे आवाम समझे या ना समझे हालात दिखने लगे हैं। दूध 2 रुपए लीटर बढ़ गया, घरेलू LPG 60 रुपए पहले बढ़ चुकी है, कमर्शियल सिलेंडर 1300 रुपए बढ़ चुका है, खाने का तेल 15 रुपए लीटर बढ़ चुका है, विदेशी दाल के दाम 35% बढ़ गए, मेवों के दाम 80% चढ़ गए, सोने चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, घर बनाने का सामान 10% महंगा हो गया, विदेश यात्रा का टिकट महंगा हो गया, डॉलर के मुकाबले रुपया सेंचुरी के करीब घिसटता जा रहा है। यूं ही पीएम मोदी पिछले 2 हफ्ते से भारतवासी भाइयों और बहनों को बचत का पाठ नहीं पढ़ा रहे। भारतवासी पीएम मोदी की अपील पर गौर करें या नहीं, नेता मंत्री जरूर संदेश दे रहे हैं। पीएम खुद 20 कारों के काफिले से 2 कार के काफिले पर आ गए। लोकसभा स्पीकर ने अपने काफिले में कारों की संख्या घटा दी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सिर्फ 1 कार के साथ पीएमओ पहुंचे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार छोड़ ई रिक्शे की सीट थाम चुके हैं। महाराष्ट्र के सीएम बुलेट से विधानसभा पहुंचते दिखे। पंजाब के गवर्नर चंडीगढ़ के अफसरों को हर बुधवार बिना वाहन के दफ्तर आने का आदेश दे चुके हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने काफिले में कार घटा दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने भी काफिले में कारों की तादाद घटा दी। बिहार के सीएम 3 कारों के काफिले में चलने लगे। सम्राट के मंत्री अशोक चौधरी 1 कार में JDU दफ्तर पहुंचे। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना साइकिल से विधानसभा आए। बंगाल में BJP की विधायक पूर्णिमा चक्रवर्ती स्कूटी से विधानसभा आई।
2: दिल्ली सरकार में 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स में भी हर एक कंपनी इंस्टीट्यूशन उनको कहा जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम करें 2 दिन के लिए, ये एडवाइजरी होगी और लेबर विभाग हमारा इसकी निगरानी करेगा।
3: आप कह रहे हैं कि 3 गाड़ियां कम कर लो, 2 गाड़ियां कम कर लो, 2 लीटर तेल बचा लो, 4 लीटर तेल बचा लो, तो जिसके ऊपर हमारा जहां रूस के ऊपर वहां हमारा तेल की एक संधि हुई थी उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उसको क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री साहब ने लागू करवाया। तो इसका मतलब फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी फेल हो गई। अब लोगों को कह रहे हैं कि अब खाना बंद कर दो भाई, अब तुरना बंद कर दो, अब साइकिल पे आ जाओ।
0: वैसे तो पीएम मोदी के आह्वान पर पूरी BJP एकजुट होकर देश के सामने संदेश रख रही है और यही संदेश अब तो आंकड़ों में नजर आने लगा, क्योंकि मार्च के 3.88% के मुकाबले अप्रैल में थोक महंगाई दर 8.30% पर पहुंच चुकी है। इसमें ईंधन की महंगाई 1% से बढ़कर 24.71% तक है, कंज्यूमर आर्टिकल 3.39% से बढ़कर 4.62%, खाद्य महंगाई 1.85% से बढ़कर 2.31%, प्राइमरी आर्टिकल 6.36% से बढ़कर 9.17% तक हो गए। मतलब ईरान की जंग में फूंकते बारूद ने तेल गैस की सप्लाई में ऐसी आग लगाई कि अब हर हिंदुस्तानी की जेब जलने लगी। बात महंगाई तक रहे तो और, अब तो जानकार आगाह कर रहे हैं अच्छे दिन में बचा लो वरना आने वाला है दुर्दिन।
1: इट इज अबाउट प्रेपरेशन, बी रेडी फॉर टफ टाइम्स रादर देन वेटिंग फॉर द शॉक टू हिट अस।
0: संकट दोधारी तलवार वाली है, एक तो तेल गैस की महंगाई, ऊपर से तेल गैस की सप्लाई पर आफत, क्योंकि अब तो ईरान झंडा देखकर भी हमला करने लगा। हॉर्मुज से गुजर रहे भारत के झंडे वाले एक मर्केंडाइज शिप को ईरान ने हमला करके समंदर में ही दफन कर दिया। गनीमत रही कि 14 भारतीय क्रू ने किसी तरह अपनी जान बचाई। ऐसी सूरत में भारत को खाड़ी से कितना तेल गैस कैसे मिल पाएगा, ये संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।
4: हम लोग को जो इकोनॉमी थर्ड पोजीशन से 6th पोजीशन में आ गया, और इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगा, क्यों इसका प्रिपरेशन नहीं था? चाइना में तो नहीं है ऐसा, जापान में नहीं हुआ कुछ, क्यों हमारा होता है, क्यों हमारा होता है? कोई इकोनॉमी हम लोग वर्ल्ड में हमारी इकोनॉमी थर्ड इकोनॉमी होगा, फोर्थ इकोनॉमी होगा, ये बोल के बहुत बहावा लेने की कोशिश करता है।
0: विपक्षी चाहे जो कहे, लेकिन पीएम मोदी ने आने वाले संकट को देखते हुए जो अपील देशवासियों से की है, अंदाजा देश की जेंजी तक को है।
5: पहले मैं रैपिडो से आता था, लेकिन अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता हूँ, बस वगैरह से। और घर पे कम गैस का यूज करता हूँ.
6: वी शुड मेंटेन दिस थिंग लाइक डीजल पेट्रोल एंड गोल्ड सिल्वर वी शुड बी मेंटेन लाइक वी शुड नॉट परचेज लाइक दैट ओनली इफ इज मोर रिक्वायर्ड दैट टाइम ओनली वी शुड परचेज.
0: देश की जनता ईरान की जंग की शुरुआत से किफायत करने को मजबूर है. महंगे हो चुके तेल गैस का इस्तेमाल सूझबूझ के साथ कर रही, लेकिन अब नेताओं की कार छोड़ साइकिल रिक्शा बग्घी पैदल वाली सवारी देखकर सहमने लगी है कि जब हुक्मरानों का यह हाल दिखने लगा तो आने वाले दिनों में आवाम का क्या होगा. आज तक ब्यूरो.
7: तो आज की स्थिति में हम क्या महंगाई के दहलीज पर खड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, दूध 2 रुपया लीटर महंगा हो चुका है, यह लिस्ट देख लीजिएगा. घरेलू एलपीजी 60 रुपए बढ़ चुका है, कमर्शियल सिलेंडर 1300 रुपए बढ़ चुका है, खाने का तेल 15 रुपए लीटर बढ़ चुका है, विदेशी दाल के दाम 35% बढ़ चुके हैं, मेवों के दाम 80% बढ़ चुके हैं. ऐसी स्थिति में क्या हम बड़े संकट के लिए तैयार हैं, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? इज इट टू लिटिल टू लेट, क्या हमने देरी कर दी है? तमाम सवाल है और उस पर हम चर्चा करेंगे. हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर गौरव वल्लभ, ये मेंबर है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्रधानमंत्री की, उनके और उसके साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट भी है, उनसे भी हम बात करेंगे. डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सरकार के तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे. दीपक झा कांग्रेस के तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे. मेरे सहयोगी सिद्धार्थ जराबी ग्रुप एडिटर है बिजनेस टुडे के, वो भी चर्चा में शामिल होंगे. और प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे. 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा. पहला सवाल, क्या थोक महंगाई दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी आने वाले महंगाई के तूफान का संकेत दे रही है? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक तो हमने शॉक झेला ही नहीं है, बड़े संकट के लिए तैयार है. उदय कोटक का भाषण भी आपने सुना. दूसरा सवाल, क्या तेल डॉलर को लेकर उठाए जा रहे किफायती कदम उठाने में भारत ने कुछ देर कर दी? 3 महीने के बाद ऑस्टेरिटी ड्राइव भारत के भीतर चलाई जा रही है, जबकि बाकी देशों में इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी. और तीसरा बड़ा सवाल, क्या ईरान संकट से बिगड़ रहे आर्थिक हालात सिर्फ किफायती कदम से संभल पाएंगे या कुछ और भी कदम इसमें उठाने पड़ेंगे? इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे. शुरुआत गौरव वल्लभ जी आप ही से करनी होगी, क्योंकि कल कैबिनेट की मीटिंग के बाद कुछ फैसले हमने देखे, लग रहा है कि सरकार की तरफ से कुछ फैसले करने की कोशिश हो रही है, जैसे 37,500 करोड़ रुपए का कोल गैसिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कर दिया गया और कहा गया कि उसके लिए हम पैसा रख रहे हैं. एमएसपी हाइक कर दी गई खरीफ जो क्रॉप्स आएंगे उसके लिए. शुगर एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है सितंबर महीने तक. और सबसे बड़ी बात, गोल्ड और सिल्वर यानी सोना और चांदी के इंपोर्ट के की जो ड्यूटी है वो भी बढ़ा दी गई है. लेकिन फिर भी सवाल आज की स्थिति में लोगों के मन में खास करके ये उठता है कि क्या कोई चिंता का विषय है, और बड़ी चिंता का विषय है.
8: साहिल जी, पहला उत्तर, सवाल का उत्तर एक लाइन में, नो नीड ऑफ एनी पैनिक, किसी भी घबराहट की कोई जरूरत नहीं है. पूर्ण विराम. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पूरी दुनिया में साहिल जी 3 बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं. वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन का जो मार है वो अभी तक यूरोपियन इकोनॉमीज अभी तक उस मार से जूझ रही है, और तीसरा जो यूएस चाइना का जो कमोडिटी कॉन्फ्लिक्ट है, इसके कारण पूरी दुनिया का जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हुआ. आपने स्वयं ने कई बार कार्यक्रम किया स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, पर इसके अलावा भी सारे सप्लाई चेन डिसरप्ट हुए. अब जब डिसरप्शन होता है तो क्रूड ऑयल हो या ऐसा कोई कमोडिटी जो इंपोर्टेड होती है देश में, उसकी प्राइस भी बढ़ती है, उसके सप्लाई में भी कंस्ट्रेंट्स आते हैं. और एक एक डाटा आपको देता हूं कि जो कच्चा तेल 26 फरवरी को $70 पर बैरल था, आज $105 पर बैरल है. मतलब 2 महीने में 50% की कच्चे तेल में बढ़त हुई. अब इन जियोपॉलिटिकल सिनारियो में साहिल जी, भारत ने वित्तीय वर्ष 2026 में लगभग 11.5 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल इंपोर्ट किया और लगभग 6.5 लाख करोड़ का सोना इंपोर्ट किया. हमारी कंजम्पशन का 87% कच्चा तेल हम बाहर के देशों से मंगवाते हैं और सोने में हमारी कंजम्पशन का 99% हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं. अगर हम इन दो मदों को जोड़ लें तो वित्तीय वर्ष 2026 में 18 लाख करोड़ रुपए का टोटल इंपोर्ट बिल इन दो मदों पर आया. प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई पैनिक नहीं, किसी चीज पे कोई बैन नहीं है, पर हो सके तो इंपोर्ट सेंसिटिव कंजम्पशन को हम कंट्रोल कर लें, अगर 5% भी कर लें तो ये 18 लाख करोड़ का 90,000
7: छोटा सा फर्क होगा
8: जी।
7: गौरव वल्लभ जी, एक छोटा सा फर्क, क्योंकि मेरा सवाल ओरिजिनली ये था, आपने पैनिक के मुद्दे पर बात की, घबराहट के मुद्दे पर बात की, मेरा सवाल चिंता को लेकर था, वरी
8: चिंता को लेकर भी
7: मैं ये समझ सकता हूँ कि आज की स्थिति में घबराहट की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या चिंता की जरूरत है आज की
8: चिंता के लिए भी आपको उत्तर देता हूँ एक लाइन में, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। इंडियन इकोनॉमी जब हम आज आपसे जब शो कर रहे हैं, आज भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया की ग्लोबल एजेंसीज के अनुसार FY27 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% या उससे थोड़ा अधिक ग्रो करने की उम्मीद है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज भी 690 बिलियन डॉलर अर्थात 65 लाख करोड़ रुपए बना हुआ है। जो इन्फ्लेशन है खाद्य पदार्थों में वो आज भी 4.2% है। फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, तो चिंता की भी कोई बात नहीं है। हम 140 करोड़ लोग रिजॉल्व ले हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज सेंसिटिव जो कंजम्पशन है हमारा, जो ऐसा कंजम्पशन जिसको फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा खरीदा जाता है, मुख्य रूप से पेट्रोल डीजल, मुख्य रूप से सोना और कोई कॉस्मेटिक पदार्थ, या फॉरेन ट्रेवल या लेजर ट्रिप, या विदेशों में जाके शादियां करना, प्रधानमंत्री ने देश से आह्वान किया है, आग्रह किया है कि हो सके तो इस कंजम्पशन को घटा दो।
7: आपकी बात सुनकर लोग शायद थोड़ा सा सहूलियत महसूस करें क्योंकि चिंता का विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको कारण बताता हूं कि मैंने चिंता के विषय को लेकर सवाल क्यों छेड़ा था। दो सबसे बड़े मुद्दे इसको लेकर निकल कर आते हैं जो आज ही आंकड़े निकल कर आए थे। एक तो ये कि जो थोक महंगाई के दाम है, जो इंडेक्स है, थोक महंगाई दर जो है वो 8.30% तक पहुंच चुका है, एक बड़ी जंप उसमें हमको नजर आती है, नंबर एक। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात, आपने सही कहा कि फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे पास ठीक ठाक है, विदेशी चलन हमारे पास ठीक ठाक है, और 8-9 महीने के लिए जरूरी पड़े उतना चलन हमारे पास है, लेकिन यह बात भी सही है कि पिछले 3 महीने में $38 बिलियन से वो घटा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो बातें 2 महीने पहले की जा रही थी, क्योंकि इस बात को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये 2 महीने पहले क्यों नहीं किया गया, जिस तरीके से संकट का सामना हम कर रहे हैं, ये सिर्फ प्राइस राइज डिस्ट्रप्शन नहीं है तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन भी है। हमारा ऑयल इंटेक भी कम हुआ है, ऑयल इंपोर्ट भी हमने काफी कम कर दिया है 3 महीने के अगर आंकड़े हम देखें तो। फरवरी में हम 5.5 मिलियन लेते थे तो आज 4.8 मिलियन तक आ चुके हैं। तो ये कारण है जिसके वजह से सवाल बार बार उठता है कि कोई चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए।
8: आपके सवाल बिल्कुल रिलेवेंट है, अब उसका उत्तर दे देता हूं कि 2 महीने पहले क्यों नहीं किया। साहिल जी, जो ये ग्लोबल डिसरप्शन जो मैंने आपको 3 गिनाए, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, यूरोप की अंदर मंदी, और तीसरी अमेरिका चाइना कमोडिटी प्राइस, और जो जिससे कमोडिटी प्राइस वार चल रहा है, इससे 2 महीने पहले क्यों नहीं किया। अब साहिल जी, दुनिया के हर व्यक्ति को ये लगता था कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये शॉर्ट टर्म है। हम जब मार्च में थे तो हमें लगता था ये मार्च में खत्म हो जाएगा, अप्रैल में थे तो हमें लगता था अप्रैल में खत्म हो जाएगा, हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट कल खत्म हो जाए। तो अब दुनिया में किसी को पता नहीं है कि ये जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कब खत्म होंगे। तो अब सवाल ये होता है कि लॉन्ग टर्म चल गए तो क्या होगा। लॉन्ग टर्म चले साहिल जी तो दुनिया
7: इस बीच गौरव वल्लभ जी, जो मैं सवाल जिस बात को लेकर उठा रहा था, देखिए विपक्ष सवाल उठाना शुरू कर दिया है। शरद पवार ये कह रहे हैं कि सरकार के किफायती कदम जो उठाए जा रहे हैं वो चुनाव के बाद उठाए जा रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, उनकी ये मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक तुरंत बुलाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को और जनता को खास करके इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आज की स्थिति में कहां खड़े हैं, हालात की गंभीरता को समझने की जरूरत है। सिर्फ काफिले छोटे करने से हालात नहीं संभलेंगे। जो सवाल गौरव वल्लभ जी मैं उठाने की कोशिश कर रहा था, देखिए विपक्ष भी वही कहीं ना कहीं पूछ रहा है, इज इट टू लिटिल टू लेट। काफी कम है, लेकिन ये एक तरीके से दिखावा है कि मैं 2 गाड़ियां कम इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ लोग आज बाइक से जा रहे हैं, कुछ लोग आज किसी और तरीके से जा रहे हैं। इससे भी बड़ा कदम उठाने की जरूरत है।
8: मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं प्रतिदिन 10 लीटर पेट्रोल का कंजम्पशन करता हूँ। मैंने एक प्रण लिया कि सप्ताह में एक दिन मैं सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो का प्रयोग करूंगा, तो 10 लीटर मेरा कंजम्पशन कम हुआ, अर्थात 1,000 रुपए का मेरे मॉनेटरी सेविंग हुई, अर्थात $12 का फॉरेन एक्सचेंज जो देश को मेरे एक दिन के कंजम्पशन के लिए चुकाना पड़ता है वो मैंने सेव किया। अगर 140 करोड़ हम सब लोग ऐसा ही कुछ कर लें, 5% कर लें, 10% कर लें, 2% कर लें, अगर सोने का कोई बैंड नहीं है, सोना खरीदिए पर हो सके तो एक साल पोस्टपोन कर दीजिए, अगर हम हमारे फॉरेन एक्सचेंज के बिल को 5% भी कम कर दें तो जो स्ट्रेन है, जो स्ट्रेस है, जो करेंट अकाउंट डेफिसिट
7: सारे बयान ये सारे बयान इकोनॉमिक इमरजेंसी या इकोनॉमिक क्राइसिस की सुगबुगाहट देते हैं। 2020 में प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू से शुरुआत की थी और 2 हफ्ते के भीतर लॉकडाउन लगाया गया था कोरोना के बीच में, आपको भी याद होगा 2020 की बात में कर रहा हूं। जिस तरीके का स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का आया है लोग ये भी सोचना शुरू कर देते हैं इस बारे में, और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने में क्या ही दिक्कत है।
8: कोरोना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिनेरियो था, एक ऐसी कंटेजियस डिजीज थी जो मतलब मैं आपके घर आपके साथ चाय पी लूं तो आपको मुझसे हो जाए या मुझे आपसे हो जाए, ये इसकी इस तरह से भ्रम फैलाना, लोगों में पैनिक करवाना, ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है। किसी चीज पर बैन लगाया क्या? साहिल जी मैं आपसे पूछता हूँ, रोज ऐसा भ्रम फैलाया गया, आज पेट्रोल बढ़ जाएगा, आज बढ़ जाएगा, 28 अप्रैल को बढ़ जाएगा, 4 मई को बढ़ जाएगा, 10 मई को बढ़ जाएगा, बढ़ा क्या? रोज ऐसा भ्रम फैलाया गया पिछले 2 महीने में साहिल जी,
7: पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो गया, एलपीजी बंद हो गई, जाकर ये बयान भी देते हैं कि आखिर कब तक ऑयल कंपनियां ये जो लॉसेस है, ये जो नुकसान है वो बर्दाश्त करती रहेगी, हजारों करोड़ रुपए के लॉसेस हो रहे हैं, ये भी तो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पूरी जाकर देते हैं, उसके बाद तो सवाल उठता है।
8: पूरी जिम्मेवारी से साहिल जी एक बात बोलता हूं, 140 करोड़ हम सब मिलकर अगर 5% भी इंपोर्ट सेंसिटिव कंजम्पशन को कम कर दें, हम स्मार्ट कंजम्पशन कर लें, इंटेलिजेंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट सेंसिटिव कंजम्पशन कर लें, तो हमें कोई आयोटा 0.0001% भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है।
7: फिर सिर्फ 5% हम देखते हैं कि सीआईआई की कॉन्फ्रेंस में उदय कोटक, हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया वहां पर और वो बार बार मेरे कान में गूंज रहा है क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर वो बयान चल रहा है। उनका पहला वाक्य ही बड़ा एक तरीके से सबको ऐसे झंझोड़ कर रख देगा। पहला वाक्य उनका यह है, वी मस्ट प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, वी हैव नॉट सीन द इम्पैक्ट इन लास्ट 2 मंथ्स। पिछले 2 महीने में हमने इंपैक्ट नहीं देखा है लेकिन हमको सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार होने की जरूरत है।
8: तो हाँ,
7: ये भी तो सुना जा रहा है। देखिए
8: साहिल जी हम इस स्थिति में जा ही नहीं रहे, हम उससे पहले ही हमने हमारे इंपोर्ट सेंसिटिव कंजम्पशन को कम कर लेंगे, दैट्स ऑल। हम उस स्थिति में क्यों जाएंगे? आप अगर एक दिन वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे, वर्चुअल मीटिंग कर लेंगे, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर लेंगे, कार पूलिंग कर लेंगे और छोटे छोटे स्टेप अगर 140 करोड़ लोग उठाएंगे तो हम 10% भी हमारी इंपोर्ट सेंसिटिव कंजम्पशन को कम कर लें तो हमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है।
7: गौरव वल्लभ जी, आप इकोनॉमिस्ट हैं और शायद इकोनॉमी मुझसे ज्यादा जानते हैं, आपको एक बेसिक प्रिंसिपल इकोनॉमी का पता है कि जब भी इस तरीके की ऑस्टेरिटी ड्राइव्स चलाई जाती है या जनता को रिस्ट्रेन करने के लिए कहा जाता है।
8: एक मिनट साहिल जी, ये ऑस्टेरिटी ड्राइव नहीं है, ये इंपोर्ट, ये सब्स्टिट्यूशन है, इंटेलिजेंट स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट सेंसिटिव कंजम्पशन है, ऑस्टेरिटी ड्राइव नहीं है, डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस, इसको गलत तरीके से मत समझिए।
7: क्या नाम दें हम?
8: इसका नाम है,
7: क्या नाम दें हम?
8: स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सपो फॉरेक्स सेंसिटिव कंजम्पशन। ऐसा प्रत्येक कंजम्पशन जो फॉरेक्स में खरीदा जाता है उसको डोमेस्टिक कंजम्पशन से रिप्लेस करो, बस दैट इज दैट राइट।
7: ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपना खर्चा देखते हुए आपकी आमदनी देखते हुए आप खर्चा करो, ये भी तो कहीं ना कहीं कहने की कोशिश है।
8: साहिल जी,
7: ज्यादा खर्चा मत करो, कंजम्पशन आपका कम करो, यही कहने की कोशिश है।
8: नहीं साहिल जी, मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बताता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉलर में बनने वाले सामान का इन रुपये में बनने वाले सामान से सब्स्टिट्यूशन करने का प्रयास करो, बस। दैट्स ऑल.
7: ठीक है, उदय कोटक और एक चीज कह रहे थे, क्योंकि उनका यह मानना है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे और उसका इंपैक्ट उन लोगों पर सबसे ज्यादा होगा. आप इकोनॉमिस्ट थे, इसके लिए आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, जिसकी जो सवाल दरअसल मैं आपको पूछने की कोशिश कर रहा था. इस चीज का इंपैक्ट अलग अलग तबके के लोगों पर अलग अलग तरीके से होता है. जो सबसे निचला तबका होता है उस पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है इस सिचुएशन में. क्या उनके लिए कोई तैयारी सरकार की तरफ से, हम कह सकते हैं आप इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर है, प्रधानमंत्री एक सर्वोच्च बॉडी के मेंबर है, क्या आपको लगता है कि उन लोगों के लिए कोई तैयारी की जा रही है?
8: साहिल जी, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड. हम में नकारात्मक कोई भी प्रभाव ना पड़े उसके लिए तैयार है. नथिंग टू वरी, नो नीड ऑफ पैनिक. जो इम्पोर्ट सेंसिटिव कंजम्पशन है, जिसको फॉरेन एक्सचेंज में खरीदा जाता है, उसको कम करने का प्रयास करें. अर्थात साहिल जी, अगर घड़ी आप स्विट्जरलैंड की पहनते हो तो भारत में बनी घड़ी का पहनने का प्रयास करें. अगर आप ये जैकेट स्विट्जरलैंड का पहनते हो तो भारत में बना हुआ जैकेट पहनने का प्रयास करें. और नहीं हो रहा तो देयर इज नो बैन ऑन एनीथिंग. सोने की खरीद पर कोई बैन नहीं.
7: ये तस्वीरें कब तक चलेगी?
8: पोस्टपोन दिस.
7: ये तस्वीरें कब तक चलेगी? ये तस्वीरें कब तक चलेगी? युद्ध खत्म होने तक?
8: ये साहिल जी, ये तो अच्छी तस्वीरें हैं. ये तो अच्छी तस्वीरें हैं. मान लो मैं और आप आज दोनों मेट्रो में चल रहे थे.
7: मानता हूं मैं, लेकिन कब तक चलेंगी?
8: मैं कह रहा हूं आप 2020 में, साहिल जी, आपने कभी वर्चुअल मीटिंग का नाम सुना था? हैड यू हर्ड अबाउट वर्चुअल मीटिंग? बट आज वर्चुअल मीटिंग नॉर्म्स बन चुके हैं. तो अगर ये सारी जो स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन हम जीवन में अपना लेंगे तो चलेगी क्या? हम जीवन पर्यंत इसके साथ चलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज सेंसिटिव क्यों? हम पैसा कमा के विदेशों में डॉलर का भुगतान करें? हम हमारे ही लोगों के, हमारे
7: कंपनियों
8: को प्रोस्पर करें.
7: ठीक है, सिद्धार्थ जराबी मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मेरे साथ में बिजनेस टुडे के ग्रुप एडिटर है. सिद्धार्थ जराबी, आपने सुना कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्रधानमंत्री की गौरव वल्लभ यहां पर बात कर रहे थे. क्या आपको लगता है, जो सवाल मैं बार बार पूछने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा क्या बदलाव हुआ है दो महीने के भीतर कि आज इस बात का जिक्र करने की जरूरत आ पड़ी है? क्या सिचुएशन बदली है मार्च से लेकर मई महीने तक?
9: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीज फायर हुआ, उस सीज फायर के कारण बम गिरने, मिसाइल चलना बंद हुआ, परंतु उस सीज फायर के बावजूद तेल की सप्लाई की अवेलेबिलिटी और उसके दामों में जो उतार चढ़ाव चल रहा है वो फिक्स नहीं हुआ. अगर आप इकोनॉमिक कारण पूछें तो सबसे बड़ा कि जो तेल का खेल है, जो संकट है, वो संकट उसी प्रकार का प्रिवेल कर रहा है. अब दूसरा सवाल यह आता है कि पिछले 60 दिन में क्या हुआ? तो पिछले 60 दिन में यह बात बिल्कुल सार्वजनिक है कि भारत ने हर सोर्स से जहां तेल मिल रहा था वहां उस तेल को खरीदा और हाई सीज पे खरीदा और काफी महंगे दामों में खरीदा. हमने रैशनिंग ऑलरेडी गैस में पहले से ही देखी है, खासकर कमर्शियल गैस सप्लाईज में. अब प्रधानमंत्री जी का जो आप बयान का हवाला दे रहे हैं कि क्या बदला, मुझे लगता है कि हमें आगे देखना चाहिए. और जो सबसे बड़ा संकट इस इमीडिएट सप्लाई प्रॉब्लम के साथ, जिस पे चर्चा और कहीं ना कहीं गौरव वल्लभ जी उस पे कुछ संज्ञान भी लेके हमें बताएं, वो ये विषय है कि रुपये को लेके जो लगातार पिछले कई महीनों से, एक डेढ़ दो साल से हम देख रहे हैं कि लगातार विदेशी निवेशक भारत से रुपया बाहर ले जा रहा है और उस डॉलर के आउटफ्लो के कारण हमारी एक्सचेंज रेट पे प्रेशर पड़ रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भारत में वापस खींचने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कौन से स्टेप्स कंसिडर किए जा रहे हैं, खासकर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारत के टैक्सेशन आर्किटेक्चर के कारण थोड़ा हताश है यहां पर निवेश करने के लिए. यह ज्यादा बड़ा सवाल है मेरे विचार से साहिल.
7: बहुत बड़ा सवाल है आज की स्थिति में और इसका असर बार बार हमें स्टॉक मार्केट पर देखने मिल रहा है. आज की स्थिति में अगर स्टॉक मार्केट संभला है तो वह सिर्फ घरेलू इन्वेस्टमेंट के वजह से, जो SIP के रूप में फिलहाल मार्केट में हमें दिखाई देती है. लेकिन अदरवाइज जिसका जिक्र सिद्धार्थ जरा भी यहां पर कर रहे हैं, गौरव वल्लभ फिलहाल मेरे साथ में नहीं है, लेकिन दीपक झा हमारे पास आगे इस चर्चा में जाने से पहले सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास ये सवाल ले जाने से पहले
10: जी,
7: क्या आपको लगता है, आपने गौरव वल्लभ को भी सुना
10: जी,
7: क्या आपको लगता है कि सरकार से देरी हो गई और जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है वो सिर्फ कम है, इससे भी ज्यादा स्टेप्स सरकार के तरफ से उठाई जाने चाहिए?
10: देखिए, मैं अपने बड़े बुजुर्गों की बात को कहूंगा, जो पहले कीजे जतन सो पीछे फलदाय, आग लगे खोदे कुआं कैसे आग बुझाए। तो हालात वैसे हो गए कि आग लग चुका है चारों तरफ, अब कुआं खोद रहे हैं कि भाई चलो पानी आग बुझानी है। बात है कि गौरव वल्लभ ने आके यहाँ पे देश को कंफ्यूज कर दिया यार। साहिल जी आज इन्होंने कहा सब चंगा सी, फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं खर्चे कम करो, तेल मत खाओ, गैस मत जलाओ, गाड़ी मत चलाओ, फिर ऐसे दोहरे बयान क्यों? आपको आके टीवी चैनल पे बयान को बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई हालात अच्छे नहीं है, ये दोहरा बयान हो गया। नरेंद्र मोदी जी कुछ और कहते हैं, मंत्रियों की कटौती करते हैं, सिंबॉलिक तौर इसके इससे कुछ नहीं होगा। सवाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या इतनी लेट बुद्धि आती है कि क्या इतनी देर के बाद जागते हैं कि चलो भाई चुनाव हो गया तो देश का माहौल थोड़ा बिगाड़ा जाए, लोगों में पैनिक क्रिएट किया जाए, पहला बात है। दूसरी बात, गौरव भल्लभ ने कहा था, मैं उसी की एक बात को आगे बढ़ाऊंगा, दो महीने से कीमत बढ़े हैं साहिल, 70 से 110 रुपए आ गया है, लेकिन जब पिछले 12 सालों में कीमत 70 डॉलर से लेकर 20 डॉलर भी गई थी 2020 में, फिर 35, फिर 40, फिर 50, फिर 55, फिर 60 और फिर 70, तो देश को उसका फायदा कहां दिया, आम जनता को उसका फायदा क्यों नहीं दिया? और आज दो महीने में कीमत बढ़ गई तो आप कह रहे हैं कि भाई आपने 44 लाख करोड़ रुपए तेल से मुनाफा वसूली किया है, भारत सरकार ने किया है, प्राइवेट कंपनियों ने किया है, आपकी मित्रों कंपनियों ने किया है, तो उसका प्रॉफिट क्यों नहीं देना चाहते?
7: मांग क्या है विपक्ष की, स्पेसिफिक मांग क्या है? शरद पवार कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आपका क्या कहना है कि आज के बजाय अगर ये दो महीने पहले बताते तो ज्यादा बेहतर होता, क्या स्पेसिफिक डिमांड है
10: साहिल? साहिल विपक्ष के साथ साथ तमाम मीडिया, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे थे कि देश में महंगाई बढ़ेगी, ये सब लोगों ने मान के तय कर रखा था कि देश में महंगाई बढ़ेगी, संकट आएंगे, लेकिन सरकार कहां थी? दो महीनों में सरकार ने आपको आपके हाल पे छोड़ दिया, हिंदू मुसलमान करते रहो, मंदिर मस्जिद करते रहो, बंगाल और असम का चुनाव पे चर्चा करते रहो, शाम को घर की चाय पीते रहो, यही थे। दो महीने पहले राहुल गांधी जी ने कहा था कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, दो महीने पहले कहा था राहुल गांधी जी ने, दो महीने पहले आप जैसे तमाम पत्रकार कह रहे थे कि सावधान होने की जरूरत है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्यों सो रहे थे, क्यों नहीं उठे, क्यों अपनी रैलियों में लाखों करोड़ लीटर
7: सिद्धार्थ जराबी ने जो पूछा वो, और विपक्षी पार्टियां आज की तारीख में जो सवाल उठा रही है वो, जो दीपक जा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये पहले बता दें।
10: साहिल देखिए,
7: 10 सेकंड जल्दी से दीपक जी,
10: देखिए इनके नेता जो वित्त मंत्री हो प्याज खाती नहीं है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं एसी मत चलाओ, प्याज घर में रख लो, ठंड दूर हो जाएगी, आ जाएगी, तो ऐसे बयान देंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सोना मत खरीदो, पहले मजाक उड़ाते थे। नरेंद्र मोदी जी संसद भवन के अंदर कहते हैं नेहरू जी ने कहा था अमेरिका में युद्ध हो रहा तो भारत
7: मिलाकर आज की स्थिति में, इकोनॉमिक स्थिति में हम चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। कुल मिलाकर सैयद जफर इस्लाम कहने की कोशिश यहां पर यह हो रही है, जिसका जिक्र सिद्धार्थ जरा भी कर रहे थे, कि भारत से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बार बार निकलकर बाहर जा रहा है, और ये पूरा ग्राफ नजर आता है क्यों वो बाहर जा रहा है, नंबर एक। नंबर दो, जिसका जिक्र आज किया जा रहा है, क्या वो पहले किया जा सकता था? आपको याद होगा इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तब यह कहा जा रहा था कि नहीं हम सब संभाल रहे हैं, लेकिन अब स्थिति हाथ से निकल के जा रही है, इसके लिए ये सारी चीजें बाहर रखी जा रही है। ये भी
11: देखिए साहिल, फिर से दोहरा रहा हूं बात को, जिसको गौरव भल्लभ जी ने भी कहा कि ये अज्यूम करना कि स्थिति बाहर हाथ से बाहर जा रही है, सिचुएशन जो है स्लिपिंग आउट ऑफ आवर हैंड, ये बिल्कुल सही नहीं है। कुछ प्रिकॉशनरी भी, कोई बैन तो लगाया नहीं, ये वॉलंटरीली आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वॉलंटरीली आपको कुछ ऐसे चीज बताया जो वॉलंटरीली करना चाहिए तो कीजिए, और अगर नहीं कर भी रहे तो भी कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई बैन नहीं किया हुआ है। दो तीन चीजें कहूंगा हम बात, ये बात सही है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो FIIs यहाँ कंटिन्यूअसली सेल करे, उसकी वजह ये नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था में कोई कमी है या कोई प्रॉब्लम है देश में किसी तरह की, जैसे पहले पॉलिसी पैरालिसिस यूपीए के समय में थे, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स सही नहीं थे, या फिर स्कैम या स्कैमस्टर्स की सरकार थी वो या इन्फ्लेशन बहुत हाई था या बहुत सारे अदर चीजों, देखिए उस वक्त के नंबर तो सब जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को कंफर्ट नहीं देते थे, इसलिए FIIs वहां से भाग रहे थे। आज के परिपेक्ष में देखिए तो मार्केट के लिए फैंसी होता है कुछ कभी कुछ फैंसी होता है कभी कुछ फैंसी होता है. इस वक्त डेफिनेटली मार्केट के लिए दुनिया में, जैसे आप देखिए कोरिया का मार्केट फॉर इंस्टेंस, कोरिया का मार्केट देखिए 20% बढ़ा है. किस लिए बढ़ा भाई? तो वो चिप की वजह से और जो
7: तो ये इन्वेस्टर्स बाहर क्यों जा रहे हैं? आपने कहा कि पहले के जमाने में इसके वजह से बाहर जाते थे क्योंकि स्कैम्स या बाकी सारी चीजों के वजह से. आज क्यों बाहर जा रहे हैं
11: भाई? कह रहे हैं कि आज के दिन
7: नहीं मिल रहे इसीलिए जा रहे हैं ना.
11: एक सेकंड आज के दिन में फैंसी जो हो रहा है वो एआई और जो चिप इस तरह की चीजें जो हो रही है तो उससे थोड़ा सा जो है वो इन्वेस्टर जो है कभी कभी फैंसी होता है तो मार्केट चेंज करता है फिर वापस आएंगे. यही 100% आएंगे इसलिए कि स्ट्रेंथ इकोनॉमी में है तो वापस आएंगे टेम्पररी मेजर से. कभी बाहर निकलते कहीं और मार्केट में उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा देखती है. जो इसका एग्जांपल भी दे रहे कोरियन मार्केट में उसका एग्जांपल दे रहे हैं. और देखिए सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रॉफिट देखिए तो एक कंपनी का प्रॉफिट कई कंट्री के प्रॉफिट से भी कई कंट्री एक कंपनी का प्रॉफिट.
7: फिर भी दो सवाल रहते हैं, क्या ये दो महीने पहले बताना चाहिए था? क्या ये दो महीने पहले बताना चाहिए था जो बार बार पूछा जा रहा है? आज क्या बदला है?
11: सुनिए भाई कुछ नहीं बदला. देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये जो सीज फायर जो है ना कभी होता है कभी नहीं होता है कभी होता है. आप किसी भी वॉर में देखिए सीज फायर होता है खत्म हो जाती है मामला. ये सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ दूसरे दिन फिर आ गया कि वी विल ब्लो ईरान वी विल ब्लो ये ईरान कुछ और जवाब देता फिर सीज फायर होता है कुछ अंडरस्टैंडिंग होती. इस तरह का जो वोलेटाइल सिचुएशन कभी इतिहास में देखा नहीं गया.
7: तो कहता है कि चुनावी सीज फायर हो गया उसके बाद ये शुरू हो गया.
11: अरे मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ साहिल जी छोड़िए चुनाव होना को आंकड़े दे रहा हूँ उसको आप रिवैलिडेट कर लीजिए. आप देखिए स्पॉट जो है अभी रावी जी से पूछिएगा जो उसके बारे में चर्चा भी करेंगे जो क्रूड का स्पॉट प्राइस था और जो फ्यूचर के प्राइस पे देखिए कितनी बड़ी गिरावट स्पॉट में आ गई. क्यों आ गई है? इसलिए कि लोगों को लग रहा है कि टेम्पररी सिचुएशन है और इस टेम्पररी सिचुएशन में हम किसी तरह से हमको आहत ना हो इसलिए कि थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ गई है. एक बार सीज फायर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है. आज सीज फायर हो जाए कोई दिक्कत नहीं. आगे अगर ये चलता रहे आगे चलती रहेगी तो इसलिए
7: ऑल पार्टी मीटिंग
10: बुलाना चाहिए सारे दलों के नेताओं को बुलाना चाहिए जो अर्थशास्त्री हैं चिदंबरम जैसे लोगों से बैठ के बात करनी चाहिए. और दूसरी बात मैं कहूंगा कि क्रूड ऑयल रिजर्व आपने क्यों नहीं बढ़ाया भाई साहब? देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जो 53 लाख मेट्रिक टन का क्रूड ऑयल बनाया था आपको कर्नाटक में दिया था और आंध्र प्रदेश में उसके बाद आपने तो चुल्लू भर तेल रखने के लिए 1 लीटर तेल रखने के लिए क्रूड रिजर्व बनाया ही नहीं.
7: आपके जवाब दे रहे की कोई गुंजाइश नहीं. बार बार ये पूछा जा रहा है कि देश के सामने स्थिति रखिएगा जो स्थिति है वो देश के सामने रखिएगा. ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइएगा जफर इस्लाम
10: बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इनको बोलना चाहिए. आज भी कोरिया पहुंच जा रहे हैं जापान पहुंच जा रहे हैं अमेरिका पहुंच जा रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान की बात
11: चर्चा हो चुकी है पार्लियामेंट में. पूछना चाहते हैं हिंदुस्तान त्याग क्यों करे प्रधानमंत्री जी ने? आप उसकी छोटी से देखिए आपने अभी गौरव बल्लभ जी ने भी कहा उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ. अगर आप क्रूड के थोड़े 25% आपकी कमत कम होती है पहुंच चुका है. अगर आप
7: प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा
10: रुपया गिरता है तो भारत का सम्मान गिरता है.
7: प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा
10: भारत का चरित्र गिरता है.
7: ये वार्निंग को आप किस तरीके से देखते हैं? जो सवाल दरअसल में गौरव वल्लभ को पूछने की कोशिश कर रहा था इस तरीके की जो ड्राइव्स है वो कह रहे हैं कि ऑस्टेरिटी तो ड्राइव नहीं है लेकिन इसका असर छोटे कंज्यूमर्स पर निचले तबके के लोगों पर और बाकी ओवरऑल अगर हम देखें किस तरीके से आप इसको देखें?
12: सहेल भाई हम ये कहेंगे कि एक जागरूक उपभोक्ता क्रिएट हो रहा है. हमारे देश में आम लोगों को जागरूकता का बहुत कमी है. बहुत लोगों को यह भी नहीं मालूम कि इंपोर्ट सोना इंपोर्ट हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज से. कई लोगों को बहुत कुछ नहीं मालूम. तो आज प्रधानमंत्री ने एक जागरूकता पैदा की है. आज आम आदमी इस पर चर्चा करने लगे हैं पूछने लगे हैं वो जागरूक हो रहे हैं और वो जागरूक होकर ये कोशिश कर रहा है कि हमारा भागीदारी क्या होगा हम क्या कर सकते हैं हमको क्या करना चाहिए इस क्राइसिस में. और आप समझ लीजिए कभी भी जब क्राइसिस आता है वो एक अपॉर्चुनिटी होता है एक मौका होता है लोगों के लिए कि वो कटौती करें एफिशिएंसी लाएं. हम सालों से सरकार को कहे हैं कि आप ये वीआईपी कल्चर को काटिए आप तामझाम को काटिए आप सरकारी खर्चा को कम कीजिए ताकि आम आदमी को उसका फायदा मिले. और अभी चलकर
7: आपने मुझसे ज्यादा भारत में चीजें देखी है मुझसे ज्यादा देखी होगी. कभी आपको लगता है कि ये खत्म हो पाएगा? आज की स्थिति में तो हम देख रहे हैं कि गाड़ियां दो छह गाड़ियों से दो गाड़ियों पर लोग आ गए हैं, कोई चल के जा रहा है, कोई अलग तरीके से जा रहा है, ये परमानेंट नहीं है चीजें, आपको भी पता है।
12: नहीं, हमको पता है, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि एक सस्टेनेबल हो, अब हम चाह रहे हैं कि इस पे कानून बने, इस पे एक नियत बने, इस पॉलिसी हो, ताकि फजूल का पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए पब्लिक का। हम बार बार करके सरकार को ये कहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि वो इस पे जागरूक हुए हैं और सरकार इस पे ध्यान दे रहे हैं और कटौती किए हैं, और कटौती करने के बाद कोई कमी आया ही है का? उनका परफॉर्मेंस
7: जंग नहीं, कमी आया जंग नहीं, नहीं रुकी
12: आया। और हम
7: अगर
12: भी कहना चाह रहे
7: रुकी तो लोगों को किस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए? मिश्रा जी, अगर जंग नहीं रुकी तो लोगों को किस चीज के लिए तैयार होना चाहिए?
12: तैयार ये होना चाहिए कि हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको कैसे हम संतुलन रखकर एक लीन, मतलब एक कम से कम रकम से हम अपना परिवार का रख रखाव चला सके, और उसके लिए जागरूकता लाना जरूरी है और वो हो रहा है, और उससे हम
7: आज की स्थिति में
12: सबको ये फायदा मिल रहा है।
7: हमारी जरूरतें कम करने की बात हो रही है। एक वक्त था कि राजभवन के भीतर शपथ ग्रहण किया जाता था एक छोटे से हॉल में, आज की स्थिति में बड़े बड़े मैदानों में हजारों लोगों की भीड़ के सामने शपथ ग्रहण हो रहे हैं, कहीं ना कहीं खर्चा वहां भी हो रहा है। लेकिन सिद्धार्थ, जरा भी किस चीज के लिए तैयार होना चाहिए? जो सवाल प्रोफेसर
9: साहिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है साहिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बट उससे पहले एक विषय पे मैं थोड़ा खेद प्रकट करना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बड़ा अपशब्द प्रयोग किया प्रधानमंत्री के लिए, मैं उस अपशब्द को रिपीट नहीं करना चाहता हूं, परंतु क्योंकि ये एक नहीं, आप मेरे को बोलने दीजिए, आप बीच में नहीं बोले,
10: बीच में नहीं बोले,
9: आप इस तरह आपने जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया है ये निंदनीय है, और एक सीरियस डिस्कशन में इस प्रकार के अपशब्द आप पे बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं।
7: इसी के बारे में
9: इस प्रकार का अपशब्द बिल्कुल,
7: हम चर्चा इकोनॉमिक पॉलिसी पर कर रहे हैं और बहुत ही गंभीर चर्चा हम कर रहे हैं
9: चैनल में,
7: किसी भी तरीके से सड़क था, किसी भी तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चैनल के डिबेट्स में गलत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थ, जरा
9: बहुत ऑब्जेक्शन है, इस प्रकार की भाषा बिल्कुल निंदनीय है। अब आपने जो सवाल पूछा मैं उस पे आपको तीन बातें बोलता हूं। पहला, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने चाहिए, बढ़ाने पड़ेंगे। चार साल के लिए सरकार ने ये दाम नहीं बढ़ाए, 2024 में उन्होंने ₹2 से ये दाम घटाए थे, और हमें अब इस प्रकार की प्राइस राइज के लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दूसरा, महंगाई बढ़ रही है और इसमें कोई चारा नहीं है। तीसरा, इंटरेस्ट रेट और ईएमआई का कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि आपने सवाल बिल्कुल एक इकोनॉमिक सवाल पूछा, और दुर्भाग्य है कि यहाँ पॉलिटिक्स पे बात करनी पड़ रही
7: है। सबसे बड़ा सवाल
9: और फिस्कल
7: नौकरी रोजगार,
9: आखिरी बात
7: अगर
9: सरकार की जो हमारे देश की राज्यों और केंद्र दोनों का जो फिस्कल मैथ है इस वित्तीय वर्ष में कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, इसलिए आने वाले समय में रिफॉर्म्स और कई और प्रकार के स्टेप्स लेने की आवश्यकता पड़ेगी।
7: स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिसकी बात बार बार की जाती है, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स जिसकी बात बार बार की जाती है, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत इस स्थिति में होने की जरूरत आन पड़ी। इस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये युद्ध जब तक चलेगा तब तक इस तरीके की स्थिति बनी रहेगी, यह भी कहा जा रहा है। क्या हम एक लंबे शॉक के लिए तैयार है या नहीं है, इसका विचार हम सभी को करना होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट?
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you? Hint, bade aaram se. Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank, bharose ka prateek. समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल. विमल, बोलो जुबां केसरी.
1: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
2: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
3: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
1: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
4: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
2: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ. एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
1: जहां खबर वहां खबरदार.

0: दुनिया की दो बड़ी ताकत, एक भरता सैन्य दम तो दूसरे में आर्थिक दमखम। बयानों में तीखापन, रिश्तों में तलखी, लेकिन साथ आने की मजबूरी। ट्रंप जिनपिंग कम कर रहे आपस की दूरी। गए वो दिन जब कोई बड़ा देश सालों से किसी दूसरे ताकतवर देश से सीधे मुंह बात न करे। अर्थनीति, सैन्य नीति, कूटनीति और राजनीति जैसे मोर्चे अब हर देश के साथ रिश्तों की मजबूरियों को मजबूर कर रहे हैं। इन्हीं कुछ मजबूरियों के साथ ट्रंप पहुंचे हैं चीन। ट्रंप का ये दूसरा चीन दौरा है।
1: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
0: जानते जिनपिंग भी हैं कि दो बड़ी ताकतों के बीच टकराव का नुकसान दोनों को होता है और इन हालातों का फायदा छोटी ताकतें उठाना शुरू कर देती हैं।
2: हमारे स्थिर रिश्ते दुनिया के लिए भी ठीक हैं। हम दोनों की कामयाबी में दोनों मुल्कों के मौके हैं। हम दोनों को सहयोग से फायदा, टकराव से नुकसान है, इसलिए हमें साझेदार बनना चाहिए, दुश्मन नहीं। आइए 2026 में पुराने दौर को पीछे छोड़ नया दौर शुरू करें।
0: ट्रंप की जिनपिंग से पहले कार्यकाल में मुलाकात 2017 में फ्लोरिडा में हुई। फिर 2017 में ही ट्रंप चीन गए और जिनपिंग की तारीफों के पुल बांधते चले गए, लेकिन जल्द ही रिश्ते तल्ख होने लगे। 2018 से 2020 तक ट्रंप चीन पर ऐसे भड़के कि अरबों डॉलर के टैरिफ लगा डाले। चीन भी चुप नहीं रहा और उसने जवाबी टैरिफ लगा दिए। कोविड के दौरान तो रिश्ते बेहद खराब हो गए, जब ट्रंप ने कोरोना वायरस को चीनी बताते हुए ढेरों आरोप लगा दिए। अब दूसरे कार्यकाल में ट्रंप का ये पहला चीनी दौरा है, लेकिन इससे पहले बुसान में मुलाकात के बाद से ट्रेड डील की शुरुआत हो चुकी है। ट्रंप ने चीन पहुंचते ही जिनपिंग की जमकर तारीफ की, क्योंकि वो खुद दोहरे मोर्चे पर घिरे हैं। एक तरफ उन्हें खुद के घर में युद्ध का हिसाब किताब देना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ तेल के खेल में आर्थिक चुनौती लगातार दबाव बढ़ा रही है। जाहिर है दोस्ती और दुश्मनी की बदलती परिभाषाओं के बीच बीजिंग में वो राहत तलाशने ही गए हैं। आज तक गिरोह

इस ट्रंप ने ऐसी आग लगाई है कि ईरान की जंग में हिंदुस्तान की जेब तंग है और जिस तरह देश के प्रधानमंत्री मंत्री नेताओं के पैगाम है आवाम सहमी हुई कि ना जाने आगे कैसा वक्त आने वाला है। ये इशारे आवाम समझे या ना समझे हालात दिखने लगे हैं। दूध 2 रुपए लीटर बढ़ गया, घरेलू LPG 60 रुपए पहले बढ़ चुकी है, कमर्शियल सिलेंडर 1300 रुपए बढ़ चुका है, खाने का तेल 15 रुपए लीटर बढ़ चुका है, विदेशी दाल के दाम 35% बढ़ गए, मेवों के दाम 80% चढ़ गए, सोने चांदी की इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, घर बनाने का सामान 10% महंगा हो गया, विदेश यात्रा का टिकट महंगा हो गया, डॉलर के मुकाबले रुपया सेंचुरी के करीब घिसटता जा रहा है। यूं ही पीएम मोदी पिछले 2 हफ्ते से भारतवासी भाइयों और बहनों को बचत का पाठ नहीं पढ़ा रहे। भारतवासी पीएम मोदी की अपील पर गौर करें या नहीं, नेता मंत्री जरूर संदेश दे रहे हैं। पीएम खुद 20 कारों के काफिले से 2 कार के काफिले पर आ गए। वैसे तो पीएम मोदी के आह्वान पर पूरी बीजेपी एकजुट होकर देश के सामने संदेश रख रही है और यही संदेश अब तो आंकड़ों में नजर आने लगा, क्योंकि मार्च के 3.88% के मुकाबले अप्रैल में थोक महंगाई दर 8.30% पर पहुंच चुकी है। इसमें ईंधन की महंगाई 1% से बढ़कर 24.71% तक है, कंज्यूमर आर्टिकल 3.39% से बढ़कर 4.62%, खाद्य महंगाई 1.85% से बढ़कर 2.31%, प्राइमरी आर्टिकल 6.36% से बढ़कर 9.17% तक रहे तो और, अब तो जानकार आगाह कर रहे हैं अच्छे दिन में बचा लो वरना आने वाला है दुर्दिन। संकट दोधारी तलवार वाली है, एक तो तेल गैस की महंगाई, ऊपर से तेल गैस की सप्लाई पर आफत, क्योंकि अब तो ईरान झंडा देखकर भी हमला करने लगा। हॉर्मुज से गुजर रहे भारत के झंडे वाले एक मर्केंडाइज शिप को ईरान ने हमला करके समंदर में ही दफन कर दिया। गनीमत रही कि 14 भारतीय क्रू ने किसी तरह अपनी जान बचाई। ऐसी सूरत में भारत को खाड़ी से कितना तेल गैस कैसे मिल पाएगा, ये संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विपक्षी चाहे जो कहें, लेकिन पीएम मोदी ने आने वाले संकट को देखते हुए जो अपील देशवासियों से की है, अंदाजा देश की जेंजी तक को है। देश की जनता ईरान की जंग की शुरुआत से किफायत करने को मजबूर है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी दफ्तरों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम और 50% बैठकें होंगी ऑनलाइन, 1 साल तक विदेश नहीं जाएंगे मंत्री और अफसर। गृहमंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी से भी हो सकती है मुलाकात, यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहला दिल्ली दौरा। सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं वीडी सतीशन, 10 दिन बाद कांग्रेस ने चुना अपना मुख्यमंत्री, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाई नाम पर मुहर। नीट मामले में सीबीआई का एक्शन तेज, राजस्थान में आरोपी दिनेश और मांगीलाल के घर पर दबिश, लातूर में भी पहुंची टीम, दिल्ली की अदालत में 5 आरोपियों की पेशी। और चाइना में ट्रंप और शी जिनपिंग में ईरान युद्ध पर बात, हॉर्मूज खोलने को लेकर भी दोनों नेताओं में सहमति, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा हमारी मुलाकात बेहद सकारात्मक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बजट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 मंत्रों पर कम से कम बीजेपी शासित राज्य इस वक्त चल पड़े हैं। एक एक कर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिशों के तहत कुछ ऐलान करते दिख रहे हैं। आज मैं शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के मुख्यमंत्रियों की तस्वीरों से करना चाहती हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बचत के लिए कुछ बड़े कदमों का ऐलान किया है, लेकिन उसके पहले उनके काफिले की कार्स की कटौती की तस्वीर देख लीजिए। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज मुंबई में अपने घर से विधानसभा और फिर मंत्रालय में कैबिनेट बैठक के लिए बाइक पर सवार होकर पहुंचे। तो दोनों ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ काफिला छोटा हुआ है रेखा गुप्ता का, मुख्यमंत्री दिल्ली, तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक राजधानी मुंबई में आप सोचिए कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज बाइक से निकल पड़े। अब मैं आपको दे रेखा सरकार के आज के फैसले को बताना चाहती हूं। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा फैसला यह है कि सरकारी कर्मचारी अब हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली सरकार ने अधिकारियों की पेट्रोल लिमिट 200 लीटर से 20% कम कर दी है। इसके अलावा दिल्ली में एक दिन मेट्रो डे बनेगा, ये नो व्हीकल डे होगा। 29 सरकारी कॉलोनीज में 58 स्पेशल बसेस चलेंगी। सरकार की 50% मीटिंग ऑनलाइन होंगी। मंत्री 1 साल विदेश यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। दिल्ली के सरकारी और एमसीडी दफ्तरों का समय भी बदल गया है। तो दिल्ली में बड़े फैसले लिए गए हैं, बड़ा ऐलान हुआ है, सुनिए।
1: प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो नीचे तक पहुंचे, इसलिए एक प्रयास के रूप में इसको किया है।

0: से हम लोगों ने हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहां जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, बचाने का प्रयास हम करेंगे।
1: मिनिमम जरूरत जितनी है उतने व्हीकल हम लेकर के चलेंगे, ऐसा सबने किया है। और जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज हो पाएगा उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट करेंगे।
2: कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ दो गाड़ियों के काफिले में दिखे थे, तो आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से लेकर राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल जैसे मंत्रियों के काफिले में भी कटौती दिखी गई। तो काफिला छोटा हो रहा है, संदेश बड़ा देने की कोशिश है। पीएम की अपील पर बड़े नेताओं ने जो अमल की है उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो स्पीकर ओम बिरला हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने आज एक मिसाल पेश की, थावर चंद गहलोत भी आपको दिख रहे हैं, और देश के स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने भी अपने काफिले की कटौती की है। प्रधानमंत्री ने बचत की अपील की, उनका और सीनियर मंत्रियों का काफिला छोटा हुआ, तो कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री या तो छोटे काफिले में चल रहे हैं या फिर बस, ई रिक्शा, साइकिल अपनाते दिखे हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं चार जगहों की तस्वीर। सबसे पहली तस्वीर है नायब सिंह सैनी की, उधर सुरेश खन्ना मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की तस्वीर साइकिल पर निकले। वहीं आप अशोक चौधरी को देख रहे हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में, और थावरचंद गहलोत, इन सबकी हर राज्य बचत मंत्र को कैसे कामयाब करेगा उसी की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल हमने आपको बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का लंबा चौड़ा बड़ा काफिला दिखाया था, हालांकि आज उनके काफिले में कटौती नजर आई। और ये दो तस्वीरें हैं, कल की तस्वीर जिसमें गाड़ियों की गिनती खत्म नहीं हो रही थी, आज उनकी गाड़ियां पहले से बहुत कम कर दी गई हैं। हालांकि कल उन्होंने ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर उन्होंने ये दिखाया था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जरिए अब वो चल रहे हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बाद, ईवी के बाद आज काफिले में कटौती हुई है। आइए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ आज स्टूडियो में आए हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद किदवई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शरद पवार ने सर्वदलीय बैठक की मांग की है इस मुद्दे पर और दोहराई है अब ये। इससे पहले भी उन्होंने सर्वदलीय बैठक की मांग की थी और अब उन्होंने ये मांग दोहराई है, पीएम की अपील पर चर्चा हो। पीएम ने जो कहा है उसे गंभीरता से ले। सर्वदलीय बैठक की मांग है प्रेम शुक्ला जी, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मान लेते हैं आप लोग? इतना बड़ा फैसला अगर हो रहा है, देश में मिलकर चलना है, ऊर्जा का संरक्षण करना है, वैलिड रीजन है, तो एक बार बैठक कर लीजिए सबके साथ।
3: नहीं, कोई उनकी बात, उनकी मांग को किसी ने नकार तो दिया नहीं है अंजना जी। अब आदरणीय शरद पवार जी एक वरिष्ठ राजनेता हैं, उन्होंने मांग रखी है, सरकार की तरफ निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाएगा। सरकार ने पहले, सरकारी जो तंत्र है, जो हमारे मंत्री हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे विविध मुख्यमंत्री, हमने बचत मंत्र का क्रियान्वयन प्रारंभ किया है। हम विपक्ष को भी विश्वास में लेना चाहेंगे और विपक्ष के लोग भी बचत मंत्र के क्रियान्वयन में सार्थक सकारात्मक सहयोग करेंगे, ऐसी अपेक्षा रखेंगे।
2: अच्छा है, ठीक है, जल्दी आपसे मैं अखिलेश जी लूंगी। एक बार मंत्री दिल्ली सरकार के हमारे साथ जुड़े। सिरसा जी, आपने क्या कटौती की है, आपने कैसे प्रधानमंत्री के साथ अपील में क्या काम किया है, उस पर जरा हमारे दर्शकों को बताएं।
4: देखिए, हमने दोनों स्तर पर, अपने इंडिविजुअल तौर पर भी, मैं वैसे गवर्नमेंट का जेड प्रोटेक्टिव हूँ, तो सारे व्हीकल्स को हटाया, केवल अपनी एक जो हमारी ऑफिशियल कार है केवल उसी कार में ट्रेवल कर रहे हैं, और बाकी का टाइम जहाँ पे सभी मिनिस्टर्स को कहा गया है कि मेट्रो कितना कनेक्टिविटी है वहां से मेट्रो से कनेक्ट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे डिपार्टमेंट्स के माध्यम से भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक लेकर दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी कटौती की है। जिन ऑफिसर्स को 250 लीटर तेल मिलता है उनको 20% कम करके 200 पे ले आए हैं, जिनको 200 मिलता है उनको 160 पे ले आए हैं, जिनको 250 किलोमीटर की लिमिट है उनकी लिमिट को भी कम करके, एवरेज लिमिट को भी कम करके 20% कम करना होगा। सभी डिपार्टमेंट्स की नई परचेज गाड़ियों के ऊपर भी बैन लगा दिया, ई व्हीकल्स ही कभी ले जाएंगे, और साथ में ही जो वर्क टाइमिंग्स हैं उनको भी स्टेगर किया गया है ताकि कम से कम।
2: सिरसा जी, ये एमएलए को कितना पेट्रोल का खर्च मिलता है?
4: नहीं, उनको कोई नहीं मिलता अंजना जी, एमएलए को कुछ नहीं मिलता।
2: अच्छा, केवल मिनिस्टर्स को। हाँ, मंत्री को कितना मिलता है?
4: नहीं, मिनिस्टर्स को और चीफ मिनिस्टर्स को जितनी उनकी सरकारी गाड़ी होती है उसका तेल मिलता है, उसमें किलोमीटर नहीं होता। और जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर कुछ कैटेगरी में एग्जेम्प्टेड होता है, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, कुछ जो पावर, बाकी सबके ऊपर एक अपर कैप होती है। और इसी के साथ सेक्रेटरिएट के अंदर भी पावर की कंजम्पशन कम हो, उसके लिए एसी को भी 24 डिग्री पर रखा जाए, लाइटिंग के भी टोटल ऑटो लाइटिंग किया जाए, सेंसर बेस्ड किया जाए, मैनुअल स्विच लगाए जाए। तो काफी सरकार ने आज इसके ऊपर चर्चा करके बड़े बड़े कदम उठाए हैं, जिससे मुझे लगता है कि बहुत हमारा आज का मंत्र वही था जो प्रधानमंत्री जी ने दिया। एक तो फ्यूल कम करना है, ऑन एक्सचेंज जहां जहां यूज हो रही है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में चाहे गाड़ी, उसको भी कम करना है। तो इसके ऊपर सरकार ने आज पुख्ता लिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले अपने काफिला में कटौती करते हो, क्योंकि वो जेड प्रोटेक्टी हैं और हाँ। मुख्यमंत्री भी हैं, वो खुद भी इलेक्ट्रिक कार में ट्रेवल कर रही हैं, उनकी दूसरी कार भी इलेक्ट्रिक है, उनकी सीआरपीएफ की जो गाड़ी है वो जो है वो बायोफ्यूल पर है, उसके अलावा वो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां ट्रेवल कर रही हैं, और उन्होंने भी अपने काफिले के अंदर लगभग 75% की कटौती की है।
2: लेकिन सिरसा जी जानते हैं, मुझे जितने भी रिएक्शन आम लोगों से मिल रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं, अरे अभी आप लोगों का कैमरा है ना पीछे पीछे, तब वो एक एक दो दो गाड़ी में चल रहे हैं, बाद में वही जस का तस होना है। तो ऐसा नहीं, तो नहीं कैमरा आप लोगों के पीछे लगा के ही रखना पड़ेगा।
4: नहीं नहीं, ठीक है अंजना जी, लोगों का भी विश्वास भी जीतना है। ये बात आपने ठीक की कि अगर उनके मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो उनका भी जवाब सरकार को ही देना है। हम निश्चित तौर पर इसको तय करेंगे कि जो सरकार ने फैसले लिए हैं वो परमानेंट लागू हो, वो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है उसके अनुकूल लागू हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मंत्री आज दिखाने के लिए तो दो गाड़ी, चार गाड़ियों की एक गाड़ी करे या अपनी सुरक्षा को हटा दे, लेकिन उसके बाद हमारी, यही जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसके ऊपर सारे मंत्रालय भी और सारी सरकार भी बहुत निष्ठा से और ईमानदारी से काम करेगी।
2: अच्छा, ये जो अब दो नियम है उस पर जल्दी से आ जाते हैं, एक बार दिखा दीजिए कि वर्क फ्रॉम होम 2 दिन और 1 दिन मेट्रो मेट्रो डे बना रहे हैं,
4: मंडे मेट्रो डे।
2: हाँ, तो इतने लोग मेट्रो से सफर करेंगे, आपको नहीं लग रहा है जिस तरह की आबादी है दिल्ली की और जो मेट्रोज है उन पर ज्यादा दबाव बनेगा अगर 1 दिन फिक्स करेंगे तो?
4: हाँ नहीं अंजना जी, हमने ऐसे तय किया है, हम सरकारी लोग जो हैं, मंत्री और सरकार जो है वो मंडे मेट्रो को यूज करेगी, और बाकी लोगों को हमने ये आग्रह किया है पब्लिक के ऊपर, उनके विवेक पे छोड़ा है कि हफ्ते में 1 दिन वो भी अपनी गाड़ी को त्यागें, किस दिन वो अपनी गाड़ी को त्याग सकते हैं वो तय करें, लेकिन 1 दिन वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें, ऐसा हमने दिल्ली के लोगों को आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने।
2: अब एक आखिरी चलते चलते हम आपसे आग्रह कर देते हैं कि दिल्ली के पेवमेंट्स को ऐसा बना दीजिए कि उस पर लोग चल पाए, दिल्ली में कोई व्यवस्था कर दीजिए कि जो बड़ी बड़ी बसें दाएं बाएं लेन चेंज करती हैं उनसे बचकर लोग साइकिल पर चलने की हिम्मत दिखा सके, या एक डेडिकेटेड साइकिल लेन बनाए। तो ऐसा कुछ आप करेंगे तभी ट्रू सेंस में ये कारगर होगा, वरना अभी तो अपील के तौर पर ही रह जाएगा। और हाँ, ये तो जरूर पहल हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें।
4: अंजना जी देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा ये भी जरूरी है। आपने जैसे कहा कि अगर हमने दिल्ली के अंदर पेडेस्ट्रियंस को और साइकिल्स को प्रमोट करना है तो अच्छी साइकिल लेन्स भी बनानी है, हम इसके ऊपर भी काम करेंगे। लेकिन आज की जो शुरुआत एक करी गई है और जिस तरह से हमारी, हमने आगे भी, हमने खाली लोगों को काटने को ही नहीं कहा, हमने अपने अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे जितने हैं उनको भी कहा कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएंगे तो आपको जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पैसे देते हैं उसमें 10% और इजाफा करेंगे अगर आप इलेक्ट्रिक, अगर आप मेट्रो से या बसेस से आएंगे। हमने सारी सरकारी दफ्तर में जहां पे रेजिडेंट्स रहते हैं, बड़ी कॉलोनियां हैं, 26 ऐसी, जब भी 26 कॉलोनियों के अंदर भी हमने बसेस का इंतजाम किया है। हमारी कोशिश है, देखिए अंजना जी, अगर आप जैसे इतना बड़ा एंकर हैं और इतना टाइम हमारे पे लगा रहे हैं तो इसका पर्पस आपका भी यही है कि देश में जो आज चुनौती हमारे सामने खड़ी है हम सब उसको मिलकर उसका निजात करें और उसमें साथ दें प्रधानमंत्री जी का। तो हमारा भी यही मकसद है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप हमारी आवाज दिल्ली के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, देश के लोगों तक, इससे जरूर बदलाव आएगा और एक एक करके बदलाव आता है, छोटी छोटी चीजों से ही बड़े बड़े बदलाव आते हैं।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनजिंदर सिंह सिरसा साहब आज तक पर जुड़ने के लिए और सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। अब अखिलेश जी उनकी बातों का भी जवाब दीजिए। अब 4 मई के बाद इन्होंने, इलेक्शन रिजल्ट के बाद ये ऐलान किया है, इसलिए हम सहयोग नहीं करेंगे, सर्वदलीय बैठक नहीं मिला रहे इसलिए सहयोग नहीं करेंगे, इसका विरोध करेंगे, या सहयोग करना चाहिए क्योंकि जो ऊर्जा संकट सामने मुंबई खड़ी है यह भी मुमकिन है कि 6 महीना 1 साल तक ठीक ना हो और खराब स्थिति पैदा हो।
5: देखिए आज जो ये संकट आया है या अभी तक जितने भी देश में संकट आए हैं वो माननीय मोदी जी के द्वारा लाए हुए संकट है।
2: अच्छा,
5: कई महीने पहले इस संकट के लिए भी राहुल जी ने सदन के अंदर सदन के बाहर आगाह किया था कि पश्चिम एशिया का संकट आ रहा है और इससे निपटने के लिए एक तैयारी हो जाए। मजाक किया था थोड़े से पार्लियामेंट में एक लाइन बोल करके कि कोविड काल में जैसे हमने निपटारा किया है उसी तरह इस युद्ध का लंबा चलेगा उसके प्रभाव से भी हम मिलकर लड़के ले लेंगे। चुनाव तक तो आपको कुछ याद नहीं आया या आप उस पर ध्यान नहीं दिए, चुनाव के बाद आपको अचानक लगा कि अब ये करना चाहिए। ये काम ये संकट तो चुनाव के पहले से शुरू हुआ है। चुनाव के समय आप क्यों नहीं गंभीर थे, आपकी गंभीरता कहाँ गई? और जब आप कंप्रोमाइज पीएम हो जाएंगे, जब आपकी नीतियां निर्धारित करेगा अमेरिका, वो कहेगा रूस से तेल मत लो, संबंध मत रखो, ईरान से मत रखो, तमाम तरह के आपको रोक लगाएगा वो, तो आपको समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा। और उसके बावजूद आप विपक्ष के नेता की या और लोगों की बात नहीं सुनते हैं कि ये समस्या आने वाली है, क्योंकि आप में अहंकार इतना है कि अपने से ज्यादा ज्ञानी विज्ञानी किसी को समझते नहीं है, हम खुद सब कुछ निपट लेंगे। अरे भाई, जो सही बात कोई भी कह रहा है उसका अनुसरण करो। हर कोई तो राहुल जी या विपक्ष या और भी जागरूक नेता आपको देश की समस्याओं से आगाह तो करते हैं, आपको उस पर नीतियां बनाना है, उसके लिए तैयारी करना है। आप बोले कि मोदी जी कह रहे हैं विपक्ष साथ नहीं दे रहा, अरे विपक्ष तो कितना कुछ कह चुका, मोदी जी का भी साथ दिए, साथ मोदी जी दिए होते हैं तो आज ये हालत नहीं आती। और दिखावा कर रहे हो आप लोग,
2: जैसे किस चीज में,
5: इसी पे बोला था मोदी जी से विपक्ष ने कहा आप राहुल जी शुरू से आप जीएसटी से लेकर के कोरोना से लेकर के पाकिस्तान चीन संबंध से लेकर हर बात पर राहुल जी ने चेतावनी दी थी कि ऐसा होने वाला है, आप सतर्क हो जाइए। विपक्ष किसी भी विपक्ष के किसी केस नेता का सुझाव आप नहीं मानेंगे, और आप लोग और बीजेपी के नेता ये कहेंगे कि सरकार का साथ नहीं दे रहे, सरकार का सुझाव नहीं मान रहे।
2: राहुल जी ने पहले सुझाव दिया था तो उस पर क्यों नहीं अमल किया गया?
6: राहुल जी ने सकारात्मक सुझाव दिया होता तो अमल होता, ऐसा कोई सुझाव वास्तविक में आया नहीं। ये कह रहे चुनाव, चलिए आपकी बात एक मान ही लेते हैं कि चुनाव, अभी देश में संकट काल है, आपका स्टैंड क्या है? क्या आप इस अपील के साथ हैं या खिलाफ हैं, स्पष्ट करिए। देश में विपक्ष की पार्टियां हैं, आप बताइए कि इस अपील के खिलाफ हैं? तेल फूकेंगे आप, सोना खरीदेंगे आप,
5: ये चुप है तो मैंने बोला,
6: जैविक खाद पर आप ध्यान नहीं देंगे, आपकी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि आज ही आपके विदेश यात्रा के जो मेहमान विदेश घूमते उनका पूरा लिस्ट आया है, 55 करोड़ की विदेश यात्रा है कि 60 करोड़ की, उतनी कमाई नहीं है, आमदनी 98 और खर्चा करोड़ों। तो विदेश यात्रा भी, ये चुनाव के दिन भी वहीं थे जब गिनती हो रही थी, विदेश में थे।
2: जो आरोप है, दिखा दीजिए।
6: एक सवाल बहुत स्पष्ट है, प्रधानमंत्री महोदय, या वह वैश्विक पटल पर कोई घटनाक्रम घटा, शांति वार्ता शुरुआत हुई, संभव था कि शांति बहाल हो जाती, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाता। अब वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे चल रहा है, कोई रास्ता उसका नहीं निकल रहा है। ठीक है, हमारे पास भंडारण है तो थोड़ा बचा भी तो लें। अगर बचाने में विपक्ष के पेट में इतना मरोड़ दर्द क्यों पैदा हो रहा है पता नहीं। आप प्रधानमंत्री महोदय को कॉम्प्रोमाइज्ड बोल रहे हैं, जबकि वो ये चाह रहे हैं कि देश किसी कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में ना खड़ा हो। क्यों? क्योंकि हमें बचत करना है। किस चीज पर? सोना पर। थोड़ा आप भी तो अपील करते थे सोना नहीं खरीदो, शास्त्री जी ने तो देश को उपवास तक रखने की सलाह दी और देश ने माना, और समाजवादी के बड़े नेता उसमें राम मनोहर लोहिया ने आगे बढ़कर समर्थन दिया, लेफ्ट ने विरोध किया था उसका, यह बात स्पष्ट है। सवाल है कि जब देश में कोई ऐसी स्थिति संभावित हो और देश का प्रधानमंत्री देश के नागरिकों से एक छोटी सी अपील मात्र करे तो आप कॉम्प्रोमाइज पर पहुंच जाते हैं। क्या कॉम्प्रोमाइज है भाई? नरेंद्र मोदी जी ने 50% टैरिफ के सामने क्या झुके थे? क्या वो नहीं झुके ना? तो क्या कॉम्प्रोमाइज है? ये आपका आरोप बेबुनियाद बिना सिर पैर का है। अभी कांग्रेस पार्टी के पास देशभक्ति दिखाने का, साबित करने का, दिल बड़ा करने का, सकारात्मक विपक्ष बनने का सबसे बड़ा मौका है कि राहुल गांधी साइकिल पे शुरू हो जाए। समाजवादी पार्टी का तो चुनाव चिन्ह साइकिल है, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है, पूरे यूपी घूम सकते हैं साइकिल से।
2: अनुराग जी,
6: मौका मिला है।
2: अनुराग जी, मैं जवाब लूंगी उससे पहले एक बार, और चूंकि राहुल गांधी का आज पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने किया तो जरा इस पर भी एक अखिलेश जी जवाब ले लेते हैं, क्योंकि 54 यात्राएं बीजेपी का जो आरोप है, 54 यात्राएं उन्होंने की है, 11 देश वो गए हैं यूरोप अमेरिका एशिया में, और 60 करोड़ उनके आधा, ये बीजेपी का है, ये बीजेपी का डेटा है जो हम बता रहे हैं, जिस पर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमने जब इसकी रिसर्च की हमें ऑनलाइन कहीं नहीं मिला है। उनका कहना है बॉटम अप मॉडल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट से 60 करोड़ खर्च हुआ है, घोषित आय 11 करोड़ है। ऐसे में वो कह रहे हैं कि अगर विदेश से ये फंड हुआ है तो एफसीआरए में अनुमति क्यों नहीं है, और अगर खुद फंड किया है तो इतना पैसा कहां से?
5: अंजना जी आप पूछ रही हैं, हमें आप पे भी बड़ा अजीब सा तरस आ रहा है, हम मत लीजिएगा क्योंकि मैं मैं बहुत जीडियस हूं, हम इनको हल्के में नहीं लेते। देखिए अंजना जी, बीजेपी मूर्खता की महानता में विश्वास रखती है।
2: अरे जो उनका आरोप है उसमें जवाब नहीं है कि नहीं आपसे।
5: बीजेपी की
2: मूर्खता, तो फिर क्या कौन दया कौन सी बात की आ रही है?
5: दया इस बात की आ रही है कि मेंबर पार्लियामेंट है। सुनिए, वो मेंबर पार्लियामेंट है, वो जब आरोप क्यों लगा रहे हैं, वो जो भी मेंबर पार्लियामेंट
2: का आरोप लगाते हैं उस पर सवाल पूछते हैं कि नहीं बीजेपी से?
5: जो भी जाता है वो उसकी सूचना लोकसभा को होती है, उसकी सूचना गृह मंत्रालय को होती है, एक प्रोटोकॉल है सांसद के विदेश दौरे का। और ये इस तरह के आरोप लगाने से बेहतर है कि वो अपने सचिवालय से पूछ लें, अपने पार्लियामेंट में आके खुद पूछ लें।
2: अच्छा ठीक
5: है, जो भी मेंबर पार्लियामेंट,
2: आप जब पीएम पर आरोप लगाते हैं, एक सेकंड, हर दिन की बहस इसी बात पर होती है कि विपक्ष आज पीएम पर ये आरोप लगा रहा है, आज भी इसी बात पर हो रही है, तो बीजेपी से पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो दया आ रही है, अपनी दया को पोटली में बांधिए, घर ले जाइए और बेहतर भाषा में बात कीजिए स्टूडियो
5: में।
2: जो सवाल है वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए।
5: प्रधानमंत्री जी, जब दो
2: अपनी दया अपने घर ले जाइए,
5: ये क्राइसिस जब 3 महीना पहले आई उनके नियत में इसीलिए खोट देखा जा रहा, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये समस्याओं को निपटने का समय अभी है और हमें अभी इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए? जब विपक्ष ने कहा हम तैयारी करेंगे, विपक्ष हमेशा कहता रहा है, हर मुद्दे पर कहता रहा है, जब कश्मीर का हादसा हुआ था, हमारे नागरिक मारे गए थे, तो भी विपक्ष ने, राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा, आर पार्टी मीट बुलाई, सब साथ गए, मोदी जी नहीं आए। उसके बाद जब दोबारा मीटिंग हुई तो भी मोदी जी नहीं आए, प्रचार करने चले गए। विपक्ष ने तो हर मुद्दे पे, हर कदम पे इस सरकार का साथ दिया है और साथ देता रहा है। देश का जहां भी मुद्दा आएगा विपक्ष हमेशा देश के साथ खड़ा है, लेकिन जब नियत सरकार की खोटी हो, आप चुनाव लड़ते रहे तब आपको नहीं याद आया? गाड़ियों में, रैलियों में भीड़ हो रही है, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन था, कितनी गाड़ियां, कितने बसें लगी थी, तब याद आपको नहीं आया?
2: ठीक है अनुराग भदौरिया जी, अनुराग
5: भदौरिया,
2: आप लाइन पर आए, अब लाइन पर आए, अब लाइन पर आए,
5: हम लाइन पर शुरू से हैं।
2: ऐसे बात सहमत किया कीजिए अखिलेश जी,
5: आप देखिए
2: गलत बात यह है। पहला प्रश्न क्या था कि 4 मई आया, 4 मई पर प्रश्न किसने किया?
5: किसी से?
2: मैंने प्रश्न किया
5: कि प्रोसीजर सबको पता है,
2: प्रोसीजर पता है, फिर भी अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो आपसे जवाब लिया जाएगा। आप लोग कोई कवच लगाकर नहीं घूमते हैं कि आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा? अरे कोई नहीं है, बीजेपी है, सत्ताधारी पार्टी है, आप लगा रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं ना कि चुनाव खत्म हुआ और आपने ऐलान किया? नहीं नहीं, गलत बात है अनुराग जी, अनुराग जी, अरे आप अपना कान अपना कौवा संभालिए अखिलेश जी, चिल्ला चिल्ले मत कीजिए यहाँ पे,
5: हमें आरोप लगाने पे कोई आपत्ति नहीं है।
2: तो सवाल पूछा जाएगा, इतना भड़कते का है, सवाल पूछा जाए जवाब दीजिए। आप ना बोलने लगे दया, काहे बोलिएगा?
5: क्यों नहीं,
2: आपसे अपमानित होने के लिए नहीं बिठाया आपको स्टूडियो में? बुला
5: कर रहा है भाई आपको,
2: सम्मानजनक भाषा में बात कीजिए, आप लोगों को आदत होगी इस तरह की भाषा की, मुझे नहीं है। अनुराग जी, आज सवाल ये है कि फॉरेक्स है, विदेशी मुद्रा भंडार, लिमिटेड डॉलर है देश के पास, और जो व्यवस्था दिख रही है इस वक्त विश्व की, ऐसा लग रहा नहीं है कि कुछ दिनों के अंदर, महीने के अंदर सुलझ जाएगा। तो मेरा सवाल आपसे यह है, दिखाते हुए कि इस विदेशी मुद्रा भंडार से जो अभी लगभग 690.693 अरब डॉलर है, ऐसा नहीं है कि पैनिक स्थिति है, इसे 640, 620 तक भी पहले गया है, तो अभी अर्थव्यवस्था ठीक स्थिति में है, फॉरेन रिजर्व है, लेकिन इससे हम क्या क्या खरीदते हैं? कच्चा तेल, खाद, सोना, खाने का तेल। अब पीएम कह रहे हैं क्योंकि कच्चा तेल इंपॉर्टेंट है, उसके बिना देश चलेगा नहीं, पहिए नहीं रुक सकते हैं, खाद किसानों पर बोझ नहीं डाला जा सकता है ज्यादा, सोना से अगर एक साल लोग बचें तो देश का भला होगा, खाने के तेल में थोड़ी कटौती करें तो बचत होगा, तो क्यों नहीं आप लोग भी साइकिल पे चल रहे हैं? सत्यप्रकाश मिश्रा जी पूछ रहे हैं, आपका तो चुनाव चिन्ह है।
7: देखिए सवाल यह है कि उसमें बीजेपी के कुछ नेता बहुत समझदार हैं, कुछ लोग तो दो गाड़ी एक गाड़ी पे चल रहे हैं, कायदे से साइकिल पे चलना चाहिए, ये बात सुरेश खन्ना जी समझ गए उत्तर प्रदेश के, उन्हें पता है साइकिल ही सहारा है, इसी से चलेंगे तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा और प्रदेश का स्वास्थ्य भी सही रहेगा, इसलिए सिर्फ सुरेश खन्ना जी समझ पाए और बीजेपी का कोई नेता समझ नहीं पाया है। दूसरी बात ये बताइए कि जब ये 2014 के बाद से सरकारी कंपनियों की जो हिस्सेदारी बेच रहे थे तब कौन सी आफत इस पे आई थी, कौन सी आपदा थी? एनटीपीसी की हिस्सेदारी बेची थी, गेल की हिस्सेदारी बेची थी, एलआईसी की बेची थी, आईआरसीटीसी की बेची थी, कोल इंडिया की बेची थी, उसमें कौन सा देश पे आफत आई थी कि 5.5 लाख करोड़ रुपए में ये बेच दी गई थी और फिर उसका क्या इस्तेमाल हुआ था? इसका तो जवाब देना चाहिए ना। नोटबंदी आ गई तो देश में कौन सी आफत थी जो आधी रात को नोटबंदी की गई थी? कौन सी आफत देश पे आ गई थी? आधी रात को लॉकडाउन कर दिया गया था, कौन सी आफत आ गई थी? ये सब आफत तो बुलाई गई थी, आई कहां थी? भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है, वो आफत बुलाती है, आती आती नहीं है। एक बात, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा था, जो हेलीकॉप्टर में ईंधन खर्च हो रहा था, जो जहाज में रैली में जो खर्च हो रहे थे, काफिलों पे खर्च हो रहा था, तो तब चिंता नहीं आई थी भारतीय जनता पार्टी को? चिंता होनी चाहिए थी ना कि भाई ईरान का युद्ध चल रहा है, हमें ये दिक्कतें 2 महीने बाद आ सकती हैं, हमें कम वर्चुअल रैली कर लेनी चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती थी ना। लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई क्योंकि उसको सत्ता प्यारी थी, सत्ता पे काबिज होना था, देश की चिंता नहीं थी। देश की चिंता कब आई? जब चुनाव जीत लिया, मुख्यमंत्री को शपथ दे दिया, उसके बाद देश की चिंता याद आई। और आप कह रहे थे कंपनियों की बात, बिल्कुल सही कह रहा हूं। 2015 में जब $52 प्रति बैरल था, तब ₹61 पेट्रोल यहां पे पेट्रोल डीजल था। 2016 में $44 यहाँ पे डॉलर बैरल था, तब कितना था? 62। तब तो आपने कम नहीं किया, कम कर देते, जनता को तो फायदा आपने नहीं पहुंचाया। लेकिन जब 2020 में सबसे कम स्तर पे था, ₹42 था, तब ₹81 आपने डीजल पेट्रोल कर दिया था, जनता को तो फायदा नहीं पहुंचाया था ना, कंपनियों का फायदा पहुंचाया था। 2021 में 25 में 24 में 77 रहा, 78 रहा, 80 रहा, और यहाँ पे डॉलर यहाँ पे हमारा पेट्रोल कितना गया? ₹95, ₹100। आज रुपए के मुकाबले डॉलर ₹95 है, सोचिए हमारा स्तर कितना गिर चुका है। लेकिन इस पे बात नहीं करेंगे, इस पे एक बार नहीं बोलेंगे। सवाल उठता है कि हम तो तैयार है मदद करने के लिए, विपक्ष हमेशा तैयार रहता है राष्ट्र के लिए। आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, विपक्ष ने कहा मैं कंधे से कंधा मिलाऊंगा, आपके साथ खड़ा हूं।
2: ठीक है,
7: आप पाकिस्तान से कोई बात मत कीजिए, लेकिन आपके आरएसएस के एक लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से वार्ता करनी चाहिए।
2: शुक्ला जी जवाब दीजिए, शुक्ला जी जवाब दीजिए। सबसे ज्यादा आपत्ति इसी बात को लेकर है कि आप जब तक रिजल्ट नहीं आया, जब तक चुनाव नहीं हुआ, तब तक तो आप लोगों ने इसको एकदम अंडर कवर रखा, और जैसे रिजल्ट आया उसके बाद जनता से ये कहने लगे, तो आप सतर्क क्यों नहीं हुए? युद्ध शुरू हुआ उसके बाद अनेकों देशों ने न सिर्फ अपनी कीमतें बढ़ाई पेट्रोल डीजल की, बल्कि थाईलैंड जैसे देश में कहा गया कि हाफ स्लीव के कपड़े पहनो, एसी कई देशों में फिक्स कर दिया गया कि आप 24 से नीचे नहीं कर सकते हैं। आपने पहले कदम क्यों नहीं उठाया, जैसे रिजल्ट आया उसके बाद एक्शन में आए?
3: जी अंजना जी, देखिए आपने इतना पूछने के बाद भी आदरणीय अनुराग भदौरिया जी साइकिल पर चलने के लिए तैयार नहीं है, यानी उनको बचत मंत्र में किसी प्रकार का विश्वास नहीं है, यानी उनको सत्ताधारी दल द्वारा जो बचत मंत्र दिया जा रहा है उसमें उनका विश्वास बिल्कुल नहीं है। और श्रीमान अखिलेश प्रताप सिंह, ये जो है, जैसे ही आपने राहुल गांधी का प्रश्न पूछा, आपकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि भाई विदेश यात्राओं पर 60 करोड़ की बेहिसाबी धन श्रीमान राहुल गांधी क्यों खर्च कर रहे हैं। 60 करोड़ का हिसाब दीजिए ना, अगर आपके पास हिसाब है तो एफसीआरए का आप जो है घोषणा कर दीजिए कि एफसीआरए में हमने जो विदेशी संस्थाओं द्वारा जो हमको प्रायोजित किया गया उसका एफसीआरए, हमने इंडिविजुअल जो खर्च किया उसका ये आयकर रिटर्न हमारा है, हमारी पार्टी ने जो खर्च किया वो हमने इलेक्शन कमीशन को जो सूचना दी है वो ये विवरण है। आप विवरण देने के लिए तैयार नहीं है, प्रश्न पूछने वाले पर किसी प्रकार का दबाव बनाना है, लेकिन श्रीमान राहुल गांधी की अघोषित विदेश यात्राएं जाने दीजिए। जो सीआरपीएफ ने श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे को बाकायदा पत्र लिखकर 6 विदेश की अघोषित यात्राओं के बारे में उनको सूचना दी थी, जिसको आज तक नहीं बता पाए कि अघोषित यात्राएं क्यों थी, सीआरपीएफ को बिना सूचित किए श्रीमान राहुल गांधी अघोषित यात्राएं क्यों कर रहे थे। अभी 7वीं अघोषित यात्रा उनकी मस्कट की थी, ये भी जो है कोई घोषित यात्रा नहीं थी। जो 54 घोषित यात्राएं हैं उसके 60 करोड़ रुपए के जो आपके खर्च है वो खर्च साहब आपने क्यों किए, कहां से किए, कौन आपका स्पॉन्सर है, आप कहां से कॉम्प्रोमाइज रहे? आप एफसीआरए की जब सूचना नहीं दे रहे हैं तो इसका निश्चित मतलब है कि आप कॉम्प्रोमाइज रहे, तो कॉम्प्रोमाइज अपोजिशन लीडर जो है उसके बारे में प्रश्न मत पूछिए। वो प्रश्न पूछ लेंगे तो वो जो है एंकर पर जो है उल्टा बरस पड़ेंगे।
2: चलिए
3: लेकिन उत्तर नहीं देंगे। और श्रीमान अनुराग भदौरिया कृपा करके बताइए ना,
2: इसके बाद एक बार ये बोलने फिर आ रही हूँ अनुराग जी, फिर साइकिल वाली बात होगी, साइकिल या घोड़ा जो भी।
5: अंजना जी, ये बीजेपी के लोग व्हाट्सएप ज्ञान से बाहर नहीं जाना चाहते। सबको पता है कि कोई भी सांसद एलओपी किसी भी विदेश दौरे पे जाते हैं तो उनके सचिवालय, लोकसभा सचिवालय और गृह मंत्रालय को बकायदा पूरी डिटेल देनी पड़ती है। यहाँ तक कि टिकट कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन बुला रहा है, कहाँ रुक रहे हैं, सब की डिटेलिंग देनी पड़ती है। इसके बावजूद भी यदि आपको आपत्ति है तो आपकी सरकार है जनाब, आप सचिवालय से पूछ लें, अपने लोकसभा सचिवालय से आप लोकसभा में सवाल करके पूछ लें।
3: नहीं दी गई है, अरे डिटेल नहीं दिया है।
5: ये बिना उसके कुछ जा ही नहीं सकता शुक्ला जी, ये अपने फिर वही अपने अपने चलिए आपका ज्ञान हम आपके आपका ज्ञान आपके पास खैर देखिए
3: सामने रख दीजिए ना,
5: वो मैंने रख दिया। क्या नियम है, आपको आपत्ति हो तो लोकसभा में पूछ लें,
3: कहाँ रख दिया
5: और नियम पूछ लें, लोकसभा में पूछ लें कि क्यों गए, कहाँ गए, पूछ लीजिए। जाता क्या है
3: आज सीआरपीएफ
5: भाई, या तो मुझे मैंने आपके बीच में नहीं बोला था शुक्ला जी,
2: शुक्ला जी
5: देखिये अंजना जी, बात दरअसल में ये है कि आप कोई चीज अगर जनता से या किसी से कह रहे हैं तो आपकी नेक नियति देखी जाती है। आप बार बार विपक्ष को घेरते हैं आदरणीय मोदी जी, विपक्ष के किसी भी सुझाव पे आप यदि अमल कर लिए होते तो वो समस्या आने से रुक गई होती या उससे मुकाबला हम ठीक ठाक कर लिए होते। लेकिन आप सुझावों को न मांग करके, जब आप याद करिएगा अंजना जी, जब राहुल जी ने कहा कोरोना आने वाला है तो एक इनके मिनिस्टर थे अब नहीं है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि राहुल जी पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, सिर्फ ये कहा था कि ये इसकी दस्तक हो चुकी है, ये आएगा हमारी इकोनॉमी को भी खराब करेगा, इसके लिए हम अभी से रक्षात्मक सुरक्षात्मक तैयारियां कर रहे हैं। जावड़ेकर जी और लीडर बीजेपी के बोलने लगे, जितने एक एक करके मैं गिना सकता हूं। आप सुझाव तो अमल करिए, आप सिर्फ चाहते हैं कि जो आप कहें विपक्ष करे, विपक्ष देश के हर मुद्दे पर साथ रहता है, लेकिन आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई सुझाव आ रहा है तो उस सुझाव पे अमल करें, उसको नापें, तौलें, समझें, उस पर कार्रवाई करें। अल्टीमेट देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियम कानून या नीतियां बनाने का अधिकार आपको मिला हुआ है, तो आप नहीं अगर सुनेंगे तो फिर ये समस्याएं आती रहेंगी, इसीलिए समस्याएं आ रही है।
2: ये आरोप तो बार बार उन लगता है ना सत्य प्रकाश मिश्रा जी की, आप विपक्ष के नेताओं को उनका कॉन्फिडेंस लेकर क्यों नहीं फैसले लेते हैं, भाई ये तो देश से जुड़ी हुई बात है ना।
6: विपक्ष के नेता का कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस है नहीं बचा हुआ। ये कह रहे हैं ना कि सलाह देते रहे, पांच पूछ लूंगा तो सलाह मिलेगा नहीं आपको, आपसे व्यक्तिगत कहा होगा, हो सकता है मुझे नहीं मालूम। एक पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने देश से अपील की है, अगर उसमें विपक्ष नकारात्मक भूमिका निभाना चाहता है कोई बात नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सांसद विदेश जाते हैं तो नियम है कि जानकारी देनी चाहिए, हो सकता है उन नियमों का उल्लंघन किया है राहुल गांधी जी ने, तब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी जानकारी दी है। आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए कि किसमें क्या सच्चाई है नहीं है। रही बात साइकिल, वो चलाएंगे उनके साइकिल को कांग्रेस के हाथ से पंक्चर कर दिया, बेचारे चलाएंगे कैसे। उन्होंने एक सवाल उठाया कि विनिवेश क्यों किया सरकारी कंपनियों का। रे अनुराग भदौरिया जी, राजस्व जुटाना पड़ता है और एक नियम है सेबी का कि सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में 25% हिस्सेदारी होगी सरकार की, तो बीच बीच में उस हिस्सेदारी को कम भी करते हैं। देश हित में लिया फैसला, यदि आपके पेट में दर्द उठता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि राजनीति आप किन मुद्दों पे करना चाहते हैं। अब चाहते हैं कि चुनाव के वक्त क्यों ना बोला, चलिए चुनाव के वक्त अगर बोल दिया गया होता, कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं होगा, कोई हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं होगा, एक नया सीयूफ आ जाता राहुल गांधी जी का कि सरकार ने तय कर लिया है कि अब हम लोग को चुनाव प्रचार में भी नहीं जाने देगी गाड़ियों से, तो ठीक है मान लेते हैं इस बात को। चलिए आप ही की बात सही है।
2: अनुराग जी आपको बताने वाले हैं कि वो अब साइकिल से चलेंगे या नहीं चलेंगे। अनुराग
6: साइकिल से चलते हैं, मैंने देखा है उनको सुबह सुबह चलते हैं, लेकिन राहुल गांधी भी चलते हैं, लेकिन सुबह सुबह कोई एक्सरसाइज वाली साइकिल होती है। एक सवाल बहुत बड़ा है अनुराग जी,
5: मैं अनुमति दे रहा हूं, क्राइसिस में ये सब चीजें क्यों नहीं, अगर चीजें हो सकती हैं तो हमेशा के लिए मोदी जी कर दें संकट की मंत्रालय या मंत्री या
2: प्रधान। बोलिए अनुराग जी, बोलिए बोलिए अनुराग जी, अनुराग जी बोलिए।
6: देखिए हमें ये करना है कि नहीं करना, इसकी जरूरत नहीं,
7: गलत बोल रहे,
6: आगे बढ़कर के प्रधानमंत्री से अपील,
7: गलत बोला,
6: थपा देना था, देश खड़ा हो जाता, इसमें दिक्कत क्या है? अभी आवाज आ रही है,
7: इसको बुला लिया आपने,
6: भंडारण है अनुराग जी,
7: अरे कोई पार्टी तो ज्वाइन कर लो प्रभु, इतना बोलते हो,
2: बोलने तो दो। दोनों आपके अति प्रिय लोग हैं,
7: अरे
2: रुक जाइए, रुक जाइए, अनुराग
6: जी आप बोलिए,
2: मिश्रा जी रुकिए, हां
7: बोलिए, बता रहे सवाल है, नहीं नहीं अरे नहीं, सवाल ये है कि वो गलत बोल गए, वो आपका नाम गलत बोल गए, उनको बोलना चाहिए था मुझे दया बीजेपी पे आ रही है, दया इसलिए आ रही है कि 22 लाख बच्चों का भविष्य अधर में टक गया, इनको चिंता विपक्ष के नेता की है, सोचो आप, जनता की चिंता नहीं है, विपक्ष का नेता क्या कर रहा है इसकी चिंता है, लेकिन 22 लाख बच्चे या पेरेंट्स को ऐड कर दो, 66 लाख के घर में खाना नहीं पका होगा, कैसे उनकी जिंदगी गुजरी होगी, एक एक साल तैयारी करता है ना बच्चा, मां बाप जगते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, कहां से पैसा लाएंगे दोबारा, कैसे खर्च करेंगे, उनको नींद नहीं आई होगी, ये जनता की बात थी इस, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पे कर रहे हो, विपक्ष के नेता पे, आपको करना चाहिए था नीट पे, और बताना चाहिए था कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी तकलीफ हाँ। पे आपके साथ खड़े हैं, आपकी ये मदद करेंगे, ये हम काम करेंगे, वो कुछ नहीं बताया।
2: अच्छा अनुराग जी, आईना दिखाने के लिए अखिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि इनको लड़ना बीजेपी से है, संस्थाओं से, इस देश की लड़ लड़ के कहां पर पहुंचे हुए हैं इतने साल बाद, वो सबको दिख रहा है, लड़ना उनको बीजेपी से है। अरे असल मुद्दा एक ग्राफिक्स दिखाना चाह रहे हैं भदौरिया जी, अनुराग से सुन लीजिए, थोड़ा अनुराग रखिए। अरे कुल मिलाकर देखिए, लड़ना बीजेपी से है, बीजेपी से लड़िए, उसको हराइए मैदान में। आज सवाल ये है कि बहुत सारी बातें इस पर हो रही हैं, लेकिन कैसे ये विश्व में एक संकट की स्थिति आ रही है, और जो जो इस पर आंख बंद करेगा वो खुद के लिए परेशानी को न्योता देगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दिखा दीजिए एक बार जो न्यूज की बात हो रही थी,
5: ये क्या है,
2: ये मुझे बताया जा रहा है पीआईबी फैक्ट चेक है, जिसमें अ पोस्ट इज गोइंग वायरल, फेक क्लेम सर्कुलेटिंग ऑनलाइन रिगार्डिंग पेट्रोल पंप्स बीइंग क्लोज्ड एवरी संडे इन सर्टेन स्टेट्स। तो देखिए इस तरह की जो बहुत सारी बातें, और सोशल मीडिया पर कई बार ये भी लगता है कि जितना सकारात्मक हो सकता है उससे ज्यादा अब नकारात्मक ही वो जगह बनकर रह गई है, क्योंकि ऐसा भ्रम फैलाना मतलब लोगों के साथ नाइंसाफी है सबसे ज्यादा। आप इससे सरकार को जितना टारगेट कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन उससे ज्यादा लोग हैं, क्योंकि फिर एक पैनिक फैलता है, लोग पेट्रोल पंप पे भागते हैं। ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया है जिसमें पेट्रोल पंप्स संडे को बंद रखे जाएंगे। दो दिन वर्क फ्रॉम होम दिल्ली में रखा गया है, एक दिन, और ये अधिकारियों के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए, और एक दिन मेट्रो, और आम लोगों से भी कहा गया है कि भी एक दिन आप मेट्रो के लिए अपना वक्त निकालें। अनुराग जी, दो लाइन में बात पूरी कीजिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास सीधा चलूंगे।
7: देखिए मैं तो वही चाह रहा था कि संबित पात्रा जी आए हैं, राष्ट्र की बात करेंगे, 45 लोगों की आंधी तूफान में आए, उनकी मौतें हो गई हैं, राष्ट्र के लोग थे, हिंदुस्तानी थे, सनातनी थे जो 45 में, लेकिन उनकी बात नहीं की, नीट में 42 यहाँ पे 66 लाख लोगों की तकलीफ हुई इसकी बात नहीं की, वो राहुल गांधी उनको परेशानी है, विपक्ष का नेता की बात करेंगे, जनता की नहीं। एक बात, दूसरी बात ये, अच्छा ये बताइए, बार बार यहाँ पे कॉमर्शियल सेंटर जो महंगा किया था उसकी वजह से आज चाय, पता है कितने आम आदमी, तो बेचारा जो गरीब आदमी काम करता है, ढाबे में खाता है, यहाँ छोटे छोटे रेड़ी लगती उस पर खाता है, उसका खाना महंगा हो गया, अब बेचारा खाने को तरस रहा है, चाय 10 रुपए की मिलती थी 15 रुपए की मिलने लगी, समोसा 15 का मिलता था 20 का मिलने लगा, गरीब आदमी तकलीफ में, उसकी चिंता नहीं है, राहुल गांधी की चिंता है, कमाल है भाई, बीजेपी को क्या है, मुझे तरस आती है,
2: सीधा सवाल है, इसका जवाब दीजिए, सीधा सवाल है,
7: जनता की समस्या की बात करते हैं, लेकिन आप बीजेपी के नेताओं की बात करते हैं, ये चिंता की बात है,
2: और ये नीट के एग्जाम से लेकर महंगाई जो आने वाले दिनों में और भी बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, ये सब इशू नहीं है, राहुल गांधी कब कब बाहर गए ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया।
3: नहीं, ये सब भी इश्यू है, नहीं ये भी इश्यू है, और ये इश्यू होने के कारण 10 वर्षों से लगातार मुद्रा स्फीति की दर को नियंत्रण में रखा गया, अभी पिछले वर्ष महीने भी 3.88% मुद्रा स्फीति की दर थी, आज भी जो है मुद्रा स्फीति की दर 8 के अंक को लांघी है, लेकिन तब भी कांग्रेस की 2004 से 2014 जिसको जो है अनुराग भदौरिया की पार्टी जो है सीबीआई के डंडे के डर से समर्थन दे रही थी, उस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार में 2004 से 14 के बीच मुद्रा स्फीति की औसत दर 10% से अधिक थी। कोरोना काल बीत जाने के बावजूद भारत में जो है मुद्रा स्फीति की दर 5% के अंदर रही, तो ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि हमने मुद्रा स्फीति दर को नियंत्रित करके महंगाई को नियंत्रित करने का काम हमने किया, क्योंकि हमारा ध्यान था कि आम आदमी की जेब पर असर ना पड़े, आम आदमी की जेब को हम बचाए, आज भी 3 महीनों का युद्ध बीत जाने के बावजूद आदमी अभी आप जो है आप कृपा, अरे भाई मैंने बताया 8% लांग गया, मैंने 8% लांग गया बताया, जरा समझा करो आप। लांगने का मतलब समझते, हिंदी जानते हैं कि आपसे भोजपुरी बतिया है गुरु, मैं हिंदी समझते हैं ना, खड़ी भाषा
7: आपको जवाब नहीं,
3: खड़ी खड़ी खड़ी भाषा समझते हैं ना,
7: कर रहे थे आप बोला कि अवधि
3: अवधि भोजपुरी बतिया है,
7: आपने 8.3% हो गया,
3: महंगाई दही बता रहे
2: हैं, पलट के बोल रहे हैं
7: 8 रुपए मिलने लगी,
3: लीजिए गजब है,
5: बढ़ गया।
2: अच्छा रिटेल इन्फ्लेशन रेट एक बार दिखा दीजिए,
3: 3.8 से 8 अगर 8% लांग गई मैंने कहा तो ये समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा हिंदी समझा करिए,
2: 8.3% पर ये सबसे बड़ा चैलेंज है ना शुक्ला जी, यही तो आप वही बात कह रहे हैं जो पॉइंट प्रूव हो रहा है, 8.3% पहुंचना, हाँ ये बड़ा इशू है,
3: उस चुनौती को हमने स्वीकारा है इसलिए हम नियंत्रित कर रहे हैं।
5: अंजना जी मैं
2: जवाब शुक्ला जी, नीट में जो बच्चे तैयारी करते हैं, सोचिए मुझे नहीं पता आपके घर में किसी बच्चे ने ऐसा कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, शुक्ला जी अगर आपके घर में किसी बच्चे ने एंट्रेंस एग्जाम दिया हो, आपने भी देखा होगा खाना पीना सब शुद्ध भूल जाते हैं, दिन रात जगते हैं, ऐसे में वो एग्जाम देते हैं, अब सोचिए उनको क्या मतलब, हम सब कुछ कर लेंगे इस देश में कि एग्जाम नहीं करवा पा रहे, क्या हो रहा है मतलब शुक्ला जी।
3: जिन लोगों ने आपराधिक कृत्य किया है वो दंड के पात्र हैं और दंड पाएंगे, ये पेपर लीक की घटनाएं जो है राजस्थान में लगातार जो है, राज्य सरकार जब अशोक गहलोत की थी और अशोक गहलोत जो है ऐसे पेपर लीक वालों को पाले बैठे थे, तो ऐसे कम से कम पालने का काम नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, फिर भी पेपर लीक होना दुखद है और कार्रवाई के पात्र हैं जहां पर भी जिनके जिनको भाई आप तो पीसीएस का पेपर लीक कर देते थे, एक जाति विशेष को पीसीएस का पेपर लीक कर देते थे, अब क्या बात कर रहे हो महाराज, पीसीएस का पेपर यादव
2: अखिलेश जो रॉयटर्स जो डेटा आया है वो अपने दर्शकों को भी बता दें, इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन क्विकन्स टू 3.5 ईयर हाई ऑफ 8.3%, यानी 3.5 साल के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है 8.3% पर, जैसे जैसे ऊर्जा का संकट बढ़ रहा है, तो इससे पहले जो था वो 3.5 था और वो अब 8.3 हो गया, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो बात वो कह रहे थे शुक्ला जी कि वो भी इशू है ये भी इशू है उनकी,
5: जना जी चक्कर क्या है ना, वो ये है कि आज देश में जो महंगाई है और जब से बीजेपी आई है पर्चे आउट होते हैं, नौजवानों के 70-80 से ज्यादा पेपर आउट हुए, नीट के 3 पेपर आउट हुए हैं, और इस आउट करने वाले में जितने लोग लिप्त पाए जाते हैं पकड़े जाते हैं उसमें अधिकांश भाजपा ही निकलते हैं, तो ये जो आक्रोश है जनता का महंगाई और बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करती है मोदी जी की सरकार, और जहां जहां बीजेपी है वहीं वहीं पर्चे आउट होते हैं, तो और इन्हीं के नीट किसके पास है, 3री बार आउट हुआ है, कौन लोग हैं उसमें बैठे हैं, कौन लोग पकड़े गए हैं, वो किससे उनका लिंक है, ये आक्रोश को डाइवर्ट करने के तरीके अख्तियार करती है बीजेपी, कितने लाखों करोड़ों बच्चों के महंगाई दर,
2: ये डेटा भी हमने इसीलिए दर्शकों के सामने रख दिया है, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 3.5 है लेकिन थोक महंगाई दर जो है वो 8.3 हो गई है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी असल चैलेंज तो ये सब है ना,
6: है ये चैलेंज है लेकिन ये फिर भी कंट्रोल्ड में है, अगर रिटेल कम है सीपीआई कम है डब्ल्यूपीआई हाँ। ज्यादा है अभी बढ़ा है, ऊर्जा संकट आप सर ये मत करिए, अरे आपके जमाने में
5: प्रैक्टिकल दाम बताइए जो हमारे आपके जीवन में रोजाना चीज हम आप लेते हैं खरीदते हैं उसके दाम क्या स्थिर है पिछले 8-10 महीने 4 महीने से, कितना बड़ा है आप वो देखिए ना, ये आंकड़े कहीं सर सबको पता, दुनिया जानती है भारत में और जानते हैं कि मोदी जी के आने के बाद से आंकड़े मैक्सिमम फर्जी होते हैं।
6: अगर आप इस तरह बोलेंगे तो फिर मैं आपका हवाला दूंगा कि आपके समय में दाल में कटोरी में जो है दाल गायब हो गया था और शीला जी कहती थी कहां है, 10 रुपए में खाना बांट रहे थे आप, डबल डिजिट महंगाई दर छोड़कर गए, पॉलिसी पूरा पैरालिसिस करके गए, तो इस तरह आप जब गए
5: महंगाई पेट्रोल, अरे हमने पेट्रोल कितने में बेचा,
6: अरे भैया
5: $120 में पेट्रोल क्रूड ऑयल खरीदा, सुनिए $120 क्रूड ऑयल खरीदा,
6: 33 रुपए में छोड़ के गए थे
5: पेट्रोल बेचा,
6: आप जब गए ना 72 रुपए पे आप छोड़ के गए और अभी 95-94 करोड़
5: रुपए
6: उतना नहीं बढ़ा है छोड़कर गए, पेट्रोल की कीमत दुगुना करके गए, बोले पैसा पेड़ों पे नहीं लगता है, पेट्रोल बाहर से आता है
5: अंजना जी,
6: ये बोल के गए ना मनमोहन सिंह, या आप सपने में देख रहे थे उनको?
5: अरे हमने 400 रुपए इन्फ्लेशन 400 रुपए में हम सिलेंडर देते थे,
6: किया एनडीए सरकार ने, इसमें कोई शक नहीं है।
5: डॉलर कहाँ पे है? डॉलर कहाँ पे है?
6: अरे डॉलर
5: रुपए पे है?
6: आपके मोदी जी क्या बोलते थे?
2: मोदी जी क्या बोलते? जल्दी से एक कंक्लूडिंग रिमार्क दिखा दीजिए भदौरिया जी, सिर्फ दो लाइन जल्दी से भदौरिया जी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये अचानक से, एक सेकंड, कि ये अचानक से किसी देश के अंदर की किसी परेशानी की वजह से हुआ है, ये आपको भी समझ में आ रहा है? ऊर्जा संकट कहां से आ रहा है? और वो मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है वो मोदी जी ने नहीं शुरू किया है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को?
5: अरे उसे सतर्क तो रखा जा सकता था।
6: मैं उदाहरण दूं,
2: स्टूडियो में आए आप दोनों ही महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप लोग को माइक में नीचे नहीं कर सकती थी, आप लोगों को चिल्लाने का खूब मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में चीखने और चिल्लाने के लिए। हल्ला बोल में इतना ही, आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बताएंगे कि कैसे ट्रंप की अकड़ ड्रैगन की पकड़ में आ चुकी है। आज आपको शिया ईरान के खिलाफ सुन्नी यहूदी सीक्रेट मीटिंग दिखाएंगे, और इसके बाद बताएंगे कि क्या नई राजनीति वाले जोसेफ विजय की पार्टी भी सनातन को मिटाने आई है, और आखिर में बताएंगे कि स्कूल में जीतने वाली बेटियां करियर में क्यों हार जाती है। देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट?
4: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं ये भाई साहब, सब पचा गए।
9: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते
10: हैं। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
11: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान।
12: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
13: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
12: आप कैसे कर लेते हो?
14: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
15: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
16: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
17: नहीं,
15: और म्यूचुअल फंड्स है
17: सही।
18: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
19: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
20: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
21: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
22: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
23: लाइक आई सेड बिफोर, वी बेटर होन दिस सिंस।
24: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
25: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
26: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
27: Hint, bade aaram se.
26: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
28: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
29: Samakul Cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Samakul Cooler, life banaye wonderful.
30: Vimal, bolo zuba kesri.
31: 23 और 29 अप्रैल वोटिंग।
32: 90% क्रॉस कर गई बंगाल की वोटिंग।
33: ये बढ़ा हुआ मतदान आखिर किस तरफ जाएगा?
31: 4 मई काउंटिंग।
34: भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई है
35: रुझानों में, बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए।
31: 8 मई CM का ऐलान।
36: शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे।
37: 9 मई शपथ।
38: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थी जे।
31: यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट, सर्च में नंबर 1, गूगल ट्रेंड्स में नंबर 1, लाइव स्ट्रीम में सबसे आगे। टीवी हो, डिजिटल हो, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर आज तक रहा चुनाव में सबसे आगे। चुनाव मतलब सिर्फ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
2: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
2: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
1: आप कैसे कर लेते हो?
3: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
4: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
5: नहीं
4: और म्यूचुअल फंड्स है
5: सही।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई डगर पर अब गृह मंत्री तुरंत निकल पड़े हैं, जिन्होंने अपना काफिला 10 से 11 गाड़ी से घटाकर 5 गाड़ियों में बदल दिया। ये बुधवार को अमित शाह के काफिले का वीडियो है, जिन्होंने अब अपने काफिले में 50% गाड़ियां कम कर दी, ताकि सुरक्षा के साथ देशवासियों के बीच बचत वाला संदेश ऊपर से नीचे तक पहुंचे। अपने काफिले को आधा करके अमित शाह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आर्थिक संकट के समय केवल जनता ही नहीं बल्कि सरकार भी जिम्मेदारी निभा रही है। प्रधानमंत्री अगर 2 गाड़ी से अब केवल चलने लगे तो गृह मंत्री ने 50% गाड़ी काफिले में घटाई। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जो Z+ सुरक्षा में चलते हैं, जिनके साथ पहले 11 गाड़ियों का काफिला चलता रहा, अब वो केवल 4 गाड़ी लेकर चलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी 11 गाड़ियों का काफिला छोड़कर 4 गाड़ियां लेकर कैबिनेट की बैठक में पहुंचे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र के तमाम मंत्रियों की तरफ से क्या ये सारी कवायद इसलिए ताकि जनता तक संदेश भी पहुंचे और वो भी कम गाड़ी से चलकर तेल बचाएं, साथ ही उस सियासत को जवाब मिले जो अब तक सरकार की कोशिश पर सवाल उठाती रही। सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों तक नरेंद्र मोदी की खींची लकीर पर अब सब चलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का निर्देश है, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, अफसर सब 50% गाड़ियां अपनी फ्लीट में कम करेंगे। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने बैठक करके दे दिया है, उस पर अमल करना शुरू हो चुका है। अपने काफिले से लेकर मंत्रिमंडल के काफिले तक को हाफ कर दिया है। जैसे ये देखिए, योगी सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल नई दिल्ली से मेरठ तक की यात्रा अपने काफिले के साथ नहीं करते हैं, मेट्रो ट्रेन और नमो भारत ट्रेन से करते देखते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने काफिला कम कर दिया।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: तापमान, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रालय बंटवारे समेत कई अहम मुद्दों पर बात, पीएम से भी आज मिल सकते हैं योगी आदित्यनाथ। पीएम की अपील के बाद बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्रियों में तेल बचाने की अपील, बस बाइक से लेकर साइकिल तक का इस्तेमाल, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए को लगा झटका, भोजपुर बक्सर एमएलसी इलेक्शन में जीत गया आरजेडी, तेजस्वी की मांग, बैलेट पेपर से ही हो देश में हर चुनाव। नीट परीक्षार्थियों के गुनाहगारों पर कसा कानून का शिकंजा, सीबीआई ने तेज की तफ्तीश, राजस्थान में आरोपी दिनेश और मांगीलाल के घर दबिश, लातूर में छापेमारी, दिल्ली में 5 आरोपियों की पेशी। चीन में अमेरिकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जंग पर ट्रंप की बात, हॉर्मुज खोलने को लेकर दोनों नेताओं में सहमति, ट्रंप ने बताया दोस्त, कहा बेहद सकारात्मक रही हमारी मुलाकात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शंखनाद, आपके साथ हूं मैं रेहा बाथम। नीट पेपर लीक मामले को लेकर पूरे देश में रोष है, सीबीआई एक्शन मोड में, आपको ये पूरी खबर बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे कैसे योगी मॉडल पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। लेकिन शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात वो कर सकते हैं, इससे पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह नितिन नवीन से मुलाकात की है। ये मुलाकात तकरीबन एक घंटे चली। सूत्रों की माने तो इस बैठक में नए मंत्रियों को विभाग आवंटन और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसके साथ साथ प्रदेश में पंकज चौधरी की नई टीम और संगठन के अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी लगता है शुरू हो गई है।
1: देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जो है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से जो है वो मुलाकात की है। और सबसे बड़ी बात एक और चीज है कि उन्होंने अभी जो 10 मई को उनका कैबिनेट का विस्तार हुआ था, जिसमें 6 नई मंत्रियों को जो है वो शामिल किया गया था और 2 को जो है पदोन्नत किया गया था। अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन 5 दिन के हो गए हैं और ऐसे में अभी तक विभागों का जो बंटवारा है वो नहीं किया गया, तो ऐसे में उनको लेकर चर्चा। और उसके साथ साथ पंकज चौधरी की जो संगठन में नई टीम बननी है अध्यक्ष बनने के बाद, उसको लेकर भी चर्चा जो है हुई है। और अब जो है योगी आदित्यनाथ जो है वो हिंडन एयरपोर्ट से जो है सीधा लखनऊ के लिए उन्होंने उड़ान भर ली है। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई आज की मुलाकात जो है वो नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 बड़े नेता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नवीन दोनों से मुलाकात की और संगठन के मामलों पर और अन्य मामले, और उसके साथ साथ कैबिनेट विस्तार के बाद जो विभागों का बंटवारा है उसको लेकर जो है वो बातचीत हुई।
0: विभागों के बंटवारे को लेकर सवाल ये भी उठ रहा है कि सबसे पहले जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में छाया रहता है, शायद विभाग में भी ये दिखाई दे सकता है। हिमांशु,
1: देखिए, विभागों में तो जातीय समीकरण ज्यादा नहीं दिखाई देगा, लेकिन इतना जरूर है जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है तो जातीय समीकरणों के साथ साथ जो है सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा जाता है, राजनीतिक समीकरणों का ध्यान रखकर जो है मंत्रिमंडल का विस्तार

0: होता है, और वो जो छाया है वो जो कैबिनेट में विस्तार हुआ है, जिन 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, 2 को पदोन्नत किया गया है, वो उसमें झलकती है। लेकिन इतना है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, इसको लेकर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ, नितिन नवीन जो पार्टी के अध्यक्ष है उनके साथ चर्चा हुई, और अब ये मानकर चला जा सकता है आज देर रात या कल सभी मंत्रियों का जो विभाग के कौन कौन से विभाग रहेंगे उसकी सूची जो है वो जारी हो जाएगी। और उसके साथ साथ क्योंकि अब जल्द ही पंकज चौधरी जो प्रदेश के नए अध्यक्ष बने हैं उनकी भी नई टीम आनी है, संगठन में कौन जाएगा सरकार से,
1: ठीक
0: ये
1: है
0: तमाम चीजें जो है इन सब चीजों को लेकर चर्चाएं हुई हैं।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात शुभेंदु अधिकारी की, जो कि पश्चिम बंगाल के योगी मॉडल को तेजी से लागू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान शुभेंदु ने योगी से आशीर्वाद लिया, वहीं अब शुभेंदु के फैसलों में भी इसका असर दिख रहा है। सीएम बनने के बाद शुभेंदु ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें योगी मॉडल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से उन्होंने ये बड़े फैसले, सड़क पर नमाज पर रोक लगा दी है, ये उत्तर प्रदेश में भी लागू है, वही अब पश्चिम बंगाल में दिखाई देगा। खुले में बलि पर भी शुभेंदु अधिकारी ने रोक लगाई है, लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के आदेश दे दिए हैं। अवैध बूचड़ खाने पर बुलडोजर एक्शन की पश्चिम बंगाल में भी तैयारी है, वहीं गोवंश हत्या पर सख्त एक्शन के निर्देश यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने दिए हैं, यानी कि योगी मॉडल पर पूरे तौर पर जोर दिया है।
2: अदालत का फैसला था, यहाँ मान्य नहीं होता, सरकार जानबूझकर उसको नहीं मानती थी और लोगों को उकसा दिया जाता था नहीं मानने के लिए, उसी को फिर से हमारी सरकार सामने लाई है। जो पहले से कोर्ट का फैसला है, संवैधानिक व्यवस्था के अंदर जो चीजें उसी को हम लोग लागू किया है, लोगों को याद करा दिया कि आप कानून से चलिए, और देश में चाहे धर्म हो, जात हो, कुछ भी हो, सबके लिए कानून बराबर है और कानून को सबको मान के चलना चाहिए।
3: कोई गलत काम में जुड़ा हुआ उनका खिलाफ तो बुलडोजर को जहां पदक्षेप करेंगे, जहां वो एक्शन लेंगे, मेरा को तरफ में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा मदद करूंगा।
4: स्कूलों में सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम जो है अब गाना
3: तो होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम भारत का जो संस्कृति है, तो जिसी को जगह कम है वो नखोदा हो चाहे टीपू सुल्तान मस्जिद हो, ये सब जगह में थोड़ा जगह बढ़ाना चाहिए। इतना सारे लोग नमाज पढ़े, किसी को रास्ता ब्लॉक करके नमाज पढ़ना तो ठीक नहीं ना।
1: उधर पश्चिम बंगाल में एक तस्वीर ममता बनर्जी की सामने आई, जो आज नए रोल में दिखाई दी। ममता बनर्जी पहली बार कलकत्ता हाईकोर्ट में बतौर वकील पेश हुई। ममता बनर्जी बकायदा वकील वाला कोट पहनकर कोर्ट में दाखिल हुई। चुनाव के बाद हिंसा के मामले में ममता बहस के लिए खुद जज के सामने आई। उन्होंने जज के सामने कहा कि वो पहली बार हाईकोर्ट में बतौर वकील पेश हो रही हैं। विधानसभा चुनाव के बाद पूरे राज्य में हिंसा की खबरें सामने आई। इसी को लेकर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के बेटे श्री शान्य बंदोपाध्याय ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसे लेकर ममता आज कोर्ट में दलील देने पहुंची। कोर्ट में ममता ने जोरदार दलील रखी, लेकिन बाहर आते आते उन्होंने नारों का सामना करा, जहां भारी संख्या में लोगों ने ममता के खिलाफ नारेबाजी की। और इस बीच बड़ी खबर नीट मामले से जुड़ी हुई। सीबीआई ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे के अंदर देश भर में 14 जगहों पर तलाशी ली गई और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आज पुणे से मनीषा वाघमारे की गिरफ्तारी हुई, तो वहीं धनंजय लोखंड को अहिल्यानगर से गिरफ्तार किया गया। संदिग्धों से लगातार पूछताछ हो रही है। वहीं आज कोर्ट पेश हुए आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां, लेकिन ये जो बड़ा नाम है ये कब तक सामने आएगा?
2: इसी बड़े नाम की खोज में है सीबीआई नेहा। और देखिए
5: नेहा, और इसीलिए यहाँ पर अभी अभी सीबीआई आई थी और घर से 4 फोन,
2: अभी अभी सीबीआई आई थी और घर से 4 फोन, 1 लैपटॉप और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण थे वो जब्त करके ले गई। अभी हम उसी घर पे खड़े हैं जहां पर 3 जयपुर के एक ही परिवार के 3 लोग, दिनेश, मांगीलाल और विकास की गिरफ्तारी हुई है। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और कई सालों से जुड़े हुए थे। आप देख लीजिए कि धनंजय हो या फिर यश हो या फिर वानखेड़े हो, ये सारे लोग
6: लोग आपस में एक दूसरे से कई सालों से जानते थे और ये पुराना काम था इनका, इसी बारे में सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। सीबीआई ने इस बार पहल करते हुए जितने बच्चों को हिरासत में लिया था सबको छोड़ दिया है कि किसने किसने पेपर खरीदा है उसमें समय बर्बाद नहीं करना है, किसने किसने पेपर बेचा है उस पर फोकस करना है। और सीबीआई की अभी दो टीम यहां से निकली है, जमुआ रामगढ़ से, और सीकर में भी कार्रवाई चल रही है। इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, सबसे ज्यादा नेटवर्क जो है महाराष्ट्र में बताया जा रहा है, और यहां से जो पूछताछ हो रही है, कहा जा रहा है कि मांगी लाल हो, दिनेश हो, कई साल से इस नेटवर्क में है, 2021 से के आसपास से कहा जा रहा है कि इस परिवार की दशा बदलनी शुरू हुई थी। आपको दिखाना चाहेंगे, यहां से देख लीजिए, यहां से आप पीछे पूरा फार्म हाउस तक, ये सारा पिछले 5-10 सालों में इस परिवार का हुलिया बदला है, जहां पर इतना बड़ा फार्म हाउस और घर इन्होंने बनाया है और परिवार के 5 बच्चों को डॉक्टर बनाया है। सिर्फ 5 बच्चों को डॉक्टर बनाया है ऐसी बात नहीं है, ये कुरियर का काम करते थे, बाकी जगह भी सप्लाई करते थे, और इसीलिए पिछले 4-5 सालों से सीकर में फ्लैट लेकर रह रहे थे, और सीकर के जरिए इन्होंने ही, मांगीलाल दिनेश नहीं, ये जम्मू कश्मीर में, बिहार में, आंध्रा में, तेलंगाना में, केरला में ये पेपर भिजवाए हैं। इसलिए सीबीआई की एक टीम हमेशा जयपुर में कैंप करेगी और यहां से महाराष्ट्र एंगल पर तलाशा जा रहा है, बिहार का जो पुराना गुट है उसे भी तलाशा जा रहा है, बिहार मॉडल भी रहा है यहां पर जो 2025 में पूरी तरह से खुल नहीं पाया था। तो जैसे ही जैसे जो जो इनपुट मिल रहे हैं उसके आधार पर यहाँ पर कार्रवाई जारी है। एक बार दृश्य भी दिखाना चाहेंगे जमुआ रामगढ़ में।
1: बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो नीट पेपर लीक का पूरा बवाल राजस्थान से शुरू हुआ, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, कई जिलों तक इसके तार फैले हुए हैं, लेकिन इसमें बेवाल परिवार को मुख्य आरोपी बना जा रहा है। बेवाल परिवार के घर पर आज सीबीआई जांच के लिए पहुंची। आरोपी है कि बेवाल परिवार ने ही सबसे पहले 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा, लेकिन सवाल यह है कि किसने उनसे खरीदा पेपर लीक का, वो मास्टरमाइंड कौन है।

0: क्या नीट पेपर घोटाले में किसी ऊपर वाले का हाथ है? वो कौन भेदिया है जो सिस्टम में बड़े पद पर बैठकर लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है? ये ऊपर वाला कौन है? ये सवाल जयपुर में जमुआ रामगढ़ के इस मकान से निकला है। ये मकान नीट के नटवर लाल कहे जाने वाले मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल का है। दिनेश बिवाल के घर पर सीबीआई पहुंची है जांच के लिए, लेकिन सीबीआई से पहले यहां आज तक संवाददाता पहुंचे तो दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल की पत्नी ने कैमरे पर जमकर ड्रामा किया। अब इस पूरे ड्रामे को समझने के लिए इस बिवाल परिवार का काला चिट्ठा सुनिए। जमुआ रामगढ़ के दो भाई मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल, इनके परिवार की इतनी हैसियत थी, सिस्टम पर इतनी पकड़ थी कि ये जब चाहे जिसे चाहे डॉक्टर बनवा सकते थे। सबूत इन्होंने खुद दिया था जब सोशल मीडिया पर इन्होंने पिछले साल पोस्ट कर जानकारी दी थी। तब इन्होंने लिखा था, मेरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात, हमारे 5 बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चयन हुआ है। सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जरा जमुआ रामगढ़ के इस परिवार की पूरी फैमिली ट्री समझ लीजिए, जिसकी हर शाख पर एक भविष्य का डॉक्टर है। मांगीलाल का बेटा विकास सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज का छात्र है। मांगीलाल की बेटी प्रगति दौसा मेडिकल कॉलेज की छात्र है। दूसरे भाई घनश्याम बिवाल की बेटी पलक SMS मेडिकल कॉलेज में है। घनश्याम की बेटी सान्या मुंबई मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। तीसरे भाई दिनेश बिवाल की एक बेटी गुंजन बनारस मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट है। दिनेश का बेटा भी इस बार नीट की परीक्षा दे रहा था, इस वक्त वो फरार है।
1: आप ये बताओ मुझे,
0: लेकिन कैमरे के सामने चीखने वाली इन महिलाओं से जब सवाल किया गया कि इनके बच्चे कहाँ हैं, तो जवाब क्या मिला आप भी सुनिए।
1: प्रगति कहाँ पढ़ती है?
2: मुझे कुछ ही पता नहीं है, ये बच्चों का क्या काम,
1: दुनिया कहाँ पढ़ती है
2: कुछ है पता नहीं है। किसी जगह फटती है वो, कौन सी जगह, मैं फड़ी लिखी हूँ तो मैं बच्चा उनको ये फड़ारगंज में चले जाऊँ ना, मैं खुद ही चल जाऊँ आदमी से मिलवा।
0: चंद मिनट पहले खुद को अनपढ़ बताने वाली दिनेश की पत्नी आगे सवाल करती है कि पहले भी पेपर लीक हुए थे, तब आपकी टीम कहाँ थी?
2: दिन से पेपर लीक हो रहे थे, आज दुश्मन बन रहे थे। दो बच्चा पेपर दिया जाए, दो बच्चा पेपर देर के नहीं, किस पेपर में भी
3: 2024 में भी लीक
2: होगा।
0: सवाल तो यही है कि आखिर इस परिवार के ऊपर कौन है। बहरहाल आप इस परिवार के बारे में सोचिए कि कितना मेधावी परिवार है, इनके बच्चों में योग्यता कितनी कूट कूट कर भरी थी कि एक साथ 5-5 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हो जाता है। खैर इनकी मेधा का राज अब खुला है जब बिवाल परिवार पर 30 लाख में इस साल पेपर खरीदने का आरोप लगा।
4: जयपुर के जमुआ रामगढ़ के मांगीलाल दिनेश और मांगीलाल का MBBS कर रहा बेटा विकास, तीनों को CBI ने अरेस्ट किया है और CBI का ऐसा मानना है कि नीट पेपर लीक के रैकेट से ये पहले भी जुड़े रहे हैं और इस बार भी इस रैकेट में ये शामिल थे। पिछली बार नीट 2025 में इस घर से 5 बच्चे एक साथ MBBS कोर्स में सेलेक्ट हुए हैं और इसकी सूचना खुद दिनेश ने सोशल मीडिया पोस्ट पर साझा किया था कि हमारे घर के 5 बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं। मैंने इनके घर के औरतों से जानना चाहा तो इन्होंने कहा कि हम बकरियां चराकर अपने बच्चों को पढ़ाए हैं, मगर यहां देखकर ऐसा लगता नहीं कि बकरियां चराकर इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया हो। लग्जरी गाड़ियां भी है और बड़ा फार्म हाउस है, बड़ा सा घर भी है और ये प्रॉपर्टी डीलर के काम करते थे दोनों भाई। बार बार इनसे हमने जानना चाहा कि किस मेडिकल कॉलेज में कहां कहां इनके बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी पता नहीं, हम तो अनपढ़ हैं, मगर दूसरे ही क्षण ये कह रही हैं कि 2021 में भी 24 में भी हर साल नीट का पेपर आउट होता है। बड़े लोगों तक क्यों नहीं आप जा रहे हो, छोटे लोगों क्यों पकड़ रहे हो, हमें कोई फंसाना चाहता है, यानी कि ये सब कुछ जानते हैं ऐसा लगता है और पूरी तरह से ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। अभी भी जो इस साल लड़का दे रहा था नाबालिग एग्जाम नीट का, वो भागा हुआ है, मगर कहा जा रहा है कि अब इन दोनों भाइयों के पकड़े जाने के बाद राजस्थान के नेटवर्क का कम से कम खुलासा हो जाएगा।
0: अब जरा सीकर के इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी देखिए, दावा है कि इसी कोचिंग में बिवाल परिवार के तीनों बच्चों ने नीट की तैयारी की, लेकिन ये सरासर झूठ है। इस कोचिंग से बिवाल परिवार के बच्चे पढ़े ही नहीं। सीबीआई इस नीट पेपर घोटाले के मामले में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रही है। पेपर लीक की जांच में अब तक सीबीआई ने जयपुर, नासिक, अहिल्यानगर, गुरुग्राम से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच दायरा बढ़ रहा है क्योंकि ये नेटवर्क एक दो शहर का नहीं बल्कि कई राज्यों तक फैला है। अब तक इस कांड में जो किरदार सामने आए हैं उसमें जयपुर का बिवाल परिवार सबसे ऊपर है। जयपुर का मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, नासिक का शुभम खैरनार, अहिल्यानगर का डॉक्टर ओमकार सिंगोटे और गुरुग्राम का यश यादव, यही वो छह लोग हैं जिन्हें सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में रखा है। बाकी 45 संदिग्धों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया लेकिन वे रडार पर अभी भी हैं। ये वो छह किरदार हैं जो पेपर लीक फ्लोचार्ट में एक ही पंक्ति में खड़े दिखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन्हें किसने पेपर दिया, वो कौन शख्स था जिसने पहली बार 30 लाख रुपए में पेपर बेचा। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
5: तो बिहार में नेतृत्व परिवर्तन और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एनडीए को तगड़ा झटका लगा है। विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव हुए जिसमें जेडीयू प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को मात देने में आरजेडी उम्मीदवार सोनू राय सफल रहे। भोजपुर बक्सर की एमएलसी सीट पर अब आरजेडी का कब्जा हो चुका है। भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की विधान परिषद सीट पर जेडीयू का कब्जा था। इस सीट से जेडीयू के राधाचरण शाह एमएलसी थे जो 2025 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुन लिए गए हैं। ऐसे में उन्होंने एमएलसी सीट से इस्तीफा दे दिया था जिसके चलते उपचुनाव हुए। विधान परिषद के उपचुनाव में जेडीयू और आरजेडी सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमा रहे थे। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में पहला चुनाव हुआ है जिसमें एनडीए के उम्मीदवार को शिकस्त खानी पड़ी।
6: बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है। मैं अपने दल के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव जो है बैलेट पे चुनाव हुआ है और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने वाला नहीं है। आप सब लोगों को पता होगा कि जब बैलेट पे बिहार विधानसभा की गिनती हुई थी, जो अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी लगभग 150 से भी ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। लेकिन सरकार में बैठे लोग मशीन तंत्र, धन तंत्र, छल कपट करके हम लोगों को हराने का काम किया गया। आज भी अगर मशीन से गिनतियाँ होती हैं तो पूरा दिन लग जाता है, रात के 1-2 बजे तक गिनती होती है। पहले भी वही होता था लेकिन कोई फर्क नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जब समय उतना ही लग रहा है तो बैलेट पे ही क्यों नहीं वोटिंग हो।
5: तो अखिलेश यादव के छोटे भाई और मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। लखनऊ में पत्नी अपर्णा यादव के पिता यानी प्रतीक यादव के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने चिता को मुखाग्नि दी। अखिलेश के भाई की चिता पर लकड़ी रखी और अंतिम प्रणाम किया। प्रतीक की दोनों बेटियां प्रथमा और पद्मजा भी शमशान घाट पर मौजूद रहीं। दोनों ने पिता की चिता पर लकड़ी रखी। प्रतीक की छोटी बेटी पद्मजा अपने ताऊ अखिलेश के पास थी। इससे पहले प्रतीक की अंतिम यात्रा निकाली गई थी। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य ने शव को कंधा दिया। प्रतीक एनिमल लवर थे। शव वाहन पर उनके डॉग्स और बंदर के साथ वाली तस्वीर लगाई गई थी। 38 साल के प्रतीक को 13 दिन में 2 बार दिल का दौरा पड़ा था जिसके बाद कल उनके निधन की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। वक्त छोड़े से ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन।
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
11: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
12: Orient Skincare Brand.
13: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
14: भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबडी कैन ड्रीम।
13: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
15: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
16: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
18: जीके मैक्स।
19: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
18: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
19: जेके वॉल मैक्स
18: बेस्ट पेंट,
19: जेके मैक्स।
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा देते।
3: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
5: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
6: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
7: विक्रम, एक हिंट तो देते।
8: विक्रम!
7: हिंट?
6: बड़े आराम से।
9: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
10: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
11: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ।
12: म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
13: नहीं,
12: और म्यूचुअल फंड से
13: सही।
14: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
15: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
16: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
17: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी तबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
18: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
19: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
20: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
21: अर्जुन, कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
22: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
23: लायन डेट नट बाइट्स।
24: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
25: Like I said before, we better own the sins.
26: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
27: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: The Tailgate Top 20.
2: Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
1: The Tailgate Top 20.
3: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
2: Try to keep up.
4: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
5: भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबडी कैन ड्रीम।
4: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
6: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
7: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
14: जेके मैक्स पेंट्स।
13: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
3: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
4: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
5: नहीं,
4: और म्यूचुअल फंड से
5: सही।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
8: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
9: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
10: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
11: लायन डेट नट बाइट्स।
12: डायरेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
13: लाइक आई सेड बिफोर, वी बेटर होल्ड दिस इन।
14: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
15: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
16: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
17: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
15: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
18: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
16: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
15: जहां खबर वहां खबरदार।
19: इन एसोसिएशन विद
20: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
21: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
16: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
17: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
15: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
18: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
16: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
15: जहां खबर वहां खबरदार।
19: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: अमित शाह और नितिन नवीन से योगी की मुलाकात पर यूपी में बड़ा सियासी तापमान। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रालय बंटवारे समेत कई अहम मुद्दों पर बात। पीएम से भी मिलने के संकेत। पीएम की अपील के बाद बीजेपी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों में तेल बचाने की अपील। बस बाइक से लेकर साइकिल तक का इस्तेमाल। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए को लगा झटका। भोजपुर बक्सर एमएलसी इलेक्शन में जीत गया आरजेडी। तेजस्वी की मांग, बैलेट पेपर से ही हो देश में हर चुनाव। नीट परीक्षार्थियों के गुनाहगारों पर कसा कानून का शिकंजा। सीबीआई ने तेज की तफ्तीश। राजस्थान में आरोपी दिनेश और मांगीलाल के घर दबिश। लातूर में छापेमारी। गिरफ्तार पांच आरोपियों को 7 दिन की सीबीआई रिमांड। चीन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने की शी जिनपिंग से जंग पर बात। हॉर्मुज खोलने को लेकर दोनों नेताओं में सहमति। ट्रंप ने बताया दोस्त, कहा बेहद सकारात्मक रही हमारी मुलाकात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। आज बात करेंगे उस आंधी तूफान की जिसने कल यूपी में बहुत कहर बरपाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से यूपी में 104 लोगों की जान चली गई और ये सरकारी आंकड़े हैं जो अभी अपडेट हो रहे हैं। सड़क से पेड़ उखड़ गए, गाड़ियों के ऊपर गिर गए, घरों की दीवारें गिर गई, 3 शेड उखड़ गए और जो भी इसकी चपेट में आया वो मारा गया। 104 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पूरी रिपोर्ट में देखिए।
3: कहीं तूफान में इंसान उड़ गया, कहीं पेड़ जमीन से ही उखड़ गए, कहीं पेड़ घर पर गिर गया, कहीं पेड़ के नीचे गाड़ियां फंस गई। यह है उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली का कहर। बुधवार को यूपी में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। न कोई चेतावनी, न कोई पहले से जानकारी, न कोई अलर्ट, सीधा आंधी तूफान आया, बिजली गिरी और 104 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने से बुधवार को कुल 104 लोगों की मौत हुई। इनमें से 4 लोग बिजली गिरने से मारे गए, 52 लोग घायल भी हैं और 98 घर भी टूटे हैं। इसके अलावा 130 जानवरों की भी जान गई है और ये तो सरकारी आंकड़े। तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति इससे कहीं ज्यादा बदतर है। सबसे बड़ी बात कि मॉनसून से पहले का आंधी तूफान इतनी तबाही लेकर आएगा किसी ने सोचा नहीं था। लोग हर रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे, तूफान आया और कई लोगों की जान ले ली। बदायूं में भीषण आंधी तूफान से अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की मौत हुई है। भदोही जिले में अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की मौत हुई। मिर्जापुर में भी आंधी तूफान की वजह से पूरे जिले में 17 लोगों की मौत हुई। फतेहपुर में 5 महिलाओं समेत कुल 11 लोग मारे गए। प्रयागराज में कल आए आंधी तूफान की वजह से कुल 21 लोगों की मौत हुई है और इसके अलावा 1-2 मौतें तो ज्यादातर जिलों में हुई ही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं बरेली से। आंधी में छत उड़ जाती है, तिरपाल उड़ जाता है, कपड़े उड़ जाते हैं, पेड़ भी उखड़ जाता है, लेकिन इंसान उड़ते शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। बरेली में कल जो तूफान आया उसमें नन्हे मियां उड़ गए। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तब से ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये कोई AI वीडियो तो नहीं है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन हकीकत यही है कि बरेली में नन्हे मियां तूफान से बचने के लिए बारात घर की छत पकड़े हुए खड़े थे। तूफान इतना तेज था कि छत ही उड़ गई और नन्हे मियां फिल्मी स्टाइल में 50 फीट ऊपर हवा में उछल गए और उछल कर एक खेत में जा गिरे। इस हादसे में नन्हे मियां बुरी तरह से घायल हो गए, उनके हाथ और पैर में चोट आई है।
4: बहुत तेज लकूदा आ रहा था, लकूदे के सामने ऊपर मतलब 30-40 फीट ऊंचा चले गए। हमें ना पता कहाँ गिरे, क्या हुआ, कम से कम 50 फीट दूरी से।
5: नहीं तो आपने उसको पकड़ रखा था, क्या था?
4: हाँ मतलब पकड़ा नहीं था, मतलब गाड़ी के जोड़े खड़े खड़े हम सामने रस्सी पड़ी हुई थी।
5: अच्छा।
4: हाँ रस्सी पकड़ी थी।
3: पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। उन्नाव में तेज आंधी के चलते एक नीम का पेड़ उखड़ गया और कार के ऊपर गिर गया। कार के अंदर बैठे शख्स ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। पेड़ गिरने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बदायूं में यह आंधी तूफान जानलेवा रहा। यहां अलग अलग स्थानों पर दो मासूमों समेत छह लोगों की मौत हुई है। आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और दीवारें टूटकर गिर पड़ी, जिसके नीचे दबकर दो मासूम बच्चों समेत छह लोगों की मौत हुई। एक ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर उत्तराखंड के बाजपुर से बुलंदशहर जा रहा था। बदायूं के बिसौली में तेज आंधी से सड़क किनारे यूकेलिप्टस का पेड़ टूटकर ट्रक पर आ गिरा। इसके नीचे दबकर 29 साल के ट्रक ड्राइवर योगेश की मौत हो गई। पुलिस ने पेड़ को कटवाकर जैसे तैसे उसके शव को बाहर निकलवाया। यही हाल भदोही का भी रहा। यहां पूरे जिले में कुल 16 लोगों की मौत हुई है। एक महिला का पूरा परिवार इस त्रासदी की जद में आ गया। महिला के घर पर पेड़ गिरने के कारण उसकी और उसकी दो मासूम बेटियों की मौत हो गई। एक बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है। पति मुंबई में काम करते हैं।
6: कल तो घटना हुई है, क्या घटना है?
7: पूरी वही आंधी तूफान आई थी सर, और वहाँ पे पेड़ गिर के दब के खत्म हो गए।
6: कौन खत्म?
7: मेरी बहन थी और दो भतीजी थी, वो लोग खत्म हो गए। दो बच्चे हैं, एक भर्ती है अस्पताल में।
6: क्या आपको वहाँ से जानकारी बताया गया परिवार?
7: वहाँ पे ये बताया गया कि नीम का पेड़ गिर गया है, वो लोग दब गए हैं। तब हम लोग नहीं थे, तब हमारे चाचा के लड़का लोग आए यहाँ पे, फिर उसको लेके निकाले, फिर दो तो बच गए, तीन मर गए।
6: कितने बच्चे हैं?
8: जो तूफान चक्रवाती तूफान आया था उसी में जो है नीम का पेड़ गिर जाने से हरिजन बस्ती के पांच लोग, मतलब माँ थी और चार लड़कों लेके उसी घर में घुस गई अपने घर में। जो मौके पर वो पेड़ गिर गया जो है घर के ऊपर, और उसी में लोग दब गए, तो तीन लोगों की तो मौके पे मौत हो गई, दो लोगों गंभीर लोग घायल हो गए हैं, उनको जिला अस्पताल या कहीं रेफर किया गया है बनारस ट्रामा सेंटर।
3: एक और घटना, उगापुर सरौली में मंदिर गई एक परिवार की तीन महिलाएं विशालकाय पेड़ गिरने के दौरान उसकी चपेट में आ गई, जिससे तीनों की मौत हो गई।
9: तेज आंधी तूफान आने की घटना के कारण अलग अलग थाना क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, जिसमें पेड़ गिर जाने के कारण अथवा बिजली का खंभा घरों के ऊपर गिर जाने के कारण अथवा एक मंदिर के ऊपर गिर जाने के कारण कई सारी कैजुअल्टीज हुई हैं। कुल मिलाकर के अभी तक प्राप्त सूचना के क्रम में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 8 लोग इन घटनाओं में घायल हुए हैं अलग अलग।
3: बहुत से लोग बिजली गिरने की वजह से भी मारे गए हैं, जो और ज्यादा भयावह है, क्योंकि गंगा के बेसिन में बिजली गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पूरे यूपी में कल बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में देश में बिजली गिरने की घटनाओं में 400% का इजाफा देखा गया है। भारत में हर साल बिजली गिरने की घटनाओं में 7-14% की वृद्धि दर्ज की गई है। रिसर्च बताती है कि अगर तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो बिजली गिरने की घटनाएं 8-10% बढ़ जाती हैं। पिछले कुछ वक्त में बिजली गिरने की घटनाएं भारत के पूर्वी, उत्तरी और तटीय इलाकों से उत्तर पश्चिमी और हिमालय की तलहटी तक पहुँच चुकी हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात बिजली गिरने के नए हॉटस्पॉट्स हैं, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये भी देखा गया है कि जहां जहां से नदियां गुजरती हैं, वहां ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। जैसे गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, ताप्ती और नर्मदा की घाटियों में ज्यादा बिजली गिरती है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि नदियों की घाटियों पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण और शहरीकरण हो गया है, जिसकी वजह से वहां गर्मी बढ़ गई है, इससे ज्यादा वाष्पीकरण होता है और बिजली गिरती है। अगर समय की बात करें तो बिजली गिरने की घटनाएं अब लगभग पूरे साल होती हैं। आमतौर पर पूर्वी भारत में मॉनसून के पहले के आंधी तूफान में बिजली गिरती है। इसे काल बैसाखी भी कहा जाता है। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी नुकसान हुआ है, जिसकी डिटेल रिपोर्ट बन रही है। लेकिन सवाल यही कि बेमौसम आंधी तूफान क्यों आ रहा है? सबसे बड़ी बात कि मौसम विभाग इसका अनुमान क्यों नहीं लगा पाया, और अगर ये पता था कि आंधी तूफान आने वाला है तो लोगों को सचेत क्यों नहीं किया गया, इस तरह की चेतावनी क्यों नहीं जारी की गई? क्योंकि जो लोग मारे गए वो सब अपना रोजाना का काम कर रहे थे, अगर उन्हें पता होता तो इस दौरान सुरक्षित जगहों पर वो रुक सकते थे।
3: बुधवार को यूपी में आंधी तूफान की वजह से बहुत कहर मचा। मिर्जापुर जिले में तो अलग अलग जगहों पर कुल 17 लोगों की मौत हो गई। कहीं पेड़ गिरने से लोग मारे गए, कहीं कार के ऊपर पेड़ गिरा, एक घटना में दीवार ही गिर गई। उसमें कुछ लोग मारे गए। तूफान इतना तेज था कि गंगा नदी पर बना पीपा पुल भी टूट गया।
10: तेज आंधी के कारण 17 लोगों की मृत्यु हुई है, इसमें से विभिन्न कारण है उन मृत्यु की। कंटेनर तेज हवा से पलटने से 2 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 लोगों की मृत्यु आकाशीय बिजली से हुई है और अन्य जो मृत्यु है वो टीन शेड गिरने से की वजह से, घायल होने से, पेड़ गिरने से या दीवार गिरने से मृत्यु हुई है। तो विभिन्न कारणों से जनपद में 17 लोगों की जनहानि हुई है और अभी उसका इन लोगों का पोस्टमार्टम के बाद इन सभी के परिवारों को 4,00,000 रुपए प्रति परिवार की सहायता दैवीय आपदा से मुहैया कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है।
3: यूपी के फतेहपुर जिले में तेज आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचाई है। कहीं पेड़ गिरे, कहीं बिजली के खंभे उखड़ गए, कहीं पूरा घर ही ढह गया। इन हादसों में कुल 11 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा 8 मवेशियों की भी जान गई है।
11: अचानक हो गई थी, मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ बाबूजी, दर पर मेरी औरत कान निकल गए बाबूजी।
12: क्या कर रही थी उस समय जिस समय आंधी आई?
11: भोजन कर रही थी बाबूजी। भोजन कर रही थी बैठे और मैं यहाँ पर बैठा था और ऐसा दीवार बाबूजी ऐसा दीवार डाल लिए जा करके कि मतलब जो है हमको दिखाई नहीं पड़ेगी कहाँ को कहाँ क्या हो गया।
7: दौरान ये छप्पर रखा था उसी दीवार में, दीवार भी गिर गई और उसी में दब के उनकी मौके पर डेथ हो गई।
12: कितने लोग दबे थे?
7: 5 लोग दबे थे जिनमें से 4 लोग घायल हो गए, काफी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 1 लोगों की मौके पर ही डेथ हो गई है।
13: दोपहर के समय आंधी तूफान आया, उसमें जनपद फतेहपुर में तहसील खागा क्षेत्र के अंतर्गत अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 10 लोगों की मृत्यु हुई है। यद्यपि इसमें एक व्यक्ति तहसील सदर का रहने वाला है किंतु दुर्घटना खागा क्षेत्र में हुई है और सदर तहसील क्षेत्र में भी 1 महिला की मृत्यु हुई है। तो इस प्रकार कुल अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार तहसील खागा में 10 और तहसील सदर में 1, कुल 11 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है, जो अत्यंत दुखद है।
3: उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों की जान प्रयागराज में गई। पूरे जिले में कुल 21 लोगों की मौत हुई। संगम नगरी में बुधवार शाम आए तेज तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी के बीच कई जगहों पर सड़क पर पुराने पेड़ गिर गए जिनके नीचे कई वाहन दब गए। पुलिस लाइन के गेट नंबर 2 के सामने सैकड़ों साल पुराना नीम का पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गया। पेड़ के नीचे 1 एसयूवी कार समेत कई दोपहिया वाहन दबे हुए हैं। तेज आंधी तूफान में पेड़ गिरने के दौरान कई लोगों ने भागते हुए अपनी जान बचाई। प्रयागराज जिले में आंधी तूफान की चपेट में आने से कुल 21 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 9 महिलाएं, 8 पुरुष और 4 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 20 पशुओं की भी आंधी तूफान की चपेट में आने से मौत हुई। आंधी तूफान का कहर इतना ज्यादा था कि 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर पुराने पेड़ और शाखाएं टूटकर सड़कों पर गिर गई।
14: प्रयागराज में 21 जनहानि हुई है जिसमें तहसील फूलपुर में आपकी 4 हैं, सुराव में 5, मेजा में 4, हंडिया में 7 और सदर में 1 जनहानि हुई है। उस जनहानि में 4 बच्चे हैं, 9 महिलाएं हैं और 8 पुरुष हैं। सभी पीड़ित जो परिवार हैं, जो मृतक लोगों के परिवार हैं, प्रशासन पूरी संवेदना व्यक्त करता है। प्रशासन की टीम उनके पास पहुंची हुई, डॉक्यूमेंटेशन कराया जा रहा है और पीड़ित परिवार को जो 4,00,000 की सहायता राशि राहत में अनुमन्य होती है वो अविलंब 24 घंटे के अंदर पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
3: देवरिया में आकाशीय बिजली गिरने से भी 2 लोगों की मौत की खबर है और इसके अलावा तेज आंधी और तूफान ने तो कहर बरपाया है। आंधी की वजह से कई इलाकों में अलग अलग जगहों पर सड़क पर पेड़ उखड़ कर गिर गए। पुलिस वाले कुल्हाड़ी से गिरे हुए पेड़ काटते दिखाई दिए। कानपुर देहात के कपड़हाट ग्राम पंचायत में बुधवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से 1 युवती की मौत हो गई जबकि करीब 35 बकरियां भी चपेट में आकर मर गई।
0: विशेष विभाग तक छोटे से ब्रेक का हौसला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Comfort, effortless style, AD from the House of Arvind.
5: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिए.
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही.
7: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके.
8: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
9: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
10: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
8: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
11: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
9: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
8: जहां खबर वहां खबरदार.
12: In association with
13: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
14: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई डगर पर अब गृह मंत्री तुरंत निकल पड़े हैं, जिन्होंने अपना काफिला 10 से 11 गाड़ी से घटाकर 5 गाड़ियों में बदल दिया। ये बुधवार को अमित शाह के काफिले का वीडियो है, जिन्होंने अब अपने काफिले में 50% गाड़ियां कम कर दी, ताकि सुरक्षा के साथ देशवासियों के बीच बचत वाला संदेश ऊपर से नीचे तक पहुंचे। अपने काफिले को आधा करके अमित शाह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आर्थिक संकट के समय केवल जनता ही नहीं बल्कि सरकार भी जिम्मेदारी निभा रही है। प्रधानमंत्री अगर 2 गाड़ी से अब केवल चलने लगे तो गृह मंत्री ने 50% गाड़ी काफिले में घटाई। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जो Z+ सुरक्षा में चलते हैं, जिनके साथ पहले 11 गाड़ियों का काफिला चलता रहा, अब वो केवल 4 गाड़ी लेकर चलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी 11 गाड़ियों का काफिला छोड़कर 4 गाड़ियां लेकर कैबिनेट की बैठक में पहुंचे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र के तमाम मंत्रियों की तरफ से क्या ये सारी कवायद इसलिए ताकि जनता तक संदेश भी पहुंचे और वो भी कम गाड़ी से चलकर तेल बचाएं, साथ ही उस सियासत को जवाब मिले जो अब तक सरकार की कोशिश पर सवाल उठाती रही। सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों तक नरेंद्र मोदी की खींची लकीर पर अब सब चलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का निर्देश है, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, अफसर सब 50% गाड़ियां अपनी फ्लीट में कम करेंगे। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने बैठक करके दे दिया है, उस पर अमल करना शुरू हो चुका है। अपने काफिले से लेकर मंत्रिमंडल के काफिले तक को हाफ कर दिया है। जैसे ये देखिए, योगी सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल नई दिल्ली से मेरठ तक की यात्रा अपने काफिले के साथ नहीं करते हैं, मेट्रो ट्रेन और नमो भारत ट्रेन से करते देखते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने काफिला कम कर दिया, 13 की बजाय 8 गाड़ी लेकर अब मोहन यादव निकले हैं।

अमित शाह और नितिन नवीन से योगी की मुलाकात पर यूपी में बढ़ा सियासी तापमान। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रालय बंटवारे समेत कई अहम मुद्दों पर बात। पीएम से भी आज मिल सकते हैं आदित्यनाथ। पीएम की अपील के बाद बीजेपी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों में तेल बचाने की अपील। बस, बाइक से लेकर साइकिल तक

0: सीबीआई ने तेज की तफ्तीश। राजस्थान में आरोपी दिनेश और मांगीलाल के घर दबिश। लातूर में भी छापा। गिरफ्तार 5 आरोपियों को 7 दिन की सीबीआई रिमांड। चीन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने की जिनपिंग से जंग पर बात। हॉर्मूज खोलने को लेकर भी दोनों नेताओं में सहमति। ट्रंप ने बताया दोस्त, कहा बेहद सकारात्मक रही मुलाकात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। संकट, सियासत और सस्पेंस, तीन तरह की खबरें आज आपके लिए हम चुनकर लाए हैं जिनसे खबरदार करेंगे। जहां आज आपको सबसे पहले थोक में आती महंगाई के संकट काल से खबरदार करेंगे, जिसने 10 तरह की महंगाई का ट्रेलर दिखा दिया है और इस संकट के सवाल के मुहाने पर खड़ा कर दिया है कि क्या अब पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो फिर महंगाई की बौछार हो जाएगी। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते, इसीलिए नीट पेपर लीक कांड की खबरदार करती इन्वेस्टिगेशन आई है, जहां एक परिवार ऐसा जिसका कोई बच्चा पिछले साल नहीं बचा, जिसे डॉक्टर पेपर लीक कांड के आरोपियों ने नहीं बनाया हो। लेकिन सवाल तो उस बड़े आदमी को लेकर है जिसका चेहरा अब तक छिपा है। दुनिया की बड़ी खबर, ट्रंप जिनपिंग के गुपचुप समझौते से क्यों भारत को खबरदार होना पड़ेगा, इसको ध्यान से आपको वीडियो के साथ बताएंगे। और क्या खतरनाक केमिकल वाली जहरीली हल्दी ने हल्दी की रस्म के दौरान एक दुल्हन को मार दिया, आज की चौंकाने वाली बड़ी खबर भी आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर आपके किचन, आपकी जेब, आपके बजट पर गहराते संकट की। क्या ईरान युद्ध नए सिरे से भड़कने वाला है, इसलिए भारत खुद को बड़े संकट की चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन युद्ध के इस शोर में महंगाई धीरे धीरे आम आदमी पर शिकंजा कस रही है। महंगाई की आंच घरेलू सिलेंडर के 60 रुपए महंगा होने से तेज होना शुरू हुई, इसके बाद कमर्शियल सिलेंडर एक झटके में 993 रुपए इसी महीने महंगा कर दिया गया। छोटा सिलेंडर यानी 5 किलो वाला सिलेंडर, जिसे गरीब लोग, छात्र लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके दाम में भी सीधे 261 रुपए की बढ़ोतरी होना चर्चा का विषय रहा। प्रीमियम पेट्रोल के दाम भी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए जा चुके हैं, तो सीएनजी मुंबई में 2 रुपए किलो तक महंगी हो चुकी। सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी लगने से वो भी महंगे हो गए। कल ही दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है, यानी जनता की सुबह की चाय के साथ शुरुआत ही महंगाई के साथ होने लगी है। सरकार चिंतित है चीनी महंगी ना हो जाए, इसके लिए इसके निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई है। फ्यूल सरचार्ज की वजह से हवाई टिकटों के भी आम आदमी को 2000 किलोमीटर के सफर पर 899 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। मतलब यह है कि जैसे कहा जाता है कि मुसीबत दबे पांव आती है, वैसे ही महंगाई की मुसीबत दबे पांव धीरे धीरे दाखिल होती जा रही है। फर्क यह है कि देश को पता है कि ये कठिनाई आ रही है, जिसे रोकने के लिए प्रधानमंत्री लगातार सतर्क करते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि सब मिलकर बचाएंगे तभी इस महंगाई से बच पाएंगे।
1: पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारत भी इससे अछूता नहीं है। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। ये संकट किसी भी तरह हमारी प्रगति को, हमारे विकास को प्रभावित न करें।

0: जिस संकट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हफ्ते से पूरे देश को खबरदार करते आ रहे हैं, वो अब थोक में आपके ऊपर आने लगा है। संकट को समझ लीजिए, खबरदार हो जाइए, क्योंकि अप्रैल के महीने में थोक महंगाई दर 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई, जो मार्च में 3.88% पर थी। ये 42 महीने में सबसे ज्यादा है। प्राइमरी आर्टिकल यानी कच्चे सामान की महंगाई 6.36% से 9.17% हो गई। वहीं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की महंगाई भी 3.39% से 4.62% पहुंच गई। मतलब है कि फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान की लागत भी बढ़ रही है। कोर महंगाई यानी खाने पीने की चीजों और ईंधन को छोड़ बाकी वस्तुओं की महंगाई भी बढ़कर 5% पर पहुंच गई, जो 43 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे ये संकेत मिलने लगा है कि महंगाई का दबाव अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं, बल्कि बाकी सेक्टर में फैलने लगा है। और महंगाई का यही संकट धीरे धीरे आपकी जेब की चारों तरफ जकड़ने लगा है। वो आपके घर के सिलेंडर से लेके रेस्टोरेंट ढाबे के सिलेंडर तक पहले दबे पांव पहुंचा, जो सबसे पहले महंगे हो चुके हैं। जिसने जनता की जेब को ढीला करना मार्च के महीने से शुरू किया, मई तक ढीला करता आया।
1: सिलेंडर का रेट ऑलरेडी इतना हाई रहेगा, तो फूड एंड बेवरेजेस का भी थोड़ा हमारे को इश्यूज रहा करेगा।
2: क्या ये आपके बजट में रहेगा बाहर आना, जैसे आप पहले यूजुअली बाहर आते थे?
3: बट ऑब्वियसली वो कम ही हो जाएगा हमारा, बाहर खाना वगैरह
2: कम करना पड़ेगा।
1: का रेट ऑलरेडी इतना हाई रहेगा, तो फूड एंड बेवरेजेस का भी थोड़ा हमारे को इश्यूज रहा करेगा।
2: क्या ये आपके बजट में रहेगा बाहर आना, जैसे आप पहले यूजुअली बाहर आते थे?
3: बट ऑब्वियसली वो कम ही हो जाएगा हमारा, बाहर खाना वगैरह
2: कम करना पड़ेगा,
3: हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
0: अब महंगाई का वो संकट काल आम लोगों को सुबह से परेशान करने जा रहा है, जहां दूध की थैलियों का वजन उतना ही रहना है। बस आपकी जेब 2 रुपए प्रति लीटर अमूल से लेकर मदर डेयरी तक के दूध खरीदने पर ढीली होने लगी है।
4: बहुत गलत हुआ, बढ़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो गरीब है वो कैसे खाना खाएगा।
5: जो बिल्कुल गरीब तबका है उसको सरवाइव करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए जद्दोजहद करता है।
6: मुश्किल तो है हर चीज में, हर चीज महंगी हो रही है प्रॉब्लम, और दूध उसके बाद जरूरत की चीज है, बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है।
7: महीने का बजट भी इसी से निर्धारित होता है। अब 2 रुपए का बढ़ने का मतलब है कि 60 रुपए, तो उसके आधार पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि है ना, इतनी जल्दी जल्दी ना बढ़ाएं।
8: ओवर टाइम इस पे बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली जो लोग मेहनत करते रोज की, उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ता है।
0: मुंबई में तो सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। क्या आप जल्द ही दूसरी जगहों पर सीएनजी के दाम बढ़ने की आशंका है? और तब थोक महंगाई दर अगर 42 महीनों में सबसे ज्यादा हो जाती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियां बढ़ी हुई लागत को जल्द ग्राहकों पर डालेंगी।
9: विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है, और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है, और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है।
10: ईरान युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ। आप सोचेंगे युद्ध अभी तो सीज फायर की वजह से रुका हुआ है, लेकिन दुनिया भर के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा रास्ता हॉर्मुज अभी पूरी तरह खुला नहीं है, बल्कि वहां अमेरिका ईरान की तनातनी जारी है। इसकी वजह से यह हालत है कि संकट आपके किचन तक आ चुका है। याद करिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, कहा था कि 10% खाने का तेल देश की जनता कम कर दे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आपकी जेब पर पड़ते असर से समझ लीजिए। सोयाबीन तेल की कीमत 27 फरवरी को जिस दिन युद्ध शुरू होने वाला था उससे एक दिन पहले 150.80 रुपए प्रति लीटर थी, जो 14 मई को बढ़कर 159.50 रुपए हो गई। इसी दौरान सूरजमुखी तेल की कीमत 174.70 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 185.90 रुपए हो गई। यहां तक कि पाम ऑयल, जो बाजार में सबसे सस्ता विकल्प है, उसकी कीमत भी 136.20 रुपए से प्रति लीटर से बढ़कर 144.80 रुपए प्रति लीटर हो गई। वहीं पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले मूंगफली तेल की कीमत 194.80 रुपए से बढ़कर 201 रुपए प्रति लीटर हो गई। वनस्पति की कीमत भी 156.60 रुपए से बढ़कर 161.50 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। सरसों के तेल का दाम 186 से 189 रुपए प्रति लीटर यानी 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। खाने के तेल के बाद अब गाड़ियों को चलाने वाले तेल की बात करते हैं। सबकी चिंता पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर है, क्योंकि ये जैसे ही बढ़ेगा महंगाई क्लस्टर बम की तरह फूटेगी। देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से लेकर आरबीआई गवर्नर तक के बयान इसी संकट की तरफ संकेत दे चुके हैं। इसीलिए जनता के मन में तेल के दाम को लेकर आशंका बनी हुई है।
11: कच्चा तेल का रेट जैसे बढ़ रहा है तो बढ़ना तो चाहिए, लेकिन अभी तक तो मुझे उम्मीद नहीं है। क्या कहते, टीवी में मैं भी देखता हूँ, टीवी में नहीं बताया जा रहा है जो रेट बढ़ेगा। सब्सिडी आया था तो गवर्नमेंट अपने जेब से दिया है, तो अब क्या भरोसा बढ़ा दे।
12: अगर जो स्थिति बनती है कि डीजल या पेट्रोल का दाम बढ़ाया जाए तो आपके हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए?
13: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
12: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
13: गरीबों पे मार होती है।
12: ऐसे भारत की, देश की, हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत रहनी चाहिए। कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते भी हैं तो देश के लिए ही हैं, हमारे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि सरकार अगर रेट बढ़ा रही है तो कहीं और लेके जा रही है उस पैसे को, वो समाज के लिए, देश के लिए काम आ रहा है। और पीछे जो उन्होंने इतने सालों से रेट बढ़े नहीं हमारे, तो 94 रुपए कुछ पैसे चल रहे हैं आज भी वही है। और आज के समय में अगर देश के ऊपर कोई संकट आया तो हम देश के साथ खड़े हैं।
13: पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो देखो सारी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा, उसको मिडिल क्लास लोग हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत फर्क पड़ने वाला है इस चीज से।
14: अभी तो स्थिति सामान्य है बिल्कुल, अभी किसी तरीके का स्टॉक या इस तरीके से मतलब कोई पैनिक या कुछ नहीं है लोगों में। लोगों को समझ है कि हाँ ठीक है, लोग आ रहे हैं और अपना जितना डेली रूटीन में लेते हैं उतना ही ले रहे हैं। सप्लाई में तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई तो जितनी डिमांड मतलब एज पर सेल के हिसाब से डेली सेल के उतनी सप्लाई हमारे पास आ रही है।
15: देखिए ये देश हित के लिए लिया गया फैसला है और इस फैसले का पूर्ण समर्थन है, और मैं किसी पार्टी विशेष के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मोदी जी ने अपने पर्सनल निजी इसके लिए बढ़ाया है। बाकी बहुत सारे समृद्ध देश हैं जिनका ऑलरेडी उन्होंने बहुत पहले बढ़ा चुका, युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने पेट्रोल के कीमतों में बहुत उछाल मार दिया है। हमारे देश में बहुत देर से हुआ है।
16: प्रधानमंत्री बोले हैं कि कुछ कटौती करके चले, अगर ऐसा होता है तो बढ़ भी नहीं सकता है,
17: बढ़ नहीं सकता।
18: मोदी जी हमारे देश के लिए ही कुछ अच्छा सोच करके किए होंगे।
19: सरकार ने अभी तक कंपनियों को रोक रखा है रेट बढ़ाने से। एज पर अगर कंपनी की कैलकुलेशन लगाई जाए तो दे आर बेयरिंग अ लॉस ऑफ अराउंड 20 रुपीज ऑन डीजल एंड 30 रुपीज इन पेट्रोल।
20: प्राइस के लिए देखिए, अगर मान के चलिए कुछ बढ़ भी जाता है तो जनता मजबूरन तो लेना ही है, क्योंकि जरूरत का चीज है, उससे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मिलना चाहिए,
21: मिलना
20: चाहिए सभी को।
21: हाँ, सभी को मिलना
20: जी। क्या नाम है? साथ सबका विकास। हाँ। सबका विश्वास।
22: जरूरत रहेगा तो आदमी ड्यूटी नहीं करेगा, ड्यूटी नहीं जाएगा, बताइए। ड्यूटी तो जाना अनिवार्य है, ड्यूटी नहीं जाएगा पेमेंट नहीं मिलेगा, घर में बैठ के थोड़ी खाएगा लोग। मोदी जी तो कहीं रहा है, लेकिन मोदी जी तो कहेंगे तो ऑफिस में ऑफिस वाले को बोले कि हाँ कष्ट नहीं बोलाए कर्मी को, अपना घर से ही काम करवाए तब ना।
23: भैया बहुत बिक्री हो रही है, वो लाइन लग के हो रही है, और जहाँ 5,000 रुकता था 8,000 रुक रहा है,
24: ज्यादा आ रहे हैं। ये सोच
23: बढ़ा रहे, टंकी फुल करा रहे हैं पूरी।
25: जिस तरीके से लड़ाइयाँ और जिस तरीके से वो चल रहा, और मतलब कंपनी को नुकसान उठा के बेच रही है माल, उसके हिसाब से तो हम लोग नहीं बता सकते ना। लेकिन ये कि जैसा लग रहा हो सकता है कुछ बढ़ जाए।
10: तेल आयात करना पड़ता है, डॉलर में चुकाना पड़ता है, भार देश पर आता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कल काफिला 20 गाड़ी से घटाकर 2 का कर दिया। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने 50% कारें अपनी हटा दी। आज लोकसभा स्पीकर ने अपने काफिले में कारों की संख्या घटा दी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह केवल 1 कार के साथ पीएमओ पहुंचे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार छोड़ ई रिक्शे की सीट थाम चुके हैं। महाराष्ट्र के सीएम बुलेट से विधान भवन पहुंचते दिख रहे हैं। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ के अफसरों को हर बुधवार बिना वाहन दफ्तर आने का आदेश दिया है। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने काफिले में कार घटा दी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी अपने काफिले में कारों की संख्या घटा दी। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी केवल 3 कारों के काफिले में चल रहे हैं। सम्राट चौधरी के मंत्री अशोक चौधरी केवल 1 कार में जेडीयू दफ्तर पहुंचे। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना साइकिल से विधानसभा पहुंचने लगे। इन सब के बीच प्रधानमंत्री की अपील पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया। दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा। प्राइवेट कंपनियों को भी हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जाएगा। रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह मानते हुए अपने काफिले में 60% की कटौती की है। सीएम के काफिले में अब केवल 4 गाड़ियां हैं जिनमें से 2 ईवी हैं। अधिकारियों की कार को मिलने वाले तेल को 20% कम कर दिया है। अगले 6 महीने कोई भी नई गाड़ी सरकार नहीं खरीदेगी। अब उस संकट से आपको खबरदार करते हैं जिसकी जड़ में डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका का वो तुनक मिजाज नेता जो जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बना है दुनिया संकट में घिर गई है। भारत में जहां ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, वहीं बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात हुई है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर काफी नरम देखे गए। वहीं ब्रिक्स की बैठक में ईरान और रूस के विदेश मंत्री भी मौजूद रहे, हालांकि चीन के विदेश मंत्री ट्रंप के दौरे की वजह से नहीं आए। राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल में बीजिंग पहुंचे ट्रंप से जिनपिंग ने दो टूक कहा कि सहयोगी बने, प्रतिद्वंद्वी नहीं।
0: आठ साल बाद हो रही इस मुलाकात में कौन किस पर भारी पड़ा, दुनिया ये तस्वीर देखकर सेकंडों में समझ गई। विदेशी मेहमानों से बदसलूकी करने वाले ट्रंप जब अपने इस पैतरे को जिनपिंग के साथ आजमाने की कोशिश करने लगे, करारा जवाब मिला। जैसे ही ट्रंप ने अपनी ओर जिनपिंग का हाथ खींचा तो शी ने भी जैसे को तैसा जवाब देते हुए खबरदार कर दिया

0: सवाल यह है कि चीन में डोनाल्ड ट्रंप का यह भव्य स्वागत, बीजिंग में ट्रंप के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बिछाया गया ये लाल कालीन, बार बार जिनपिंग की पीठ थपथपाते अमेरिकी राष्ट्रपति की ये हरकतें क्यों दुनिया और भारत को खबरदार करने के लिए काफी है?
1: Such respect for China.
0: चीन में ट्रंप का एक नया ही रूप दिखा, जिसमें अमेरिका चीन के आगे घुटने टेकते दिखा। ट्रंप ने जब जुबान खोली तो चीन और जिनपिंग की सिर्फ तारीफ निकली।
1: The job you've done, you're a great leader. I say it to everybody, you're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
0: बीजिंग पहुंचे ट्रंप ने जिनपिंग की तारीफों के पुल बांधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, दुनिया के उस डर को पक्का कर दिया। ट्रंप दुनिया को G2 यानी ग्रेट 2 की तरफ ले जा रहे हैं, जिसमें चीन और अमेरिका ही अब तय करेंगे कि दुनिया कैसे चलती है। यानी अमेरिका चीन के रास्ते में नहीं आएगा और चीन अमेरिका के रास्ते में नहीं आएगा। ट्रंप की ये यात्रा दिखाती है कि अमेरिका ने चीन को एक महाशक्ति के तौर पर स्वीकार कर लिया। यही बात विस्तारवादी सोच वाले हमारे पड़ोसी को देखते हुए खबरदार करती है।
1: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
0: बीते एक दशक में अमेरिका और चीन के बीच संबंध ट्रेड वॉर तकनीक में होड़ और रणनीतिक दुश्मनी तक पहुंच चुके थे, लेकिन ट्रंप की यात्रा दिखाती है कि प्रतिस्पर्धा के बावजूद दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। इसलिए ट्रंप अपने साथ एलन मस्क जैसे बड़े कारोबारियों के दलबल के साथ बीजिंग पहुंचते हैं।
1: We have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me, and they're here today to pay respects to you and to China, and they look forward to trade and doing business.
0: अमेरिका में पिछले तीन दशकों से G2 मॉडल की चर्चा होती रही है। G2 का मतलब है दुनिया के बड़े फैसले अब संयुक्त राष्ट्र G20 या फिर कई देशों वाली संस्थाओं में नहीं, बल्कि वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच तय होंगे। वो चाहे कारोबार, AI, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन, ऊर्जा हो या सुरक्षा, सब कुछ दो ध्रुवों के बीच संतुलित होगा। ट्रंप का बीजिंग के सामने बेबस होना, 100 धमकियां देकर भी बीजिंग की जमीन पर पूरे लाव लश्कर के साथ उतरना इसी बात पर मुहर लगाता है।
1: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. And we're going to have a fantastic future together.
2: संयुक्त राष्ट्र और WTO जैसी बहुपक्षीय व्यवस्था पहले से ही निष्क्रिय हो चुकी है, ऐसे में G2 की शुरुआत भारत के लिहाज से कितनी खतरनाक है। अगर ट्रंप आर्थिक हित को देखते हुए चीन के सामने झुक जाएंगे तो फिर क्वाड का क्या होगा? क्या अमेरिका के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया वाले गठबंधन क्वाड का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा? हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या चीन की दादागिरी पर अमेरिका आंखें मूंद लेगा? चीन के विस्तारवादी नीति को क्या अमेरिका मान लेगा या विरोध की नीति छोड़ देगा? तो फिर ये वाकई भारत के लिए किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं, क्योंकि चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है।
1: The United States, it's, people aren't talking about anything else.
0: तो डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग में कही गई चापलूसी भरी बातों को भारत को बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि ये बातें इस बात का इशारा हो सकती है कि क्वाड अब अमेरिका के लिए अब अस्तित्वहीन हो चुका है। ट्रंप के साथ 30 से ज्यादा कारोबारियों के बीजिंग जाने का मतलब चीन से कारोबार समेटना नहीं, बल्कि ये मानना है को बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि ये बातें इस बात का इशारा हो सकती है कि क्वाड अब अमेरिका के लिए अब अस्तित्वहीन हो चुका है। ट्रंप के साथ 30 से ज्यादा कारोबारियों के बीजिंग जाने का मतलब चीन से कारोबार समेटना नहीं, बल्कि ये मानना है कि व्यापार में चीन की अनदेखी अब करीब करीब असंभव हो चुकी है।
2: डोनाल्ड ट्रंप कब पलट जाएंगे वो इस बारे में खुद नहीं जानते। इस वजह से अमेरिका अपने दोस्तों में भरोसा खो चुका है। इसने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी। डोनाल्ड ट्रंप नाम के इस महासंकट का सामना सबसे पहले उनके टैरिफ लादने से हुआ। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर परेशान किया, भारत को दबाव में लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, जिसने अमेरिका के दोस्त होने का भ्रम तोड़ दिया।
3: इसके बाद पिछले साल मई का महीना आया और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिशें की, इसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तारीफें की, मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहकर दुनिया में आतंक के सबसे बड़े केंद्र और उसके आतंकियों की हौसला अफजाई की। इसके बाद ईरान से जंग शुरू करने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया जिससे कच्चे तेल के दाम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई। भारत समेत दुनिया भर के देशों में महंगाई का नया तूफान खड़ा हो गया और अब जिस तरह से जिनपिंग के आगे अमेरिकी राष्ट्रपति झुके हैं, उनकी तरफ से जिस तरह से चापलूसी जिनपिंग की गई है, उससे चीन को खुली छूट दिए जाने के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल यह है कि इसका असर क्या होगा, क्योंकि चीन का हौसला बढ़ाने का मतलब उसकी विस्तारवादी नीति को नई ताकत देना है। जिस तरह से ट्रंप को जिनपिंग ने ताइवान पर हड़काया, जिस तरह ट्रंप ने ताइवान पर चुप्पी साधी, क्या उसे चीन के सामने अमेरिका का सरेंडर नहीं माना जाए? चीन का सबसे बड़ा पड़ोसी होने के नाते ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है।
4: How are you talk, sir?
5: It's great.
4: Did you talk about Taiwan?
5: Great place. Incredible. China is beautiful.
4: 特朗普总统说 谈得 很好。
5: Did you talk about Taiwan, Mr. President?
6: Thank you
7: very much.
8: Mr. President, did you talk about Taiwan?
9: जरूरत से ज्यादा बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप का ये नया रूप है। बीजिंग में ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता की तरह नहीं लगे। उनका आत्मविश्वास, उनकी अकड़ करीब खड़े शी जिनपिंग की वजह से खोसी गई। रिपोर्टर सवाल पूछते रहे, लेकिन मजाल है ट्रंप की जुबान से कुछ निकला हो।
10: 应对全球挑战，为世界注入更多的稳定性，能不能彰显两国人民的福祉和人类前途命运，共同开创两国关系的美好未来，这些可以说是历史之问，世界之问，人民之问。
9: तो एक तरह से शी जिनपिंग ने दुनिया भर के देशों को धमकाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे से खबरदार कर दिया, दो टूक बता दिया कि अगर ताइवान को शह देने की कोशिश की, उसे हथियार देकर युद्ध के लिए भड़काया, तो फिर अच्छा नहीं होगा। बात टकराव और यहाँ तक संघर्ष तक चली जाएगी, जिससे संबंध बेहद खतरनाक स्थिति में पहुँच जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जहाँ ताइवान के मामले में चुप रहे, रिपोर्टर के बार बार सवाल पूछने पर खामोश रहे, वहीं शी जिनपिंग ने इस मामले में ट्रंप को खबरदार कर दिया। चीनी सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक जिनपिंग ने ट्रंप के साथ जारी बैठक में ताइवान का मुद्दा उठाया और कहा कि ताइवान इस मामले को सही तरीके से संभालने पर ही अमेरिका और चीन के रिश्तों में स्थिरता बनी रह सकती। ताइवान लंबे समय से अमेरिका और चीन के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दों में शामिल रहा। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका ताइवान को सैन्य और राजनीतिक समर्थन देता रहा। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने ताइवान को अरबों डॉलर के हथियार पैकेज की मंजूरी दी, जिसका चीन लगातार विरोध करता आया। लेकिन ये शायद पहली बार है जब जिनपिंग ने खुलकर इस तरह से बात कही। बड़ी बात ये कि ट्रंप के अमेरिका पहुंचने से पहले ही चीन ने चार मुद्दों पर लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। बुधवार को अमेरिका में चीनी दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें चार रेड लाइंस तय कर दी गई, जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें पहले नंबर पर ताइवान का मुद्दा, लोकतंत्र और मानवाधिकार रास्ते और राजनीतिक व्यवस्थाएं और चीन का विकास को चीन ने ऐसे मुद्दे बताए जिनसे समझौता नहीं किया जा सकता। इतनी सख्त भाषा में अमेरिका को चेतावनी देने के बावजूद न सिर्फ ट्रंप खुशी खुशी चीन गए, बल्कि उन्होंने वहां जाकर शी जिनपिंग की खुशामद भी की और साथ ही चीन से रिश्तों का इतिहास खंगाल कर रख दिया।
11: This bond of commerce and respect that stretches back 250 years is the foundation for a future that benefits both of our nations. The American and Chinese people share much in common. We value hard work. Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation and happiness and peace for our children.
9: तो भारत के लिहाज से खबरदार करता सवाल है कि अगर एशिया में चीन अमेरिका का प्रमुख प्रतिद्वंदी से प्रमुख साझेदार बन जाता है, अमेरिका का चीन को लेकर रुख नरम हो जाता है, तो फिर एशिया में चीन के मुकाबले भारत को एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में देखने का नजरिया कमजोर पड़ सकता है।
0: ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में चीन को लेकर सख्त रुख अपनाया.
6: Well, if China does that, China's gonna have big problems, okay?
0: लेकिन जब ट्रंप को यह एहसास हो गया कि अमेरिकी कंपनियों के लिए जरूरी चीनी कलपुर्जों का विकल्प उनके पास नहीं, तो उनके रवैये में नरमी आई और उनके सुर बदल गए. न सिर्फ ट्रंप बल्कि उनके सहयोगी भी चीन के मुरीद दिखे. ऐसा एक वीडियो देखिए जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की आंखें चाइनीज ग्रेट हॉल की छत की खूबसूरत सजावट देखकर चौंधिया जाती हैं. वो ट्रंप जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री से इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते. तो ट्रंप और उनकी टीम का चीन को लेकर यही उत्साह भारत के लिहाज से खबरदार करने वाला है, क्योंकि ट्रंप की वजह से भारत अमेरिका के रिश्तों में खटास आई है. वहीं अमेरिका चीन की ताकत को न सिर्फ स्वीकार कर रहा है बल्कि ईरान को लेकर भी चीन की ओर देख रहा है.
7: We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf.
0: ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात में ईरान युद्ध से लेकर यूक्रेन पर बातचीत हुई, जबकि चीन रवाना होने से पहले ट्रंप ने ईरान पर जिनपिंग से किसी भी तरह की मदद मांगने से इनकार कर दिया था.
12: We need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise.
0: ट्रंप की बीजिंग यात्रा से साफ है कि अमेरिका ने चीन की ताकत को स्वीकार कर लिया है. और सवाल है कि अमेरिका क्या यह भी मानता है कि अमेरिका के लिए चीन के रास्ते में आना खतरनाक हो चुका है? क्या ताइवान पर जिनपिंग की खामोशी इसीलिए है?
3: और अब आपके घर तक पहुंच चुके तीसरे संकट की खबर से खबरदार करते हैं. खबर पेपर लीक संकट की, जिसमें नीट का पेपर लीक कराने वाले 5 आरोपियों के रिमांड पेपर की कॉपी आज तक के पास है. सीबीआई की किन दलीलों के आधार पर 7 दिन की रिमांड मिली है, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक के पास है. सीबीआई ने कहा कि पेपर लीक से जुड़े डिजिटल डिवाइस, मोबाइल डेटा, चैट, कॉल रिकॉर्ड और पैसों के लेन देन की जानकारी जुटानी है, सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित होने से रोकना है, एनटीए और दूसरे विभागों के उन अधिकारियों की पहचान करनी है जिनकी भूमिका पेपर लीक में हो सकती है. यही बात सबसे अहम है क्योंकि इस बार सीबीआई ने अपनी जांच में थोड़ा बदलाव किया है. सीबीआई अब की पेपर कहां तक बटा से ज्यादा इस बात पर जोर दे रही है कि एनटीए में वो कौन है जिसका पेपर लीक में हाथ हो सकता है. सबसे जरूरी है कि आखिरी व्यक्ति तक ये जांच जाए, या यूं कहें इस मामले में कि किंगपिन जो असली है वो सामने आए. और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं. अरविंद, ये बहुत एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं जो आपके पास हैं, और इसके आधार पर अगर हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो जांच का स्तर इससे आप क्या बताएंगे?
13: देखिए, बिल्कुल, सीबीआई किसी बड़े की तलाश में है, क्योंकि अब तक जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे पूछताछ हुई है, उनसे पता चला है कि किसी एक को लीक पेपर मिला, फिर दूसरे को मिला, लेकिन जो रिमांड पेपर की कॉपी आज तक के हाथ लगी है उसमें सीबीआई ने अदालत में कहा है कि दरअसल हमें यह भी पता लगाना है कि एनटीए के अधिकारी, उसके अलावा अदर डिपार्टमेंट के लोग कहीं इस लीक पेपर में शामिल तो नहीं है, उनका पता लगाना है. तो सवालों के घेरे में एनटीए भी है. और देखिए श्वेता, ये कोई पहली बार तो है नहीं. 2024 में पेपर लीक हुआ, हो हल्ला मचा, उसके बाद एनटीए को और कड़ाई करनी चाहिए थी. तो 2024 में पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद 2026 में भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, तो ऐसे में फिर एनटीए के अधिकारियों पर सवाल उठना लाजमी सी बात है. इसलिए अदालत में जब 5 लोगों की कस्टडी, जो गिरफ्तार आरोपी हैं, उनकी 5 लोगों की कस्टडी रिमांड की मांग कर रही थी सीबीआई, तब अदालत ने कहा कि हमें पता लगाना है कि एनटीए के वो अधिकारी, अदर डिपार्टमेंट के वो अधिकारी कौन है जो इस पेपर लीक में शामिल हो सकते हैं. उसके अलावा भी बहुत सी दलीलें दी हैं, लेकिन ये दलील अहम हो जाती है क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहा है, एनटीए सवालों के घेरे में है. श्वेता,
3: अरविंद ओझा हमारे संवाददाता ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं. दरअसल इस पूरे जांच में एक और बहुत अहम बिंदु है, और वो बात है बड़े आदमी से जुड़ी, यानी कि कौन है वो बड़ा आदमी जो इस पूरी लीक के को कंट्रोल कर रहा है, इस पूरे नीट लीक कांड में यही सवाल सबसे बड़ा है. अब जिसका नाम अपने घर के 5 बच्चों को दावा है कि लीक पेपर से ही डॉक्टर बना देने वाला दिनेश बिवाल ले रहा है, कौन है इस पेपर लीक कांड का वो बड़ा आदमी जिसका चेहरा छिपा हुआ है, जिसकी वजह से आरोपी के घर वाले ही दावा करने लगे कि हर साल देश में नीट का पेपर लीक होता आ रहा है.
14: लोगों को तो बचाया जा रहा है,
15: लोगों को तो बचाया जा रहा है,
16: उसको बचाया जा रहा है,
15: लोगों को तो बचाया जा रहा है,
16: उसको बचाया जा रहा है।
0: देश के 22,89,000 परिवारों, बच्चों की उम्मीदों पर नीट का पेपर लीक करा के सरकार के दावों पर पानी फेरने वाला, जिसे बीजेपी के विधायक राजस्थान में अपनी पार्टी का ऊर्जावान कार्यकर्ता बताते आते हैं, आखिर वो किन बड़े लोगों की बात करने लगा? कौन है वो बड़े लोग जब तक नीट पेपर लीक कांड में बचे हुए हैं? क्या कोई मंत्री, क्या कोई एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अफसर, क्या कोई बड़ा नेता, क्या कोई बड़ा कोचिंग चलाने वाला, क्या कोई बड़ा नौकरशाह? कौन है वो बड़ा आदमी जिसको बचाने का दावा पेपर लीक कराने के आरोप में सीबीआई की गिरफ्त में आने के बाद दिनेश बिवाल ही नहीं करता, बल्कि जब इस पूरे मामले को आज तक पर सबसे पहले पड़ताल करके रिपोर्ट करने वाले संवाददाता शरद कुमार दिनेश और मांगीलाल के घर पर पहुंचकर आगे जानना चाहते हैं, तो पहले तो आज तक का कैमरा, आज तक का माइक, आज तक संवाददाता को देखकर पेपर लीक कराने के आरोपी का परिवार उन्हें पीछे हटाने लगता है। क्योंकि इस परिवार को लगता है कि आज तक पहुंच गया है तो फिर कोई ना कोई बड़ी खबर पेपर लीक खुलासे में सामने लेकर आएगा, और यही होता है जहां पेपर लीक के आरोपी भाइयों की पत्नियां कहने लगती हैं असली मास्टरमाइंड कोई और है।
17: इतना दिन से पेपर लीक हो रहे हैं और अब आज दुश्मन बन रहे हैं माखा। कई साल दो बच्चा पेपर दिया जाए, दो बच्चा पेपर देर के नहीं, किस पेपर में भी
18: 2024 में भी लीक होगा।
17: बेटो चले मारो ऋषि,
18: मारो
17: बेटो, पहली बार नीट को पेपर दियो जो नीट का पेपर में पहली बार नहीं कोई मारा बेटा को पसा पागल आग रहा है, अइया खेंगा मैं दिए, अइया खेंगे।
19: आपके बेटी भी दिया थे, दी थी?
17: मेरे बेटा दिया है मेरा नीट का पेपर, उसके
19: इस बार बेटा दिया है ना?
17: हाँ मेरा बेटा पेपर दिया नीट का, पर मेरे बेटे के इतने मार्क्स नहीं आए और किसी ने पसा दिया मेरे आदमियों को,
18: किसी ने फसा
17: दिया है हमारे बच्चों ने पिछली बार 3-4 बच्चों ने, किसी की शादी सोची है, सारा उनको छोड़ रहा हूँ, हाँ पाचा पड़ गया सारा, इतना
18: पड़ा
17: पेपर में होगा।
3: ये बात सच है कि नीट पेपर लीक के पीछे वाकई एक बड़ा आदमी है, क्योंकि अब तक सीबीआई ने जिनको पकड़ा है या जो सीधे जांच के दायरे में आए हैं उनमें अहिल्यानगर से पकड़ा गया धनंजय लोखंडे है, ये कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है। नासिक में मेडिकल काउंसलिंग की फर्म चलाने वाला शुभम खैरनार है, पुणे की मनीषा वाघमारे जो ब्यूटिशियन का काम करती है सीबीआई इसे गिरफ्तार कर चुकी है, गुरुग्राम का मेडिकल छात्र यश यादव है, सीकर में काउंसलिंग करने वाले राकेश मंडावरिया भी है, इसने 700 लोगों का ग्रुप बनाकर गेस्ट पेपर के नाम पर लीक पेपर बांटा था, जमवा रामगढ़ का प्रॉपर्टी डीलर दिनेश बिवाल है तो उसका भाई मांगीलाल बिवाल और मांगीलाल बिवाल का बेटा विकास जो राजस्थान में ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने लगा था, नीट पिछले साल उसने निकाला था, ये सारे वो चेहरे हैं जो अपने दम पर पेपर नहीं लीक करा सकते हैं, ज्यादातर एक कुरियर है, मतलब इनका काम केवल हो सकता है कि लीक पेपर को आगे बढ़ाना।
0: दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल जयपुर के पास रहने वाले ये दो भाई प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन डीलरी करते करते ये दोनों दावा है कई वर्षों से नीट के पेपर लीक की भी डील करने लगे, जिसकी जांच में जुटी सीबीआई की टीम तफ्तीश करने इन दोनों के घर तक पहुंचती है, गाड़ी तक की जांच करती है।
20: नीट पेपर लीक 2026 में गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल दिनेश और विकास के घर सीबीआई की टीम पहुंची है, आप देख सकते हैं किस तरह से घर में पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है, यहां आसपास जो इनके घर में गाड़ियां थी उन गाड़ियों की भी तलाशी ली गई है, इसके अलावा भी जो सामान है उन सारे सामान की भी तलाशी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है, अब इस तरह से निकल रहे हैं। क्या आप लोगों ने देखा, कुछ पाया यहां, कुछ आप लोगों ने जांच में?
0: सीबीआई के अफसर कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत लेकर बिवाल ब्रदर्स के घर से निकलते हैं, वो घर जो केवल आरोपियों का घर नहीं बल्कि इस घर से इतने नीट पास करने वाले बच्चे एक साल में निकल गए कि शंका पैदा हो गई है कहीं हर साल ये पेपर लीक करा के तो खेल नहीं करते रहे। हमारी बात को ध्यान से समझिएगा, गिरफ्तार मांगीलाल बिवाल के बेटे विकास को पिछले साल 2026 की नीट परीक्षा पास करके सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला, मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति ने भी नीट परीक्षा पिछले साल पास कर ली और मेडिकल कॉलेज में दौसा के दाखिला ले लिया, इन दोनों का तीसरा भाई जो जीवित नहीं, उस घनश्याम बिवाल की बेटी पलक बिवाल को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नीट निकाल के एडमिशन 2025 में मिल चुका है। दूसरी बेटी सानिया बिवाल को मुंबई के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और गिरफ्तार दिनेश बिवाल की बेटी गुंजन को वाराणसी के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। यानी 5 बच्चे इसके घर से नीट निकाल लेते हैं। सुनकर ही चौंक जाना पड़ता है कि इतना पढ़ाकू परिवार था क्या। जहां दिनेश बिवाल ने सोशल मीडिया तक पर डाल दिया कि उसके परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि उसके परिवार के 5 बच्चों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ। लेकिन जब इसी परिवार के इतने टॉप क्लास की पढ़ाई करने वाले बच्चों के बारे में आज तक संवाददाता शरद कुमार पूछते हैं तो इनकी माएं कुछ भी जानकारी में होने से इनकार करने लगती हैं।
19: बेटी कहाँ पढ़ती है अभी?
17: पढ़ रही है हमारी तो कौन कौन सी, मैं पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ जो मैं कौन कौन सी बता दूँ क्या है क्या नहीं है।
19: तो हमने सब पढ़ाया मेहनत करके,
17: मेहनत पढ़ाया, मैं अनपढ़ गाँव और मैं पढ़ी लिखी कौन है, मैं
19: पढ़ रही ये तो पता होगा।
17: पढ़ रहा है जो मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं नाम भी पढ़ लू ना, कहाँ पढ़ रही जवा।
19: अरे जग शहर का नाम तो पता होगा,
17: शहर का नाम भी पता होगा। मैं चले आऊँ ना, मेरा आदमी से ही मिलवा, कोड़ा रख रखा है, कोड़ा नहीं रख रखा है, मेरा बेटा ना कोड़ा रख रखा है।
19: आपका बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ता है ये तो बता सकती है?
17: बच्चा पा मैं वो पढ़ी लिखी हूँ ना तो मैं कहीं बताऊँ भी, कोचिंग में पढ़ रहे वो कोचिंग में पढ़ रहे।
19: ये बताओ ये गुंजन कहाँ पढ़ती है?
17: गुंजन कहाँ पढ़ती है कौन सी, तो मुझे पता नहीं है ना कौन सी जगह पढ़ती है गुंजन।
19: MBBS कर रही है ना?
17: नहीं MBBS कुछ नहीं कर रही मेरी तो।
19: कहाँ कर रही है?
17: क्लियर ही कौन माँ का बच्चा को यहाँ।
19: विकास कहाँ पढ़ता है?
17: विकास को मुना कहीं पता, कोड़ा पढ़ा, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो बताऊँ ना, ये पढ़ा ये समझ वाला बताओ।
19: प्रगति कहाँ पढ़ती है?
17: मुझे कुछ पता नहीं है मेरे बच्चों का क्या,
19: कहाँ पढ़ती है
17: कुछ पता नहीं है। किसी जगह पढ़ती है वो, कौन सी जगह, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं बच्चा को यहाँ फड़ारगंज में चले जाऊँ ना, मैं खुद ही चल जाऊँ आदमी से मिलवा।
19: बताता होगा ना किस शहर में जाता है?
17: हाँ जाता है तो इधर ही चल जाता है, जयपुरपुर की तरफ इधर ही चल जाता है हमारे तो, ये सारा गांव से इधर आसपास का कशा कशा गांव से कशी कशी।
19: अच्छा ये पढ़ते कहाँ पढ़ते?
17: हाथ जोड़ा था भाई, मैं माथा का हाथ जोड़ा था, मन परेशान मत करो।
0: तो क्या ये जो राजस्थान का बिवाल परिवार है इसके पीछे असली खिलाड़ी बड़ा आदमी कोई और है? क्योंकि ये लोग हर साल पेपर लीक करा लेंगे, इतनी इनकी ताकत नहीं दिखती। दावा ये है कि मांगीलाल और दिनेश तो नीट पेपर लीक में कोरियर का काम करते थे। जहां दिनेश ने अब की बार अपने बेटे ऋषि के लिए पेपर लीक कराया, लेकिन उसका बेटा 600 नंबर का लीक पेपर पाकर भी आंसर की से जांचने पर पता चला 107 नंबर का पेपर ही कर पाया था।
14: तो सरकार जिस तरह से सख्ती से अभी काफी सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं जो करनी भी चाहिए, एक हमको ना एग्जांपल सेट करना चाहिए कि इस तरह का काम करोगे तो देश आपको छोड़ेगा नहीं।
3: आपको कभी लगता होगा कि आपने तो बस सादा खाना खाया फिर भी आपको जलन होती है, तबीयत खराब होती है, आप और सादा खाना खाने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आप तो बस एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर मिलाकर खाना बना रहे हैं। आपको लगता है कि आप तो कोई दूसरा मसाला मिर्च तक नहीं डाल रहे, फिर क्यों जलन होती है या दूसरी कोई बीमारी क्यों हो रही है? ये सब अगर सोचते हैं तो खबरदार हो जाइए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दुल्हन की हल्दी की रस्म चलती रहती है, उसके दोस्त घर वाले हल्दी लगाते रहते हैं, सब कुछ हंसी खुशी चलता है। तभी अचानक दुल्हन परेशान होती है, उसे चेहरे पर तेज जलन होने लगती है, शरीर में हाथ पैर में जहां भी हल्दी लगाई गई वहां तेज जलन के साथ खुजली होने लगती है, चेहरे पर लाल धब्बे पड़ने लगते हैं, चेहरा सूज जाता है, हालत यह हो जाती है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, बाद में मौत तक हो जाती है। मिलावटी हल्दी से दुल्हन की जान चली जाती है।
0: मध्य प्रदेश का खरगोन, दुल्हन की हल्दी का कार्यक्रम चल रहा है हंसी खुशी संगीत के बीच।
3: मिलावटी हल्दी से दुल्हन की जान चली जाती है।
0: मध्य प्रदेश का खरगोन, दुल्हन की हल्दी का कार्यक्रम चल रहा है हंसी खुशी संगीत के बीच। अचानक दुल्हन राखी परेशान होने लगती है, चेहरे हाथ पैर पर घर वालों दोस्तों की तरफ से लगाई जाती हल्दी से उसके चेहरे पर जलन तेज महसूस होती है, वो दौड़ती है। हालत ये हो जाती है कि दुल्हन को इंदौर के MBI अस्पताल में ले जाकर तुरंत भर्ती तक कराना पड़ता है। लेकिन क्या मिलावटी हल्दी की वजह से दुल्हन की मौत हो गई? क्या हल्दी की रस्म में मिलावटी केमिकल वाली हल्दी जान ले रही है? क्या हल्दी की रस्म में जहरीले केमिकल की मिलावट अब मार दे रही है? इस सवाल की वजह 22 साल की ये दुल्हन है। ये इसकी शादी की तैयारी से पहले की तस्वीर है, जिसकी शादी में हल्दी की रस्म के दौरान हल्दी लगाने से दावा है इतनी भयानक एलर्जी हुई कि उसे इंदौर के अस्पताल में जब तक भर्ती कराया गया हालत बिगड़ चुकी थी। चेहरे पर सूजन आने लगी, हाथ पैर में लाल धब्बे पड़ने लगे।
16: सर उसके हल्दी लगे हुए थे और अचानक से कुछ ऐसा हुआ तो गले में सूजन आ गया, मुंह सूज गया उनका होठ। उसके बाद में लड़के से बोला भी नहीं जा रहा, तो फिर अब दुल्हन थी सर, सब घबरा गए। हल्दी ये बाजार में से लेके आए थे सर, बेचने वाले आए थे तो उसके लिए ले ली थी, तो उसी से गड़बड़ हो गई सर। अब
21: एलर्जिक रिएक्शन था काफी उसके शरीर में, अर्टिकेरिया और होठों पे भी कुछ स्वेलिंग वगैरह थी, और जब उसकी हिस्ट्री निकाली गई तो ये पता चला कि उसको कोई शादी का उनके यहाँ प्रोग्राम था, उसमें हल्दी लगाई गई थी, जिसके कारण उसके कुछ ही देर के बाद उसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ और उसको लाके वार्ड में भर्ती किया था। और चूंकि उसके साथ साथ उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी तो प्रिकॉशनरी हम लोगों ने उसको आईसीयू में रखा था। उन्होंने बाजार से कुछ हल्दी खरीदी थी, हो सकता है उसमें किसी तरह का कोई केमिकल्स कई बार हल्दी को कलर बढ़ाने के लिए डाल के रखते हैं, उसके कारण ये एग्जैजरेटेड रिएक्शन उसके लिए एलर्जिक रिएक्शन हुआ।
0: इसके बाद दावा है कि स्थिति न सुधरने पर घर वाले एक दूसरे अस्पताल ले गए और बाद में फिर राखी की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि जान चली गई।
22: जहाँ जहाँ भी सोर्सेस प्राप्त हुए वहाँ से नमूने हमने संग्रहित किए गए और लेबोरेटरी प्रयोगशाला को भेजे गए। हल्दी लगाने से ऐसा रिएक्शन हुआ ऐसा बता रहे, बाकी हमने भी जांच करी है और हमने लेबोरेटरी सैंपल के लिए भेज दिए गए।
0: 14 दिन में जांच से पता चलेगा राखी की मौत किस तरह की मिलावटी हल्दी की वजह से हुई, क्या केवल मिलावटी केमिकल वाली हल्दी इसकी वजह है या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है। अब सवाल आपसे जुड़ा है, हल्दी का इस्तेमाल खाने में होता है, हल्दी का इस्तेमाल शादियों में रस्म निभाने में होता है, तो क्या हल्दी अगर मिलावटी है, केमिकल वाली है, तो रिएक्शन से लेकर जानलेवा तक हो सकती है।
23: खाने की और यदि चेहरे पे भी लगा रहे हैं तो मेरा तो सुझाव यही है कि जो खाने की हल्दी है और ब्रांडेड है वो बारीक हल्दी उसका ही उपयोग करना चाहिए। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत कई बार जो है जो हल्दी है जो पैक करके दे रहे हैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव या अन्य रंग या गुलाल जैसा बना के भी उसको किया सकता है, उससे काफी हानि हो सकती है। वो जो हल्दी होगी या तो उन्होंने कहीं लूज हल्दी जो है यूज किया होगा बाजार में जो खुलेआम ठेले पे बिकती है। देखिए हल्दी को यदि हम पानी में घोल के कुछ देर रख देते हैं तो आप देखेंगे कि जो मूल हल्दी है वो पानी में घुलती नहीं है, जो हल्दी जो है नीचे बैठ जाएगी, और जो यदि उसमें कलर है तो कलर जो है गाढ़ा कलर यदि मिलाया गया है तो वो कलर ऊपर तैरने लगता है।
24: पीसी हल्दी में मिलावट की ज्यादा संभावना होती है?
23: पीसी हल्दी में ही ज्यादा संभावना है, हम जांच कर रहे हैं। और यदि फूड के माध्यम से इस तरह की हल्दी बेची जा रही है जो चेहरे पे लगा के और यदि कलर यूज हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका कार्य करें।
0: आशंका है कि हल्दी में मेटरनल येलो नाम का जहरीला सिंथेटिक डाई मिलाया गया, वो भी इतनी मात्रा में जो जानलेवा बन गया। इस मेटरनल येलो का इस्तेमाल कपड़ा रंगने में किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक। आशंका है कि हल्दी में मेटरनल येलो नाम का जहरीला सिंथेटिक डाई मिलाया गया, वो भी इतनी मात्रा में जो जानलेवा बन गया। इस मेटरनल येलो का इस्तेमाल कपड़ा रंगने में किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने के कारण भारत में FSSAI समेत विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों में इसके उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध है। खरगोन की दुल्हन राखी, जिसको घर परिवार के 15 से ज्यादा लोगों ने हल्दी लगाई, उनके हाथ में कोई रिएक्शन नहीं होने का दावा है। दुल्हन राखी को ही पहले रिएक्शन हुआ और फिर जान तक चली गई।
3: प्रतीक यादव की मौत के मामले में उनके शरीर पर 7 चोट को लेकर खुलासा हुआ है। प्रतीक का 2 साल से इलाज कर रही डॉक्टर ने आज तक से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रतीक की पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बीमारी बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंची हुई थी। चोट लगने की उनकी पुरानी हिस्ट्री है। डॉक्टर का कहना है कि 29 अप्रैल को जब प्रतीक उनके पास आए थे तब बाथरूम में गिरे थे, इसके अलावा कल भी वो किचन में गिरे थे और चोट भी थी। उन्होंने बताया कि जब इंसान इस बीमारी से गुजरता है तो अचानक कई बार वो गिरता है जिससे चोट लगती है।
25: ये बताइए कि जिस तरीके से प्रतीक यादव का कल देहांत हुआ है, निधन हुआ है, किस बीमारी से वो जूझ रहे थे और कितना ये सीवियर था?
1: काफी सीवियर डिजीज था सर को, पल्मोनरी एम्बोलिज्म डिटेक्ट हुआ था अभी लगभग 2-3 हफ्ते पहले, जिसकी वजह से वो ब्लड थिनर्स थे और ब्लड थिनर्स पे होने के बावजूद उनका दूसरा एडमिशन जो हमारा ये 29 अप्रैल वाला जो हुआ था उसमें उनका हार्ट भी इन्वॉल्व हो चुका था। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है वेसल्स में बेसिकली खून का थक्का जमा होता है वो हार्ट पे इफेक्ट करने लग जाता है अगर वो थक्का ना गले, तो ये काफ़ी सीवियर डिजीज थी और सर को इस बारे में पूरी जानकारी भी थी।
25: तो ये जो उनकी मौत हुई है और खास करके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो ये बीमारी जिस वक्त मतलब चूंकि रात में वो गिरे मिले, ये किस तरीके से रिएक्ट करती है ये बीमारी कि अचानक किसी को पता नहीं चलता और देहांत हो जाता है?
1: राइट वेंट्रिकुलर इन्वॉल्वमेंट होना मतलब हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होना अपने आप में ही ये संकेत देता है कि ये गंभीर बीमारी का रूप ले चुकी है। सर ब्लड थिनर पे होने के बावजूद भी जो ये अगर बीमारी बढ़ रही होती है तो उनको इस बारे में जानकारी दी गई थी कि उनको थ्रोम्बोलिसिस एक प्रोसीजर होता है उसके जाना चाहिए और एक ब्लड थिनर स्टार्ट भी किया गया था उनका, लेकिन ये मतलब ही बीमारी खतरनाक और जो अब रिपोर्ट मिली है तो वो अब जैसे मैं उनको इतने टाइम से देख रही हूँ और पहले से देखा है, डायग्नोसिस रीसेंट है, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, तो बिल्कुल मैच तो कर रहा है कि यही कारण था। और ऐसा ही होता है, इसमें सडन हार्ट इन्वॉल्व होता है जिससे पेशेंट जो है एकदम से हार्ट फेलियर में जा सकता है और वो गिर भी सकते हैं।
3: अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर पहले कुछ लोगों ने सोचा ये AI वीडियो है, बाद में हकीकत पता चली। कल यूपी में बड़ा आंधी तूफान आया जिसमें 89 लोगों की जान अलग अलग वजहों से गई। इसी आंधी तूफान के दौरान बरेली का वीडियो वायरल है जहां एक आदमी हवा में उड़ जाता है। बरेली में जोरदार तूफान आया, उसमें एक शख्स 50 फीट अब हवा में उछल गया, 3 शेड के साथ ऐसा उड़ा कि अस्पताल जाने की नौबत आ गई। घटना के बाद आज तक की टीम जब मौके पर पहुंची तो शख्स की पहचान नन्हे मियां के तौर पर हुई जो तूफान के दौरान एक 3 शेड के नीचे खड़े हुए थे और 3 शेड को पकड़े हुए थे। तभी तूफान की चपेट में आने के बाद करीब 50 फीट उछलकर मक्के के खेत में गिरे जाकर इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप रहिए खबरदार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
3: भाई, भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
2: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
4: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, क्योंकि ये भाई साहब सब पचा देते
7: हैं। पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
8: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
9: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
10: पर मार्केट की समझना, बाउंसर जा रही है।
9: आप कैसे कर लेते हो?
11: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
12: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
11: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
13: नहीं,
12: और म्यूचुअल फंड्स है
13: सही।
14: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
15: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
16: कैसा लगा मेरा स्टंट?
17: एक हिंट तो देते।
18: हिंट। बड़े आराम से।
19: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
20: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
21: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
22: Director, the taste of success.
23: Oh no, बहुत बोर लग रहा है। Take a
24: date, not bites. No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites.
25: Lion Date Nut Bites.
5: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK.
26: Like I said before, we better hold this in.
27: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
28: JK Maxx.
29: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
28: JK Maxx. Best पुट्टी?
29: JK Wall Maxx.
28: Best पेंट?
29: JK Maxx.
28: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx पेंट्स। JK Maxx पेंट्स, खुशियों के रंग।
30: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
31: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
32: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
33: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
34: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
35: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer.
0: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
2: JK Masala ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK Masala, जहां स्वाद वहां JK.
3: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिए.
4: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे.
5: केंट से पानी होता है 100% प्योर.
6: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है.
5: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी.

बीजिंग में निकलेगा महायुद्ध का समाधान। महामुलाकात में महाशक्ति हो पाएगी आसान। परमाणु पर अड़ेगा या घुटने टेकेगा ईरान। ईरान अड़ा तो मचने वाला है घमासान। बीजिंग की तस्वीरें सिर्फ दुनिया की दो महाशक्तियों के मिलन की तस्वीर नहीं है,

क्या हो गया? ट्रंप 11,000 किलोमीटर दूर से उड़कर आ गए, लेकिन शी जिनपिंग अपनी जगह से एक कदम भी टस से मस नहीं हुए। और उनके हैंडशेक में नजर आ गया कि ट्रंप की अकड़ अब ड्रैगन की पकड़ के आगे झुक चुकी है। ट्रंप का यह दौरा किसी महाशक्ति की यात्रा नहीं, बल्कि एक डूबते हुए वर्चस्व को बचाने की कोशिश ज्यादा लग रही है। चाइना ने बीफ से पाबंदी हटाकर ट्रंप को थोड़ी राहत तो दी है, लेकिन इसके बदले ट्रंप को अपनी सुपर पावर वाली अकड़ अब बीजिंग की सड़कों पर ही छोड़नी पड़ी है। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ यूएई और इसराइल के बीच नई खिचड़ी पक रही है। इसराइल का दावा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध के दौरान गुपचुप तरीके से यूएई का दौरा किया। इस दावे के बाद ईरान भड़क उठा, कहा कि इसराइल का साथ देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आखिर शिया ईरान के खिलाफ सुन्नी यहूदी सीक्रेट मीटिंग के मायने क्या है, क्योंकि इससे यूएई तो इनकार कर रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि तमिलनाडु की सत्ता बदली, चेहरा बदला, लेकिन सनातन के प्रति नफरत का एजेंडा नहीं बदला। कल तक सनातन को मिटाने की जो शपथ उदयनिधि स्टालिन ले रहे थे, आज वही जहरीली भाषा मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी के विधायक मुस्तफा की जुबान पर है। सवाल यह है कि डीएमके के बाद टीवीके के साथ भी सत्ता सुख भोगने वाली कांग्रेस सनातन के अपमान पर मौन ही रहेगी। और आखिर में उन बेटियों की बात करेंगे जो बोर्ड परीक्षा परिणाम के दौर में छाई रहती हैं, लड़कों को पछाड़ देती हैं। हेडलाइंस होती है लड़कियों ने फिर मारी बाजी, लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्कूली दौड़ में लगातार जीतने वाली ये लड़कियां कॉलेज और करियर की दौड़ में क्यों पीछे रह जाती हैं, हार जाती हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। एक जमाना था जब अमेरिका की सरकारें चाइना को सिक मैन ऑफ एशिया कहती थी। इसका मतलब था एशिया का सबसे बीमार आदमी। लेकिन वक्त बदला और आज यही अमेरिका चाइना की चौखट पर खड़ा है। 8 साल बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंचे हैं और पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप चाइना से चाहते क्या है। लेकिन हमें लगता है कि इस सवाल का सबसे सटीक जवाब खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दे दिया है। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई, तब उन्होंने कहा कि क्या अमेरिका और चाइना थ्यूसिडाइड ट्रैप से बच सकते हैं। ये वो सिद्धांत है जिसे प्राचीन यूनान के महान इतिहासकार थ्यूसिडाइड ने 2400 साल पहले तब लिखा था जब एथेंस और स्पार्टा के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध का कारण यह था कि स्पार्टा खुद को एक बहुत सुपर पावर, एक बड़ी सुपर पावर मानता था और एथेंस नई ताकत के रूप में तेजी से उभर रहा था। उस वक्त थ्यूसिडाइड्स ने लिखा था कि जब एक महाशक्ति के सामने नई ताकत का उभरना होता है, तो वो महाशक्ति अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए युद्ध को अनिवार्य मान लेती है और इसके बाद युद्ध को कोई नहीं टाल पाता। अब इसी थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का जिक्र राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज राष्ट्रपति ट्रंप से किया और जानते हैं वो यहां कहना क्या चाहते थे। उनका कहना यह था कि चाइना एक नई उभरती हुई ताकत है और अमेरिका पहले से स्थापित महाशक्ति। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चाइना के उभार से अमेरिका में जो डर पैदा हुआ है, वो डर आगे चलकर अमेरिका और चाइना के बीच एक नए युद्ध को अनिवार्य बना दे। पूरी दुनिया का मीडिया लिख रहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहना तो ये चाहते थे कि चाइना अमेरिका के साथ कभी कोई युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो ये संदेश भी दे रहे थे कि अगर अमेरिका ने अपने सुपर पावर वाले ताज को बचाने के लिए चाइना को रोकने की कोशिश की, तो चाइना युद्ध भूमि में पीछे नहीं हटेगा। संक्षेप में कहें तो राष्ट्रपति ट्रंप का यह दौरा चाइना की दबी हुई महत्वाकांक्षा और अमेरिका के छिपे हुए डर को बाहर ले आया है। इसमें चाइना की दबी हुई महत्वाकांक्षा यह है कि वो अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनना चाहता है, जबकि अमेरिका का छिपा हुआ डर यह है कि वो अपने सुपर पावर वाले ताज को किसी भी तरह बचाकर रखना चाहता है और इसके लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। यह डर इसलिए भी है क्योंकि चाइना आज अमेरिका की गर्दन तक पहुंच चुका है। अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की है। अमेरिका और रशिया के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सेना चाइना के पास है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, जिसकी

0: हिस्सेदारी 14.3% है, जबकि अमेरिका की हिस्सेदारी सिर्फ 8.3%। एआई में भी अमेरिका के बाद चाइना का ही नंबर आता है, और चाइना इस वक्त अमेरिका की गर्दन तक पहुंच गया है। उसका सपना है अमेरिका से उसका सुपर पावर वाला ताज छीनना, और इसके लिए अगर युद्ध भी लड़ना पड़े तो चाइना इसके लिए तैयार है। सुनिए।
1: 共同开创两国关系的美好未来।
2: क्या चीन और अमेरिका तथा कथित थ्यूसिडाइडस ट्रैप से बाहर निकलकर बड़े देशों के संबंधों का एक नया मॉडल बना सकते हैं? क्या हम मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और दुनिया को अधिक स्थिरता दे सकते हैं? क्या हम अपने दोनों देशों के लोगों की भलाई और मानवता के भविष्य के लिए मिलकर अपने द्विपक्षीय संबंधों का उज्ज्वल भविष्य बना सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो इतिहास, दुनिया और जनता सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये हमारे समय के वो बड़े सवाल हैं जिसका जवाब हमें बड़े देशों के नेताओं के तौर पर देना होगा।
0: आज इस खबर को हमने एक शीर्षक दिया है, और वो शीर्षक है ड्रैगन की पकड़ में राष्ट्रपति ट्रंप की अकड़। ये शीर्षक हमने क्यों दिया, उसके लिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जाकर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जिस पर आज पूरे विश्व में खूब चर्चा हो रही है। लेकिन हमने सोचा कि इसको हम आपके सामने आज रखें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में राष्ट्रपति ट्रंप का हैंडशेक बहुत लोकप्रिय रहा है। और देखिए, जब आप उनका अंदाज देखिए, हैंडशेक करने का आप उनका अंदाज देखेंगे तो वो जिस तरह से हाथ मिलाते हैं, ऐसे ऐसे करके वो थपथपाते हैं, काफी देर तक सामने वाले को खींचकर अपनी तरफ उसका हाथ रखते हैं, जैसे ये एक डोमिनेंस का भी तरीका है। क्योंकि अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो राष्ट्रपति ट्रंप जब किसी भी नेता से हाथ मिलाते हैं तो वो उसके हाथ को इस तरह से खींचते हैं और उसको खूब थपथपाते भी है। ये देखिए, ये हाथ खींचते हैं वो अपनी तरफ, ये एक एक जिसको आप कह सकते हैं अपना डोमिनेंस दिखाने का भी एक तरीका माना जाता है। इसके अलावा कई बार वो लंबे समय तक हाथ पकड़कर अपना डोमिनेंस भी दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने जुलाई 2017 में 29 सेकंड तक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का हाथ पकड़कर रखा था। और एक ये तस्वीरें तब काफी चर्चा में भी रही थी। एक तरीका उसका यह भी होता है कि भाई हम ज्यादा दोस्ती दिखाने की कोशिश होती है कि हमारी बड़ी बॉनहोमी है, लेकिन उस चक्कर में वो जिस ग्रिप से हाथ को पकड़ते हैं उसकी खूब चर्चा रहती है। तो अब हम आपको सारी तस्वीरें अनेकों नेताओं की दिखा रहे हैं जिसके साथ भी आप देखिएगा उनको मिलते हुए, चाहे सैंटियागो पेना के साथ देखिए, वो हाथ खींचते हैं अपनी तरफ। ये देखिए, ये बार बार एक बार जूम इन करके यहाँ दिखाइए, ये वाला वीडियो अभी फिर से जब चलेगा तो आप देखेंगे वो किस तरह से हाथ मिलाने के बाद हाथ को अपनी तरफ खींचते हैं। शुरू से प्ले कर दीजिए, ये देखिए अपनी तरफ वो हाथ को खींचते हैं, और ऐसा अक्सर उनके बारे में देखा जाता है, वो हाथ को अपनी तरफ खींचते हैं, चाहे वो इमानुअल मैक्रों के साथ हो या फिर पैराग्वे के राष्ट्रपति के साथ हो, पूर्व प्रधानमंत्री कनाडा के जो है जस्टिन ट्रूडो के साथ हो, शिंजो आबे के साथ। देखिए, हाथ मिलाने के बाद पैट करना और एक डोमिनेंस का इसको माना जाता है तरीका जो अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं डेली मेल की एक रिपोर्ट। अब डेली मेल की ये रिपोर्ट आखिर क्या कह रही है? डेली मेल की ये रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रपति ट्रंप का ये हैंडशेक सामने वाले नेताओं को ये बताने के लिए होता है कि वो उनके बॉस हैं। और अब तक ना जाने कितने नेताओं के साथ उन्होंने इस तरह का, जिसको कहते हैं आयरन हैंडशेक या फिर डोमिनेंस वाला हैंडशेक किया है। मनोबल, कितने नेताओं का मनोबल राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने हैंडशेक के जरिए ही तोड़ दिया, जिसको इसकी अलग से कूटनीति में चर्चा होती है। ये देखिए, आज चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जब मुलाकात हुई, ये पहले वाले हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये देखिए हाथ को पकड़ते हैं, जोर से खींचते हैं, इसमें भी देखिए अब आ गया ये वीडियो। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने राष्ट्रपति ट्रंप को ही असहज कर दिया। आज वेस्टर्न मीडिया में इसकी खूब चर्चा है। राष्ट्रपति ट्रंप को आदत है सामने से नेता उनकी तरफ हाथ बढ़ाने के लिए आगे आए, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसा नहीं किया, वो अपनी जगह पर खड़े रहे। देखिए, वो वेट करते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप चल के गुजर के उन तक आएंगे, एक कदम भी आगे दिखाने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई। शी जिनपिंग अपनी जगह पर खड़े रहे जबकि राष्ट्रपति ट्रंप अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उनके पास पहुंचे और इसके बाद उनसे हाथ मिलाया। अब जिस वेस्टर्न मीडिया में एक एक स्टेप को आज ब्रेक डाउन करके जिसकी चर्चा हो रही है, वो हिस्सा भी दिखाते हैं। 10 सेकंड का यह हैंडशेक था, राष्ट्रपति ट्रंप ने कुल 5 बार शी जिनपिंग के हाथ पर टैप किया, जो वो हमेशा करते हैं ऐसे जोर से। अपने दूसरे हाथ से उनके हाथ को उन्होंने थपथपाया। ये पुराना हैंडशेक आप दिखा रहे हैं, हमें आज शी जिनपिंग का हैंडशेक दिखाना। देखिए इसके साथ टाइमर लगा दीजिए। तो इस तरह से उन्होंने खींचा, पर आप देखिए कि कैसे एक टसल चल रहा है। मतलब वो अपनी तरफ हाथ खींच रहे हैं और शी जिनपिंग इंश्योर कर रहे हैं कि उनका हाथ वहीं पर रहेगा। और इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के चेहरे पर जो मुस्कान दिख रही थी, उसे पश्चिमी मीडिया बुलफ्रॉग स्माइल कह रहा है। इसका मतलब ऐसी मुस्कान से है जो ऊपर से बड़ी और चौड़ी दिखती है, लेकिन इसमें स्वाभाविक गर्मजोशी नहीं होती। यानी पश्चिमी मीडिया का कहना है कि शी जिनपिंग से मिलते वक्त राष्ट्रपति ट्रंप मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन हकीकत में वो उनके साथ बहुत सहज या रिलैक्स्ड महसूस नहीं कर रहे थे, और हो सकता है कि वो तनाव में भी हों। अगर ये वीडियो आप शुरू से प्ले करें तो शुरू वाले हिस्से में आपको वो दिखेगा। ये देखिए, उन्होंने हाथ अपनी तरफ खींच लिया है, लेकिन फिर शी जिनपिंग, ये देखिए शुरू में अपनी तरफ खींचा लेकिन शी जिनपिंग हाथ को बीच में ले आते हैं। इसीलिए हमने आपसे कहा कि आज इस खबर का सबसे सटीक शीर्षक कोई होगा तो वो यही है कि ड्रैगन की पकड़ में राष्ट्रपति ट्रंप की अकड़ आ गई है। देखिए

साल 2018 में जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाइना की स्टेट विजिट पर आए थे, तब राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के बीच ज्यादा सहजता नजर आई थी, जबकि आज की मुलाकात ज्यादा औपचारिक, ज्यादा रणनीतिक लगी, स्ट्रेटेजिक लगी। और ये बात हम इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि आप ये समझ पाए, देखिए ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरे से अमेरिका और चाइना की दोस्ती क्या उस मकाम पर पहुंच सकती है जैसी रशिया और चाइना की है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि जब आप देख रहे हैं लोगों के बीच से गुजर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज में एक बड़ा परिवर्तन आता है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच अब भी कटुता है, एक अविश्वास है, मतभेद साफ दिखते हैं। और आज जो दौर है वो एक औपचारिक दौरा था जिसमें अपनेपन वाली बात नहीं दिखी, क्योंकि आज बहुत सारे लोग इस हैंडशेक की तुलना साल 1972 के हैंडशेक से भी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए लड़ाई क्या है। लड़ाई इन दोनों देशों की जो है वो एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। एआई के क्षेत्र में नंबर वन अमेरिका और एआई के क्षेत्र में नंबर टू चाइना, और वन और टू में ही लड़ाई होती है, एक दूसरे को पीछे खींचने की और जगह लेने की। और इसी के साथ साथ सिर्फ एआई नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था की, दूसरी अर्थव्यवस्था से पहले बनने की होड़ है चाइना की। इधर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत चाइना है रशिया के बाद। इधर दुनिया के निर्यात में हिस्सेदारी अगर 8.3% है तो दुनिया के निर्यात में हिस्सेदारी जानते हैं 14.3% है चाइना की, सबको पीछे छोड़ चुका है मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में। जो सामान, जो माल जिसको चाहिए, जिस रेट पर चाहिए वैसा बनाने की क्षमता रखता है। और इसीलिए आप सोचिए कि दुनिया के निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी चाइना की 14.3% हिस्सेदारी है। तो जिस हैंडशेक की हम लोग बात कर रहे थे उस पर एक बार फिर से आते हैं। और आज बहुत सारे लोग इस हैंडशेक की तुलना साल 1972 के हैंडशेक से भी कर रहे हैं। 1972 में पहली बार अमेरिका का कोई राष्ट्रपति बीजिंग दौरे पर गया था, 1972। उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और कम्युनिस्ट शासन के संस्थापक माओ ज़ेडोंग की मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात में रिचर्ड निक्सन ने जिस तरह माओ ज़ेडोंग से हाथ मिलाया था वो अमेरिका के वर्चस्व, उसके प्रभाव को दिखा रहा था। इसलिए भी दिखा रहा था क्योंकि तब अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति था, अनडिस्प्यूटेड, और चाइना एक पिछड़ा देश था, ऐसी स्थिति में तो कतई नहीं था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक उस वक्त चाइना की 97% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। दुनिया उसे इस नजर से नहीं देखती थी जिस नजर से आज देखती है। लेकिन देखिए वक्त बदला, हाथ बदले, हाथ के साथ हालात बदले। आज चाइना मजबूत स्थिति में है जबकि अमेरिका अपने दौर की सबसे कमजोर स्थिति में। कैसे उसके लिए, अब इस ग्राफिक्स को आप देखिए जिससे आपको समझ में आएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे वक्त में चाइना गए हैं जब ईरान ने अमेरिका के वर्चस्व को झटका दिया, जब यूरोप के देशों ने अमेरिका को नो कहना, ना कहना सीख लिया है, जब नेटो देशों ने अमेरिका की हां में लाना बंद कर दिया है, जब स्पेन अमेरिका को भाड़ में जाने के लिए कह रहा है, जब मिडिल ईस्ट के देशों ने भी अमेरिका के साथ अपने रिश्ते की समीक्षा शुरू कर दी है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप तब चाइना गए हैं जब अमेरिका अपने सबसे नाजुक दौर से, कूटनीतिक रूप से गुजर रहा है। लेकिन इसी दौर में चाइना का अपर हैंड नजर आता है। चाइना ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध में ईरान का साथ दिया। चाइना का रशिया के साथ आज की तारीख में बहुत मजबूत रिश्ता है। चाइना अफ्रीकी देशों का सबसे बड़ा पार्टनर बन गया है। अगर आपको याद हो तो रशिया के साथ कैसा संबंध है, सीओ समिट में तमाम देश लौट आए थे लेकिन पुतिन वहां पर लंबे वक्त तक रहे थे। देखिए अमेरिका के साथ पूरा यूरोप चाइना के सामान और सेवाओं पर निर्भर है, और विकास दर के मामले में भी चाइना की स्थिति अमेरिका से बहुत अच्छी है। यानी निगोसिएशन में एक तरह से जब मोल भाव किया जाता है तो चाइना का अपर हैंड है, और चाइना इस बात को अमेरिका को महसूस भी खुलकर करा रहा है। इस पूरे ट्रिप में इसकी चर्चा है। जब राष्ट्रपति ट्रंप चाइना के दौरे पर आए तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीफ आयात पर पिछले 15 महीनों में लगी रोक में ढील देने का ऐलान तो किया। इस फैसले से उन अमेरिकी बूचड़खानों को फिर से चाइना में बीफ निर्यात करने का लाइसेंस मिल जाएगा जिन्हें रद्द कर दिया गया था। चाइना ने ये मेहरबानी अमेरिका पर की तो, लेकिन इस छोटी सी चीज के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को चाइना की चौकट पर आना पड़ा। दूसरा काम चाइना ने यह किया कि उसने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बीजिंग आने से रोक दिया। इस बार रोका नहीं। वो कैसे, देखिए ये बहुत दिलचस्प है। यह इसलिए अहम था क्योंकि उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठाने के लिए चाइना ने ही मार्को रूबियो को साल 2020 में
उन पर सैंक्शंस लगा दिया था, कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, और उन प्रतिबंधों की वजह से वो चाइना में उनकी एंट्री ही नहीं थी, वो चाइना में प्रवेश की इजाजत नहीं थी उनको। लेकिन चाइना ने यहां भी अमेरिका पर एक एहसान और कर दिया, उसने एक जुगाड़ निकाला। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मार्को रूबियो के नाम की स्पेलिंग को चेंज किया गया, यानी अमेरिका के विदेश मंत्री के नाम की स्पेलिंग को चेंज किया गया। इसे ऐसे लिखा गया जिससे नाम का उच्चारण वही रहे लेकिन उसकी स्पेलिंग बदल जाए। अब स्पेलिंग बदली तो मार्को रूबियो का राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चाइना आने का रास्ता खुल गया, और ये कहा गया कि प्रतिबंध में जो स्पेलिंग लिखी है वो किसी और नाम की है। यानी सोचिए जुगाड़ भी कैसा निकाला गया, और इस जुगाड़ से चाइना ने यह बताया कि वो प्रतिबंध के बावजूद मार्को रूबियो को चाइना में आने दे रहा है, एहसान कर रहा है, वो अपना छोटा दिल बिल्कुल नहीं रखता। और अभी बहुत सारे लोग इसे चाइना का अमेरिका पर एक तंज भी मान रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में द्विपक्षीय वार्ता हुई, और इस दौरान उनका शानदार स्वागत हुआ, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि ऐसा स्वागत इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। देखिए

0: अब ये देखिए कि इस मुलाकात में कैसे चाइना पूरी तरह अमेरिका पर हावी रहा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति ट्रंप से साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका को अब चाइना से अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने ताइवान का भी मुद्दा उठाया और ये कहा कि अगर इस मुद्दे को गलत तरीके से संभाला गया तो अमेरिका और चाइना के बीच युद्ध भी हो सकता है। ये ताइवान का मुद्दा और ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग की पहली चेतावनी थी, जिस पर सामने बैठे राष्ट्रपति ट्रंप कुछ नहीं कह पाए। ताइवान के लिए हाल ही में 14 बिलियन डॉलर के हथियारों का पैकेज मंजूर करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ताइवान पर एक शब्द नहीं बोले। और इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि चाइना के हाथ में, चाइना की पकड़ में आ गई है डोनाल्ड ट्रंप की अकड़। ऐसा लगा जैसे वो ताइवान को जानते तक नहीं है, सिर्फ ये कहकर अपनी बात खत्म कर दी कि चाइना के साथ अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन जब शी जिनपिंग ताइवान पर खुली धमकी दे रहे थे, तब पूरी दुनिया पर धौंस जमाने वाले राष्ट्रपति ट्रंप जरा भी अपने तेवर नहीं दिखा पाए। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों ने संयुक्त रूप से यह कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित रखने पर सहमत है और समुद्री रास्ता खुला रहना चाहिए। अमेरिका इसे ईरान के खिलाफ अपनी जीत मान रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि चाइना हॉर्मूज को खुला रखने की बात पहले दिन से कह रहा है और उसने हॉर्मूज पर ईरान द्वारा टोल वसूलने का भी विरोध किया है। अब इसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत बता रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी वजह से चाइना ऐसा कर रहा है। खैर, उनका इतिहास ऐसा रहा है अब तो हम सब जानते हैं। इसी द्विपक्षीय वार्ता में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एप्पल के सीईओ टिम कुक, एनविडिया के सीईओ जेनसन हुआंग और टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क शामिल हुए, जिनके लिए शी जिनपिंग ने यह कहा कि वो इस बात से खुश हैं कि इनकी कंपनीज चाइना में कुछ बड़ा करना चाहती है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप इन्हें अपने साथ लाए तो इसलिए थे ताकि ये बात बता सकें कि चाइना आज भी टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर है। लेकिन शी जिनपिंग ने इस पासे को भी उल्टा पलट दिया। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते रहे, लेकिन शी जिनपिंग ने उनके सामने बैठकर चाइना फर्स्ट को अपना संकल्प बता दिया। यानी सोचिए इस बैठक में किस लेवल की कूटनीति चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि चाइना ने इस द्विपक्षीय वार्ता के लिए अच्छा खासा होमवर्क किया हुआ है। और चाइनीज के लिए कहा भी जाता है, इतने मेटिकुलस होते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं और उन्हें पता था कि अगर धौंस दिखाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करेंगे तो उसका मुकाबला कैसे करना है। कुल मिलाकर कहें तो इस बैठक में शी जिनपिंग ने उपदेश दिए, इसमें यूक्रेन और ईरान युद्ध पर चर्चा हुई, लेकिन अमेरिका जिस ताइवान के मुद्दे पर और व्यापार के मुद्दे पर चर्चा करने के बारे में सोच रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए,
1: प्रिय राष्ट्रपति ट्रंप, बीजिंग में आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये आपकी 9 साल में चीन की पहली यात्रा है। आज हमारी मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। चीन और अमेरिका को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। हमें एक दूसरे की सफलता और तरक्की में साथ देना चाहिए और नए दौर में बड़े देशों के बीच अच्छे संबंध बनाने का सही रास्ता खोजना चाहिए। मैं हमारे दोनों देशों और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे चर्चा करने के लिए उत्सुक हूँ। मैं आपके साथ मिलकर चीन अमेरिका संबंधों को सही दिशा देने और आगे बढ़ाने का काम करना चाहता हूं, ताकि 2026 एक ऐतिहासिक साल बने और चीन अमेरिका संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हो। आप और मैं अब काफी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। वास्तव में हमारे दोनों देशों के बीच किसी भी राष्ट्रपति के मुकाबले सबसे लंबा संबंध हमारा रहा है और ये मेरे लिए सम्मान की बात है। हमारे संबंध बहुत शानदार रहे हैं। हम हमेशा अच्छे से एक दूसरे के साथ रहे। जब भी कोई कठिनाई आई, हमने उसे मिलकर सुलझा लिया। मैं आपको फोन करता था और आप मुझे फोन करते थे, और जब भी कोई समस्या होती, लोगों को पता भी नहीं चलता और हम उसे हल कर लेते थे। मुझे विश्वास है कि हमारा भविष्य साथ में बहुत शानदार होगा। मुझे चीन और आपके काम के प्रति बहुत सम्मान है। आप एक महान नेता हैं। मैं ये बात सबके सामने कहूंगा कि आप एक महान नेता हैं। आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। आपका मित्र होना भी मेरे लिए सम्मान की बात है। और चीन और अमेरिका के बीच संबंध पहले से भी बेहतर होने वाले हैं।
0: क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और चाइना की सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? सुपर पावर बनने की लड़ाई तो है, लेकिन इससे भी बड़ी लड़ाई है, और वो बड़ी लड़ाई है जिसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति लेकर आए थे। ये नीति थी तो चाइना के लिए, लेकिन बाद में राष्ट्रपति ट्रंप के एक सलाहकार ने कहा कि वो इसे पूरी दुनिया पर लागू क्यों नहीं कर देते, और फिर डोनाल्ड ट्रंप कर बैठे वही। और सभी देशों पर नए नए टैरिफ लगाने चाहिए। ये नई नई ताकत का एहसास डोनाल्ड ट्रंप को हो रहा था कि कैसे देशों को इधर से उधर दबाने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी आर्थिक गर्दन पर अपने हाथ को रखा जा सकता है। लेकिन हम यहां बताना ये चाह रहे हैं कि इस टैरिफ की जड़ में चाइना था, जिसके साथ व्यापार में अमेरिका को हर साल भयंकर घाटा हो रहा है। और दुनिया यही सोच रही थी कि इस मुलाकात में व्यापार घाटे को लेकर जरूर कोई समाधान निकलेगा। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म होता है, जो निंदा होती है डोनाल्ड ट्रंप की या फिर अमेरिकी शासन की, वो इसी वजह से होती है क्योंकि आप चाइना से सामान तो खूब खरीद लेते हैं लेकिन आपका वहां पर ट्रेड बहुत कम है, यानी ट्रेड डेफिसिट है। चाइना का माल खूब बिक रहा है अमेरिका में लेकिन अमेरिका का सामान चाइना में कम जाता है, और यही ट्रेड डेफिसिट को ब्रेक करना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इस मुद्दे पर चाइना से ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए, और यह भी तब हुआ जब अमेरिका का व्यापार घाटा अब भी 19 लाख करोड़ रुपए का है। चलिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा समझाने की कोशिश करती हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जो हमने आपके लिए निकाला है, इससे आपको समझ में आएगा कि आखिर ये जो ट्रेड डेफिसिट की बात दोनों देशों के बीच में हो रही है, इसका मतलब क्या है। और हमने आपके लिए दोनों ही कार्यकाल अलग अलग किए हैं, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल जो आप इस वक्त देखेंगे। ये देखिए, एक सेकंड, ये है डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल जो कब था, साल 2017 से लेकर 2020 तक, ठीक है। अब इसमें आप देखिए ट्रेड डेफिसिट कितना था, ये लाख करोड़ में है, यानी 35 लाख करोड़, लगभग आप समझ लीजिए 36 लाख करोड़ के आसपास था जब पहली बार, मुझे लगता है इसको येलो कर लेना चाहिए तो आपको ज्यादा क्लैरिटी से दिखेगा। ये देखिए, ठीक है, सबसे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 में आए तो लगभग 36 लाख करोड़ रुपए का ये डेफिसिट था, मतलब जितना सामान चाइना से अमेरिका खरीद रहा था और अमेरिका जितना बेच रहा था उसमें इतना फासला था, चाइना को जबरदस्त एडवांटेज था। उसके बाद देखिए ये और ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है अगले साल में, और जो उनके पहले कार्यकाल का दूसरा साल था, साल 2018, उस वक्त ये पीक पर चला गया था सबसे ज्यादा 40 लाख करोड़ रुपए पर। फिर आ जाइए साल 2019 पर, जब थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने में उन्हें कामयाबी मिली और ये 32 मतलब पौने आप समझ लीजिए 33 लाख करोड़ के आसपास हो गया। फिर आ जाइए उनके आखिरी साल में जो पहले रूप में उनके शासन में था, साल 2017 से 20 के बीच का, जैसा कि हमने आपको दिखाया है, और लास्ट ईयर में उन्होंने उसको और घटाने में कामयाबी हासिल की, तो लगभग 29.5 लाख करोड़ रुपए का डेफिसिट रहा। अब इसके बाद कौन आए, इसके बाद आ गए जो बाइडेन, और जो बाइडेन की जो सरकार थी वो भी इसको संभालने में शुरू में कामयाब नहीं रही बल्कि इजाफा हुआ। देखिए अब उनके चार साल में देखिए कि क्या हालत रही, ये जब आप देखेंगे यहां से, ये एक सेकेंड, साल 2021 में देखिए 33 लाख करोड़ था, फिर 2022 में 36 लाख करोड़ के आसपास हुआ, साल 2023 में 26.77 करोड़ के आसपास लाख करोड़ हुआ, उसके बाद से 2024 में लास्ट में उन्होंने कितने पे छोड़ा, 28 लाख करोड़ रुपए पे जो बाइडेन ने मामला छोड़ दिया। ये ट्रेड डेफिसिट है, इतने के लॉस में है अमेरिका जब बाइडेन का आखिरी साल था। अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से सरकार में आते हैं और उन्होंने देखा कि इसको कंट्रोल करने का मेरे पास तो जादुई एक मामला आ गया है, और जिसको आप अब अगर देखेंगे तो ये जादू वाली चीज उनके लिए क्या थी, हम आपको दिखाते हैं कैसे उन्होंने अपने शासन में ये कर दिखाया। 19 लाख करोड़ उन्होंने कैसे कर दिया, इसको इतना बड़ा डिफरेंस करने में वो कैसे कामयाब रहे डोनाल्ड ट्रंप अपने शासनकाल के दूसरे शासनकाल के पहले ही साल में, तो उसकी वजह सिर्फ एक थी और वो वजह थी टैरिफ। टैरिफ लगाकर उन्होंने चाइना के साथ अपने ट्रेड डेफिसिट को कम किया, चाइना से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से चाइना का इंपोर्ट को सेटबैक हुआ, झटका लगा, और वहीं पर चाइना ये अमेरिका के लिए, तो अमेरिका के लिए ये पूरा मामला बड़ा अच्छा हो गया उनको। ये देखिए उनका जो घाटा था, व्यापार घाटा, वो घटके 19.35 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप और जो ये टैरिफ शब्द है वो हमेशा के लिए इतिहास में अब दर्ज हो जाएंगे। इनको टैरिफ वाले ट्रंप के तौर पर भी कहा जाएगा, क्योंकि टैरिफ के जरिए इन्होंने दुनिया को अपने कंट्रोल में लेने की पूरी कोशिश की, और चाइना के साथ इस तरह से उन्होंने अपने ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल किया। यानी टैरिफ वाले ट्रंप ये बार बार दिखाने की कोशिश करते रहे कि भाई हमारे पास एक हथियार है, हमारे पास तुम्हारा कंट्रोल है, और इस वजह से उन्होंने ये स्थापित किया और पूरा का पूरा टैरिफ के जरिए व्यापार घाटा को बदल दिया। ऐसे में आशंका है कि यह व्यापार घाटा फिर से बढ़ सकता है, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप इस दौरे पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हर दिन ट्रूथ सोशल पर औसतन 18 पोस्ट, कम से कम 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कम बोले। यानी जो शी जिनपिंग कम बोलते हैं, ज्यादा इस तरह के पोस्ट नहीं, वो ज्यादा बोले, और जो राष्ट्रपति ट्रंप अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं वो कम बोले, और इसको भी एक चमत्कार ही माना जा रहा है। अब आप ये देखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप चाइना से क्या चाहते हैं। इस साल की शुरुआत में जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपनी हिरासत में ले लिया, अपने देश उठाकर ले आए, तब पूरी दुनिया ने यही कहा कि अमेरिका का निशाना वेनेजुएला नहीं बल्कि चाइना था, क्योंकि चाइना को ही वेनेजुएला का 75% कच्चा तेल निर्यात होता था। वेनेजुएला के बाद जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तब भी यही कहा गया कि ईरान तो बहाना है, राष्ट्रपति ट्रंप का असली निशाना चाइना है। इसलिए कहा गया क्योंकि ईरान का भी 90% कच्चा तेल जो है वो चाइना को ही निर्यात होता है, जो बाद में बंद हो गया। अब पूरी दुनिया ये पूछ रही है कि जो अमेरिका कल तक चाइना की घेराबंदी करने के लिए कदम उठा रहा था, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति आखिर चाइना के दौरे पर क्यों चले गए। और आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका बिना अपने फायदे के कुछ करता नहीं, और अगर राष्ट्रपति ट्रंप चाइना गए हैं तो जरूर कोई ना कोई उनको फायदा दिख रहा होगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला और ईरान से लड़ते लड़ते चाइना इसलिए पहुंच गए क्योंकि अमेरिका का काम अब चाइना के बगैर चल नहीं रहा है। एक तो चाइना अब अमेरिका को अपने बराबर का देश मानता है, और दूसरे चाइना के पास अमेरिका से ज्यादा पत्ते यानी कार्ड्स हैं, और इनमें भी 3 कार्ड्स सबसे पावरफुल और अहम है। पहला कार्ड यह है कि झुको नहीं बल्कि सामने वाले को झुकाओ। राष्ट्रपति ट्रंप ने चाइना पर फेंटेनिल ड्रग्स की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया और इसके लिए उस पर 145% का टैरिफ लगा दिया, लेकिन इसके बाद भी चाइना झुका नहीं, उसने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगा दिया। इसे एक ऐसा डेडलॉक बना जिसमें अमेरिका को झुकना पड़ा, चाइना ने बिना हथियार डाले अपने टैरिफ को स्थगित करा लिया, और अमेरिका को यह भी संदेश दे दिया कि अब वो दिन गए जब दबाव बनाकर चाइना को झुकाया जा सकता था। टैरिफ की नीति ने अमेरिका और चाइना के बीच ऐसा टकराव पैदा किया जिसे सुलझाने के लिए ट्रंप को चाइना के दरवाजे को खटखटाना ही पड़ा और बीजिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ी। इसी दौरान चाइना ने एक और दाव खेला। उसने क्या किया, अमेरिका की सबसे कमजोर नब्स उसने पकड़ ली और दबा दी। यह दाव था रेयर अर्थ मिनरल्स का, जिसका 90% निर्यात चाइना करता है। अब इसके बिना तो अमेरिका का काम चलेगा नहीं, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स या मिनरल्स, उनके बिना ना फाइटर जेट बन सकता है, ना मिसाइल सिस्टम बन सकता है, ना ईवी बैटरीज बन सकती है, ना सेमीकंडक्टर चिप्स बन सकते हैं, ना स्मार्टफोन्स बनेंगे, ना कार्स, ना मैग्नेट्स, ना विंड टर्बाइंस, कुछ नहीं बन सकता। और अगर ये रेयर अर्थ मिनरल या रेयर अर्थ मेटल चाइना रोक दे तो अमेरिका की सांसें फूलने लगी, और अमेरिका को लगा कि चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स उसका गेम खराब कर देंगे, और इस तरह यहां भी चाइना ने बाजी जीत ली, और अमेरिका को लगा कि यह मुद्दा भी बिना बातचीत के अब सुलझ नहीं सकता। तीसरा मुद्दा, चाइना का ट्रेड सरप्लस, जिसके बारे में हमने आपको बड़ी स्क्रीन पर अभी नंबर्स दिखाए। यानी चाइना पर अमेरिका की निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका उसके साथ किसी भी तरह के टकराव और संघर्ष का जोखिम नहीं ले सकता, और यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस दौरे पर बीजिंग इसलिए गए ताकि उनके 4 साल के कार्यकाल में अमेरिका और चाइना के बीच रिश्तों को सहज, रिश्तों को प्रैक्टिकल बनाकर रखा जा सके। और यहां राष्ट्रपति ट्रंप की एक कोशिश यह भी है कि वो शी जिनपिंग के सहारे अपनी साख को बचाना चाहते हैं। वेनेजुएला, ईरान, ग्रीनलैंड और नेटो के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप की इतनी आलोचना हुई है कि उनकी लोकप्रियता सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और शायद यहां राष्ट्रपति ट्रंप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मिड टर्म्स भी होने वाले हैं, उनके सामने देश के अंदर बड़े चैलेंजेस हैं, पूरे विश्व में अभी उन पर नजर सबसे ज्यादा है। जिस तरह से ये युद्ध विराम तो इस वक्त हुआ है, लेकिन वो खुद ही कह रहे हैं कि अभी ये युद्ध विराम आईसीयू में है। ऐसे में शायद यहां राष्ट्रपति ट्रंप ये सोच रहे होंगे कि शी जिनपिंग से मुलाकात करके वो अपनी साख कुछ हद तक बचा लेंगे अगर वो कुछ इंपॉर्टेंट डील्स क्रैक कर लेते हैं। और दुनिया को ये लगेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ युद्ध लड़ने में नहीं बल्कि कूटनीतिक संवाद में भी हल करने में यकीन रखते हैं, और शायद इस मामले में ऐसा ही हुआ। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि चाइना दौरे की खबरें आने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में 2% का इजाफा हो चुका है। गजब की बात है, जिस तरह चाइना ने में उन्हें रेड कार्पेट वेलकम मिला उसे देखकर अमेरिका के बहुत सारे लोग बड़े खुश हैं, बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए

अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए रेड कार्पेट बिछाना का भी एक अलग खेल है चाइना का, जो हम आपको बताएंगे कि इससे पहले किस अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए उन्होंने ये बिछाया ही नहीं था, बड़ा बवाल हुआ था। लेकिन उससे पहले देखिए, ईरान युद्ध में फंसा अमेरिका चाइना से मदद की उम्मीद कर रहा है। इसी उम्मीद के साथ डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे पर गए, लेकिन अमेरिका का साथी इसराइल यूएई के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक नई खिचड़ी पका रहा है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बारूद पर टिके युद्ध विराम में चिंगारी बस लगने वाली है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक्स पोस्ट पर एक खुली धमकी दी है, जिसमें वो सांकेतिक रूप से यूएई को निशाने पर ले रहे हैं। इस पोस्ट में वो लिख रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से एक ऐसी बात कह दी है जो ईरान की सुरक्षा एजेंसियां पिछला काफी समय से कह रही हैं। वो आगे लिख रहे हैं कि इसराइल के साथ साठगांठ माफी के काबिल नहीं। अब समझिए, ये मामला बहुत गंभीर हो सकता है। जिन्होंने इसराइल का साथ दिया उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। क्या ये वाकई एक नई चिंगारी बन सकती है? क्योंकि युद्ध के दौरान अगर इस बात इस तरह की धमकी दी गई तो लोग इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन युद्ध विराम के बाद अब्बास अराक्ची की इस धमकी में यूएई के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है। यूएई के खिलाफ ईरान का यह गुस्सा इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से आए उस बयान पर है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन रोरिंग लायन के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने गुप्त रूप से यूएई का दौरा किया था। इसराइल के प्रधानमंत्री दफ्तर ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि ऑपरेशन रोरिंग लायन के दौरान गुप्त रूप से यूएई गए थे। और आप समझिए, मतलब ये बड़ी गंभीर खबर है, क्योंकि नेतन्याहू का अगर यूएई में एक मुस्लिम देश में दौरा हो रहा है, वो भी ऐसे वक्त पर जहां पर शिया मुस्लिम भी रहते हैं, वहां उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद इसराइल और यूएई के संबंध पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। अब ये प्रधानमंत्री ऑफिस ने पोस्ट तो कर दिया था, इसराइल के प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से आए इस बयान के आने के बाद यूएई की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईरान ने तुरंत इस बयान को नया हथियार बना लिया और दावा कर दिया कि अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर थोपे गए युद्ध में यूएई का भी हाथ है। वो लगातार देखिए, सबसे ज्यादा हमले वैसे भी यूएई पर किया है ईरान ने, और ऐसे में ईरान को विलन बनाने में लगातार बना हुआ है। सितंबर में होने वाली ब्रिक्स समिट से पहले दिल्ली में विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई है। इसमें अब्बास अराक्ची ने यूएई के प्रतिनिधि को इसी मामले पर बड़ी धमकी दी। अब्बास अराक्ची के अपने टेलीग्राम अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। उनके मुताबिक उन्होंने यूएई को कहा है कि इसराइल के साथ उनका गठबंधन उन्हें बचा नहीं पाएगा, इसीलिए ईरान को लेकर अपनी पॉलिसी बदल दो। ईरान के इस रुख के बाद यूएई काफी दबाव में है। ईरान की धमकियों के बाद यूएई के विदेश मंत्रालय ने तुरंत एक बयान जारी किया है, और इसमें कहा गया कि इसराइल के पीएम ऑफिस का दावा पूरी तरह से गलत है और बेंजामिन नेतन्याहू ने कोई दौरा यूएई का किया ही नहीं था। मतलब नेतन्याहू का दफ्तर पोस्ट कर रहा है कि वो गए थे यूएई, यूएई कह रहा है कि नेतन्याहू वहां आए ही नहीं। आप आलम देखिए। और यही नहीं, यूएई ने किसी भी इजरायली सैन्य प्रतिनिधिमंडल का स्वागत नहीं किया है, ये बात भी साफ की गई। यूएई ने गुप्त यात्रा का दावा खारिज किया और कहा कि अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजरायल के साथ उसके संबंध पहले से ही सार्वजनिक मंच पर है। आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि हर साल बोर्ड परीक्षाओं में लड़कों से आगे रहने वाली ज्यादातर लड़कियां समाज के ताने बाने से हार क्यों जाती हैं। हर साल ये खबर आती है कि बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियों ने लड़कों से ज्यादा मार्क्स कमाए, ज्यादा मार्क्स अंकित किए। पिछले 27 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है, 27 सालों में, जब लड़कियां बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल ना आई हो, लड़कों से ज्यादा मार्क्स ना लेकर आई हो। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो साल 2017 से लड़कियां ही 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप कर रही हैं, और ना सिर्फ टॉप कर रही हैं बल्कि लड़कियों के पास होने का प्रतिशत हर बार लड़कों के मुकाबले 6 से 9% ज्यादा रहता है, और इस बार भी ये रिकॉर्ड बरकरार रहा है। इस बार सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में 88.86% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि लड़कों का नतीजा रहा है 82.13%। ये अंतर 6.73% का है, जो 2019 के बाद से सबसे ज्यादा है। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे देश के ज्यादातर अखबारों और न्यूज चैनल्स में यही हेडलाइन नजर आ रही है कि लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया। लेकिन आज हम एक गंभीर मुद्दा आपके सामने उठाना चाहते हैं।
इस हेडलाइन से आगे बढ़ना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि हमारे देश में हर साल लड़कियां लड़कों को पीछे छोड़कर पढ़ाई में तो अव्वल आ रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बाद इन लड़कियों के साथ क्या होता है? क्या कभी कोई ये पूछता है कि इनमें से कितनी लड़कियों ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में दाखिला लिया? कितनी लड़कियों को विदेशों में जाकर पढ़ने का मौका मिला? कितनी ही लड़कियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कितनी लड़कियों को नौकरी उसके बाद मिली? जब आप आंकड़े देखेंगे तो एक कड़वा सच हमारे समाज का आपको नजर आएगा, और वो सच ये है कि स्कूलों में तो लड़कियां लड़कों से आगे निकल जाती हैं, लेकिन इसके बाद कई लड़कियों को उनके परिवार यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, उन्हें नौकरी करने का मौका नहीं देते हैं, उनसे शादी करके घर संभालने के लिए कह दिया जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 में उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या 47.8% थी, जबकि लड़कों की संख्या 52.2%। यानी यहां पर वो माजी मार ले जाते हैं क्योंकि उनको मौके ज्यादा मिलते हैं, 5% से ज्यादा लड़कों ने प्रवेश लिया। इसमें करीब 5% का अंतर था, और यह अंतर भी तब था जब उस साल 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में पास होने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा थी। सोचिए, ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों में उच्च शिक्षा हासिल करने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन यह भी सच है कि आज भी इस मामले में लड़कियां जो हैं वो लड़कों से पीछे हैं। आप 2019 के आंकड़े को देख लीजिए, 2020 के आंकड़े देख लीजिए, 21 के आंकड़े देख लीजिए, हर बार लड़कों के मुकाबले उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों का दाखिला कम होता है। और जानते हैं कम क्यों होता है? जब लड़कियां 12वीं कक्षा पास करती हैं तब उनकी औसत उम्र 18 साल होती है, जो कानूनी रूप से लड़कियों को शादी के लिए बालिग बना देती है। कई परिवार सोचते हैं कि अगर सही उम्र में उन्होंने अपनी लड़कियों की शादी नहीं की तो बाद में उनकी लड़कियों को लड़का नहीं मिलेगा और समाज उन पर सवाल उठाएगा। ऐसी धक्कानुसी सोच आज भी हमारे बीच है। भारत सरकार के मुताबिक हमारे देश में लड़कियों की शादी औसतन 22 साल 7 महीने की उम्र में हो जाती है। सोचिए, जबकि इसी जगह लड़कों की शादी का औसतन उम्र क्या है? 25 साल। लड़कियों पर शादी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि 25% मामलों में उनकी शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है, और ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं। और इसी वजह से बहुत सारी लड़कियां स्कूलों में तो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती हैं, लेकिन इसके बाद का सफर उनके लिए बहुत कठिन होता है। और ये स्थिति हमारे कामगारों की संख्या में भी दिखती है। भारत में 15 से 59 साल के कुल कामगारों की संख्या है 59% होती है, लेकिन जब आप इसमें महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी देखते हैं तो देश के पुरुषों में 79.1% 79.1% नौकरी या कोई ना कोई काम करते हैं, जबकि महिलाओं में सिर्फ 40% घर के बाहर जाकर काम कर पाती है। यानी नटशेल में कहानी यह है कि स्कूलों में लड़कों को पीछे छोड़ने वाली लड़कियां आगे कभी बाजी नहीं मार पाती, और बहुत सारी लड़कियों को घर की रसोई में झोंक दिया जाता है और उनकी जिंदगी को वहीं पर सीमित कर दिया जाता है। पिछले हफ्ते भारत सरकार का एक नया सर्वे आया जिसमें बताया गया कि हमारे देश में महिलाएं हर दिन औसतन 4 घंटे 49 मिनट घर का काम करती हैं। 4 घंटे 49 मिनट घर का सारा काम। रहते कितने लोग हैं घर में? एक पूरा परिवार रहता है, लेकिन 4 घंटे 59 मिनट काम कौन करता है? सिर्फ महिला, जबकि पुरुष 1 घंटे 28 मिनट ही काम करते हैं। यह इतना बड़ा अंतर इसलिए है क्योंकि महिलाओं से आज भी समाज यही उम्मीद करता है कि वो घर संभालें, हर हाल में घर को संभालेंगी, बच्चों का पालन पोषण करेंगी, खाना बनाएंगी, अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छी बेटी बनकर दिखाएंगी। जबकि हकीकत में अगर इन सभी महिलाओं को ईमानदारी से मौके मिले तो ये बहुत आगे निकल सकती हैं, और अभी जो लड़कियां सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं में बाजी मारती हैं वो उच्च शिक्षा में भी लड़कों से आगे निकल सकती हैं, नौकरियों में आगे निकल सकती हैं। महिलाओं और पुरुषों के बीच जो अंतर है वो हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो पुरुषों को सोचना होगा कि वो घर में कितना काम करते हैं, वो बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, वो कितने अच्छे पति, कितने अच्छे बेटे, कितने अच्छे पिता बनते हैं। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा समाज इस बदलाव के लिए तैयार है? अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो आप एक बार सिर्फ इन आंकड़ों को देख लीजिए। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए जिनमें कुल 1019 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, लेकिन जानते हैं इनमें से कितनी महिलाएं इन चुनाव में जीत दर्ज कर पाई? हम महिलाओं की सशक्तिकरण की इतनी बातें करते हैं,
लेकिन जब बारी उन्हें वोट देकर जिताने की आती है तो सुनिए, सिर्फ 78 महिलाएं चुनाव जीत पाएं, जिसका मतलब है कि हर 10 में से 9 महिलाएं जो चुनाव के लिए खड़ी हुई थी वो हार गई। सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहती है, लेकिन इन चुनाव में 8% महिलाएं भी चुनाव नहीं जीत पाई और हमारे समाज ने महिलाओं पर भरोसा ही नहीं किया। अगर वो किसी रसूखदार राजनीतिक परिवार से है, किसी की बहू बेटी या सास कुछ भी है, तो ऐसे में वो राजनीतिक परिवार उनके पीछे रहता है तो शायद वो जीत भी जाए और इसीलिए पार्टियां ऐसी महिलाओं को टिकट देती है। लेकिन अगर आम महिलाएं खड़ी होती हैं तो उन पर हम भरोसा क्यों नहीं करते? इससे आप ये समझ पाएंगे कि स्कूलों में लड़कों से आगे रहने वाली लड़कियां बाद में समाज के ताने बाने से हार क्यों जाती है। इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेटकीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
3: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
4: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
5: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
4: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
6: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
7: अरे भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
6: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
8: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
11: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
10: ज्यादा बड़ी ना है,
11: छोटे ऑन कर दे, ऑन कर दे,
10: ऑन कर दे, पैक कर दे समर कूल।
11: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
12: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
13: Vikram chahe jitna bhi phad phada le, dhoond nahi payega.
14: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
15: विक्रम, एक हिंट तो देते।
16: विक्रम!
15: हिंट।
14: बड़े आराम से।
4: कूल फैंस से घर को सजाएं।
17: कूल फैंस, बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
4: कूल फैंस, घर की शान बढ़ाएं।
18: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
19: Hint, bade aaram se.
18: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
20: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
21: Summer cool cooler, hawa aisi chhode puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
1: Vimal, bolo zuba kesri.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
3: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
2: ज्यादा बड़ी ना है।
3: छोटे ऑन कर दे,
4: ऑन कर दे, ऑन कर दे।
2: पैक कर दे समर कूल।
3: समर कूल कूलर हवा ऐसी छोड़े, पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

इस ट्रंप ने ऐसी आग लगाई है कि ईरान की जंग में हिंदुस्तान की जेब तंग है और जिस तरह देश के प्रधानमंत्री मंत्री नेताओं के पैगाम है आवाम सहमी हुई कि ना जाने आगे कैसा वक्त आने वाला है। ये इशारे आवाम समझे या ना समझे हालात दिखने लगे हैं। दूध 2 रुपए लीटर बढ़ गया, घरेलू LPG 60 रुपए पहले बढ़ चुकी है, कमर्शियल सिलेंडर 1300 रुपए बढ़ चुका है, खाने का तेल 15 रुपए लीटर बढ़ चुका है, विदेशी दाल के दाम 35% बढ़ गए, मेवों के दाम 80% चढ़ गए, सोने चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, घर बनाने का सामान 10% महंगा हो गया, विदेश यात्रा का टिकट महंगा हो गया, डॉलर के मुकाबले रुपया सेंचुरी के करीब घिसटता जा रहा है। यूं ही पीएम मोदी पिछले 2 हफ्ते से भारतवासी भाइयों और बहनों को बचत का पाठ नहीं पढ़ा रहे। भारतवासी पीएम मोदी की अपील पर गौर करें या नहीं, नेता मंत्री जरूर संदेश दे रहे हैं। पीएम खुद 20 कारों के काफिले से 2 कार के काफिले पर आ गए। लोकसभा स्पीकर ने अपने काफिले में कारों की संख्या घटा दी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सिर्फ 1 कार के साथ पीएमओ पहुंचे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार छोड़ ई रिक्शे की सीट थाम चुके हैं। महाराष्ट्र के सीएम बुलेट से विधानसभा पहुंचते दिखे। पंजाब के गवर्नर चंडीगढ़ के अफसरों को हर बुधवार बिना वाहन के दफ्तर आने का आदेश दे चुके हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने काफिले में कार घटा दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने भी काफिले में कारों की तादाद घटा दी। बिहार के सीएम 3 कारों के काफिले में चलने लगे। सम्राट के मंत्री अशोक चौधरी 1 कार में JDU दफ्तर पहुंचे। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना साइकिल से विधानसभा आए। बंगाल में BJP की विधायक पूर्णिमा चक्रवर्ती स्कूटी से विधानसभा आई। वैसे तो पीएम मोदी के आह्वान पर पूरी BJP एकजुट होकर देश के सामने संदेश रख रही है और यही संदेश अब तो आंकड़ों में नजर आने लगा, क्योंकि मार्च के 3.88% के मुकाबले अप्रैल में थोक महंगाई दर 8.30% पर पहुंच चुकी है। इसमें ईंधन की महंगाई 1% से बढ़कर 24.71% तक है, कंज्यूमर आर्टिकल 3.39% से बढ़कर 4.62%, खाद्य महंगाई 1.85% से बढ़कर 2.31%, प्राइमरी आर्टिकल 6.36% से बढ़कर 9.17% तक हो गए। मतलब ईरान की जंग में फूंकते बारूद ने तेल गैस की सप्लाई में ऐसी आग लगाई कि अब हर हिंदुस्तानी की जेब जलने लगी। बात महंगाई तक रहे तो और, अब तो जानकार आगाह कर रहे हैं अच्छे दिन में बचा लो वरना आने वाला है दुर्दिन। संकट दोधारी तलवार वाली है, एक तो तेल गैस की महंगाई, ऊपर से तेल गैस की सप्लाई पर आफत, क्योंकि अब तो ईरान झंडा देखकर भी हमला करने लगा। हॉर्मुज से गुजर रहे भारत के झंडे वाले एक मर्केंडाइज शिप को ईरान ने हमला करके समंदर में ही दफन कर दिया। गनीमत रही कि 14 भारतीय क्रू ने किसी तरह अपनी जान बचाई। ऐसी सूरत में भारत को खाड़ी से कितना तेल गैस कैसे मिल पाएगा, ये संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विपक्षी चाहे जो कहें, लेकिन पीएम मोदी ने आने वाले संकट को देखते हुए जो अपील देशवासियों से की है, अंदाजा देश की जेंजी तक को है। देश की जनता ईरान की जंग की शुरुआत से किफायत करने को मजबूर है। महंगे हो चुके तेल गैस का इस्तेमाल सूझबूझ के साथ कर रही, लेकिन अब नेताओं की कार छोड़ साइकिल रिक्शा बग्घी पैदल वाली सवारी देखकर सहमने लगी है कि जब हुक्मरानों का यह हाल दिखने लगा तो आने वाले दिनों में आवाम का क्या होगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं, आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। स्वागत है आपका। तो आज हम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का हिंदुत्व साइन आपको दिखाने जा रहे हैं और इस समय हम एक वर्चुअल के द्वारा शुभेंदु की हिंदुत्व वाली प्रयोगशाला में आपको लेकर आए हैं। इस प्रयोगशाला में हम मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु एकदम मुख्यमंत्री योगी के हिंदुत्व वाले मॉडल पर चल रहे हैं। बंगाल की सत्ता संभालते ही सीएम शुभेंदु ने अभी तक जो भी निर्णय लिए हैं वो बिल्कुल हिंदुत्व की प्रयोगशाला में तैयार किए हुए हैं। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने राज्य में गाय काटने पर रोक लगा दी है, यानी कि गोकशी बैन कर दी है। 6 महीने की जेल और जुर्माने के प्रावधान को सख्ती से लागू करने का आदेश उन्होंने दिया है। पहला, सीएम शुभेंदु ने 1950 के बंगाल कानून और 2018 के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया है। ये इस नोटिस में कहा है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी भैंस की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंध है। मतलब ये हुआ कि बिना वैध और अनिवार्य फिटनेस प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट के गाय या भैंस के वध पर रोक लगा दी गई है। शुभेंदु अधिकारी का यह आदेश है कि पशु वध के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट केवल किसी नगर पालिका के अध्यक्ष, किसी पंचायत समिति के प्रमुख और एक सरकारी पशु चिकित्सक के साथ मिलकर ही जारी किया जाएगा। तीसरा प्रयोग, बंगाल में बिना लाइसेंस के चलने वाले सभी पशु बाजारों यानी कि कैटल मार्केट्स को बंद करने का अभियान शुरू कर दिया गया है। चौथा, मुख्यमंत्री शुभेंदु ने बंगाल के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए भी एक बड़ा निर्णय किया है। अब हर स्कूल की सुबह की प्रार्थना में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है और इसका पालन अगले सप्ताह से शुरू भी कर दिया जाएगा। पांचवा, मुख्यमंत्री शुभेंदु ने कैबिनेट मीटिंग में सड़क पर नमाज को लेकर आदेश जारी कर दिया और कहा कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं, लेकिन सड़कों पर नमाज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आप बंगाल में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, उसे बैन कर दिया है मुख्यमंत्री शुभेंदु ने। इसके साथ ही मंदिर, मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थल पर ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई। मतलब यह हुआ कि मस्जिद में अब लाउडस्पीकर पर अजान को बैन कर दिया गया है। हल्की आवाज में अजान होगी, ऊंची आवाज में बिल्कुल भी नहीं। बंगाल की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर की परमिशन दे दी। योगी मॉडल यहां शुरू कर दिया है। कोलकाता के तेलजला में आग लगने की घटना के बाद अवैध इमारतों पर बुलडोजर चल पड़े हैं। अवैध बूचड़खानों पर भी बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया है और शुभेंदु अधिकारी ने अपनी हिंदुत्व की पाठशाला या साइंस, हिंदुत्व साइंस जो है उसमें ये सारे के सारे निर्णय कर दिए हैं। और अब हम दिखाते हैं आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट।
3: बंगाल में शुभेंदु सरकार, हिंदुत्व की पिच पर धड़ाधड़ फैसले। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का नया मॉडल आ गया बुलडोजर। बंगाल में अब गाय काटने पर रोक, सार्वजनिक भूचड़खाने भी बंद। शुभेंदु का भगवा आसन, स्कूलों में अब वंदे मातरम का गायन। न होगी सड़कों पर नमाज, लाउड स्पीकर पर अजान भी बैन।
4: एवं मानुषेर जन्य करुक, समाजेर जन्य करुक, आमादेर राज्येर जन्य करुक, राष्ट्रवादेर जन्य।
3: पश्चिम बंगाल में नए सीएम शुभेंदु अधिकारी के कुर्सी संभालते ही सरकार की प्रयोगशाला में हिंदुत्व साइंस का प्रैक्टिकल शुरू हो गया है।
5: ये मुस्लिमों का भी वोट मिला है या नहीं मिला है, कुछ

0: नहीं मिला एकदम
1: एकदम नहीं
0: कहीं पे भी नहीं मिला
1: नहीं नहीं नहीं बीजेपी को नहीं दिया पूरा हिंदू वोट में 99% मुसलमान वोट मैं तो भवानीपुर नंदीग्राम को बता रहा हूँ पूरा टीएमसी को दिया भवानीपुर में तो 85% हिंदू कंसोलिडेशन हुआ इसलिए मैं जीता।
2: शुभेंदु अधिकारी बंगाल में हिंदुत्व मॉडल को अपना रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी पर भगवा रंग का तौलिया जरूर दिखता है। आमतौर पर नेता और मंत्रियों की कुर्सियों पर सफेद तौलिया होता है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी पर भगवा तौलिया जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। शुभेंदु से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे इकलौते नेता हैं जिनकी कुर्सी पर हमेशा भगवा तौलिया रखा जाता है, और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व वाले मॉडल पर बंगाल में धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, अब राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पश्चिम बंगाल के नव नियुक्त सीएम शुभेंदु की खासी चर्चा है। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। इस दौरान दोनों की मुलाकात ने खासी सुर्खियां बटोरी हैं। शपथ ग्रहण के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद दिया। इसके बाद वो बीजेपी के तमाम नेताओं से मुलाकात करते हुए जब सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे, तो वहां एक अलग नजारा देखने को मिला। तमाम नेताओं और मुख्यमंत्रियों से अलग सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को भगवा पटका पहनाकर सम्मानित किया। अब चर्चा ये है कि बंगाल में हिंदुत्व मॉडल पर शुभेंदु अधिकारी भी चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जो घोषणा पत्र में कहा गया था सीएम शुभेंदु बंगाल के लिए वही फैसले ले रहे हैं। गोकशी बैन, पशु वध फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी, बिना परमिशन वाले पशु बाजार बैन, स्कूल प्रार्थना सभा में वंदे मातरम, सड़क पर नमाज बैन, लाउड स्पीकर से अजान बैन, अवैध निर्माण बैन।
3: अदालत का फैसला था, यहाँ मान नहीं होता, सरकार जानबूझकर उसको नहीं मानती थी और लोगों को उत्साह दिया जाता था नहीं मानने के लिए, उसी को फिर से हमारी सरकार सामने लाई है। जो पहले से कोर्ट का फैसला है, संवैधानिक व्यवस्था के अंदर जो चीजें उसी को हम लोग लागू किया है, लोगों को याद करा दिया कि आप कानून से चलिए, और देश में चाहे धर्म हो, जात हो, कुछ भी हो, सबके लिए कानून बराबर है और कानून को सबको मान के चलना चाहिए।
4: कोई गलत काम में जुड़ा होगा उनका खिलाफ तो बुलडोजर को जहां पदक्षेप करेंगे, जहां वो एक्शन लेंगे, मेरा को तरफ में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा मदद करूंगा।
5: स्कूलों में सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम जो है अब गाना
4: तो होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
2: शुभेंदु अधिकारी का सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अलग जुड़ाव बनता दिखा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के दौरान शुभेंदु अधिकारी जब सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच पर पहुंचे थे, तो उन्होंने जनसभा के सामने योगी आदित्यनाथ को साष्टांग प्रणाम किया था। इस दौरान लोगों ने उनमें मुख्यमंत्री योगी की छवि देखनी शुरू की थी। शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर भी जब सीएम योगी शुभेंदु अधिकारी को भगवा पटका पहना रहे थे, तो जनसभा के बीच जय श्री राम के नारे लगते रहे। बंगाल में सीएम योगी ने कहा था कि बीजेपी सरकार बनने के बाद यूपी की तर्ज पर बंगाल में भी अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस दौरान सीएम योगी ने यूपी के उन अपराधियों का जिक्र किया जिनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर की कार्रवाई हो चुकी है। तो क्या सीएम शुभेंदु का अगला कदम अपराधियों के खिलाफ दिखेगा?
6: सरकार चले तथ्यर उपरे, सरकार चले नियमेर उपरे, এবং সরকারি সিদ্ধান্ত হয় সংবিধানের কতগুলো বিষয়ের উপরে। তাই এই গভর্নমেন্ট আমিতে বিশ্বাস করে না, আমরা নীতিতে চলবে এবং রুলস অ্যাক্টস সংবিধান একে প্রায়োরিটি দিয়েই আমরা কাজ করব।
2: বঙ্গাল মে 207 সিটে জিতকার बीजेपी की सरकार बनी है, और बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में ममता बनर्जी को भी हराया। अब सीएम शुभेंदु एक तरफ तो हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, दूसरा वो सारे बड़े फैसले ले रहे हैं जो ममता राज में अटके रहे। आज तक ब्यूरो।
0: रही, अब हम आपको दिखाते हैं कि बंगाल में पुलिस ने एक टीएमसी नेता के घर पर छापा मारा तो पूरा खजाना खुल गया। सोने से जुड़ा हुआ एक बेड, कुएं वाला बाथटब, एक से बढ़कर एक लक्जरी आइटम्स। बंगाल के शिवपुर में टीएमसी नेता शमीम अहमद के घर बीजेपी कार्यकर्ता की बमबाजी के आरोप में कार्रवाई हुई, लेकिन छापे में पुलिस की आंखें बड़ी की बड़ी रह गई। देखिए,

0: बंगाल में टीएमसी का राज खत्म, नेताओं का गोल्डन महल एक्सपोज। सोने का बेड, जंतर बंतर वाला तहखाना, टीएमसी नेता का खुला खजाना। टीएमसी नेताओं के घर रेड, महल जैसे घर और सोना ही सोना। यह है पश्चिम बंगाल के हावड़ा के शिवपुर इलाके में टीएमसी नेता का घर। बंगाल की पुलिस जब यहां रेड मारती है तो घर के अंदर सीढ़ियां एक तहखाने की तरफ ले जाती हैं और यहां जो नजारा दिखता है, पुलिस की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। ये तहखाना आलीशान और लग्जरी तरीके से बनाया गया था। तहखाने में पुलिस को एक बेड दिखता है जिसका सिरहाना सोने से जड़ा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बेड का सिरहाना सोने का बना है। बेड के साइड वाले स्टैंड पर भी सोना ही सोना जड़ा है। शमीम अहमद नाम के इस टीएमसी नेता पर बीजेपी के नेता के घर बमबाजी करने के आरोप में कार्रवाई हुई, लेकिन जब पुलिस छापा मारने शमीम अहमद के घर पहुंची तो खजाना ही खुल गया। छापेमारी करने गई पुलिस टीम को बाहर से शमीम अहमद का घर सामान्य सा लग रहा था, लेकिन अंदर से किसी महल जैसा था। यहाँ एक आलीशान गेट लगा था, नक्काशीदार इस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। टीम ताला तोड़कर अंदर गई तो यहाँ एक सीक्रेट तहखाना नजर आया। जब टीम तहखाने में उतरी तो नीचे का नजारा देखकर दंग रह गई। यहाँ एक अलग ही दुनिया बसी थी।
1: और अब बाद नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड की। कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पूरे खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी के चेहरे से नकाब उतरना अभी बाकी है, क्योंकि पेपर लीक केस की पूरी जांच एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर आकर टिक गई। आरोपियों से मिले सुराख बताते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के पेपर लीक हुआ। अगर प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ तो एनटीए के कर्मचारियों के मिलीभगत से ही ऐसा संभव है। शुरुआती जांच में पेपर लीक की पूरी साजिश प्रिंटिंग प्रेस के इर्द गिर्द घूम रही है। जहां पेपर प्रिंटिंग के लिए पहुंचा वहीं से नीट का क्वेश्चन पेपर हासिल किया गया। अब सवाल यही है कि प्रिंटिंग प्रेस से नीट का पेपर किसने लीक करवाया? कौन है एनटीए में बैठा पेपर लीक का मास्टरमाइंड? क्या सीबीआई प्रिंटिंग प्रेस के और एनटीए के इस खतरनाक सिंडिकेट को बेपर्दा कर पाएगी?
0: ये है दिनेश बिवाल, नीट पेपर लीक का आरोपी। आज दिनेश अपने हाथ को ढाल बनाकर अपनी पहचान छिपाना चाहता है, लेकिन आरोपी दिनेश के दावे ने नीट पेपर लीक में एनटीए जैसी संस्था के अंदर पेपर लीक माफियाओं की पैठ और 2024 नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बहुत गौर से आरोपी दिनेश के दावे को सुनिए। एक बार फिर दिनेश बिवाल ने कैमरे पर जो कहा गौर से सुनिए। दिनेश पर नीट का पेपर खरीदने का आरोप है, लेकिन दिनेश का दावा है नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड और लीक सिंडिकेट से जुड़े एनटीए के इंसाइडर को बचाया जा रहा है, जबकि सिर्फ प्यादों की गिरफ्तारी हो रही है। ये दावा आरोपी दिनेश की पत्नी ने आज तक के कैमरे पर किया।
2: अच्छा आप ये बताओ, आपको कौन फंसाना चाहेगा? कौन पीछे पड़ेगा आपके?
0: कौन है पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड? एनटीए में पेपर लीक रैकेट के कितने पार्टनर? प्रिंटिंग प्रेस से नीट का पेपर किसने लीक किया? क्या पकड़ी जाएगी एनटीए में पेपर लीक की मंडली? आज तक संवाददाता शरद कुमार ने केस की जांच कर रही राजस्थान एसओजी टीम से एक्सक्लूसिव डिटेल हासिल की है। ये जानकारी पेपर लीक रैकेट से जुड़े बड़े बड़े माफियाओं और एनटीए में बैठे पेपर लीक माफियाओं के साझेदारों से जुड़ी है। नंबर एक, नीट पेपर की हार्ड कॉपी पुणे की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुई। नंबर दो, एनटीए के अंदर तक पेपर लीक माफियाओं का नेटवर्क है। नंबर तीन, एनटीए के अंदर से सीक्रेट जानकारी को लीक किया गया। नंबर चार, पेपर लीक माफियाओं पर अब तक शिकंजा नहीं कस सका।
2: नीट पेपर लीक 2026 में गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल, दिनेश और विकास के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं किस तरह से घर में पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है। यहां आसपास जो इनके घर में गाड़ियां थी, उन गाड़ियों की भी तलाशी ली गई है। इसके अलावा भी जो सामान है, उन सारे सामान की भी तलाशी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है। अब इस तरह से निकल रहे हैं। क्या आप लोगों ने देखा, कुछ पाया यहाँ कुछ आप लोगों ने जांच में? तो इस तरह से अभी ये सीबीआई के जो अधिकारी हैं, हालांकि ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, मगर यहाँ पर तफ्तीश चल रही है।
0: सीबीआई की छापेमारी जारी है ताकि पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड और पेपर लीक नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। तो क्या प्रिंटिंग प्रेस से हुए काले खेल के काले खिलाड़ियों तक कानून के लंबे हाथ पहुँचेंगे?
3: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम लगातार अपनी जाँच को आगे बढ़ा रही है। सीबीआई की एक टीम एनटीए दफ्तर पहुँची थी, वहाँ घंटों छानबीन की। मैंने सीबीआई की टीम के उन अफसरों से बात की जो इस जांच में शामिल है। सीबीआई की टीम का फोकस कई जगहों पर है, मसलन एनटीए के वो अधिकारी जो इस पूरे एग्जाम की प्रक्रिया में शामिल थे, दूसरा जहां पेपर छापा जा रहा था उस प्रिंटिंग प्रेस पर, और तीसरा उन सब्जेक्ट एक्सपर्ट पर जिन्हें पेपर बनाने का जिम्मा दिया गया था। पेपर लीक मामले में एनटीए के अधिकारियों की मिली भगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
0: गिरफ्तार किए गए आरोपियों से जांच टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पेपर लीक रैकेट से जुड़े कई बड़े नाम सामने आए हैं, लेकिन किसने पेपर लीक किया, अभी जांच टीम उस कड़ी को जोड़ने में नाकाम है। 2024 नीट पेपर लीक की जाँच भी सीबीआई ने की थी। चार्जशीट में सीबीआई की तरफ से यही दावा किया गया कि पेपर लीक के पीछे बड़ा सिंडिकेट काम करता है, जिसमें कई स्कूलों के अफसर, बिचौलिए, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्र, ट्रांसपोर्टर शामिल हैं। पूरा रैकेट बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है। सभी का काम बटा हुआ है, सभी की भूमिकाएं अलग अलग हैं, लेकिन सभी रैकेट से जुड़े रहते हैं। हालांकि 2024 नीट पेपर लीक के पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने में देश की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी नाकाम रही है।
4: नीट पेपर लीक का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले साल 2024 में भी ऐसा ही मामला बिहार से सामने आया था। मामले की जांच सीबीआई को दी गई, सीबीआई ने दर्जनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, हजारों पन्ने की चार्जशीट दाखिल की, लेकिन शायद सीबीआई की जांच की दिशा और दशा उस अंजाम तक नहीं पहुंच पाई जिससे कि इस तरह के मामलों को भविष्य में रोका जाता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद इस बार पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं आता।
0: क्या पेपर लीक माफियाओं का नेटवर्क इतना ताकतवर है कि जांच एजेंसियों के हाथ भी बंध जाते हैं? क्या इस बार एनटीए में मौजूद पेपर माफियाओं के साझेदारों के चेहरों से नकाब उठेगा, क्योंकि जांच टीम के हाथ पेपर लीक माफिया के सबसे बड़े राजदार तक पहुंच चुके हैं?
5: ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे, SR एजुकेशन कंसल्टेंसी, ये शुभम खैरनार की कंसल्टेंसी है, और इसमें लिखा है वी हेल्प स्टूडेंट्स फॉर करियर, आवर सर्विसेज MBBS, BAMS, BDS, BHMS, ऑल UG, PG कोर्सेज। ये बच्चों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए मदद करा रहा था, और आप देख सकते हैं कि ये नासिक के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अपना ऑफिस चला रहा था। शुभम खैरनार का ये कहना था कि वो प्रैक्टिस कर रहा था, वो खुद थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, पर यहाँ पर उसने बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें वो दिखा रहा है कि वो एक डॉक्टर बन चुका है।
0: नीट का पेपर खरीदने वाले नीट का पेपर बेचने वालों पर कानूनी शिकंजा कस रहा है, लेकिन पेपर लीक में सबसे बड़ा रोल निभाने वाले माफिया और पेपर लीक करने वाले एनटीए के इनसाइडर के चेहरे से पर्दा अभी नहीं उठा है। देखना यही है कि नीट पेपर लीक के असल गुनहगार कब पकड़े जाते हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा और मनीष पांडे, नासिक से दिव्येश सिंह के साथ, जयपुर से शरद कुमार, आज तक।
1: हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटकर जब आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको बताएंगे युद्ध के मारे जिनपिंग के सहारे ट्रंप। आप देखते रहिए दस्तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो
7: इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
5: GK Max.
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: GK Max. Best putty.
7: JK Wall Max.
5: Best paint.
8: JK Max.
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
5: जेके मैक्स पेंट्स।
9: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
10: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
11: ए प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
12: विक्रम एक हिंट तो देते।
13: विक्रम
12: हिंट
14: बड़े आराम से
15: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के साथ। ये भाई साहब सब पचा देते।
16: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से।
17: मुल्तानी पश्मीना अपने हक का खाओ सब कुछ पचाओ।
18: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिए।
19: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
20: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
21: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
22: सॉरी सर मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
23: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स से फोकस हटाने का नहीं और म्यूचुअल फंड से सही।
24: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
25: डायरेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
26: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ बहुत अपसेट हूँ।
27: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
28: लायन डेट नट बाइट्स।
29: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
30: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
31: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था एनटीए को पता नहीं।
29: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
32: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
30: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ। एनटीए जागी पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है खबरदार किया है हर दल की सरकार को जगाया है बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
29: जहां खबर वहां खबरदार।
33: In association with Monte Carlo, it's the way you make me feel.
34: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
35: Wait, lifestyle के लिए 10 अलग pages क्यों follow करना? Health, fitness, yoga, mental wellness, सब कुछ एक ही जगह, Fit Tak. Simple tips, expert insights, real conversations. Life upgrade करो, easy way. Watch only on Fit Tak YouTube.
36: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, जयपुर के जम्बारागढ़ के इन दो भाइयों का नाम आज देश भर के लोगों की जुबान पर है। वजह, नीट पेपर लीक कांड। नीट पेपर लीक की जांच में अब तक जो खुलासा सामने आया है उसने जम्बारामगढ़ का बिवाल परिवार चर्चा में आ गया है। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि 2025 में परिवार के चार बच्चे नीट में सेलेक्ट हुए और इस साल एक और बच्चे ने नीट का पेपर दिया और उसी के लिए मांगीलाल और दिनेश बिवाल ने गुरुग्राम के यश यादव से 30 लाख रुपए में लीक पर्चा खरीदा था। मांगीलाल और दिनेश गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि नीट की पेपर देने वाला परिवार का बच्चा अंडरग्राउंड है। इस खुलासे के बाद सवाल उठ रहा है कि बीते साल परिवार के चार बच्चों का नीट में पास होना महज इत्तफाक है या फिर चारों का सिलेक्शन पेपर लीक की वजह से हुआ था। आज तक संवाददाता शरद कुमार जब जम्वारामगढ़ में पेपर लीक कांड में गिरफ्तार बिवाल परिवार के घर पहुंचे तो मुलाकात आरोपी दिनेश की पत्नी रजनी और उनके केयरटेकर से हुई। रजनी ने आज तक के कैमरे पर कबूल किया कि चार बच्चों ने पिछले साल नीट की परीक्षा पास की थी।
1: पिछले साल भी नीट में पास हुए हैं?
2: हाँ हुए ना।
1: कितने लोग?
2: चार लोग।
1: चार लोग? हाँ। तीन लड़कियां और एक लड़का?
2: हाँ।
1: वो किसके थे?
2: ये मेरी बहन के और मेरे जेठ के।
1: मांगीलाल जी के?
2: हाँ।
1: उनको भी साथ में ले गए हैं दिनेश के?
2: कहाँ?
1: इसो जी,
2: मुझे पता नहीं है मैडम।
1: वो भी वो उनसे कब मिली थी आप?
2: मुझे पता ही नहीं है कब मिली थी मैं तो।
0: दिनेश बिवाल और उसका बड़ा भाई मांगीलाल नीट पेपर लीक कांड से जुड़े अहम किरदार हैं। आरोपी दिनेश की पत्नी रजनी ने आज तक के कैमरे पर कबूल किया कि बीते साल हुई नीट की परीक्षा में परिवार के चार बच्चे सेलेक्ट हुए थे जबकि इस साल सीकर में नीट की तैयारी कर रहे परिवार के एक अन्य सदस्य ने परीक्षा दी थी। हम उसका नाम और पहचान नहीं बता रहे क्योंकि वो नाबालिग है। पेपर लीक के खेल से बिवाल परिवार का कनेक्शन क्या है समझने से पहले बिवाल परिवार की ये कुंडली देखिए। बिवाल परिवार में तीन सगे भाई हैं, मांगीलाल, घनश्याम और दिनेश। मांगीलाल बीते साल हुई नीट परीक्षा और इस साल हुई नीट परीक्षा का आरोपी है। बीते साल मांगीलाल की बेटी प्रगति और बेटे विकास ने नीट की परीक्षा पास की तो वहीं घनश्याम की दो बेटियों यानी पलक और सानिया ने भी नीट का एग्जाम क्लियर किया। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। इस साल भी बिवाल परिवार के एक बेटे ने नीट की परीक्षा दी थी। घनश्याम की मौत हो चुकी है जबकि मांगीलाल, दिनेश और विकास नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार हो चुके हैं। ये कोठी पेपर लीक कांड में गिरफ्तार मांगीलाल और दिनेश की है। दोनों भाइयों पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। मांगीलाल और दिनेश से पूछताछ में पेपर लीक सिंडिकेट के एक एक राज उगलवाने में जांच एजेंसियां जुटी हैं। जांच एजेंसियां दिनेश के जरिए पेपर लीक के काले खेल से जुड़े बड़े बड़े चेहरों को बेनकाब करना चाहती हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ईरान और अमेरिका तनाव के बीच ट्रंप की चीन की यात्रा चल रही है और आज दुनिया की नजरें ट्रंप की चीन यात्रा पर टिकी हैं। कारण, अमेरिका और ईरान के बीच संपूर्ण युद्ध विराम में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भूमिका। चीन की यात्रा पर जाने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इच्छा व्यक्त की थी कि ईरान को पीस डील के लिए तैयार करने के लिए चीन से बात करेंगे, मतलब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम होगा। यह महंगाई अब चीन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सवाल यही है कि ईरान का साझेदार चीन क्या ट्रंप की बात मानेगा? क्या पीस डील पर राजी होने के लिए ईरान पर दबाव बनाएंगे जिनपिंग?

0: परमाणु बम बनाने से बस एक कदम दूर ईरान। ट्रंप ने हमला किया तो अब होगा परमाणु युद्ध। ईरान को रोकने के लिए चीन की शरण में ट्रंप। जंग में ईरान के मारे ट्रंप अब जिनपिंग के सहारे। जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चीन की यात्रा पर हैं, ठीक उसी वक्त ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर हैं। चीन यात्रा के दौरान ट्रंप की कोशिश है कि जिनपिंग ईरान पर शांति समझौते को लेकर दबाव बनाएं, ईरान को पीस डील के लिए राजी करें। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने ईरान पर अमेरिका के आक्रामक रवैये पर सीधा हमला बोला। मीटिंग में ब्रिक्स के सदस्य देशों से अमेरिका के अवैध आक्रमण के खिलाफ आवाज उठाने की मांग की। मतलब यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच दो मोर्चे खुले हुए हैं। एक तरफ वॉर जोन में दोनों मुल्कों की सेनाएं आमने सामने हैं। धमकियों और चेतावनियों का दौर थमने का नाम नहीं दे रहा। दूसरी तरफ डिप्लोमेसी की टेबल पर बिछी बिसात पर शह और मात की चाल चली जा रही है। ब्रिक्स में ईरान ने अमेरिका को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, तो वही चीन में ट्रंप और जिनपिंग के बीच ईरान के मुद्दे पर बातचीत हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मुताबिक ईरान के मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन अमेरिका ने बीजिंग से मदद नहीं मांगी। रूबियो का दावा है कि चीन भी अमेरिका के इस मत से पूरी तरह सहमत है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। रूबियो के मुताबिक हुर्मुज पर ईरान का टोल सिस्टम लागू हो, चीन इसके पक्ष में नहीं है। मतलब अमेरिका और चीन हुर्मुज पर टोल टैक्स और परमाणु हथियार को लेकर एक पेज पर हैं। हम चीन से मदद नहीं मांग रहे, हमें उनकी मदद की जरूरत नहीं है। ये अच्छी बात है कि हमारे बीच गठबंधन है, या कम से कम इस मुद्दे पर सहमति है। चीन पर अमेरिका का दावा भले ही जो हो, लेकिन ईरान की हुर्मुज और परमाणु प्रोग्राम को लेकर लाइन क्लियर है।
1: ईरान के पर्सपेक्टिव से देखें तो ईरान कभी भी परमाणु हथियार बनाना ही नहीं चाहता था, ये ईरान का कहना है। ईरान कहता है ना उन्होंने परमाणु हथियार बनाए, ना वो बना सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम लीडर खामेनेई का फतवा था कि परमाणु हथियारों के लिए नहीं, पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें। दूसरी बात, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करें तो चीन इसलिए सहमत है क्योंकि सबसे ज्यादा तेल चीन का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलता है, और अगर वहां पे टोल लगने लगा तो चीन को बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन यहां पर ये भी बात है कि चीन ने ईरान की तरफ से ये बात रखी होगी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलना है तो अमेरिका का जो नेवल ब्लॉकेड है, जो बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आगे है, उसको पहले हटाना होगा। ये ईरान का डिमांड है और यही सही रास्ता है।
0: ईरान किसी दबाव में अमेरिका के साथ पीस डील साइन नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट मानते हैं कि ईरान पर पीस डील के लिए चीन दबाव डाल सकता है। मुझे लगता है कि वो पर्दे के पीछे से हर संभव प्रयास करेंगे जिससे तेहरान को प्रभावित किया जा सके। मुझे लगता है चीन हुर्मुज पर जो कुछ भी कर सकता है वो करेगा। अमेरिका को उम्मीद है कि चीन के रास्ते ईरान के साथ पीस डील को लेकर बात बन सकती है। तो वहीं ईरान ने ब्रिक्स के अंतर्राष्ट्रीय मंच से अमेरिका की दबाव वाली कूटनीति का तोड़ निकालने की कोशिश की है।
2: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय उस चीन की राजधानी बीजिंग में मौजूद हैं जो ब्रिक्स का संस्थापक देश है, और ब्रिक्स की इन तमाम अर्थव्यवस्थाओं की तरह ही वैश्विक व्यवस्था में सुधार की वकालत करता है। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय उस ईरान के साथ में संघर्ष में उलझे हुए हैं जिसके विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची इस समय दिल्ली में मौजूद हैं क्योंकि ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। इस मंच का इस्तेमाल करते हुए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने सीधे तौर पर अमेरिका का जो नजरिया है उसको चुनौती दी है। सीधे तौर पर सैयद अब्बास अराग्ची की तरफ से कहा गया कि उपनिवेशवाद की जो पुरानी सत्ताएं हैं वो गिर रही हैं, वो ढह रही हैं, ये व्यवस्था को बदलने का समय है, ये दुनिया की व्यवस्था में उन सुधारों को करने का समय है।
0: ईरान के साथ पीस डील को लेकर चीनी राष्ट्रपति अमेरिका की कितनी मदद करते हैं ये चंद दिनों में साफ हो जाएगा। इसी हफ्ते हुर्मुज को लेकर यूएन में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। पिछली बार चीन और रूस के वीटो के चलते प्रस्ताव गिर गया था। अब देखना यही है कि अब की बार चीन का रुख क्या कहता है।
3: We've made the argument to the Chinese, and I hope it's compelling, and they'll have a chance to do something about it at the United Nations later this week when there's a resolution just condemning Iran on what they're doing with the Straits.
0: अमेरिका को उम्मीद है कि यूएन में ईरान के खिलाफ आने वाले प्रस्ताव का विरोध चीन नहीं करेगा। अमेरिका चाहता है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के साथ साथ यूएन के जरिए भी ईरान पर शिकंजा कसा जाए, ताकि अमेरिका की शर्तों पर ईरान पीस डील के लिए राजी हो जाए। मामला ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर अटका हुआ है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री का दावा है कि ईरान को अभी नहीं रोका गया तो वो चंद हफ्तों में एटमी हथियार बना लेगा। ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। ईरान कुछ ही हफ्तों में 1 टन यूरेनियम को हथियार योग्य स्तर तक समृद्ध कर लेगा। ईरान के पास 60% तक समृद्ध यूरेनियम के साथ साथ 20% समृद्ध यूरेनियम की काफी मात्रा भी है। अंततः हमारा लक्ष्य भविष्य में यूरेनियम संवर्धन को रोकना भी है। एक सुरक्षित दुनिया के लिए हमें उनके परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना होगा। अब देखना यही है कि कूटनीति की बिसात पर चली गई चालों से मामला सुलझ जाएगा या फिर एक बार अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध होगा। आज तक ब्यूरो।
4: हमारे संवाददाता सुमित चौधरी इस समय हमारे साथ हैं। सुमित, अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है उसे देखते हुए आपको क्या लग रहा है, स्थायी युद्ध विराम होगा, समझौता होगा या फिर एक बार फिर से भयंकर युद्ध भड़केगा? सुमित,
5: ईरान ने अपने जो आप कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा जो लॉन्चर्स हैं अपने मिसाइल्स के या फिर आप कह सकते हैं कि उनके जो ड्रोन्स के उनको रिवाइव किया, उनको दोबारा से उनकी स्टोरेज को बढ़ाया, उनके कई साइलोस को तैयार किया जा रहा है इससे। लेकिन सबसे ज्यादा ईरान का फोकस इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। ना सिर्फ उन्होंने अपनी जो कॉम्बैट बोट्स हैं उनकी संख्या वहां पर बढ़ा दी, हाल ही में उन्होंने वो संख्या दोबारा से 100 से ज्यादा नई बोट्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तैनात किया था, जिसकी सेटेलाइट तस्वीरें भी आई थी। इसके बाद ये भी कहा गया कि उन्होंने अंडरवाटर ड्रोन जो है जिसको कई जिसका नाम डिस्कवरी दिया गया, ऐसे ड्रोन्स को भी उन्होंने अंडरवाटर ड्रोन्स को उतारा है, छोटी सबमरीन्स को भी उतारने की कोशिश की जा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। तो ईरान ने भी इस पूरे वक्त के अंदर अपनी तैयारियां की। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी ये कोशिश कर रहा है कि अपनी सैन्य तैनाती को भले ही पोस्टरिंग के द्वारा ये दिखाया जा रहा हो कि देखिए जो तैनाती आप कह सकते हैं कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर लीजिए, कई डिस्ट्रॉयर्स की बात कर लीजिए, वो सारी तैयारियां है, लेकिन अमेरिका भी अपनी धीरे धीरे डिप्लॉयमेंट जो है किन किन देशों से निकाली जा सकती है। जर्मनी में हालांकि खासतौर पर कहा गया कि उन्होंने अपने ट्रूप की कुआं से निकाला था, लेकिन इसके पीछे की रणनीति साफ तौर पर यह है कि अगर हालात कभी भी बिगड़े या बातचीत नहीं एक दूसरे के मुताबिक चल पाई तो निश्चित तौर पर एक नए संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। ये तैयारियां ये दिखाती है कि भले ही बातचीत को लेकर दोनों पॉजिटिव दिखा रहे हो, लेकिन दोनों के बीच में यह भी सहमति है कि एक डेडलॉक क्रिएट हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर और यूरेनियम को लेकर, और दोनों ही अपने उस स्टैंड से पीछे नहीं हटना चाहते। शायद इन्हीं वजह से मिलिट्री पर्सपेक्टिव को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अभी भी दोनों बड़ी जंग की तैयारियां कर रहे हैं और लंबी जंग की तैयारियां कर रहे हैं।
4: और अब बात ट्रंप के चीन दौरे की। बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हाई लेवल स्वागत हुआ। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जिनपिंग ने ट्रंप का स्वागत किया। इस दौरान ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। दोनों नेताओं पर पूरी दुनिया की नजरें इसलिए भी जमी हुई है कि एक तो ईरान से युद्ध और समझौते को लेकर क्या बात होती है दोनों के बीच, और दूसरा अमेरिका और चीन के बीच कौन कौन सी डील होती है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं।
0: ट्रंप और जिनपिंग मिले, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? क्यों जिनपिंग ने ट्रंप से कहा पार्टनर बने कॉम्पिटिटर नहीं? जिनपिंग ने क्यों कही ट्रंप से आपसी सम्मान की बात? दुनिया की दो बड़ी ताकत मिली, क्या कोई बड़ी डील होगी? क्या ईरान को लेकर चीन पर दबाव बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? ये ये तस्वीरें बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के पहले दिन की हैं। सुबह ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप का औपचारिक स्वागत किया। रेड कार्पेट पर दोनों नेता साथ खड़े नजर आए, जहां सैन्य बैंड ने पहले अमेरिका और फिर चीन का राष्ट्रगान बजाया। इस दौरान दर्जनों बच्चे हाथों में झंडे और फूल लेकर स्वागत करते दिखे, जिससे पूरे समारोह का माहौल खास बन गया। स्वागत के बाद दोनों नेता रेड कार्पेट वाली सीढ़ियां चढ़ते हुए ग्रेट हॉल के अंदर पहुंचे, जहां द्विपक्षीय बातचीत का दौर शुरू हुआ। बैठक में ट्रंप के साथ उनकी पूरी टीम मौजूद रही, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेक्सेन, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट शामिल थे। दोनों नेताओं के बीच दो घंटे तक बैठक चली। बैठक के शुरुआत में जिनपिंग ने कहा कि पूरी दुनिया इस बैठक पर नजर लगाए हुए है। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और अमेरिका चीन रिश्ते वैश्विक स्थिरता के लिए बेहद अहम है। जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पार्टनर बनना चाहिए।
6: मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि चीन और अमेरिका के साझा हित उनके मतभेदों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन अमेरिका के स्थिर रिश्ते दुनिया के लिए फायदेमंद है, जबकि टकराव दोनों को नुकसान पहुंचाता है। हमें साझेदार होना चाहिए, दुश्मन नहीं। साल 2026 चीन और अमेरिका के रिश्तों के लिए एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर बनेगा।
7: चीन और अमेरिका का रिश्ता शानदार रहा है। जब समस्याएं आई तब हमने मिलकर उनका समाधान निकाला। बहुत लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि जब कोई समस्या आती थी तो मैं आपको फोन करता था और हम उसे बहुत जल्दी सुलझा लेते थे। चीन और अमेरिका का भविष्य एक साथ शानदार होगा। चीन का मैं बहुत सम्मान करता हूं। आपने शानदार काम किया है। मैं ये बात सभी से कहता हूं कि आप एक महान नेता हैं। कभी कभी लोगों को मेरा ये कहना पसंद नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं क्योंकि यह सच है। मैं हमेशा सच बोलता हूं। चीन और अमेरिका के रिश्ते पहले से कहीं बेहतर होने वाले हैं।
0: इस दौरे की सबसे बड़ी चर्चा बोइंग विमान डील को लेकर है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अमेरिकी कंपनी बोइंग से करीब 9 लाख करोड़ रुपए के विमानों की खरीद का बड़ा समझौता कर सकता है। अगर ये डील हुई तो ये दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील्स में शामिल हो सकती है। लेकिन ट्रंप की इस चीन यात्रा पर दुनिया की नजरें इसलिए भी जमी हैं कि ईरान को लेकर दोनों नेताओं के बीच क्या बात होती है। ट्रंप जिनपिंग की मीटिंग पर ईरान की नजर। ईरान में इस हलचल को लेकर एक अलग ही उत्साह और तंज का माहौल है। तेहरान के सरकारी मीडिया ने ट्रंप की इस यात्रा को अमेरिका की विफलता और गतिरोध का प्रतीक बताया है। उनका मानना है कि क्षेत्रीय संघर्षों को सुलझाने में नाकाम रहने के बाद अब अमेरिका दूसरे देशों की ओर मदद के लिए देख रहा है। हकीकत यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की बंदी और परमाणु मुद्दे पर जारी डेडलॉक के बीच अमेरिका और ईरान दोनों ही अब चीन को एक समाधान के रूप में देख रहे हैं। जहां ईरान अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार चीन से मध्यस्थता की उम्मीद कर रहा है, वहीं वॉशिंगटन चाहता है कि बीजिंग ईरान पर दबाव बनाए। ईरान को लेकर चीन पर दबाव बना रहे हैं ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई शिखर वार्ता ने वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है, जिसमें ट्रंप ने चीन से ईरान पर दबाव बनाने की पुरजोर अपील की है। मुख्य मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना है, ताकि दुनिया भर में ऊर्जा की सप्लाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे। हालांकि व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि दोनों नेता इस समुद्री रास्ते को खुला रखने पर सहमत हैं, लेकिन चीन की ओर से किसी ठोस प्रतिबद्धता या नए वादे की खबर अब तक सामने नहीं आई है। इस बीच विदेश मंत्री मार्को रूबियो का चीन दौरा इस बात का संकेत है कि अमेरिका इस मसले पर ड्रैगन को हर हाल में राजी करना चाहता है, ताकि फारस की खाड़ी में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। ट्रंप के चीन दौरे पर ताइवान का मुद्दा भी अहम। जिनपिंग ने ट्रंप के साथ जारी बैठक में ताइवान मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ताइवान मामले को सही तरीके से संभाला गया तो अमेरिका और चीन के रिश्तों में स्थिरता बनी रह सकती है। आपको बता दें कि ताइवान लंबे समय से अमेरिका और चीन के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दों में शामिल रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका ताइवान को सैन्य और राजनीतिक समर्थन देता रहा है। ताइवान के मुद्दे पर ट्रंप ने क्यों साध ली चुप्पी? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ये बताने से इनकार कर दिया कि उनकी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक में ताइवान के मुद्दे पर चर्चा हुई या नहीं। सीएनएन की फुटेज के मुताबिक जब ट्रंप और शी जिनपिंग बीजिंग के टेंपल ऑफ हेवन के दौरे पर साथ में तस्वीर खिंचवा रहे थे, तब पत्रकारों ने उनसे दो बार ताइवान को लेकर सवाल पूछा। हालांकि ट्रंप ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो फोटो के दौरान शी जिनपिंग के साथ खड़े रहे और खामोश रहे। ट्रंप चीन दौरे पर शी जिनपिंग की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। अब दोनों नेताओं के बीच कौन कौन सी डील और क्या क्या बातचीत आगे बढ़ती है, दुनिया इसी के इंतजार में है। आज तक ब्यूरो।
4: आइए, रोहित शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, आज शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात हुई और ट्रंप के स्वागत को आप, रोहित, किस तरह से देखते हैं?
8: देखिए, जिस तरह से एक स्टेट विजिट होती है, उस तरह की विजिट थी जिस तरह से हमने देखा, दोनों लीडर्स मिले, उसके बाद 21 तोपों के इस्लामी प्रेसिडेंट को मिली, और जिस तरह की चीजें एक स्टेट विजिट में होती हैं, जो थिएट्रिक्स और ऑप्टिक्स हम कहते हैं, वो हमें देखने को मिली। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज थी जो डिस्कशन दोनों देशों के बीच में, दोनों लीडर्स के बीच में, जो बायलैटरल की हम बात कर रहे हैं, आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं हमें एक थोड़ा सा चेंज या एक डिफरेंस देखने को मिला, क्योंकि जो व्हाइट हाउस ने जो रीड आउट दिया उसमें उन्होंने ताइवान का जिक्र नहीं किया कि शी जिनपिंग ने और चाइना ने ताइवान को लेके क्या बात कही है अमेरिका से और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। साथ ही साथ जब चाइनीज ने जो मीडिया ने जो रीड आउट निकाला है, चाइनीज गवर्नमेंट ने जो रीड आउट निकाला, उसमें ताइवान को लेकर बताया गया है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने वार्निंग दी है अमेरिका को कि अगर ताइवान को लेके जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मानते हैं कि चाइना का ही अभिन्न अंग है, वो उस पे लेके अमेरिका अगर कुछ गलत कदम करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है दोनों देशों के बीच में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दैट स्टिल रिमेन्स अ बोन ऑफ कंटेंशन। सेक्रेटरी रूबियो ने भी एक इंटरव्यू भी दिया वहीं पे चाइना में, बीजिंग में, और उन्होंने कहा कि ताइवान को लेके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ऐसा मानना है कि इट बिलोंग्स टू देम।
4: बहुत धन्यवाद रोहित। रोहित शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई हैं कि क्या चीन अमेरिका और ईरान के बीच सुलह करवा सकता है। दर्शक, में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
13: somebody save me,
12: to timeless favorites,
13: life is like a song,
12: and new discoveries.
13: So much more than a history. Wake up.
12: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
14: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
15: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
16: जीके मैक्स।
17: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
16: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
18: जेके वॉल मैक्स
19: बेस्ट पेंट,
20: जेके मैक्स।
21: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
22: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
23: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
24: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
25: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
26: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात होना, मैं शांति को साथ रखता हूँ।
27: म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही।
28: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
29: Like I said before, we better own the sins.
30: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
31: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
32: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
30: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
33: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
31: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
30: जहां खबर वहां खबरदार।
34: इन एसोसिएशन विद
35: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
36: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
37: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
38: प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, उस आह्वान का पालन करते हुए ईंधन बचाना, ऊर्जा का संरक्षण करना, राष्ट्रीय जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना, उसका आज मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है और सभी मंत्रियों को, अधिकारी गणों को निर्देश भी दिया है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल करेंगे और बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे और सरकारी गाड़ी का भी न्यूनतम इस्तेमाल किया जाए, ऐसा दिल्ली सरकार का निर्णय है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है. आपसे कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ. आप देखते रहिए आज तक.
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों की यात्रा पर दुनिया की नजर। कल सुबह यूएई के लिए होंगे रवाना। नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का करेंगे दौरा। देश में निर्यात के लिए निर्णायक निर्णयों की उम्मीद। पीएम की अपील के बाद बीजेपी के मंत्रियों मुख्यमंत्रियों में तेल बचाने की होड़। बस बाइक से लेकर साइकिल तक का इस्तेमाल। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। अमित शाह से योगी की मुलाकात पर यूपी में बढ़ा राजनीतिक तापमान। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रालय बंटवारे समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष से भी मिले योगी। शराब घोटाले में सुनवाई के दौरान जस्टिस पर टिप्पणी को लेकर बढ़ी आपकी परेशानी। कोर्ट ने माना अवमानना। केजरीवाल, सिसोदिया समेत 5 नेताओं पर निशाना। नीट परीक्षार्थियों के गुनाहगारों पर कसा कानून का शिकंजा। सीबीआई ने तेज की जांच। महाराष्ट्र से 2 और गिरफ्तार। 5 आरोपियों को 7 दिन की सीबीआई रिमांड।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सीबीआई ने चंद्रनाथ रथ मर्डर केस की जांच अब अपने हाथों में ले ली है। इस सिलसिले में पकड़े गए तीन शूटरों से लगातार पूछताछ भी जारी है, लेकिन इसी शुरुआती तफ्तीश में जो तथ्य उभर कर सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। तथ्य ये कि चंद्रनाथ रथ की हत्या में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इस मर्डर केस की सुपारी बंगाल के उसी मध्यम ग्राम से दी गई जहां के चंद्रनाथ रहने वाले थे। जाहिर है सीबीआई लम्हा लम्हा इस केस के मास्टरमाइंड के करीब पहुंच रही है।
1: बंगाल से ही निकली चंद्रनाथ के नाम की सुपारी, सिग्नल ऐप पर दिया गया कत्ल का ऑर्डर, 1 करोड़ से ज्यादा की रकम का हुआ इस्तेमाल, शूटरों को लोकेशन से ही मिली पल पल की खबर, 4 राज्यों की क्राइम सिंडिकेट का खूनी कनेक्शन, कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर मध्यम ग्राम का यही वो शैलेश पाड़ा इलाका है जहां बुधवार 6 मई की रात कातिलों ने पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। इस केस की तफ्तीश अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई की टीम अब तक 2-2 बार मौकाए वारदात का जायजा ले चुकी है। ब्लड स्टेन यानी खून

0: के धब्बों और बैलिस्टिक एविडेंस कलेक्ट करने से लेकर सीन ऑफ क्राइम के एक एक इंच की मैपिंग कर पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर चुकी है। फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट जैसे फिजिकल एविडेंस भी जुटाए हैं। उधर राज सिंह, मयंक राज मिश्र और विकी मौर्या की सूरत में सीबीआई के पास इस केस के तीन शूटर तो खैर पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में अब अगर कुछ बाकी है तो वो है पूरे शूटआउट की कहानी को समझना और उस मास्टरमाइंड तक पहुंचना जिसने चंद्रनाथ के कत्ल की साजिश रची और सुपारी दी। जाहिर है इसके बाद ही सीबीआई चंद्रनाथ रथ की हत्या की असली वजह यानी मोटिव पर से पर्दा उठा पाएगी। लेकिन अब तक की तफ्तीश में ही इस केस को लेकर सीबीआई को जो कुछ पता चला है वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। भले ही इस केस का कनेक्शन यूपी, बिहार और झारखंड से जुड़ता नजर आ रहा हो, लेकिन चंद्रनाथ का दुश्मन कोई दूर बैठा शख्स नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के मध्यग्राम का ही एक लोकल आदमी है जिसने उसके नाम की सुपारी दी। अब अगर इस लोकल के पीछे भी किसी और का हाथ हो तो वो सच तफ्तीश में सामने आ सकता है।
1: अभी तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है पश्चिम बंगाल पुलिस ने, उनसे भी सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ करके ये समझना चाहती है कि इस मर्डर के पीछे मोटिव क्या रहा। क्या ये मर्डर फॉर गेन था या फिर कोई आपसी रंजिश थी या फिर कोई राजनीतिक कारण से चंद्रनाथ को रास्ते से हटाया गया। इस बारे में अलग अलग पहलुओं को खंगालने में जुटी हुई है सीबीआई की टीम और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के हाथ ऐसे कुछ तत्व सामने आए हैं जो आने वाले दिनों में इस पूरे तहकीकात को एक नया दिशा देगी।
0: सूत्रों की माने तो बिहार के बक्सर से गिरफ्तार मयंक राज मिश्र और विकी मौर्या ने ये कबूला है कि उन्हें जिसने चंद्रनाथ के कत्ल की सुपारी दी वो आदमी मध्यमग्राम का ही है। इस आदमी ने पहले चंद्रनाथ की लोकेशन साझा की, उनका मूवमेंट ट्रैक करने में शूटरों की मदद की और फिर इसी आदमी ने सिग्नल ऐप पर कत्ल का ऑर्डर भी दिया। फिलहाल सीबीआई मध्यमग्राम के इस शख्स की तलाश में जुटी है ताकि बाकी कड़ियों को जोड़ा जा सके। असल में शूटरों की शक्ल में सीबीआई के हाथ इस केस के तीन अहम कड़ी जरूर लगे हैं, लेकिन यह भी सही है कि इस मर्डर केस को लेकर तीनों को ए टू जेड सारी जानकारी नहीं है। कम से कम तीनों से अब तक हुई पूछताछ के बाद तो कुछ ऐसे ही संकेत मिले। बहुत मुमकिन है कि कत्ल की साजिश रचने वाले शख्स ने भी अपने बारे में पहले से कम जानकारी शेयर की ताकि मामले की सीक्रेसी बनी रहे और साथ ही साथ वो खुद को भी कानून के नजरों से छुपाए रख सके। इसलिए सीबीआई के लिए अब इस साजिश की तह तक पहुंचने के लिए डिजिटल एविडेंस एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। अब बात जब डिजिटल एविडेंस की चल रही है तो बक्सर के शूटर मयंक राज मिश्र के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि शूटआउट को अंजाम देने के लिए इस केस के मास्टरमाइंड ने मयंक राज मिश्र को ही फंड मैनेजर के तौर पर चुना था। असल में बक्सर से लेकर यूपी होते हुए बंगाल पहुंचने तक ये मयंक ही था जिसने पूरे रास्ते में पड़ने वाले सभी टोल नाकों पर अपने मोबाइल फोन से यूपीआई पेमेंट की। बंगाल पुलिस ने हावड़ा के बाली टोल गेट पर किए गए यूपीआई पेमेंट को ट्रैक करते हुए ही शूटरों को धर दबोचा था, लेकिन अब जानकारी मिली है कि शूटरों ने सिर्फ बाली टोल गेट पर ही नहीं बल्कि पूरे रास्ते के तमाम टोल नाकों पर यूपीआई के जरिए पेमेंट की थी और इस यूपीआई का ओनर मयंक राज मिश्र ही था। जाहिर है मयंक को इसके लिए पैसे दिए गए थे जिन्हें वो अपने अकाउंट में रखकर यूज कर रहा था। सूत्रों का दावा है कि चंद्रनाथ के कत्ल की साजिश कोई आनन फानन में नहीं रची गई बल्कि इसके लिए काम महीने भर से भी ज्यादा समय से चल रहा था। करीब महीने भर से तो चंद्रनाथ की तस्वीरें और पल पल की लोकेशन किराए के कातिलों को शेयर की जा रही थी ताकि वो टारगेट को अच्छी तरह पहचानने के साथ साथ उसके मूवमेंट को भी ठीक तरह से समझ लें। मसलन वो कहां रहते हैं, क्या करते हैं, घर से कब निकलते हैं, कहां जाते हैं, कब लौटते हैं, वगैरह वगैरह। शूटर बंगाल चुनाव के दौरान ही एक बार चंद्रनाथ रथ के काफी करीब पहुंच चुके थे। इरादा उन्हें सेकेंड फेज के चुनाव से पहले ही टारगेट करने का था, लेकिन पूरे राज्य में मौजूद चुनावी भीड़ और भारी सुरक्षा व्यवस्था के चलते शूटरों को तब ये प्लान टालना पड़ा। अब जानिए कि इस वारदात को अंजाम देने में कातिलों ने तकरीबन कितने रुपए खर्च किए। तो सीबीआई से जुड़े सूत्रों का दावा है कि इस हत्याकांड में कम से कम 1 करोड़ रुपए या फिर उससे भी ज्यादा की रकम लगाई गई। इनमें तकरीबन 70 लाख रुपए तो सुपारी के तौर पर ही दिए गए, इसके अलावा बाकी के खर्चे भी थे। शूटरों के पास कम से कम दो ग्लॉक 47 एक्स लेवल के पिस्टल होने की बात सामने आई है। कुछ चश्मदीदों ने दावा किया है कि एक शूटर एक ही हथियार से लगातार नॉनस्टॉप फायरिंग कर रहा था, और ऐसी फायरिंग बेहद सोफिस्टिकेटेड हथियार से ही की जा सकती है, किसी देसी कट्टे से नहीं। वैसे भी जो क्राइम सिंडिकेट इतने बड़े आदमी को टारगेट कर रहा हो, जिसका नेक्सस चार या फिर उससे भी ज्यादा राज्यों से जुड़ा हो, उसके शूटर किसी काम चलाऊ हथियार से तो गोली चलाएंगे नहीं। ग्लॉक जैसे ऐसे हाई प्रोफाइल हथियारों के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये ब्लैक मार्केट में 10 लाख रुपए तक में मिलते हैं। इस हिसाब से देखें तो ये रकम आसानी से 90 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। फिर इसके अलावा गाड़ी और बाइक्स का इंतजाम करना, उनके लिए भी बिल्कुल असली से दिखने वाले फेक नंबर प्लेट्स जुगाड़ करना, चेसिस नंबर तक घिस देना, महीने भर से भी ज्यादा समय से टारगेट का पीछा करना, इन कामों में भी पैसा लगता है।
2: चंद्रनाथ रथ की हत्या सेकेंड फेज के इलेक्शन से पहले होनी थी, लेकिन भारी भीड़ और सुरक्षा की वजह से हत्याकांड को शूटर अंजाम नहीं दे पाए। कुछ इस तरह के खुलासे सीबीआई के सामने आए हैं। सीबीआई की टीम कोलकाता में मौजूद है और अपनी जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है। सीबीआई को पता चला है कि शूटर्स को सिग्नल ऐप पर किसी ने फोटो भेजा था और चंद्रनाथ रथ को मारने का आदेश दिया था। वो आदेश किसने दिया था, सीबीआई की टीम अब इस बात का पता लगा रही है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी मिली है कि शूटर्स को 70 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की रकम किसी ने दी थी, जिसके बाद शूटर्स अत्याधुनिक हथियार से चंद्रनाथ रथ की हत्या कर देते हैं।
0: तफ्तीश में शूटआउट में इस्तेमाल किए गए निसान माइक्रा कार के बारे में भी जानकारी काफी हद तक साफ हुई है। खबरों के मुताबिक इस कार का इंतजाम केस से जुड़े बक्सर के शूटर मयंक राज मिश्र ने ही किया था। हालांकि कार बिहार नहीं बल्कि झारखंड की बताई जाती है, जिसे पहले लिफ्ट किया गया और फिर इस काम में यूज किया गया। इस तरह इस केस का कनेक्शन अब तक बंगाल के बाहर यूपी बिहार और झारखंड से भी जुड़ता नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि शूटआउट के नेटवर्क के इसी फैलाव को देखते हुए बंगाल सरकार ने इस केस को सीबीआई के हवाले करने का फैसला किया, ताकि एक सेंट्रल एजेंसी के तौर पर सीबीआई खुलकर मामले की तफ्तीश कर सके। कुछ इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीआई ने 8 ऑफिसर्स की एक ऐसी एसआईटी बनाई जिसमें सभी राज्यों के ऑफिसर्स को शामिल किया गया। ये रहा सीबीआई का वो ऑफिशियल ऑर्डर जिसमें अलग अलग जगहों के अफसरों के नाम शामिल हैं। इनमें सबसे ऊपर नई दिल्ली के सीबीआई के डीआईजी पंकज कुमार सिंह का नाम है, जिसके बाद नई दिल्ली से ही 2 एसपी सुभाष चंद्र कुंडू और अनिल कुमार यादव हैं, जबकि अगला नाम झारखंड के धनबाद से डीएसपी विकास पाठक का है, जिसके बाद पटना और रांची के डीएसपी अमित कुमार और कुलदीप है, जबकि लखनऊ के सीबीआई इंस्पेक्टर विवेक श्रीवास्तव को भी इस टीम में रखा गया है। ये ऑर्डर कहता है कि इस टीम की तरफ से की जाने वाली जांच का सुपरविजन कोलकाता के जॉइंट डायरेक्टर करेंगे, जो जरूरत पड़ने पर इस टीम में और भी ऑफिसर्स को शामिल करने का फैसला कर सकते हैं।
3: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या भले ही पश्चिम बंगाल में हुई हो, लेकिन इस हत्याकांड के तार पश्चिम बंगाल से निकलकर झारखंड, उत्तर प्रदेश से सिलीगुड़ी तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। वजह, हत्या भले ही पश्चिम बंगाल में हुई हो, लेकिन हत्यारों ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया वो झारखंड की थी, नंबर सिलीगुड़ी का था, और जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया वो यूपी बिहार बॉर्डर के रहने वाले और अपराधियों के पुराने परिचित थे। ऐसे में सीबीआई के सामने पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश व तमाम अन्य राज्यों में भी जांच के तार पकड़ने होंगे, तभी इस पूरे हत्याकांड की परतें सामने आएंगी और साफ हो सकेगा कि आखिर चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे सुपारी किलिंग की वजह क्या थी और फाइनेंसर कौन था।
0: अब तक सामने आ चुके सीसीटीवी फुटेज के अलावा तफ्तीश में कुछ और सीसीटीवी फुटेज भी सीबीआई के हाथ लगे, जिससे शूटआउट को अंजाम देने का पूरा सीक्वेंस काफी हद तक क्लियर होता दिख रहा है। इन फुटेज के मुताबिक मयंक राज मिश्र ही इस निसान माइक्रा कार को लेकर चला था। कत्ल से पहले वो बंगाल पहुंचने के बाद जशोर रोड इलाके के विराटी मोड़ के पास इस गाड़ी से उतरा, जिसके बाद ये कार बारासात के 11 नंबर रेलवे फाटक के पास पहुंचाई गई, जहां एक दुकान के सामने कार कत्ल वाले दिन शाम 4:05 से 6:55 तक खड़ी रही, जिसके बाद कातिल कार को लेकर आगे निकल गए।
1: चंद्रनाथ रथ के मर्डर में सीबीआई की तफ्तीश हुई तेज। 7 मेंबर की टीम इस समय बारासात के अलग अलग जगहों पर घूमकर इलाके का मुआयना कर रही हैं और कई जगहों पर लोगों से बातचीत करके उस दिन क्या हुआ था यह समझने की कोशिश में हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, सीबीआई के हाथ में ऐसी कई तथ्य आए हैं, खासकर वो सीसीटीवी, कई सारे सीसीटीवी फुटेज जहां इन हमलावरों को देखा गया, उनकी गाड़ियों को देखा गया। आज एक टीम सीबीआई की पहुंची थी बारासात के 11 नंबर रेल गेट पे, जहां एक बाइक बरामद किया गया था और जिस बाइक को इस हमले में इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल एक टोल प्लाजा में एक और टीम पहुंची और पहुंचने के बाद वहां के सीसीटीवी के साथ बाकी सीसीटीवीयों को मैच करके देखने की कोशिश हो रही है, ताकि टाइम फ्रेम को समझा जाए कि कितने बजे उस टोल प्लाजा को क्रॉस किया था वो गाड़ी और उसके बाद जिस समय घटना हुई थी उस समय का वक्त, जिस समय अंजाम दिया गया था, उसे समझने की कोशिश में है। वहाँ टोल प्लाजा के लोगों से बातचीत भी कर रही हैं और जो डिस्टेंस है, जो फासला है, उसे भी समझने की कोशिश में है सीबीआई की टीम।
0: अब चूंकि इस केस के 3 शूटर पुलिस के हाथ लग चुके हैं, शूटआउट के बाद इन तीनों के साथ साथ बाकी के शूटरों के भागने का रूट मैप भी काफी हद तक साफ हो चुका है। जानकारी के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद दोहड़िया इलाके से शूटर अलग अलग दिशाओं में निकल गए, लेकिन इसके बाद सभी के सभी फिर से रात 11 बजे सियालदा स्टेशन पर इकट्ठा हुए और वहीं से यूपी और बिहार के लिए ट्रेन पकड़ ली। कोलकाता से तापस सेनगुप्ता और लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
4: क्या बलिया से गिरफ्तार शूटर राज सिंह वाकई चंद्रनाथ मर्डर केस में एक शूटर के तौर पर ही शामिल था, या फिर इस केस में उसकी भूमिका कुछ और है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बलिया में अब राज सिंह के घर वालों ने कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज जारी की हैं, जिसमें वो कत्ल के वक्त अपने घर में नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि एक ही आदमी एक ही वक्त पर दो जगह कैसे हो सकता है।
0: ये सीसीटीवी फुटेज चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में शूटर के तौर पर गिरफ्तार किए गए राज सिंह का है। वही राज सिंह जो इस वक्त सीबीआई की रिमांड पर है। सीबीआई बेशक उससे लगातार पूछताछ कर रही हो, लेकिन बलिया में उसका परिवार ये दावा करने में जुटा है कि राज सिंह का इस केस से कोई लेना देना नहीं। खुद राज सिंह की मां जामवंती देवी ने वारदात के वक्त अपने बेटे के अपने साथ होने का दावा किया है और अब राज सिंह के परिवार ने ही बलिया के अपने घर का एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, जिसमें राज सिंह वारदात वाले दिन और वारदात की शाम अपने घर में नजर आ रहा। अब अगर ये सीसीटीवी फुटेज सही है तो इतना तो साफ है कि राज सिंह कम से कम शारीरिक तौर पर तो दो जगह यानी मौकाए वारदात पर मौजूद नहीं हो सकता। ऐसे में चंद्रनाथ मर्डर केस में राज सिंह की भूमिका को लेकर भी सवाल उठते हैं। हालांकि ये भी सही है कि सीबीआई ने कभी ये नहीं कहा कि राज सिंह मौकाए वारदात पर था या उसने चंद्रनाथ पर गोली चलाई, लेकिन जिस तरह इस केस में राज सिंह को अरेस्ट किया गया, उससे लगता है कि राज सिंह पर्दे के पीछे से इस सुपारी किलिंग के खेल में शामिल था। बहुत मुमकिन है कि वो एक लाइनर या फैसिलिटेटर के तौर पर कातिल सिंडिकेट का हिस्सा। इस मर्डर केस में पकड़े गए तीनों आरोपी फिलहाल 13 दिन की रिमांड पर है। ये समझा जाता है कि जब सीबीआई उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश करेगी तब उनकी भूमिका भी काफी हद तक साफ हो चुकी होगी। चंद्रनाथ रथ की मौत को लेकर रहस्य इसलिए भी और ज्यादा गहरा है, क्योंकि इससे पहले भी शुभेंदु अधिकारी के 3 और करीबियों की पिछले 13 सालों में रहस्यमय हालात में मौत हो चुकी है। अपने 3 करीबियों को खोने वाले शुभेंदु के 4th साथी का यूं एकाएक रहस्यमय तरीके से मारा जाना भी सवाल खड़े करता है। 2013 में जब शुभेंदु तृणमूल के सांसद थे तब उनके पीए प्रदीप झा की मौत हो गई थी। इसके बाद 2018 में उनके पीएसओ शुभब्रतो चक्रवर्ती की भी रहस्यमयी हालात में जान गई, इसे सुइसाइड बताया गया। 2021 में शुभेंदु के एक और पीए पुलक लाहिड़ी की भी जान संदिग्ध परिस्थितियों में गई थी। सवाल यह है कि आखिर शुभेंदु के करीबियों को साल दर साल कौन एक एक कर टारगेट कर रहा है और क्यों, ये राज भी गहरा है। बलिया से अनिल अकेला के साथ आज तक ब्यूरो।
4: तो वारदात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
5: खबर आ रही है बिहार की राजधानी पटना से, जहां ब्लैकआउट मॉकड्रिल के दौरान मसाला व्यापारी की हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देकर ब्लैकआउट में फरार हो गए बदमाश। पटना में मॉकड्रिल चल रही थी ब्लैकआउट को लेकर और इसका फायदा बदमाशों ने उठाया। अपराधियों ने मसाला व्यापारी की हत्या कर दी क्योंकि अंधेरा था चारों तरफ। हत्या की और उसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर ये भाग गए।

0: बिहार की राजधानी पटना से गंभीर खबर आई है।
1: मसाला दुकानदार पिंटू सौ, उसको ब्लैकआउट के समय किसी ने गोली मार दिया।
2: क्या लूटपाट हुई थी? क्या?
1: नहीं नहीं, लूटपाट नहीं हुई थी।
2: पता चला
1: अभी नहीं, अभी अभी प्रथम दृष्टया तो गोली मारा है, कोई पुरानी दुश्मनी को लेकर मारा है। पीएमसीएच भेजा गया, पीएमसीएच से रिपोर्ट आता तो बताते हैं।
0: छोटा सा ब्रेक, मुंबई मेट्रो लेकर हम होते हैं दोबारा उपस्थित। आप देखते रहिए आज तक,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Like I said before, we better own the sins.
8: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
9: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
10: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
8: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
11: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
9: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
8: जहां खबर वहां खबरदार।
12: करीब 150 से ज्यादा अभ्यर्थी और उनके मित्र अभिभावक, उनसे पूछताछ के पश्चात ये स्पष्ट हुआ कि ये परीक्षा का पेपर परीक्षा शुरू होने से पूर्व राजस्थान में एक व्यक्ति, हरियाणा का रहने वाला है, उसके द्वारा भेजा गया। उससे पूछताछ में पता लगा कि उसके पास ये पेपर महाराष्ट्र नासिक से आया था। ये सारी सूचना नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज के साथ शेयर करने के पश्चात भारत सरकार द्वारा नीट परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय आप सबके सामने है। उस निर्णय के पश्चात सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया है। सीबीआई की टीम एसओजी से संपर्क में है, उनकी टीम यहाँ आ चुकी है। उनकी टीम के जो भी सदस्य हैं उनको अब तक की पुलिस ने जो पूछताछ करी है उस पूछताछ से उनको अवगत करा दिया गया है, और पूछताछ से जो चीज़ें सामने आई उसमें कई लोगों से पूछताछ के पश्चात कुछ संदिग्ध ऐसे हैं जो इस परीक्षा पेपर के गिरोह के रूप में शामिल होने की संभावना है। उन
3: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: क्या ओमान आप मई 3 के आसपास गए थे? Did the visit happen? Question number 2. Who hosted the trip? Foreigner or Indian? किसने होस्ट किया? भारतीय ने या विदेशी ने? Number 3 question. If foreigner hosted, where is the FCRA section 6? MHA अप्रूवल लेटर. अगर फॉरनर ने किया तो अप्रूवल लेटर का एक कॉपी दिखा दीजिए. बस कॉपी दिखा दीजिए, सारा कुछ खत्म हो जाएगा. हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मायने ही नहीं रहेगा कि हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रश्न पूछे. और उसके बाद चौथा प्रश्न होता है, क्योंकि ये जो प्रश्न मैंने पूछा ये आरटीआई के अंतर्गत आता है, क्या आपने परमिशन लिया एमएचए से? वेयर इज द बैंक स्टेटमेंट डेबिट द ऑथराइज्ड डीलर फॉरेक्स परचेस वाउचर और द कांग्रेस ऑडिटेड लाइन इन ईसीआई रिटर्न टू द गवर्नमेंट सैंक्शन फाइल. मतलब अंतिम प्रश्न है कि यदि फॉरेन फंडेड नहीं है और आप खुद गए तो आपका बैंक स्टेटमेंट ऑडिट दिखाइए, या तो आप जो फॉरेक्स वाउचर होता है वो दिखाइए, या तो अगर पार्टी ने भेजा आपको तो पार्टी भी ऑडिट में अपना भेजती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि हमने अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को ओमान भेजा है, उसमें इतना

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered. With 90s hits, jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
2: को सावधान सतर्क कर रहे हैं क्या प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा में कमी करके देश को सजग कर रहे हैं कि बचत करिए तभी आर्थिक संकट से लड़ पाएंगे
3: मैं आप सबसे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले गोल्ड की जरूरत नहीं है
2: पहले 10 मई को हैदराबाद फिर 11 मई को वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों से तेल की बचत करने और सोना एक साल नहीं खरीदने की अपील कर चुके हैं इसके 3 दिन के भीतर जब कैबिनेट की मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी निकलते हैं देश से केवल तेल बचाने की अपील नहीं बल्कि उस डगर पर खुद चलकर दिखाते हैं जहां पर नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ न तो उनकी पायलट कार दिखी न तो एम्बुलेंस दिखी न जैमर कार दिखी न पहले जैसी वो सुरक्षा कारें जो किसी खतरे के वक्त प्रधानमंत्री के सुरक्षा काफिले में रहकर हर चुनौती से रक्षा करती आई हैं केवल 2 गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग में निकलते हैं लेकिन क्यों
3: इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें कार पुलिंग को बढ़ावा दें जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चले
2: असल में प्रधानमंत्री उस डगर पर खुद चलकर देशवासियों को दिखा रहे हैं जिस पर चलने की अपील उन्होंने देश के नागरिकों से की है जहां राजनीति नहीं बल्कि सबके मिलकर तेल बचाने वाली जुगत लगाने की जरूरत है

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। लेकिन मुंबई मेट्रो में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में नीट परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर महत्वपूर्ण बैठक इस समय चल रही है। इस बैठक में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी, स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार, एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह, सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह भी मौजूद हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े ये सभी बड़े अधिकारी इस समय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर एक बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सभी लगभग शिक्षा के बड़े बोर्ड्स के प्रमुख इस बैठक में हैं, तो क्या कुछ बड़ा निर्णय होने की हम उम्मीद करें?
2: सही, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि शिक्षा मंत्री के घर पर ये हाई लेवल मीटिंग जो है वो है, और सरकार की ये जब मीटिंग हो रही है और इसमें हायर एजुकेशन सेक्रेटरी हैं विनीत जोशी, उनके साथ साथ स्कूल सेक्रेटरी हैं, एनटीए

0: डीजी अभिषेक सिंह जिनकी जिम्मेदारी है कि नीट समेत इस तरीके के जो पेपर्स हैं उनको कराने की, तो वो है उनके साथ साथ जो है साथ में सीबीएसई के चेयरमैन हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर हैं, नवोदय विद्यालय कमिश्नर हैं और अन्य ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, मौजूद थे। ये बैठक कब से कुछ देर पहले खत्म हुई है, लगभग 2 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है। इसमें इस चीज को लेकर चर्चा हुई है कि नीट के एग्जाम कब हो, बच्चों के लिए बच्चों को तैयारी के लिए कितना समय दिया जाए, उसके साथ साथ ये इंश्योर किया जाए कि नीट के अंदर या इस तरीके का कोई भी एग्जाम भविष्य में जो होगा उसमें पेपर लीक नहीं होगा, इसको लेकर जो भी सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं वो लिए जाएं। तो इसको लेकर चर्चा हुई है और अब आगे मुझे लगता है अगले 102 दिनों के अंदर फिर से चर्चा होगी और चर्चा के बाद ये तय किया जाएगा कि बच्चों को कितना समय एक बार फिर से तैयारी के लिए दिया जाएगा और उसके साथ साथ नीट का एग्जाम जो है वो दोबारा कब होगा, क्योंकि पेपर को जो है वो कैंसिल किया गया और रद्द करने के बाद अब बच्चों को दोबारा, क्योंकि 22 लाख बच्चों को नीट के एग्जाम देने हैं एक बार फिर से, ऐसे में इस बार कोई ऐसी कोताही, ऐसी कोई गुंजाइश, ऐसी कोई कमी ना रह जाए कि पेपर लीक जैसा मामला जो है वो सामने आए। इससे बचने के लिए सरकार हर तरीके के जो कड़े मेजर्स हैं वो लेगी।
1: ठीक जी, बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। उधर नीट पेपर लीक केस में सीबीआई एक्शन में, आज भी सीबीआई ने महाराष्ट्र से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब तक सीबीआई को 5 आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मिल चुकी है। नासिक से आरोपी शुभम खैरनार की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि वो एक कंसल्टेंसी के आड़ में पेपर लीक वाला रैकेट चला रहा था, खुद को डॉक्टर बताता था। इस बीच सवाल यह है कि पेपर लीक केस में बड़े लोग कौन शामिल हैं जो लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।
2: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राजस्थान से महाराष्ट्र तक लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन एक आरोपी कह रहा है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है।
3: बड़े लोगों को बचाया जा रहा है,
4: इसको बचाया जा रहा है।
2: सवाल है कि सिस्टम में बैठे ये बड़े लोग कौन है जो लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इधर सीबीआई की टीम राजस्थान में आरोपी दिनेश और मांगीलाल के घर पर दबिश डालने पहुंची। इस बीच दिल्ली की अदालत में भी 5 आरोपियों की पेशी हुई। जांच एजेंसियों के ताबड़तोड़ एक्शन के बावजूद पूरे देश में परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस आक्रामक होती जा रही है। मुंबई में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की।
5: जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से क्या मांगे?
6: सर, हमारी सरकार से यही मान है, 2018 से जब से एनटीओ को सरकार ने नीट का एग्जाम सौंपा हुआ है, पिछले 8 सालों में 4 साल में 4 बार पेपर उन्होंने नीट का लीक कर दिया। इस साल भी आप देख रहे हैं कि पेपर का, नीट का पेपर लीक हो चुका है। करीब 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। हमारी छात्रों से यही मांग है कि जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है, युवाओं छात्रों की बात करती है, 2 करोड़ साल की नौकरी की बात कर रही है, छोटा सा जब पेपर अच्छे और सही ढंग से नहीं करा पा रही है तो सरकार किस काम की है। हमारा यही मांग है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है और एनटीए का जो चीफ है और दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उसमें उन सभी पे उचित कार्रवाई की जाए।
2: एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन करेगी।
7: कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा देश के बच्चों के साथ है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब से ये सरकार आई है 70 से 80 बार अब तक पेपर लीक्स हो चुके हैं, तो ये बिल्कुल प्री प्लान रहता है कि हमको किसी को नौकरी नहीं देना है इसलिए उनको पढ़ने भी नहीं देना है। लेकिन जिन बच्चों ने, जिन गरीब माँ बाप ने इतने पैसे इकट्ठा करके बच्चों को ट्यूशन दे के नीट की तैयारी कराते हैं, आज उनके घरों की हालत क्या है, आज उनको कौन संभालेगा, उनका कंपनसेशन कौन देगा? अगर सरकार ये कहती है कि हम दोबारा एग्जाम आप कराएंगे, लेकिन उनका जो लॉस हुआ उसको कौन देगा?
2: इधर नासिक से गिरफ्तार हुए आरोपी शुभम खैरनार के बारे में खुलासा हुआ है कि वो मेडिकल एडमिशन के लिए कंसल्टेंसी चला रहा था जहां वो खुद को डॉक्टर बताता था। जांच में पता चला है कि एसआर कंसल्टेंसी सर्विसेज की शाखाएं नासिक, पुणे और गुरुग्राम के साथ कई शहरों में चल रही हैं। आशंका है कि इसी कंसल्टेंसी की आड़ में पेपर लीक रैकेट चलाया जा रहा था।
8: डॉक्टर शुभम खैरनार जो कि नीट पेपर लीक केस का मुख्य आरोपी और वही कड़ी कही जा रही है जिसने ये पेपर लीक किया, आपको बता दें कि ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे एस आर एजुकेशन कंसल्टेंसी, ये डॉक्टर शुभम खैरनार की कंसल्टेंसी है और इसमें लिखा है वी हेल्प स्टूडेंट्स फॉर करियर अवर।

0: Services, MBBS, BAMS, PDS, BHMS, all UG, PG courses. ये बच्चों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए मदद करा रहा था और आप देख सकते हैं कि ये नासिक के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अपना ऑफिस चला रहा था। शुभम खेमनार का ये कहना था कि वो प्रैक्टिस कर रहा था, वो खुद थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, पर यहाँ पर उसने बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें वो दिखा रहा है कि वो एक डॉक्टर बन चुका है। आपको एक और बोर्ड दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है
1: ना, यह ठिकाने आपको
0: डॉक्टर एडमिशन कोर्सेस, गाइडेंस मैनेजमेंट एंड सपोर्ट, ये तीनों भी सीधे यहाँ पर मेंशन किया है और इस ही एजेंसी के थ्रू वो एडमिशन करवा रहा था बच्चों के।
2: वहीं सीबीआई के अधिकारियों ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे में मनीषा वाघमारे के घर पर अपनी जांच पूरी कर ली है। सूत्रों के अनुसार जांच में ये बात सामने आई है कि वाघमारे कथित तौर पर आरोपी धनंजय लोखंडे के संपर्क में थी।
3: नीट एग्जाम्स में जिस मनीषा वाघमारे का नाम आया था, उन्हीं के बिल्डिंग में हम खड़े हैं। इसी बिल्डिंग में जो कातरस के नजदीक है, वही वो छठे माले पर रहती है। हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उनके घर पे किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि उनके जो डेंटिस्ट पति है, ये उनका नाम है, और यहीं इससे पहले भी मनीषा वाघमारे खुद रहती थी, जिसका नाम अभी लोखंडे के साथ जुड़ा हुआ है। और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, उनके टेलीग्राम पे चैट्स हुए थे। और सबसे अहम बात यह है कि पुलिस को अब अलग अलग, सीबीआई को अलग अलग 21 अकाउंट्स मिले हैं, जिस अकाउंट्स में अब दिखाई दे रहा है कि उन दोनों के कुछ ट्रांजेक्शन हुए थे और एग्जैक्टली नीट एग्जाम के पहले ही ये सब कुछ ट्रांजेक्शन सामने आए हैं। इसलिए अब जाँच चल रही है कि मनीषा वाघमारे का इसमें एग्जैक्टली रोल क्या था।
2: दरअसल इस पेपर लीक कांड के दो चरण है। पहले चरण में पेपर नासिक के हाई सिक्योरिटी प्रेस से हार्ड कॉपी की शक्ल में लीक कराया गया और दूसरे चरण में सॉफ्ट और डिजिटल कॉपी की शक्ल में हाथों हाथ बेचार बांटा गया। इस मामले का भंडाफोड़ करने वाली राजस्थान पुलिस की एसओजी के मुताबिक इनमें अब तक के बड़े किरदारों में ये लोग शामिल हैं। नासिक का शुभम खैरनार, पुणे का धनंजय, जयपुर का मनीष यादव, सीकर का राकेश मंडावरिया, गुरुग्राम का यश यादव। जिस तरह सीबीआई ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, उससे कयास लगाया जा रहा है कि नीट पेपर लीक केस में कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है।
4: परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद भी बहुत सारे कॉल धनंजय लोखंडे और मनीषा वाघमारे के बीच एक्सचेंज हुए। मनीषा वाघमारे को डिटेन किया गया, मनीषा वाघमारे के अकाउंट्स की जांच की गई तो ये पता चला कि 21 से 30 लोगों ने 10 लाख की राशि अलग अलग अकाउंट से मनीषा वाघमारे के अकाउंट में जमा करवाई है। ये पैसा, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये संदिग्ध हैं और इसकी जांच अब सीबीआई की टीम कर रही है। मनीषा वाघमारे को भी डिटेन कर लिया गया है। मनीषा वाघमारे, आपको बता दें कि बतौर प्रोफेशन एक ब्यूटिशियन है, उनके पति एक डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, वो पुणे में प्रैक्टिस करते हैं। मनीषा वाघमारे एडमिशन कंसल्टेंसी भी चलाती थी। मनीषा वाघमारे को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा डॉक्टर ओमकार शिमगोटे नाम के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी जुन्नर से डिटेन किया गया है और आगे पूछताछ चल रही है। कैमरा पर्सन आशीष धामापुरकर और ओमकार वाबले के साथ दिवेश सिंह, नासिक आज तक।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचत वाले मंत्र पर बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में पूरी तरह से अमल होने लगा है। सभी मुख्यमंत्री और मंत्री अपनी सुरक्षा में कटौती कर चुके हैं और इसी सिलसिले में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुलेट से अपने मंत्रालय पहुंचे, लेकिन विपक्ष ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताकर कटाक्ष किया। कांग्रेस ने तो यहां तक दावा कर दिया कि उस बुलेट का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र भी एक्सपायर हो चुका है। फडणवीस कह चुके हैं विपक्ष को पीएम की अपील नहीं माननी है तो ना माने, लेकिन कम से कम हमारा मजाक ना उड़ाएं।
2: पीएम मोदी के बचत वाले मंत्र के बाद से बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपने अपने तरह से उनकी अपील पर अमल कर रहे हैं। 13 मई को पीएम मोदी ने अपने काफिले को 17 गाड़ियों से घटाकर सिर्फ 2 गाड़ी कर दिया था, यानी जिस गाड़ी में खुद पीएम थे उसके अलावा सिर्फ 1 गाड़ी उनकी सुरक्षा में थी। काफिला छोटा करके देश को बड़ा संदेश देने की पीएम मोदी की कोशिश रंग लाने लगी है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी सुरक्षा में कटौती करके बुलेट से मंत्रालय पहुंचे। देखिए सीएम फडणवीस अपने आवास से मुंबई में विधान भवन तक बुलेट चलाकर पहुंचे। फडणवीस ने यह कदम पीएम मोदी की ईंधन बचाने और खर्च में कटौती करने की अपील के बाद उठाया है।
6: पीएम मोदी के ईंधन बचत की अपील के बाद हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार कड़े कदम उठाते नजर आ रही है। खुद महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर बाइक से विधान भवन पहुंचे थे और विधान भवन पहुंचने के बाद अभी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उस कैबिनेट की बैठक के लिए भी राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बिना किसी कॉन्वॉय के, बिना किसी सिक्योरिटी, बहुत बड़ी सिक्योरिटी के, वो अब बाइक से सवार होते हुए अपने बैठकों को हाजिरी लगाते दिख रहे हैं। अब विधान भवन से वो मंत्रालय पहुंचे हैं। हमने देखा कल ही महाराष्ट्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें विदेश दौरे को लेकर, बैठकों को लेकर, ऑनलाइन बैठकों को लेकर और साथ ही साथ ईवी गाड़ियों का इस्तेमाल करने को लेकर कई कड़े कदम महाराष्ट्र सरकार ने उठाए हैं। लेकिन कथनी दिखाने के लिए खुद मुख्यमंत्री जब बाइक से सवार होकर अपनी बैठकों के लिए पहुंचते हैं, ये बहुत बड़ा संकेत पूरे मंत्रिमंडल को होता है। इतना ही नहीं बल्कि राज्यों को भी ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि किस तरह से ईंधन बचत के लिए हमें कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाना जरूरी है।
2: इतना ही नहीं, फडणवीस ने कहा कि मंत्रियों के काफिले में कटौती करके सभी विभागों को ईंधन की खपत कम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने अगले 6 महीनों के लिए बड़े पैमाने पर होने वाले सरकारी कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी है। इसके तहत गैर जरूरी विदेश यात्राएं भी रद्द कर दी गई हैं।
1: प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो नीचे तक पहुंचे, इसलिए एक प्रयास के रूप में इसको किया है। वैसे हम लोगों ने हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहां जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, बचाने का प्रयास हम करेंगे। इसके चलते अगले 6 माह तक राज्य में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सरकार की ओर से आयोजित नहीं किए जाएंगे। केवल कल सातारा में एक कार्यक्रम हमने आयोजित किया था जो प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम है और 10,000 करोड़ रुपया सीधे हमारे लोगों के खातों में जा रहा है, इसलिए उसको हमने रद्द नहीं किया है। लेकिन कल के बाद बड़े कार्यक्रम भी हम लोग नहीं करेंगे।
2: हालांकि विपक्ष ने फडणवीस के बुलेट से मंत्रालय पहुंचने को पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया।
7: देश अगर संकट में होगा तो सबको एक जगह आना पड़ेगा, लेकिन एक बार मुख्यमंत्री 2-व्हीलर पे आए तो उससे क्या देश का संकट दूर नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने भी उनके जो पार्टी के लोग हैं, सरकार में के लोग हैं, उनको ऐसी हिदायत देना चाहिए, उनको ऐसी सूचना देना चाहिए। अभी मंत्रियों के काफिले में 10-10, 20-20 गाड़ियां होती है, सिक्योरिटी 2-2, 4-4 गाड़ियां होती है, उनके डिपार्टमेंट की 4-5 गाड़ियां रहती है। तो मैं समझता हूँ ये सब इंस्ट्रक्शन मुख्यमंत्री महोदय को देना पड़ेगा, देना चाहिए, तो ये प्रश्न छूटेगा। बुलेट पे आए लेकिन उनके आजूबाजू को थी ना पुलिस, अलग अलग गाड़ियों में, वो क्या अकेले थोड़ी थे? आजूबाजू में गाड़ियां थी, जो उनकी सिर्फ अकेले की गाड़ी नहीं थी, बाकी सबकी गाड़ियां तो थी ना साथ में, इसको क्या मतलब है?
2: यहाँ तक तो ठीक था। सांसद और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने अपना विपक्षी धर्म निभाते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए गंभीर आरोप लगाए। वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जिस बुलेट से मंत्रालय पहुंचे थे उसका PUC यानी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र एक्सपायर हो चुका है। उन्होंने पूछा क्या परिवहन अधिकारी एक्सपायर गाड़ी का इस्तेमाल करने के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
8: देखिए, विपक्षियों को कुछ ना कुछ तो काम चाहिए, विपक्षी कुछ ना कुछ तो विरोध करने के लिए बोलेंगे, वो तो सोचते रहते हैं। देखिए, कम से कम ये प्रयास करें।
2: इससे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे भी PM की अपील के बाद इलेक्ट्रिक कार पर शिफ्ट हो चुके हैं। शिंदे ने अपने काफिले में कटौती करते हुए इलेक्ट्रिक कार से चलना शुरू कर दिया है। फडणवीस हो या शिंदे, ऐसे प्रतीकात्मक कदम का मकसद जनता को सादगी और खर्च में कटौती का संदेश देना है, लेकिन विपक्ष को सरकार की ये कोशिशें रास नहीं आ रही। ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
5: और खबरों के साथ होते हैं हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
11: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop. Loop.

0: जब इसकी पुष्टि हुई तो हमने ये समझा कि अगर इस तरह का एक भी वायलेशन होता है तो वह हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ है, और जो तमाम 22,69,000 बच्चे परीक्षा की अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य को इम्पैक्ट करेगा। अगर कोई इस तरह से चोरी करके परीक्षा देगा तो वह उनके लिए फेयर नहीं है जो अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके हित में ध्यान रखते हुए हमने यह एक कड़ा निर्णय लिया कि हम यह संदेश दे सकें हर उस क्रिमिनल को, हर उस स्कैमस्टर्स को, हर उस फ्रॉडिये को कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो उसको एनटीए सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे।
1: जांच एजेंसियों ने पाया होगा इसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय ले लिया कि रद्द कर दी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहां भी गड़बड़ दिखाई देगा या उस सबको ठीक करने के लिए काम करेगी सरकार।
2: सर, सीकर से कनेक्शन आया है?
1: सीकर से कनेक्शन हो या पश्चिम बंगाल से हो या कश्मीर से हो, जहां जहां भी दोषी होंगे वो कहीं छोड़े नहीं जाएंगे।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: महाराष्ट्र में पहले परिवहन विभाग ने आदेश दिया कि सभी ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को मराठी भाषा बोलनी अनिवार्य होगा। अभी विवाद थमा भी नहीं कि बीएमसी ने ऐलान कर दिया कि सभी होटल्स और कॉरपोरेट ऑफिसेज में मराठी बोर्ड लगाने जरूरी होंगे। बीएमसी ने इसके लिए एक महीने की डेडलाइन दे दी। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी आदेश का जमकर समर्थन कर रही है।

0: मुंबई में पहले ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य करने के नियम पर हंगामा हुआ। अब बीएमसी ने होटलों और कॉरपोरेट ऑफिसों में मराठी साइन बोर्ड लगाना जरूरी कर दिया है। इसके लिए बीएमसी ने एक महीने की डेडलाइन दी है। मुंबई के डिप्टी मेयर संजय घाड़ी ने कहा कि मराठी साइन बोर्ड के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद हजारों दुकानों, होटलों, कमर्शियल जगहों पर अभी भी मराठी साइन बोर्ड नहीं लगे। आज घाड़ी ने बीएमसी की लॉ कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को एक महीने का अल्टीमेटम दिया।
1: विषय था कि मुंबई शहर में जो मराठी भाषा में जो नाम फलक चाहिए आस्थापना के ऊपर या दुकान के ऊपर वो नहीं लगे अभी तक। कुछ 5020 के ऊपर से ऐसे कोई एक फिगर आ गया कि ऐसी दुकान है कि उसके ऊपर मराठी में नाम फलक नहीं है। और आपने जैसे बताया कि बड़े बड़े होटल्स है, बड़े बड़े कंपनीज है, उनके ऊपर भी आज भी एक वेस्टर्न कंपनी है, उनके ऊपर इंग्लिश में ही नाम लिखा रहे है, तो उनके नाम बदलने चाहिए। वो रहे तो ठीक है, उसके साथ में वही साइज में मराठी में भी हमारे उनके कंपनी के नाम होने चाहिए, ऐसे हमारी मांग है। क्योंकि मांग नहीं बल्कि ये कायदा और कानून है।
0: बीएमसी की लॉ कमेटी की चेयरपर्सन दीक्षा करकर ने कहा ये नियम बहुत पुराना है, अब हम इसे सख्ती से लागू करना चाहते हैं।
2: हम बस चाहते हैं जो नियम बनाया गया है वो फॉलो हो। महाराष्ट्र में मराठी ही चलेगा। हमारा किसी भाषा का विरोध नहीं है, पर हम हमारे राज्य भाषा के साथ है। ये हमारी शिवसेना की भूमिका है। आज भी हमने जो बैठक ली, हमारे उपमहापौर सन्मान्य घाड़ी साहब के लीडरशिप में हमने ये बैठक ली है, तो हम चाहते हैं कि जो मराठी के लिए जो नियम दिए हैं, जो मराठी नाम फलक है, दुकानें और आस्थापना के डिपार्टमेंट में जो आता है कि जो मराठी अक्षर, देवनागरी अक्षर जो बोलते हैं वो बड़े आकार में होना चाहिए, बाकी जो भी लैंग्वेज रहेगी वो छोटी होनी चाहिए, और जो मराठी अक्षर आएगा वो सबसे पहले होना चाहिए। तो जो निर्देश महाराष्ट्र के शासन के राजपत्र में दिए गए हैं, खाली उसी को फॉलो करने के लिए हमने प्रशासन को बोला है।
0: वहीं एमएनएस भी इस मुद्दे का समर्थन कर रही है।
3: सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की तो ऑर्डर क्लियर कट ऑर्डर है कि लोकल लैंग्वेज बोर्ड पे होनी चाहिए, और खाली होनी नहीं चाहिए, वो फर्स्ट उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट लोकल लैंग्वेज की होनी चाहिए, और उसका प्रोपोर्शन जो है फॉन्ड का वो भी 50-50% होना चाहिए सेकंड लैंग्वेज के साथ। तो अब तक मैंने भी अभी मुद्दा स्टैंडिंग में लिया था कि लगभग 5.5 लाख आस्थापना है, और उसमें से खाली डेढ़ या 2.25 लाख लोगों ने ही ये SOPs फॉलो किया, बाकी के लोगों ने अभी भी किए नहीं है, और बीएमसी के लाइसेंस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है वो कुछ काम करते नहीं है। इस मुद्दे पे हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था। अगर आगे चल के, अभी चेयरमैन ने भी बताया कि हम लोग इसकी प्रॉपर जो उसका फिगर्स है वो मंगाएंगे और इसके ऊपर एक्शन लेंगे।
0: शिवसेना के डिप्टी मेयर कह रहे हैं कि जो लोग मराठी साइन बोर्ड लगाने में प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे उन्हें शिवसेना के अंदाज में सबक सिखाया जाएगा। मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
4: मुंबई में 4 बेस्ट बसों की जोरदार टक्कर हो गई और हादसे में एक कंडक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। अंधेरी पश्चिम में अंबोली नाके पर एक पेड़ गिरने से 3 बेस्ट बसें फंस गई। इस बीच पीछे से 4th बेस्ट बस आई और उसने इन बसों में टक्कर मार दी। सबसे आगे खड़ी बस का कंडक्टर शेखर बस के पिछले हिस्से में घूम रहा था। बस की टक्कर से गंभीर रूप से कंडक्टर घायल हो गया, अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन पहले ही उनकी मौत हो गई। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

पीएम मोदी के पांच देशों की यात्रा पर दुनिया की नजर। आज सुबह यूएई के लिए होंगे रवाना, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का करेंगे दौरा। देश में निर्यात के लिए निर्णायक फैसलों की उम्मीद। पीएम की अपील के बाद बीजेपी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों में तेल बचाने की होड़। बस, बाइक से लेकर साइकिल तक का इस्तेमाल, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। रेखा गुप्ता बोली, हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम। अमित शाह से योगी की मुलाकात पर बड़ा राजनीतिक तापमान। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रालय बंटवारे समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात। बीजेपी अध्यक्ष से भी मिले योगी। शराब घोटाले में सुनवाई के दौरान जस्टिस पर टिप्पणी को लेकर आपकी मुसीबत बढ़ी। कोर्ट ने माना अवमानना। केजरीवाल, सिसोदिया समेत पांच पर निशाना। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर बड़ी बैठक। सीबीआई ने तेज की जांच। महाराष्ट्र से दो गिरफ्तारियां, पांच को सात दिन की सीबीआई रिमांड।

आज 5 देशों के दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी। 6 दिनों में करेंगे यूएई, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इटली का दौरा। कई मायनों में पीएम का दौरा महत्वपूर्ण। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर बड़े समझौते। 18 से 19 मई तक नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। 19 से 20 मई तक इटली की यात्रा पर होंगे। अमित शाह से मिले योगी। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहला दिल्ली दौरा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रालय बंटवारे समेत कई मुद्दों पर चर्चा। नितिन नवीन से भी मिले योगी। पीएम से भी आज मिल सकते हैं योगी। मोदी की ईंधन बचत की अपील के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा निर्णय। सरकारी ऑफिसेस में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, 50% बैठकें रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की हाई लेवल मीटिंग में 10 बड़े ऐलान किए गए। 1 वर्ष तक मंत्रियों अफसरों के विदेश दौरे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोक लगाई। मंत्रियों को मेट्रो से ऑफिस आने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीजेपी विधायक प्रदीप बिजली ने पेश की सादगी की मिसाल। साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा। पीएम मोदी की अपील के समर्थन में देवेंद्र फडणवीस अपने घर से बाइक से निकले। पीएम मोदी की अपील के बाद कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने घटाया काफिला, वाहन प्रयोग कम करने की अपील की। राहुल के विदेश दौरे पर बीजेपी का हमला। कहा 22 सालों में 54 निजी यात्रा पर खर्च किए 60 करोड़ रुपए। संबित पात्रा ने पूछे सवाल, 10 साल में आमदनी सिर्फ 11 करोड़, तो 60 करोड़ की फंडिंग किसने की? हमारे देश के 16 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR होगा, चुनाव आयोग का आदेश जारी। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। मिडिल ईस्ट तनाव, ऊर्जा संकट पर हो सकती है बात। विदेशी दल से पीएम की भी मुलाकात। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से कई विदेशी दल मिले। जयशंकर ने संगठन के ढांचे के भीतर सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। नीट पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में किया पेश। सीबीआई ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैट से 100 सवालों के सबूत मिले। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन तेज। जयपुर में आरोपी दिनेश मांगीलाल के घर फार्म हाउस पर छापे, कई दस्तावेज।

डिजिटल रिकॉर्ड जब्त। जांच में बड़ा खुलासा, मांगीलाल और दिनेश पर कुरियर नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप। नीट परीक्षा की जांच को लेकर महाराष्ट्र के लातूर पहुंची सीबीआई, कोचिंग संस्थानों पर दबिश, रिटायर्ड प्रोफेसर से पूछताछ, कई महत्वपूर्ण करेक्शन मिले। पेपर लीक को लेकर अहमदाबाद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन, मंत्री का काफिला रोक कर दिखाए काले झंडे। उत्तर प्रदेश में जून में होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा पर निगरानी तेज, मुख्य सचिव ने कड़ी सुरक्षा के सख्त निर्देश दिए, 4 जिलों में अलर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता के वकील के पोशाक में आने पर विवाद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उठाए सवाल। कलकत्ता बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बतौर वकील ममता के रजिस्ट्रेशन की मांगी जानकारी, 2 दिन में राज्य बार काउंसिल को देना होगा जवाब। सीएम शुभेंदु ने बतौर वकील ममता के हाईकोर्ट पहुंचने पर साधा निशाना, बोले फालतू काम में वक्त नहीं करेंगे खराब। कलकत्ता हाईकोर्ट में भारी हंगामा, ममता के खिलाफ नारेबाजी, कोर्ट के बाहर निकलते समय लगे चोर चोर के नारे। कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद तोड़फोड़ हिंसा का मुद्दा उठाया, बोली लोगों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पास करे सरकार। चुनावी हिंसा मामले पर शुभेंदु का पक्ष, कहा ऐसी घटना को चुनाव के बाद हुई हिंसा से जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं। दक्षिण 24 परगना के पायलान में टीएमसी विधायक दिलीप मंडल के घर पर पुलिस के छापे, भड़काऊ वीडियो, मामले में बंगाल पुलिस का एक्शन। टीएमसी विधायक दिलीप मंडल पर विपक्ष को भड़काने का आरोप, पुलिस ने मोबाइल जब्त किया, फरार विधायक की तलाश जारी। सोमवार को केरलम के सीएम पद की शपथ लेंगे वीडी सतीशन, 10 दिन बाद कांग्रेस ने चुना अपना मुख्यमंत्री। केरलम के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के स्वागत में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में 10 जनपद तमिलनाडु के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए को लगा झटका, भोजपुर बक्सर एमएलसी इलेक्शन में आरजेडी की जीत। बिहार में एमएलसी उपचुनाव में जीत के बाद तेजस्वी यादव ने ईवीएम पर उठाए सवाल, बोले बैलेट पेपर से चुनाव हो तो बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलजी मनोज सिन्हा ने शौर्य गाथा कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की दिखेगी दास्तां। शोपियां में बने आधुनिक इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ, दक्षिण कश्मीर के खिलाड़ियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। जालंधर बीएसएफ मुख्यालय के बाहर धमाका केस में मुख्य आरोपी उमर दीन और यूपी निवासी अनिल शर्मा गिरफ्तार, आईएसआई मॉड्यूल के लिए दोनों करते थे काम। दिल्ली में बस में महिला के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर एबीवीपी का पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रदर्शन। अरुणाचल के पापुम में आईएलपी के डिजिटलीकरण और जनजातीय अधिकारों के मुद्दे को लेकर बंद का सड़कों पर सन्नाटा, तेज आंदोलन की चेतावनी। सोनीपत में मॉक ड्रिल, बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियां। दिल्ली के वसंत वाली स्कूल में छात्रों का सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में शानदार प्रदर्शन, टॉपर्स ने पढ़ाई के साथ लीडरशिप और खेल में भी बनाई अपनी पहचान। वसंत वाली स्कूल में रितिका पवार 99.5% अंक लाकर बनी टॉपर, पढ़ाई के साथ साथ मल्टीटास्किंग को बताया अपनी सफलता का मूल मंत्र। पश्चिम बंगाल बोर्ड ने 12वीं के रिजल्ट दिए, अदुतो पॉल बने स्टेट टॉपर, सीएम शुभेंदु ने शुभकामनाएं। सीआईएसएफ के हवाले, दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा, 145 जवान तैनात। इंडो नेपाल बॉर्डर के करीब होने से पुख्ता होगी दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा, क्यूआरटी बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड तैनात। दिल्ली में होगी बिग कैट संरक्षण की सबसे बड़ी ग्लोबल समिट, 1 जून को सम्मेलन में शामिल होंगे दुनिया भर के वैज्ञानिक। जूनागढ़ में लोको पायलट की सूझबूझ से 6 शेरों को मिला जीवनदान, रेलवे ट्रैक पर शेर देखते ही इमरजेंसी ब्रेक लगाए। बिहार के बगहा में पुलिस प्रशासन की अनोखी पहल, 8वीं की छात्रा अमृता को बनाया एसपी। जयपुर में 2 वर्ष की नन्ही प्रिशा शर्मा ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम, छोटी सी उम्र में 30 से अधिक संस्कृत के श्लोक और मंत्र याद है इस बच्ची को। हमारे देश में 25 मई से मानसून की एंट्री का अनुमान, बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार में मानसून की शुरुआत की संभावना। मौसम विभाग का 17 राज्यों में भीषण आंधी बारिश का अलर्ट, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। राजस्थान में 18 मई तक हीट वेव का अलर्ट, 48 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। महाराष्ट्र के अमरावती में 46 डिग्री की गर्मी में ट्रैफिक पुलिस को बड़ी राहत, 500 जवानों को मिले एयर कूल जैकेट।
अमरावती में लू तेज धूप से बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिस कर रही है एयर कूल जैकेट्स का इस्तेमाल, पुलिस की ढाल बनी जैकेट। गुजरात के खेड़ा में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग, कई घर चपेट में आए, अफरा तफरी मची। बनासकांठा में प्लास्टिक गोदाम में आग लगने से हड़कंप, हादसे में कोई हताहत नहीं। वडोदरा में भीषण गर्मी के बीच कार में आग लगी, वाहन पूरी तरह से जलकर खाक। कानपुर में सब्जी मंडी में आग, 12 से अधिक दुकानें खाक। मध्य प्रदेश के देवास में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, कंप्रेसर फटने से 4 की मौत, 30 से अधिक घायल। आसनसोल के कोयला गोदाम में हादसा, 40 से अधिक मजदूर फंसे, एक की मौत का लापता। महाराष्ट्र के जालना में शादी में भोजन परोसने को लेकर हंगामा, दूल्हा दुल्हन पक्ष में मारपीट, 4 घायल। छत्तीसगढ़ के गोरेला में हिंसक झड़प, 7 घायल, पारिवारिक जमीन पर विवाद। मेरठ में बीच सड़क दो किन्नरों के विवाद को रोकने में पुलिस की फायरिंग, सिपाही को लगी गोली। इंदौर में मारपीट में 4 गिरफ्तार, पुलिस ने सभी का जुलूस निकाला। दिल्ली पुलिस की मोबाइल स्नैचिंग गिरोह के विरुद्ध बड़ी सफलता, 3 गिरफ्तार, 51 आईफोन बरामद। जामनगर में 3.5 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर, 6 अवैध निर्माण दहाए। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में पेड़ गिरने से बसों में पीछे से आई बस ने मारी टक्कर, कंडक्टर की मौत। यूपी के जालौन में विवाहिता का हाई वोल्टेज ड्रामा, 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रेमी से शादी की मांग। रोहतास के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 7वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी। मध्य प्रदेश के खरगोन में हल्दी लगाने के बाद दुल्हन की मौत, प्रशासन ने हल्दी के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे। अमृतसर के खालसा कॉलेज में बिहारी और कश्मीरी छात्रों के बीच विवाद, हॉस्टल में रात भर कहासुनी के बाद तनावपूर्ण माहौल, शिक्षकों पर गंभीर आरोप। बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, एक नाबालिग बच्ची बुरी तरह से घायल। महाराष्ट्र के बीड़ में आवारा कुत्तों का आतंक, 4 वर्ष की मासूम पर जानलेवा हमला, नागरिकों में गुस्सा। झारखंड के गढ़वा में प्रेम प्रसंग में युवक की जमकर पिटाई, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया ए का ऐलान, 15 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी को मिली एंट्री। वैभव आईपीएल में कर रहे हैं जबरदस्त प्रदर्शन, अब तक 11 मैचों में बना चुके हैं 440 रन। 9 जून से श्रीलंका में शुरू होगी ट्राई नेशन सीरीज, तिलक वर्मा के हाथों इंडिया ए की कमान। रियान पराग होंगे उपकप्तान, टीम में कई युवा खिलाड़ियों को जगह। कांस से सामने आया आलिया का 5वां लुक, डिजाइनर तरुण तहलियानी की ड्रेस में बिखेरा जलवा, जबरदस्त लुक में नजर आई तारा सुतारिया। बॉक्स ऑफिस पर थम नहीं रही धुरंधर 2 की रफ्तार, 1800 करोड़ के क्लब में एंट्री से केवल 4 करोड़ दूर। आज ओटीटी यानी कि नेटफ्लिक्स के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी स्ट्रीम। रितेश देशमुख की राजा शिवाजी की बंपर कमाई, अब तक 90 करोड़ का कारोबार किया, 100 करोड़ में जल्द होगी शामिल। 7 वर्ष बाद कर्तव्य से पुलिस की वर्दी में नजर आएंगे सैफ अली खान, ओटीटी पर नेटफ्लिक्स पर होगा प्रीमियर। रणदीप हुड्डा के अविनाश पांडे सीजन 2 आज जियो हॉटस्टार पर रिलीज, 1990 के दशक के यूपी के निडर सुपर कॉप के रूप में वापसी। आज ओटीटी अमेजॉन प्राइम पर एग्जाम होगी स्ट्रीम, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे गंभीर विषय की कहानी। पश्चिम एशिया संकट के बीच आरबीआई गवर्नर ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका व्यक्त की, महंगाई के नई किश्त के तौर पर अमूल मदर डेयरी ने 2 रुपए दूध के दाम बढ़ाए। यूएई के गोल्ड पर 1% कम शुल्क के कारण दुबई से आयात को बढ़ावा मिलने की संभावना, सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद मार्केट में घरों में रखे पुराने सोने की सप्लाई बढ़ने का अनुमान। महंगे ईंधन के बढ़ते खर्च के बीच एयर इंडिया ने 6 इंटरनेशनल रूट्स पर उड़ानों को रद्द किया, दिल्ली शिकागो मुंबई न्यूयॉर्क समेत 23 रूट्स पर फ्लाइट्स कम। ईरान संकट के बीच अमेरिका चीन ने हॉर्मुज पर टोल वसूली का विरोध किया, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर तनाव बढ़ने से ग्लोबल ट्रेड पर खतरे की चिंता। हॉर्मुज के बीच भारत के लिए एलपीजी को लेकर आ रहा है 15वां जहाज, सुरक्षित हॉर्मुज से निकला, भारतीय नौसेना समेत कई एजेंसियां बिना सप्लाई बिना रुकावट जारी रखने में जुटी। ट्रंप और जिनपिंग ने महत्वपूर्ण मुलाकात की, तनाव पैदा करने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान बीजिंग में भव्य राजकीय समारोह, स्ट्रीट बैंक्वेट पार्टी में ट्रंप चीन के राष्ट्रपति ने एक दूसरे के सम्मान में उठाया जैम। बीजिंग में ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात पर ताइवान का बयान, चिरे ने कहा बैठक की पूरी प्रक्रिया घटनाक्रम पर हमारी नजर। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में ईरान का इसराइल और अमेरिका पर बड़ा हमला, अगारची बोले अमेरिका और इसराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन
पर कार्रवाई हो। वाशिंगटन में इसराइल लेबनान की वार्ता के बीच लेबनानी सीमा से इजरायली क्षेत्र में हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक, एक नागरिक घायल। यूक्रेनी शहर पर रूस का बड़ा हमला, राजधानी कीव में 18 अपार्टमेंट पूरी तरह से बर्बाद, 33 से ज्यादा लोग घायल, जेलेंस्की का दावा। यूक्रेन में भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने जेलेंस्की के करीबी और पूर्व प्रशासन प्रमुख की गिरफ्तारी का आदेश दिया, अवैध पैसे का आरोप। बाल्टिक सागर में भीतर महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए नेटो का माइन हंटर युद्धपोत पहुंचा लिथुआनिया। ब्रिटेन में थम नहीं रही राजनीतिक स्थिरता, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया इस्तीफा, इसके बाद क्या पीएम केयर स्टमर के नेतृत्व पर अब भी है उन्हें पूरा का पूरा भरोसा। लातविया की प्रधानमंत्री एविका सेलेना ने अपने पद से दिया इस्तीफा, सेलेना सरकार के गठबंधन में शामिल प्रोग्रेसिव पार्टी के समर्थन वापसी के बाद बड़ा निर्णय।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये वक्त बदलता जरूर है। जो अमेरिका चाइना को एशिया का बीमार आदमी कहता था, आज वही सुपर पावर अमेरिका ड्रैगन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। 8 साल बाद ट्रंप जब बीजिंग पहुंचे हैं तो हाथ में ट्रंप का इक्का नहीं बल्कि अर्जी है, और शी जिनपिंग ने उन्हें समझा भी दिया है कि अब पासा पलट चुका है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ट्रंप अपने हैंडशेक के लिए मशहूर है। वो हाथ ऐसे खींचते हैं मानो सामने वाले का कंधा उखाड़ देंगे, लेकिन बीजिंग में उल्टा हो गया। ट्रंप 11,000 किलोमीटर दूर से उड़कर आ गए, लेकिन शी जिनपिंग अपनी जगह से एक कदम भी तस से मस नहीं हुए, और उनके हैंडशेक में नजर आ गया कि ट्रंप की अकड़ अब ड्रैगन की पकड़ के आगे झुक चुकी है। ट्रंप का यह दौरा किसी महाशक्ति की यात्रा नहीं बल्कि एक डूबते हुए वर्चस्व को बचाने की कोशिश ज्यादा लग रही है। चाइना ने बीफ से पाबंदी हटाकर ट्रंप को थोड़ी राहत तो दी है, लेकिन इसके बदले ट्रंप को अपनी सुपर पावर वाली अकड़ अब बीजिंग की सड़कों पर ही छोड़नी पड़ी है। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ यूएई और इसराइल के बीच नई खिचड़ी पक रही है। इसराइल का दावा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध के दौरान गुपचुप तरीके से यूएई का दौरा किया। इस दावे के बाद ईरान भड़क उठा, कहा कि इसराइल का साथ देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आखिर शिया ईरान के खिलाफ सुन्नी यहूदी सीक्रेट मीटिंग के मायने क्या है, क्योंकि इससे यूएई तो इनकार कर रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि तमिलनाडु की सत्ता बदली, चेहरा बदला, लेकिन सनातन के प्रति नफरत का एजेंडा नहीं बदला। कल तक सनातन को मिटाने की जो शपथ उदयनिधि स्टालिन ले रहे थे, आज वही जहरीली भाषा मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी के विधायक मुस्तफा की जुबान पर है। सवाल यह है कि डीएमके के बाद टीवीके के साथ भी सत्ता सुख भोगने वाली कांग्रेस सनातन के अपमान पर मौन ही रहेगी। और आखिर में उन बेटियों की बात करेंगे जो बोर्ड परीक्षा परिणाम के दौर में छाई रहती हैं, लड़कों को पछाड़ देती हैं। हेडलाइंस होती है लड़कियों ने फिर मारी बाजी, लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्कूली दौड़ में लगातार जीतने वाली ये लड़कियां कॉलेज और करियर की दौड़ में क्यों पीछे रह जाती हैं, हार जाती हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। एक जमाना था जब अमेरिका की सरकारें चाइना को सिक मैन ऑफ एशिया कहती थी। इसका मतलब था एशिया का सबसे बीमार आदमी। लेकिन वक्त बदला और आज यही अमेरिका चाइना की चौखट पर खड़ा है। 8 साल बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंचे हैं, और पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप चाइना से चाहते क्या है। लेकिन हमें लगता है कि इस सवाल का सबसे सटीक जवाब खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दे दिया है। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई, तब उन्होंने कहा कि क्या अमेरिका और चाइना थ्यूसिडाइड ट्रैप से बच सकते हैं। ये वो सिद्धांत है जिसे प्राचीन यूनान के महान इतिहासकार थ्यूसिडाइड ने 2400 साल पहले तब लिखा था जब एथेंस और स्पार्टा के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध का कारण यह था कि स्पार्टा खुद को एक बहुत सुपर पावर, एक बड़ी सुपर पावर मानता था, और एथेंस नई ताकत के रूप में तेजी से उभर रहा था। उस वक्त थ्यूसिडाइड्स ने लिखा था कि जब एक महाशक्ति के सामने नई ताकत का उभरना होता है, तो वो महाशक्ति अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए युद्ध को अनिवार्य मान लेती है, और इसके बाद युद्ध को कोई नहीं टाल पाता। अब इसी थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का जिक्र राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज राष्ट्रपति ट्रंप से किया, और जानते हैं वो यहां कहना क्या चाहते थे। उनका कहना यह था कि चाइना एक नई उभरती हुई ताकत है और अमेरिका पहले से स्थापित महाशक्ति। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चाइना के उभार से अमेरिका में जो डर पैदा हुआ है, वो डर आगे चलकर अमेरिका और चाइना के बीच एक नए युद्ध को अनिवार्य बना दे। पूरी दुनिया का मीडिया लिख रहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहना तो ये चाहते थे कि चाइना अमेरिका के साथ कभी कोई युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो ये संदेश भी दे रहे थे कि अगर अमेरिका ने अपने सुपर पावर वाले ताज को बचाने के लिए चाइना को रोकने की कोशिश की, तो चाइना युद्ध भूमि में पीछे नहीं हटेगा। संक्षेप में कहें तो राष्ट्रपति ट्रंप का यह दौरा चाइना की दबी हुई महत्वाकांक्षा और अमेरिका के छिपे हुए डर को बाहर ले आया है। इसमें चाइना की दबी हुई महत्वाकांक्षा यह है कि वो अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनना चाहता है, जबकि अमेरिका का छिपा हुआ डर यह है कि वो अपने सुपर पार वाले ताज को किसी भी तरह बचा कर रखना चाहता है और इसके लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। यह डर इसलिए भी है क्योंकि चाइना आज अमेरिका की गर्दन तक पहुंच चुका है। अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की है। अमेरिका और रशिया के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सेना चाइना के पास है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, जिसकी हिस्सेदारी 14.3% है, जबकि अमेरिका की हिस्सेदारी सिर्फ 8.3%। AI में भी अमेरिका के बाद चाइना का ही नंबर आता है और चाइना इस वक्त अमेरिका की गर्दन तक पहुंच गया है। उसका सपना है अमेरिका से उसका सुपर पार वाला ताज छीनना, और इसके लिए अगर युद्ध भी लड़ना पड़े तो चाइना इसके लिए तैयार है। सुनिए।
1: 共同开创两国关系的美好未来।
2: क्या चीन और अमेरिका तथा कथित थ्यूसीडाइडस ट्रैप से बाहर निकलकर बड़े देशों के संबंधों का एक नया मॉडल बना सकते हैं? क्या हम मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और दुनिया को अधिक स्थिरता दे सकते हैं? क्या हम अपने दोनों देशों के लोगों की भलाई और मानवता के भविष्य के लिए मिलकर अपने द्विपक्षीय संबंधों का उज्ज्वल भविष्य बना सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो इतिहास, दुनिया और जनता सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये हमारे समय के वो बड़े सवाल हैं जिसका जवाब हमें बड़े देशों के नेताओं के तौर पर देना होगा।
0: आज इस खबर को हमने एक शीर्षक दिया है और वो शीर्षक है ड्रैगन की पकड़ में राष्ट्रपति ट्रंप की अकड़। ये शीर्षक हमने क्यों दिया, उसके लिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जाकर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जिस पर आज पूरे विश्व में खूब चर्चा हो रही है, लेकिन हमने सोचा कि इसको हम आपके सामने आज रखें क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में राष्ट्रपति ट्रंप का हैंडशेक बहुत लोकप्रिय रहा है। और देखिए, जब आप उनका अंदाज देखिए, हैंडशेक करने का आप उनका अंदाज देखेंगे तो वो जिस तरह से हाथ मिलाते हैं, ऐसे ऐसे करके वो थपथपाते हैं, काफी देर तक सामने वाले को खींचकर अपनी तरफ उसका हाथ रखते हैं, जैसे ये एक डोमिनेंस का भी तरीका है। क्योंकि अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो राष्ट्रपति ट्रंप जब किसी भी नेता से हाथ मिलाते हैं तो वो उसके हाथ को इस तरह से खींचते हैं और उसको खूब थपथपाते भी है। ये देखिए, ये हाथ खींचते हैं वो अपनी तरफ, ये एक एक जिसको आप कह सकते हैं अपना डोमिनेंस दिखाने का भी एक तरीका माना जाता है। इसके अलावा कई बार वो लंबे समय तक हाथ पकड़कर अपना डोमिनेंस भी दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने जुलाई 2017 में 29 सेकंड तक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का हाथ पकड़कर रखा था। और एक ये तस्वीरें तब काफी चर्चा में भी रही थी। एक तरीका उसका यह भी होता है कि भाई हम ज्यादा दोस्ती दिखाने की कोशिश होती है कि हमारी बड़ी बॉनहोमी है, लेकिन उस चक्कर में वो जिस ग्रिप से हाथ को पकड़ते हैं उसकी खूब चर्चा रहती है। तो अब हम आपको सारी तस्वीरें अनेकों नेताओं की दिखा रहे हैं जिसके साथ भी आप देखिएगा उनको मिलते हुए, चाहे सैंटियागो पेना के साथ देखिए, वो हाथ खींचते हैं अपनी तरफ। ये देखिए, ये बार बार एक बार जूम इन करके यहाँ दिखाइए, ये वाला वीडियो अभी फिर से जब चलेगा तो आप देखेंगे वो किस तरह से हाथ मिलाने के बाद हाथ को अपनी तरफ खींचते हैं। शुरू से प्ले कर दीजिए, ये देखिए अपनी तरफ वो हाथ को खींचते हैं, और ऐसा अक्सर उनके बारे में देखा जाता है, वो हाथ को अपनी तरफ खींचते हैं, चाहे वो इमानुअल मैक्रों के साथ हो या फिर पैराग्वे के राष्ट्रपति के साथ हो, पूर्व प्रधानमंत्री कनाडा के जो है जस्टिन ट्रूडो के साथ हो, शिंजो आबे के साथ। देखिए, हाथ मिलाने के बाद पैट करना और एक डोमिनेंस का इसको माना जाता है तरीका जो अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं डेली मेल की एक रिपोर्ट। अब डेली मेल की ये रिपोर्ट आखिर क्या कह रही है? डेली मेल की ये रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रपति ट्रंप का ये हैंडशेक सामने वाले नेताओं को ये बताने के लिए होता है कि वो उनके बॉस हैं। और अब तक ना जाने कितने नेताओं के साथ उन्होंने इस तरह का, जिसको कहते हैं आयरन हैंडशेक या फिर डोमिनेंस वाला हैंडशेक किया है। मनोबल, कितने नेताओं का मनोबल राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने हैंडशेक के जरिए ही तोड़ दिया, जिसको इसकी अलग से कूटनीति में चर्चा होती है। ये देखिए, आज चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जब मुलाकात हुई, ये पहले वाले हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये देखिए हाथ को पकड़ते हैं, जोर से खींचते हैं, इसमें भी देखिए अब आ गया ये वीडियो। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने राष्ट्रपति ट्रंप को ही असहज कर दिया। आज वेस्टर्न मीडिया में इसकी खूब चर्चा है। राष्ट्रपति ट्रंप को आदत है सामने से नेता उनकी तरफ हाथ बढ़ाने के लिए आगे आए, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसा नहीं किया। वो अपनी जगह पर खड़े रहे। देखिए, वो वेट करते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप चल के गुजर के उन तक आएंगे। एक कदम भी आगे दिखाने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई। शी जिनपिंग अपनी जगह पर खड़े रहे जबकि राष्ट्रपति ट्रंप अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उनके पास पहुंचे और इसके बाद उनसे हाथ मिलाया। अब जिस वेस्टर्न मीडिया में एक एक स्टेप को आज ब्रेक डाउन करके जिसकी चर्चा हो रही है वो हिस्सा भी दिखाते हैं। 10 सेकंड का ये हैंडशेक था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कुल 5 बार शी जिनपिंग के हाथ पर टैप किया, जो वो हमेशा करते हैं ऐसे जोर से। अपने दूसरे हाथ से उनके हाथ को उन्होंने थपथपाया। ये पुराना हैंडशेक आप दिखा रहे हैं, हमें आज शी जिनपिंग का हैंडशेक दिखाना। देखिए, इसके साथ टाइमर लगा दीजिए। तो इस तरह से उन्होंने खींचा, पर आप देखिए कि कैसे एक टसल चल रहा है। मतलब वो अपनी तरफ हाथ खींच रहे हैं और शी जिनपिंग इंश्योर कर रहे हैं कि उनका हाथ वहीं पर रहेगा। और इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के चेहरे पर जो मुस्कान दिख रही थी उसे पश्चिमी मीडिया बुलफ्रॉग स्माइल कह रहा है। इसका मतलब ऐसी मुस्कान से है जो ऊपर से बड़ी और चौड़ी दिखती है, लेकिन इसमें स्वाभाविक गर्मजोशी नहीं होती। यानी पश्चिमी मीडिया का कहना है कि शी जिनपिंग से मिलते वक्त राष्ट्रपति ट्रंप मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन हकीकत में वो उनके साथ बहुत सहज या रिलैक्स्ड महसूस नहीं कर रहे थे और हो सकता है कि वो तनाव में भी हों। अगर ये वीडियो आप शुरू से प्ले करें तो शुरू वाले हिस्से में आपको वो दिखेगा। ये देखिए, उन्होंने हाथ अपनी तरफ खींच लिया है, लेकिन फिर शी जिनपिंग, ये देखिए, शुरू में अपनी तरफ खींचा लेकिन शी जिनपिंग हाथ को बीच में ले आते हैं। इसीलिए हमने आपसे कहा कि आज इस खबर का सबसे सटीक शीर्षक कोई होगा तो वो यही है कि ड्रैगन की पकड़ में राष्ट्रपति ट्रंप की अकड़ आ गई है। देखिए,

साल 2018 में जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाइना की स्टेट विजिट पर आए थे, तब राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के बीच ज्यादा सहजता नजर आई थी, जबकि आज की मुलाकात ज्यादा औपचारिक, ज्यादा रणनीतिक लगी, स्ट्रेटेजिक लगी। और ये बात हम इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि आप ये समझ पाए, देखिए ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरे से अमेरिका और चाइना की दोस्ती क्या उस मकाम पर पहुंच सकती है जैसी रशिया और चाइना की है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि जब आप देख रहे हैं लोगों के बीच से गुजर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज में एक बड़ा परिवर्तन आता है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच अब भी कटुता है, एक अविश्वास है, मतभेद साफ दिखते हैं। और आज जो दौर है वो एक औपचारिक दौरा था जिसमें अपनेपन वाली बात नहीं दिखी, क्योंकि आज बहुत सारे लोग इस हैंडशेक की तुलना साल 1972 के हैंडशेक से भी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए लड़ाई क्या है। लड़ाई इन दोनों देशों की जो है वो एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। AI के क्षेत्र में नंबर वन अमेरिका और AI के क्षेत्र में नंबर टू चाइना, और वन और टू में ही लड़ाई होती है, एक दूसरे को पीछे खींचने की और जगह लेने की। और इसी के साथ साथ सिर्फ AI नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था की, दूसरी अर्थव्यवस्था से पहले बनने की होड़ है चाइना की। इधर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत चाइना है रशिया के बाद। इधर दुनिया के निर्यात में हिस्सेदारी अगर 8.3% है तो दुनिया के निर्यात में हिस्सेदारी जानते हैं 14.3% है चाइना की, सबको पीछे छोड़ चुका है मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में। जो सामान, जो माल जिसको चाहिए, जिस रेट पर चाहिए वैसा बनाने की क्षमता रखता है। और इसीलिए आप सोचिए कि दुनिया के निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी चाइना की 14.3% हिस्सेदारी है। तो जिस हैंडशेक की हम लोग बात कर रहे थे उस पर एक बार फिर से आते हैं, और आज बहुत सारे लोग इस हैंडशेक की तुलना साल 1972 के हैंडशेक से भी कर रहे हैं। 1972 में पहली बार अमेरिका का कोई राष्ट्रपति बीजिंग दौरे पर गया था, 1972। उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और कम्युनिस्ट शासन के संस्थापक माओ ज़ेडोंग की मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात में रिचर्ड निक्सन ने जिस तरह माओ ज़ेडोंग से हाथ मिलाया था वो अमेरिका के वर्चस्व, उसके प्रभाव को दिखा रहा था। इसलिए भी दिखा रहा था क्योंकि तब अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति था अनडिस्प्यूटेड, और चाइना एक पिछड़ा देश था, ऐसी स्थिति में तो कतई नहीं था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक उस वक्त चाइना की 97% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। दुनिया उसे इस नजर से नहीं देखती थी जिस नजर से आज देखती है। लेकिन देखिए वक्त बदला, हाथ बदले, हाथ के साथ हालात बदले। आज चाइना मजबूत स्थिति में है जबकि अमेरिका अपने दौर की सबसे कमजोर स्थिति में। कैसे उसके लिए, अब इस ग्राफिक्स को आप देखिए जिससे आपको समझ में आएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे वक्त में चाइना गए हैं जब ईरान ने अमेरिका के वर्चस्व को झटका दिया, जब यूरोप के देशों ने अमेरिका को नो कहना, ना कहना सीख लिया है, जब नेटो देशों ने अमेरिका की हां में लाना बंद कर दिया है, जब स्पेन अमेरिका को भाड़ में जाने के लिए कह रहा है, जब मिडिल ईस्ट के देशों ने भी अमेरिका के साथ अपने रिश्ते की समीक्षा शुरू कर दी है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप तब चाइना गए हैं जब अमेरिका अपने सबसे नाजुक दौर से कूटनीतिक रूप से गुजर रहा है। लेकिन इसी दौर में चाइना का अपर हैंड नजर आता है। चाइना ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध में ईरान का साथ दिया। चाइना का रशिया के साथ आज की तारीख में बहुत मजबूत रिश्ता है। चाइना अफ्रीकी देशों का सबसे बड़ा पार्टनर बन गया है। अगर आपको याद हो तो रशिया के साथ कैसा संबंध है, SCO समिट में तमाम देश लौट आए थे लेकिन पुतिन वहां पर लंबे वक्त तक रहे थे। देखिए अमेरिका के साथ पूरा यूरोप चाइना के सामान और सेवाओं पर निर्भर है, और विकास दर के मामले में भी चाइना की स्थिति अमेरिका से बहुत अच्छी है। यानी निगोसिएशन में एक तरह से जब मोल भाव किया जाता है तो चाइना का अपर हैंड है, और चाइना इस बात को अमेरिका को महसूस भी खुलकर करा रहा है। इस पूरे ट्रिप में इसकी चर्चा है। जब राष्ट्रपति ट्रंप चाइना के दौरे पर आए तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीफ आयात पर पिछले 15 महीनों में लगी रोक में ढील देने का ऐलान तो किया। इस फैसले से उन अमेरिकी बूचड़खानों को फिर से चाइना में बीफ निर्यात करने का लाइसेंस मिल जाएगा जिन्हें रद्द कर दिया गया था। चाइना ने यह मेहरबानी अमेरिका पर की तो, लेकिन इस छोटी सी चीज के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को चाइना की चौकट पर आना पड़ा। दूसरा काम चाइना ने यह किया कि उसने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बीजिंग आने से रोक दिया। इस बार रोका नहीं। वो कैसे, देखिए ये बहुत दिलचस्प है। ये इसलिए अहम था क्योंकि उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठाने के लिए चाइना ने ही मार्को रूबियो को साल 2020 में
उन पर सैंक्शन लगा दिया था, कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, और उन प्रतिबंधों की वजह से वो चाइना में उनकी एंट्री ही नहीं थी, वो चाइना में प्रवेश की इजाजत नहीं थी उनको। लेकिन चाइना ने यहां भी अमेरिका पर एक एहसान और कर दिया, उसने एक जुगाड़ निकाला। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मार्को रूबियो के नाम की स्पेलिंग को चेंज किया गया, यानी अमेरिका के विदेश मंत्री के नाम की स्पेलिंग को चेंज किया गया। इसे ऐसे लिखा गया जिससे नाम का उच्चारण वही रहे लेकिन उसकी स्पेलिंग बदल जाए। अब स्पेलिंग बदली तो मार्को रूबियो का राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चाइना आने का रास्ता खुल गया, और यह कहा गया कि प्रतिबंध में जो स्पेलिंग लिखी है वो किसी और नाम की है। यानी सोचिए जुगाड़ भी कैसा निकाला गया, और इस जुगाड़ से चाइना ने यह बताया कि वो प्रतिबंध के बावजूद मार्को रूबियो को चाइना में आने दे रहा है, एहसान कर रहा है, वो अपना छोटा दिल बिल्कुल नहीं रखता। और अभी बहुत सारे लोग इसे चाइना का अमेरिका पर एक तंज भी मान रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में द्विपक्षीय वार्ता हुई, और इस दौरान उनका शानदार स्वागत हुआ, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि ऐसा स्वागत इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। देखिए

0: अब ये देखिए कि इस मुलाकात में कैसे चाइना पूरी तरह अमेरिका पर हावी रहा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति ट्रंप से साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका को अब चाइना से अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने ताइवान का भी मुद्दा उठाया और ये कहा कि अगर इस मुद्दे को गलत तरीके से संभाला गया तो अमेरिका और चाइना के बीच युद्ध भी हो सकता है। ये ताइवान का मुद्दा और ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग की पहली चेतावनी थी, जिस पर सामने बैठे राष्ट्रपति ट्रंप कुछ नहीं कह पाए। ताइवान के लिए हाल ही में 14 बिलियन डॉलर के हथियारों का पैकेज मंजूर करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ताइवान पर एक शब्द नहीं बोले। और इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि चाइना के हाथ में, चाइना की पकड़ में आ गई है डोनाल्ड ट्रंप की अकड़। ऐसा लगा जैसे वो ताइवान को जानते तक नहीं है, सिर्फ ये कहकर अपनी बात खत्म कर दी कि चाइना के साथ अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन जब शी जिनपिंग ताइवान पर खुली धमकी दे रहे थे तब पूरी दुनिया पर धौंस जमाने वाले राष्ट्रपति ट्रंप जरा भी अपने तेवर नहीं दिखा पाए। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों ने संयुक्त रूप से यह कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित रखने पर सहमत है और समुद्री रास्ता खुला रहना चाहिए। अमेरिका इसे ईरान के खिलाफ अपनी जीत मान रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि चाइना हॉर्मूज को खुला रखने की बात पहले दिन से कह रहा है और उसने हॉर्मूज पर ईरान द्वारा टोल वसूलने का भी विरोध किया है। अब इसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत बता रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी वजह से चाइना ऐसा कर रहा है। खैर, उनका इतिहास ऐसा रहा है अब तो हम सब जानते हैं। इसी द्विपक्षीय वार्ता में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एप्पल के सीईओ टिम कुक, एनविडिया के सीईओ जेनसन हुआंग और टेस्ला के मालिक एलोन मस्क शामिल हुए, जिनके लिए शी जिनपिंग ने यह कहा कि वो इस बात से खुश हैं कि इनकी कंपनीज चाइना में कुछ बड़ा करना चाहती है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप इन्हें अपने साथ लाए तो इसलिए थे ताकि ये बात बता सकें कि चाइना आज भी टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर है। लेकिन शी जिनपिंग ने इस पासे को भी उल्टा पलट दिया। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते रहे, लेकिन शी जिनपिंग ने उनके सामने बैठकर चाइना फर्स्ट को अपना संकल्प बता दिया। यानी सोचिए इस बैठक में किस लेवल की कूटनीति चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि चाइना ने इस द्विपक्षीय वार्ता के लिए अच्छा खासा होमवर्क किया हुआ है। और चाइनीज के लिए कहा भी जाता है, इतने मेटिकुलस होते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं और उन्हें पता था कि अगर धौंस दिखाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करेंगे तो उसका मुकाबला कैसे करना है। कुल मिलाकर कहें तो इस बैठक में शी जिनपिंग ने उपदेश दिए, इसमें यूक्रेन और ईरान युद्ध पर चर्चा हुई, लेकिन अमेरिका जिस ताइवान के मुद्दे पर और व्यापार के मुद्दे पर चर्चा करने के बारे में सोच रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। देखिए,
1: प्रिय राष्ट्रपति ट्रंप, बीजिंग में आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये आपकी 9 साल में चीन की पहली यात्रा है। आज हमारी मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। चीन और अमेरिका को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। हमें एक दूसरे की सफलता और तरक्की में साथ देना चाहिए और नए दौर में बड़े देशों के बीच अच्छे संबंध बनाने का सही रास्ता खोजना चाहिए। मैं हमारे दोनों देशों और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे चर्चा करने के लिए उत्सुक हूँ। मैं आपके साथ मिलकर चीन अमेरिका संबंधों को सही दिशा देने और आगे बढ़ाने का काम करना चाहता हूं, ताकि 2026 एक ऐतिहासिक साल बने और चीन अमेरिका संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हो। आप और मैं अब काफी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। वास्तव में हमारे दोनों देशों के बीच किसी भी राष्ट्रपति के मुकाबले सबसे लंबा संबंध हमारा रहा है और ये मेरे लिए सम्मान की बात है। हमारे संबंध बहुत शानदार रहे हैं। हम हमेशा अच्छे से एक दूसरे के साथ रहे। जब भी कोई कठिनाई आई हमने उसे मिलकर सुलझा लिया। मैं आपको फोन करता था और आप मुझे फोन करते थे, और जब भी कोई समस्या होती लोगों को पता भी नहीं चलता और हम उसे हल कर लेते थे। मुझे विश्वास है कि हमारा भविष्य साथ में बहुत शानदार होगा। मुझे चीन और आपके काम के प्रति बहुत सम्मान है। आप एक महान नेता हैं। मैं ये बात सबके सामने कहूंगा कि आप एक महान नेता हैं। आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। आपका मित्र होना भी मेरे लिए सम्मान की बात है। और चीन और अमेरिका के बीच संबंध पहले से भी बेहतर होने वाले हैं।
0: क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और चाइना की सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? सुपर पावर बनने की लड़ाई तो है, लेकिन इससे भी बड़ी लड़ाई है, और वो बड़ी लड़ाई है जिसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति लेकर आए थे। ये नीति थी तो चाइना के लिए, लेकिन बाद में राष्ट्रपति ट्रंप के एक सलाहकार ने कहा कि वो इसे पूरी दुनिया पर लागू क्यों नहीं कर देते, और फिर डोनाल्ड ट्रंप कर बैठे वही। और सभी देशों पर नए नए टैरिफ लगाने चाहिए। ये नई नई ताकत का एहसास डोनाल्ड ट्रंप को हो रहा था कि कैसे देशों को इधर से उधर दबाने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी आर्थिक गर्दन पर अपने हाथ को रखा जा सकता है। लेकिन हम यहां बताना ये चाह रहे हैं कि इस टैरिफ की जड़ में चाइना था, जिसके साथ व्यापार में अमेरिका को हर साल भयंकर घाटा हो रहा है। और दुनिया यही सोच रही थी कि इस मुलाकात में व्यापार घाटे को लेकर जरूर कोई समाधान निकलेगा। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म होता है, जो निंदा होती है डोनाल्ड ट्रंप की या फिर अमेरिकी शासन की, वो इसी वजह से होती है क्योंकि आप चाइना से सामान तो खूब खरीद लेते हैं लेकिन आपका वहां पर ट्रेड बहुत कम है, यानी ट्रेड डेफिसिट है। चाइना का माल खूब बिक रहा है अमेरिका में लेकिन अमेरिका का सामान चाइना में कम जाता है और यही ट्रेड डेफिसिट को ब्रेक करना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इस मुद्दे पर चाइना से ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए और यह भी तब हुआ जब अमेरिका का व्यापार घाटा अब भी 19 लाख करोड़ रुपए का है। चलिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा समझाने की कोशिश करती हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जो हमने आपके लिए निकाला है। इससे आपको समझ में आएगा कि आखिर ये जो ट्रेड डेफिसिट की बात दोनों देशों के बीच में हो रही है, इसका मतलब क्या है। और हमने आपके लिए दोनों ही कार्यकाल अलग अलग किए हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल जो आप इस वक्त देखेंगे। ये देखिए, एक सेकेंड, ये है डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल जो कब था, साल 2017 से लेकर 2020 तक। ठीक है, अब इसमें आप देखिए ट्रेड डेफिसिट कितना था, ये लाख करोड़ में है, यानी 35 लाख करोड़, लगभग आप समझ लीजिए 36 लाख करोड़ के आसपास था जब पहली बार, मुझे लगता है इसको येलो कर लेना चाहिए तो आपको ज्यादा क्लैरिटी से दिखेगा। ये देखिए, ठीक है, सबसे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 में आए तो लगभग 36 लाख करोड़ रुपए का ये डेफिसिट था। मतलब जितना सामान चाइना से अमेरिका खरीद रहा था और अमेरिका जितना बेच रहा था उसमें इतना फासला था, चाइना को जबरदस्त एडवांटेज था। उसके बाद देखिए ये और ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है अगले साल में, और जो उनके पहले कार्यकाल का दूसरा साल था, साल 2018, उस वक्त ये पीक पर चला गया था सबसे ज्यादा 40 लाख करोड़ रुपए पर। फिर आ जाइए साल 2019 पर, जब थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने में उन्हें कामयाबी मिली और ये 32 मतलब पौने आप समझ लीजिए 33 लाख करोड़ के आसपास हो गया। फिर आ जाइए उनके आखिरी साल में जो पहले रूप में उनके शासन में था, साल 2017 से 20 के बीच का, जैसा कि हमने आपको दिखाया है, और लास्ट ईयर में उन्होंने उसको और घटाने में कामयाबी हासिल की, तो लगभग 29.5 लाख करोड़ रुपए का डेफिसिट रहा। अब इसके बाद कौन आए, इसके बाद आ गए जो बाइडेन, और जो बाइडेन की जो सरकार थी वो भी इसको संभालने में शुरू में कामयाब नहीं रही बल्कि इजाफा हुआ। देखिए अब उनके चार साल में देखिए कि क्या हालत रही। ये जब आप देखेंगे यहां से, ये एक सेकेंड, साल 2021 में देखिए 33 लाख करोड़ था, फिर 2022 में 36 लाख करोड़ के आसपास हुआ, साल 2023 में 26.77 करोड़ के आसपास लाख करोड़ हुआ, उसके बाद से 2024 में लास्ट में उन्होंने कितने पे छोड़ा, 28 लाख करोड़ रुपए पे जो बाइडेन ने मामला छोड़ दिया। ये ट्रेड डेफिसिट है, इतने के लॉस में है अमेरिका जब बाइडेन का आखिरी साल था। अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से सरकार में आते हैं और उन्होंने देखा कि इसको कंट्रोल करने का मेरे पास तो जादुई एक मामला आ गया है, और जिसको आप अब अगर देखेंगे तो ये जादू वाली चीज उनके लिए क्या थी, हम आपको दिखाते हैं कैसे उन्होंने अपने शासन में ये कर दिखाया। 19 लाख करोड़ उन्होंने कैसे कर दिया, इसको इतना बड़ा डिफरेंस करने में वो कैसे कामयाब रहे डोनाल्ड ट्रंप अपने शासनकाल के दूसरे शासनकाल के पहले ही साल में, तो उसकी वजह सिर्फ एक थी और वो वजह थी टैरिफ। टैरिफ लगाकर उन्होंने चाइना के साथ अपने ट्रेड डेफिसिट को कम किया, चाइना से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से चाइना का इंपोर्ट को सेटबैक हुआ, झटका लगा, और वहीं पर चाइना ये अमेरिका के लिए, तो अमेरिका के लिए ये पूरा मामला बड़ा अच्छा हो गया उनको। ये देखिए उनका जो घाटा था, व्यापार घाटा, वो घटके 19.35 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप और जो ये टैरिफ शब्द है वो हमेशा के लिए इतिहास में अब दर्ज हो जाएंगे। इनको टैरिफ वाले ट्रंप के तौर पर भी कहा जाएगा, क्योंकि टैरिफ के जरिए इन्होंने दुनिया को अपने कंट्रोल में लेने की पूरी कोशिश की और चाइना के साथ इस तरह से उन्होंने अपने ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल किया। यानी टैरिफ वाले ट्रंप ये बार बार दिखाने की कोशिश करते रहे कि भाई हमारे पास एक हथियार है, हमारे पास तुम्हारा कंट्रोल है, और इस वजह से उन्होंने ये स्थापित किया और पूरा का पूरा टैरिफ के जरिए व्यापार घाटा को बदल दिया। ऐसे में आशंका है कि यह व्यापार घाटा फिर से बढ़ सकता है, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप इस दौरे पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हर दिन ट्रूथ सोशल पर औसतन 18 पोस्ट, कम से कम 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कम बोले। यानी जो शी जिनपिंग कम बोलते हैं, ज्यादा इस तरह के पोस्ट नहीं, वो ज्यादा बोले, और जो राष्ट्रपति ट्रंप अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं वो कम बोले, और इसको भी एक चमत्कार ही माना जा रहा है। अब आप ये देखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप चाइना से क्या चाहते हैं। इस साल की शुरुआत में जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपनी हिरासत में ले लिया, अपने देश उठाकर ले आए, तब पूरी दुनिया ने यही कहा कि अमेरिका का निशाना वेनेजुएला नहीं बल्कि चाइना था, क्योंकि चाइना को ही वेनेजुएला का 75% कच्चा तेल निर्यात होता था। वेनेजुएला के बाद जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तब भी यही कहा गया कि ईरान तो बहाना है, राष्ट्रपति ट्रंप का असली निशाना चाइना है। इसलिए कहा गया क्योंकि ईरान का भी 90% कच्चा तेल जो है वो चाइना को ही निर्यात होता है, जो बाद में बंद हो गया। अब पूरी दुनिया ये पूछ रही है कि जो अमेरिका कल तक चाइना की घेराबंदी करने के लिए कदम उठा रहा था, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति आखिर चाइना के दौरे पर क्यों चले गए। और आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका बिना अपने फायदे के कुछ करता नहीं, और अगर राष्ट्रपति ट्रंप चाइना गए हैं तो जरूर कोई ना कोई उनको फायदा दिख रहा होगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला और ईरान से लड़ते लड़ते चाइना इसलिए पहुंच गए क्योंकि अमेरिका का काम अब चाइना के बगैर चल नहीं रहा है। एक तो चाइना अब अमेरिका को अपने बराबर का देश मानता है, और दूसरे चाइना के पास अमेरिका से ज्यादा पत्ते यानी कार्ड्स हैं, और इनमें भी 3 कार्ड्स सबसे पावरफुल और अहम है। पहला कार्ड यह है कि झुको नहीं बल्कि सामने वाले को झुकाओ। राष्ट्रपति ट्रंप ने चाइना पर फेंटेनिल ड्रग्स की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया और इसके लिए उस पर 145% का टैरिफ लगा दिया, लेकिन इसके बाद भी चाइना झुका नहीं, उसने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगा दिया। इसे एक ऐसा डेडलॉक बना जिसमें अमेरिका को झुकना पड़ा, चाइना ने बिना हथियार डाले अपने टैरिफ को स्थगित करा लिया और अमेरिका को यह भी संदेश दे दिया कि अब वो दिन गए जब दबाव बनाकर चाइना को झुकाया जा सकता था। टैरिफ की नीति ने अमेरिका और चाइना के बीच ऐसा टकराव पैदा किया जिसे सुलझाने के लिए ट्रंप को चाइना के दरवाजे को खटखटाना ही पड़ा और बीजिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ी। इसी दौरान चाइना ने एक और दाव खेला। उसने क्या किया, अमेरिका की सबसे कमजोर नब्स उसने पकड़ ली और दबा दी। यह दाव था रेयर अर्थ मिनरल्स का, जिसका 90% निर्यात चाइना करता है। अब इसके बिना तो अमेरिका का काम चलेगा नहीं, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स या मिनरल्स, उनके बिना ना फाइटर जेट बन सकता है, ना मिसाइल सिस्टम बन सकता है, ना ईवी बैटरीज बन सकती है, ना सेमीकंडक्टर चिप्स बन सकते हैं, ना स्मार्टफोन्स बनेंगे, ना कार्स, ना मैग्नेट्स, ना विंड टर्बाइंस, कुछ नहीं बन सकता। और अगर ये रेयर अर्थ मिनरल या रेयर अर्थ मेटल चाइना रोक दे तो अमेरिका की सांसें फूलने लगी, और अमेरिका को लगा कि चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स उसका गेम खराब कर देंगे, और इस तरह यहां भी चाइना ने बाजी जीत ली और अमेरिका को लगा कि यह मुद्दा भी बिना बातचीत के अब सुलझ नहीं सकता। तीसरा मुद्दा, चाइना का ट्रेड सरप्लस, जिसके बारे में हमने आपको बड़ी स्क्रीन पर अभी नंबर्स दिखाए। यानी चाइना पर अमेरिका की निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका उसके साथ किसी भी तरह के टकराव और संघर्ष का जोखिम नहीं ले सकता, और यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस दौरे पर बीजिंग इसलिए गए ताकि उनके 4 साल के कार्यकाल में अमेरिका और चाइना के बीच रिश्तों को सहज, रिश्तों को प्रैक्टिकल बनाकर रखा जा सके। और यहां राष्ट्रपति ट्रंप की एक कोशिश यह भी है कि वो शी जिनपिंग के सहारे अपनी साख को बचाना चाहते हैं। वेनेजुएला, ईरान, ग्रीनलैंड और नेटो के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप की इतनी आलोचना हुई है कि उनकी लोकप्रियता सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और शायद यहां राष्ट्रपति ट्रंप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मिड टर्म्स भी होने वाले हैं, उनके सामने देश के अंदर बड़े चैलेंजेस हैं, पूरे विश्व में अभी उन पर नजर सबसे ज्यादा है। जिस तरह से ये युद्ध विराम तो इस वक्त हुआ है, लेकिन वो खुद ही कह रहे हैं कि अभी ये युद्ध विराम आईसीयू में है। ऐसे में शायद यहां राष्ट्रपति ट्रंप ये सोच रहे होंगे कि शी जिनपिंग से मुलाकात करके वो अपनी साख कुछ हद तक बचा लेंगे अगर वो कुछ इंपॉर्टेंट डील्स क्रैक कर लेते हैं। और दुनिया को ये लगेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ युद्ध लड़ने में नहीं बल्कि कूटनीतिक संवाद में भी हल करने में यकीन रखते हैं, और शायद इस मामले में ऐसा ही हुआ। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि चाइना दौरे की खबरें आने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में 2% का इजाफा हो चुका है। गजब की बात है, जिस तरह चाइना ने में उन्हें रेड कार्पेट वेलकम मिला उसे देखकर अमेरिका के बहुत सारे लोग बड़े खुश हैं, बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए

अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए रेड कार्पेट बिछाना का भी एक अलग खेल है चाइना का, जो हम आपको बताएंगे कि इससे पहले किस अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए उन्होंने ये बिछाया ही नहीं था, बड़ा बवाल हुआ था। लेकिन उससे पहले देखिए, ईरान युद्ध में फंसा अमेरिका चाइना से मदद की उम्मीद कर रहा है। इसी उम्मीद के साथ डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे पर गए, लेकिन अमेरिका का साथी इसराइल यूएई के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक नई खिचड़ी पका रहा है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बारूद पर टिके युद्ध विराम में चिंगारी बस लगने वाली है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक्स पोस्ट पर एक खुली धमकी दी है, जिसमें वो सांकेतिक रूप से यूएई को निशाने पर ले रहे हैं। इस पोस्ट में वो लिख रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से एक ऐसी बात कह दी है जो ईरान की सुरक्षा एजेंसियां पिछला काफी समय से कह रही हैं। वो आगे लिख रहे हैं कि इसराइल के साथ साठगांठ माफी के काबिल नहीं। अब समझिए, ये मामला बहुत गंभीर हो सकता है। जिन्होंने इसराइल का साथ दिया उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। क्या ये वाकई एक नई चिंगारी बन सकती है? क्योंकि युद्ध के दौरान अगर इस बात इस तरह की धमकी दी गई तो लोग इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन युद्ध विराम के बाद अब्बास अराक्ची की इस धमकी में यूएई के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है। यूएई के खिलाफ ईरान का यह गुस्सा इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से आए उस बयान पर है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन रोरिंग लायन के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने गुप्त रूप से यूएई का दौरा किया था। इसराइल के प्रधानमंत्री दफ्तर ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि ऑपरेशन रोरिंग लायन के दौरान गुप्त रूप से यूएई गए थे। और आप समझिए, मतलब ये बड़ी गंभीर खबर है, क्योंकि नेतन्याहू का अगर यूएई में एक मुस्लिम देश में दौरा हो रहा है, वो भी ऐसे वक्त पर जहां पर शिया मुस्लिम भी रहते हैं, वहां उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद इसराइल और यूएई के संबंध पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। अब ये प्रधानमंत्री ऑफिस ने पोस्ट तो कर दिया था, इसराइल के प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से आए इस बयान के आने के बाद यूएई की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईरान ने तुरंत इस बयान को नया हथियार बना लिया और दावा कर दिया कि अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर थोपे गए युद्ध में यूएई का भी हाथ है। वो लगातार देखिए, सबसे ज्यादा हमले वैसे भी यूएई पर किया है ईरान ने, और ऐसे में ईरान को विलन बनाने में लगातार बना हुआ है। सितंबर में होने वाली ब्रिक्स समिट से पहले दिल्ली में विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई है। इसमें अब्बास अराक्ची ने यूएई के प्रतिनिधि को इसी मामले पर बड़ी धमकी दी। अब्बास अराक्ची के अपने टेलीग्राम अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। उनके मुताबिक उन्होंने यूएई को कहा है कि इसराइल के साथ उनका गठबंधन उन्हें बचा नहीं पाएगा, इसीलिए ईरान को लेकर अपनी पॉलिसी बदल दो। ईरान के इस रुख के बाद यूएई काफी दबाव में है। ईरान की धमकियों के बाद यूएई के विदेश मंत्रालय ने तुरंत एक बयान जारी किया है, और इसमें कहा गया कि इसराइल के पीएम ऑफिस का दावा पूरी तरह से गलत है और बेंजामिन नेतन्याहू ने कोई दौरा यूएई का किया ही नहीं था। मतलब नेतन्याहू का दफ्तर पोस्ट कर रहा है कि वो गए थे यूएई, यूएई कह रहा है कि नेतन्याहू वहां आए ही नहीं। आप आलम देखिए। और यही नहीं, यूएई ने किसी भी इजरायली सैन्य प्रतिनिधिमंडल का स्वागत नहीं किया है, ये बात भी साफ की गई। यूएई ने गुप्त यात्रा का दावा खारिज किया और कहा कि अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजरायल के साथ उसके संबंध पहले से ही सार्वजनिक मंच पर है। आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि हर साल बोर्ड परीक्षाओं में लड़कों से आगे रहने वाली ज्यादातर लड़कियां समाज के ताने बाने से हार क्यों जाती है। हर साल ये खबर आती है कि बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियों ने लड़कों से ज्यादा मार्क्स कमाए, ज्यादा मार्क्स अंकित किए। पिछले 27 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है, 27 सालों में जब लड़कियां बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल ना आई हो, लड़कों से ज्यादा मार्क्स ना लेकर आई हो। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो साल 2017 से लड़कियां ही 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप कर रही हैं, और ना सिर्फ टॉप कर रही हैं बल्कि लड़कियों के पास होने का प्रतिशत हर बार लड़कों के मुकाबले 6 से 9% ज्यादा रहता है, और इस बार भी ये रिकॉर्ड बरकरार रहा है। इस बार सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में 88.86% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि लड़कों का नतीजा रहा है 82.13%। ये अंतर 6.73% का है, जो 2019 के बाद से सबसे ज्यादा है। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे देश के ज्यादातर अखबारों और न्यूज चैनल्स में यही हेडलाइन नजर आ रही है कि लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया। लेकिन आज हम एक गंभीर मुद्दा आपके सामने उठाना चाहते हैं।
इस हेडलाइन से आगे बढ़ना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि हमारे देश में हर साल लड़कियां लड़कों को पीछे छोड़कर पढ़ाई में तो अव्वल आ रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बाद इन लड़कियों के साथ क्या होता है? क्या कभी कोई ये पूछता है कि इनमें से कितनी लड़कियों ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में दाखिला लिया? कितनी लड़कियों को विदेशों में जाकर पढ़ने का मौका मिला? कितनी ही लड़कियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कितनी लड़कियों को नौकरी उसके बाद मिली? जब आप आंकड़े देखेंगे तो एक कड़वा सच हमारे समाज का आपको नजर आएगा, और वो सच ये है कि स्कूलों में तो लड़कियां लड़कों से आगे निकल जाती हैं, लेकिन इसके बाद कई लड़कियों को उनके परिवार यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, उन्हें नौकरी करने का मौका नहीं देते हैं, उनसे शादी करके घर संभालने के लिए कह दिया जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 में उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या 47.8% थी, जबकि लड़कों की संख्या 52.2%। यानी यहां पर वो माजी मार ले जाते हैं क्योंकि उनको मौके ज्यादा मिलते हैं, 5% से ज्यादा लड़कों ने प्रवेश लिया। इसमें करीब 5% का अंतर था, और यह अंतर भी तब था जब उस साल 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में पास होने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा थी। सोचिए, ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों में उच्च शिक्षा हासिल करने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन यह भी सच है कि आज भी इस मामले में लड़कियां जो हैं वो लड़कों से पीछे हैं। आप 2019 के आंकड़े को देख लीजिए, 2020 के आंकड़े देख लीजिए, 21 के आंकड़े देख लीजिए, हर बार लड़कों के मुकाबले उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों का दाखिला कम होता है। और जानते हैं कम क्यों होता है? जब लड़कियां 12वीं कक्षा पास करती हैं तब उनकी औसत उम्र 18 साल होती है, जो कानूनी रूप से लड़कियों को शादी के लिए बालिग बना देती है। कई परिवार सोचते हैं कि अगर सही उम्र में उन्होंने अपनी लड़कियों की

महीने की उम्र में हो जाती है, सोचिए। जबकि इसी जगह लड़कों की शादी का औसतन उम्र क्या है, 25 साल। लड़कियों पर शादी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि 25% मामलों में उनकी शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है, और ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं। और इसी वजह से बहुत सारी लड़कियां स्कूलों में तो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती हैं, लेकिन इसके बाद का सफर उनके लिए बहुत कठिन होता है। और ये स्थिति हमारे कामगारों की संख्या में भी दिखती है। भारत में 15 से 59 साल के कुल कामगारों की संख्या है 59% होती है, लेकिन जब आप इसमें महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी देखते हैं तो देश के पुरुषों में 79.1% 79.1% नौकरी या कोई ना कोई काम करते हैं, जबकि महिलाओं में सिर्फ 40% घर के बाहर जाकर काम कर पाती है। यानी नटशेल में कहानी यह है कि स्कूलों में लड़कों को पीछे छोड़ने वाली लड़कियां आगे कभी बाजी नहीं मार पाती, और बहुत सारी लड़कियों को घर की रसोई में झोंक दिया जाता है और उनकी जिंदगी को वहीं पर सीमित कर दिया जाता है। पिछले हफ्ते भारत सरकार का एक नया सर्वे आया जिसमें बताया गया कि हमारे देश में महिलाएं हर दिन औसतन 4 घंटे 49 मिनट घर का काम करती है। 4 घंटे 49 मिनट घर का सारा काम। रहते कितने लोग हैं घर में, एक पूरा परिवार रहता है, लेकिन 4 घंटे 59 मिनट काम कौन करता है, सिर्फ महिला। जबकि पुरुष 1 घंटे 28 मिनट ही काम करते हैं। यह इतना बड़ा अंतर इसलिए है क्योंकि महिलाओं से आज भी समाज यही उम्मीद करता है कि वो घर संभाले, हर हाल में घर को संभालेंगी, बच्चों का पालन पोषण करेंगी, खाना बनाएंगी, अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छी बेटी बनकर दिखाएंगी। जबकि हकीकत में अगर इन सभी महिलाओं को ईमानदारी से मौके मिले तो ये बहुत आगे निकल सकती हैं, और अभी जो लड़कियां सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं में बाजी मारती हैं वो उच्च शिक्षा में भी लड़कों से आगे निकल सकती हैं, नौकरियों में आगे निकल सकती हैं। महिलाओं और पुरुषों के बीच जो अंतर है वो हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो पुरुषों को सोचना होगा कि वो घर में कितना काम करते हैं, वो बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, वो कितने अच्छे पति, कितने अच्छे बेटे, कितने अच्छे पिता बनते हैं। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा समाज इस बदलाव के लिए तैयार है। अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो आप एक बार सिर्फ इन आंकड़ों को देख लीजिए। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए जिनमें कुल 1019 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, लेकिन जानते हैं इनमें से कितनी महिलाएं इन चुनाव में जीत दर्ज कर पाई। हम महिलाओं की सशक्तिकरण की इतनी बातें करते हैं, लेकिन जब बारी उन्हें वोट देकर जिताने की आती है तो सुनिए, सिर्फ 78 महिलाएं चुनाव जीत पाएं, जिसका मतलब है कि हर 10 में से 9 महिलाएं जो चुनाव के लिए खड़ी हुई थी वो हार गई। सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहती है, लेकिन इन चुनाव में 8% महिलाएं भी चुनाव नहीं जीत पाई, और हमारे समाज ने महिलाओं पर भरोसा ही नहीं किया। अगर वो किसी रसूखदार राजनीतिक परिवार से है, किसी की बहू, बेटी या सास कुछ भी है, तो ऐसे में वो राजनीतिक परिवार उनके पीछे रहता है तो शायद वो जीत भी जाए, और इसीलिए पार्टियां ऐसी महिलाओं को टिकट देती है। लेकिन अगर आम महिलाएं खड़ी होती हैं तो उन पर हम भरोसा क्यों नहीं करते। इससे आप ये समझ पाएंगे कि स्कूलों में लड़कों से आगे रहने वाली लड़कियां बाद में समाज के ताने बाने से हार क्यों जाती है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस दुनिया में सभी के असली चेहरे ना दिखे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि कुछ लोगों की आप बहुत इज्जत करते हैं। नमस्कार।

0: factors.
1: क्या ईरान युद्ध नए सिरे से भड़कने वाला है और इसलिए भारत खुद को बड़े संकट की चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन युद्ध के इस शोर में महंगाई धीरे धीरे आप पर, हम पर, आम आदमी पर शिकंजा कस रही है। हमारे देश को पता है कि यह कठिनाई आ रही है, जिसे रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सतर्क आपको और हमें देश को कर रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि हम सबको मिलकर बचाएंगे और हम सब मिलकर बचत करेंगे तभी इस महंगाई से बच पाएंगे।
2: पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारत भी इससे अछूता नहीं है। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम

0: को प्राथमिकता दी जाए। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। ये संकट किसी भी तरह हमारी प्रगति को, हमारे विकास को प्रभावित न करे।
1: जिस संकट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हफ्ते से पूरे देश को खबरदार करते आ रहे हैं, वो अब थोक में आपके ऊपर आने लगा है। संकट को समझ लीजिए, खबरदार हो जाइए, क्योंकि अप्रैल के महीने में थोक महंगाई दर दो गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई, जो मार्च में 3.88% पर थी। ये 42 महीने में सबसे ज्यादा है। प्राइमरी आर्टिकल यानी कच्चे सामान की महंगाई 6.36% से 9.17% हो गई। वहीं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की महंगाई भी 3.39% से 4.62% पहुंच गई। मतलब है कि फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान की लागत भी बढ़ रही है। कोर महंगाई यानी खाने पीने की चीजों और ईंधन को छोड़ बाकी वस्तुओं की महंगाई भी बढ़कर 5% पर पहुंच गई, जो 43 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे ये संकेत मिलने लगा है कि महंगाई का दबाव अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं, बल्कि बाकी सेक्टर में फैलने लगा है। और महंगाई का यही संकट धीरे धीरे आपकी जेब की चारों तरफ जकड़ने लगा है। वो आपके घर के सिलेंडर से लेके रेस्टोरेंट ढाबे के सिलेंडर तक पहले दबे पांव पहुंचा, जो सबसे पहले महंगे हो चुके हैं। जिसने जनता की जेब को ढीला करना मार्च के महीने से शुरू किया, मई तक ढीला करता आया।
2: सिलेंडर का रेट ऑलरेडी इतना हाई रहेगा, तो फूड एंड बेवरेजेस का भी थोड़ा हमारे को इश्यूज रहा करेगा।
3: क्या ये आपके बजट में रहेगा बाहर आना, जैसे आप पहले यूजुअली बाहर आते थे?
4: बट ऑब्वियसली वो कम ही हो जाएगा, हमारा बाहर खाना वगैरह
3: कम करना पड़ेगा,
4: हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
1: अब महंगाई का वो संकट काल आम लोगों को सुबह से परेशान करने जा रहा है, जहाँ दूध की थैलियों का वजन उतना ही रहना है। बस आपकी जेब 2 रुपए प्रति लीटर अमूल से लेकर मदर डेयरी तक के दूध खरीदने पर ढीली होने लगी है।
5: बहुत गलत हुआ, बढ़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो गरीब है वो कैसे खाना खाएगा।
6: जो बिल्कुल गरीब तबका है उसको सरवाइव करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए जद्दोजहद करता है।
7: मुश्किल तो है हर चीज में, हर चीज महंगी हो रही है प्रॉब्लम, और दूध उसके बाद जरूरत की चीज है, बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है।
8: महीने का बजट भी इसी से निर्धारित होता है। अब 2 रुपए का बढ़ने का मतलब है कि 60 रुपए, तो उसके आधार पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि है ना, इतनी जल्दी जल्दी ना बढ़ाएं।
9: ओवर टाइम इस पे बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली जो लोग मेहनत करते रोज की, उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ता है।
1: मुंबई में तो सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। क्या आप जल्द ही दूसरी जगहों पर सीएनजी के दाम बढ़ने की आशंका है? और तब थोक महंगाई दर अगर 42 महीनों में सबसे ज्यादा हो जाती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियां बढ़ी हुई लागत को जल्द ग्राहकों पर डालेंगी।
0: विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है, और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है, और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है।
10: अब गाड़ियों को चलाने वाले तेल की बात अब कर लेते हैं। आपकी हमारी सबकी चिंता पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर है, क्योंकि ये जैसे ही बढ़ेंगे महंगाई क्लस्टर बॉम्ब की तरह फूटेगी। हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से लेकर आरबीआई के गवर्नर तक के बयान इसी संकट की तरफ संकेत भी दे चुके हैं, और इसीलिए जनता के मन में तेल के दाम को लेकर आशंका बनी हुई है।
11: अच्छा, तेल का रेट जैसे बढ़ रहा है तो बढ़ना तो चाहिए, लेकिन अभी तक तो मुझे उम्मीद नहीं है। क्या कहते, टीवी में मैं भी देखता हूँ, टीवी में नहीं बताया जा रहा है जो रेट बढ़ेगा। सब्सिडी आया था तो गवर्नमेंट अपने जेब से दिया है, तो अब क्या भरोसा बढ़ा दे।
12: अगर जो स्थिति बनती है कि डीजल या पेट्रोल का दाम बढ़ाया जाए, तो आपके हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए?
13: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
12: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
13: गरीबों पे मार होती है।
12: ऐसे भारत की, देश की, हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत रहनी चाहिए। कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते भी हैं तो देश के लिए ही हैं, हमारे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि सरकार अगर रेट बढ़ा रही है तो कहीं और लेके जा रही है उस पैसे को, वो समाज के लिए, देश के लिए काम आ रहा है। और पीछे जो उन्होंने इतने सालों से रेट बढ़े नहीं, हमारे 94 रुपए कुछ पैसे चल रहे हैं, आज भी वही है। और आज के समय में अगर देश के ऊपर कोई संकट आया तो हम देश के साथ खड़े हैं।
13: पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो देखो सारी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा उसको, तो मिडिल क्लास लोग हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत फर्क पड़ने वाला है इस चीज से।
14: अभी तो स्थिति सामान्य है बिल्कुल, अभी किसी तरीके का स्टॉक या इस तरीके से मतलब कोई पैनिक या कुछ नहीं है लोगों में, लोगों को समझ है कि हाँ ठीक है लोग आ रहे हैं और अपना जितना डेली रूटीन में लेते हैं उतना ही ले रहे हैं। सप्लाई में तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई तो जितनी डिमांड मतलब एज पर सेल के हिसाब से डेली सेल के उतनी सप्लाई हमारे पास आ रही है।
15: देखिए देश हित के लिए लिया गया फैसला है और इस फैसले का पूर्ण समर्थन है, और मैं किसी पार्टी विशेष के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मोदी जी ने अपने अपने पर्सनल निजी इसके लिए बढ़ाया है। बाकी बहुत सारे समृद्ध देश हैं जिनका ऑलरेडी उन्होंने बहुत पहले बढ़ा चुका, युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने पेट्रोल के कीमतों में बहुत उछाल मार दिया है, हमारे देश में बहुत देर से हुआ है।
16: प्रधानमंत्री बोले हैं कि कुछ कटौती करके चले, अगर ऐसा होता है तो बढ़ भी नहीं सकता है,
17: बढ़ नहीं सकता।
18: मोदी जी हमारे देश के लिए ही कुछ अच्छा सोच करके किए होंगे।
19: सरकार ने अभी तक कंपनियों को रोक रखा है रेट बढ़ाने से, एज पर अगर कंपनी की कैलकुलेशन लगाई जाए तो दे आर बेयरिंग अ लॉस ऑफ अराउंड 20 रुपीज ऑन डीजल एंड 30 रुपीज इन पेट्रोल।
20: प्राइस के लिए देखिए अगर मान के चलिए कुछ बढ़ भी जाता है तो जनता मजबूरन तो लेना ही है क्योंकि जरूरत का चीज है, उससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मिलना चाहिए,
21: मिलना चाहिए
20: सभी को।
21: सभी को मिलना
20: जी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास।
22: जरूरत रहेगा तो आदमी ड्यूटी नहीं करेगा, ड्यूटी नहीं जाएगा, बताइए ड्यूटी तो जाना अनिवार्य है, ड्यूटी नहीं जाएगा पेमेंट नहीं मिलेगा, घर में बैठ के थोड़ी खाएगा लोग। मोदी जी तो कहीं रहा है, लेकिन मोदी जी तो कहेंगे तो ऑफिस में ऑफिस वाले को बोले कि हाँ कष्ट नहीं बोलाए कर्मी को, अपना घर से ही काम करवाए तब ना।
23: भैया बहुत बिक्री हो रही है, वो लाइन लगती हो रही है, और जहाँ 5,000 बिकता था 8,000 बिक रहा है,
24: ज्यादा आ रहे हैं, ये सोच
23: बढ़ा रहे, टंकी फुल करा रहे हैं पूरी।
25: जिस तरीके से लड़ाइयाँ और जिस तरीके से वो चल रहा और मतलब कंपनी को नुकसान उठा के बेच रही है माल, उसके हिसाब से तो हम लोग नहीं बता सकते ना, लेकिन ये कि जैसा लग रहा हो सकता है कुछ बढ़ जाए।
10: खबर नीट पेपर लीक कांड की। नीट लीक कांड में अब सवाल यह है कि कौन है वो बड़ा आदमी जिसका नाम अपने घर के 5 बच्चों को डॉक्टर बना देने वाले दिनेश बिवाल ले रहा है, कौन है इस पेपर लीक कांड का वो बड़ा आदमी जिसका चेहरा छिपा हुआ है, जिसके कारण से आरोपी के घर वाले ही दावा करने लगे हैं कि हर साल देश में नीट का पेपर लीक होता रहा है।
1: देश के 22,89,000 परिवारों बच्चों की उम्मीदों पर नीट का पेपर लीक करा के सरकार के दावों पर पानी फेरने वाला, जिसे बीजेपी के विधायक राजस्थान में अपनी पार्टी का ऊर्जावान कार्यकर्ता बताते आते हैं, आखिर वो किन बड़े लोगों की बात करने लगा, कौन है वो बड़े लोग जब तक नीट पेपर लीक कांड में बचे हुए हैं? क्या कोई मंत्री, क्या कोई एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अफसर, क्या कोई बड़ा नेता, क्या कोई बड़ा कोचिंग चलाने वाला, क्या कोई बड़ा नौकरशाह, कौन है वो बड़ा आदमी जिसको बचाने का दावा पेपर लीक कराने के आरोप में सीबीआई की गिरफ्त में आने के बाद दिनेश बिवाल ही नहीं करता, बल्कि जब इस पूरे मामले को आज तक पर सबसे पहले पड़ताल करके रिपोर्ट करने वाले संवाददाता शरद कुमार दिनेश और मांगीलाल के घर पर पहुंचकर आगे जानना चाहते हैं, तो पहले तो आज तक का कैमरा, आज तक का माइक, आज तक संवाददाता को देखकर पेपर लीक कराने के आरोपी का परिवार उन्हें पीछे हटाने लगता है। क्योंकि इस परिवार को लगता है कि आज तक पहुंच गया है तो फिर कोई ना कोई बड़ी खबर पेपर लीक खुलासे में सामने लेकर आएगा, और यही होता है जहां पेपर लीक के आरोपी भाइयों की पत्नियां कहने लगती हैं असली मास्टरमाइंड कोई और है।
26: कितना दिन से पेपर लीक हो रहे हैं और आज दुश्मन बन रहे हैं, कई साल दो बच्चा पेपर दिया जाए, दो बच्चा पेपर देर के नहीं, पेपर में भी
27: 2024 में भी लीक
26: होगा, मारो बेटो पहली बार नीट को पेपर दियो जाए, नीट का पेपर में पहली बार नहीं कोई मारा बेटा को पसा पागल आग रहा चाहे खेगा, मैं दिए खेंगे
28: आपके बेटी भी दिया
26: मेरे बेटा दिया है मेरा नीट का पेपर, उसके
2: इस बार बेटा दिया है ना?
26: हाँ मेरा बेटा पेपर दिया नीट का, पर मेरे बेटे के इतने मार्क्स नहीं आए और किसी ने फंसा दिया मेरे आदमियों को,
27: हमारे किसी ने फंसा
26: दिया है हमारे बच्चों ने पिछली बार 3-4 बच्चों ने
27: किसी की शादी
26: से सारा उनको छोड़ रहा पाचा पड़ गया सारा इतना पेपर में होगा।
10: ये बात सच है कि रीट पेपर लीक के पीछे एक बड़ा आदमी है, क्योंकि अब तक सीबीआई ने जिनको पकड़ा या तो जो सीधे जांच के दायरे में हैं उन्हें पकड़ा है, जैसे अहिल्यानगर से एक धनंजय लोखंडे पकड़ा गया लेकिन वो कोई बड़ा आदमी नहीं है, नासिक से जो पकड़ा गया वो भी कोई बड़ा आदमी नहीं है, जितने भी लोग पकड़े गए वो बड़ा आदमी नहीं है, तो आखिर कौन है वो बड़ा आदमी?
3: दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल जयपुर के पास रहने वाले ये दो भाई प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन डीलरी करते करते ये दोनों दावा है कई वर्षों से नीट के पेपर लीक की भी डील करने लगे, जिसकी जांच में जुटी सीबीआई की टीम तफ्तीश करने इन दोनों के घर तक पहुंचती है, गाड़ी तक की जांच करती है।
4: नीट पेपर लीक 2026 में गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल दिनेश और विकास के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं किस तरह से घर में पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है। यहां आसपास जो इनके घर में गाड़ियां थी उन गाड़ियों की भी तलाशी ली गई है, इसके अलावा भी जो सामान है उन सारे सामान की भी तलाशी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है। अब इस तरह से निकल रहे हैं, क्या आप लोगों ने देखा, कुछ पाया यहां? कुछ आप लोगों ने जांच में
3: सीबीआई के अफसर कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत लेकर बिवाल ब्रदर्स के घर से निकलते हैं, वो घर जो केवल आरोपियों का घर नहीं बल्कि इस घर से इतने नीट पास करने वाले बच्चे एक साल में निकल गए कि शंका पैदा हो गई है कहीं हर साल ये पेपर लीक करा के तो खेल नहीं करते रहे। हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। गिरफ्तार मांगीलाल बिवाल के बेटे विकास को पिछले साल 2026 की नीट परीक्षा पास करके सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति ने भी नीट परीक्षा पिछले साल पास कर ली और मेडिकल कॉलेज में दौसा के दाखिला ले लिया। इन दोनों का तीसरा भाई जो जीवित नहीं, उस घनश्याम बिवाल की बेटी पलक बिवाल को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नीट निकाल के एडमिशन 2025 में मिल चुका है। दूसरी बेटी सानिया बिवाल को मुंबई के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और गिरफ्तार दिनेश बिवाल की बेटी गुंजन को वाराणसी के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। यानी 5 बच्चे इसके घर से नीट निकाल लेते हैं, सुनकर ही चौंक जाना पड़ता है कि इतना पढ़ाकू परिवार था क्या। जहां दिनेश बिवाल ने सोशल मीडिया तक पर डाल दिया कि उसके परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि उसके परिवार के 5 बच्चों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ, लेकिन जब इसी परिवार के इतने टॉप क्लास की पढ़ाई करने वाले बच्चों के बारे में आज तक संवाददाता शरद कुमार पूछते हैं तो इनकी माएं कुछ भी जानकारी में होने से इनकार करने लगती हैं।
2: बेटी कहाँ पढ़ती है अभी?
26: पढ़ रही है हमारी तो कौन कौन सी, मैं पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ जो मैं कौन कौन सी बता दूँ क्या है क्या नहीं है।
2: तो हमने सब पढ़ाया मेहनत करके,
26: मेहनत पढ़ाया मैं अनपढ़ गाँव और मैं पढ़ी लिखी कौन है, मैं
2: कहाँ पढ़ रही, ये तो पता होगा।
26: पढ़ रहा है जो मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं नाम भी पढ़ लू ना, कहाँ पढ़ रही जवा।
2: अरे जग शहर का नाम तो पता होगा,
26: शहर का नाम भी पता होगा, मैं चले आऊँ ना मेरा आदमी से ही मिलवा, कोड़ा रख रखा चाहे कोड़ा नहीं रख रखा, मेरा बेटा ना कोड़ा रख रखा चाहे।
2: आपका बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ता है ये तो बता सकती है?
26: बात क्या बात, मैं वो पढ़ी लिखी हूँ ना तो मैं कहीं बताऊँ भी, कोचिंग में पढ़ रहे चाहे वो कोचिंग में पढ़ रहे
2: चाहे। ये बताओ ये गुंजन कहाँ पढ़ती है?
26: गुंजन कहाँ पढ़ती है कौन सी, मुझे पता नहीं है ना कौन सी जगह पढ़ती है गुंजन।
2: MBBS कर रही है ना?
26: नहीं MBBS कुछ नहीं कर रही मेरी तो।
2: कहाँ कर रही है?
26: क्लियर ही कौन हूँ माखा बच्चा को,
2: विकास कहाँ पढ़ता है?
26: विकास को मुझे कहीं पता, कोड़ा पढ़ा मैं पढ़ी लिखी हूँ तो बताऊँ ना, ये पढ़ा ये समझ वाला बताओ।
2: प्रगति कहाँ पढ़ती है?
26: मुझे कुछ ही पता नहीं है मेरे बच्चों का क्या,
2: कहाँ पढ़ती है
26: कुछ पता नहीं है, किसी जगह पढ़ती है वो कौन सी जगह, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं बच्चा को यहाँ फड़ारगंज में चले जाऊँ ना, मैं खुद ही चल जाऊँ आदमी से मिलवा,
2: बताता होगा ना किस शहर में जाता है।
26: हाँ जाता है तो इधर ही चल जाता है, जयपुरपुर की तरफ इधर ही चल जाता है हमारे तो, ये सारा ही गाँव है आसपास का कशा कशा गाँव।
2: अच्छा, ये पढ़ते कहाँ पढ़ते?
26: हाथ जोड़ा था भाई, मैं माथा का हाथ जोड़ा था, मन परेशान मत करो दे।
3: तो क्या ये जो राजस्थान का बिवाल परिवार है इसके पीछे असली खिलाड़ी बड़ा आदमी कोई और है? क्योंकि ये लोग हर साल पेपर लीक करा लेंगे इतनी इनकी ताकत नहीं दिखती। दावा ये है कि मांगीलाल और दिनेश तो नीट पेपर लीक में कोरियर का काम करते थे, जहां दिनेश ने अब की बार अपने बेटे ऋषि के लिए पेपर लीक कराया लेकिन उसका बेटा 600 नंबर का लीक पेपर पाकर भी आंसर की से जांचने पर पता चला 107 नंबर का पेपर ही कर पाया था।
5: तो सरकार जिस तरह से सख्ती से अभी काफी सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं जो करनी भी चाहिए, एक हमको ना एग्जांपल सेट करना चाहिए कि इस तरह का काम करोगे तो देश आपको छोड़ेगा नहीं।
10: और अब बात तो आंधी तूफान की, जिसने यूपी में बहुत कहर बरपाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से यूपी में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। भीषण आंधी में सड़कों से पेड़ उखड़ गए, गाड़ियों के ऊपर गिर गए, घरों की दीवारें ढह गईं, टिन शेड उखड़ गए और लगभग 100 लोगों की मौत हो गई।
0: कहीं तूफान में इंसान उड़ गया, कहीं पेड़ जमीन से ही उखड़ गए, कहीं पेड़ घर पर गिर गया, कहीं पेड़ के नीचे गाड़ियां फंस गई। यह है उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली का कहर। बुधवार को यूपी में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। न कोई चेतावनी, न कोई पहले से जानकारी, न कोई अलर्ट, सीधा आंधी तूफान आया, बिजली गिरी और 104 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने से बुधवार को कुल 104 लोगों की मौत हुई। इनमें से 4 लोग बिजली गिरने से मारे गए, 52 लोग घायल भी हैं और 98 घर भी टूटे हैं। इसके अलावा 130 जानवरों की भी जान गई है। और ये तो सरकारी आंकड़े, तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति इससे कहीं ज्यादा बदतर है। सबसे बड़ी बात कि मॉनसून से पहले का आंधी तूफान इतनी तबाही लेकर आएगा किसी ने सोचा नहीं था। लोग हर रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे, तूफान आया और कई लोगों की जान ले ली। बदायूं में भीषण आंधी तूफान से अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की मौत हुई है। भदोही जिले में अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की मौत हुई। मिर्जापुर में भी आंधी तूफान की वजह से पूरे जिले में 17 लोगों की मौत हुई। फतेहपुर में 5 महिलाओं समेत कुल 11 लोग मारे गए। प्रयागराज में कल आए आंधी तूफान की वजह से कुल 21 लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा 1-2 मौतें तो ज्यादातर जिलों में हुई ही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं बरेली से। आंधी में छत उड़ जाती है, तिरपाल उड़ जाता है, कपड़े उड़ जाते हैं, पेड़ भी उखड़ जाता है, लेकिन इंसान उड़ते शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। बरेली में कल जो तूफान आया उसमें नन्हे मियां उड़ गए। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तब से ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये कोई AI वीडियो तो नहीं है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन हकीकत यही है कि बरेली में नन्हे मियां तूफान से बचने के लिए बारात घर की छत पकड़े हुए खड़े थे। तूफान इतना तेज था कि छत ही उड़ गई और नन्हे मियां फिल्मी स्टाइल में 50 फीट ऊपर हवा में उछल गए और उछलकर एक खेत में जा गिरे। इस हादसे में नन्हे मियां बुरी तरह से घायल हो गए, उनके हाथ और पैर में चोट आई है।
6: बहुत तेज लकूड़ा आ रहा था, लकूड़े के साथ में ऊपर मतलब 30-40 फीट ऊंचा चले गए। हमें ना पता कहाँ गिरे, क्या हुआ, कम से कम 50 फीट दूरी से।
7: नहीं तो आपने उसको पकड़ रखा था, क्या था?
6: हाँ मतलब पकड़ा नहीं था, मतलब गाड़ी के जोड़े खड़े खड़े हम बाद रस्सी पड़ी हुई थी।
7: अच्छा।
6: हाँ रस्सी पकड़ी थी।
0: पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। उन्नाव में तेज आंधी के चलते एक नीम का पेड़ उखड़ गया और कार के ऊपर गिर गया। कार के अंदर बैठे शख्स ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। पेड़ गिरने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बदायूं में यह आंधी तूफान जानलेवा रहा। यहां अलग अलग स्थानों पर 2 मासूमों समेत 6 लोगों की मौत हुई है। आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और दीवारें टूट कर गिर पड़ी, जिसके नीचे दबकर 2 मासूम बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हुई। एक ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर उत्तराखंड के बाजपुर से बुलंदशहर जा रहा था। बदायूं के बिसौली में तेज आंधी से सड़क किनारे यूकेलिप्टस का पेड़ टूटकर ट्रक पर आ गिरा। इसके नीचे दबकर 29 साल के ट्रक ड्राइवर योगेश की मौत हो गई। पुलिस ने पेड़ को कटवाकर जैसे तैसे उसके शव को बाहर निकलवाया। यही हाल भदोही का भी रहा। यहां पूरे जिले में कुल 16 लोगों की मौत हुई है। एक महिला का पूरा परिवार इस त्रासदी की जद में आ गया। महिला के घर पर पेड़ गिरने के कारण उसकी और उसकी 2 मासूम बेटियों की मौत हो गई। एक बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है। पति मुंबई में काम करते हैं।
10: इंदौर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। हल्दी की रस्म के दौरान दुल्हन को चेहरे और शरीर में तेज जलन शुरू हुई। कुछ ही देर में चेहरे पर लाल धब्बे और सूजन बढ़ने लगी। परिजन तुरंत दुल्हन को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। जांच में आशंका व्यक्त की गई कि मिलावटी हल्दी ने जानलेवा रिएक्शन कर दिया। इलाज के दौरान दुल्हन की मौत हो गई।
1: मध्य प्रदेश का खरगोन, दुल्हन की हल्दी का कार्यक्रम चल रहा है। हंसी खुशी संगीत के बीच अचानक दुल्हन राखी परेशान होने लगती है। चेहरे हाथ पैर पर घर वालों दोस्तों की तरफ से लगाई जाती हल्दी से उसके चेहरे पर जलन तेज महसूस होती है, वो दौड़ती है। हालत ये हो जाती है कि दुल्हन को इंदौर के अंबाई अस्पताल में ले जाकर तुरंत भर्ती तक कराना पड़ता है। लेकिन क्या मिलावटी हल्दी की वजह से दुल्हन की मौत हो गई? क्या हल्दी की रस्म में मिलावटी केमिकल वाली हल्दी जान ले रही है? क्या हल्दी की रस्म में जहरीले केमिकल की मिलावट अब मार दे रही है? इस सवाल की वजह 22 साल की ये दुल्हन है। ये इसकी शादी की तैयारी से पहले की तस्वीर है, जिसकी शादी में हल्दी की रस्म के दौरान हल्दी लगाने से दावा है इतनी भयानक एलर्जी हुई कि उसे इंदौर के अस्पताल में जब तक भर्ती कराया गया हालत बिगड़ चुकी थी। चेहरे पर सूजन आने लगी, हाथ पैर में लाल धब्बे पड़ने लगे।
8: सर उसके हल्दी लगी हुई थी और अचानक से कुछ ऐसा हुआ तो गले में सूजन आ गया, मुंह सूज गया उनका होठ। उसके बाद में लड़के से बोला भी नहीं जा रहा, तो फिर अब दुल्हन थी सर, सब घबरा गए। हल्दी ये बाजार में से लेके आए थे सर, बेचने वाले आए थे तो उसके लिए ले ली थी, तो उसी से गड़बड़ हो गई सर। अब
9: एलर्जिक रिएक्शन था काफी उसके शरीर में, अर्टिकेरिया और होठों पे भी कुछ स्वेलिंग वगैरह थी। और जब उसकी हिस्ट्री निकाली गई तो ये पता चला कि उसको कोई शादी का उनके यहाँ प्रोग्राम था, उसमें हल्दी लगाई गई थी, जिसके कारण उसके कुछ ही देर के बाद उसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ और उसको लाके वार्ड में भर्ती किया था। और चूंकि उसके साथ साथ उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी तो प्रिकॉशनरी हम लोगों ने उसको आईसीयू में रखा था। उन्होंने बाजार से कुछ हल्दी खरीदी थी, हो सकता है उसमें किसी तरह का कोई केमिकल्स कई बार हल्दी को कलर बढ़ाने के लिए डाल के रखते हैं, उसके कारण ये एग्जैजरेटेड रिएक्शन उसके लिए एलर्जिक रिएक्शन हुआ।
1: इसके बाद दावा है कि स्थिति न सुधरने पर घर वाले एक दूसरे अस्पताल ले गए और बाद में फिर राखी की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि जान चली गई।
11: जहाँ जहाँ भी सोर्सेस प्राप्त हुए वहाँ से नमूने हमने संग्रहित किए गए और लेबोरेटरी प्रयोगशाला को भेजे गए। हल्दी लगाने से ऐसा रिएक्शन हुआ ऐसा बता रहे, बाकी हमने भी जांच करी है और हमने लेबोरेटरी सैंपल के लिए भेज दिए।
1: 14 दिन में जांच से पता चलेगा राखी की मौत किस तरह की मिलावटी हल्दी की वजह से हुई। क्या केवल मिलावटी केमिकल वाली हल्दी इसकी वजह है या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है? अब सवाल आपसे जुड़ा है, हल्दी का इस्तेमाल खाने में होता है, हल्दी का इस्तेमाल शादियों में रस्म निभाने में होता है, तो क्या हल्दी अगर मिलावटी है, केमिकल वाली है, तो रिएक्शन से लेकर जानलेवा तक हो सकती है?
12: खाने की और यदि चेहरे पे भी लगा रहे हैं तो मेरा तो सुझाव यही है कि जो खाने की हल्दी है और ब्रांडेड है वो बारीक हल्दी उसका ही उपयोग करना चाहिए। ड्रेस एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत कई बार जो है जो हल्दी है जो पैक करके दे रहे हैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव या अन्य रंग या गुलाल जैसा बना के भी उसको किया सकता है, उससे काफी हानि हो सकती है। वो जो हल्दी होगी या तो उन्होंने कहीं लूज हल्दी जो है यूज किया होगा बाजार में जो खुलेआम ठेले पे बिकती है। देखिए हल्दी को यदि हम पानी में घोल के कुछ देर रख देते हैं तो आप देखेंगे कि जो मूल हल्दी है वो पानी में घुलती नहीं है, जो हल्दी जो है नीचे बैठ जाएगी। और जो यदि उसमें कलर है तो कलर जो है गाढ़ा कलर यदि मिलाया गया है तो वो कलर ऊपर तैरने लगता है।
13: पीसी हल्दी में मिलावट की ज्यादा संभावना होती है?
12: पीसी हल्दी में ही ज्यादा संभावना है, हम जांच कर रहे हैं। और यदि फूड के माध्यम से इस तरह की हल्दी बेची जा रही है जो चेहरे पे लगा के और यदि कलर यूज हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे।
1: आशंका है कि हल्दी में मेटानिल येलो नाम का जहरीला सिंथेटिक डाई मिलाया गया, वो भी इतनी मात्रा में जो जानलेवा बन गया। इस मेटानिल येलो का इस्तेमाल कपड़ा रंगने में किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने के कारण भारत में FSSAI समेत विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों में इसके उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध है। खरगोन की दुल्हन राखी, जिसको घर परिवार के 15 से ज्यादा लोगों ने हल्दी लगाई, उनके हाथ में कोई रिएक्शन नहीं होने का दावा है। दुल्हन राखी को ही पहले रिएक्शन हुआ और फिर जान तक चली गई।
10: थोड़ा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी के 5 देशों की यात्रा पर दुनिया की नजर। आज सुबह यूएई के लिए होंगे रवाना, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का करेंगे दौरा। देश में निर्यात के लिए निर्णायक फैसलों की उम्मीद। पीएम की अपील के बाद बीजेपी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों में तेल बचाने की होड़। बस, बाइक से लेकर साइकिल तक का इस्तेमाल, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। रेखा गुप्ता बोली, हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। अमित शाह से योगी की मुलाकात पर बड़ा राजनीतिक तापमान। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रालय बंटवारे समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात। बीजेपी अध्यक्ष से भी मिले योगी। शराब घोटाले में सुनवाई के दौरान जस्टिस पर टिप्पणी को लेकर आपकी मुसीबत बढ़ी। कोर्ट ने माना अवमानना। केजरीवाल सिसोदिया समेत 5 पर निशाना। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर बड़ी बैठक। सीबीआई ने 23 की जांच। महाराष्ट्र से 2 गिरफ्तारियां, 5 को 7 दिन की सीबीआई रिमांड। क्या ईरान युद्ध नए सिरे से भड़कने वाला है और इसलिए भारत खुद को बड़े संकट की चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन युद्ध के इस शोर में महंगाई धीरे धीरे आप पर, हम पर, आम आदमी पर शिकंजा कस रही है। हमारे देश को पता है कि यह कठिनाई आ रही है, जिसे रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सतर्क आपको और हमें देश को कर रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि हम सबको मिलकर बचाएंगे और हम सब मिलकर बचत करेंगे, तभी इस महंगाई से बच पाएंगे।
1: पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारत भी इससे अछूतला नहीं है। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। ये संकट किसी भी तरह हमारी प्रगति को, हमारे विकास को प्रभावित न करे, न करे, करे।
2: जिस संकट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हफ्ते से पूरे देश को खबरदार करते आ रहे हैं, वो अब थोक में आपके ऊपर आने लगा है। संकट को समझ लीजिए, खबरदार हो जाइए, क्योंकि अप्रैल के महीने में थोक महंगाई दर 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई, जो मार्च में 3.88% पर थी। ये 42 महीने में सबसे ज्यादा है। प्राइमरी आर्टिकल यानी कच्चे सामान की महंगाई 6.36% से 9.17% हो गई। वहीं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की महंगाई भी 3.39% से 4.62% पहुंच गई। मतलब है कि फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान की लागत भी बढ़ रही है। कोर महंगाई यानी खाने पीने की चीजों और ईंधन को छोड़ बाकी वस्तुओं की महंगाई भी बढ़कर 5% पर पहुंच गई, जो 43 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे ये संकेत मिलने लगा है कि महंगाई का दबाव अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं, बल्कि बाकी सेक्टर में फैलने लगा है। और महंगाई का यही संकट धीरे धीरे आपकी जेब की चारों तरफ जकड़ने लगा है। वो आपके घर के सिलेंडर से लेके रेस्टोरेंट ढाबे के सिलेंडर तक पहले दबे पांव पहुंचा, जो सबसे पहले महंगे हो चुके हैं। जिसने जनता की जेब को ढीला करना मार्च के महीने से शुरू किया, मई तक ढीला करता आया।
3: सिलेंडर का रेट ऑलरेडी इतना हाई रहेगा, तो फूड एंड बेवरेजेस का भी थोड़ा हमारे को इश्यूज रहा करेगा।
4: क्या ये आपके बजट में रहेगा बाहर आना, जैसे आप पहले यूजुअली बाहर आते थे?
5: बट ऑब्वियसली वो कम ही हो जाएगा, हमारा बाहर खाना वगैरह
4: कम करना पड़ेगा,
5: हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
2: अब महंगाई का वो संकट काल आम लोगों को सुबह से परेशान करने जा रहा है, जहां दूध की थैलियों का वजन उतना ही रहना है। बस आपकी जेब 2 रुपए प्रति लीटर अमूल से लेकर मदर डेयरी तक के दूध खरीदने पर ढीली होने लगी है।
6: बहुत गलत हुआ, बढ़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो गरीब है वो कैसे खाना खाएगा।
7: जो बिल्कुल गरीब तबका है उसको सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए जद्दोजहद करता है।
8: मुश्किल तो है हर चीज में, हर चीज महंगी हो रही है प्रॉब्लम, और दूध उसके बाद जरूरत की चीज है, बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है।
9: महीने का बजट भी इसी से निर्धारित होता है। अब 2 रुपए का बढ़ने का मतलब है कि 60 रुपए। तो उसके आधार पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि है ना इतनी जल्दी जल्दी ना बढ़ाएं।
10: ओवर टाइम इस पर बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली जो लोग मेहनत करते हैं रोज की, उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ता है।
2: मुंबई में तो सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है, क्या अब जल्द ही दूसरी जगहों पर सीएनजी के दाम बढ़ने की आशंका है? और तब थोक महंगाई दर अगर 42 महीनों में सबसे ज्यादा हो जाती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियां बढ़ी हुई लागत को जल्द ग्राहकों पर डालेंगी।
1: विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है, और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है।
0: अब गाड़ियों को चलाने वाले तेल की बात अब कर लेते हैं। आपकी हमारी सबकी चिंता पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर है, क्योंकि ये जैसे ही बढ़ेंगे महंगाई क्लस्टर बॉम्ब की तरह फूटेगी। हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से लेकर आरबीआई के गवर्नर तक के बयान इसी संकट की तरफ संकेत भी दे चुके हैं, और इसीलिए जनता के मन में तेल के दाम को लेकर आशंका बनी हुई है।
11: तेल का रेट जैसे बढ़ रहा है तो बढ़ना तो चाहिए, लेकिन अभी तक तो मुझे उम्मीद नहीं है। क्या टीवी में मैं भी देखता हूँ, टीवी में नहीं बताया जा रहा है जो रेट बढ़ेगा। सब्सिडी आया था तो गवर्नमेंट अपने जेब से दिया है, तो अब क्या भरोसा बढ़ा दे।
12: अगर जो स्थिति बनती है कि डीजल या पेट्रोल का दाम बढ़ाया जाए तो आपके हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए?
13: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
12: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
13: गरीबों पे मार होती है।
12: ऐसे भारत की देश की हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत रहनी चाहिए, कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते भी हैं तो देश के लिए ही हैं, हमारे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि सरकार अगर रेट बढ़ा रही है तो कहीं और लेके जा रही है उस पैसे को, वो समाज के लिए देश के लिए काम आ रहा है। और पीछे जो उन्होंने इतने सालों से रेट बढ़े नहीं हमारे, तो 94 रुपए कुछ पैसे चल रहे हैं आज भी वही है, और आज के समय में अगर देश के ऊपर कोई संकट आया तो हम देश के साथ खड़े हैं।
13: पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो देखो सारी अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ेगा, उसको मिडिल क्लास लोग हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत फर्क पड़ने वाला है इस चीज से।
14: अभी तो स्थिति सामान्य है बिल्कुल, अभी किसी तरीके का स्टॉक या इस तरीके से मतलब कोई पैनिक या कुछ नहीं है लोगों में, लोगों को समझ है कि हाँ ठीक है लोग आ रहे हैं और अपना जितना डेली रूटीन में लेते हैं उतना ही ले रहे हैं। सप्लाई में तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई तो जितनी डिमांड मतलब एज पर सेल के हिसाब से डेली सेल के उतनी सप्लाई हमारे पास आ रही है।
15: देखिए देश हित के लिए लिया गया फैसला है और इस फैसले का पूर्ण समर्थन है, और मैं किसी पार्टी विशेष के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मोदी जी ने अपने अपने पर्सनल निजी इसके लिए बढ़ाया है। बाकी बहुत सारे समृद्ध देश हैं जिनका ऑलरेडी उन्होंने बहुत पहले बढ़ा चुका, युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने पेट्रोल के कीमतों में बहुत उछाल मार दिया है, हमारे देश में बहुत देर से हुआ है।
16: प्रधानमंत्री बोले हैं कि कुछ कटौती करके चले, अगर ऐसा होता है तो बढ़ भी नहीं सकता है,
17: बढ़ नहीं सकता।
18: मोदी जी हमारे देश के लिए ही कुछ अच्छा सोच करके किए होंगे।
19: सरकार ने अभी तक कंपनियों को रोक रखा है रेट बढ़ाने से, एज पर अगर कंपनी की कैलकुलेशन लगाई जाए तो दे आर बेयरिंग अ लॉस ऑफ अराउंड 20 रुपीज ऑन डीजल एंड 30 रुपीज इन पेट्रोल।
20: प्राइस के लिए देखिए अगर मान के चलिए कुछ बढ़ भी जाता है तो जनता मजबूरन तो लेना ही है, क्योंकि जरूरत का चीज है, उससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मिलना चाहिए,
21: मिलना चाहिए
20: सभी को।
21: सभी को मिलना
20: जी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास।
22: जरूरत रहेगा तो आदमी ड्यूटी नहीं करेगा, ड्यूटी नहीं जाएगा बताइए, ड्यूटी तो जाना अनिवार्य है, ड्यूटी नहीं जाएगा पेमेंट नहीं मिलेगा, घर में बैठ के थोड़ी खाएगा लोग। मोदी जी तो कहीं रहा है, लेकिन मोदी जी तो कहेंगे तो ऑफिस में ऑफिस वाले को बोले कि हाँ कष्ट नहीं बोलाए कर्मी को, अपना घर से ही काम करवाए तब ना।
23: भैया बहुत बिक्री हो रही है, वो लाइन लगती हो रही है, और जहाँ 5,000 बिकता था 8,000 बिक रहा है,
24: ज्यादा आ रहे हैं ये सोच
23: बना रहे, टंकी फुल करा रहे हैं पूरी।
25: जिस तरीके से लड़ाइयाँ और जिस तरीके से वो चल रहा और मतलब कंपनी को नुकसान उठा के बेच रही है माल, उसके हिसाब से तो हम लोग नहीं बता सकते ना, लेकिन ये कि जैसा लग रहा हो सकता है कुछ बढ़ जाए।
0: खबर नीट पेपर लीक कांड की। नीट लीक कांड में अब सवाल यह है कि कौन है वो बड़ा आदमी जिसका नाम अपने घर के 5 बच्चों को डॉक्टर बना देने वाले दिनेश बिवाल ले रहा है, कौन है इस पेपर लीक कांड का वो बड़ा आदमी जिसका चेहरा छिपा हुआ है, जिसके कारण से आरोपी के घर वाले ही दावा करने लगे हैं कि हर साल देश में नीट का पेपर लीक होता रहा है।
26: बचाया जा रहा है,
27: लोगों को तो बचाया जा रहा है,
28: उनको बचाया जा रहा है,
29: बचाया जा रहा है,
30: उनको बचाया जा रहा है।
2: देश के 22,89,000 परिवारों बच्चों की उम्मीदों पर नीट का पेपर लीक करा के सरकार के दावों पर पानी फेरने वाला, जिसे बीजेपी के विधायक राजस्थान में अपनी पार्टी का ऊर्जावान कार्यकर्ता बताते आते हैं, आखिर वो किन बड़े लोगों की बात करने लगा? कौन है वो बड़े लोग जब तक नीट पेपर लीक कांड में बचे हुए हैं? क्या कोई मंत्री, क्या कोई एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अफसर, क्या कोई बड़ा नेता, क्या कोई बड़ा कोचिंग चलाने वाला, क्या कोई बड़ा नौकरशाह? कौन है वो बड़ा आदमी जिसको बचाने का दावा पेपर लीक कराने के आरोप में सीबीआई की गिरफ्त में आने के बाद दिनेश बेवाल ही नहीं करता, बल्कि जब इस पूरे मामले को आज तक पर सबसे पहले पड़ताल करके रिपोर्ट करने वाले संवाददाता शरद कुमार दिनेश और मांगीलाल के घर पर पहुंचकर आगे जानना चाहते हैं, तो पहले तो आज तक का कैमरा, आज तक का माइक, आज तक संवाददाता को देखकर पेपर लीक कराने के आरोपी का परिवार उन्हें पीछे हटाने लगता है। क्योंकि इस परिवार को लगता है कि आज तक पहुंच गया है तो फिर कोई ना कोई बड़ी खबर पेपर लीक खुलासे में सामने लेकर आएगा, और यही होता है जहां पेपर लीक के आरोपी भाइयों की पत्नियां कहने लगती हैं असली मास्टरमाइंड कोई और है।
3: इतना दिन से पेपर लीक हो रहे हैं और आज दुश्मन बन रहे हैं। कई साल दो बच्चा पेपर दिया जाए, दो बच्चा पेपर देर के नहीं पेपर में भी
4: 2024 में भी लीक होगा।
3: बेटो चले मारो ऋषि,
4: कई बार हलवा कोरे
3: मारो बेटो, पहली बार नीट का पेपर दियो जाए, नीट का पेपर में पहली बार नहीं कोई मारा बेटा को पसावा का लाग रहा चाहे अन्य खेगा मैं दिने अन्य खेंगे।
5: आपकी बेटी भी दिया थे?
3: मेरे बेटा दिया है मेरा नीट का पेपर, उसके
5: इस बार बेटा दिया है ना?
3: हाँ मेरा बेटा पेपर दिया नीट का, पर मेरे बेटे के इतने मार्क्स नहीं आए और किसी ने फंसा दिया मेरे आदमियों को,
4: हमारे किसी ने फंसा
3: दिया है, हमारे बच्चों ने पिछली बार तीन चार बच्चों ने
4: किसी
3: की शादी से किसी की शादी सारा उनको छोड़ रहा हूँ, पाचा पड़ गया सारा इतना
4: पड़ा
3: पेपर में होगा।
0: ये बात सच है कि नीट पेपर लीक के पीछे एक बड़ा आदमी है, क्योंकि अब तक सीबीआई ने जिनको पकड़ा या तो जो सीधे जांच के दायरे में हैं उन्हें पकड़ा है, जैसे अहिल्यानगर से एक धनंजय लोखंडे पकड़ा गया लेकिन वो कोई बड़ा आदमी नहीं है, नासिक से जो पकड़ा गया वो भी कोई बड़ा आदमी नहीं है, जितने भी लोग पकड़े गए वो बड़ा आदमी नहीं है, तो आखिर कौन है वो बड़ा आदमी?
2: दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल जयपुर के पास रहने वाले ये दो भाई प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन डीलरई करते करते ये दोनों दावा है कई वर्षों से नीट के पेपर लीक की भी डील करने लगे, जिसकी जांच में जुटी सीबीआई की टीम तफ्तीश करने इन दोनों के घर तक पहुंचती है, गाड़ी तक की जांच करती है।
6: नीट पेपर लीक 2026 में गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल दिनेश और विकास के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं किस तरह से घर में पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है। यहां आसपास जो इनके घर में गाड़ियां थी उन गाड़ियों की भी तलाशी ली गई है, इसके अलावा भी जो सामान है उन सारे सामान की भी तलाशी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है। अब इस तरह से निकल रहे हैं, क्या आप लोगों ने देखा, कुछ पाया यहाँ कुछ आप लोगों ने जांच में?
2: सीबीआई के अफसर कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत लेकर बिवाल ब्रदर्स के घर से निकलते हैं, वो घर जो केवल आरोपियों का घर नहीं बल्कि इस घर से इतने नीट पास करने वाले बच्चे एक साल में निकल गए कि शंका पैदा हो गई है कहीं हर साल ये पेपर लीक करा के तो खेल नहीं करते रहे। हमारी बात को ध्यान से समझिएगा, गिरफ्तार मांगीलाल बिवाल के बेटे विकास को पिछले साल 2026 की नीट परीक्षा पास करके सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति ने भी नीट परीक्षा पिछले साल पास कर ली और मेडिकल कॉलेज में दौसा के दाखिला ले लिया। इन दोनों का तीसरा भाई जो जीवित नहीं उस घनश्याम बिवाल की बेटी पलक बिवाल को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नीट निकाल कर एडमिशन 2025 में मिल चुका है। दूसरी बेटी सानिया बिवाल को मुंबई के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और गिरफ्तार दिनेश बिवाल की बेटी गुंजन को वाराणसी के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। यानी पांच बच्चे इसके घर से नीट निकाल लेते हैं, सुनकर ही चौंक जाना पड़ता है कि इतना पढ़ाकू परिवार था क्या। जहां दिनेश बिवाल ने सोशल मीडिया तक पर डाल दिया कि उसके परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि उसके परिवार के पांच बच्चों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ, लेकिन जब इसी परिवार के इतने टॉप क्लास की पढ़ाई करने वाले बच्चों के बारे में आज तक संवाददाता शरद कुमार पूछते हैं तो इनकी माएं कुछ भी जानकारी में होने से इनकार करने लगती हैं।
5: बेटी कहाँ पढ़ती है अभी?
3: पढ़ रही है हमारी तो कौन कौन सी, मैं पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ जो मैं कौन कौन सी बता दूँ क्या है क्या नहीं है।
5: तो हमने सब पढ़ाया मेहनत करके,
3: मेहनत पढ़ाया, मैं अनपढ़ गाँव और मैं पढ़ी लिखी कौन है? मैं पहचान ही कौन
5: है? पढ़ रही है तो पता होगा।
3: फट रहा है जो मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं नाम भी फट लू ना, कहाँ फट रही जवा?
5: अरे जग शहर का नाम तो पता होगा।
3: शहर का नाम भी पता होगा। मैं चले आऊ ना, मेरा आदमी से ही मिलवा, कोड़ा रख रखा जाए, कोड़ा नहीं रख रखा है, मेरा बेटा ना कोड़ा रख रखा जाए।
5: आपका बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ता है ये तो बता सकती है?
3: बच्चा पा मैं को पढ़ी लिखी हूँ ना तो मैं कहीं बताऊँ भी, कोचिंग में पढ़ रहे थे, वो कोचिंग में पढ़ रहे थे।
5: ये बताओ ये गुंजन कहाँ पढ़ती है?
3: गुंजन कहाँ पढ़ती है? कौन सी तो मुझे पता नहीं है ना कौन सी जगह पढ़ती है गुंजन।
5: MBBS कर रही है ना?
3: नहीं, MBBS कुछ नहीं कर रही मेरी तो।
5: कहाँ कर रही है?
3: क्लियर ही कौन नहीं हो माँ का बच्चा को।
5: विकास कहाँ पढ़ता है?
3: विकास को मुना कहीं पता, कोड़ा पढ़ा जाए, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो बताऊँ ना, ये पढ़ा ये समझ वाला बतावा।
5: प्रगति कहाँ पढ़ती है?
3: मुझे कुछ ही पता नहीं है मेरे बच्चों का क्या।
5: कहाँ दुनिया कहाँ पढ़ती है?
3: कुछ पता नहीं है, किसी जगह पढ़ती है वो, कौन सी जगह। मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं बच्चा को ये फड़ारगंज में चले जाऊँ ना, मैं खुद ही चल जाऊँ आदमी से मिलवा।
5: बताता होगा ना किस शहर में जाता है?
3: हाँ जाता है तो इधर ही चल जाता है, जयपुरपुर की तरफ इधर ही चल जाता है हमारे तो। ये सारा ही गाँव से आस पास का कशा कशा गाँव से कशी कशी।
5: अच्छा, ये पढ़ते कहाँ पर थे?
3: हाथ जोड़ा था भाई, मैं माथा का हाथ जोड़ा था, मन परेशान मत करो दे।
1: तो क्या ये जो राजस्थान का बिवाल परिवार है इसके पीछे असली खिलाड़ी बड़ा आदमी कोई और है? क्योंकि ये लोग हर साल पेपर लीक करा लेंगे, इतनी इनकी ताकत नहीं दिखती। दावा ये है कि मांगीलाल और दिनेश तो नीट पेपर लीक में कोरियर का काम करते थे, जहां दिनेश ने अब की बार अपने बेटे ऋषि के लिए पेपर लीक कराया, लेकिन उसका बेटा 600 नंबर का लीक पेपर पाकर भी आंसर की से जांचने पर पता चला 107 नंबर का पेपर ही कर पाया था।
7: तो सरकार जिस तरह से सख्ती से अभी काफी सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं जो करनी भी चाहिए, एक हमको ना एग्जांपल सेट करना चाहिए कि इस तरह का काम करोगे तो देश आपको छोड़ेगा नहीं।
0: और अब बात उस आंधी तूफान की जिसने यूपी में बहुत कहर बरपाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से यूपी में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। भीषण आंधी में सड़कों से पेड़ उखड़ गए, गाड़ियों के ऊपर गिर गए, घरों की दीवारें ढह गईं, टिन शेड उखड़ गए और लगभग 100 लोगों की मौत हो गई।
8: कहीं तूफान में इंसान उड़ गया, कहीं पेड़ जमीन से ही उखड़ गए, कहीं पेड़ घर पर गिर गया, कहीं पेड़ के नीचे गाड़ियां फंस गई। यह है उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली का कहर। बुधवार को यूपी में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। न कोई चेतावनी, न कोई पहले से जानकारी, न कोई अलर्ट, सीधा आंधी तूफान आया, बिजली गिरी और 104 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने से बुधवार को कुल 104 लोगों की मौत हुई। इनमें से 4 लोग बिजली गिरने से मारे गए, 52 लोग घायल भी हैं और 98 घर भी टूटे हैं। इसके अलावा 130 जानवरों की भी जान गई है। और ये तो सरकारी आंकड़े, तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति इससे कहीं ज्यादा बदतर है। सबसे बड़ी बात कि मॉनसून से पहले का आंधी तूफान इतनी तबाही लेकर आएगा किसी ने सोचा नहीं था। लोग हर रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे, तूफान आया और कई लोगों की जान ले ली। बदायूं में भीषण आंधी तूफान से अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की मौत हुई है। भदोही जिले में अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की मौत हुई। मिर्जापुर में भी आंधी तूफान की वजह से पूरे जिले में 17 लोगों की मौत हुई। फतेहपुर में 5 महिलाओं समेत कुल 11 लोग मारे गए। प्रयागराज में कल आए आंधी तूफान की वजह से कुल 21 लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा 1-2 मौतें तो ज्यादातर जिलों में हुई ही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं बरेली से। आंधी में छत उड़ जाती है, तिरपाल उड़ जाता है, कपड़े उड़ जाते हैं, पेड़ भी उखड़ जाता है, लेकिन इंसान उड़ते शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। बरेली में कल जो तूफान आया उसमें नन्हे मियां उड़ गए। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तब से ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये कोई AI वीडियो तो नहीं है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन हकीकत यही है कि बरेली में नन्हे मियां तूफान से बचने के लिए बारात घर की छत पकड़े हुए खड़े थे। तूफान इतना तेज था कि छत ही उड़ गई और नन्हे मियां फिल्मी स्टाइल में 50 फीट ऊपर हवा में उछल गए और उछलकर एक खेत में जा गिरे। इस हादसे में नन्हे मियां बुरी तरह से घायल हो गए, उनके हाथ और पैर में चोट आई है।
9: बहुत तेज लकूड़ा आ रहा था, लकूड़े के साथ में ऊपर मतलब 30-40 फीट ऊंचा चले गए। हमें ना पता कहाँ गिरे क्या हुआ, कम से कम 50 फीट
10: दूरी से।
11: नहीं तो आपने उसको पकड़ रखा था क्या था?
10: हाँ मतलब पकड़ा नहीं था, मतलब गाड़ी के जोरे खड़े हम बांध रस्सी पड़ी हुई थी।
11: अच्छा
10: हाँ रस्सी पकड़ी थी।
8: पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। उन्नाव में तेज आंधी के चलते एक नीम का पेड़ उखड़ गया और कार के ऊपर गिर गया। कार के अंदर बैठे शख्स ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। पेड़ गिरने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बदायूं में ये आंधी तूफान जानलेवा रहा। यहां अलग अलग स्थानों पर दो मासूमों समेत छह लोगों की मौत हुई है। आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और दीवारें टूट कर गिर पड़ी, जिसके नीचे दबकर दो मासूम बच्चों समेत छह लोगों की मौत हुई। एक ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर उत्तराखंड के बाजपुर से बुलंदशहर जा रहा था। बदायूं के बिसौली में तेज आंधी से सड़क किनारे यूकेलिप्टस का पेड़ टूटकर ट्रक पर आ गिरा। इसके नीचे दबकर 29 साल के ट्रक ड्राइवर योगेश की मौत हो गई। पुलिस ने पेड़ को कटवाकर जैसे तैसे उसके शव को बाहर निकलवाया। यही हाल भदोही का भी रहा। यहां पूरे जिले में कुल 16 लोगों की मौत हुई है। एक महिला का पूरा परिवार इस त्रासदी की जद में आ गया। महिला के घर पर पेड़ गिरने के कारण उसकी और उसकी दो मासूम बेटियों की मौत हो गई। एक बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार चल रहा है। पति मुंबई में काम करते हैं।
12: उन्होंने बताया कल घटना हुई है, क्या घटना है पूरी बात?
13: भाई वही आंधी तूफान आई थी सर, और वहाँ पे पेड़ गिर के दब के खत्म हो गए।
12: कौन खत्म?
13: मेरी बहन थी और दो भतीजी थी, वो लोग खत्म हो गए। दो बच्चे है, एक भर्ती है अस्पताल में।
12: क्या आपको वहाँ से जानकारी बताया गया परिवार?
13: वहाँ पे ये बताया गया कि नीम का पेड़ गिर गया है, वो लोग दब गए हैं। तब हम लोग नहीं थे, तब हमारे चाचा के लड़का लोग आए यहाँ पे, फिर उसको लेके निकाले, फिर दो तो बच गए, तीन मर गए।
12: कितने बच्चे हैं?
14: जो तूफान चक्रवाती तूफान आया था उसी में जो है नीम का पेड़ गिर जाने से हरिजन बस्ती के पांच लोग, मतलब माँ थी और चार लड़कों लेके उसी घर में घुस गई अपने घर में। जो मौके पर वो पेड़ गिर गया जो है घर के ऊपर, और उसी में लोग दब गए, तो तीन लोगों की तो मौके पे मौत हो गई, दो लोगों गंभीर लोग घायल हो गए हैं, उनको जिला अस्पताल या कहीं रेफर किया गया है बनारस ट्रामा सेंटर।
8: एक और घटना, उगापुर सरौली में मंदिर गई एक परिवार की तीन महिलाएं विशालकाय पेड़ गिरने के दौरान उसकी चपेट में आ गई, जिससे तीनों की मौत हो गई।
24: तेज आंधी तूफान आने की घटना के कारण अलग अलग थाना क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, जिसमें पेड़ गिर जाने के कारण अथवा बिजली का खंभा घरों के ऊपर गिर जाने के कारण अथवा एक मंदिर के ऊपर गिर जाने के कारण कई सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। कुल मिलाकर के अभी तक प्राप्त सूचना के क्रम में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 8 लोग इन घटनाओं में घायल हुए हैं अलग अलग।
8: बहुत से लोग बिजली गिरने की वजह से भी मारे गए हैं, जो और ज्यादा भयावह है, क्योंकि गंगा के बेसिन में बिजली गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पूरे यूपी में कल बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में देश में बिजली गिरने की घटनाओं में 400% का इजाफा देखा गया है। भारत में हर साल बिजली गिरने की घटनाओं में 7-14% की वृद्धि दर्ज की गई है। रिसर्च बताती है कि अगर तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो बिजली गिरने की घटनाएं 8-10% बढ़ जाती हैं। पिछले कुछ वक्त में बिजली गिरने की घटनाएं भारत के पूर्वी, उत्तरी और तटीय इलाकों से उत्तर पश्चिमी और हिमालय की तलहटी तक पहुँच चुकी है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात बिजली गिरने के नए हॉटस्पॉट्स, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये भी देखा गया है कि जहां जहां से नदियां गुजरती हैं, वहां ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। जैसे गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, ताप्ती और नर्मदा की घाटियों में ज्यादा बिजली गिरती है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि नदियों की घाटियों पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण और शहरीकरण हो गया है, जिसकी वजह से वहां गर्मी बढ़ गई है। इससे ज्यादा वाष्पीकरण होता है और बिजली गिरती है। अगर समय की बात करें तो बिजली गिरने की घटनाएं अब लगभग पूरे साल होती हैं। आमतौर पर पूर्वी भारत में मॉनसून के पहले के आंधी तूफान में बिजली गिरती है। इसे काल बैसाखी भी कहा जाता है। आज तक ब्यूरो।
0: इंदौर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। हल्दी की रस्म के दौरान दुल्हन को चेहरे और शरीर में तेज जलन शुरू हुई। कुछ ही देर में चेहरे पर लाल धब्बे और सूजन बढ़ने लगी। परिजन तुरंत दुल्हन को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। जांच में आशंका व्यक्त की गई कि मिलावटी हल्दी ने जानलेवा रिएक्शन कर दिया। इलाज के दौरान दुल्हन की मौत हो गई।
2: मध्य प्रदेश का खरगोन, दुल्हन की हल्दी का कार्यक्रम चल रहा है। हंसी खुशी संगीत के बीच अचानक दुल्हन राखी परेशान होने लगती है। चेहरे हाथ पैर पर घर वालों दोस्तों की तरफ से लगाई जाती हल्दी से उसके चेहरे पर जलन तेज महसूस होती है। वो दौड़ती है। हालत ये हो जाती कि दुल्हन को इंदौर के अंबाई अस्पताल में ले जाकर तुरंत भर्ती तक कराना पड़ता है। लेकिन क्या मिलावटी हल्दी की वजह से दुल्हन की मौत हो गई? क्या हल्दी की रस्म में मिलावटी केमिकल वाली हल्दी जान ले रही है? क्या हल्दी की रस्म में जहरीले केमिकल की मिलावट अब मार दे रही है? इस सवाल की वजह 22 साल की ये दुल्हन है। ये इसकी शादी की तैयारी से पहले की तस्वीर है, जिसकी शादी में हल्दी की रस्म के दौरान हल्दी लगाने से दावा है इतनी भयानक एलर्जी हुई कि उसे इंदौर के अस्पताल में जब तक भर्ती कराया गया हालत बिगड़ चुकी थी। चेहरे पर सूजन आने लगी, हाथ पैर में लाल धब्बे पड़ने लगे।
15: सर उसके हल्दी लगी हुई थी और अचानक से कुछ ऐसा हुआ तो गले में सूजन आ गया, मुंह सूज गया उनका होठ। उसके बाद में लड़के से बोला भी नहीं जा रहा, तो फिर अब दुल्हन थी सर, सब घबरा गए। हल्दी ये बाजार में से लेके आए थे सर, बेचने वाला आए थे तो उसके लिए ले ली थी, तो उसी से गड़बड़ हो गई सर। अब
16: एलर्जिक रिएक्शन था काफी उसके शरीर में, अर्टिकेरिया और होठों पे भी कुछ स्वेलिंग वगैरह थी। और जब उसकी हिस्ट्री निकाली गई तो ये पता चला कि उसको कोई शादी का उनके यहाँ प्रोग्राम था, उसमें हल्दी लगाई गई थी, जिसके कारण उसके कुछ ही देर के बाद उसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ और उसको लाके वार्ड में भर्ती किया था। और चूंकि उसके साथ साथ उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी तो प्रिकॉशनरी हम लोगों ने उसको आईसीयू में रखा था। उन्होंने बाजार से कुछ हल्दी खरीदी थी, हो सकता है उसमें किसी तरह का कोई केमिकल्स कई बार हल्दी को कलर बढ़ाने के लिए डाल के रखते हैं, उसके कारण ये एग्जैजरेटेड रिएक्शन उसके लिए एलर्जिक रिएक्शन हुआ।
2: इसके बाद दावा है कि स्थिति न सुधरने पर घर वाले एक दूसरे अस्पताल ले गए और बाद में फिर राखी की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि जान चली गई।
17: जहाँ जहाँ भी सोर्सेस प्राप्त हुए वहाँ से नमूने हमने संग्रहित किए गए और लेबोरेटरी प्रयोगशाला को भेजे गए। हल्दी लगाने से ऐसा रिएक्शन हुआ ऐसा बता रहे, बाकी हमने भी जांच करी है और हमने लेबोरेटरी सैंपल के लिए भेज दिए।
2: 14 दिन में जांच से पता चलेगा राखी की मौत किस तरह की मिलावटी हल्दी की वजह से हुई। क्या केवल मिलावटी केमिकल वाली हल्दी इसकी वजह है या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है? अब सवाल आपसे जुड़ा है। हल्दी का इस्तेमाल खाने में होता है, हल्दी का इस्तेमाल शादियों में रस्म निभाने में होता है, तो क्या हल्दी अगर मिलावटी है, केमिकल वाली है, तो रिएक्शन से लेकर जानलेवा तक हो सकती है?
18: खाने की और यदि चेहरे पे भी लगा रहे हैं तो मेरा तो सुझाव यही है कि जो खाने की हल्दी है और ब्रांडेड है वो बारीक हल्दी उसका ही उपयोग करना चाहिए। ड्रेस एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत कई बार जो है जो हल्दी है जो पैक करके दे रहे हैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव या अन्य रंग या गुलाल जैसा बना के भी उसको किया सकता है, उससे काफी हानि हो सकती है। वो जो हल्दी होगी या तो उन्होंने कहीं लूज हल्दी जो है यूज किया होगा बाजार में जो खुलेआम ठेले पर बिकती है। देखिए हल्दी को यदि हम पानी में घोल के कुछ देर रख देते हैं तो आप देखेंगे कि जो मूल हल्दी है वो पानी में घुलती नहीं है, जो हल्दी जो है नीचे बैठ जाएगी। और जो यदि उसमें कलर है तो कलर जो है गाढ़ा कलर यदि मिलाया गया है तो वो कलर ऊपर तैरने लगता है।
19: पीसी हल्दी में मिलावट की ज्यादा संभावना होती है?
18: पीसी हल्दी में ही ज्यादा संभावना है, हम जांच कर रहे हैं। और यदि फूड के माध्यम से इस तरह की हल्दी बेची जा रही है जो चेहरे पे लगा के और यदि कलर यूज हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे।
2: आशंका है कि हल्दी में मेटानिल येलो नाम का जहरीला सिंथेटिक डाई मिलाया गया, वो भी इतनी मात्रा में जो जानलेवा बन गया। इस मेटानिल येलो का इस्तेमाल कपड़ा रंगने में किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने के कारण भारत में FSSAI समेत विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों में इसके उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध है। खरगोन की दुल्हन राखी, जिसको घर परिवार के 15 से ज्यादा लोगों ने हल्दी लगाई, उनके हाथ में कोई रिएक्शन नहीं होने का दावा है। दुल्हन राखी को ही पहले रिएक्शन हुआ और फिर जान तक चली गई।
0: दस ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी के पांच देशों की यात्रा पर दुनिया की नजर। आज सुबह यूएई के लिए होंगे रवाना। नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का करेंगे दौरा। देश में निर्यात के लिए निर्णायक फैसलों की उम्मीद। पीएम की अपील के बाद बीजेपी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों में तेल बचाने की होड़। बस, बाइक से लेकर साइकिल तक का इस्तेमाल, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। रेखा गुप्ता बोली, हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम। अमित शाह से योगी की मुलाकात पर बड़ा राजनीतिक तापमान। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रालय बंटवारे समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात। बीजेपी अध्यक्ष से भी मिले योगी। शराब घोटाले में सुनवाई के दौरान जस्टिस पर टिप्पणी को लेकर आपकी मुसीबत बढ़ी। कोर्ट ने माना अवमानना। केजरीवाल, सिसोदिया समेत पांच पर निशाना। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर बड़ी बैठक। सीबीआई ने 23 की जांच। महाराष्ट्र से 2 गिरफ्तारियां, 5 को 7 दिन की सीबीआई रिमांड। क्या ईरान युद्ध नए सिरे से भड़कने वाला है और इसलिए भारत खुद को बड़े संकट की चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन युद्ध के इस शोर में महंगाई धीरे धीरे आप पर, हम पर, आम आदमी पर शिकंजा कस रही है। हमारे देश को पता है कि यह कठिनाई आ रही है, जिसे रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सतर्क आपको और हमें देश को कर रहे हैं। कहते आ रहे हैं कि हम सबको मिलकर बचाएंगे और हम सब मिलकर बचत करेंगे, तभी इस महंगाई से बच पाएंगे।
1: पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारत भी इससे अछूतला नहीं है। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। ये संकट किसी भी तरह हमारी प्रगति को, हमारे विकास को प्रभावित न करे,
2: जिस संकट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हफ्ते से पूरे देश को खबरदार करते आ रहे हैं, वो अब थोक में आपके ऊपर आने लगा है। संकट को समझ लीजिए, खबरदार हो जाइए, क्योंकि अप्रैल के महीने में थोक महंगाई दर 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई, जो मार्च में 3.88% पर थी। ये 42 महीने में सबसे ज्यादा है। प्राइमरी आर्टिकल यानी कच्चे सामान की महंगाई 6.36% से 9.17% हो गई। वहीं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की महंगाई भी 3.39% से 4.62% पहुंच गई। मतलब है कि फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान की लागत भी बढ़ रही है। कोर महंगाई यानी खाने पीने की चीजों और ईंधन को छोड़ बाकी वस्तुओं की महंगाई भी बढ़कर 5% पर पहुंच गई, जो 43 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे ये संकेत मिलने लगा है कि महंगाई का दबाव अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं, बल्कि बाकी सेक्टर में फैलने लगा है। और महंगाई का यही संकट धीरे धीरे आपकी जेब की चारों तरफ जकड़ने लगा है। वो आपके घर के सिलेंडर से लेके रेस्टोरेंट ढाबे के सिलेंडर तक पहले दबे पांव पहुंचा, जो सबसे पहले महंगे हो चुके हैं। जिसने जनता की जेब को ढीला करना मार्च के महीने से शुरू किया, मई तक ढीला करता आया।
3: सिलेंडर का रेट ऑलरेडी इतना हाई रहेगा, तो फूड एंड बेवरेजेस का भी थोड़ा हमारे को इश्यूज रहा करेगा।
4: क्या ये आपके बजट में रहेगा बाहर आना, जैसे आप पहले यूजुअली बाहर आते थे?
5: बट ऑब्वियसली वो कम ही हो जाएगा, हमारा बाहर खाना वगैरह
4: कम करना पड़ेगा,
5: हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
2: अब महंगाई का वो संकट काल आम लोगों को सुबह से परेशान करने जा रहा है, जहां दूध की थैलियों का वजन उतना ही रहना है। बस आपकी जेब 2 रुपए प्रति लीटर अमूल से लेकर मदर डेयरी तक के दूध खरीदने पर ढीली होने लगी है।
6: बहुत गलत हुआ, बढ़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि

0: जो गरीब है वो कैसे खाना खाएगा।
1: जो बिल्कुल गरीब तबका है उसको सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए जद्दोजहद करता है।
2: मुश्किल तो है हर चीज में, हर चीज महंगी हो रही है प्रॉब्लम। और दूध उसके बाद जरूरत की चीज है, बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है।
3: महीने का बजट भी इसी से निर्धारित होता है। अब 2 रुपए का बढ़ने का मतलब है कि 60 रुपए, तो उसके आधार पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि है ना, इतनी जल्दी जल्दी ना बढ़ाएं।
4: ओवर टाइम इस पर बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली जो लोग मेहनत करते हैं रोज की, उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ता है।
5: मुंबई में तो सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। क्या आप जल्द ही दूसरी जगहों पर सीएनजी के दाम बढ़ने की आशंका है? और तब थोक महंगाई दर अगर 42 महीनों में सबसे ज्यादा हो जाती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियां बढ़ी हुई लागत को जल्द ग्राहकों पर डालेंगी।
6: विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है, और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है।
7: अब गाड़ियों को चलाने वाले तेल की बात अब कर लेते हैं। आपकी हमारी सबकी चिंता पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर है, क्योंकि ये जैसे ही बढ़ेंगे महंगाई क्लस्टर बॉम्ब की तरह फूटेगी। हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से लेकर आरबीआई के गवर्नर तक के बयान इसी संकट की तरफ संकेत भी दे चुके हैं, और इसीलिए जनता के मन में तेल के दाम को लेकर आशंका बनी हुई है।
8: तेल का रेट जैसे बढ़ रहा है तो बढ़ना तो चाहिए, लेकिन अभी तक तो मुझे उम्मीद नहीं है। क्या कहते, टीवी में मैं भी देखता हूँ, टीवी में नहीं बताया जा रहा है जो रेट बढ़ेगा। सब्सिडी आया था तो गवर्नमेंट अपने जेब से दिया है, तो अब क्या भरोसा बढ़ा दे।
9: अगर जो स्थिति बनती है कि डीजल या पेट्रोल का दाम बढ़ाया जाए, तो आपके हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए?
10: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
9: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
10: गरीबों पे मार होती है।
9: ऐसा भारत की, देश की, हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत रहनी चाहिए। कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते भी हैं तो देश के लिए ही हैं, हमारे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि सरकार अगर रेट बढ़ा रही है तो कहीं और लेके जा रही है उस पैसे को, वो समाज के लिए, देश के लिए काम आ रहा है। और पीछे जो उन्होंने इतने सालों से रेट बढ़े नहीं, हमारे जो 94 रुपये कुछ पैसे चल रहे हैं आज भी वही है। और आज के समय में अगर देश के ऊपर कोई संकट आया तो हम देश के साथ खड़े हैं।
11: पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो देखो सारी अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ेगा, उसको मिडिल क्लास लोग हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत फर्क पड़ने वाला है इस चीज से।
12: अभी तो स्थिति सामान्य है बिल्कुल, अभी किसी तरीके का स्टॉक या इस तरीके से मतलब कोई पैनिक या कुछ नहीं है लोगों में। लोगों को समझ है कि हाँ ठीक है, लोग आ रहे हैं और अपना जितना डेली रूटीन में लेते हैं उतना ही ले रहे हैं। सप्लाई में तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई तो जितनी डिमांड मतलब एज पर सेल के हिसाब से डेली सेल के उतनी सप्लाई हमारे पास आ रही है।
13: देखिए, देश हित के लिए लिया गया फैसला है और इस फैसले का पूर्ण समर्थन है, और मैं किसी पार्टी विशेष के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मोदी जी ने अपने पर्सनल निजी इसके लिए बढ़ाया है। बाकी बहुत सारे समृद्ध देश हैं जिनका ऑलरेडी उन्होंने बहुत पहले बढ़ा चुका, युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने पेट्रोल के कीमतों में बहुत उछाल मार दिया है। हमारे देश में बहुत देर से हुआ है।
14: प्रधानमंत्री बोले हैं कि कुछ कटौती करके चले, अगर ऐसा होता है तो बढ़ भी नहीं सकता है,
15: बढ़ नहीं सकता।
16: मोदी जी हमारे देश के लिए ही कुछ अच्छा सोच करके किए होंगे।
17: सरकार ने अभी तक कंपनियों को रोक रखा है रेट बढ़ाने से। एज पर अगर कंपनी की कैलकुलेशन लगाई जाए तो दे आर बेयरिंग अ लॉस ऑफ अराउंड 20 रुपीज ऑन डीजल एंड 30 रुपीज इन पेट्रोल।
18: प्राइस के लिए देखिए, अगर मान के चलिए कुछ बढ़ भी जाता है तो जनता मजबूरन तो लेना ही है, क्योंकि जरूरत का चीज है, उससे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मिलना चाहिए,
19: मिलना चाहिए
18: सभी को।
19: सभी को मिलना
18: जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
2: जरूरत रहेगा तो आदमी ड्यूटी नहीं करेगा, ड्यूटी नहीं जाएगा, बताइए। ड्यूटी तो जाना अनिवार्य है, ड्यूटी नहीं जाएगा पेमेंट नहीं मिलेगा, घर में बैठ के थोड़ी खाएगा लोग। मोदी जी तो कहीं रहा है, लेकिन मोदी जी तो कहेंगे तो ऑफिस में ऑफिस वाले को बोले कि हाँ नहीं बोलाए कर्मी को, अपना घर से ही काम करवाए तब ना।
16: भैया बहुत बिक्री हो रही है, वो लाइन लगती हो रही है, और जहाँ 5,000 बिकता था 8,000 बिक रहा है,
5: ज्यादा आ रहे हैं। ये सोच
16: बढ़ा रहे, टंकी फुल करा रहे हैं पूरी।
3: जिस तरीके से लड़ाइयाँ और जिस तरीके से वो चल रहा है, और मतलब कंपनी को नुकसान उठा के बेच रही है माल, उसके हिसाब से तो हम लोग नहीं बता सकते ना। लेकिन ये कि जैसा लग रहा हो सकता है कुछ बढ़ जाए।
7: खबर नीट पेपर लीक कांड की। नीट लीक कांड में अब सवाल यह है कि कौन है वो बड़ा आदमी जिसका नाम अपने घर के पांच बच्चों को डॉक्टर बना देने वाले दिनेश बिवाल ले रहा है। कौन है इस पेपर लीक कांड का वो बड़ा आदमी जिसका चेहरा छिपा हुआ है, जिसके कारण से आरोपी के घर वाले ही दावा करने लगे हैं कि हर साल देश में नीट का पेपर लीक होता रहा है।
5: देश के 22,89,000 परिवारों बच्चों की उम्मीदों पर नीट का पेपर लीक करा के सरकार के दावों पर पानी फेरने वाला, जिसे बीजेपी के विधायक राजस्थान में अपनी पार्टी का ऊर्जावान कार्यकर्ता बताते आते हैं, आखिर वो किन बड़े लोगों की बात करने लगा? कौन है वो बड़े लोग जब तक नीट पेपर लीक कांड में बचे हुए हैं? क्या कोई मंत्री, क्या कोई एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अफसर, क्या कोई बड़ा नेता, क्या कोई बड़ा कोचिंग चलाने वाला, क्या कोई बड़ा नौकरशाह? कौन है वो बड़ा आदमी जिसको बचाने का दावा पेपर लीक कराने के आरोप में सीबीआई की गिरफ्त में आने के बाद दिनेश बिवाल ही नहीं करता, बल्कि जब इस पूरे मामले को आज तक पर सबसे पहले पड़ताल करके रिपोर्ट करने वाले संवाददाता शरद कुमार दिनेश और मांगीलाल के घर पर पहुंचकर आगे जानना चाहते हैं, तो पहले तो आज तक का कैमरा, आज तक का माइक, आज तक संवाददाता को देखकर पेपर लीक कराने के आरोपी का परिवार उन्हें पीछे हटाने लगता है। क्योंकि इस परिवार को लगता है कि आज तक पहुंच गया है तो फिर कोई ना कोई बड़ी खबर पेपर लीक खुलासे में सामने लेकर आएगा, और यही होता है जहां पेपर लीक के आरोपी भाइयों की पत्नियां कहने लगती हैं असली मास्टरमाइंड कोई और है।
20: इतना दिन से पेपर लीक हो रहा है, आज दुश्मन बन रहा है, माखा कई साल दो बच्चा पेपर दिया जाए, दो बच्चा पेपर देर के नहीं, किस पेपर में भी
21: 2024 में भी लीक होगा,
20: मारो बेटो पहली बार नीट को पेपर दियो जो नीट का पेपर में पहली बार नहीं कोई मारा बेटा को पसा पागल आग रहा है, अन्या खेगा मैं दिए अन्या खेंगे।
22: आपके बेटी भी दिया थे?
20: मेरे बेटा दिया है मेरा नीट का पेपर, उसके
22: इस बार बेटा दिया है ना?
20: हाँ मेरा बेटा पेपर दिया नीट का, पर मेरे बेटे के इतने मार्क्स नहीं आए और किसी ने पसा दिया मेरे आदमियों को,
21: हमारे किसी ने फसा
20: दिया है, हमारे बच्चों ने पिछली बार तीन चार बच्चों ने
21: किसी की शादी
20: से चाहिए सारा उनको छोड़ रहा हूँ, हाँ पाचा पड़ गया सारा
21: इतना
20: पड़ा पेपर में होगा।
7: ये बात सच है कि नीट पेपर लीक के पीछे एक बड़ा आदमी है, क्योंकि अब तक सीबीआई ने जिनको पकड़ा या तो जो सीधे जांच के दायरे में हैं उन्हें पकड़ा है, जैसे अहिल्यानगर से एक धनंजय लोखंडे पकड़ा गया लेकिन वो कोई बड़ा आदमी नहीं है, नासिक से जो पकड़ा गया वो भी कोई बड़ा आदमी नहीं है, जितने भी लोग पकड़े गए वो बड़ा आदमी नहीं है, तो आखिर कौन है वो बड़ा आदमी?
5: दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल जयपुर के पास रहने वाले ये दो भाई प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन डीलरी करते करते ये दोनों दावा है कई वर्षों से नीट के पेपर लीक की भी डील करने लगे, जिसकी जांच में जुटी सीबीआई की टीम तफ्तीश करने इन दोनों के घर तक पहुंचती है, गाड़ी तक की जांच करती है।
23: नीट पेपर लीक 2026 में गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल दिनेश और विकास के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं किस तरह से घर में पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है। यहां आसपास जो इनके घर में गाड़ियां थी उन गाड़ियों की भी तलाशी ली गई है, इसके अलावा भी जो सामान है उन सारे सामान की भी तलाशी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है। अब इस तरह से निकल रहे हैं, क्या आप लोगों ने देखा, कुछ पाया यहाँ कुछ आप लोगों ने जांच में?
5: सीबीआई के अफसर कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत लेकर बिवाल ब्रदर्स के घर से निकलते हैं, वो घर जो केवल आरोपियों का घर नहीं बल्कि इस घर से इतने नीट पास करने वाले बच्चे एक साल में निकल गए कि शंका पैदा हो गई है कहीं हर साल ये पेपर लीक करा के तो खेल नहीं करते रहे। हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। गिरफ्तार मांगीलाल बिवाल के बेटे विकास को पिछले साल 2026 की नीट परीक्षा पास करके सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति ने भी नीट परीक्षा पिछले साल पास कर ली और मेडिकल कॉलेज में दौसा के दाखिला ले लिया। इन दोनों का तीसरा भाई जो जीवित नहीं, उस घनश्याम बिवाल की बेटी पलक बिवाल को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नीट निकाल के एडमिशन 2025 में मिल चुका है। दूसरी बेटी सानिया बिवाल को मुंबई के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और गिरफ्तार दिनेश बिवाल की बेटी गुंजन को वाराणसी के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। यानी पांच बच्चे इसके घर से नीट निकाल लेते हैं, सुनकर ही चौंक जाना पड़ता है कि इतना पढ़ाकू परिवार था क्या। जहां दिनेश बिवाल ने सोशल मीडिया तक पर डाल दिया कि उसके परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि उसके परिवार के 5 बच्चों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ। लेकिन जब इसी परिवार के इतने टॉप क्लास की पढ़ाई करने वाले बच्चों के बारे में आज तक संवाददाता शरद कुमार पूछते हैं तो इनकी माएं कुछ भी जानकारी में होने से इनकार करने लगती हैं।
0: बेटी कहाँ पढ़ती है अभी?
20: पढ़ रही है हमारी तो कौन कौन सी, मैं पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ जो मैं कौन कौन सी बता दूँ क्या है क्या नहीं है।
0: तो हमने सब पढ़ाया मेहनत करके,
20: मेहनत पढ़ाया मैं अनपढ़ गाँव और मैं पढ़ी लिखी कौन है, मैं
0: कहाँ पढ़ रही, ये तो पता होगा।
20: पद पढ़ रहा जो मैं पढ़ी लिखी हूँ तो वो नाम भी पढ़ लू ना, कहाँ पढ़ रही जवा।
0: अरे जग शहर का नाम तो पता होगा,
20: शहर का नाम भी पता होगा। मैं चले आऊँ ना, मेरा आदमी से ही मिलवा, कोड़ा रख रखा है, कोड़ा नहीं रख रखा है, मेरा बेटा ना कोड़ा रख रखा है।
0: आपका बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ता है ये तो बता सकती है?
20: बच्चा पा मैं वो पढ़ी लिखी हूँ ना तो मैं कहीं बताऊँ भी, कोचिंग में पढ़ रहे वो कोचिंग में पढ़ रहे।
0: बताओ ये गुंजन कहाँ पढ़ती है?
20: गुंजन कहाँ पढ़ती है कौन सी, मुझे पता नहीं है ना कौन सी जगह पढ़ती है गुंजन।
0: MBBS कर रही है ना?
20: नहीं MBBS कुछ नहीं कर रही मेरी तो।
0: कहाँ कर रही है?
20: क्लियर ही कौन हूँ माखा बच्चा उनको, यहाँ
0: विकास कहाँ पढ़ता है?
20: विकास को मुना कहीं पता को ओड़ा पढ़ा, जब मैं पढ़ी लिखी हूँ तो बताऊँ ना, ये पढ़ा ये समझ वाला बतावा।
0: प्रगति कहाँ पढ़ती है?
20: मुझे कुछ ही पता नहीं है मेरे बच्चों का क्या, कहाँ
0: दुनिया कहाँ पढ़ती है
20: कुछ पता नहीं है, किसी जगह पढ़ती है वो कौन सी जगह। मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं बच्चा उनको यहाँ फड़ारगंज में चले जाऊँ ना, मैं खुद ही चल जाऊँ आदमी से मिलवा।
0: बताता होगा ना किस शहर में जाता है?
20: हाँ जाता है तो इधर ही चल जाता है, जयपुरपुर की तरफ इधर ही चल जाता है हमारे तो, ये सारा ही गाँव है आस पास का, कशा कशा गाँव है।
0: अच्छा, कशी कशी अच्छा, ये पढ़ते कहाँ पर थे?
20: हाथ जोड़ा था भाई, मैं माथा का हाथ जोड़ा था, मान परेशान मत करो थे।
5: तो क्या ये जो राजस्थान का बिवाल परिवार है इसके पीछे असली खिलाड़ी बड़ा आदमी कोई और है? क्योंकि ये लोग हर साल पेपर लीक करा लेंगे, इतनी इनकी ताकत नहीं दिखती। दावा ये है कि मांगीलाल और दिनेश तो नीट पेपर लीक में कोरियर का काम करते थे, जहां दिनेश ने अब की बार अपने बेटे ऋषि के लिए पेपर लीक कराया, लेकिन उसका बेटा 600 नंबर का लीक पेपर पाकर भी आंसर की से जांचने पर पता चला 107 नंबर का पेपर ही कर पाया था।
1: तो सरकार जिस तरह से सख्ती से अभी काफी सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं जो करनी भी चाहिए, एक हमको ना एग्जांपल सेट करना चाहिए कि इस तरह का काम करोगे तो देश आपको छोड़ेगा नहीं।
7: और अब बात तो आंधी तूफान की, जिसने यूपी में बहुत कहर बरपाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से यूपी में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। भीषण आंधी में सड़कों से पेड़ उखड़ गए, गाड़ियों के ऊपर गिर गए, घरों की दीवारें ढह गईं, टिन शेड उखड़ गए और लगभग 100 लोगों की मौत हो गई।
4: कहीं तूफान में इंसान उड़ गया, कहीं पेड़ जमीन से ही उखड़ गए, कहीं पेड़ घर पर गिर गया, कहीं पेड़ के नीचे गाड़ियां फंस गई। यह है उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली का कहर। बुधवार को यूपी में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। न कोई चेतावनी, न कोई पहले से जानकारी, न कोई अलर्ट, सीधा आंधी तूफान आया, बिजली गिरी और 104 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने से बुधवार को कुल 104 लोगों की मौत हुई। इनमें से 4 लोग बिजली गिरने से मारे गए हैं, 52 लोग घायल भी हैं और 98 घर भी टूटे हैं। इसके अलावा 130 जानवरों की भी जान गई है। और ये तो सरकारी आंकड़े, तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति इससे कहीं ज्यादा बदतर है। सबसे बड़ी बात कि मॉनसून से पहले का आंधी तूफान इतनी तबाही लेकर आएगा किसी ने सोचा नहीं था। लोग हर रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे, तूफान आया और कई लोगों की जान ले ली। बदायूं में भीषण आंधी तूफान से अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की मौत हुई है। भदोही जिले में अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की मौत हुई। मिर्जापुर में भी आंधी तूफान की वजह से पूरे जिले में 17 लोगों की मौत हुई। फतेहपुर में 5 महिलाओं समेत कुल 11 लोग मारे गए। प्रयागराज में कल आए आंधी तूफान की वजह से कुल 21 लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा 1-2 मौतें तो ज्यादातर जिलों में हुई ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं बरेली से। आंधी में छत उड़ जाती है, तिरपाल उड़ जाता है, कपड़े उड़ जाते हैं, पेड़ भी उखड़ जाता है, लेकिन इंसान उड़ते शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। बरेली में कल जो तूफान आया उसमें नन्हे मियां उड़ गए। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तब से ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये कोई AI वीडियो तो नहीं है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन हकीकत यही है कि बरेली में नन्हे मियां तूफान से बचने के लिए बारात घर की छत पकड़े हुए खड़े थे। तूफान इतना तेज था कि छत ही उड़ गई और नन्हे मियां फिल्मी स्टाइल में 50 फीट ऊपर हवा में उछल गए और उछलकर एक खेत में जा गिरे। इस हादसे में नन्हे मियां बुरी तरह से घायल हो गए, उनके हाथ और पैर में चोट आई है।
6: बहुत तेज लकुड़ा आ रहा था, लकुड़े के साथ में ऊपर मतलब 30-40 फीट ऊंचा चले गए। हमें ना पता कहाँ गिरे, क्या हुआ, कम से कम 50 फीट दूरी से।
8: नहीं तो आपने उसको पकड़ रखा था, क्या था?
6: हाँ मतलब पकड़ा नहीं था, मतलब गाय के जोड़े खड़े हम बांध रस्सी पड़ी हुई थी।
8: अच्छा।
6: हाँ रस्सी पकड़ी थी।
4: पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। उन्नाव में तेज आंधी के चलते एक नीम का पेड़ उखड़ गया और कार के ऊपर गिर गया। कार के अंदर बैठे शख्स ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। पेड़ गिरने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बदायूं में यह आंधी तूफान जानलेवा रहा। यहां अलग अलग स्थानों पर दो मासूमों समेत 6 लोगों की मौत हुई है। आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और दीवारें टूट कर गिर पड़ी, जिसके नीचे दबकर 2 मासूम बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हुई। एक ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर उत्तराखंड के बाजपुर से बुलंदशहर जा रहा था। बदायूं के बिसौली में तेज आंधी से सड़क किनारे यूकेलिप्टस का पेड़ टूटकर ट्रक पर आ गिरा। इसके नीचे दबकर 29 साल के ट्रक ड्राइवर योगेश की मौत हो गई। पुलिस ने पेड़ को कटवाकर जैसे तैसे उसके शव को बाहर निकलवाया। यही हाल भदोही का भी रहा। यहां पूरे जिले में कुल 16 लोगों की मौत हुई है। एक महिला का पूरा परिवार इस त्रासदी की जद में आ गया। महिला के घर पर पेड़ गिरने के कारण उसकी और उसकी 2 मासूम बेटियों की मौत हो गई। एक बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है। पति मुंबई में काम करते हैं।
9: इन्होंने ये बताया कल तो घटना हुई है, क्या घटना है पूरी
10: बात? भाई वही आनी तूफान आई थी सर, और वहाँ पे पेड़ गिर के दब के खत्म हो गए।
9: कौन खत्म?
10: मेरी बहन थी और 2 भतीजी थी, वो लोग खत्म हो गए। 2 बच्चे हैं, 1 भर्ती है अस्पताल में।
9: क्या आपको वहाँ से जानकारी बताया गया परिवार?
10: वहाँ पे ये बताया गया कि नीम का पेड़ गिर गया है, वो लोग दब गए हैं। तब हम लोग नहीं थे, तब हमारे चाचा के लड़का लोग आए यहाँ पे, फिर उसको लेके निकाले, फिर 2 तो बच गए, 3 मर गए।
9: कितने बच्चे हैं?
24: जो तूफान चक्रवाती तूफान आया था उसी में जो है नीम का पेड़ गिर जाने से हरिजन बस्ती के 5 लोग, मतलब माँ थी और 4 लड़कों लेके उसी घर में घुस गई अपने घर में। जो मौके पर वो पेड़ गिर गया जो है घर के ऊपर, और उसी में लोग दब गए, तो 3 लोगों की तो मौके पे मौत हो गई, 2 लोगों को गंभीर लोग घायल हो गए हैं, उनको जिला अस्पताल या कहीं रेफर किया गया है बनारस ट्रामा सेंटर।
4: एक और घटना, उगापुर सरौली में मंदिर गई एक परिवार की 3 महिलाएं विशालकाय पेड़ गिरने के दौरान उसकी चपेट में आ गई, जिससे 3 की मौत हो गई।
25: तेज आंधी तूफान आने की घटना के कारण अलग अलग थाना क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, जिसमें पेड़ गिर जाने के कारण अथवा बिजली का खंभा घरों के ऊपर गिर जाने के कारण अथवा एक मंदिर के ऊपर गिर जाने के कारण कई सारी कैजुअल्टीज हुई हैं। कुल मिलाकर के अभी तक प्राप्त सूचना के क्रम में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 8 लोग इन घटनाओं में घायल हुए हैं अलग अलग।
4: बहुत से लोग बिजली गिरने की वजह से भी मारे गए हैं, जो और ज्यादा भयावह है, क्योंकि गंगा के बेसिन में बिजली गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पूरे यूपी में कल बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में देश में बिजली गिरने की घटनाओं में 400% का इजाफा देखा गया है। भारत में हर साल बिजली गिरने की घटनाओं में 7-14% की वृद्धि दर्ज की गई है। रिसर्च बताती है कि अगर तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो बिजली गिरने की घटनाएं 8-10% बढ़ जाती हैं। पिछले कुछ वक्त में बिजली गिरने की घटनाएं भारत के पूर्वी, उत्तरी और तटीय इलाकों से उत्तर पश्चिमी और हिमालय की तलहटी तक पहुँच चुकी हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात बिजली गिरने के नए हॉटस्पॉट्स हैं, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये भी देखा गया है कि जहां जहां से नदियां गुजरती हैं, वहां ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। जैसे गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, ताप्ती और नर्मदा की घाटियों में ज्यादा बिजली गिरती है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि नदियों की घाटियों पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण और शहरीकरण हो गया है, जिसकी वजह से वहां गर्मी बढ़ गई है, इससे ज्यादा वाष्पीकरण होता है और बिजली गिरती है। अगर समय की बात करें तो बिजली गिरने की घटनाएं अब लगभग पूरे साल होती हैं। आमतौर पर पूर्वी भारत में मॉनसून के पहले के आंधी तूफान में बिजली गिरती है, इसे काल बैसाखी भी कहा जाता है। आज तक ब्यूरो।
7: इंदौर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। हल्दी की रस्म के दौरान दुल्हन को चेहरे और शरीर में तेज जलन शुरू हुई। कुछ ही देर में चेहरे पर लाल धब्बे और सूजन बढ़ने लगी। परिजन तुरंत दुल्हन को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। जांच में आशंका व्यक्त की गई कि मिलावटी हल्दी ने जानलेवा रिएक्शन कर दिया। इलाज के दौरान दुल्हन की मौत हो गई।
5: मध्य प्रदेश का खरगोन, दुल्हन की हल्दी का कार्यक्रम चल रहा है। हंसी खुशी संगीत के बीच अचानक दुल्हन राखी परेशान होने लगती है। चेहरे हाथ पैर पर घर वालों दोस्तों की तरफ से लगाई जाती हल्दी से उसके चेहरे पर जलन तेज महसूस होती है। वो दौड़ती है। हालत ये हो जाती है कि दुल्हन को इंदौर के अंबाई अस्पताल में ले जाकर तुरंत भर्ती तक कराना पड़ता है। लेकिन क्या मिलावटी हल्दी की वजह से दुल्हन की मौत हो गई? क्या हल्दी की रस्म में मिलावटी केमिकल वाली हल्दी जान ले रही है? क्या हल्दी की रस्म में जहरीले केमिकल की मिलावट अब मार दे रही है? इस सवाल की वजह 22 साल की ये दुल्हन है। ये इसकी शादी की तैयारी से पहले की तस्वीर है, जिसकी शादी में हल्दी की रस्म के दौरान हल्दी लगाने से दावा है इतनी भयानक एलर्जी हुई कि उसे इंदौर के अस्पताल में जब तक भर्ती कराया गया हालत बिगड़ चुकी थी। चेहरे पर सूजन आने लगी, हाथ पैर में लाल धब्बे पड़ने लगे।
11: सर उसके हल्दी लगी हुई थी और अचानक से कुछ ऐसा हुआ तो गले में सूजन आ गया, मुंह सूज गया उनका होठ। उसके बाद में लड़के से बोला भी नहीं जा रहा, तो फिर अब दुल्हन थी सर, सब घबरा गए। हल्दी ये बाजार में से लेके आए थे सर, बेचने वाले आए थे तो उसके लिए ले ली थी, तो उसी से गड़बड़ हो गई सर। अब
12: एलर्जिक रिएक्शन था काफी उसके शरीर में, अर्टिकेरिया और होठों पे भी कुछ स्वेलिंग वगैरह थी। और जब उसकी हिस्ट्री निकाली गई तो ये पता चला कि उसको कोई शादी का उनके यहाँ प्रोग्राम था, उसमें हल्दी लगाई गई थी, जिसके कारण उसके कुछ ही देर के बाद उसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ और उसको लाके वार्ड में भर्ती किया था। और चूंकि उसके साथ साथ उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, तो प्रिकॉशनरी हम लोगों ने उसको आईसीयू में रखा था। उन्होंने बाजार से कुछ हल्दी खरीदी थी, हो सकता है उसमें किसी तरह का कोई केमिकल्स, कई बार हल्दी को कलर बढ़ाने के लिए डाल के रखते हैं, उसके कारण ये एग्जैजरेटेड रिएक्शन उसके लिए एलर्जिक रिएक्शन हुआ।
5: इसके बाद दावा है कि स्थिति न सुधरने पर घर वाले एक दूसरे अस्पताल ले गए और बाद में फिर राखी की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि जान चली गई।
13: जहाँ जहाँ भी सोर्सेस प्राप्त हुए वहाँ से नमूने हमने संग्रहित किए गए और लेबोरेटरी प्रयोगशाला को भेजे गए। हल्दी लगाने से ऐसा रिएक्शन हुआ ऐसा बता रहे, बाकी हमने भी जांच करी है और हमने लेबोरेटरी सैंपल के लिए भेज दिए गए।
5: 14 दिन में जांच से पता चलेगा राखी की मौत किस तरह की मिलावटी हल्दी की वजह से हुई। क्या केवल मिलावटी केमिकल वाली हल्दी इसकी वजह है या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है? अब सवाल आपसे जुड़ा है, हल्दी का इस्तेमाल खाने में होता है, हल्दी का इस्तेमाल शादियों में रस्म निभाने में होता है, तो क्या हल्दी अगर मिलावटी है, केमिकल वाली है, तो रिएक्शन से लेकर जानलेवा तक हो सकती है?
14: खाने की और यदि चेहरे पे भी लगा रहे हैं तो मेरा तो सुझाव यही है कि जो खाने की हल्दी है और ब्रांडेड है वो बारीक हल्दी, उसका ही उपयोग करना चाहिए। ड्रेस एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत कई बार जो है जो हल्दी है जो पैक करके दे रहे हैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव या अन्य रंग या गुलाल जैसा बना के भी उसको किया सकता है, उससे काफी हानि हो सकती है सर। वो जो हल्दी होगी या तो उन्होंने कहीं लूज हल्दी जो है यूज किया होगा बाजार में जो खुलेआम ठेले पे बिकती है। देखिए हल्दी को यदि हम पानी में घोल के कुछ देर रख देते हैं तो आप देखेंगे कि जो मूल हल्दी है वो पानी में घुलती नहीं है, जो हल्दी जो है नीचे बैठ जाएगी। और जो यदि उसमें कलर है तो कलर जो है गाढ़ा कलर यदि मिलाया गया है तो वो कलर ऊपर तैरने लगता है।
15: पीसी हल्दी में मिलावट की ज्यादा संभावना होती है?
14: पीसी हल्दी में ही ज्यादा संभावना है, हम जांच कर रहे हैं। और यदि फूड के माध्यम से इस तरह की हल्दी बेची जा रही है जो चेहरे पे लगा के और यदि कलर यूज हो रहा है तो निश्चित रूप से
5: आशंका है कि हल्दी में मेटानिल येलो नाम का जहरीला सिंथेटिक डाई मिलाया गया, वो भी इतनी मात्रा में जो जानलेवा बन गया। इस मेटानिल येलो का इस्तेमाल कपड़ा रंगने में किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने के कारण भारत में FSSAI समेत विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों में इसके उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध है। खरगोन की दुल्हन राखी, जिसको घर परिवार के 15 से ज्यादा लोगों ने हल्दी लगाई,
2: उनके हाथ में कोई रिएक्शन नहीं होने का दावा है। दुल्हन राखी को ही पहले रिएक्शन हुआ और फिर जान तक चली गई।
7: थोड़ा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी के 5 देशों की यात्रा पर दुनिया की नजर। आज सुबह यूएई के लिए होंगे रवाना। नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का करेंगे दौरा। देश में निर्यात के लिए निर्णायक फैसलों की उम्मीद। पीएम की अपील के बाद बीजेपी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों में तेल बचाने की होड़। बस, बाइक से लेकर साइकिल तक का इस्तेमाल, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। रेखा गुप्ता बोली, हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। अमित शाह से योगी की मुलाकात पर बड़ा राजनीतिक तापमान। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रालय बंटवारे समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात। बीजेपी अध्यक्ष से भी मिले योगी। शराब घोटाले में सुनवाई के दौरान जस्टिस पर टिप्पणी को लेकर आपकी मुसीबत बढ़ी। कोर्ट ने माना अवमानना। केजरीवाल, सिसोदिया समेत 5 पर निशाना। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर बड़ी बैठक। सीबीआई ने 23 की जांच। महाराष्ट्र से 2 गिरफ्तारियां, 5 को 7 दिन की सीबीआई रिमांड। क्या ईरान युद्ध नए सिरे से भड़कने वाला है और इसलिए भारत खुद को बड़े संकट की चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन युद्ध के इस शोर में महंगाई धीरे धीरे आप पर, हम पर, आम आदमी पर शिकंजा कस रही है। हमारे देश को पता है कि यह कठिनाई आ रही है, जिसे रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सतर्क आपको और हमें देश को कर रहे हैं। कहते आ रहे हैं कि हम सबको मिलकर बचाएंगे और हम सब मिलकर बचत करेंगे, तभी इस महंगाई से बच पाएंगे।
1: पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, भारत भी इससे अछूता नहीं है। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। ये संकट किसी भी तरह हमारी प्रगति को, हमारे विकास को प्रभावित न करे, न करे, करे।
2: जिस संकट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हफ्ते से पूरे देश को खबरदार करते आ रहे हैं, वो अब थोक में आपके ऊपर आने लगा है। संकट को समझ लीजिए, खबरदार हो जाइए, क्योंकि अप्रैल के महीने में थोक महंगाई दर 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई, जो मार्च में 3.88% पर थी। ये 42 महीने में सबसे ज्यादा है। प्राइमरी आर्टिकल यानी कच्चे सामान की महंगाई 6.36% से 9.17% हो गई। वहीं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की महंगाई भी 3.39% से 4.62% पहुंच गई। मतलब है कि फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान की लागत भी बढ़ रही है। कोर महंगाई यानी खाने पीने की चीजों और ईंधन को छोड़ बाकी वस्तुओं की महंगाई भी बढ़कर 5% पर पहुंच गई, जो 43 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे ये संकेत मिलने लगा है कि महंगाई का दबाव अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं, बल्कि बाकी सेक्टर में फैलने लगा है। और महंगाई का यही संकट धीरे धीरे आपकी जेब की चारों तरफ जकड़ने लगा है। वो आपके घर के सिलेंडर से लेके रेस्टोरेंट ढाबे के सिलेंडर तक पहले दबे पांव पहुंचा, जो सबसे पहले महंगे हो चुके हैं। जिसने जनता की जेब को ढीला करना मार्च के महीने से शुरू किया, मई तक ढीला करता आया।
3: सिलेंडर का रेट ऑलरेडी इतना हाई रहेगा, तो फूड एंड बेवरेजेस का भी थोड़ा हमारे को इश्यूज रहा करेगा।
4: क्या ये आपके बजट में रहेगा बाहर आना, जैसे आप पहले यूजुअली बाहर आते थे?
5: बट ऑब्वियसली वो कम ही हो जाएगा, हमारा बाहर खाना वगैरह
4: कम करना पड़ेगा,
5: हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
2: अब महंगाई का वो संकट काल आम लोगों को सुबह से परेशान करने जा रहा है, जहां दूध की थैलियों का वजन उतना ही रहना है। बस आपकी जेब 2 रुपए प्रति लीटर अमूल से लेकर मदर डेयरी तक के दूध खरीदने पर ढीली होने लगी है।
6: बहुत गलत हुआ, बढ़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो गरीब है वो कैसे खाना खाएगा।
7: जो बिल्कुल गरीब तबका है उसको सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए जद्दोजहद करता है।
8: मुश्किल तो है हर चीज में, हर चीज महंगी हो रही है प्रॉब्लम, और दूध उसके बाद जरूरत की चीज है, बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है।
9: महीने का बजट भी इसी से निर्धारित होता है। अब 2 रुपए का बढ़ने का मतलब है कि 60 रुपए। तो उसके आधार पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि है ना इतनी जल्दी जल्दी ना बढ़ाएं।
10: ओवर टाइम इस पर बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली जो लोग मेहनत करते हैं रोज की, उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ता है।
2: मुंबई में तो सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। क्या अब जल्द ही दूसरी जगहों पर सीएनजी के दाम बढ़ने की आशंका है? और तब थोक महंगाई दर अगर 42 महीनों में सबसे ज्यादा हो जाती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियां बढ़ी हुई लागत को जल्द ग्राहकों पर डालेंगी।
1: विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है, और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है।
0: अब गाड़ियों को चलाने वाले तेल की बात अब कर लेते हैं। आपकी हमारी सबकी चिंता पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर है, क्योंकि ये जैसे ही बढ़ेंगे महंगाई क्लस्टर बॉम्ब की तरह फूटेगी। हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से लेकर आरबीआई के गवर्नर तक के बयान इसी संकट की तरफ संकेत भी दे चुके हैं, और इसीलिए जनता के मन में तेल के दाम को लेकर आशंका बनी हुई है।
11: तेल का रेट जैसे बढ़ रहा है तो बढ़ना तो चाहिए, लेकिन अभी तक तो मुझे उम्मीद नहीं है। क्या टीवी में मैं भी देखता हूँ, टीवी में नहीं बताया जा रहा है जो रेट बढ़ेगा। सब्सिडी आया था तो गवर्नमेंट अपने जेब से दिया है, तो अब क्या भरोसा बढ़ा दे।
12: अगर जो स्थिति बनती है कि डीजल या पेट्रोल का दाम बढ़ाया जाए तो आपके हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए?
13: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
12: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
13: गरीबों पे मार होती है।
12: ऐसे भारत की देश की हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत रहनी चाहिए। कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते भी हैं तो देश के लिए ही हैं, हमारे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि सरकार अगर रेट बढ़ा रही है तो कहीं और लेके जा रही है उस पैसे को, वो समाज के लिए देश के लिए काम आ रहा है। और पीछे जो उन्होंने इतने सालों से रेट बढ़े नहीं हमारे, तो 94 रुपए कुछ पैसे चल रहे हैं आज भी वही है, और आज के समय में अगर देश के ऊपर कोई संकट आया तो हम देश के साथ खड़े हैं।
13: पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो देखो सारी अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ेगा, उसको मिडिल क्लास लोग हैं तो
14: अभी तो स्थिति सामान्य है बिल्कुल। अभी किसी तरीके का स्टॉक या इस तरीके से मतलब कोई पैनिक या कुछ नहीं है लोगों में, लोगों को समझ है कि हाँ ठीक है लोग आ रहे हैं और अपना जितना डेली रूटीन में लेते हैं उतना ही ले रहे हैं। सप्लाई में तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई तो जितनी डिमांड मतलब एज पर सेल के हिसाब से डेली सेल के उतनी सप्लाई हमारे पास आ रही है।
15: देखिए ये देश हित के लिए लिया गया फैसला है और इस फैसले का पूर्ण समर्थन है, और मैं किसी पार्टी विशेष के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मोदी जी ने अपने पर्सनल निजी इसके लिए बढ़ाया है। बाकी बहुत सारे समृद्ध देश हैं जिनका ऑलरेडी उन्होंने बहुत पहले बढ़ा चुका, युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने पेट्रोल के कीमतों में बहुत उछाल मार दिया है। हमारे देश में बहुत देर से हुआ है।
16: प्रधानमंत्री बोले हैं कि कुछ कटौती करके चले, अगर ऐसा होता है तो बढ़ भी नहीं सकता है,
17: बढ़ नहीं सकता।
18: मोदी जी हमारे देश के लिए ही कुछ अच्छा सोच करके किए होंगे।
19: सरकार ने अभी तक कंपनियों को रोक रखा है रेट बढ़ाने से, एज पर अगर कंपनी की कैलकुलेशन लगाई जाए तो दे आर बेयरिंग अ लॉस ऑफ अराउंड 20 रुपीज ऑन डीजल एंड 30 रुपीज इन पेट्रोल।
20: प्राइस के लिए देखिए अगर मान के चलिए कुछ बढ़ भी जाता है तो जनता मजबूरन तो लेना ही है, क्योंकि जरूरत का चीज है, उससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मिलना चाहिए,
21: मिलना चाहिए
20: सभी को।
21: सभी को मिलना
20: जी। क्या नाम? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास।
22: जरूरत रहेगा तो आदमी ड्यूटी नहीं करेगा, ड्यूटी नहीं जाएगा, बताइए ड्यूटी तो जाना अनिवार्य है, ड्यूटी नहीं जाएगा पेमेंट नहीं मिलेगा, घर में बैठ के थोड़ी खाएगा लोग। मोदी जी तो कह ही रहा है, लेकिन मोदी जी तो कहेंगे तो ऑफिस में ऑफिस वाले को बोले कि हाँ कष्ट नहीं बोलाए कर्मी को, अपना घर से ही काम करवाए तब ना।
23: भैया बहुत बिक्री हो रही है, वो लाइन लगती हो रही है, और जहाँ 5,000 रुकता था 8,000 रुक रहा है,
24: ज्यादा आ रहे हैं, ये सोच
23: बढ़ा रहे, टंकी फुल करा रहे हैं पूरी।
25: जिस तरीके से लड़ाइयाँ और जिस तरीके से वो चल रहा और मतलब कंपनी को नुकसान उठा के बेच रही है माल, उसके हिसाब से तो हम लोग नहीं बता सकते ना, लेकिन ये कि जैसा लग रहा हो सकता है कुछ बढ़ जाए।
0: खबर नीट पेपर लीक कांड की। नीट लीक कांड में अब सवाल यह है कि कौन है वो बड़ा आदमी जिसका नाम अपने घर के 5 बच्चों को डॉक्टर बना देने वाले दिनेश बिवाल ले रहा है। कौन है इस पेपर लीक कांड का वो बड़ा आदमी जिसका चेहरा छिपा हुआ है, जिसके कारण से आरोपी के घर वाले ही दावा करने लगे हैं कि हर साल देश में नीट का पेपर लीक होता रहा है।
26: बचाया जा रहा है।
2: देश के 22,89,000 परिवारों, बच्चों की उम्मीदों पर नीट का पेपर लीक करा के सरकार के दावों पर पानी फेरने वाला, जिसे बीजेपी के विधायक राजस्थान में अपनी पार्टी का ऊर्जावान कार्यकर्ता बताते आते हैं, आखिर वो किन बड़े लोगों की बात करने लगा? कौन है वो बड़े लोग जब तक नीट पेपर लीक कांड में बचे हुए हैं? क्या कोई मंत्री, क्या कोई एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अफसर, क्या कोई बड़ा नेता, क्या कोई बड़ा कोचिंग चलाने वाला, क्या कोई बड़ा नौकरशाह? कौन है वो बड़ा आदमी जिसको बचाने का दावा पेपर लीक कराने के आरोप में सीबीआई की गिरफ्त में आने के बाद दिनेश बिवाल ही नहीं करता, बल्कि जब इस पूरे मामले को आज तक पर सबसे पहले पड़ताल करके रिपोर्ट करने वाले संवाददाता शरद कुमार दिनेश और मांगीलाल के घर पर पहुंचकर आगे जानना चाहते हैं, तो पहले तो आज तक का कैमरा, आज तक का माइक, आज तक संवाददाता को देखकर पेपर लीक कराने के आरोपी का परिवार उन्हें पीछे हटाने लगता है। क्योंकि इस परिवार को लगता है कि आज तक पहुंच गया है तो फिर कोई ना कोई बड़ी खबर पेपर लीक खुलासे में सामने लेकर आएगा, और यही होता है जहां पेपर लीक के आरोपी भाइयों की पत्नियां कहने लगती हैं असली मास्टरमाइंड कोई और है।
3: इतना दिन से पेपर लीक हो रहा है, आज दुश्मन बन रहा है माँ का। कई साल दो बच्चा पेपर दिया जाए, दो बच्चा पेपर देर के नहीं, किस पेपर में भी
4: 2024 में भी लीक होगा।
3: बेटो चले मारो ऋषि,
4: कई बार हलवा कोरे
3: मारो बेटो, पहली बार नीट को पेपर दियो जाए, नीट का पेपर में पहली बार नहीं कोई मारा बेटा को पसावा का लाग रहा चाहे अन्य खेगा मैं दिखे अन्य खेंगे।
5: आपके बेटी भी दिया थे?
3: मेरे बेटा दिया है मेरा नीट का पेपर, उसके
5: इस बार बेटा दिया है ना?
3: हाँ मेरा बेटा पेपर दिया नीट का, पर मेरे बेटे के इतने मार्क्स नहीं आए और किसी ने फंसा दिया मेरे आदमियों को,
4: किसी ने फंसा
3: दिया है हमारे बच्चों ने पिछली बार, तीन चार बच्चों ने
4: किसी
3: की शादी से सारा उनको छोड़ रहा हूँ, पाचा पड़ गया सारा इतना पेपर में होगा।
0: ये बात सच है कि नीट पेपर लीक के पीछे एक बड़ा आदमी है, क्योंकि अब तक सीबीआई ने जिनको पकड़ा या तो जो सीधे जांच के दायरे में है उन्हें पकड़ा है, जैसे अहिल्यानगर से एक धनंजय लोखंडे पकड़ा गया, लेकिन वो कोई बड़ा आदमी नहीं है। नासिक से जो पकड़ा गया वो भी कोई बड़ा आदमी नहीं है। जितने भी लोग पकड़े गए वो बड़ा आदमी नहीं है, तो आखिर कौन है वो बड़ा आदमी?
2: दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल जयपुर के पास रहने वाले ये दो भाई प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन डीलरई करते करते ये दोनों दावा है कई वर्षों से नीट के पेपर लीक की भी डील करने लगे, जिसकी जांच में जुटी सीबीआई की टीम तफ्तीश करने इन दोनों के घर तक पहुंचती है, गाड़ी तक की जांच करती है।
6: नीट पेपर लीक 2026 में गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल दिनेश और विकास के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं किस तरह से घर में पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है। यहां आसपास जो इनके घर में गाड़ियां थी उन गाड़ियों की भी तलाशी ली गई है, इसके अलावा भी जो सामान है उन सारे सामान की भी तलाशी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है। अब इस तरह से निकल रहे हैं, क्या आप लोगों ने देखा, कुछ पाया यहां? कुछ आप लोगों ने जांच में?
2: सीबीआई के अफसर कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत लेकर बिवाल ब्रदर्स के घर से निकलते हैं, वो घर जो केवल आरोपियों का घर नहीं बल्कि इस घर से इतने नीट पास करने वाले बच्चे एक साल में निकल गए कि शंका पैदा हो गई है कहीं हर साल ये पेपर लीक करा के तो खेल नहीं करते रहे। हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। गिरफ्तार मांगीलाल बिवाल के बेटे विकास को पिछले साल 2026 की नीट परीक्षा पास करके सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति ने भी नीट परीक्षा पिछले साल पास कर ली और मेडिकल कॉलेज में दौसा के दाखिला ले लिया। इन दोनों का तीसरा भाई जो जीवित नहीं, उस घनश्याम बिवाल की बेटी पलक बिवाल को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नीट निकाल कर एडमिशन 2025 में मिल चुका है। दूसरी बेटी सानिया बिवाल को मुंबई के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और गिरफ्तार दिनेश बिवाल की बेटी गुंजन को वाराणसी के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। यानी पांच बच्चे इसके घर से नीट निकाल लेते हैं, सुनकर ही चौंक जाना पड़ता है कि इतना पढ़ाकू परिवार था क्या। जहां दिनेश बिवाल ने सोशल मीडिया तक पर डाल दिया कि उसके परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि उसके परिवार के पांच बच्चों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ, लेकिन जब इसी परिवार के इतने टॉप क्लास की पढ़ाई करने वाले बच्चों के बारे में आज तक संवाददाता शरद कुमार पूछते हैं तो इनकी माएं कुछ भी जानकारी में होने से इनकार करने लगती हैं।
5: बेटी कहाँ पढ़ती है अभी?
3: पढ़ रही है हमारी तो, कौन कौन सी, मैं पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ जो मैं कौन कौन सी बता दूँ क्या है क्या नहीं है।
5: तो हमने सब पढ़ाया मेहनत करके,
3: मेहनत पढ़ाया, मैं अनपढ़ गाँव और मैं पढ़ी लिखी कौन है?
5: पढ़ रही, ये तो पता होगा।
3: पढ़ रहा जो मैं पढ़ी लिखी हूँ तो वो नाम भी पढ़ लू ना, कहाँ पढ़ रही जवा।
5: अरे जग शहर का नाम तो पता होगा,
3: शहर का नाम भी पता होगा। मैं चले आऊ ना, मेरा आदमी से मिलवा, कोड़ा रख रखा जाए, कोड़ा नहीं रख रखा, मेरा बेटा ना कोड़ा रख रखा जाए।
5: आपका बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ता है ये तो बता सकती है?
3: बच्चा पा मैं पढ़ी लिखी हूँ ना तो मैं कहीं बताऊँ भी, कोचिंग में पढ़ रहे थे, वो कोचिंग में पढ़ रहे थे।
5: ये बताओ ये गुंजन कहाँ पढ़ती है?
3: गुंजन कहाँ पढ़ती है? कौन सी तो मुझे पता नहीं है ना कौन सी जगह पढ़ती है गुंजन।
5: MBBS कर रही है ना?
3: नहीं MBBS कुछ नहीं कर रही मेरी तो।
5: कहाँ कर रही है?
3: क्लियर ही कौन नहीं हूँ बच्चा को।
5: विकास कहाँ पढ़ता है?
3: विकास को मुझे कहीं पता, कोड़ा पढ़ा जाए, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो बताऊँ ना, ये पढ़ा ये समझ वाला बताओ।
5: प्रगति कहाँ पढ़ती है?
3: मुझे कुछ पता नहीं है मेरे बच्चों का क्या।
5: कहाँ दुनिया कहाँ पढ़ती है?
3: कुछ पता नहीं है, किसी जगह पढ़ती है वो, कौन सी जगह। मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं बच्चा को ये फड़ारगंज में चले जाऊँ ना, मैं खुद ही चल जाऊँ आदमी से मिलवा।
5: बताता होगा ना किस शहर में जाता है?
3: हाँ जाता है तो इधर ही चल जाता है, जयपुरपुर की तरफ इधर ही चल जाता है हमारे तो। ये सारा ही गाँव से आस पास का कशा कशा गाँव से कशी कशी।
5: अच्छा ये पढ़ते कहाँ पर थे?
3: हाथ जोड़ा था भाई, मैं माथा का हाथ जोड़ा था, मन परेशान मत करो दे।
1: तो क्या ये जो राजस्थान का बिवाल परिवार है इसके पीछे असली खिलाड़ी बड़ा आदमी कोई और है? क्योंकि ये लोग हर साल पेपर लीक करा लेंगे, इतनी इनकी ताकत नहीं दिखती। दावा ये है कि मांगीलाल और दिनेश तो नीट पेपर लीक में कोरियर का काम करते थे, जहाँ दिनेश ने अब की बार अपने बेटे ऋषि के लिए पेपर लीक कराया, लेकिन उसका बेटा 600 नंबर का लीक पेपर पाकर भी आंसर की से जांचने पर पता चला 107 नंबर का पेपर ही कर पाया था।
7: तो सरकार जिस तरह से सख्ती से अभी काफी सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं जो करनी भी चाहिए, एक हमको ना एग्जांपल सेट करना चाहिए कि इस तरह का काम करोगे तो देश आपको छोड़ेगा नहीं।
0: और अब बात उस आंधी तूफान की जिसने यूपी में बहुत कहर बरपाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से यूपी में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। भीषण आंधी में सड़कों से पेड़ उखड़ गए, गाड़ियों के ऊपर गिर गए, घरों की दीवारें ढह गईं, टिन शेड उखड़ गए और लगभग 100 लोगों की मौत हो गई।
8: कहीं तूफान में इंसान उड़ गया, कहीं पेड़ जमीन से ही उखड़ गए, कहीं पेड़ घर पर गिर गया, कहीं पेड़ के नीचे गाड़ियां फंस गई। यह है उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली का कहर। बुधवार को यूपी में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। न कोई चेतावनी, न कोई पहले से जानकारी, न कोई अलर्ट, सीधा आंधी तूफान आया, बिजली गिरी और 104 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने से बुधवार को कुल 104 लोगों की मौत हुई। इनमें से 4 लोग बिजली गिरने से मारे गए, 52 लोग घायल भी हैं और 98 घर भी टूटे हैं। इसके अलावा 130 जानवरों की भी जान गई है। और ये तो सरकारी आंकड़े, तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति इससे कहीं ज्यादा बदतर है। सबसे बड़ी बात कि मॉनसून से पहले का आंधी तूफान इतनी तबाही लेकर आएगा किसी ने सोचा नहीं था। लोग हर रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे, तूफान आया और कई लोगों की जान ले ली। बदायूं में भीषण आंधी तूफान से अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की मौत हुई है। भदोही जिले में अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की मौत हुई। मिर्जापुर में भी आंधी तूफान की वजह से पूरे जिले में 17 लोगों की मौत हुई। फतेहपुर में 5 महिलाओं समेत कुल 11 लोग मारे गए। प्रयागराज में कल आए आंधी तूफान की वजह से कुल 21 लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा 1-2 मौतें तो ज्यादातर जिलों में हुई ही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं बरेली से। आंधी में छत उड़ जाती है, तिरपाल उड़ जाता है, कपड़े उड़ जाते हैं, पेड़ भी उखड़ जाता है, लेकिन इंसान उड़ते शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। बरेली में कल जो तूफान आया उसमें नन्हे मियां उड़ गए। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तब से ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये कोई AI वीडियो तो नहीं है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन हकीकत यही है कि बरेली में नन्हे मियां तूफान से बचने के लिए बारात घर की छत पकड़े हुए खड़े थे। तूफान इतना तेज था कि छत ही उड़ गई और नन्हे मियां फिल्मी स्टाइल में 50 फीट ऊपर हवा में उछल गए और उछलकर एक खेत में जा गिरे। इस हादसे में नन्हे मियां बुरी तरह से घायल हो गए, उनके हाथ और पैर में चोट आई है।
9: बहुत तेज लकूदा आ रहा था, लकूदे के साथ में ऊपर मतलब 30-40 फीट ऊंचा चले गए। हमें ना पता कहाँ गिरे क्या हुआ, कम से कम 50 फीट
10: दूरी से।
11: नहीं तो आपने उसको पकड़ रखा था, क्या था?
10: हाँ मतलब पकड़ा नहीं था, मतलब गाड़ी के जोरे खड़े हम बाद में रस्सी पड़ी हुई थी।
11: अच्छा।
10: हाँ रस्सी पकड़ी थी।
8: पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। उन्नाव में तेज आंधी के चलते एक नीम का पेड़ उखड़ गया और कार के ऊपर गिर गया। कार के अंदर बैठे शख्स ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। पेड़ गिरने से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बदायूं में ये आंधी तूफान जानलेवा रहा। यहां अलग अलग स्थानों पर दो मासूमों समेत छह लोगों की मौत हुई है। आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और दीवारें टूटकर गिर पड़ी, जिसके नीचे दबकर दो मासूम बच्चों समेत छह लोगों की मौत हुई। एक ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर उत्तराखंड के बाजपुर से बुलंदशहर जा रहा था। बदायूं के बिसौली में तेज आंधी से सड़क किनारे यूकेलिप्टस का पेड़ टूटकर ट्रक पर आ गिरा। इसके नीचे दबकर 29 साल के ट्रक ड्राइवर योगेश की मौत हो गई। पुलिस ने पेड़ को कटवाकर जैसे तैसे उसके शव को बाहर निकलवाया। यही हाल भदोई का भी रहा। यहां पूरे जिले में कुल 16 लोगों की मौत हुई है। एक महिला का पूरा परिवार इस त्रासदी की जद में आ गया। महिला के घर पर पेड़ गिरने के कारण उसकी और उसकी दो मासूम बेटियों की मौत हो गई। एक बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है। पति मुंबई में काम करते हैं।
12: उन्होंने बताया कल घटना हुई है, क्या घटना है पूरी बात?
13: भाई वही आंधी तूफान आई थी सर, और वहाँ पे पेड़ गिर के दब के खत्म हो गए।
12: कौन खत्म?
13: मेरी बहन थी और दो भतीजी थी, वो लोग खत्म हो गए। दो बच्चे हैं, एक भर्ती है अस्पताल में।
12: क्या आपको वहाँ से जानकारी बताया गया परिवार?
13: वहाँ पे ये बताया गया कि नीम का पेड़ गिर गया है, वो लोग दब गए हैं। तब हम लोग नहीं थे, तब हमारे चाचा के लड़का लोग आए यहाँ पे, फिर उसको लेके निकाले, फिर दो तो बच गए, तीन मर गए।
12: कितने बच्चे हैं?
14: जो तूफान चक्रवाती तूफान आया था उसी में जो है नीम का पेड़ गिर जाने से हरिजन बस्ती के पांच लोग, मतलब माँ थी और चार लड़कों लेके उसी घर में घुस गई अपने घर में। जो मौके पर वो पेड़ गिर गया जो है घर के ऊपर, और उसी में लोग दब गए, तो तीन लोगों की तो मौके पर मौत हो गई, दो लोगों गंभीर लोग घायल हो गए हैं, उनको जिला अस्पताल या कहीं रेफर किया गया है बनारस ट्रामा सेंटर।
8: एक और घटना, उगापुर सरौली में मंदिर गई एक परिवार की तीन महिलाएं विशालकाय पेड़ गिरने के दौरान उसकी चपेट में आ गई, जिससे तीनों की मौत हो गई।
24: तेज आंधी तूफान आने की घटना के कारण अलग अलग थाना क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, जिसमें पेड़ गिर जाने के कारण अथवा बिजली का खंभा घरों के ऊपर गिर जाने के कारण अथवा एक मंदिर के ऊपर गिर जाने के कारण कई सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। कुल मिलाकर के अभी तक प्राप्त सूचना के क्रम में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 8 लोग इन घटनाओं में घायल हुए हैं अलग अलग।
8: बहुत से लोग बिजली गिरने की वजह से भी मारे गए हैं, जो और ज्यादा भयावह है, क्योंकि गंगा के बेसिन में बिजली गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पूरे यूपी में कल बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में देश में बिजली गिरने की घटनाओं में 400% का इजाफा देखा गया है। भारत में हर साल बिजली गिरने की घटनाओं में 7-14% की वृद्धि दर्ज की गई है। रिसर्च बताती है कि अगर तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो बिजली गिरने की घटनाएं 8-10% बढ़ जाती हैं। पिछले कुछ वक्त में बिजली गिरने की घटनाएं भारत के पूर्वी, उत्तरी और तटीय इलाकों से उत्तर पश्चिमी और हिमालय की तलहटी तक पहुँच चुकी हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात बिजली गिरने के नए हॉटस्पॉट्स, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये भी देखा गया है कि जहां जहां से नदियां गुजरती हैं, वहां ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। जैसे गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, ताप्ती और नर्मदा की घाटियों में ज्यादा बिजली गिरती है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि नदियों की घाटियों पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण और शहरीकरण हो गया है, जिसकी वजह से वहां गर्मी बढ़ गई है, इससे ज्यादा वाष्पीकरण होता है और बिजली गिरती है। अगर समय की बात करें तो बिजली गिरने की घटनाएं अब लगभग पूरे साल होती हैं। आमतौर पर पूर्वी भारत में मॉनसून के पहले के आंधी तूफान में बिजली गिरती है, इसे काल बैसाखी भी कहा जाता है। आज तक ब्यूरो।
0: इंदौर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। हल्दी की रस्म के दौरान दुल्हन को चेहरे और शरीर में तेज जलन शुरू हुई। कुछ ही देर में चेहरे पर लाल धब्बे और सूजन बढ़ने लगी। परिजन तुरंत दुल्हन को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। जांच में आशंका व्यक्त की गई कि मिलावटी हल्दी ने जानलेवा रिएक्शन कर दिया। इलाज के दौरान दुल्हन की मौत हो गई।
2: मध्य प्रदेश का खरगोन, दुल्हन की हल्दी का कार्यक्रम चल रहा है। हंसी खुशी संगीत के बीच अचानक दुल्हन राखी परेशान होने लगती है। चेहरे हाथ पैर पर घर वालों दोस्तों की तरफ से लगाई जाती हल्दी से उसके चेहरे पर जलन तेज महसूस होती है। वो दौड़ती है। हालत ये हो जाती है कि दुल्हन को इंदौर के अंबाई अस्पताल में ले जाकर तुरंत भर्ती तक कराना पड़ता है। लेकिन क्या मिलावटी हल्दी की वजह से दुल्हन की मौत हो गई? क्या हल्दी की रस्म में मिलावटी केमिकल वाली हल्दी जान ले रही है? क्या हल्दी की रस्म में जहरीले केमिकल की मिलावट अब मार दे रही है? इस सवाल की वजह 22 साल की ये दुल्हन है। ये इसकी शादी की तैयारी से पहले की तस्वीर है, जिसकी शादी में हल्दी की रस्म के दौरान हल्दी लगाने से दावा है इतनी भयानक एलर्जी हुई कि उसे इंदौर के अस्पताल में जब तक भर्ती कराया गया हालत बिगड़ चुकी थी। चेहरे पर सूजन आने लगी, हाथ पैर में लाल धब्बे पड़ने लगे।
15: सर उसके हल्दी लगे हुए थे और अचानक से कुछ ऐसा हुआ तो गले में सूजन आ गया, मुंह सूज गया उनका होठ। उसके बाद में लड़के से बोला भी नहीं जा रहा, तो फिर अब दुल्हन थी सर सब घबरा गए। हल्दी ये बाजार में से लेके आए थे सर, बेचने वाला आए थे तो उसके लिए ले ली थी, तो उसी से गड़बड़ हो गई सर। अब
16: एलर्जिक रिएक्शन था काफी उसके शरीर में, अर्टिकेरिया और होठों पे भी कुछ स्वेलिंग वगैरह थी। और जब उसकी हिस्ट्री निकाली गई तो ये पता चला कि उसको कोई शादी का उनके यहाँ प्रोग्राम था, उसमें हल्दी लगाई गई थी, जिसके कारण उसके कुछ ही देर के बाद उसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ और उसको लाके वार्ड में भर्ती किया था। और चूंकि उसके साथ साथ उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी तो प्रिकॉशनरी हम लोगों ने उसको आईसीयू में रखा था। उन्होंने बाजार से कुछ हल्दी खरीदी थी, हो सकता है उसमें किसी तरह का कोई केमिकल्स कई बार हल्दी को कलर बढ़ाने के लिए डाल के रखते हैं, उसके कारण ये एग्जैजरेटेड रिएक्शन उसके लिए एलर्जिक रिएक्शन हुआ।
2: इसके बाद दावा है कि स्थिति न सुधरने पर घर वाले एक दूसरे अस्पताल ले गए और बाद में फिर राखी की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि जान चली गई।
17: जहाँ जहाँ भी सोर्सेस प्राप्त हुए वहाँ से नमूने हमने संग्रहित किए गए और लेबोरेटरी प्रयोगशाला को भेजे गए। हल्दी लगाने से ऐसा रिएक्शन हुआ ऐसा बता रहे, बाकी हमने भी जांच करी है और हमने लेबोरेटरी सैंपल के लिए भेज दिए।
2: 14 दिन में जांच से पता चलेगा राखी की मौत किस तरह की मिलावटी हल्दी की वजह से हुई। क्या केवल मिलावटी केमिकल वाली हल्दी इसकी वजह है या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है? अब सवाल आपसे जुड़ा है। हल्दी का इस्तेमाल खाने में होता है, हल्दी का इस्तेमाल शादियों में रस्म निभाने में होता है, तो क्या हल्दी अगर मिलावटी है केमिकल वाली है तो रिएक्शन से लेकर जानलेवा तक हो सकती है?
18: खाने की और यदि चेहरे पे भी लगा रहे हैं तो मेरा तो सुझाव यही है कि जो खाने की हल्दी है और ब्रांडेड है वो बारीक हल्दी उसका ही उपयोग करना चाहिए। ड्रेस एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत कई बार जो है जो हल्दी है जो पैक करके दे रहे हैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव या अन्य रंग या गुलाल जैसा बना के भी उसको किया सकता है, उससे काफी हानि हो सकती है। वो जो हल्दी होगी या तो उन्होंने कहीं लूज हल्दी जो है यूज किया होगा बाजार में जो खुलेआम ठेले पे बिकती है। देखिए हल्दी को यदि हम पानी में घोल के कुछ देर रख देते हैं तो आप देखेंगे कि जो मूल हल्दी है वो पानी में घुलती नहीं है, जो हल्दी जो है नीचे बैठ जाएगी। और जो यदि उसमें कलर है तो कलर जो है गाढ़ा कलर यदि मिलाया गया है तो वो कलर ऊपर तैरने लगता है।
19: पीसी हल्दी में मिलावट की ज्यादा संभावना होती है?
18: पीसी हल्दी में ही ज्यादा संभावना है, हम जांच कर रहे हैं। और यदि फूड के माध्यम से इस तरह की हल्दी बेची जा रही है जो चेहरे पे लगा के और यदि कलर यूज हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे।
2: आशंका है कि हल्दी में मेटानिल येलो नाम का जहरीला सिंथेटिक डाई मिलाया गया, वो भी इतनी मात्रा में जो जानलेवा बन गया। इस मेटानिल येलो का इस्तेमाल कपड़ा रंगने में किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने के कारण भारत में FSSAI समेत विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों में इसके उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध है। खरगोन की दुल्हन राखी, जिसको घर परिवार के 15 से ज्यादा लोगों ने हल्दी लगाई, उनके हाथ में कोई रिएक्शन नहीं होने का दावा है। दुल्हन राखी को ही पहले रिएक्शन हुआ और फिर जान तक चली गई।

0: पीएम मोदी के पांच देशों की यात्रा पर दुनिया की नजर। आज सुबह यूएई के लिए होंगे रवाना, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का करेंगे दौरा। देश में निर्यात के लिए निर्णायक फैसलों की उम्मीद। पीएम की अपील के बाद बीजेपी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों में तेल बचाने की होड़। बस, बाइक से लेकर साइकिल तक का इस्तेमाल, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। रेखा गुप्ता बोली, हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम। अमित शाह से योगी की मुलाकात पर बड़ा राजनीतिक तापमान। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रालय बंटवारे समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात। बीजेपी अध्यक्ष से भी मिले योगी। शराब घोटाले में सुनवाई के दौरान जस्टिस पर टिप्पणी को लेकर आपकी मुसीबत बढ़ी। कोर्ट ने माना अवमानना। केजरीवाल सिसोदिया समेत पांच पर निशाना। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर बड़ी बैठक। सीबीआई ने तेज की जांच। महाराष्ट्र से दो गिरफ्तारियां, पांच को सात दिन की सीबीआई रिमांड। क्या ईरान युद्ध नए सिरे से भड़कने वाला है और इसलिए भारत खुद को बड़े संकट की चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन युद्ध के इस शोर में महंगाई धीरे धीरे आप पर, हम पर, आम आदमी पर शिकंजा कस रही है। हमारे देश को पता है कि यह कठिनाई आ रही है, जिसे रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सतर्क आपको और हमें देश को कर रहे हैं। कहते आ रहे हैं कि हम सबको मिलकर बचाएंगे और हम सब मिलकर बचत करेंगे, तभी इस महंगाई से बच पाएंगे।
1: पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारत भी इससे अछूता नहीं है। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। ये संकट किसी भी तरह हमारी प्रगति को, हमारे विकास को प्रभावित न करे, न करे, करे।
2: जिस संकट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हफ्ते से पूरे देश को खबरदार करते आ रहे हैं, वो अब थोक में आपके ऊपर आने लगा है। संकट को समझ लीजिए, खबरदार हो जाइए, क्योंकि अप्रैल के महीने में थोक महंगाई दर दो गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई, जो मार्च में 3.88% पर थी। ये 42 महीने में सबसे ज्यादा है। प्राइमरी आर्टिकल यानी कच्चे सामान की महंगाई 6.36% से 9.17% हो गई। वहीं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की महंगाई भी 3.39% से 4.62% पहुंच गई। मतलब है कि फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान की लागत भी बढ़ रही है। कोर महंगाई यानी खाने पीने की चीजों और ईंधन को छोड़ बाकी वस्तुओं की महंगाई भी बढ़कर 5% पर पहुंच गई, जो 43 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे ये संकेत मिलने लगा है कि महंगाई का दबाव अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं, बल्कि बाकी सेक्टर में फैलने लगा है। और महंगाई का यही संकट धीरे धीरे आपकी जेब की चारों तरफ जकड़ने लगा है। वो आपके घर के सिलेंडर से लेके रेस्टोरेंट ढाबे के सिलेंडर तक पहले दबे पांव पहुंचा, जो सबसे पहले महंगे हो चुके हैं। जिसने जनता की जेब को ढीला करना मार्च के महीने से शुरू किया, मई तक ढीला करता आया।
3: सिलेंडर का रेट ऑलरेडी इतना हाई रहेगा, तो फूड एंड बेवरेजेस का भी थोड़ा हमारे को इश्यूज रहा करेगा।
4: क्या ये आपके बजट में रहेगा बाहर?

0: आना जैसे आप पहले यूजुअली बाहर आते थे?
1: बट ऑब्वियसली वो कम ही हो जाएगा हमारा बाहर खाना वगैरह,
0: कम करना पड़ेगा,
1: हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
2: अब महंगाई का वो संकट काल आम लोगों को सुबह से परेशान करने जा रहा है, जहां दूध की थैलियों का वजन उतना ही रहना है, बस आपकी जेब 2 रुपए प्रति लीटर अमूल से लेकर मदर डेयरी तक के दूध खरीदने पर ढीली होने लगी है।
3: बहुत गलत हुआ, बढ़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो गरीब है वो कैसे खाना खाएगा।
4: जो बिल्कुल गरीब तबका है उसको सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए जद्दोजहद करता है।
5: मुश्किल तो है हर चीज में, हर चीज महंगी हो रही है प्रॉब्लम, और दूध उसके बाद जरूरत की चीज है, बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है।
6: महीने का बजट भी इसी से निर्धारित होता है। अब 2 रुपए का बढ़ने का मतलब है कि 60 रुपए, तो उसके आधार पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि है ना इतनी जल्दी जल्दी ना बढ़ाएं।
7: ओवर टाइम इस पर बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली जो लोग मेहनत करते हैं रोज की, उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ता है।
2: मुंबई में तो CNG भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है, क्या आप जल्द ही दूसरी जगहों पर CNG के दाम बढ़ने की आशंका है? और तब थोक महंगाई दर अगर 42 महीनों में सबसे ज्यादा हो जाती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियां बढ़ी हुई लागत को जल्द ग्राहकों पर डालेंगी।
8: विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है, और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है।
9: अब गाड़ियों को चलाने वाले तेल की बात अब कर लेते हैं। आपकी हमारी सबकी चिंता पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर है, क्योंकि ये जैसे ही बढ़ेंगे महंगाई क्लस्टर बॉम्ब की तरह फूटेगी। हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से लेकर RBI के गवर्नर तक के बयान इसी संकट की तरफ संकेत भी दे चुके हैं, और इसीलिए जनता के मन में तेल के दाम को लेकर आशंका बनी हुई है।
10: तेल का रेट जैसे बढ़ रहा है तो बढ़ना तो चाहिए, लेकिन अभी तक तो मुझे उम्मीद नहीं है, क्या टीवी में मैं भी देखता हूँ, टीवी में नहीं बताया जा रहा है जो रेट बढ़ेगा। सब्सिडी आया था तो गवर्नमेंट अपने जेब से दिया है, तो अब क्या भरोसा बढ़ा दे।
11: अगर जो स्थिति बनती है कि डीजल या पेट्रोल का दाम बढ़ाया जाए तो आपके हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए?
12: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
11: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
12: गरीबों पे मार होती है।
11: ऐसे भारत की देश की हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत रहनी चाहिए, कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते भी हैं तो देश के लिए ही हैं, हमारे बढ़ रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि सरकार अगर रेट बढ़ा रही है तो कहीं और लेके जा रही है उस पैसे को, वो समाज के लिए देश के लिए काम आ रहा है। और पीछे जो उन्होंने इतने सालों से रेट बढ़े नहीं हमारे, तो 94 रुपए कुछ पैसे चल रहे हैं आज भी वही है, और आज के समय में अगर देश के ऊपर कोई संकट आया तो हम देश के साथ खड़े हैं।
12: पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो देखो सारी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा, उसको उनको मिडिल क्लास लोग हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत फर्क पड़ने वाला है इस चीज से।
13: अभी तो स्थिति सामान्य है बिल्कुल, अभी किसी तरीके का स्टॉक या इस तरीके से मतलब कोई पैनिक या कुछ नहीं है लोगों में, लोगों को समझ है कि हाँ ठीक है, लोग आ रहे हैं और अपना जितना डेली रूटीन में लेते हैं उतना ही ले रहे हैं। सप्लाई में तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई तो जितनी डिमांड मतलब एज पर सेल के हिसाब से डेली सेल के उतनी सप्लाई हमारे पास आ रही है।
14: देखिए ये देश हित के लिए लिया गया फैसला है और इस फैसले का पूर्ण समर्थन है, और मैं किसी पार्टी विशेष के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मोदी जी ने अपने पर्सनल निजी इसके लिए बढ़ाया है। बाकी बहुत सारे समृद्ध देश हैं जिनका ऑलरेडी उन्होंने बहुत पहले बढ़ा चुका, युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने पेट्रोल के कीमतों में बहुत उछाल मार दिया है, हमारे देश में बहुत देर से हुआ है।
15: प्रधानमंत्री बोले हैं कि कुछ कटौती करके चले, अगर ऐसा होता है तो बढ़ भी नहीं सकता है,
16: बढ़ नहीं सकता।
17: मोदी जी हमारे देश के लिए ही कुछ अच्छा सोच करके किए होंगे।
18: सरकार ने अभी तक कंपनियों को रोक रखा है रेट बढ़ाने से, एज पर अगर कंपनी की कैलकुलेशन लगाई जाए तो दे आर बेयरिंग अ लॉस ऑफ अराउंड 20 रुपीज ऑन डीजल एंड 30 रुपीज इन पेट्रोल।
19: प्राइस के लिए देखिए, अगर मान के चलिए कुछ बढ़ भी जाता है तो जनता मजबूरन तो लेना ही है, क्योंकि जरूरत का चीज है, उससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मिलना चाहिए,
2: मिलना चाहिए
19: सभी को।
2: सभी को मिलना
19: जी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास।
3: जरूरत रहेगा तो आदमी ड्यूटी नहीं करेगा, ड्यूटी नहीं जाएगा, बताइए ड्यूटी तो जाना अनिवार्य है, ड्यूटी नहीं जाएगा पेमेंट नहीं मिलेगा, घर में बैठ के थोड़ी खाएगा लोग। मोदी जी तो कहीं रहा है, लेकिन मोदी जी तो कहेंगे तो ऑफिस में ऑफिस वाले को बोले कि हाँ
20: नहीं बुलाए कर्मी को, अपना घर से ही काम करवाए तब ना।
21: भैया बहुत बिक्री हो रही है, वो लाइन लगती हो रही है, और जहाँ 5,000 रुकता था 8,000 रुक रहा है,
22: ज्यादा आ रहे हैं ये सोच
21: बढ़ा रहे, टंकी फुल करा रहे हैं पूरी।
23: जिस तरीके से लड़ाइयाँ और जिस तरीके से वो चल रहा और मतलब कंपनी को नुकसान उठा के बेच रही है माल, उसके हिसाब से तो हम लोग नहीं बता सकते ना, लेकिन ये कि जैसा लग रहा हो सकता है कुछ बढ़ जाए।
9: खबर नीट पेपर लीक कांड की। नीट लीक कांड में अब सवाल यह है कि कौन है वो बड़ा आदमी जिसका नाम अपने घर के 5 बच्चों को डॉक्टर बना देने वाले दिनेश बिवाल ले रहा है। कौन है इस पेपर लीक कांड का वो बड़ा आदमी जिसका चेहरा छिपा हुआ है, जिसके कारण से आरोपी के घर वाले ही दावा करने लगे हैं कि हर साल देश में नीट का पेपर लीक होता रहा है।
24: देश के 22,89,000 परिवारों, बच्चों की उम्मीदों पर नीट का पेपर लीक करा के सरकार के दावों पर पानी फेरने वाला, जिसे बीजेपी के विधायक राजस्थान में अपनी पार्टी का ऊर्जावान कार्यकर्ता बताते आते हैं, आखिर वो किन बड़े लोगों की बात करने लगा? कौन है वो बड़े लोग जब तक नीट पेपर लीक कांड में बचे हुए हैं? क्या कोई मंत्री, क्या कोई एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अफसर, क्या कोई बड़ा नेता, क्या कोई बड़ा कोचिंग चलाने वाला, क्या कोई बड़ा नौकरशाह? कौन है वो बड़ा आदमी जिसको बचाने का दावा पेपर लीक कराने के आरोप में सीबीआई की गिरफ्त में आने के बाद दिनेश बिवाल ही नहीं करता, बल्कि जब इस पूरे मामले को आज तक पर सबसे पहले पड़ताल करके रिपोर्ट करने वाले संवाददाता शरद कुमार दिनेश और मांगीलाल के घर पर पहुंचकर आगे जानना चाहते हैं, तो पहले तो आज तक का कैमरा, आज तक का माइक, आज तक संवाददाता को देखकर पेपर लीक कराने के आरोपी का परिवार उन्हें पीछे हटाने लगता है। क्योंकि इस परिवार को लगता है कि आज तक पहुंच गया है तो फिर कोई ना कोई बड़ी खबर पेपर लीक खुलासे में सामने लेकर आएगा, और यही होता है जहां पेपर लीक के आरोपी भाइयों की पत्नियां कहने लगती हैं असली मास्टरमाइंड कोई और है।
25: इतना दिन से पेपर लीक हो रहा है, आज दुश्मन बन रहे हैं माँ का, कई साल दो बच्चा पेपर दिया जाए, दो बच्चा पेपर देर के नहीं, किस पेपर में भी
26: 2024 में भी लीक होगा,
25: बेटो चले मारो ऋषि, मारो बेटो, पहली बार नीट को पेपर दियो जो नीट का पेपर में पहली बार नहीं कोई मारा बेटा को पसावा का लाग रहा, अन्य खेंगा मैं दिने, अन्य खेंगे
27: आपके बेटी भी दिया थे,
25: मेरे बेटा दिया है मेरा नीट का पेपर, उसके
27: इस बार बेटा दिया है ना,
25: हाँ मेरा बेटा पेपर दिया नीट का, पर मेरे बेटे के इतने मार्क्स नहीं आए और किसी ने पसा दिया मेरे आदमियों को,
26: किसी ने फसा
25: दिया है हमारे बच्चों ने, पिछली बार 3-4 बच्चों ने
26: किसी की शादी से
25: सारा उनको छोड़ रहा हूँ, पाचा पड़ गया सारा, इतना पेपर में होगा।
9: ये बात सच है, नीट पेपर लीक के पीछे एक बड़ा आदमी है, क्योंकि अब तक सीबीआई ने जिनको पकड़ा या तो जो सीधे जांच के दायरे में है उन्हें पकड़ा है, जैसे अहिल्या नगर से एक धनंजय लोखंडे पकड़ा गया, लेकिन वो कोई बड़ा आदमी नहीं है। नासिक से जो पकड़ा गया वो भी कोई बड़ा आदमी नहीं है। जितने भी लोग पकड़े गए वो बड़ा आदमी नहीं है, तो आखिर कौन है वो बड़ा आदमी?
24: दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल जयपुर के पास रहने वाले ये दो भाई प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन डीलरई करते करते ये दोनों दावा है कई वर्षों से नीट के पेपर लीक की भी डील करने लगे, जिसकी जांच में जुटी सीबीआई की टीम तफ्तीश करने इन दोनों के घर तक पहुंचती है, गाड़ी तक की जांच करती है।
28: नीट पेपर लीक 2026 में गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल दिनेश और विकास के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं किस तरह से घर में पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है। यहां आसपास जो इनके घर में गाड़ियां थी उन गाड़ियों की भी तलाशी ली गई है, इसके अलावा भी जो सामान है उन सारे सामान की भी तलाशी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है। अब इस तरह से निकल रहे हैं, क्या आप लोगों ने देखा, कुछ पाया यहां? कुछ आप लोगों ने जांच में?
24: सीबीआई के अफसर कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत लेकर बिवाल ब्रदर्स के घर से निकलते हैं, वो घर जो केवल आरोपियों का घर नहीं बल्कि इस घर से इतने नीट पास करने वाले बच्चे एक साल में निकल गए कि शंका पैदा हो गई है, कहीं हर साल ये पेपर लीक करा के तो खेल नहीं करते रहे। हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। गिरफ्तार मांगीलाल बिवाल के बेटे विकास को पिछले साल 2026 की नीट परीक्षा पास करके सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला, मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति ने भी नीट परीक्षा पिछले साल पास कर ली और मेडिकल कॉलेज में दौसा के दाखिला ले लिया। इन दोनों का तीसरा भाई जो जीवित नहीं, उस घनश्याम बिवाल की बेटी पलक बिवाल को SMS मेडिकल कॉलेज में नीट निकाल के एडमिशन 2025 में मिल चुका है। दूसरी बेटी सानिया बिवाल को मुंबई के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और गिरफ्तार दिनेश बिवाल की बेटी गुंजन को वाराणसी के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। यानी 5 बच्चे इसके घर से नीट निकाल लेते हैं। सुनकर ही चौंक जाना पड़ता है कि इतना पढ़ाकू परिवार था क्या। जहां दिनेश बिवाल ने सोशल मीडिया तक पर डाल दिया कि उसके परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि उसके परिवार के 5 बच्चों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ। लेकिन जब इसी परिवार के इतने टॉप क्लास की पढ़ाई करने वाले बच्चों के बारे में आज तक संवाददाता शरद कुमार पूछते हैं तो इनकी माएं कुछ भी जानकारी में होने से इनकार करने लगती हैं।
27: बेटी कहाँ पढ़ती है अभी?
25: पढ़ रही है हमारी तो कौन कौन सी, मैं पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ जो मैं कौन कौन सी बता दूँ क्या है क्या नहीं है।
27: तो हमने सब पढ़ाया मेहनत
25: पढ़ाया, पर मैं अनपढ़ गाँव और मैं पढ़ी लिखी कौन है?
27: पढ़ रही ये तो पता होगा,
25: पढ़ रहा है जो मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं नाम भी पढ़ लू ना, कहाँ पढ़ रही जब।
27: अरे जल शहर का नाम तो पता होगा,
25: शहर का नाम भी पता होगा। मैं चल रहा हूँ ना, मेरा आदमी से ही मिलवा, कोड़ा रख रखा है, कोड़ा नहीं रख रखा है, मेरा बेटा ना कोड़ा रख रखा है।
27: आपका बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ता है ये तो बता सकती है?
25: बात क्या बात, मैं वो पढ़ी लिखी हूँ ना तो मैं कहीं बताऊँ भी, कोचिंग में पढ़ रहे थे, वो कोचिंग में पढ़ रहे थे।
27: ये बताओ ये गुंजन कहाँ पढ़ती है?
25: गुंजन कहाँ पढ़ती है कौन सी, तो मुझे पता नहीं है ना कौन सी जगह पढ़ती है गुंजन।
27: MBBS कर रही है ना?
25: नहीं MBBS कुछ नहीं कर रही मेरी तो।
27: कहाँ कर रही है?
25: क्लियर ही कौन नहीं हूँ बच्चा को।
27: विकास कहाँ पढ़ता है?
25: विकास को मुना कहीं पता, कोड़ा पढ़ा, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो बताऊँ ना, ये पढ़ा ये समझ वाला बतावा।
27: प्रगति कहाँ पढ़ती है?
25: मुझे कुछ ही पता नहीं है मेरे बच्चों का क्या।
27: कहाँ दुनिया कहाँ पढ़ती है?
25: कुछ पता नहीं है, किसी जगह पढ़ती है वो, कौन सी जगह। मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं बच्चा को ये फड़ारगंज में चले जाऊँ ना, मैं खुद ही चल जाऊँ आदमी से मिलवा।
27: बताता होगा ना किस शहर में जाता है?
25: हाँ जाता है तो इधर ही चल जाता है, जयपुरपुर की तरफ इधर ही चल जाता है हमारे तो। ये सारा ही गाँव से आस पास का कशा कशा गाँव से कशी कशी।
27: अच्छा ये पढ़ते कहाँ पर थे?
25: हाथ जोड़ा था भाई, मैं माथा का हाथ जोड़ा था, मन परेशान मत करो दे।
24: तो क्या ये जो राजस्थान का बिवाल परिवार है इसके पीछे असली खिलाड़ी बड़ा आदमी कोई और है? क्योंकि ये लोग हर साल पेपर लीक करा लेंगे, इतनी इनकी ताकत नहीं दिखती। दावा ये है कि मांगीलाल और दिनेश तो नीट पेपर लीक में कोरियर का काम करते थे। जहाँ दिनेश ने अब की बार अपने बेटे ऋषि के लिए पेपर लीक कराया, लेकिन उसका बेटा 600 नंबर का लीक पेपर पाकर भी आंसर की से जांचने पर पता चला 107 नंबर का पेपर ही कर पाया था।
0: तो सरकार जिस तरह से सख्ती से अभी काफी सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं जो करनी भी चाहिए, एक हमको ना एग्जांपल सेट करना चाहिए कि इस तरह का काम करोगे तो देश आपको छोड़ेगा नहीं।
9: और अब बात उस आंधी तूफान की जिसने यूपी में बहुत कहर बरपाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से यूपी में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। भीषण आंधी में सड़कों से पेड़ उखड़ गए, गाड़ियों के ऊपर गिर गए, घरों की दीवारें ढह गईं, टिन शेड उखड़ गए और लगभग 100 लोगों की मौत हो गई।
1: कहीं तूफान में इंसान उड़ गया, कहीं पेड़ जमीन से ही उखड़ गए, कहीं पेड़ घर पर गिर गया, कहीं पेड़ के नीचे गाड़ियां फंस गई। यह है उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली का कहर। बुधवार को यूपी में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। न कोई चेतावनी, न कोई पहले से जानकारी, न कोई अलर्ट, सीधा आंधी तूफान आया, बिजली गिरी और 104 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने से बुधवार को कुल 104 लोगों की मौत हुई। इनमें से 4 लोग बिजली गिरने से मारे गए, 52 लोग घायल भी हैं और 98 घर भी टूटे हैं। इसके अलावा 130 जानवरों की भी जान गई है। और ये तो सरकारी आंकड़े, तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति इससे कहीं ज्यादा बदतर है। सबसे बड़ी बात कि मॉनसून से पहले का आंधी तूफान इतनी तबाही लेकर आएगा किसी ने सोचा नहीं था। लोग हर रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे, तूफान आया और कई लोगों की जान ले ली। बदायूं में भीषण आंधी तूफान से अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की मौत हुई है। भदोही जिले में अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की मौत हुई। मिर्जापुर में भी आंधी तूफान की वजह से पूरे जिले में 17 लोगों की मौत हुई। फतेहपुर में 5 महिलाओं समेत कुल 11 लोग मारे गए। प्रयागराज में कल आए आंधी तूफान की वजह से कुल 21 लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा 1-2 मौतें तो ज्यादातर जिलों में हुई ही हैं।
4: लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं बरेली से। आंधी में छत उड़ जाती है, तिरपाल उड़ जाता है, कपड़े उड़ जाते हैं, पेड़ भी उखड़ जाता है, लेकिन इंसान उड़ते शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। बरेली में कल जो तूफान आया उसमें नन्हे मियां उड़ गए। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तब से ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये कोई AI वीडियो तो नहीं है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन हकीकत यही है कि बरेली में नन्हे मियां तूफान से बचने के लिए बारात घर की छत पकड़े हुए खड़े थे। तूफान इतना तेज था कि छत ही उड़ गई और नन्हे मियां फिल्मी स्टाइल में 50 फीट ऊपर हवा में उछल गए और उछलकर एक खेत में जा गिरे। इस हादसे में नन्हे मियां बुरी तरह से घायल हो गए, उनके हाथ और पैर में चोट आई है।
5: बहुत तेज लकुड़ा आ रहा था, लकुड़े के सामने ऊपर मतलब 30-40 फीट ऊंचा चले, हमें ना पता कहाँ गिरे क्या हुआ, कम से कम 50 फीट दूरी से।
6: नहीं तो आपने उसको पकड़ रखा था, क्या था?
5: हाँ मतलब पकड़ा नहीं था, मतलब गाड़ी के जोड़े खड़े हम बाद में रस्सी पड़ी हुई थी।
6: अच्छा।
5: हाँ रस्सी पकड़ी थी।
4: पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। उन्नाव में तेज आंधी के चलते एक नीम का पेड़ उखड़ गया और कार के ऊपर गिर गया। कार के अंदर बैठे शख्स ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। पेड़ गिरने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बदायूं में ये आंधी तूफान जानलेवा रहा। यहां अलग अलग स्थानों पर दो मासूमों समेत 6 लोगों की मौत हुई है। आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और दीवारें टूट कर गिर पड़ी, जिसके नीचे दबकर 2 मासूम बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हुई। एक ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर उत्तराखंड के बाजपुर से बुलंदशहर जा रहा था। बदायूं के बिसौली में तेज आंधी से सड़क किनारे यूकेलिप्टस का पेड़ टूटकर ट्रक पर आ गिरा। इसके नीचे दबकर 29 साल के ट्रक ड्राइवर योगेश की मौत हो गई। पुलिस ने पेड़ को कटवाकर जैसे तैसे उसके शव को बाहर निकलवाया। यही हाल भदोही का भी रहा। यहां पूरे जिले में कुल 16 लोगों की मौत हुई है। एक महिला का पूरा परिवार इस त्रासदी की जद में आ गया। महिला के घर पर पेड़ गिरने के कारण उसकी और उसकी 2 मासूम बेटियों की मौत हो गई। एक बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार चल रहा है। पति मुंबई में काम करते हैं।
7: उन्होंने बताया कल घटना हुई है, क्या घटना है पूरी
8: बात? वही आंधी तूफान आई थी सर, और वहाँ पे पेड़ गिर के दब के खत्म हो गए।
7: कौन खत्म?
8: मेरी बहन थी और 2 भतीजी थी, वो लोग खत्म हो गए। 2 बच्चे हैं, 1 भर्ती है अस्पताल में।
7: क्या आपको वहाँ से जानकारी बताया गया परिवार?
8: वहाँ पे ये बताया गया कि नीम का पेड़ गिर गया है, वो लोग दब गए हैं। तब हम लोग नहीं थे, तब हमारे चाचा के लड़का लोग आए यहाँ पे, फिर उसको लेके निकाले, फिर 2 तो बच गए, 3 मर गए।
7: कितने बच्चे हैं?
10: जो तूफान चक्रवाती तूफान आया था उसी में जो है नीम का पेड़ गिर जाने से हरिजन बस्ती के 5 लोग, मतलब माँ थी और 4 लड़कों लेके उसी घर में घुस गई अपने घर में। जो मौके पर वो पेड़ गिर गया जो है घर के ऊपर, और उसी में लोग दब गए, तो 3 लोगों की तो मौके पर मौत हो गई, 2 लोगों गंभीर लोग घायल हो गए हैं, उनको जिला अस्पताल या कहीं रेफर किया गया है, बनारस ट्रामा सेंटर।
4: एक और घटना, उगापुर सरौली में मंदिर गई एक परिवार की 3 महिलाएं विशालकाय पेड़ गिरने के दौरान उसकी चपेट में आ गई, जिससे 3 की मौत हो गई।
11: तेज आंधी तूफान आने की घटना के कारण अलग अलग थाना क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, जिसमें पेड़ गिर जाने के कारण अथवा बिजली का खंभा घरों के ऊपर गिर जाने के कारण अथवा एक मंदिर के ऊपर गिर जाने के कारण कई सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। कुल मिलाकर के अभी तक प्राप्त सूचना के क्रम में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है, इसके अलावा 8 लोग इन घटनाओं में घायल हुए हैं। अलग अलग
4: बहुत से लोग बिजली गिरने की वजह से भी मारे गए हैं, जो और ज्यादा भयावह है, क्योंकि गंगा के बेसिन में बिजली गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पूरे यूपी में कल बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में देश में बिजली गिरने की घटनाओं में 400% का इजाफा देखा गया है। भारत में हर साल बिजली गिरने की घटनाओं में 7-14% की वृद्धि दर्ज की गई है। रिसर्च बताती है कि अगर तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो बिजली गिरने की घटनाएं 8-10% बढ़ जाती हैं। पिछले कुछ वक्त में बिजली गिरने की घटनाएं भारत के पूर्वी, उत्तरी और तटीय इलाकों से उत्तर पश्चिमी और हिमालय की तलहटी तक पहुँच चुकी हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात बिजली गिरने के नए हॉटस्पॉट्स, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये भी देखा गया है कि जहां जहां से नदियां गुजरती हैं, वहां ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। जैसे गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, ताप्ती और नर्मदा की घाटियों में ज्यादा बिजली गिरती है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि नदियों की घाटियों पर
24: बहुत ज्यादा अतिक्रमण और शहरीकरण हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ गर्मी बढ़ गई है। इससे ज्यादा वाष्पीकरण होता है और बिजली गिरती है। अगर समय की बात करें तो बिजली गिरने की घटनाएं अब लगभग पूरे साल होती है। आमतौर पर पूर्वी भारत में मानसून के पहले के आंधी तूफान में बिजली गिरती है। इसे काल बैसाखी भी कहा जाता है। आज तक ब्यूरो।
9: इंदौर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। हल्दी की रस्म के दौरान दुल्हन को चेहरे और शरीर में तेज जलन शुरू हुई। कुछ ही देर में चेहरे पर लाल धब्बे और सूजन बढ़ने लगी। परिजन तुरंत दुल्हन को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। जांच में आशंका व्यक्त की गई कि मिलावटी हल्दी ने जानलेवा रिएक्शन कर दिया। इलाज के दौरान दुल्हन की मौत हो गई।
24: मध्य प्रदेश का खरगोन, दुल्हन की हल्दी का कार्यक्रम चल रहा है। हंसी खुशी संगीत के बीच अचानक दुल्हन राखी परेशान होने लगती है। चेहरे हाथ पैर पर घर वालों दोस्तों की तरफ से लगाई जाती हल्दी से उसके चेहरे पर जलन तेज महसूस होती है। वो दौड़ती है। हालत ये हो जाती है कि दुल्हन को इंदौर के अंबाई अस्पताल में ले जाकर तुरंत भर्ती तक कराना पड़ता है। लेकिन क्या मिलावटी हल्दी की वजह से दुल्हन की मौत हो गई? क्या हल्दी की रस्म में मिलावटी केमिकल वाली हल्दी जान ले रही है? क्या हल्दी की रस्म में जहरीले केमिकल की मिलावट अब मार दे रही है? इस सवाल शादी में हल्दी की रस्म के दौरान हल्दी लगाने से दावा है इतनी भयानक एलर्जी हुई कि उसे इंदौर के अस्पताल में जब तक भर्ती कराया गया हालत बिगड़ चुकी थी। चेहरे पर सूजन आने लगी, हाथ पैर में लाल धब्बे पड़ने लगे।
2: ने सर उसके हल्दी लगी हुई थी और अचानक से कुछ ऐसा हुआ तो गले में सूजन आ गया, मुंह सूज गया उनका होठ। उसके बाद में लड़के से बोला भी नहीं जा रहा, तो फिर अब दुल्हन थी सर, सब घबरा गए। हल्दी ये बाजार में से लेके आए थे सर, बेचने वाले आए थे तो उसके लिए ले ली थी, तो उसी से गड़बड़ हो गई सर।
12: एलर्जिक रिएक्शन था काफी, उसके शरीर में अर्टिकेरिया और ओंठों पे भी कुछ स्वेलिंग वगैरह थी, और जब उसकी हिस्ट्री निकाली गई तो ये पता चला कि उसको कोई शादी का उनके यहाँ प्रोग्राम था, उसमें हल्दी लगाई गई थी, जिसके कारण उसके कुछ ही देर के बाद उसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ और उसको लाके वार्ड में भर्ती किया था। और चूंकि उसके साथ साथ उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, तो प्रिकॉशनरी हम लोगों ने उसको आईसीयू में रखा था। उन्होंने बाजार से कुछ हल्दी खरीदी थी, हो सकता है उसमें किसी तरह का कोई केमिकल्स, कई बार हल्दी को कलर बढ़ाने के लिए डाल के रखते हैं, उसके कारण ये एग्जैजरेटेड रिएक्शन उसके लिए एलर्जिक रिएक्शन हुआ।
24: इसके बाद दावा है कि स्थिति न सुधरने पर घर वाले एक दूसरे अस्पताल ले गए और बाद में फिर राखी की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि जान चली गई।
13: जहाँ जहाँ भी सोर्सेस प्राप्त हुए वहाँ से नमूने हमने संग्रहित किए गए और लेबोरेटरी प्रयोगशाला को भेजे गए। हल्दी लगाने से ऐसा रिएक्शन हुआ ऐसा बता रहे, बाकी हमने भी जांच करी है और हमने लेबोरेटरी सैंपल के लिए भेज दिए।
24: 14 दिन में जांच से पता चलेगा राखी की मौत किस तरह की मिलावटी हल्दी की वजह से हुई। क्या केवल मिलावटी केमिकल वाली हल्दी इसकी वजह है या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है? अब सवाल आपसे जुड़ा है। हल्दी का इस्तेमाल खाने में होता है, हल्दी का इस्तेमाल शादियों में रस्म निभाने में होता है, तो क्या हल्दी अगर मिलावटी है, केमिकल वाली है, तो रिएक्शन से लेकर जानलेवा तक हो सकती है?
14: खाने की और यदि चेहरे पे भी लगा रहे हैं तो मेरा तो सुझाव यही है कि जो खाने की हल्दी है और ब्रांडेड है वो बारीक हल्दी, उसका ही उपयोग करना चाहिए। ड्रेस एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत कई बार जो है जो हल्दी है जो पैक करके दे रहे हैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव या अन्य रंग या गुलाल जैसा बना के भी उसको किया सकता है, उससे काफी हानि हो सकती है। वो जो हल्दी होगी या तो उन्होंने कहीं लूज हल्दी जो है यूज किया होगा बाजार में जो खुलेआम ठेले पे बिकती है। देखिए हल्दी को यदि हम पानी में घोल के कुछ देर रख देते हैं तो आप देखेंगे कि जो मूल हल्दी है वो पानी में घुलती नहीं है, जो हल्दी जो है नीचे बैठ जाएगी, और जो यदि उसमें कलर है तो कलर जो है गाढ़ा कलर यदि मिलाया गया है तो वो कलर ऊपर तैरने लगता है।
15: पीसी हल्दी में मिलावट की ज्यादा संभावना होती है?
14: पीसी हल्दी में ही ज्यादा संभावना है, हम जांच कर रहे हैं। और यदि फूड के माध्यम से इस तरह की हल्दी बेची जा रही है जो चेहरे पे लगा के और यदि कलर यूज हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे।
3: आशंका है कि हल्दी में मेटानिल येलो नाम का जहरीला सिंथेटिक डाई मिलाया गया, वो भी इतनी मात्रा में जो जानलेवा बन गया। इस मेटानिल येलो का इस्तेमाल कपड़ा रंगने में किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने के कारण भारत में FSSAI समेत विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों में इसके उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध है। खरगोन की दुल्हन राखी, जिसको घर परिवार के 15 से ज्यादा लोगों ने हल्दी लगाई, उनके हाथ में कोई रिएक्शन नहीं होने का दावा है। दुल्हन राखी को ही पहले रिएक्शन हुआ और फिर जान तक चली गई।
9: थोड़ा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी के 5 देशों की यात्रा पर दुनिया की नजर। आज सुबह यूएई के लिए होंगे रवाना। नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का करेंगे दौरा। देश में निर्यात के लिए निर्णायक फैसलों की उम्मीद। पीएम की अपील के बाद बीजेपी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों में तेल बचाने की होड़। बस, बाइक से लेकर साइकिल तक का इस्तेमाल, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। रेखा गुप्ता बोली, हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। अमित शाह से योगी की मुलाकात पर बड़ा राजनीतिक तापमान। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रालय बंटवारे समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात। बीजेपी अध्यक्ष से भी मिले योगी। शराब घोटाले में सुनवाई के दौरान जस्टिस पर टिप्पणी को लेकर आपकी मुसीबत बढ़ी। कोर्ट ने माना अवमानना। केजरीवाल, सिसोदिया समेत 5 पर निशाना। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर बड़ी बैठक। सीबीआई ने 23 की जांच। महाराष्ट्र से 2 गिरफ्तारियां, 5 को 7 दिन की सीबीआई रिमांड। क्या ईरान युद्ध नए सिरे से भड़कने वाला है और इसलिए भारत खुद को बड़े संकट की चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन युद्ध के इस शोर में महंगाई धीरे धीरे आप पर, हम पर, आम आदमी पर शिकंजा कस रही है। हमारे देश को पता है कि यह कठिनाई आ रही है, जिसे रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सतर्क आपको और हमें, देश को कर रहे हैं। कहते आ रहे हैं कि हम सबको मिलकर बचाएंगे और हम सब मिलकर बचत करेंगे, तभी इस महंगाई से बच पाएंगे।
1: पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, भारत भी इससे अछूता नहीं है। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। ये संकट किसी भी तरह हमारी प्रगति को, हमारे विकास को प्रभावित न करे, न करे, करे।
2: जिस संकट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हफ्ते से पूरे देश को खबरदार करते आ रहे हैं, वो अब थोक में आपके ऊपर आने लगा है। संकट को समझ लीजिए, खबरदार हो जाइए, क्योंकि अप्रैल के महीने में थोक महंगाई दर 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई, जो मार्च में 3.88% पर थी। ये 42 महीने में सबसे ज्यादा है। प्राइमरी आर्टिकल यानी कच्चे सामान की महंगाई 6.36% से 9.17% हो गई। वहीं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की महंगाई भी 3.39% से 4.62% पहुंच गई। मतलब है कि फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान की लागत भी बढ़ रही है। कोर महंगाई यानी खाने पीने की चीजों और ईंधन को छोड़ बाकी वस्तुओं की महंगाई भी बढ़कर 5% पर पहुंच गई, जो 43 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे ये संकेत मिलने लगा है कि महंगाई का दबाव अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं, बल्कि बाकी सेक्टर में फैलने लगा है। और महंगाई का यही संकट धीरे धीरे आपकी जेब की चारों तरफ जकड़ने लगा है। वो आपके घर के सिलेंडर से लेकर रेस्टोरेंट ढाबे के सिलेंडर तक पहले दबे पांव पहुंचा, जो सबसे पहले महंगे हो चुके हैं। जिसने जनता की जेब को ढीला करना मार्च के महीने से शुरू किया, मई तक ढीला करता आया।
3: सिलेंडर का रेट ऑलरेडी इतना हाई रहेगा, तो फूड एंड बेवरेजेस का भी थोड़ा हमारे को इश्यूज रहा करेगा।
4: क्या ये आपके बजट में रहेगा बाहर आना, जैसे आप पहले यूजुअली बाहर आते थे?
5: बट ऑब्वियसली वो कम ही हो जाएगा, हमारा बाहर खाना वगैरह
4: कम करना पड़ेगा,
5: हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
2: अब महंगाई का वो संकट काल आम लोगों को सुबह से परेशान करने जा रहा है, जहां दूध की थैलियों का वजन उतना ही रहना है। बस आपकी जेब 2 रुपए प्रति लीटर अमूल से लेकर मदर डेयरी तक के दूध खरीदने पर ढीली होने लगी है।
6: बहुत गलत हुआ, बढ़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो गरीब है वो कैसे खाना खाएगा।
7: जो बिल्कुल गरीब तबका है उसको सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए जद्दोजहद करता है।
8: मुश्किल तो है हर चीज में, हर चीज महंगी हो रही है प्रॉब्लम, और दूध उसके बाद जरूरत की चीज है, बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है।
9: महीने का बजट भी इसी से निर्धारित होता है। अब 2 रुपए का बढ़ने का मतलब है कि 60 रुपए। तो उसके आधार पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि है ना इतनी जल्दी जल्दी ना बढ़ाएं।
10: ओवर टाइम इस पर बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली जो लोग मेहनत करते हैं रोज की, उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ता है।
2: मुंबई में तो सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है, क्या आप जल्द ही दूसरी जगहों पर सीएनजी के दाम बढ़ने की आशंका है? और तब थोक महंगाई दर अगर 42 महीनों में सबसे ज्यादा हो जाती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियां बढ़ी हुई लागत को जल्द ग्राहकों पर डालेंगी।
1: विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है, और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है।
0: अब गाड़ियों को चलाने वाले तेल की बात अब कर लेते हैं। आपकी हमारी सबकी चिंता पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर है, क्योंकि ये जैसे ही बढ़ेंगे महंगाई क्लस्टर बॉम्ब की तरह फूटेगी। हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से लेकर आरबीआई के गवर्नर तक के बयान इसी संकट की तरफ संकेत भी दे चुके हैं, और इसीलिए जनता के मन में तेल के दाम को लेकर आशंका बनी हुई है।
11: अच्छा, तेल का रेट जैसे बढ़ रहा है तो बढ़ना तो चाहिए, लेकिन अभी तक तो मुझे उम्मीद नहीं है। क्या टीवी में मैं भी देखता हूँ, टीवी में नहीं बताया जा रहा है जो रेट बढ़ेगा। सब्सिडी आया था तो गवर्नमेंट अपने जेब से दिया है, तो अब क्या भरोसा बढ़ा दे।
12: अगर जो स्थिति बनती है कि डीजल या पेट्रोल का दाम बढ़ाया जाए तो आपके हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए?
13: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
12: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
13: गरीबों पे मार होती है।
12: ऐसे भारत की देश की हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत रहनी चाहिए, कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते भी हैं तो देश के लिए ही हैं, हमारे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि सरकार अगर रेट बढ़ा रही है तो कहीं और लेके जा रही है उस पैसे को, वो समाज के लिए देश के लिए काम आ रहा है। और पीछे जो उन्होंने इतने सालों से रेट बढ़े नहीं हमारे, तो 94 रुपए कुछ पैसे चल रहे हैं आज भी वही है, और आज के समय में अगर देश के ऊपर कोई संकट आया तो हम देश के साथ खड़े हैं।
13: पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो देखो सारी अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ेगा, उसको मिडिल क्लास लोग हैं तो
14: अभी तो स्थिति सामान्य है बिल्कुल। अभी किसी तरीके का स्टॉक या इस तरीके से मतलब कोई पैनिक या कुछ नहीं है लोगों में, लोगों को समझ है कि हाँ ठीक है, लोग आ रहे हैं और अपना जितना डेली रूटीन में लेते हैं उतना ही ले रहे हैं। सप्लाई में तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई तो जितनी डिमांड मतलब एज पर सेल के हिसाब से डेली सेल के उतनी सप्लाई हमारे पास आ रही है।
15: देखिए ये देश हित के लिए लिया गया फैसला है और इस फैसले का पूर्ण समर्थन है, और मैं किसी पार्टी विशेष के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मोदी जी ने अपने पर्सनल निजी इसके लिए बढ़ाया है। बाकी बहुत सारे समृद्ध देश हैं जिनका ऑलरेडी उन्होंने बहुत पहले बढ़ा चुका, युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने पेट्रोल के कीमतों में बहुत उछाल मार दिया है, हमारे देश में बहुत देर से हुआ है।
16: प्रधानमंत्री बोले हैं कि कुछ कटौती करके चले, अगर ऐसा होता है तो बढ़ भी नहीं सकता है,
17: बढ़ नहीं सकता।
18: मोदी जी हमारे देश के लिए ही कुछ अच्छा सोच करके किए होंगे।
19: सरकार ने अभी तक कंपनियों को रोक रखा है रेट बढ़ाने से, एज पर अगर कंपनी की कैलकुलेशन लगाई जाए तो दे आर बेयरिंग अ लॉस ऑफ अराउंड 20 रुपीज ऑन डीजल एंड 30 रुपीज इन पेट्रोल।
20: प्राइस के लिए देखिए, अगर मान के चलिए कुछ बढ़ भी जाता है तो जनता मजबूरन तो लेना ही है, क्योंकि जरूरत का चीज है, उससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मिलना चाहिए,
21: मिलना चाहिए
20: सभी को।
21: सभी को मिलना
20: जी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास।
22: जरूरत रहेगा तो आदमी ड्यूटी नहीं करेगा, ड्यूटी नहीं जाएगा, बताइए ड्यूटी तो जाना अनिवार्य है, ड्यूटी नहीं जाएगा पेमेंट नहीं मिलेगा, घर में बैठ के थोड़ी खाएगा लोग। मोदी जी तो कहीं रहा है, लेकिन मोदी जी तो कहेंगे तो ऑफिस में ऑफिस वाले को बोले कि हाँ कष्ट नहीं बोलाए कर्मी को, अपना घर से ही काम करवाए तब ना।
23: भैया बहुत बिक्री हो रही है, वो लाइन लगती हो रही है, और जहाँ 5,000 दिखता था 8,000 दिख रहा है,
24: ज्यादा आ रहे हैं, ये सोच
23: बढ़ा रहे, टंकी फुल करा रहे हैं पूरी।
25: जिस तरीके से लड़ाइयाँ और जिस तरीके से वो चल रहा और मतलब कंपनी को नुकसान उठा के बेच रही है माल, उसके हिसाब से तो हम लोग नहीं बता सकते ना, लेकिन ये कि जैसा लग रहा हो सकता है कुछ बढ़ जाए।
0: खबर नीट पेपर लीक कांड की। नीट लीक कांड में अब सवाल यह है कि कौन है वो बड़ा आदमी जिसका नाम अपने घर के 5 बच्चों को डॉक्टर बना देने वाले दिनेश बिवाल ले रहा है, कौन है इस पेपर लीक कांड का वो बड़ा आदमी जिसका चेहरा छिपा हुआ है, जिसके कारण से आरोपी के घर वाले ही दावा करने लगे हैं कि हर साल देश में नीट का पेपर लीक होता रहा है।
26: बचाया जा रहा है,
27: बचाया जा रहा है,
28: बचाया जा रहा है।
2: देश के 22,89,000 परिवारों, बच्चों की उम्मीदों पर नीट का पेपर लीक करा के सरकार के दावों पर पानी फेरने वाला, जिसे बीजेपी के विधायक राजस्थान में अपनी पार्टी का ऊर्जावान कार्यकर्ता बताते आते हैं, आखिर वो किन बड़े लोगों की बात करने लगा? कौन है वो बड़े लोग जब तक नीट पेपर लीक कांड में बचे हुए हैं? क्या कोई मंत्री, क्या कोई एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अफसर, क्या कोई बड़ा नेता, क्या कोई बड़ा कोचिंग चलाने वाला, क्या कोई बड़ा नौकरशाह? कौन है वो बड़ा आदमी जिसको बचाने का दावा पेपर लीक कराने के आरोप में सीबीआई की गिरफ्त में आने के बाद दिनेश बेवाल ही नहीं करता, बल्कि जब इस पूरे मामले को आज तक पर सबसे पहले पड़ताल करके रिपोर्ट करने वाले संवाददाता शरद कुमार दिनेश और मांगीलाल के घर पर पहुंचकर आगे जानना चाहते हैं, तो पहले तो आज तक का कैमरा, आज तक का माइक, आज तक संवाददाता को देखकर पेपर लीक कराने के आरोपी का परिवार उन्हें पीछे हटाने लगता है। क्योंकि इस परिवार को लगता है कि आज तक पहुंच गया है तो फिर कोई ना कोई बड़ी खबर पेपर लीक खुलासे में सामने लेकर आएगा, और यही होता है जहां पेपर लीक के आरोपी भाइयों की पत्नियां कहने लगती हैं असली मास्टरमाइंड कोई और है।
3: इतना दिन से पेपर लीक हो रहा है और आज दुश्मन बन रहे हैं माका। कई साल दो बच्चा पेपर दिया जाए, दो बच्चा पेपर देर के नहीं, किस पेपर में भी
4: 2024 में भी लीक होगा।
3: बेटो चले मारो ऋषि, मारो बेटो, पहली बार नीट को पेपर दियो जो नीट का पेपर में पहली बार नहीं कोई मारा बेटा को पसावा का लाग रहा है, खेंगा मैं दिखे अन्य खेंगे।
5: आपके बेटी भी दिया थे?
3: मेरे बेटा दिया है मेरा नीट का पेपर, उसके
5: इस बार बेटा दिया है ना?
3: हाँ मेरा बेटा पेपर दिया नीट का, पर मेरे बेटे के इतने मार्क्स नहीं आए और किसी ने फंसा दिया मेरे आदमियों को,
4: किसी ने फंसा
3: दिया है हमारे बच्चों ने पिछली बार 3-4 बच्चों ने, किसी की शादी से सारा उनको छोड़ रहा हूँ, पाचा पड़ गया सारा, इतना पेपर में होगा।
0: ये बात सच है कि नीट पेपर लीक के पीछे एक बड़ा आदमी है, क्योंकि अब तक सीबीआई ने जिनको पकड़ा या तो जो सीधे जांच के दायरे में हैं उन्हें पकड़ा है, जैसे अहिल्यानगर से एक धनंजय लोखंडे पकड़ा गया, लेकिन वो कोई बड़ा आदमी नहीं है। नासिक से जो पकड़ा गया वो भी कोई बड़ा आदमी नहीं है। जितने भी लोग पकड़े गए वो बड़ा आदमी नहीं है, तो आखिर कौन है वो बड़ा आदमी?
2: दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल जयपुर के पास रहने वाले ये दो भाई प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन डीलरई करते करते ये दोनों दावा है कई वर्षों से नीट के पेपर लीक की भी डील करने लगे, जिसकी जांच में जुटी सीबीआई की टीम तफ्तीश करने इन दोनों के घर तक पहुंचती है, गाड़ी तक की जांच करती है।
6: नीट पेपर लीक 2026 में गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल दिनेश और विकास के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं किस तरह से घर में पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है। यहां आसपास जो इनके घर में गाड़ियां थी उन गाड़ियों की भी तलाशी ली गई है, इसके अलावा भी जो सामान है उन सारे सामान की भी तलाशी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है। अब इस तरह से निकल रहे हैं। क्या आप लोगों ने देखा, कुछ पाया यहाँ, कुछ आप लोगों ने जांच में?
2: सीबीआई के अफसर कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत लेकर बिवाल ब्रदर्स के घर से निकलते हैं, वो घर जो केवल आरोपियों का घर नहीं बल्कि इस घर से इतने नीट पास करने वाले बच्चे एक साल में निकल गए कि शंका पैदा हो गई है कहीं हर साल ये पेपर लीक करा के तो खेल नहीं करते रहे। हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। गिरफ्तार मांगीलाल बिवाल के बेटे विकास को पिछले साल 2026 की नीट परीक्षा पास करके सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति ने भी नीट परीक्षा पिछले साल पास कर ली और मेडिकल कॉलेज में दौसा के दाखिला ले लिया। इन दोनों का तीसरा भाई जो जीवित नहीं, उस घनश्याम बिवाल की बेटी पलक बिवाल को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नीट निकाल कर एडमिशन 2025 में मिल चुका है। दूसरी बेटी सानिया बिवाल को मुंबई के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और गिरफ्तार दिनेश बिवाल की बेटी गुंजन को वाराणसी के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। यानी 5 बच्चे इसके घर से नीट निकाल लेते हैं, सुनकर ही चौंक जाना पड़ता है कि इतना पढ़ाकू परिवार था क्या। जहां दिनेश बिवाल ने सोशल मीडिया तक पर डाल दिया कि उसके परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि उसके परिवार के 5 बच्चों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ, लेकिन जब इसी परिवार के इतने टॉप क्लास की पढ़ाई करने वाले बच्चों के बारे में आज तक संवाददाता शरद कुमार पूछते हैं तो इनकी माएं कुछ भी जानकारी में होने से इनकार करने लगती हैं।
5: बेटी कहाँ पढ़ती है अभी?
3: पढ़ रही है हमारी तो कौन कौन सी, मैं पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ जो मैं कौन कौन सी बता दूँ क्या है क्या नहीं है।
5: तो हमने सब पढ़ाया मेहनत करके,
3: मेहनत पढ़ाया, मैं अनपढ़ गाँव और मैं पढ़ी लिखी कौन है, मैं पहचान ही कौन
5: है। पढ़ रही ये तो पता होगा,
3: फट रहा है जो मैं फड़ी लिखी हूँ तो वो नाम भी फड़ लू ना, कहा फट रही जवा।
5: अरे जग शहर का नाम तो पता होगा,
3: शहर को नाम भी पता होगा। मैं चले आऊ ना, मारा आदमी से ही मिलवा, कोड़ा रख रखा जे, कोड़ा नहीं रख रखा, मारा बेटा ना कोड़ा रख रखा जे।
5: आपका बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ता है ये तो बता सकती है?
3: बच्चा पा मैं वो फड़ी लिखी हूँ ना तो मैं कहीं बताऊँ भी, कोचिंग में पढ़ रहे, वो कोचिंग में पढ़ रहे।
5: ये बताओ ये गुंजन कहाँ पढ़ती है?
3: गुंजन कहाँ पढ़ती है, कौन सी? तो मुझे पता नहीं है ना कौन सी जगह पढ़ती है गुंजन।
5: MBBS कर रही है ना?
3: नहीं MBBS कुछ नहीं कर रही मेरी तो।
5: कहाँ कर रही है?
3: क्लियर ही कौन नहीं हो माँ का बच्चा हमको।
5: विकास कहाँ पढ़ता है?
3: विकास को मुना कहीं पता, कोड़ा पढ़ा, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो बताऊँ ना, ये पढ़ा ये समझ वाला बतावा।
5: प्रगति कहाँ पढ़ती है?
3: मुझे कुछ ही पता नहीं है मेरे बच्चों का क्या,
5: कहाँ दुनिया कहाँ पढ़ती है
3: कुछ पता नहीं है। किसी जगह पढ़ती है वो, कौन सी जगह? मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं बच्चा हमको ये फड़ारगंज में चले जाऊँ ना, मैं खुद ही चल जाऊँ, आदमी से मिलवा।
5: बताता होगा ना किस शहर में जाता है?
3: हाँ जाता है तो इधर ही चल जाता है, जयपुरपुर की तरफ इधर ही चल जाता है हमारे तो। ये सारा ही गाँव से आस पास का कशा कशा गाँव से कसी कसी।
5: अच्छा ये पढ़ते कहाँ पर थे?
3: हाथ जोड़ा था भाई, मैं माथा का हाथ जोड़ा था, मन परेशान मत करो दे।
1: तो क्या ये जो राजस्थान का बिवाल परिवार है इसके पीछे असली खिलाड़ी बड़ा आदमी कोई और है? क्योंकि ये लोग हर साल पेपर लीक करा लेंगे, इतनी इनकी ताकत नहीं दिखती। दावा ये है कि मांगीलाल और दिनेश तो नीट पेपर लीक में कोरियर का काम करते थे, जहाँ दिनेश ने अब की बार अपने बेटे ऋषि के लिए पेपर लीक कराया, लेकिन उसका बेटा 600 नंबर का लीक पेपर पाकर भी आंसर की से जांचने पर पता चला 107 नंबर का पेपर ही कर पाया था।
7: तो सरकार जिस तरह से सख्ती से अभी काफी सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं जो करनी भी चाहिए, एक हमको ना एग्जांपल सेट करना चाहिए कि इस तरह का काम करोगे तो देश आपको छोड़ेगा नहीं।
0: और अब बात उस आंधी तूफान की जिसने यूपी में बहुत कहर बरपाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से यूपी में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। भीषण आंधी में सड़कों से पेड़ उखड़ गए, गाड़ियों के ऊपर गिर गए, घरों की दीवारें ढह गईं, टिन शेड उखड़ गए और लगभग 100 लोगों की मौत हो गई।
8: कहीं तूफान में इंसान उड़ गया, कहीं पेड़ जमीन से ही उखड़ गए, कहीं पेड़ घर पर गिर गया, कहीं पेड़ के नीचे गाड़ियां फंस गई। यह है उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली का कहर। बुधवार को यूपी में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। न कोई चेतावनी, न कोई पहले से जानकारी, न कोई अलर्ट, सीधा आंधी तूफान आया, बिजली गिरी और 104 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने से बुधवार को कुल 104 लोगों की मौत हुई। इनमें से 4 लोग बिजली गिरने से मारे गए, 52 लोग घायल भी हैं और 98 घर भी टूटे हैं। इसके अलावा 130 जानवरों की भी जान गई है। और ये तो सरकारी आंकड़े, तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति इससे कहीं ज्यादा बदतर है। सबसे बड़ी बात कि मॉनसून से पहले का आंधी तूफान इतनी तबाही लेकर आएगा किसी ने सोचा नहीं था। लोग हर रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे, तूफान आया और कई लोगों की जान ले ली। बदायूं में भीषण आंधी तूफान से अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की मौत हुई है। भदोही जिले में अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की मौत हुई। मिर्जापुर में भी आंधी तूफान की वजह से पूरे जिले में 17 लोगों की मौत हुई। फतेहपुर में 5 महिलाओं समेत कुल 11 लोग मारे गए। प्रयागराज में कल आए आंधी तूफान की वजह से कुल 21 लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा 1-2 मौतें तो ज्यादातर जिलों में हुई ही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं बरेली से। आंधी में छत उड़ जाती है, तिरपाल उड़ जाता है, कपड़े उड़ जाते हैं, पेड़ भी उखड़ जाता है, लेकिन इंसान उड़ते शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। बरेली में कल जो तूफान आया उसमें नन्हे मियां उड़ गए। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तब से ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये कोई AI वीडियो तो नहीं है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन हकीकत यही है कि बरेली में नन्हे मियां तूफान से बचने के लिए बारात घर की छत पकड़े हुए खड़े थे। तूफान इतना तेज था कि छत ही उड़ गई और नन्हे मियां फिल्मी स्टाइल में 50 फीट ऊपर हवा में उछल गए और उछल कर एक खेत में जा गिरे। इस हादसे में नन्हे मियां बुरी तरह से घायल हो गए, उनके हाथ और पैर में चोट आई है।
9: बहुत तेज लकूरा आ रहा था, लकूरे के साथ में ऊपर मतलब 30-40 फीट ऊंचा चले गए। हमें ना पता कहाँ गिरे क्या हुआ, कम से कम 50 फीट
10: दूरी से।
11: नहीं तो आपने उसको पकड़ रखा था, क्या था?
10: हाँ मतलब पकड़ा नहीं था, मतलब गाड़ी के जोरे खड़े हम बाद में रस्सी पड़ी हुई थी।
11: अच्छा
10: हाँ रस्सी पकड़ी थी।
8: पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। उन्नाव में तेज आंधी के चलते एक नीम का पेड़ उखड़ गया और कार के ऊपर गिर गया। कार के अंदर बैठे शख्स ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। पेड़ गिरने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बदायूं में ये आंधी तूफान जानलेवा रहा। यहां अलग अलग स्थानों पर दो मासूमों समेत छह लोगों की मौत हुई है। आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और दीवारें टूट कर गिर पड़ी, जिसके नीचे दबकर दो मासूम बच्चों समेत छह लोगों की मौत हुई। एक ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर उत्तराखंड के बाजपुर से बुलंदशहर जा रहा था। बदायूं के बिसौली में तेज आंधी से सड़क किनारे यूकेलिप्टस का पेड़ टूटकर ट्रक पर आ गिरा। इसके नीचे दबकर 29 साल के ट्रक ड्राइवर योगेश की मौत हो गई। पुलिस ने पेड़ को कटवाकर जैसे तैसे उसके शव को बाहर निकलवाया। यही हाल भदोही का भी रहा। यहां पूरे जिले में कुल 16 लोगों की मौत हुई है। एक महिला का पूरा परिवार इस त्रासदी की जद में आ गया। महिला के घर पर पेड़ गिरने के कारण उसकी और उसकी दो मासूम बेटियों की मौत हो गई। एक बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार चल रहा है। पति मुंबई में काम करते हैं।
12: घटना हुई है, क्या घटना है?
13: आंधी तूफान आई थी सर, और वहाँ पे पेड़ गिर के दब के खत्म हो गए।
12: कौन खत्म?
13: मेरी बहन थी और दो भतीजी थी, वो लोग खत्म हो गए। दो बच्चे हैं, एक भर्ती है अस्पताल में।
12: क्या आपको वहाँ से जानकारी बताया गया परिवार?
13: वहाँ पे ये बताया गया कि नीम का पेड़ गिर गया है, वो लोग दब गए हैं। तब हम लोग नहीं थे, तब हमारे चाचा के लड़का लोग आए यहाँ पे, फिर उसको लेके निकाले, फिर दो तो बच गए, तीन मर गए।
12: कितने बच्चे हैं?
14: जो तूफान चक्रवाती तूफान आया था उसी में जो है नीम का पेड़ गिर जाने से हरिजन बस्ती के पांच लोग, मतलब माँ थी और चार लड़कों लेके उसी घर में घुस गई अपने घर में। जो मौके पर वो पेड़ गिर गया जो है घर के ऊपर, और उसी में लोग दब गए, तो तीन लोगों की तो मौके पर मौत हो गई। दो लोगों गंभीर लोग घायल हो गए हैं, उनको जिला अस्पताल या कहीं रेफर किया गया है, बनारस ट्रामा सेंटर।
8: एक और घटना, उगापुर सरौली में मंदिर गई एक परिवार की तीन महिलाएं विशालकाय पेड़ गिरने के दौरान उसकी चपेट में आ गई, जिससे तीनों की मौत हो गई।
24: तेज आंधी तूफान आने की घटना के कारण अलग अलग थाना क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, जिसमें पेड़ गिर जाने के कारण अथवा बिजली का खंभा घरों के ऊपर गिर जाने के कारण अथवा एक मंदिर के ऊपर गिर जाने के कारण कई सारी कैजुअल्टीज हुए हैं। कुल मिलाकर के अभी तक प्राप्त सूचना के क्रम में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 8 लोग इन घटनाओं में घायल हुए हैं। अलग अलग
8: बहुत से लोग बिजली गिरने की वजह से भी मारे गए हैं, जो और ज्यादा भयावह है, क्योंकि गंगा के बेसिन में बिजली गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पूरे यूपी में कल बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में देश में बिजली गिरने की घटनाओं में 400% का इजाफा देखा गया है। भारत में हर साल बिजली गिरने की घटनाओं में 7-14% की वृद्धि दर्ज की गई है। रिसर्च बताती है कि अगर तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो बिजली गिरने की घटनाएं 8-10% बढ़ जाती हैं। पिछले कुछ वक्त में बिजली गिरने की घटनाएं भारत के पूर्वी, उत्तरी और तटीय इलाकों से उत्तर पश्चिमी और हिमालय की तलहटी तक पहुंच चुकी हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात बिजली गिरने के नए हॉटस्पॉट्स, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये भी देखा गया है कि जहां जहां से नदियां गुजरती हैं वहां ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। जैसे गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, ताप्ती और नर्मदा की घाटियों में ज्यादा बिजली गिरती है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि नदियों की घाटियों पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण और शहरीकरण हो गया है, जिसकी वजह से वहां गर्मी बढ़ गई है। इससे ज्यादा वाष्पीकरण होता है और बिजली गिरती है। अगर समय की बात करें तो बिजली गिरने की घटनाएं अब लगभग पूरे साल होती है। आमतौर पर पूर्वी भारत में मानसून के पहले के आंधी तूफान में बिजली गिरती है। इसे काल बैसाखी भी कहा जाता है। आज तक ब्यूरो।
0: इंदौर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। हल्दी की रस्म के दौरान दुल्हन को चेहरे और शरीर में तेज जलन शुरू हुई। कुछ ही देर में चेहरे पर लाल धब्बे और सूजन बढ़ने लगी। परिजन तुरंत दुल्हन को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। जांच में आशंका व्यक्त की गई कि मिलावटी हल्दी ने जानलेवा रिएक्शन कर दिया। इलाज के दौरान दुल्हन की मौत हो गई।
2: मध्य प्रदेश का खरगोन, दुल्हन की हल्दी का कार्यक्रम चल रहा है। हंसी खुशी संगीत के बीच अचानक दुल्हन राखी परेशान होने लगती है। चेहरे हाथ पैर पर घर वालों दोस्तों की तरफ से लगाई जाती हल्दी से उसके चेहरे पर जलन तेज महसूस होती है। वो दौड़ती है। हालत ये हो जाती है कि दुल्हन को इंदौर के अंबाई अस्पताल में ले जाकर तुरंत भर्ती तक कराना पड़ता है। लेकिन क्या मिलावटी हल्दी की वजह से दुल्हन की मौत हो गई? क्या हल्दी की रस्म में मिलावटी केमिकल वाली हल्दी जान ले रही है? क्या हल्दी की रस्म में जहरीले केमिकल की मिलावट अब मार दे रही है? इस सवाल की वजह 22 साल की ये दुल्हन है। ये इसकी शादी की तैयारी से पहले की तस्वीर है, जिसकी शादी में हल्दी की रस्म के दौरान हल्दी लगाने से दावा है इतनी भयानक एलर्जी हुई कि उसे इंदौर के अस्पताल में जब तक भर्ती कराया गया हालत बिगड़ चुकी थी। चेहरे पर सूजन आने लगी, हाथ पैर में लाल धब्बे पड़ने लगे।
15: सर उसके हल्दी लगे हुए थे और अचानक से कुछ ऐसा हुआ तो गले में सूजन आ गया, मुंह सूज गया उनका होठ। उसके बाद में लड़के से बोला भी नहीं जा रहा, तो फिर अब दुल्हन थी सर सब घबरा गए। हल्दी ये बाजार में से लेके आए थे सर, बेचने वाला आए थे तो उसके लिए ले ली थी, तो उसी से गड़बड़ हो गई सर। अब
16: एलर्जिक रिएक्शन था काफी उसके शरीर में, अर्टिकेरिया और होठों पे भी कुछ स्वेलिंग वगैरह थी। और जब उसकी हिस्ट्री निकाली गई तो ये पता चला कि उसको कोई शादी का उनके यहाँ प्रोग्राम था, उसमें हल्दी लगाई गई थी, जिसके कारण उसके कुछ ही देर के बाद उसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ और उसको लाके वार्ड में भर्ती किया था। और चूंकि उसके साथ साथ उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी तो प्रिकॉशनरी हम लोगों ने उसको आईसीयू में रखा था। उन्होंने बाजार से कुछ हल्दी खरीदी थी, हो सकता है उसमें किसी तरह का कोई केमिकल्स कई बार हल्दी को कलर बढ़ाने के लिए डाल के रखते हैं, उसके कारण ये एग्जैजरेटेड रिएक्शन उसके लिए एलर्जिक रिएक्शन हुआ।
2: इसके बाद दावा है कि स्थिति न सुधरने पर घर वाले एक दूसरे अस्पताल ले गए और बाद में फिर राखी की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि जान चली गई।
17: जहाँ जहाँ भी सोर्सेस प्राप्त हुए वहाँ से नमूने हमने संग्रहित किए गए और लेबोरेटरी प्रयोगशाला को भेजे गए। हल्दी लगाने से ऐसा रिएक्शन हुआ ऐसा बता रहे, बाकी हमने भी जांच करी है और हमने लेबोरेटरी सैंपल के लिए भेज दिए।
2: 14 दिन में जांच से पता चलेगा राखी की मौत किस तरह की मिलावटी हल्दी की वजह से हुई। क्या केवल मिलावटी केमिकल वाली हल्दी इसकी वजह है या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है? अब सवाल आपसे जुड़ा है। हल्दी का इस्तेमाल खाने में होता है, हल्दी का इस्तेमाल शादियों में रस्म निभाने में होता है, तो क्या हल्दी अगर मिलावटी है, केमिकल वाली है, तो रिएक्शन से लेकर जानलेवा तक हो सकती है?
18: खाने की और यदि चेहरे पे भी लगा रहे हैं तो मेरा तो सुझाव यही है कि जो खाने की हल्दी है और ब्रांडेड है वो बारीक हल्दी उसका ही उपयोग करना चाहिए। ड्रेस एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत कई बार जो है जो हल्दी है जो पैक करके दे रहे हैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव या अन्य रंग या गुलाल जैसा बना के भी उसको किया सकता है, उससे काफी हानि हो सकती है। वो जो हल्दी होगी या तो उन्होंने कहीं लूज हल्दी जो है यूज किया होगा बाजार में जो खुलेआम ठेले पर बिकती है। देखिए हल्दी को यदि हम पानी में घोल के कुछ देर रख देते हैं तो आप देखेंगे कि जो मूल हल्दी है वो पानी में घुलती नहीं है, जो हल्दी जो है नीचे बैठ जाएगी। और जो यदि उसमें कलर है तो कलर जो है गाढ़ा कलर यदि मिलाया गया है तो वो कलर ऊपर तैरने लगता है।
19: पीसी हल्दी में मिलावट की ज्यादा संभावना होती है?
18: पीसी हल्दी में ही ज्यादा संभावना है, हम जांच कर रहे हैं। और यदि

0: इस मैटरनल येलो का इस्तेमाल कपड़ा रंगने में किया जाता है। स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने के कारण भारत में FSSAI समेत विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों में इसके उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध है। खरगोन की दुल्हन राखी, जिसको घर परिवार के 15 से ज्यादा लोगों ने हल्दी लगाई, उनके हाथ में कोई रिएक्शन नहीं होने का दावा है। दुल्हन राखी को ही पहले रिएक्शन हुआ और फिर जान तक चली गई।
1: थोड़ा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी के पांच देशों की यात्रा पर दुनिया की नजर। आज सुबह यूएई के लिए होंगे रवाना। नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का करेंगे दौरा। देश में निर्यात के लिए निर्णायक फैसलों की उम्मीद। पीएम की अपील के बाद बीजेपी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों में तेल बचाने की होड़। बस, बाइक से लेकर साइकिल तक का इस्तेमाल, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। रेखा गुप्ता बोली, हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम। अमित शाह से योगी की मुलाकात पर बड़ा राजनीतिक तापमान। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रालय बंटवारे समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात। बीजेपी अध्यक्ष से भी मिले योगी। शराब घोटाले में सुनवाई के दौरान जस्टिस पर टिप्पणी को लेकर आपकी मुसीबत बढ़ी। कोर्ट ने माना अवमानना। केजरीवाल सिसोदिया समेत पांच पर निशाना। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर बड़ी बैठक। सीबीआई ने तेज की जांच। महाराष्ट्र से दो गिरफ्तारियां, पांच को सात दिन की सीबीआई रिमांड। क्या ईरान युद्ध नए सिरे से भड़कने वाला है और इसलिए भारत खुद को बड़े संकट की चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन युद्ध के इस शोर में महंगाई धीरे धीरे आप पर, हम पर, आम आदमी पर शिकंजा कस रही है। हमारे देश को पता है कि यह कठिनाई आ रही है, जिसे रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सतर्क आपको और हमें देश को कर रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि हम सबको मिलकर बचाएंगे और हम सब मिलकर बचत करेंगे, तभी इस महंगाई से बच पाएंगे।
1: पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारत भी इससे अछूता नहीं है। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले। ये संकट किसी भी तरह हमारी प्रगति को, हमारे विकास को प्रभावित न करे।
2: जिस संकट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हफ्ते से पूरे देश को खबरदार करते आ रहे हैं, वो अब थोक में आपके ऊपर आने लगा है। संकट को समझ लीजिए, खबरदार हो जाइए, क्योंकि अप्रैल के महीने में थोक महंगाई दर दो गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई, जो मार्च में 3.88% पर थी। ये 42 महीने में सबसे ज्यादा है। प्राइमरी आर्टिकल यानी कच्चे सामान की महंगाई 6.36% से 9.17% हो गई। वहीं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की महंगाई भी

0: 2.39% से 4.62% पहुंच गई। मतलब है कि फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान की लागत भी बढ़ रही है। कोर महंगाई यानी खाने पीने की चीजों और ईंधन को छोड़ बाकी वस्तुओं की महंगाई भी बढ़कर 5% पर पहुंच गई, जो 43 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे ये संकेत मिलने लगा है कि महंगाई का दबाव अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं बल्कि बाकी सेक्टर में फैलने लगा है। और महंगाई का यही संकट धीरे धीरे आपकी जेब की चारों तरफ जकड़ने लगा है। वो आपके घर के सिलेंडर से लेकर रेस्टोरेंट ढाबे के सिलेंडर तक पहले दबे पांव पहुंचा, जो सबसे पहले महंगे हो चुके हैं, जिसने जनता की जेब को ढीला करना मार्च के महीने से शुरू किया, मई तक ढीला करता आया।
1: सिलेंडर का रेट ऑलरेडी इतना हाई रहेगा तो फूड एंड बेवरेजेस का भी थोड़ा हमारे को इश्यूज रहा करेगा।
2: क्या ये आपके बजट में रहेगा बाहर आना, जैसे आप पहले यूजुअली बाहर आते थे?
3: बट ऑब्वियसली वो कम ही हो जाएगा, हमारा बाहर खाना वगैरह
2: कम करना पड़ेगा,
3: हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
0: अब महंगाई का वो संकट काल आम लोगों को सुबह से परेशान करने जा रहा है, जहां दूध की थैलियों का वजन उतना ही रहना है। बस आपकी जेब 2 रुपए प्रति लीटर अमूल से लेकर मदर डेयरी तक के दूध खरीदने पर ढीली होने लगी है।
4: बहुत गलत हुआ, बढ़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो गरीब है वो कैसे खाना खाएगा।
5: जो बिल्कुल गरीब तबका है उसको सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए जद्दोजहद करता है।
6: मुश्किल तो है हर चीज में, हर चीज महंगी हो रही है प्रॉब्लम, और दूध उसके बाद जरूरत की चीज है, बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है।
7: महीने का बजट भी इसी से निर्धारित होता है। अब 2 रुपए का बढ़ने का मतलब है कि 60 रुपए, तो उसके आधार पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि है ना, इतनी जल्दी जल्दी ना बढ़ाएं।
8: ओवर टाइम इस पे बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली जो लोग मेहनत करते हैं रोज की, उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ता है।
0: मुंबई में तो CNG भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। क्या आप जल्द ही दूसरी जगहों पर CNG के दाम बढ़ने की आशंका है? और तब थोक महंगाई दर अगर 42 महीनों में सबसे ज्यादा हो जाती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियां बढ़ी हुई लागत को जल्द ग्राहकों पर डालेंगी।
9: विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है, और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है।
10: अब गाड़ियों को चलाने वाले तेल की बात अब कर लेते हैं। आपकी हमारी सबकी चिंता पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर है, क्योंकि ये जैसे ही बढ़ेंगे महंगाई क्लस्टर बॉम्ब की तरह फूटेगी। हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से लेकर RBI के गवर्नर तक के बयान इसी संकट की तरफ संकेत भी दे चुके हैं, और इसीलिए जनता के मन में तेल के दाम को लेकर आशंका बनी हुई है।
11: तेल का रेट जैसे बढ़ रहा है तो बढ़ना तो चाहिए, लेकिन अभी तक तो मुझे उम्मीद नहीं है। क्या कहते, टीवी में मैं भी देखता हूँ, टीवी में नहीं बताया जा रहा है जो रेट बढ़ेगा। सब्सिडी आया था तो गवर्नमेंट अपने जेब से दिया है, तो अब क्या भरोसा बढ़ा दे।
12: अगर जो स्थिति बनती है कि डीजल या पेट्रोल का दाम बढ़ाया जाए, तो आपके हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए?
13: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
12: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
13: गरीबों पे मार होती है।
12: ऐसे भारत की, देश की, हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत रहनी चाहिए। कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते भी हैं तो देश के लिए ही हैं, हमारे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि सरकार अगर रेट बढ़ा रही है तो कहीं और लेके जा रही है उस पैसे को, वो समाज के लिए, देश के लिए काम आ रहा है। और पीछे जो उन्होंने इतने सालों से रेट बढ़े नहीं हमारे, तो 94 रुपए कुछ पैसे चल रहा है, आज भी वही है। और आज के समय में अगर देश के ऊपर कोई संकट आया तो हम देश के साथ खड़े हैं।
13: पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो देखो सारी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा, उसको मिडिल क्लास लोग हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत फर्क पड़ने वाला है इस चीज से।
14: अभी तो स्थिति सामान्य है बिल्कुल, अभी किसी तरीके का स्टॉक या इस तरीके से मतलब कोई पैनिक या कुछ नहीं है लोगों में। लोगों को समझ है कि हाँ ठीक है, लोग आ रहे हैं और अपना जितना डेली रूटीन में लेते हैं उतना ही ले रहे हैं। सप्लाई में तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई तो जितनी डिमांड मतलब एज पर सेल के हिसाब से डेली सेल के उतनी सप्लाई हमारे पास आ रही है।
15: देखिए देश हित के लिए लिया गया फैसला है और इस फैसले का पूर्ण समर्थन है, और मैं किसी पार्टी विशेष के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मोदी जी ने अपने पर्सनल निजी इसके लिए बढ़ाया है। बाकी बहुत सारे समृद्ध देश हैं जिनका ऑलरेडी उन्होंने बहुत पहले बढ़ा चुका, युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने पेट्रोल के कीमतों में बहुत उछाल मार दिया है। हमारे देश में बहुत देर से हुआ है।
16: प्रधानमंत्री बोले हैं कि कुछ कटौती करके चले, अगर ऐसा होता है तो बढ़ भी नहीं सकता है।
17: बढ़ नहीं सकता।
18: मोदी जी हमारे देश के लिए ही कुछ अच्छा सोच करके किए होंगे।
19: सरकार ने अभी तक कंपनियों को रोक रखा है रेट बढ़ाने से। एज पर अगर कंपनी की कैलकुलेशन लगाई जाए तो दे आर बेयरिंग अ लॉस ऑफ अराउंड 20 रुपीज ऑन डीजल एंड 30 रुपीज इन पेट्रोल।
20: प्राइस के लिए देखिए, अगर मान के चलिए कुछ बढ़ भी जाता है तो जनता मजबूरन तो लेना ही है, क्योंकि जरूरत का चीज है, उससे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मिलना चाहिए,
21: मिलना
20: चाहिए सभी को।
21: सभी को मिलना
20: जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
22: जरूरत रहेगा तो आदमी ड्यूटी नहीं करेगा, ड्यूटी नहीं जाएगा। बताइए, ड्यूटी तो जाना अनिवार्य है, ड्यूटी नहीं जाएगा पेमेंट नहीं मिलेगा। घर में बैठ के थोड़ी खाएगा लोग। मोदी जी तो कहीं रहा है, लेकिन मोदी जी तो कहेंगे तो ऑफिस में ऑफिस वाले को बोले कि हाँ कष्ट नहीं बोलाए कर्मी को, अपना घर से ही काम करवाए तब ना।
23: भैया बहुत बिक्री हो रही है, वो लाइन लगती हो रही है, और जहाँ 5,000 बिकता था 8,000 बिक रहा है,
24: ज्यादा आ रहे हैं। ये सोच
23: बढ़ा रहा है, टंकी फुल करा रहे हैं पूरी।
25: जिस तरीके से लड़ाइयाँ और जिस तरीके से वो चल रहा, और मतलब कंपनी को नुकसान उठा के बेच रही है माल, उसके हिसाब से तो हम लोग नहीं बता सकते ना। लेकिन ये कि जैसा लग रहा हो सकता है कुछ बढ़ जाए।
10: खबर नीट पेपर लीक कांड की। नीट लीक कांड में अब सवाल यह है कि कौन है वो बड़ा आदमी जिसका नाम अपने घर के 5 बच्चों को डॉक्टर बना देने वाले दिनेश बिवाल ले रहा है। कौन है इस पेपर लीक कांड का वो बड़ा आदमी जिसका चेहरा छिपा हुआ है, जिसके कारण से आरोपी के घर वाले ही दावा करने लगे हैं कि हर साल देश में नीट का पेपर लीक होता रहा है।
0: देश के 22,89,000 परिवारों, बच्चों की उम्मीदों पर नीट का पेपर लीक करा के सरकार के दावों पर पानी फेरने वाला, जिसे बीजेपी के विधायक राजस्थान में अपनी पार्टी का ऊर्जावान कार्यकर्ता बताते आते हैं, आखिर वो किन बड़े लोगों की बात करने लगा? कौन है वो बड़े लोग जब तक नीट पेपर लीक कांड में बचे हुए हैं? क्या कोई मंत्री, क्या कोई एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अफसर, क्या कोई बड़ा नेता, क्या कोई बड़ा कोचिंग चलाने वाला, क्या कोई बड़ा नौकरशाह? कौन है वो बड़ा आदमी जिसको बचाने का दावा पेपर लीक कराने के आरोप में सीबीआई की गिरफ्त में आने के बाद दिनेश बिवाल ही नहीं करता, बल्कि जब इस पूरे मामले को आज तक पर सबसे पहले पड़ताल करके रिपोर्ट करने वाले संवाददाता शरद कुमार दिनेश और मांगीलाल के घर पर पहुंचकर आगे जानना चाहते हैं, तो पहले तो आज तक का कैमरा, आज तक का माइक, आज तक संवाददाता को देखकर पेपर लीक कराने के आरोपी का परिवार उन्हें पीछे हटाने लगता है। क्योंकि इस परिवार को लगता है कि आज तक पहुंच गया है तो फिर कोई ना कोई बड़ी खबर पेपर लीक खुलासे में सामने लेकर आएगा, और यही होता है। जहां पेपर लीक के आरोपी भाइयों की पत्नियां कहने लगती हैं, असली मास्टरमाइंड कोई और है।
26: इतना दिन से पेपर लीक हो रहा है, आज दुश्मन बन रहे हैं।
27: आपके बेटी भी दिया थे?
26: मेरे बेटा दिया है मेरा नीट का पेपर, उसके
27: इस बार बेटा दिया है ना?
26: हाँ, मेरा बेटा पेपर दिया नीट का, पर मेरे बेटे के इतने मार्क्स नहीं आए और किसी ने फंसा दिया मेरे आदमियों को।
27: हमारे
26: किसी ने फंसा दिया है, हमारे बच्चों ने पिछली बार 3-4 बच्चों ने किसी की शादी से सारा उनको छोड़ रहा हूँ, पाचा पड़ गया सारा, इतना पेपर में होगा।
10: ये बात सच है, नीट पेपर लीक के पीछे एक बड़ा आदमी है, क्योंकि अब तक सीबीआई ने जिनको पकड़ा, या तो जो सीधे जांच के दायरे में है उन्हें पकड़ा है, जैसे अहिल्या नगर से एक धनंजय लोखंडे पकड़ा गया, लेकिन वो कोई बड़ा आदमी नहीं है। नासिक से जो पकड़ा गया वो भी कोई बड़ा आदमी नहीं है। जितने भी लोग पकड़े गए वो बड़ा आदमी नहीं है, तो आखिर कौन है वो बड़ा आदमी?
0: दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल जयपुर के पास रहने वाले ये दो भाई प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन डीलरी करते करते ये दोनों दावा है कई वर्षों से नीट के पेपर लीक की भी डील करने लगे, जिसकी जांच में जुटी सीबीआई की टीम तफ्तीश करने इन दोनों के घर तक पहुंचती है, गाड़ी तक की जांच करती है।
1: नीट पेपर लीक 2026 में गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल दिनेश और विकास के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं किस तरह से घर में पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है। यहां आसपास जो इनके घर में गाड़ियां थी उन गाड़ियों की भी तलाशी ली गई है। इसके अलावा भी जो सामान है उन सारे सामान की भी तलाशी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है। अब इस तरह से निकल रहे हैं। क्या आप लोगों ने देखा, कुछ पाया यहाँ, कुछ आप लोगों ने जांच में?
0: सीबीआई के अफसर कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत लेकर बिवाल ब्रदर्स के घर से निकलते हैं। वो घर जो केवल आरोपियों का घर नहीं बल्कि इस घर से इतने नीट पास करने वाले बच्चे एक साल में निकल गए कि शंका पैदा हो गई है कहीं हर साल ये पेपर लीक करा के तो खेल नहीं करते रहे। हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। गिरफ्तार मांगीलाल बिवाल के बेटे विकास को पिछले साल 2026 की नीट परीक्षा पास करके सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति ने भी नीट परीक्षा पिछले साल पास कर ली और मेडिकल कॉलेज में दौसा के दाखिला ले लिया। इन दोनों का तीसरा भाई जो जीवित नहीं, उस घनश्याम बिवाल की बेटी पलक बिवाल को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नीट निकाल के एडमिशन 2025 में मिल चुका है। दूसरी बेटी सानिया बिवाल को मुंबई के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और गिरफ्तार दिनेश बिवाल की बेटी गुंजन को वाराणसी के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। यानी 5 बच्चे इसके घर से नीट निकाल लेते हैं। सुनकर ही चौंक जाना पड़ता है कि इतना पढ़ाकू परिवार था क्या। जहां दिनेश बिवाल ने सोशल मीडिया तक पर डाल दिया कि उसके परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि उसके परिवार के 5 बच्चों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ। लेकिन जब इसी परिवार के इतने टॉप क्लास की पढ़ाई करने वाले बच्चों के बारे में आज तक संवाददाता शरद कुमार पूछते हैं तो इनकी माए कुछ भी जानकारी में होने से इनकार करने लगती है।
27: बेटी कहाँ पढ़ती है अभी?
26: पढ़ रही है हमारी तो कौन कौन सी, मैं पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ जो मैं कौन कौन सी बता दूँ क्या है क्या नहीं है।
27: तो हमने सब पढ़ाया मेहनत करके,
26: मेहनत पढ़ाया मैं अनपढ़ गाँव और मैं पढ़ी लिखी कौन है, मैं
27: कहाँ पढ़ रही, ये तो पता होगा।
26: पढ़ रहा जो मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं नाम भी पढ़ लू ना, कहाँ पढ़ रही जवा।
27: अरे शहर का नाम तो पता होगा,
26: शहर का नाम भी पता होगा। मैं चल रहा हूँ ना, मेरा आदमी से ही मिलवा, कोड़ा रख रखा है, कोड़ा नहीं रख रखा है, मेरा बेटा ना कोड़ा रख रखा है।
27: आपका बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ता है ये तो बता सकती है?
26: बात क्या बात, मैं वो पढ़ी लिखी हूँ ना तो मैं कहीं बताऊँ भी, कोचिंग में पढ़ रहा है वो कोचिंग में पढ़ रहा
27: है। ये बताओ ये गुंजन कहाँ पढ़ती है?
26: गुंजन कहाँ पढ़ती है कौन सी, मुझे पता नहीं है ना कौन सी जगह पढ़ती है गुंजन।
27: MBBS कर रही है ना?
26: नहीं MBBS कुछ नहीं कर रही मेरी तो।
27: कहाँ कर रही है?
26: क्लियर ही कौन हूँ माखा बच्चा को यहाँ।
27: विकास कहाँ पढ़ता है?
26: विकास को मुना कहीं पता, कोड़ा पढ़ा, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो बताऊँ ना, ये पढ़ा ये समझ वाला बतावा।
27: प्रगति कहाँ पढ़ती है?
26: मुझे कुछ ही पता नहीं है मेरे बच्चों का क्या।
27: कहाँ दुनिया कहाँ पढ़ती है?
26: कुछ पता नहीं है, किसी जगह पढ़ती है वो, कौन सी जगह। मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं बच्चा को यहाँ फड़ारगंज में चले जाऊँ ना, मैं खुद ही चल जाऊँ आदमी से मिलवा।
27: बताता होगा ना किस शहर में जाता है?
26: हाँ जाता है तो इधर ही चल जाता है, जयपुरपुर की तरफ इधर ही चल जाता है हमारे तो, ये सारा ही गाँव है आस पास का, कशा कशा गाँव है।
27: अच्छा, कशी कशी अच्छा, ये पढ़ते कहाँ पर थे?
26: हाथ जोड़ा था भाई, मैं माथा का हाथ जोड़ा था, मन परेशान मत करो दे।
0: तो क्या ये जो राजस्थान का बिवाल परिवार है इसके पीछे असली खिलाड़ी बड़ा आदमी कोई और है? क्योंकि ये लोग हर साल पेपर लीक करा लेंगे इतनी इनकी ताकत नहीं दिखती। दावा ये है कि मांगीलाल और दिनेश तो नीट पेपर लीक में कोरियर का काम करते थे, जहां दिनेश ने अब की बार अपने बेटे ऋषि के लिए पेपर लीक कराया लेकिन उसका बेटा 600 नंबर का लीक पेपर पाकर भी आंसर की से जांचने पर पता चला 107 नंबर का पेपर ही कर पाया था।
2: तो सरकार जिस तरह से सख्ती से अभी काफी सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं जो करनी भी चाहिए, एक हमको ना एग्जांपल सेट करना चाहिए कि इस तरह का काम करोगे तो देश आपको छोड़ेगा नहीं।
10: और अब बात उस आंधी तूफान की जिसने यूपी में बहुत कहर बरपाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से यूपी में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। भीषण आंधी में सड़कों से पेड़ उखड़ गए, गाड़ियों के ऊपर गिर गए, घरों की दीवारें ढह गईं, टिन शेड उखड़ गए और लगभग 100 लोगों की मौत हो गई।
0: कहीं तूफान में इंसान उड़ गया, कहीं पेड़ जमीन से ही उखड़ गए, कहीं पेड़ घर पर गिर गया, कहीं पेड़ के नीचे गाड़ियां फंस गई। यह है उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली का कहर। बुधवार को यूपी में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। न कोई चेतावनी, न कोई पहले से जानकारी, न कोई अलर्ट, सीधा आंधी तूफान आया, बिजली गिरी और 104 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने से बुधवार को कुल 104 लोगों की मौत हुई। इनमें से 4 लोग
3: बिजली गिरने से मारे गए हैं, 52 लोग घायल भी हैं और 98 घर भी टूटे हैं। इसके अलावा 130 जानवरों की भी जान गई है। और ये तो सरकारी आंकड़े, तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति इससे कहीं ज्यादा बदतर है। सबसे बड़ी बात कि मानसून से पहले का आंधी तूफान इतनी तबाही लेकर आएगा किसी ने सोचा नहीं था। लोग हर रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे, तूफान आया और कई लोगों की जान ले ली। बदायूं में भीषण आंधी तूफान से अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की मौत हुई है। भदोही जिले में अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की मौत हुई। मिर्जापुर में भी आंधी तूफान की वजह से पूरे जिले में 17 लोगों की मौत हुई। फतेहपुर में 5 महिलाओं समेत कुल 11 लोग मारे गए। प्रयागराज में कल आए आंधी तूफान की वजह से कुल 21 लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा 1-2 मौतें तो ज्यादातर जिलों में हुई ही है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं बरेली से। आंधी में छत उड़ जाती है, तिरपाल उड़ जाता है, कपड़े उड़ जाते हैं, पेड़ भी उखड़ जाता है, लेकिन इंसान उड़ते शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। बरेली में कल जो तूफान आया उसमें नन्हे मियां उड़ गए। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तब से ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये कोई AI वीडियो तो नहीं है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन हकीकत यही है कि बरेली में नन्हे मियां तूफान से बचने के लिए बारात घर की छत पकड़े हुए खड़े थे। तूफान इतना तेज था कि छत ही उड़ गई और नन्हे मियां फिल्मी स्टाइल में 50 फीट ऊपर हवा में उछल गए और उछलकर एक खेत में जा गिरे। इस हादसे में नन्हे मियां बुरी तरह से घायल हो गए, उनके हाथ और पैर में चोट आई है।
4: बहुत तेज लकड़ा आ रहा था, लकड़े के सामने ऊपर मतलब 30-40 फीट ऊंचा चले गए। हमें ना पता कहाँ गिरे, क्या हुआ, कम से कम 50 फीट दूरी से।
5: नहीं तो आपने उसको पकड़ रखा था, क्या था?
4: हाँ मतलब पकड़ा नहीं था, मतलब गाड़ी के जोरे खड़े हम रस्सी पड़ी हुई थी।
5: अच्छा।
4: हाँ रस्सी पकड़ी थी।
3: पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। उन्नाव में तेज आंधी के चलते एक नीम का पेड़ उखड़ गया और कार के ऊपर गिर गया। कार के अंदर बैठे शख्स ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। पेड़ गिरने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बदायूं में ये आंधी तूफान जानलेवा रहा। यहां अलग अलग स्थानों पर 2 मासूमों समेत 6 लोगों की मौत हुई है। आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और दीवारें टूटकर गिर पड़ी, जिसके नीचे दबकर 2 मासूम बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हुई। एक ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर उत्तराखंड के बाजपुर से बुलंदशहर जा रहा था। बदायूं के बिसौली में तेज आंधी से सड़क किनारे यूकेलिप्टस का पेड़ टूटकर ट्रक पर आ गिरा। इसके नीचे दबकर 29 साल के ट्रक ड्राइवर योगेश की मौत हो गई। पुलिस ने पेड़ को कटवाकर जैसे तैसे उसके शव को बाहर निकलवाया। यही हाल भदोही का भी रहा। यहां पूरे जिले में कुल 16 लोगों की मौत हुई है। एक महिला का पूरा परिवार इस त्रासदी की जद में आ गया। महिला के घर पर पेड़ गिरने के कारण उसकी और उसकी 2 मासूम बेटियों की मौत हो गई। एक बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार चल रहा है। पति मुंबई में काम करते हैं। एक और घटना, उगापुर सरौली में मंदिर गई एक परिवार की 3 महिलाएं विशालकाय पेड़ गिरने के दौरान उसकी चपेट में आ गई, जिससे तीनों की मौत हो गई।
6: तेज आंधी तूफान आने की घटना के कारण अलग अलग थाना क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, जिसमें पेड़ गिर जाने के कारण अथवा बिजली का खंभा घरों के ऊपर गिर जाने के कारण अथवा एक मंदिर के ऊपर गिर जाने के कारण कई सारी कैजुअलिटीज हुए हैं। कुल मिलाकर के अभी तक प्राप्त सूचना के क्रम में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 8 लोग इन घटनाओं में घायल हुए हैं अलग अलग।
3: बहुत से लोग बिजली गिरने की वजह से भी मारे गए हैं, जो और ज्यादा भयावह है, क्योंकि गंगा के बेसिन में बिजली गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पूरे यूपी में कल बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में देश में बिजली गिरने की घटनाओं में 400% का इजाफा देखा गया है। भारत में हर साल बिजली गिरने की घटनाओं में 7-14% की वृद्धि दर्ज की गई है। रिसर्च बताती है कि अगर तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो बिजली गिरने की घटनाएं 8-10% बढ़ जाती है। पिछले कुछ वक्त में बिजली गिरने की घटनाएं भारत के पूर्वी, उत्तरी और तटीय इलाकों से उत्तर पश्चिमी और हिमालय की तलहटी तक पहुंच चुकी हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात बिजली गिरने के नए हॉटस्पॉट्स, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये भी देखा गया है कि जहां जहां से नदियां गुजरती हैं वहां ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। जैसे गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, ताप्ती और नर्मदा की घाटियों में ज्यादा बिजली गिरती है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि नदियों की घाटियों पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण और शहरीकरण हो गया है, जिसकी वजह से वहां गर्मी बढ़ गई है। इससे ज्यादा वाष्पीकरण होता है और बिजली गिरती है। अगर समय की बात करें तो बिजली गिरने की घटनाएं अब लगभग पूरे साल होती है। आमतौर पर पूर्वी भारत में मानसून के पहले के आंधी तूफान में बिजली गिरती है, इसे काल बैसाखी भी कहा जाता है। आज तक ब्यूरो।
10: इंदौर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। हल्दी की रस्म के दौरान दुल्हन को चेहरे और शरीर में तेज जलन शुरू हुई। कुछ ही देर में चेहरे पर लाल धब्बे और सूजन बढ़ने लगी। परिजन तुरंत दुल्हन को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। जांच में आशंका व्यक्त की गई कि मिलावटी हल्दी ने जानलेवा रिएक्शन कर दिया। इलाज के दौरान दुल्हन की मौत हो गई।
0: मध्य प्रदेश का खरगोन, दुल्हन की हल्दी का कार्यक्रम चल रहा है। हंसी खुशी संगीत के बीच अचानक दुल्हन राखी परेशान होने लगती है। चेहरे हाथ पैर पर घर वालों दोस्तों की तरफ से लगाई जाती हल्दी से उसके चेहरे पर जलन तेज महसूस होती है। वो दौड़ती है। हालत ये हो जाती है कि दुल्हन को इंदौर के एमवाई अस्पताल में ले जाकर तुरंत भर्ती तक कराना पड़ता है। लेकिन क्या मिलावटी हल्दी की वजह से दुल्हन की मौत हो गई? क्या हल्दी की रस्म में मिलावटी केमिकल वाली हल्दी जान ले रही है? क्या हल्दी की रस्म में जहरीले केमिकल की मिलावट अब मार दे रही है? इस सवाल की वजह 22 साल की ये दुल्हन है। ये इसकी शादी की तैयारी से पहले की तस्वीर है, जिसकी शादी में हल्दी की रस्म के दौरान हल्दी लगाने से दावा है इतनी भयानक एलर्जी हुई कि उसे इंदौर के अस्पताल में जब तक भर्ती कराया गया हालत बिगड़ चुकी थी। चेहरे पर सूजन आने लगी, हाथ पैर में लाल धब्बे पड़ने लगे।
7: सर उसके हल्दी लगी हुई थी और अचानक से कुछ ऐसा हुआ तो गले में सूजन आ गया, मुंह सूज गया उनका होठ। उसके बाद में लड़के से बोला भी नहीं जा रहा, तो फिर अब दुल्हन थी सर, सब घबरा गए। हल्दी ये बाजार में से लेके आए थे सर, बेचने वाले आए थे तो उसके लिए ले ली थी, तो उसी से गड़बड़ हो गई सर। अब
8: एलर्जिक रिएक्शन था काफी उसके शरीर में, अर्टिकेरिया और ओंठों पे भी कुछ स्वेलिंग वगैरह थी। और जब उसकी हिस्ट्री निकाली गई तो ये पता चला कि उसको कोई शादी का उनके यहाँ प्रोग्राम था, उसमें हल्दी लगाई गई थी, जिसके कारण उसके कुछ ही देर के बाद उसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ और उसको लाके वार्ड में भर्ती किया था। और चूंकि उसके साथ साथ उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी तो प्रिकॉशनरी हम लोगों ने उसको आईसीयू में रखा था। उन्होंने बाजार से कुछ हल्दी खरीदी थी, हो सकता है उसमें किसी तरह का कोई केमिकल्स, कई बार हल्दी को कलर बढ़ाने के लिए डाल के रखते हैं, उसके कारण ये एग्जैजरेटेड रिएक्शन उसके लिए एलर्जिक रिएक्शन हुआ।
0: इसके बाद दावा है कि स्थिति न सुधरने पर घर वाले एक दूसरे अस्पताल ले गए और बाद में फिर राखी की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि जान चली गई।
9: जहाँ जहाँ भी सोर्सेस प्राप्त हुई वहाँ से नमूने हमने संग्रहित किए गए और लेबोरेटरी प्रयोगशाला को भेजे गए। हल्दी लगाने से ऐसा रिएक्शन हुआ ऐसा बता रहे, बाकी हमने भी जांच करी है और हमने लेबोरेटरी सैंपल के लिए भेज दिए गए।
0: 14 दिन में जांच से पता चलेगा राखी की मौत किस तरह की मिलावटी हल्दी की वजह से हुई। क्या केवल मिलावटी केमिकल वाली हल्दी इसकी वजह है या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है? अब सवाल आपसे जुड़ा है। हल्दी का इस्तेमाल खाने में होता है, हल्दी का इस्तेमाल शादियों में रस्म निभाने में होता है, तो क्या हल्दी अगर मिलावटी है, केमिकल वाली है, तो रिएक्शन से लेकर जानलेवा तक हो सकती है?
11: खाने की और यदि चेहरे पे भी लगा रहे हैं तो मेरा तो सुझाव यही है कि जो खाने की हल्दी है और ब्रांडेड है वो बारीक हल्दी, उसका ही उपयोग करना चाहिए। ड्रेस एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत कई बार जो है जो हल्दी है जो पैक करके दे रहे हैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव या अन्य रंग या गुलाल जैसा बना के भी उसको किया सकता है, उससे काफी हानि हो सकती है। वो जो हल्दी होगी या तो उन्होंने कहीं लूज हल्दी जो है यूज किया होगा बाजार में जो खुलेआम ठेले पर बिकती है। देखिए हल्दी को यदि हम पानी में घोल के कुछ देर रख देते हैं तो आप देखेंगे कि जो मूल हल्दी है वो पानी में घुलती नहीं है, जो हल्दी जो है नीचे बैठ जाएगी। और जो यदि उसमें कलर है तो कलर जो है गाढ़ा कलर यदि मिलाया गया है तो वो कलर ऊपर तैरने लगता है।
12: पीसी हल्दी में मिलावट की ज्यादा संभावना होती है?
11: पीसी हल्दी में ही ज्यादा संभावना है, हम जांच कर रहे हैं। और यदि फूड के माध्यम से इस तरह की हल्दी बेची जा रही है जो चेहरे पे लगा के और यदि कलर यूज हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे।
0: आशंका है कि हल्दी में मेटानिल येलो नाम का जहरीला सिंथेटिक डाई मिलाया गया, वो भी इतनी मात्रा में जो जानलेवा बन गया। इस मेटेनिल येलो का इस्तेमाल कपड़ा रंगने में किया जाता है। स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने के कारण भारत में FSSAI समेत विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों में इसके उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध है। खरगोन की दुल्हन राखी, जिसको घर परिवार के 15 से ज्यादा लोगों ने हल्दी लगाई, उनके हाथ में कोई रिएक्शन नहीं होने का दावा है। दुल्हन राखी को ही पहले रिएक्शन हुआ और फिर जान तक चली गई।
10: थोड़ा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी के पांच देशों की यात्रा पर दुनिया की नजर। आज सुबह यूएई के लिए होंगे रवाना, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का करेंगे दौरा। देश में निर्यात के लिए निर्णायक फैसलों की उम्मीद। पीएम की अपील के बाद बीजेपी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों में तेल बचाने की होड़। बस, बाइक से लेकर साइकिल तक का इस्तेमाल, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। रेखा गुप्ता बोली, हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम। अमित शाह से योगी की मुलाकात पर बड़ा राजनीतिक तापमान। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रालय बंटवारे समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात। बीजेपी अध्यक्ष से भी मिले योगी। शराब घोटाले में सुनवाई के दौरान जस्टिस पर टिप्पणी को लेकर आपकी मुसीबत बढ़ी। कोर्ट ने माना अवमानना। केजरीवाल सिसोदिया समेत पांच पर निशाना। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर बड़ी बैठक। सीबीआई ने तेज की जांच। महाराष्ट्र से दो गिरफ्तारियां, पांच को सात दिन की सीबीआई रिमांड। क्या ईरान युद्ध नए सिरे से भड़कने वाला है और इसलिए भारत खुद को बड़े संकट की चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन युद्ध के इस शोर में महंगाई धीरे धीरे आप पर, हम पर, आम आदमी पर शिकंजा कस रही है। हमारे देश को पता है कि यह कठिनाई आ रही है, जिसे रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सतर्क आपको और हमें देश को कर रहे हैं। कहते आ रहे हैं कि हम सबको मिलकर बचाएंगे और हम सब मिलकर बचत करेंगे, तभी इस महंगाई से बच पाएंगे।
1: पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, भारत भी इससे अछूतला नहीं है। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले। ये संकट किसी भी तरह हमारी प्रगति को, हमारे विकास को प्रभावित न करे, ना करे, करे।
2: जिस संकट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हफ्ते से पूरे देश को खबरदार करते आ रहे हैं, वो अब थोक में आपके ऊपर आने लगा है। संकट को समझ लीजिए, खबरदार हो जाइए, क्योंकि अप्रैल के महीने में थोक महंगाई दर दो गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई, जो मार्च में 3.88% पर थी। ये 42 महीने में सबसे ज्यादा है। प्राइमरी आर्टिकल यानी कच्चे सामान की महंगाई 6.36% से 9.17% हो गई। वहीं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की महंगाई भी 3.39% से 4.62% पहुंच गई। मतलब है कि फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान की लागत भी बढ़ रही है। कोर महंगाई यानी खाने पीने की चीजों और ईंधन को छोड़ बाकी वस्तुओं की महंगाई भी बढ़कर 5% पर पहुंच गई, जो 43 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे ये संकेत मिलने लगा है कि महंगाई का दबाव अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं, बल्कि बाकी सेक्टर में फैलने लगा है। और महंगाई का यही संकट धीरे धीरे आपकी जेब की चारों तरफ जकड़ने लगा है। वो आपके घर के सिलेंडर से लेके रेस्टोरेंट ढाबे के सिलेंडर तक पहले दबे पांव पहुंचा, जो सबसे पहले महंगे हो चुके हैं। जिसने जनता की जेब को ढीला करना मार्च के महीने से शुरू किया, मई तक ढीला करता आया।
3: सिलेंडर का रेट ऑलरेडी इतना हाई रहेगा, तो फूड एंड बेवरेजेस का भी थोड़ा हमारे को इश्यूज रहा करेगा।
4: क्या ये आपके बजट में रहेगा बाहर आना, जैसे आप पहले यूजुअली बाहर आते थे?
5: बट ऑब्वियसली वो कम ही हो जाएगा, हमारा बाहर खाना वगैरह
4: कम करना पड़ेगा,
5: हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
2: अब महंगाई का वो संकट काल आम लोगों को सुबह से परेशान करने जा रहा है, जहां दूध की थैलियों का वजन उतना ही रहना है। बस आपकी जेब 2 रुपए प्रति लीटर अमूल से लेकर मदर डेयरी तक के दूध खरीदने पर ढीली होने लगी है।
6: बहुत गलत हुआ, बढ़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो गरीब है वो कैसे खाना खाएगा।
7: जो बिल्कुल गरीब तबका है उसको सरवाइव करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए जद्दोजहद करता है।
8: मुश्किल तो है हर चीज में, हर चीज महंगी हो रही है प्रॉब्लम, और दूध उसके बाद जरूरत की चीज है, बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है।
9: महीने का बजट भी इसी से निर्धारित होता है। अब 2 रुपए का बढ़ने का मतलब है कि 60 रुपए, तो उसके आधार पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि है ना इतनी जल्दी जल्दी ना बढ़ाएं।
10: ओवर टाइम इस पर बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली जो लोग मेहनत करते हैं रोज की, उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ता है।
2: मुंबई में तो सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। क्या आप जल्द ही दूसरी जगहों पर सीएनजी के दाम बढ़ने की आशंका है? और तब थोक महंगाई दर अगर 42 महीनों में सबसे ज्यादा हो जाती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियां बढ़ी हुई लागत को जल्द ग्राहकों पर डालेंगी।
1: विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है, और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है।
0: अब गाड़ियों को चलाने वाले तेल की बात अब कर लेते हैं। आपकी हमारी सबकी चिंता पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर है, क्योंकि ये जैसे ही बढ़ेंगे महंगाई क्लस्टर बॉम्ब की तरह फूटेगी। हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से लेकर आरबीआई के गवर्नर तक के बयान इसी संकट की तरफ संकेत भी दे चुके हैं, और इसीलिए जनता के मन में तेल के दाम को लेकर आशंका बनी हुई है।
11: तेल का रेट जैसे बढ़ रहा है तो बढ़ना तो चाहिए, लेकिन अभी तक तो मुझे उम्मीद नहीं है। क्या कहते टीवी में मैं भी देखता हूँ, टीवी में नहीं बताया जा रहा है जो रेट बढ़ेगा। सब्सिडी आया था तो गवर्नमेंट अपने जेब से दिया है, तो अब क्या भरोसा बढ़ा दे।
12: अगर जो स्थिति बनती है कि डीजल या पेट्रोल का दाम बढ़ाया जाए तो आपके हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए?
13: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
12: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
13: गरीबों पे मार होती है।
12: ऐसे भारत की देश की हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत रहनी चाहिए। कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते भी हैं तो देश के लिए ही हैं, हमारे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि सरकार अगर रेट बढ़ा रही है तो कहीं और लेके जा रही है उस पैसे को, वो समाज के लिए देश के लिए काम आ रहा है। और पीछे जो उन्होंने इतने सालों से रेट बढ़े नहीं हमारे, तो 94 रुपये कुछ पैसे चल रहे हैं आज भी वही है। और आज के समय में अगर देश के ऊपर कोई संकट आया तो हम देश के साथ खड़े हैं।
13: पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो देखो सारी अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ेगा, उसको मिडिल क्लास लोग हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत फर्क पड़ने वाला है इस चीज से।
14: अभी तो स्थिति सामान्य है बिल्कुल, अभी किसी तरीके का स्टॉक या इस तरीके से मतलब कोई पैनिक या कुछ नहीं है लोगों में। लोगों को समझ है कि हाँ ठीक है, लोग आ रहे हैं और अपना जितना डेली रूटीन में लेते हैं उतना ही ले रहे हैं। सप्लाई में तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई तो जितनी डिमांड मतलब एज पर सेल के हिसाब से डेली सेल के उतनी सप्लाई हमारे पास आ रही है।
15: देखिए देश हित के लिए लिया गया फैसला है और इस फैसले का पूर्ण समर्थन है, और मैं किसी पार्टी विशेष के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मोदी जी ने अपने पर्सनल निजी इसके लिए बढ़ाया है। बाकी बहुत सारे समृद्ध देश हैं जिनका ऑलरेडी उन्होंने बहुत पहले बढ़ा चुका, युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने पेट्रोल के कीमतों में बहुत उछाल मार दिया है। हमारे देश में बहुत देर से हुआ है।
16: प्रधानमंत्री बोले हैं कि कुछ कटौती करके चले, अगर ऐसा होता है तो बढ़ भी नहीं सकता है,
17: बढ़ नहीं सकता।
18: मोदी जी हमारे देश के लिए ही कुछ अच्छा सोच करके किए होंगे।
19: सरकार ने अभी तक कंपनियों को रोक रखा है रेट बढ़ाने से। एज पर अगर कंपनी की कैलकुलेशन लगाई जाए तो दे आर बेयरिंग अ लॉस ऑफ अराउंड 20 रुपीज ऑन डीजल एंड 30 रुपीज इन पेट्रोल।
20: प्राइस के लिए देखिए अगर मान के चले कुछ बढ़ भी जाता है तो जनता मजबूरन तो लेना ही है क्योंकि जरूरत का चीज है, उससे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मिलना चाहिए सभी को।
21: सभी को मिलना
20: जी। क्या नाम? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
22: जरूरत रहेगा तो आदमी ड्यूटी नहीं करेगा, ड्यूटी नहीं जाएगा, बताइए। ड्यूटी तो जाना अनिवार्य है, ड्यूटी नहीं जाएगा पेमेंट नहीं मिलेगा, घर में बैठ के थोड़ी खाएगा लोग। मोदी जी तो कहीं रहा है, लेकिन मोदी जी तो कहेंगे तो ऑफिस में ऑफिस वाले को बोले कि हाँ कष्ट नहीं बोला है कर्मी को, अपना घर से ही काम करवाए तब ना।
23: भैया बहुत बिक्री हो रही है, वो लाइन लगती हो रही है, और जहाँ 5,000 बिकता था 8,000 बिक रहा है,
24: ज्यादा आ रहे हैं। ये सोच
23: बढ़ा रहे, टंकी फुल करा रहे हैं पूरी।
25: जिस तरीके से लड़ाइयाँ और जिस तरीके से वो चल रहा है और मतलब कंपनी को नुकसान उठा के बेच रही है माल, उसके हिसाब से तो हम लोग नहीं बता सकते ना। लेकिन ये कि जैसा लग रहा हो सकता है कुछ बढ़ जाए।
0: खबर नीट पेपर लीक कांड की। नीट लीक कांड में अब सवाल यह है कि कौन है वो बड़ा आदमी जिसका नाम अपने घर के 5 बच्चों को डॉक्टर बना देने वाले दिनेश बिवाल ले रहा है। कौन है इस पेपर लीक कांड का वो बड़ा आदमी जिसका चेहरा छिपा हुआ है, जिसके कारण से आरोपी के घर वाले ही दावा करने लगे हैं कि हर साल देश में नीट का पेपर लीक होता रहा है।
26: बचाया जा रहा है।
3: देश के 22,89,000 परिवारों बच्चों की उम्मीदों पर नीट का पेपर लीक करा के सरकार के दावों पर पानी फेरने वाला, जिसे बीजेपी के विधायक राजस्थान में अपनी पार्टी का ऊर्जावान कार्यकर्ता बताते आते हैं, आखिर वो किन बड़े लोगों की बात करने लगा? कौन है वो बड़े लोग जब तक नीट पेपर लीक कांड में बचे हुए हैं? क्या कोई मंत्री, क्या कोई एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अफसर, क्या कोई बड़ा नेता, क्या कोई बड़ा कोचिंग चलाने वाला, क्या कोई बड़ा नौकरशाह? कौन है वो बड़ा आदमी जिसको बचाने का दावा पेपर लीक कराने के आरोप में सीबीआई की गिरफ्त में आने के बाद दिनेश बिवाल ही नहीं करता, बल्कि जब इस पूरे मामले को आज तक पर सबसे पहले पड़ताल करके रिपोर्ट करने वाले संवाददाता शरद कुमार दिनेश और मांगीलाल के घर पर पहुंचकर आगे जानना चाहते हैं, तो पहले तो आज तक का कैमरा, आज तक का माइक, आज तक संवाददाता को देखकर पेपर लीक कराने के आरोपी का परिवार उन्हें पीछे हटाने लगता है। क्योंकि इस परिवार को लगता है कि आज तक पहुंच गया है तो फिर कोई ना कोई बड़ी खबर पेपर लीक खुलासे में सामने लेकर आएगा, और यही होता है जहां पेपर लीक के आरोपी भाइयों की पत्नियां कहने लगती हैं असली मास्टरमाइंड कोई और है।
4: इतना दिन से पेपर लीक हो रहा है, आज दुश्मन बन रहे थे दो बच्चा पेपर दिया जाए, दो बच्चा पेपर देर के नहीं, किस पेपर में भी
5: 2024 में भी लीक होगा,
4: मारो
5: ऋषि
4: मारो बेटो, पहली बार नीट को पेपर दियो जाए, नीट का पेपर में पहली बार नहीं कोई मारा बेटा को पसावा का लाग रहा चाहे अन्य खेगा मैं दिन अन्य खेंगे।
6: आपके बेटी भी दिया थे?
4: मेरे बेटा दिया है मेरा नीट का पेपर, उसके
6: इस बार बेटा दिया है ना?
4: हाँ मेरा बेटा पेपर दिया नीट का, पर मेरे बेटे के इतने मार्क्स नहीं आए और किसी ने फंसा दिया मेरे आदमियों को,
5: हमारे किसी ने फंसा
4: दिया, हमारे तो बच्चों ने पिछली बार 3-4 बच्चों ने
5: किसी की शादी
4: से सारा उनको छोड़ रहा पाचा पड़ गया सारा इतना पड़ा पेपर में होगा।
0: ये बात सच है कि नीट पेपर लीक के पीछे एक बड़ा आदमी है, क्योंकि अब तक सीबीआई ने जिनको पकड़ा या तो जो सीधे जांच के दायरे में हैं उन्हें पकड़ा है, जैसे अहिल्यानगर से एक धनंजय लोखंडे पकड़ा गया लेकिन वो कोई बड़ा आदमी नहीं है, नासिक से जो पकड़ा गया वो भी कोई बड़ा आदमी नहीं है, जितने भी लोग पकड़े गए वो बड़ा आदमी नहीं है, तो आखिर कौन है वो बड़ा आदमी?
3: दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल जयपुर के पास रहने वाले ये दो भाई प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन डीलरी करते करते ये दोनों दावा है कई वर्षों से नीट के पेपर लीक की भी डील करने लगे, जिसकी जांच में जुटी सीबीआई की टीम तफ्तीश करने इन दोनों के घर तक पहुंचती है, गाड़ी तक की जांच करती है।
21: नीट पेपर लीक 2026 में गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल, दिनेश और विकास के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं किस तरह से घर में पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है। यहां आसपास जो इनके घर में गाड़ियां थी उन गाड़ियों की भी तलाशी ली गई है, इसके अलावा भी जो सामान है उन सारे सामान की भी तलाशी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है। अब इस तरह से निकल रहे हैं, क्या आप लोगों ने देखा, कुछ पाया यहां? कुछ आप लोगों ने जांच में?
3: सीबीआई के अफसर कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत लेकर बिवाल ब्रदर्स के घर से निकलते हैं, वो घर जो केवल आरोपियों का घर नहीं बल्कि इस घर से इतने नीट पास करने वाले बच्चे एक साल में निकल गए कि शंका पैदा हो गई है कहीं हर साल ये पेपर लीक करा के तो खेल नहीं करते रहे। हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। गिरफ्तार मांगीलाल बिवाल के बेटे विकास को पिछले साल 2026 की नीट परीक्षा पास करके सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति ने भी नीट परीक्षा पिछले साल पास कर ली और मेडिकल कॉलेज में दौसा के दाखिला ले लिया। इन दोनों का तीसरा भाई जो जीवित नहीं, उस घनश्याम बिवाल की बेटी पलक बिवाल को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नीट निकाल कर एडमिशन 2025 में मिल चुका है। दूसरी बेटी सानिया बिवाल को मुंबई के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और गिरफ्तार दिनेश बिवाल की बेटी गुंजन को वाराणसी के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। यानी 5 बच्चे इसके घर से नीट निकाल लेते हैं, सुनकर ही चौंक जाना पड़ता है कि इतना पढ़ाकू परिवार था क्या। जहां दिनेश बिवाल ने सोशल मीडिया तक पर डाल दिया कि उसके परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि उसके परिवार के 5 बच्चों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ, लेकिन जब इसी परिवार के इतने टॉप क्लास की पढ़ाई करने वाले बच्चों के बारे में आज तक संवाददाता शरद कुमार पूछते हैं तो इनकी माएं कुछ भी जानकारी में होने से इनकार करने लगती हैं।
6: बेटी कहाँ पढ़ती है अभी?
4: पढ़ रही है हमारी तो कौन कौन सी, मैं पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ जो मैं कौन कौन सी बता दूँ क्या है क्या नहीं है।
6: तो हमने सब पढ़ाया मेहनत करके,
4: मेहनत पढ़ाया, मैं अनपढ़ गाँव और मैं पढ़ी लिखी कौन है, मैं पहचान ही कौन है।
6: आप पढ़ रही है तो पता होगा।
4: पढ़ रहा जो मैं पढ़ी लिखी हूँ तो वो नाम ही पढ़ लू ना, कहाँ पढ़ रही जवा।
6: अरे जग शहर का नाम तो पता होगा।
4: शहर का नाम भी पता होगा, मैं चले आऊँ ना मेरा आदमी से ही मिलवा, कोड़ा रख रखा है कोड़ा नहीं रख रखा है, मेरा बेटा ना कोड़ा रख रखा है।
6: आपका बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ता है ये तो बता सकती है?
4: बात क्या बात, मैं वो पढ़ी लिखी हूँ ना तो मैं कहीं बताऊँ भी, कोचिंग में पढ़ रहा है वो कोचिंग में पढ़ रहा
6: है। ये बताओ ये गुंजन कहाँ पढ़ती है?
4: गुंजन कहाँ पढ़ती है कौन सी, मुझे पता नहीं है ना कौन सी जगह पढ़ती है गुंजन।
6: MBBS कर रही है ना?
4: नहीं MBBS कुछ नहीं कर रही मेरी तो।
6: कहाँ कर रही है?
4: क्लियर ही कौन हूँ माखा बच्चा को यहाँ वो मैं।
6: विकास कहाँ पढ़ता है?
4: विकास को मुने कहीं पता कोड़ा पढ़ा, जब मैं पढ़ी लिखी हूँ तो बताऊँ ना, ये पढ़ा ये समझ वाला बतावा।
6: प्रगति कहाँ पढ़ती है?
4: मुझे कुछ ही पता नहीं है मेरे बच्चों का क्या
6: कहाँ पढ़ती है,
4: कुछ पता नहीं है। किसी जगह पढ़ती है वो, कौन सी जगह, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं बच्चा को यहाँ फड़ारगंज में चले जाऊँ ना, मैं खुद ही चल जाऊँ आदमी से मिलवा।
6: बताता होगा ना किस शहर में जाता है?
4: हाँ जाता है तो इधर ही चल जाता है, जयपुरपुर की तरफ इधर ही चल जाता है हमारे तो, ये सारा ही गाँव है आस पास का कशा कशा गाँव।
6: अच्छा, ये पढ़ते कहाँ पर थे?
4: हाथ जोड़ा था भाई, मैं माथा का हाथ जोड़ा था, मन परेशान मत करो दे।
2: तो क्या ये जो राजस्थान का बिवाल परिवार है इसके पीछे असली खिलाड़ी बड़ा आदमी कोई और है? क्योंकि ये लोग हर साल पेपर लीक करा लेंगे, इतनी इनकी ताकत नहीं दिखती। दावा ये है कि मांगीलाल और दिनेश तो नीट पेपर लीक में कोरियर का काम करते थे, जहां दिनेश ने अब की बार अपने बेटे ऋषि के लिए पेपर लीक कराया, लेकिन उसका बेटा 600 नंबर का लीक पेपर पाकर भी आंसर की से जांचने पर पता चला 107 नंबर का पेपर ही कर पाया था।
7: तो सरकार जिस तरह से सख्ती से अभी काफी सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं जो करनी भी चाहिए, एक हमको ना एग्जांपल सेट करना चाहिए कि इस तरह का काम करोगे तो देश आपको छोड़ेगा नहीं।
0: और अब बात उस आंधी तूफान की जिसने यूपी में बहुत कहर बरपाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से यूपी में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। भीषण आंधी में सड़कों से पेड़ उखड़ गए, गाड़ियों के ऊपर गिर गए, घरों की दीवारें ढह गईं, टिन शेड उखड़ गए और लगभग 100 लोगों की मौत हो गई।
8: कहीं तूफान में इंसान उड़ गया, कहीं पेड़ जमीन से ही उखड़ गए, कहीं पेड़ घर पर गिर गया, कहीं पेड़ के नीचे गाड़ियां फंस गई। यह है उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली का कहर। बुधवार को यूपी में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। न कोई चेतावनी, न कोई पहले से जानकारी, न कोई अलर्ट, सीधा आंधी तूफान आया, बिजली गिरी और 104 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने से बुधवार को कुल 104 लोगों की मौत हुई। इनमें से 4 लोग बिजली गिरने से मारे गए हैं, 52 लोग घायल भी हैं और 98 घर भी टूटे हैं। इसके अलावा 130 जानवरों की भी जान गई है। और ये तो सरकारी आंकड़े हैं, तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति इससे कहीं ज्यादा बदतर है। सबसे बड़ी बात कि मॉनसून से पहले का आंधी तूफान इतनी तबाही लेकर आएगा किसी ने सोचा नहीं था। लोग हर रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे, तूफान आया और कई लोगों की जान ले ली। बदायूं में भीषण आंधी तूफान से अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की मौत हुई है। भदोही जिले में अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की मौत हुई। मिर्जापुर में भी आंधी तूफान की वजह से पूरे जिले में 17 लोगों की मौत हुई। फतेहपुर में 5 महिलाओं समेत कुल 11 लोग मारे गए। प्रयागराज में कल आए आंधी तूफान की वजह से कुल 21 लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा 1-2 मौतें तो ज्यादातर जिलों में हुई ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं बरेली से। आंधी में छत उड़ जाती है, तिरपाल उड़ जाता है, कपड़े उड़ जाते हैं, पेड़ भी उखड़ जाता है, लेकिन इंसान उड़ते शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। बरेली में कल जो तूफान आया उसमें नन्हे मियां उड़ गए। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तब से ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये कोई AI वीडियो तो नहीं है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन हकीकत यही है कि बरेली में नन्हे मियां तूफान से बचने के लिए बारात घर की छत पकड़े हुए खड़े थे। तूफान इतना तेज था कि छत ही उड़ गई और नन्हे मियां फिल्मी स्टाइल में 50 फीट ऊपर हवा में उछल गए और उछलकर एक खेत में जा गिरे। इस हादसे में नन्हे मियां बुरी तरह से घायल हो गए, उनके हाथ और पैर में चोट आई है।
9: बहुत तेज लकूड़ा आ रहा था, लकूड़े के सामने ऊपर मतलब 30-40 फीट ऊंचा चले गए। हमें ना पता कहाँ गिरे क्या हुआ, कम से कम 50 फीट दूरी से।
1: नहीं तो आपने उसको पकड़ रखा था, क्या था?
9: हाँ मतलब पकड़ा नहीं था, मतलब गाड़ी के जोड़े खड़े खड़े हम रस्सी पड़ी हुई थी।
1: अच्छा।
9: हाँ रस्सी पकड़ी थी।
8: पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। उन्नाव में तेज आंधी के चलते एक नीम का पेड़ उखड़ गया और कार के ऊपर गिर गया। कार के अंदर बैठे शख्स ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। पेड़ गिरने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बदायूं में ये आंधी तूफान जानलेवा रहा। यहां अलग अलग स्थानों पर दो मासूमों समेत छह लोगों की मौत हुई है। आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और दीवारें टूटकर गिर पड़ी, जिसके नीचे दबकर दो मासूम बच्चों समेत छह लोगों की मौत हुई। एक ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर उत्तराखंड के बाजपुर से बुलंदशहर जा रहा था। बदायूं के बिसौली में तेज आंधी से सड़क किनारे यूकेलिप्टस का पेड़ टूटकर ट्रक पर आ गिरा। इसके नीचे दबकर 29 साल के ट्रक ड्राइवर योगेश की मौत हो गई। पुलिस ने पेड़ को कटवाकर जैसे तैसे उसके शव को बाहर निकलवाया। यही हाल भदोही का भी रहा। यहां पूरे जिले में कुल 16 लोगों की मौत हुई है। एक महिला का पूरा परिवार इस त्रासदी की जद में आ गया। महिला के घर पर पेड़ गिरने के कारण उसकी और उसकी दो मासूम बेटियों की मौत हो गई। एक बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार चल रहा है। पति मुंबई में काम करते हैं।
10: घटना हुई है, क्या घटना है?
11: आंधी तूफान आई थी सर, और वहाँ पे पेड़ गिर के दब के खत्म हो गए।
10: कौन खत्म?
11: मेरी बहन थी और दो भतीजी थी, वो लोग खत्म हो गए। दो बच्चे हैं, एक भर्ती है अस्पताल में।
10: क्या आपको वहाँ से जानकारी बताया गया परिवार?
11: वहाँ पे ये बताया गया कि नीम का पेड़ गिर गया है, वो लोग दब गए हैं। तब हम लोग नहीं थे, तब हमारे चाचा के लड़का लोग आए यहाँ पे, फिर उसको लेके निकाले, फिर दो तो बच गए, तीन मर गए।
10: कितने बच्चे हैं?
12: जो तूफान चक्रवाती तूफान आया था उसी में जो है नीम का पेड़ गिर जाने से हरजन बस्ती के पांच लोग, मतलब माँ थी और चार लड़कों लेके उसी घर में घुस गई अपने घर में। जब मौके पर वो पेड़ गिर गया जो है घर के ऊपर, और उसी में लोग दब गए, तो तीन लोगों की तो मौके पे मौत हो गई, दो लोगों को गंभीर लोग घायल हो गए हैं, उनको जिला अस्पताल या कहीं रेफर किया गया है, बनारस ट्रामा सेंटर।
8: एक और घटना, उगापुर सरौली में मंदिर गई एक परिवार की तीन महिलाएं विशालकाय पेड़ गिरने के दौरान उसकी चपेट में आ गई, जिससे तीनों की मौत हो गई।
13: तेज आंधी तूफान आने की घटना के कारण अलग अलग थाना क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, जिसमें पेड़ गिर जाने के कारण अथवा बिजली का खंभा घरों के ऊपर गिर जाने के कारण अथवा एक मंदिर के ऊपर गिर जाने के कारण कई सारी कैजुअल्टीज हुई हैं। कुल मिलाकर के अभी तक प्राप्त सूचना के क्रम में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 8 लोग इन घटनाओं में घायल हुए हैं अलग अलग।
8: बहुत से लोग बिजली गिरने की वजह से भी मारे गए हैं, जो और ज्यादा भयावह है, क्योंकि गंगा के बेसिन में बिजली गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पूरे यूपी में कल बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में देश में बिजली गिरने की घटनाओं में 400% का इजाफा देखा गया है। भारत में हर साल बिजली गिरने की घटनाओं में 7-14% की वृद्धि दर्ज की गई है। रिसर्च बताती है कि अगर तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो बिजली गिरने की घटनाएं 8-10% बढ़ जाती हैं। पिछले कुछ वक्त में बिजली गिरने की घटनाएं भारत के पूर्वी, उत्तरी और तटीय इलाकों से उत्तर पश्चिमी और हिमालय की तलहटी तक पहुंच चुकी हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात बिजली गिरने के नए हॉटस्पॉट्स, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये भी देखा गया है कि जहां जहां से नदियां गुजरती हैं वहां ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। जैसे गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, ताप्ती और नर्मदा की घाटियों में ज्यादा बिजली गिरती है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि नदियों की घाटियों पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण और शहरीकरण हो गया है, जिसकी वजह से वहां गर्मी बढ़ गई है, इससे ज्यादा वाष्पीकरण होता है और बिजली गिरती है। अगर समय की बात करें तो बिजली गिरने की घटनाएं अब लगभग पूरे साल होती है। आमतौर पर पूर्वी भारत में मानसून के पहले के आंधी तूफान में बिजली गिरती है, इसे काल बैसाखी भी कहा जाता है। आज तक ब्यूरो।
0: इंदौर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। हल्दी की रस्म के दौरान दुल्हन को चेहरे और शरीर में तेज जलन शुरू हुई। कुछ ही देर में चेहरे पर लाल धब्बे और सूजन बढ़ने लगी। परिजन तुरंत दुल्हन को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। जांच में आशंका व्यक्त की गई कि मिलावटी हल्दी ने जानलेवा रिएक्शन कर दिया। इलाज के दौरान दुल्हन की मौत हो गई।
3: मध्य प्रदेश का खरगोन, दुल्हन की हल्दी का कार्यक्रम चल रहा है। हंसी खुशी संगीत के बीच अचानक दुल्हन राखी परेशान होने लगती है। चेहरे हाथ पैर पर घर वालों दोस्तों की तरफ से लगाई जाती हल्दी से उसके चेहरे पर जलन तेज महसूस होती है, वो दौड़ती है। हालत ये हो जाती है कि दुल्हन को इंदौर के अंबाई अस्पताल में ले जाकर तुरंत भर्ती तक कराना पड़ता है। लेकिन क्या मिलावटी हल्दी की वजह से दुल्हन की मौत हो गई? क्या हल्दी की रस्म में मिलावटी केमिकल वाली हल्दी जान ले रही है? क्या हल्दी की रस्म में जहरीले केमिकल की मिलावट अब मार दे रही है? इस सवाल की वजह 22 साल की ये दुल्हन है। ये इसकी शादी की तैयारी से पहले की तस्वीर है, जिसकी शादी में हल्दी की रस्म के दौरान हल्दी लगाने से दावा है इतनी भयानक एलर्जी हुई कि उसे इंदौर के अस्पताल में जब तक भर्ती कराया गया हालत बिगड़ चुकी थी। चेहरे पर सूजन आने लगी, हाथ पैर में लाल धब्बे पड़ने लगे।
14: सर उसके हल्दी लगे हुए थे और अचानक से कुछ ऐसा हुआ तो गले में सूजन आ गया, मुंह सूज गया उनका होठ। उसके बाद में लड़के से बोला भी नहीं जा रहा, तो फिर अब दुल्हन थी सर सब घबरा गए। हल्दी ये बाजार में से लेके आए थे सर, बेचने वाले आए थे तो उसके लिए ले ली थी, तो उसी से गड़बड़ हो गई सर। अब
15: एलर्जिक रिएक्शन था काफी उसके शरीर में, अर्टिकेरिया और होठों पे भी कुछ स्वेलिंग वगैरह थी। और जब उसकी हिस्ट्री निकाली गई तो ये पता चला कि उसको कोई शादी का उनके यहाँ प्रोग्राम था, उसमें हल्दी लगाई गई थी, जिसके कारण उसके कुछ ही देर के बाद उसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ और उसको लाके वार्ड में भर्ती किया था। और चूंकि उसके साथ साथ उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी तो प्रिकॉशनरी हम लोगों ने उसको आईसीयू में रखा था। उन्होंने बाजार से कुछ हल्दी खरीदी थी, हो सकता है उसमें किसी तरह का कोई केमिकल्स कई बार हल्दी को कलर बढ़ाने के लिए डाल के रखते हैं, उसके कारण ये एग्जैजरेटेड रिएक्शन उसके लिए एलर्जिक रिएक्शन हुआ।
3: इसके बाद दावा है कि स्थिति न सुधरने पर घर वाले एक दूसरे अस्पताल ले गए और बाद में फिर राखी की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि जान चली गई।
16: जहाँ जहाँ भी सोर्सेस प्राप्त हुए वहाँ से नमूने हमने संग्रहित किए गए और लेबोरेटरी प्रयोगशाला को भेजे गए। हल्दी लगाने से ऐसा रिएक्शन हुआ ऐसा बता रहे, बाकी हमने भी जांच करी है और हमने लेबोरेटरी सैंपल के लिए भेज दिए गए।
3: 14 दिन में जांच से पता चलेगा राखी की मौत किस तरह की मिलावटी हल्दी की वजह से हुई। क्या केवल मिलावटी केमिकल वाली हल्दी इसकी वजह है या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है? अब सवाल आपसे जुड़ा है, हल्दी का इस्तेमाल खाने में होता है, हल्दी का इस्तेमाल शादियों में रस्म निभाने में होता है, तो क्या हल्दी अगर मिलावटी है केमिकल वाली है तो रिएक्शन से लेकर जानलेवा तक हो सकती है?
17: खाने की और यदि चेहरे पे भी लगा रहे हैं तो मेरा तो सुझाव यही है कि जो खाने की हल्दी है और ब्रांडेड है वो बारीक हल्दी उसका ही उपयोग करना चाहिए। ड्रेस एंड कॉस्मेटिक के अंतर्गत कई बार जो है जो हल्दी है जो पैक करके दे रहे हैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव या अन्य रंग या गुलाल जैसा बना के भी उसको किया सकता है, उससे काफी हानि हो सकती है। वो जो हल्दी होगी या तो उन्होंने कहीं लूज हल्दी जो है यूज किया होगा बाजार में जो खुलेआम ठेले पे बिकती है। देखिए हल्दी को यदि हम पानी में घोल के कुछ देर रख देते हैं तो आप देखेंगे कि जो मूल हल्दी है वो पानी में घुलती नहीं है, जो हल्दी जो है नीचे बैठ जाएगी। और जो यदि उसमें कलर है तो कलर जो है गाढ़ा कलर यदि मिलाया गया है तो वो कलर ऊपर तैरने लगता है।
18: पीसी हल्दी में मिलावट की ज्यादा संभावना होती है?
17: पीसी हल्दी में ही ज्यादा संभावना है, हम जांच कर रहे हैं। और यदि फूड के माध्यम से इस तरह की हल्दी बेची जा रही है जो चेहरे पे लगा के और यदि कलर यूज हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका कारण है।
3: आशंका है कि हल्दी में मेटानिल येलो नाम का जहरीला सिंथेटिक डाई मिलाया गया, वो भी इतनी मात्रा में जो जानलेवा बन गया। इस मेटानिल येलो का इस्तेमाल कपड़ा रंगने में किया जाता है।

0: खरगोन की दुल्हन राखी, जिसको घर परिवार के 15 से ज्यादा लोगों ने हल्दी लगाई, उनके हाथ में कोई रिएक्शन नहीं होने का दावा है। दुल्हन राखी को ही पहले रिएक्शन हुआ और फिर जान तक चली गई।
1: थोड़ा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी के पांच देशों की यात्रा पर दुनिया की नजर। आज सुबह यूएई के लिए होंगे रवाना, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का करेंगे दौरा। देश में निर्यात के लिए निर्णायक फैसलों की उम्मीद। पीएम की अपील के बाद बीजेपी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों में तेल बचाने की होड़। बस, बाइक से लेकर साइकिल तक का इस्तेमाल, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। रेखा गुप्ता बोली, हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम। अमित शाह से योगी की मुलाकात पर बड़ा राजनीतिक तापमान। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रालय बंटवारे समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात। बीजेपी अध्यक्ष से भी मिले योगी। शराब घोटाले में सुनवाई के दौरान जस्टिस पर टिप्पणी को लेकर आपकी मुसीबत बढ़ी। कोर्ट ने माना अवमानना। केजरीवाल सिसोदिया समेत पांच पर निशाना। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर बड़ी बैठक। सीबीआई ने 23 की जांच। महाराष्ट्र से 2 गिरफ्तारियां, 5 को 7 दिन की सीबीआई रिमांड। क्या ईरान युद्ध नए सिरे से भड़कने वाला है और इसलिए भारत खुद को बड़े संकट की चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन युद्ध के इस शोर में महंगाई धीरे धीरे आप पर, हम पर, आम आदमी पर शिकंजा कस रही है। हमारे देश को पता है कि यह कठिनाई आ रही है, जिसे रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सतर्क आपको और हमें देश को कर रहे हैं। कहते आ रहे हैं कि हम सबको मिलकर बचाएंगे और हम सब मिलकर बचत करेंगे, तभी इस महंगाई से बच पाएंगे।
1: पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, भारत भी इससे अछूतला नहीं है। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले। ये संकट किसी भी तरह हमारी प्रगति को, हमारे विकास को प्रभावित न करे, ना करे, करे।
2: जिस संकट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हफ्ते से पूरे देश को खबरदार करते आ रहे हैं, वो अब थोक में आपके ऊपर आने लगा है। संकट को समझ लीजिए, खबरदार हो जाइए, क्योंकि अप्रैल के महीने में थोक महंगाई दर 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई, जो मार्च में 3.88% पर थी। ये 42 महीने में सबसे ज्यादा है। प्राइमरी आर्टिकल यानी कच्चे सामान की महंगाई 6.36% से 9.17% हो गई। वहीं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की महंगाई भी 3.39% से 4.62% पहुंच गई। मतलब है कि फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान की लागत भी बढ़ रही है। कोर महंगाई यानी खाने पीने की चीजों और ईंधन को छोड़ बाकी वस्तुओं की

0: महंगाई भी बढ़कर 5% पर पहुंच गई, जो 43 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे ये संकेत मिलने लगा है कि महंगाई का दबाव अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं बल्कि बाकी सेक्टर में फैलने लगा है और महंगाई का यही संकट धीरे धीरे आपकी जेब की चारों तरफ जकड़ने लगा है। वो आपके घर के सिलेंडर से लेकर रेस्टोरेंट ढाबे के सिलेंडर तक पहले दबे पांव पहुंचा, जो सबसे पहले महंगे हो चुके हैं, जिसने जनता की जेब को ढीला करना मार्च के महीने से शुरू किया, मई तक ढीला करता आया।
1: सिलेंडर का रेट ऑलरेडी इतना हाई रहेगा तो फूड एंड बेवरेजेस का भी थोड़ा हमारे को इश्यूज रहा करेगा।
2: क्या ये आपके बजट में रहेगा बाहर आना, जैसे आप पहले यूजुअली बाहर आते थे?
3: बट ऑब्वियसली वो कम ही हो जाएगा, हमारा बाहर खाना वगैरह
2: कम करना पड़ेगा,
3: हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
0: अब महंगाई का वो संकट काल आम लोगों को सुबह से परेशान करने जा रहा है, जहां दूध की थैलियों का वजन उतना ही रहना है, बस आपकी जेब 2 रुपए प्रति लीटर अमूल से लेकर मदर डेयरी तक के दूध खरीदने पर ढीली होने लगी है।
4: बहुत गलत हुआ, बढ़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो गरीब है वो कैसे खाना खाएगा।
5: जो बिल्कुल गरीब तबका है उसको सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए जद्दोजहद करता है।
6: मुश्किल तो है हर चीज में, हर चीज महंगी हो रही है प्रॉब्लम, और दूध उसके बाद जरूरत की चीज है, बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है।
7: महीने का बजट भी इसी से निर्धारित होता है। अब 2 रुपए का बढ़ने का मतलब है कि 60 रुपए, तो उसके आधार पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि है ना इतनी जल्दी जल्दी ना बढ़ाएं।
8: ओवर टाइम इस पे बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली जो लोग मेहनत करते हैं रोज की, उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ता है।
0: मुंबई में तो CNG भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है, क्या आप जल्द ही दूसरी जगहों पर CNG के दाम बढ़ने की आशंका है? और तब थोक महंगाई दर अगर 42 महीनों में सबसे ज्यादा हो जाती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियां बढ़ी हुई लागत को जल्द ग्राहकों पर डालेंगी।
9: विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है, और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है।
10: अब गाड़ियों को चलाने वाले तेल की बात अब कर लेते हैं। आपकी हमारी सबकी चिंता पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर है, क्योंकि ये जैसे ही बढ़ेंगे महंगाई क्लस्टर बॉम्ब की तरह फूटेगी। हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से लेकर RBI के गवर्नर तक के बयान इसी संकट की तरफ संकेत भी दे चुके हैं, और इसीलिए जनता के मन में तेल के दाम को लेकर आशंका बनी हुई है।
11: तेल का रेट जैसे बढ़ रहा है तो बढ़ना तो चाहिए, लेकिन अभी तक तो मुझे उम्मीद नहीं है, क्या कहते टीवी में मैं भी देखता हूँ, टीवी में नहीं बताया जा रहा है जो रेट बढ़ेगा। सब्सिडी आया था तो गवर्नमेंट अपने जेब से दिया है, तो अब क्या भरोसा बढ़ा दे।
12: अगर जो स्थिति बनती है कि डीजल या पेट्रोल का दाम बढ़ाया जाए तो आपके हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए?
13: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
12: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
13: गरीबों पे मार होती है।
12: ऐसे भारत की, देश की, हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत रहनी चाहिए, कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते भी हैं तो देश के लिए ही हैं, हमारे बढ़ रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि सरकार अगर रेट बढ़ा रही है तो कहीं और लेके जा रही है उस पैसे को, वो समाज के लिए देश के लिए काम आ रहा है। और पीछे जो उन्होंने इतने सालों से रेट बढ़े नहीं हमारे, तो 94 रुपए कुछ पैसे चल रहे हैं आज भी वही है, और आज के समय में अगर देश के ऊपर कोई संकट आया तो हम देश के साथ खड़े हैं।
14: पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो देखो सारी अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ेगा, उसको मिडिल क्लास लोग हैं तो
15: अभी तो स्थिति सामान्य है बिल्कुल, अभी किसी तरीके का स्टॉक या इस तरीके से मतलब कोई पैनिक या कुछ नहीं है लोगों में, लोगों को समझ है कि हाँ ठीक है लोग आ रहे हैं और अपना जितना डेली रूटीन में लेते हैं उतना ही ले रहे हैं। सप्लाई में तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई तो जितनी डिमांड मतलब एज पर सेल के हिसाब से डेली सेल के उतनी सप्लाई हमारे पास आ रही है।
16: देखिए देश हित के लिए लिया गया फैसला है और इस फैसले का पूर्ण समर्थन है, और मैं किसी पार्टी विशेष के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मोदी जी ने अपने पर्सनल निजी इसके लिए बढ़ाया है। बाकी बहुत सारे समृद्ध देश हैं जिनका ऑलरेडी उन्होंने बहुत पहले बढ़ा चुका, युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने पेट्रोल के कीमतों में बहुत उछाल मार दिया है, हमारे देश में बहुत देर से हुआ है।
17: प्रधानमंत्री बोले हैं कि कुछ कटौती करके चले, अगर ऐसा होता है तो बढ़ भी नहीं सकता है,
18: बढ़ नहीं सकता।
19: मोदी जी हमारे देश के लिए ही कुछ अच्छा सोच करके किए होंगे।
20: सरकार ने अभी तक कंपनियों को रोक रखा है रेट बढ़ाने से, एज पर अगर कंपनी की कैलकुलेशन लगाई जाए तो दे आर बेयरिंग अ लॉस ऑफ अराउंड 20 रुपीज ऑन डीजल एंड 30 रुपीज इन पेट्रोल।
21: प्राइस के लिए देखिए, अगर मान के चलिए कुछ बढ़ भी जाता है तो जनता मजबूरन तो लेना ही है, क्योंकि जरूरत का चीज है, उससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मिलना चाहिए,
22: मिलना चाहिए
21: सभी को।
22: सभी को मिलना
21: जी। क्या नाम? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
23: जरूरत रहेगा तो आदमी ड्यूटी नहीं करेगा, ड्यूटी नहीं जाएगा, बताइए। ड्यूटी तो जाना अनिवार्य है, ड्यूटी नहीं जाएगा पेमेंट नहीं मिलेगा, घर में बैठ के थोड़ी खाएगा लोग। मोदी जी तो कहीं रहा है, लेकिन मोदी जी तो कहेंगे तो ऑफिस में ऑफिस वाले को बोले कि हाँ नहीं बोला है कर्मी को, अपना घर से ही काम करवाए तब ना।
24: भैया बहुत बिक्री हो रही है, वो लाइन लगती हो रही है, और जहाँ 5,000 बिकता था 8,000 बिक रहा है,
25: ज्यादा आ रहे हैं, ये सोच
24: बढ़ा रहे, टंकी फुल करा रहे हैं पूरी।
26: जिस तरीके से लड़ाइयाँ और जिस तरीके से वो चल रहा है, और मतलब कंपनी को नुकसान उठा के बेच रही है माल, उसके हिसाब से तो हम लोग नहीं बता सकते ना, लेकिन ये कि जैसा लग रहा हो सकता है कुछ बढ़ जाए।
10: ये बात सच है कि लीड पेपर लीक के पीछे एक बड़ा आदमी है, क्योंकि अब तक सीबीआई ने जिनको पकड़ा या तो जो सीधे जांच के दायरे में हैं उन्हें पकड़ा है, जैसे अहिल्यानगर से एक धनंजय लोखंडे पकड़ा गया, लेकिन वो कोई बड़ा आदमी नहीं है। नासिक से जो पकड़ा गया वो भी कोई बड़ा आदमी नहीं है, जितने भी लोग पकड़े गए वो बड़ा आदमी नहीं है, तो आखिर कौन है वो बड़ा आदमी?
0: दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल जयपुर के पास रहने वाले ये दो भाई प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन डीलरी करते करते ये दोनों दावा है कई वर्षों से नीट के पेपर लीक की भी डील करने लगे, जिसकी जांच में जुटी सीबीआई की टीम तफ्तीश करने इन दोनों के घर तक पहुंचती है, गाड़ी तक की जांच करती है।
27: नीट पेपर लीक 2026 में गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल, दिनेश और विकास के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं किस तरह से घर में पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है। यहां आसपास जो इनके घर में गाड़ियां थी उन गाड़ियों की भी तलाशी ली गई है, इसके अलावा भी जो सामान है उन सारे सामान की भी तलाशी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है। अब इस तरह से निकल रहे हैं, क्या आप लोगों ने देखा, कुछ पाया यहां? कुछ आप लोगों ने जांच में?
0: सीबीआई के अफसर कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत लेकर बिवाल ब्रदर्स के घर से निकलते हैं, वो घर जो केवल आरोपियों का घर नहीं बल्कि इस घर से इतने नीट पास करने वाले बच्चे एक साल में निकल गए कि शंका पैदा हो गई है, कहीं हर साल ये पेपर लीक करा के तो खेल नहीं करते रहे। हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। गिरफ्तार मांगीलाल बिवाल के बेटे विकास को पिछले साल 2026 की नीट परीक्षा पास करके सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति ने भी नीट परीक्षा पिछले साल पास कर ली और मेडिकल कॉलेज में दौसा के दाखिला ले लिया। इन दोनों का तीसरा भाई जो जीवित नहीं, उस घनश्याम बिवाल की बेटी पलक बिवाल को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नीट निकाल के एडमिशन 2025 में मिल चुका है। दूसरी बेटी सानिया बिवाल को मुंबई के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और गिरफ्तार दिनेश बिवाल की बेटी गुंजन को वाराणसी के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। यानी 5 बच्चे इसके घर से नीट निकाल लेते हैं, सुनकर ही चौंक जाना पड़ता है कि इतना पढ़ाकू परिवार था क्या। जहां दिनेश बिवाल ने सोशल मीडिया तक पर डाल दिया कि उसके परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि उसके परिवार के 5 बच्चों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ, लेकिन जब इसी परिवार के इतने टॉप क्लास की पढ़ाई करने वाले बच्चों के बारे में आज तक संवाददाता शरद कुमार पूछते हैं तो इनकी माए कुछ भी जानकारी में होने से इनकार करने लगती है।
28: पढ़ती है अभी?
29: पढ़ रही है हमारी तो, मैं पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ जो मैं कौन कौन सी बता दूँ क्या है क्या नहीं है।
28: तो हमने सब पढ़ाया मेहनत
29: पढ़ाया, मैं अनपढ़ गाँव और मैं पढ़ी लिखी कौन है, मैं
28: कौन पढ़ रही, ये तो पता होगा।
29: पढ़ रहा जो मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं नाम भी पढ़ लू ना, कहाँ पढ़ रही जब।
28: अरे जग शहर का नाम तो पता होगा,
29: शहर का नाम भी पता होगा, मैं चले आऊँ ना, मेरा आदमी से ही मिलवा, कोड़ा रख रखा है, कोड़ा नहीं रख रखा है, मेरा बेटा ना कोड़ा रख रखा है।
28: आपका बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ता है ये तो बता सकती है?
29: बात क्या बात, मैं पढ़ी लिखी हूँ ना तो मैं कहीं बताऊँ भी, कोचिंग में पढ़ रहे, वो कोचिंग में पढ़ रहे।
28: बताओ ये गुंजन कहाँ पढ़ती है?
29: गुंजन कहाँ पढ़ती है, कौन सी तो मुझे पता नहीं है ना, कौन सी जगह पढ़ती है गुंजन?
28: MBBS कर रही है ना?
29: नहीं MBBS कुछ नहीं कर रही मेरी तो।
28: कहाँ कर रही है?
29: क्लियर ही कौन हुआ का बच्चा उनको यहाँ वो में।
28: विकास कहाँ पढ़ता है?
29: विकास को मुने कहा पता, कोड़ा पढ़ा, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो बताऊँ ना, ये पढ़ा ये समझ वाला बतावा।
28: प्रगति कहाँ पढ़ती है?
29: मुझे कुछ ही पता नहीं है मेरे बच्चों का क्या, कहाँ
28: दुनिया कहाँ पढ़ती है
29: कुछ पता नहीं है, किसी जगह पढ़ती है वो, कौन सी जगह, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं बच्चा उनको यहाँ फड़ारगंज में चले जाऊँ ना, मैं खुद ही चल जाऊँ, आदमी से मिलवा
28: बताता होगा ना किस शहर में जाता है।
29: हाँ जाता है तो इधर ही चल जाता है, जयपुरपुर की तरफ इधर ही चल जाता है हमारे तो। ये सारा ही गाँव है, आस पास का कशा कशा गाँव है, कशी कशी।
27: अच्छा, ये पढ़ते कहाँ पर थे?
10: और अब बात उस आंधी तूफान की जिसने यूपी में बहुत कहर बरपाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से यूपी में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। भीषण आंधी में सड़कों से पेड़ उखड़ गए, गाड़ियों के ऊपर गिर गए, घरों की दीवारें ढह गई, टिन शेड उखड़ गए और लगभग 100 लोगों की मौत हो गई।
1: कहीं तूफान में इंसान उड़ गया, कहीं पेड़ जमीन से ही उखड़ गए, कहीं पेड़ घर पर गिर गया, कहीं पेड़ के नीचे गाड़ियां फंस गई। यह है उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली का कहर। बुधवार को यूपी में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। न कोई चेतावनी, न कोई पहले से जानकारी, न कोई अलर्ट, सीधा आंधी तूफान आया, बिजली गिरी और 104 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने से बुधवार को कुल 104 लोगों की मौत हुई। इनमें से 4 लोग बिजली गिरने से मारे गए हैं, 52 लोग घायल भी हैं और 98 घर भी टूटे हैं। इसके अलावा 130 जानवरों की भी जान गई है। और ये तो सरकारी आंकड़े, तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति इससे कहीं ज्यादा बदतर है। सबसे बड़ी बात कि मॉनसून से पहले का आंधी तूफान इतनी तबाही लेकर आएगा किसी ने सोचा नहीं था। लोग हर रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे, तूफान आया और कई लोगों की जान ले ली। बदायूं में भीषण आंधी तूफान से अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की मौत हुई है। भदोही जिले में अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की मौत हुई। मिर्जापुर में भी आंधी तूफान की वजह से पूरे जिले में 17 लोगों की मौत हुई। फतेहपुर में 5 महिलाओं समेत कुल 11 लोग मारे गए। प्रयागराज में कल आए आंधी तूफान की वजह से कुल 21 लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा 1-2 मौतें तो ज्यादातर जिलों में हुई ही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं बरेली से। आंधी में छत उड़ जाती है, तिरपाल उड़ जाता है, कपड़े उड़ जाते हैं, पेड़ भी उखड़ जाता है, लेकिन इंसान उड़ते शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। बरेली में कल जो तूफान आया उसमें नन्हे मियां उड़ गए। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तब से ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये कोई AI वीडियो तो नहीं है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन हकीकत यही है कि बरेली में नन्हे मियां तूफान से बचने के लिए बारात घर की छत पकड़े हुए खड़े थे। तूफान इतना तेज था कि छत ही उड़ गई और नन्हे मियां फिल्मी स्टाइल में 50 फीट ऊपर हवा में उछल गए और उछलकर एक खेत में जा गिरे। इस हादसे में नन्हे मियां बुरी तरह से घायल हो गए, उनके हाथ और पैर में चोट आई है।
2: बहुत तेज लकूदा आ रहा था, लकूदे के साथ में ऊपर मतलब 30-40 फीट ऊंचा चले गए। हमें ना पता कहाँ गिरे, क्या हुआ, कम से कम 50 फीट दूरी से।
3: नहीं तो आपने उसको पकड़ रखा था, क्या था?
2: हाँ मतलब पकड़ा नहीं था, मतलब गाड़ी के जोरे खड़े खड़े हम पास में रस्सी पड़ी हुई थी।
3: अच्छा,
2: हाँ रस्सी पकड़ी थी।
1: पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें नजर आ रही है। उन्नाव में तेज आंधी के चलते एक नीम का पेड़ उखड़ गया और कार के ऊपर गिर गया। कार के अंदर बैठे शख्स ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। पेड़ गिरने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बदायूं में यह आंधी तूफान जानलेवा रहा। यहां अलग अलग स्थानों पर 2 मासूमों समेत 6 लोगों की मौत हुई है। आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और दीवारें टूटकर गिर पड़ी, जिसके नीचे दबकर 2 मासूम बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हुई। एक ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर उत्तराखंड के बाजपुर से बुलंदशहर जा रहा था। बदायूं के बिसौली में तेज आंधी से सड़क किनारे यूकेलिप्टस का पेड़ टूटकर ट्रक पर आ गिरा। इसके नीचे दबकर 29 साल के ट्रक ड्राइवर योगेश की मौत हो गई। पुलिस ने पेड़ को कटवाकर जैसे तैसे उसके शव को बाहर निकलवाया। यही हाल भदोही का भी रहा। यहां पूरे जिले में कुल 16 लोगों की मौत हुई है। एक महिला का पूरा परिवार इस त्रासदी की जद में आ गया। महिला के घर पर पेड़ गिरने के कारण उसकी और उसकी 2 मासूम बेटियों की मौत हो गई। एक बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार चल रहा है। पति मुंबई में काम करते हैं।
4: कल तो घटना हुई है, क्या घटना है पूरी
5: बात? वही आंधी तूफान आई थी सर, और वहाँ पे पेड़ गिर के दब के खत्म हो गए।
4: कौन खत्म?
5: मेरी बहन थी और 2 भतीजी थी, वो लोग खत्म हो गए। 2 बच्चे हैं, 1 भर्ती है अस्पताल में।
4: क्या आपको वहाँ से जानकारी बताया गया परिवार?
5: वहाँ पे ये बताया गया कि नीम का पेड़ गिर गया है, वो लोग दब गए हैं। तब हम लोग नहीं थे, तब हमारे चाचा के लड़का लोग आए यहाँ पे, फिर उसको लेके निकाले, फिर 2 तो बच गए, 3 मर गए।
6: कितने बच्चे हैं?
7: जो तूफान चक्रवाती तूफान आया था उसी में जो है नीम का पेड़ गिर जाने से हरजन बस्ती के 5 लोग, मतलब माँ थी और 4 लड़कों लेके उसी घर में घुस गई अपने घर में। जब मौके पर वो पेड़ गिर गया जो है घर के ऊपर और उसी में लोग दब गए तो 3 लोगों की तो मौके पर मौत हो गई, 2 लोगों को गंभीर लोग घायल हो गए हैं, उनको जिला अस्पताल या कहीं रेफर किया गया है बनारस ट्रामा सेंटर।
10: इंदौर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। हल्दी की रस्म के दौरान दुल्हन को चेहरे और शरीर में तेज जलन शुरू हुई। कुछ ही देर में चेहरे पर लाल धब्बे और सूजन बढ़ने लगी। परिजन तुरंत दुल्हन को लेकर अस्पताल पहुंचे लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। जांच में आशंका व्यक्त की गई कि मिलावटी हल्दी ने जानलेवा रिएक्शन कर दिया। इलाज के दौरान दुल्हन की मौत हो गई।
0: मध्य प्रदेश का खरगोन, दुल्हन की हल्दी का कार्यक्रम चल रहा है। हंसी खुशी संगीत के बीच अचानक दुल्हन राखी परेशान होने लगती है। चेहरे हाथ पैर पर घर वालों दोस्तों की तरफ से लगाई जाती हल्दी से उसके चेहरे पर जलन तेज महसूस होती है। वो दौड़ती है। हालत ये हो जाती है कि दुल्हन को इंदौर के एमवाई अस्पताल में ले जाकर तुरंत भर्ती तक कराना पड़ता है। लेकिन क्या मिलावटी हल्दी की वजह से दुल्हन की मौत हो गई? क्या हल्दी की रस्म में मिलावटी केमिकल वाली हल्दी जान ले रही है? क्या हल्दी की रस्म में जहरीले केमिकल की मिलावट अब मार दे रही है? इस सवाल की वजह 22 साल की ये दुल्हन है। ये इसकी शादी की तैयारी से पहले की तस्वीर है जिसकी शादी में हल्दी की रस्म के दौरान हल्दी लगाने से दावा है इतनी भयानक एलर्जी हुई कि उसे इंदौर के अस्पताल में जब तक भर्ती कराया गया हालत बिगड़ चुकी थी। चेहरे पर सूजन आने लगी, हाथ पैर में लाल धब्बे पड़ने लगे।
8: सर उसके हल्दी लगी हुई थी और अचानक से कुछ ऐसा हुआ तो गले में सूजन आ गया, मुंह सूज गया उनका होठ। उसके बाद में लड़के से बोला भी नहीं जा रहा तो फिर अब दुल्हन थी सर सब घबरा गए। हल्दी ये बाजार में से लेके आए थे सर, बेचने वाले आए थे तो उसके लिए ले ली थी तो उसी से गड़बड़ हो गई सर। अब
9: एलर्जिक रिएक्शन था काफी उसके शरीर में, अर्टिकेरिया और ओंठों पे भी कुछ स्वेलिंग वगैरह थी और जब उसकी हिस्ट्री निकाली गई तो ये पता चला कि उसको कोई शादी का उनके यहाँ प्रोग्राम था उसमें हल्दी लगाई गई थी जिसके कारण उसके कुछ ही देर के बाद उसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ और उसको लाके वार्ड में भर्ती किया था। और चूंकि उसके साथ साथ उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी तो प्रिकॉशनरी हम लोगों ने उसको आईसीयू में रखा था। उन्होंने बाजार से कुछ हल्दी खरीदी थी, हो सकता है उसमें किसी तरह का कोई केमिकल्स कई बार हल्दी को कलर बढ़ाने के लिए डाल के रखते हैं, उसके कारण ये एग्जैजरेटेड रिएक्शन उसके लिए एलर्जिक रिएक्शन हुआ।
0: इसके बाद दावा है कि स्थिति न सुधरने पर घर वाले एक दूसरे अस्पताल ले गए और बाद में फिर राखी की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि जान चली गई।
11: जहाँ जहाँ भी सोर्सेस प्राप्त हुए वहाँ से नमूने हमने संग्रहित किए गए और लेबोरेटरी प्रयोगशाला को भेजे गए। हल्दी लगाने से ऐसा रिएक्शन हुआ ऐसा बता रहे, बाकी हमने भी जांच करी है और हमने लेबोरेटरी सैंपल के लिए भेज दिए गए।
0: 14 दिन में जांच से पता चलेगा राखी की मौत किस तरह की मिलावटी हल्दी की वजह से हुई। क्या केवल मिलावटी केमिकल वाली हल्दी इसकी वजह है या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है? अब सवाल आपसे जुड़ा है, हल्दी का इस्तेमाल खाने में होता है, हल्दी का इस्तेमाल शादियों में रस्म निभाने में होता है, तो क्या हल्दी अगर मिलावटी है केमिकल वाली है तो रिएक्शन से लेकर जानलेवा तक हो सकती है?
12: खाने की और यदि चेहरे पे भी लगा रहे हैं तो मेरा तो सुझाव यही है कि जो खाने की हल्दी है और ब्रांडेड है वो बारीक हल्दी उसका ही उपयोग करना चाहिए। ड्रेस एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत कई बार जो है जो हल्दी है जो पैक करके दे रहे हैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव या अन्य रंग या गुलाल जैसा बना के भी उसको किया सकता है, उससे काफी हानि हो सकती है। वो जो हल्दी होगी या तो उन्होंने कहीं लूज हल्दी जो है यूज किया होगा बाजार में जो खुलेआम ठेले पे बिकती है। देखिए हल्दी को यदि हम पानी में घोल के कुछ देर रख देते हैं तो आप देखेंगे कि जो मूल हल्दी है वो पानी में घुलती नहीं है, जो हल्दी जो है नीचे बैठ जाएगी और जो यदि उसमें कलर है तो कलर जो है गाढ़ा कलर यदि मिलाया गया है तो वो कलर ऊपर तैरने लगता है।
13: पीसी हल्दी में मिलावट की ज्यादा संभावना होती है?
12: पीसी हल्दी में ही ज्यादा संभावना है, हम जांच कर रहे हैं। और यदि फूड के माध्यम से इस तरह की हल्दी बेची जा रही है जो चेहरे पे लगा के और यदि कलर यूज हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे।
0: आशंका है कि हल्दी में मेटानिल येलो नाम का जहरीला सिंथेटिक डाई मिलाया गया, वो भी इतनी मात्रा में जो जानलेवा बन गया। इस मेटानिल येलो का इस्तेमाल कपड़ा रंगने में किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने के कारण भारत में FSSAI समेत विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों में इसके उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध है। खरगोन की दुल्हन राखी, जिसको घर परिवार के 15 से ज्यादा लोगों ने हल्दी लगाई, उनके हाथ में कोई रिएक्शन नहीं होने का दावा है। दुल्हन राखी को ही पहले रिएक्शन हुआ और फिर जान तक चली गई।
10: थोड़ा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी के पांच देशों की यात्रा पर दुनिया की नजर। आज सुबह यूएई के लिए होंगे रवाना। नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का करेंगे दौरा। देश में निर्यात के लिए निर्णायक फैसलों की उम्मीद। पीएम की अपील के बाद बीजेपी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों में तेल बचाने की होड़। बस, बाइक से लेकर साइकिल तक का इस्तेमाल, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। रेखा गुप्ता बोली, हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम। अमित शाह से योगी की मुलाकात पर बड़ा राजनीतिक तापमान। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रालय बंटवारे समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात। बीजेपी अध्यक्ष से भी मिले योगी। शराब घोटाले में सुनवाई के दौरान जस्टिस पर टिप्पणी को लेकर आपकी मुसीबत बढ़ी। कोर्ट ने माना अवमानना। केजरीवाल, सिसोदिया समेत पांच पर निशाना। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर बड़ी बैठक। सीबीआई ने तेज की जांच। महाराष्ट्र से दो गिरफ्तारियां, पांच को सात दिन की सीबीआई रिमांड। क्या ईरान युद्ध नए सिरे से भड़कने वाला है और इसलिए भारत खुद को बड़े संकट की चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन युद्ध के इस शोर में महंगाई धीरे धीरे आप पर, हम पर, आम आदमी पर शिकंजा कस रही है। हमारे देश को पता है कि यह कठिनाई आ रही है, जिसे रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सतर्क आपको और हमें देश को कर रहे हैं। कहते आ रहे हैं कि हम सबको मिलकर बचाएंगे और हम सब मिलकर बचत करेंगे, तभी इस महंगाई से बच पाएंगे।
1: पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, भारत भी इससे अछूता नहीं है। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। ये संकट किसी भी तरह हमारी प्रगति को, हमारे विकास को प्रभावित न करे, ना करे, करे।
2: जिस संकट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हफ्ते से पूरे देश को खबरदार करते आ रहे हैं, वो अब थोक में आपके ऊपर आने लगा है। संकट को समझ लीजिए, खबरदार हो जाइए, क्योंकि अप्रैल के महीने में थोक महंगाई दर दो गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई, जो मार्च में 3.88% पर थी। ये 42 महीने में सबसे ज्यादा है। प्राइमरी आर्टिकल यानी कच्चे सामान की महंगाई 6.36% से 9.17% हो गई। वहीं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की महंगाई भी 3.39% से 4.62% पहुंच गई। मतलब है कि फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान की लागत भी बढ़ रही है। कोर महंगाई यानी खाने पीने की चीजों और ईंधन को छोड़ बाकी वस्तुओं की महंगाई भी बढ़कर 5% पर पहुंच गई, जो 43 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे ये संकेत मिलने लगा है कि महंगाई का दबाव अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं, बल्कि बाकी सेक्टर में फैलने लगा है। और महंगाई